जबकि उन्हें कहीं से भी एक बूंद पानी नहीं मिला था। यह सोच वे सब वैज्ञानिक अचरज में पड़ गए कि बावजूद पानी न मिलने के इन पौधों को जिंदा रहने के लिए नमी कहाँ से मिली। इस पर वैज्ञानिकों ने यही निष्कर्ष निकाला कि यह मदद उन्हें क्यारियों में उगे पौधों के सेवा भाव और संवेदना के कारण बराबर मिलती रही और इसी कारण वे इतने दिनों बिना पानी नमी के न केवल जिंदा ही रहे बल्कि हरे भरे भी रहे। मित्रों, इससे हम निश्चित जान सकते हैं कि भले पेड़ पौधे अचल रहते हों, वे संवाद नहीं कर सकते हों, लेकिन अपने साथियों अपने पड़ोसियों की समय आने पर चुपचाप सेवा तथा संवेदना पूर्वक मदद जरूर करते हैं। इस संदर्भ में मुझे एक प्राचीन कथा का स्मरण हो आया जिसे मैंने कभी पढ़ा और सुना था। वह एक सेवाभावी संवेदनशील तथा दयालु बुलबुल की कहानी है। आप सब उसे सुनना निश्चित ही पसंद करेंगे। तब एक छोटे से नगर के पास नदी किनारे प्रार्थना स्थल था जहाँ नगरवासी प्रभु प्रार्थना के लिए आते थे। उसी प्रार्थना स्थल के समीप एक बड़ा सा वृक्ष था। उसी के नीचे एक बड़ा सा चबूतरा बना था जहाँ कुछ लोग आकर बैठते और विश्राम करते थे, ठंडी हवा का आनंद लेते थे। उसी वृक्ष पर एक बुलबुल रहा करती थी। प्रार्थना के पश्चात जब लोग उस वृक्ष के नीचे आ बैठते तब वह बुलबुल अपने मीठे स्वरों में गाने लगती। लोग उसका वह मीठा गीत सुनकर बहुत प्रसन्न होते। उन्हें बुलबुल का वह गीत सुनकर यही लगता जैसे वह कोई स्वर्गीय संगीत हो। हाँ, एक समय किसी दूर प्रदेश में रहने वाला बुलबुलों का एक समूह उस अंचल में आया और उसी वृक्ष पर ठहरा जहाँ वह बुलबुल रहा करती थी। उस बुलबुल को वहाँ अकेली देख उस समूह के प्रमुख ने उससे कहा, तुम भी कैसी हो जो यहाँ अकेली रहती हो, चलो हमारे साथ। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि समूह में रहना कितना सुख देता है, उसमें निश्चिंतता भी होती है और सुख भी मिलता है। अब अकेली रहना छोड़ो और चलो हमारे साथ। यह बात सुन उस वृक्ष पर रहने वाली बुलबुल ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी यह बात स्वीकारती हूँ, लेकिन मैं यहाँ इसलिए रहती हूँ कि जो लोग प्रार्थना घर से प्रभु प्रार्थना कर लौटने के बाद इस वृक्ष के नीचे आ बैठते हैं, तब मैं अपने गीत सुनाकर बस उन्हें थोड़ी प्रसन्नता दे देती हूँ। यह मेरा नित्य कर्म है। उनकी बात थोड़ी बहुत प्रसन्नता मेरे लिए बहुत कुछ है। इस बहाने मैं उनकी थोड़ी बहुत सेवा कर देती हूँ, इसलिए मैं इस वृक्ष को छोड़ कहीं और भी नहीं जाती। इससे मुझे भी खुशी और संतोष मिलता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मैं जहाँ हूँ सुखी हूँ खुश हूँ। उस बुलबुल की यह बात सुनकर वह बुलबुल समूह वहाँ से उड़कर कहीं और चला गया। यह कथा हमें एक सोच देती है। अपने सुख अपनी खुशी अपनी उन्नति की खोज तो सभी करते हैं, लेकिन आज कितने ऐसे हैं जो अन्यों की खुशी और सुख की ओर ध्यान देते हैं। पहले यह भाव समाज में जरूर नजर आता था, आज वह उतना नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए तो जीवन उन्हीं का सफलता पाता है जिनके भाव विचारों में परहित हो, सेवा भाव हो, संवेदना हो। ऐसे ही लोगों को मनुष्यों ने श्रेष्ठ माना है और स्वीकारा भी है। एक तर्क यह भी हो सकता है, आज के इस युग में जबकि लोगों के पास एक दूसरे को देखने और सुनने की फुर्सत तक नहीं है, तब भला किसको एक दूसरे के सुख दुख नजर आएंगे। ऐसे में कोई किसके प्रति सेवा और संवेदना भाव रखे। तर्क अपने में एकदम निरर्थक है, एकदम असंगत है। जरा इस भाव संज्ञा को अपनाकर तो देखें, देखें कि यह भाव विचार वर्तमान युग में भी उतना ही संगत है जितना पहले था। भूले नहीं, यह युग पहले से अधिक विषाद भरा है, दुख बढ़ गए हैं, इसलिए आज एक दूसरे की मदद
एक दूसरे के प्रति सहयोग, एक दूसरे के प्रति संवेदना भाव रखना जरूरी होता जा रहा है। आज हर मन को कुछ ऐसा ही बनना होगा, वरना आगे और मानव कष्टों की अनंत धाराएं हर जगह प्रवाहित होती दिखेंगी और नजर आएंगी। इस संदर्भ में मुझे वर्षों पूर्व घटी एक घटना का स्मरण हो आया। अपने युग के एक गोल्फ चैंपियन रोबार्टो डी वाइन चेंजो के पास एक महिला आई और रोते हुए बोली, मेरी बेटी को रक्त कैंसर की बीमारी है और उसके इलाज के लिए काफी धनराशि की आवश्यकता है, कृपया हमारी मदद करें। श्री डी वाई चेंजो ने उस महिला को वह रकम दे दी। एक दिन उनके एक मित्र ने आकर कहा, तुमने यह क्या किया? उस महिला की बेटी को रक्त कैंसर वगैरह कुछ नहीं है, तुमने उसे यूं ही पैसे दे दिए। यह सुन श्री डी वाई चेंजो ने प्रसन्न होते हुए कहा, यह तो तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई कि उस बालिका को वह बीमारी नहीं है। सुनो, पैसे देने से कहीं अधिक प्रसन्नता मुझे यह सुनकर अधिक हो रही है कि उसे ऐसी कोई बीमारी नहीं है, वह बालिका स्वस्थ है। मित्रों, अगर मानवता को सही रूपाकार देना हो तो ऐसा सब कुछ आवश्यक है, वरना मनुष्य का हृदय मरुस्थल बनकर रह जाएगा।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था मन में हो सेवा भाव संवेदना, और इस वार्ता के लेखक थे कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता थी भवानी कौल। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप सभी को इन जानकारी से कुछ लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है कार्यक्रम पर्यावरण। तो आइए दोस्तों सुनते हैं हमारे कार्यक्रम पर्यावरण में, जिसका शीर्षक है मानव जीवन के लिए अभिशाप, बेकार प्लास्टिक। इस वार्ता के लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजेस।

पर्यावरण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता, मानव जीवन के लिए अभिशाप, बेकार प्लास्टिक। इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजिस। श्रोता साथियों, मानव द्वारा स्वयं की सुविधा के लिए किया गया प्लास्टिक का आविष्कार आज उसके जीवन के लिए अभिशाप भी बन गया है। आज पर्यावरण को सबसे अधिक दूषित करने वाला यदि कोई पदार्थ है तो वह बेकार प्लास्टिक ही है। एक जमाना था जब मानव जीवन में ग्लास, प्लेट, जूते, चप्पल जैसी वस्तुओं तक एक सीमित उपयोग ही था प्लास्टिक का, किंतु समय के साथ साथ भार में हल्का होने, मौसम से अप्रभावित रहने और टिकाऊ क्षमता के कारण आज प्लास्टिक मानव जीवन का एक मुख्य भाग बन गया है। लेकिन प्लास्टिक के साथ एक विडंबना भी जुड़ी हुई है। प्लास्टिक जब मानव के काम आ रहा होता है तो लगता है कि इससे अच्छा काम में आने वाला पदार्थ और कोई नहीं है, लेकिन जब यही पदार्थ मानव जीवन में अपने कार्य की उम्र पूरी कर लेता है तो फिर प्लास्टिक से बेकार पदार्थ और कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आज समय की मांग के अनुसार पॉलिथीन से लेकर बड़ी बड़ी टंकियों और आकाश में उड़ने वाले वायुयान तथा पानी में चलने वाले जहाज और सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों के निर्माण में भी प्लास्टिक का उपयोग आम बात हो गई है। आज मानव जीवन में प्लास्टिक की इतनी पैठ हो गई है कि कोई भी वैवाहिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो, बिना प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं के संपन्न ही नहीं होता है। अब मानव जीवन में प्लास्टिक का इतना अधिक दखल हो गया है कि प्लास्टिक के बिना आज मानव जीवन और उसकी सुविधाओं की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। श्रोता साथियों, यह बात इस उदाहरण से भी स्पष्ट हो जाती है कि पहले व्यक्ति जब कभी बाजार जाता था तो अपने साथ कपड़े का थैला या थैली जरूर लेकर जाया करता था, लेकिन आज का व्यक्ति ऑफिस से, पिकनिक से या कहीं से और कभी भी बाजार से सामान ले आता है, क्योंकि अब बाजार में पॉलिथीन की थैली में सामान देने का प्रचलन आम हो गया है। अब व्यक्ति को बाजार जाते समय न तो कपड़े की थैली लेकर जाने की जरूरत है और न ही रुपए लेकर जाने की। अब व्यक्ति थैली दुकानदार से ले लेता है और रुपए एटीएम से। आजकल के बड़े दुकानदारों ने भी प्लास्टिक की थैली पर अपनी दुकान का नाम छपवाकर प्रचार का नया तरीका निकाला है और प्लास्टिक के उपयोग को और भी बढ़ावा दिया है। व्यक्ति की प्लास्टिक के प्राय बढ़ती मानसिकता के कारण ही आज कई छोटी बड़ी कंपनियां न केवल आवश्यक घरेलू वस्तुओं को बल्कि कई खाद्य पदार्थों को भी वायुदाब के प्लास्टिक के पैकेट्स में बिकने के लिए प्रस्तुत करती हैं। प्लास्टिक निर्माताओं ने भी मांग और मांग की आपूर्ति को देखते हुए ही अपना माल बाजार में उतारा है। लोगों ने प्लास्टिक के इस माल को हाथों हाथ भी लिया है। प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माताओं ने जब देखा कि वन संपदा संरक्षण कानून लागू होने से वन में से लकड़ियों की प्राप्ति सहज और सुलभ नहीं रही है तो उन्होंने लकड़ी के विकल्प के रूप में बाजार में प्लास्टिक को उतार दिया। उन्होंने प्लास्टिक से उन सारी वस्तुओं का निर्माण शुरू कर दिया जो अब तक केवल लकड़ियों से ही बनाई जाती थी। इसके बाद लकड़ियों और बांस की अप्राप्ति की वजह से जब कागज के दाम आसमान छूने लगे तो इन्हीं प्लास्टिक निर्माताओं ने प्लास्टिक को भी कागज के विकल्प के रूप में लोगों के हाथ में थमा दिया। परिणाम स्वरूप आज बाजार में प्लास्टिक के विजिटिंग कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, कैलेंडर्स और फाइल्स आदि देखने को मिलती हैं। एक समय था जब किसी वैवाहिक कार्यक्रम में या अन्य किसी कार्यक्रम में टीन के पाइप पर प्लास्टिक के तार की बुनी हुई कुर्सियों का प्रचलन अधिक था।

किंतु वर्तमान में पूरी तरह से प्लास्टिक से बनी हुई कुर्सियों ने उक्त पुरानी कुर्सियों को प्रचलन से बाहर कर दिया है। यहाँ भी प्लास्टिक को उसकी मजबूती, टिकाऊ और मौसम से अप्रभावित उसके गुणों के कारण ही लोगों द्वारा अपनाया गया। ऐसा भी नहीं है कि प्लास्टिक की क्रांति केवल वयस्कों के जीवन में ही आई है। प्लास्टिक पदार्थों ने बच्चों के संसार में भी समान रूप से घुसपैठ की है। पूर्व की अपेक्षा आज बच्चों के खिलौने और उनकी अन्य सुविधाओं के साधन भी प्लास्टिक से बनाने का चलन जोरों पर है। वहाँ यह भी एक वास्तविकता ही है कि प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं पतरे की अपेक्षा बच्चों के लिए बेहद सुरक्षात्मक ही है। इस कारण बच्चों को चोट लगने और हानि पहुंचने के अवसर बहुत कम न के बराबर हो जाते हैं। प्लास्टिक को ढालकर मनचाहे आकार में बनाना भी प्लास्टिक का एक मुख्य गुण ही कहा जा सकता है। श्रोता साथियों, यदि हम चिकित्सा के क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग की बात करें तो वहां पर भी प्लास्टिक का बहुआयामी और बहु उपयोग किसी से छिपा नहीं है। यदि किसी भी अस्पताल, नर्सिंग होम्स अथवा क्लिनिक पर एक नजर डाली जाए तो बोतल, पीने की दवाएं, मलहम, सिरिंज से लेकर ड्रिप और ऑपरेशन से लेकर उपचार तक में हमें प्लास्टिक के सहज ही दर्शन हो जाते हैं। इसलिए निसंकोच रूप से यह कहा जा सकता है कि समाज का कोई भी वर्ग आज प्लास्टिक से अछूता नहीं है। यहाँ तक कि सेना भी आज प्लास्टिक के उपयोग से वंचित नहीं है। आज सेना में उसके साजो सामान के साथ साथ बंदूकों के हत्थे, जो कभी लकड़ी से बनाए जाते थे, आज प्लास्टिक से बनाए जाने लगे हैं। क्योंकि प्लास्टिक हर हाल में लकड़ी से हल्का ही होता है, इसलिए उसको लकड़ी और अन्य पदार्थों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाने लगी है। निसंकोच रूप से यह कहा जा सकता है कि आज समाज का कोई भी वर्ग प्लास्टिक से अछूता नहीं है। आज प्लास्टिक ने घर घर में प्रवेश कर लिया है। जहां उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग प्लास्टिक पर आधारित जीवन जी रहा है, वहीं समाज के सबसे निचले तबके, झोपड़पट्टी में भी प्लास्टिक को बहुतायत में उपयोग करते हुए देखा जा सकता है। जहां वे पीने और खर्च के पानी को प्लास्टिक के बर्तनों में रखते हैं, वहीं वे प्लास्टिक को बिछौने, दीवार और छत के रूप में भी उपयोग करते हैं। जमीन पर बैठने और सोने के लिए वे प्लास्टिक को सबसे अच्छा साधन मानते हैं। रही प्लास्टिक की छत की बात, तो ये गरीब तबका प्लास्टिक की छत के नीचे ही वर्षा ऋतु के पूरे 4 माह बिताकर गर्मी और ठंड में भी इसी प्लास्टिक का सहारा लेता है। प्लास्टिक निर्मित अपनी झोपड़ी में मौसम की सारी ऋतुएं बिताना उसे सहज लगता है, क्योंकि प्लास्टिक सस्ता, मजबूत और टिकाऊ होता है। उपयोग पश्चात यहाँ वहाँ फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियों को खाकर जाने अनजाने में पशु पक्षी भी असमय ही काल कलवित होते रहते हैं। पॉलिथीन और प्लास्टिक की प्रवृत्ति अस्थायी न होने के कारण ये मिट्टी में दबकर उसकी उर्वरता को भी नष्ट किए दे रहे हैं। यह प्लास्टिक का गुण है या अवगुण, वह मिट्टी में दबने के बाद भी नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार से प्लास्टिक मिट्टी में न रहकर केवल उसकी उर्वरता को ही नष्ट नहीं कर रहा है, बल्कि मिट्टी की जल संग्रहण क्षमता को भी नष्ट कर रहा है अथवा कम कर रहा है। क्योंकि मिट्टी में दबे प्लास्टिक के कारण ही धरती पर गिरा वर्षा जनित जल मिट्टी की अनंत तहों में नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वह संग्रहित नहीं हो पाता है, क्योंकि ऊपर पड़ा दबा प्लास्टिक उसे मिट्टी की सतह में जाने नहीं देता है। श्रोता साथियों, प्लास्टिक के इन तमाम अवगुणों के कारण अब व्यक्ति को प्लास्टिक और प्लास्टिक के अंधाधुंध उपयोग या प्रयोग के प्रति सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के कचरे की समस्या दिनों दिन एक गंभीर समस्या का रूप धारण करती जा रही है। क्योंकि प्लास्टिक न तो पड़े पड़े स्वयं ही नष्ट होता है और न ही जलाने पर पर्यावरण को नुकसान से बचा पाता है। श्रोता साथियों, यदि विशेष परिस्थितियों में प्लास्टिक उपयोग किया भी जाए तो प्रयोग के पश्चात प्लास्टिक के कचरे को सामान्य कचरे के साथ मिलाकर न रखें, बल्कि उसे एक अलग बास्केट या एक कोठी में रखें और प्लास्टिक बीनने वालों के हाथों में दे दें। इसलिए प्लास्टिक के उपयोग के प्रति अत्यंत सावधानी रखें, यह आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्यावरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था मानव जीवन के लिए अभिशाप, बेकार प्लास्टिक। इस वार्ता के लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे माइकल हॉजेस। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ग्लोरिया को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

0: रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि प्रियंका डामोर की ओर से नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचय करवाती हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे पवित्र सुसमाचार, भक्ति गीत एवं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार।
1: मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वो संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने मुझको ये कहते सुना, मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, क्योंकि पिता मुझसे महान है। मैंने पहले ही तुम लोगों को ये बताया, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूं।
0: साथियों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चुका है मधुर गीत का। तो आइए साथियों, अब सुनते हैं एक मधुर गीत। साथियों, इस मधुर गीत के बाद आप सुन सकेंगे आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।

साथियों, अभी आपने सुना यह मधुर गीत। साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। साथियों, इस समय आप रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। साथियों, अब समय हो चला है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम का। तो साथियों, आइए सुनते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। साथियों, इस कार्यक्रम के बाद आप सुन सकेंगे एक और मधुर गीत। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहें और सुनिए आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम युवा और विकास।

0: साथियों नमस्कार, युवा और विकास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो विषय है वो है युवा भारत। जी हाँ, आजकल यदि हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या फिर विज्ञापन जगत, हर जगह हमें एक ही सुर नहीं सुनाई देता, युवा शक्ति। हमें बार बार ये बताया जा रहा है, बार बार हर मीडिया की ओर से ये संदेश हम तक आ रहा है साथियों, कि हमारा भारत एक युवा देश है और आने वाले समय में हमारी कार्यशक्ति हो, हमारी ऊर्जा हो या फिर हमारे संसाधन हो, ये सारे के सारे युवा शक्ति के हाथ में रहेंगे और हम दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन साथियों, यदि हम आंकड़े देखें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे भारत की, हमारे देश की जो औसत उम्र है वो इस समय 25 वर्ष है। आप इसे किसी कल्पना के आधार पर कही हुई बात बिल्कुल नहीं समझे, लगभग ढाई दशक बाद यानी हम 2025 की बात करें तब हमारी औसत उम्र हो जाएगी 30 वर्ष। और साथियों, यदि हम हमारे पड़ोसी देश चीन की बात करें तो चीन में अभी औसत उम्र 34 वर्ष है और आने वाले सालों में ये उम्र बढ़ती ही जाने वाली है। और इस दौरान हमारे आसपास के जितने देश हैं उन सभी में औसत उम्र धीरे धीरे बढ़ती ही जाने वाली है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हमारा देश युवा है। तो साथियों, बहुत सारे दूसरे भी आंकड़े हैं, उनकी बात करना इस समय बहुत जरूरी नहीं है। और इन आंकड़ों से होना क्या है, मुझे एक चीज बताइए कि हमारा देश यदि युवा है तो क्या वास्तव में हम एक युवा देश की भांति यहां के नागरिक को पा रहे हैं? क्या हम वास्तव में इस तरीके से जी रहे हैं जैसे एक युवा देश को जीना चाहिए? बहुत सारे सवाल इस समय हमारे मन में हैं और बहुत सारी दुविधाएं हमारे युवा के सामने हैं। हम ये देख सकते हैं साथियों कि कितनी सारी दुविधाओं के बीच में जीता हुआ युवा आज प्रगति भी कर रहा है। यही युवा अपने परिवार के साथ में संघर्ष भी कर रहा है, क्योंकि सामाजिक मान्यताएं इतनी ज्यादा बदल रही हैं कि जिसके चलते एक सामान्य जीवन जीना प्रत्येक व्यक्ति के लिए मुश्किल हो रहा है। साथियों, परिवार का क्षेत्र हो, आपके कार्य का क्षेत्र हो या फिर देश को लेकर आगे बढ़ने जितना बड़ा सवाल हो, यदि हमारा देश युवा है, यदि हमारा परिवार युवा है, यदि हमारी सोच युवा है, तो कहां है वो ऊर्जा जो एक युवा भारत में, एक युवा राष्ट्र में होनी चाहिए? आज की तारीख में यदि हम प्रौढ़ों की बात करें या वृद्धों की बात करें तो प्रत्येक का मत युवाओं को लेकर हमेशा नकारात्मक ही है। युवाओं की बात किसी भी प्रौढ़ से कीजिए तब उन्हें समझता ही क्या है, वृद्धों से कीजिए तब उनके मुंह से अपशब्द ही निकलते हैं। साथियों, यदि आप युवा शक्ति के हाथ में किसी प्रकार के अधिकार ही नहीं देंगे, उन्हें ये ज्ञान ही नहीं देंगे कि आपको ही आने वाले समय में देश की बागडोर संभालनी है, आपको जिम्मेदारी उठानी है और हमारा आप पर विश्वास है, इसके बिना हमारे युवा को ऊर्जा कैसे मिलेगी? चलिए मान लेते हैं कि हमारी युवा शक्ति धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या ये समय धीरे धीरे आगे बढ़ने का है? पारिवारिक क्षेत्र में यदि हम बात करें तो युवाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि वे अध्ययन के लिए घर से बाहर जाना चाहें तो उन्हें मनाही, यदि वे किसी दूसरे क्षेत्र को चुनकर अपना भविष्य बनाना चाहें तब उसमें मनाही, विवाह अपनी मर्जी से करना चाहे वहां पर भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। तो साथियों, ऐसे में जब हमारे युवा को एक सामान्य जीवन ही नहीं मिल पा रहा है, तब युवा भारत होने के बावजूद क्या हम इसी गति से आगे बढ़ पाएंगे जैसे कि कोई एक युवा देश आगे बढ़ता है? सुविधाएं चाहिए हमारे युवाओं को और वो सुविधा आप दे सकते हैं अपने विश्वास को देकर। साथियों, हम सभी अपने जीवन में जब प्रौढ़ हो जाते हैं और युवावस्था को मुड़कर देखते हैं तब ऐसा लगता है हमने बहुत सारी गलतियां की। हमें यह भी लगता है कि हमने कुछ गलत निर्णय लिए। हमें यह भी लगता है कि यदि हम कुछ सही निर्णय ले लेते तो हमारा अभी का जो जीवन है वो और बेहतर हो जाता। और ये जो हमारा अनुभव होता है अपने जीवन को लेकर, ये अनुभव हम हमारे युवा साथियों के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस परिस्थिति में हमारी युवावस्था गुजरी है और जिस परिस्थिति में हमारा आज का युवा जी रहा है, दोनों परिस्थितियां बहुत अलग हैं। अब आप ही सोचिए कि आप यदि प्रौढ़ हैं और आप जब युवा थे उस समय यदि आपके माता पिता किसी चीज को लेकर आपके साथ सलाह मशविरा करते या फिर आपको सलाह देने लगते तो क्या आपको वो चीज अच्छी लगती? बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। साथियों, ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपनी राह खुद बनाना चाहता है, वो खुद गिरकर ही अनुभव लेना चाहता है। सामने वाले को गिरता देखकर उसे वो चोट उतनी गहराई से महसूस नहीं होगी, आगे चलकर उसके निर्णय गलत होंगे। मेरा ये कहना नहीं है कि आप अपने युवा होते बच्चों को या फिर अपने परिवार के युवाओं को कुछ ना सिखाएं, लेकिन सबसे पहली बात यह है साथियों कि अनुभव हमें जो सिखाता है उससे अच्छी कोई पाठशाला नहीं होती। हमें ये देखना होगा कि हम अपने युवा साथियों की जो शक्तियां हैं उनको पहचानने में उनकी मदद करें। आज का युवा दुविधा में है। आज का युवा अपने प्रत्येक प्रश्न को लेकर आपके सामने खड़ा है, लेकिन आप उत्तर नहीं जानते। यदि आप उत्तर नहीं जानते तो आप उनके प्रश्नों को टालते हैं। ऐसे में हमारे युवा की दुविधा, उसका भ्रम और ज्यादा बढ़ता है। तो साथियों, हमारे पास बहुत बड़ी संपदा है। कहा जाता है कि मानव संसाधन पूरे विश्व में सबसे बड़ा संसाधन है, और ऐसे में इस समय हमारा भारत देश सबसे ज्यादा संपन्न है। तो चलिए इस संपन्नता का लाभ उठाया जाए। हमारे आसपास की जितनी भी युवा शक्ति है उनको हमें संगठित करके ये बताना है कि उनकी शक्तियां क्या है। दरअसल होता यह है, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक विद्यालय में या फिर महाविद्यालय में युवाओं की कमियां निकालने की प्रतिस्पर्धा चलती है। युवाओं ने क्या गलत किया, उन्होंने किस तरीके से कोई चीज गलत बोली, उन्होंने कौन से निर्णय गलत लिए, या फिर उन्होंने किस तरीके से गलत बातें कही, या फिर उनका आचरण किस तरीके से गलत है, उनकी बोलचाल गलत है, उनका व्यवहार गलत है, सब कुछ गलत है। लेकिन ऐसा करने से क्या युवाओं पर सकारात्मक असर पड़ेगा? आप स्वयं ही देख लीजिए, यदि आप बच्चों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उन्हें अपनी गलतियां ही दिखाते हैं, तो बच्चों को न सिर्फ खुद की गलतियां दिखती है, बच्चे दूसरों में भी सिर्फ गलतियां ही ढूंढना सीखते हैं। साथियों, ये गलती हम सभी कर रहे हैं। मान लिया हमारा भारत युवा है, लेकिन हमारे युवा को हम क्या पोषण दे रहे हैं? हमारे युवा को आज चाहिए सकारात्मकता का पोषण। आप उसे ये मत बताइए कि तुम्हारा आचरण गलत है, आप उसे ये बताइए कि तुम्हारा आचरण यदि इस प्रकार का हो तो तुम और ज्यादा प्रगति कर सकते हो। साथियों, ऊर्जा आपको हमेशा किसी स्थान से ऊपर ले जाती है, लेकिन यही यदि नकारात्मक ऊर्जा हो तब आपको नीचे ही ले जाएगी। हम सभी मान लिया कि अपने अनुभव के चलते युवाओं को कम से कम तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन ये मुद्दा जो आजकल प्रत्येक स्थान पर हमें देखने को मिलता है कि युवा बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं, उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। लेकिन क्या आपने उन्हें अपनी जान की परवाह करना सिखाया था? बिल्कुल नहीं। क्या आपने उन्हें अपने सकारात्मक पक्ष को देखकर, उसे सराहकर, उसे इतना ऊपर उठाना बताया था जिसके चलते वो अपने आप को एक आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में स्थापित कर पाता? बिल्कुल नहीं। आपने हमेशा से उन्हें ये कहा है कि तुम ऐसा नहीं करो, बहुत तेज बाइक नहीं चलाओ नहीं तो गिर जाओगे। आप उन्हें ये बताइए ना कि आप बहुत अच्छे से ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। साथियों, जीवन में एक सही नजरिया होना एक युवा को सही दिशा देता है, और ऐसे में आज हमारे भारत देश को जरूरत है एक सही नजरिए की। हमारे आसपास के उदाहरण यदि हम देखें, प्रत्येक व्यक्ति ये बात करता है कि युवाओं पर बहुत ज्यादा दबाव है, लेकिन कोई भी ये बात नहीं करता कि चलिए अब हम युवाओं पर से दबाव हटाने के लिए हम कुछ कोशिश करें। क्या आपने कभी मदद का हाथ बढ़ाया है अपने किशोर होते बच्चे की ओर? क्या उसे ये पूछा है कि उसे क्या अच्छा लगता है? क्या उसे कभी जीवन में आने वाले क्षणों को लेकर या उसके लक्ष्यों को लेकर कभी बातें की हैं? नहीं। आपने हमेशा से यही देखा होगा कि वो किस समय घर आ रहा है, वो कैसे कपड़े पहन रहा है, वो किन दोस्तों के बीच घूम रहा है। क्या आपने स्वयं कभी उसके लिए एक अच्छा दोस्त बनने की पहल की? एक सही अभिभावक बनने के लिए ये कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा है साथियों यहाँ पर, लेकिन हाँ, यदि हमारे युवा साथियों के माता पिता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं, युवाओं के मन में सिर्फ आक्रोश नहीं है, युवाओं के मन में एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा को सही दिशा चाहिए, और वो दिशा यदि नकारात्मक रूप में मिलती है तब फूटता है उनका आक्रोश, क्योंकि वो सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें आपकी ओर से एक सही मार्गदर्शन चाहिए कि वो किस क्षेत्र में आगे बढ़े। साथियों, भले ही आपके आसपास आपके घर में कोई युवा ना हो लेकिन आपके कार्यक्षेत्र में, आपके रोजाना के जीवन में यदि युवा साथी आपसे जुड़ रहे हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि आप सकारात्मकता का बीज उनमें बोएं, क्योंकि इस समय हमारे पूरे देश को सकारात्मकता की जरूरत है, क्योंकि हमारा देश युवा है। आने वाले समय में जब ढेर सारी तकनीकी शक्तियां इस पूरे विश्व को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग देने वाली हैं, ऐसे में ये युवा शक्ति ही आपको आगे लेकर जाएगी। अब आप खुद ही सोचिए, तकनीकी दृष्टि से हमारा जीवन कितना समृद्ध हो गया है और इस सभी के पीछे कोई न कोई युवा शक्ति ही तो काम कर रही है। यदि हम एक अध्ययन की बात करें साथियों, तो हमारे सामने जो भी महान चित्रकार है, उस महान चित्रकार ने 30 से 35 की उम्र में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ काम कर लिया था। हमारे बीच जितने भी महान लेखक हैं, उन्होंने 40 वर्ष के अंदर की उम्र में अपनी सबसे महत्वपूर्ण ऐसी साहित्यिक कृति जिसके लिए उन्हें जाना जाता है, उसका निर्माण कर लिया था। यदि हम कलाकारों की बात करें, हम खिलाड़ियों की बात करें, हम फिल्म के नायक नायिकाओं की बात करें, तो मुझे बताइए कोई नाम जिसने 40 वर्ष के बाद की उम्र में अपने जीवन को शुरू किया हो। साथियों, बहुत सारे अपवाद हमें जरूर मिल जाएंगे लेकिन जो प्राकृतिक नियम है उससे परे हम नहीं जा सकते। जीवन के सर्वश्रेष्ठ काम को करने के लिए जो समय है वही स्वर्णिम समय इस समय हमारे देश को मिला हुआ है। हमें तो ये सोचना चाहिए कि ये हमारे जीवन का सर्वाधिक स्वर्णिम समय है, हमारे देश के लिए सबसे अच्छा काल है। और ऐसे में यदि हम नकारात्मकता का ही पोषण करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए, आपके भविष्य में क्या रखा हुआ आने वाला है। साथियों, सिर्फ हमारे युवाओं को सुविधा दे देने से, उन्हें मार्गदर्शन दे देने से, उनकी तारीफ कर देने से या फिर उन्हें एक सही ऊर्जा दे देने से यदि हम सबका जीवन संवर सकता है तो ये काम करने में हिचक कैसी। हमारे युवा संवाद चाहते हैं, वो आपसे कटना नहीं चाहते। आप स्वयं सोचिए ना कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके चलते एक उम्र हो जाने के बाद में बच्चे अपने अभिभावकों से दूर होने लगते हैं। दरअसल 14-15 की उम्र में आपका बच्चा जब स्वयं स्वतंत्र हो जाता है, ऐसे में आपको एक प्रकार का भय सताता है कि कहीं ये बच्चा आपके नियंत्रण से बाहर तो नहीं चला जाएगा। अब तक अपने प्रत्येक निर्णय के लिए आपके ऊपर निर्भर रहने वाला आपका बच्चा यदि स्वयं के निर्णय स्वयं ले लेता है तब उसे चाहिए होती है आपकी ओर से शाबाशी, लेकिन उसे क्या मिलता है? उसे मिलती है एक फटकार, उसे मिलती है एक डांट, उसे ये समझाया जाता है कि उसे अभी समझता ही क्या है, उसने आपसे नहीं पूछा, इसके कारण आप दुखी हैं। इस प्रकार का व्यवहार आप अपने बच्चे को दिखाते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। लेकिन साथियों, आप स्वयं सोचिए, वो बच्चा अपने जीवन में पहली बार स्वतंत्र हुआ, उसने अपने जीवन का पहला निर्णय स्वतंत्र होकर अपने एक सही व्यक्तित्व के साथ में लिया है। वो अब युवा हो रहा है और आगे चलकर वो अपने आप को एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में देख रहा है। वो आज खुश है, वो आज सफल है और अपनी सफलता को आपके साथ बांटने के लिए, इस निर्णय लेने की बात को बांटने के लिए आपके समक्ष आया है। और आप क्या कर रहे हैं? आप इस समय आपको देख ही रहे हैं। आप इस समय अपने बच्चे को नहीं, आप सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं। आपका अहंकार, आपका स्वयं का व्यक्तित्व, उस बच्चे की निर्भरता, ये सारी चीजें खंडित हो चुकी हैं। तो साथियों, यदि हमारे देश का युवा आत्मनिर्भर होना चाहता है तो उसे ऊर्जा दीजिए। यदि हमारे देश का युवा सकारात्मक होना चाहता है तो उसे सही विचार दीजिए, उसे मार्गदर्शन दीजिए, उसे आगे बढ़ने दीजिए। बार बार उसे ऐसी बेड़ियों में जकड़कर मत रखिए जिससे वो आप पर ही निर्भर रहे। साथियों, यदि आपको पसंद है कि कोई आपके नियंत्रण में रहे तो क्या आप चाहेंगे कि आप पर कोई नियंत्रण करे? बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है और जब हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए इतना समय हो गया है और अब हमारे देश का युवा समय हमारे सामने है, तो हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि युवा शक्ति को अपने विश्वास का उपहार दे। इसी के चलते हमारे देश का स्वर्णिम भविष्य आगे आ सकता है।
1: साथियों, अभी आपने सुना आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का पुनः शुक्रिया। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं एक सुमधुर गीत।

साथियों, अभी आपने सुना आज का एक और सुमधुर गीत। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सेवा सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। साथियों, हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए। हमारा फेसबुक आईडी है rva hindi। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है rva hindi। आप ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @rva hindi। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है rva hindi। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऐप पर दैनिक खबरें, विभिन्न लेख, रचनाएं, कविताएं एवं हमारे विभिन्न प्रकार के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल, सुझाव, लेख या रचनाएं हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7974314201। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है satishwar0@gmail.com। आप पत्र के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है आरवी ऑफिस 10, सत प्रकाशन संचार केंद्र, खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो आरवीए मोबाइल ऐप में जाकर आर्काइव में यह सुन सकते हैं। साथियों, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। साथियों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हमसे जुड़े रहें और सुनते रहिए आरवीए हिंदी। मेरा यानी कि प्रियंका डामोर का आप सभी का हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद।

0: रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि प्रियंका डामोर की ओर से नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचय करवाती हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे पवित्र सुसमाचार, भक्ति गीत एवं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार।
1: मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वो संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरु मत बनो। तुमने मुझको ये कहते सुना, मैं जा रहा हूं और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, क्योंकि पिता मुझसे महान है। मैंने पहले ही तुम लोगों को ये बताया, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूं।
0: साथियों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चुका है मधुर गीत का। तो आइए साथियों, अब सुनते हैं एक मधुर गीत। साथियों, इस मधुर गीत के बाद आप सुन सकेंगे आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।

साथियों, अभी आपने सुना यह मधुर गीत। साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। साथियों, इस समय आप रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। साथियों, अब समय हो चला है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम का। तो साथियों, आइए सुनते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। साथियों, इस कार्यक्रम के बाद आप सुन सकेंगे एक और मधुर गीत। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहें और सुनिए आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम युवा और विकास।

साथियों नमस्कार, युवा और विकास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज का हमारा जो विषय है वो है युवा भारत। जी हाँ, आज के लिए हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या फिर विज्ञापन जगत, हर जगह हमें एक ही सुर नहीं सुनाई देता, युवा शक्ति। हमें बार बार ये बताया जा रहा है, बार बार हर मीडिया की ओर से ये संदेश हम तक आ रहा है साथियों कि हमारा भारत एक युवा देश है और आने वाले समय में हमारी कार्य शक्ति हो, हमारी ऊर्जा हो या फिर हमारे संसाधन हो, ये सारे के सारे युवा शक्ति के हाथ में रहेंगे और हम दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन साथियों यदि हम आंकड़े देखें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे भारत की, हमारे देश की जो औसत उम्र है वो इस समय 25 वर्ष है। आप इसे किसी कल्पना के आधार पर कही हुई बात बिल्कुल नहीं समझे। लगभग ढाई दशक बाद यानी हम 2025 की बात करें तब हमारी औसत उम्र हो जाएगी 30 वर्ष। और साथियों यदि हम हमारे पड़ोसी देश चीन की बात करें तो चीन में अभी औसत उम्र 34 वर्ष है और आने वाले सालों में ये उम्र बढ़ती ही जाने वाली है। और इस दौरान हमारे आसपास के जितने देश हैं उन सभी में औसत उम्र धीरे धीरे बढ़ती ही जाने वाली है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हमारा देश युवा है। तो साथियों बहुत सारे दूसरे भी आंकड़े हैं, उनकी बात करना इस समय बहुत जरूरी नहीं है। और इन आंकड़ों से होना क्या है, मुझे एक चीज बताइए कि हमारा देश यदि युवा है तो क्या वास्तव में हम एक युवा देश की भांति यहां के नागरिक को पा रहे हैं? क्या हम वास्तव में इस तरीके से जी रहे हैं जैसे एक युवा देश को जीना चाहिए? बहुत सारे सवाल इस समय हमारे मन में हैं और बहुत सारी दुविधाएं हमारे युवा के सामने हैं। हम ये देख सकते हैं साथियों कि कितनी सारी दुविधाओं के बीच में जीता हुआ युवा आज प्रगति भी कर रहा है। यही युवा अपने परिवार के साथ में संघर्ष भी कर रहा है क्योंकि सामाजिक मान्यताएं इतनी ज्यादा बदल रही हैं कि जिसके चलते एक सामान्य जीवन जीना प्रत्येक व्यक्ति के लिए मुश्किल हो रहा है। साथियों परिवार का क्षेत्र हो, आपके कार्य का क्षेत्र हो या फिर देश को लेकर आगे बढ़ने जितना बड़ा सवाल हो, यदि हमारा देश युवा है, यदि हमारा परिवार युवा है, यदि हमारी सोच युवा है तो कहां है वो ऊर्जा जो एक युवा भारत में, एक युवा राष्ट्र में होनी चाहिए? आज की तारीख में यदि हम प्रौढ़ों की बात करें या वृद्धों की बात करें तो प्रत्येक का मत युवाओं को लेकर हमेशा नकारात्मक ही है। युवाओं की बात किसी भी प्रौढ़ से कीजिए तब उन्हें समझता ही क्या है, वृद्धों से कीजिए तब उनके मुंह से अपशब्द ही निकलते हैं। साथियों यदि आप युवा शक्ति के हाथ में किसी प्रकार के अधिकार ही नहीं देंगे, उन्हें ये ज्ञान ही नहीं देंगे कि आपको ही आने वाले समय में देश की बागडोर संभालनी है, आपको जिम्मेदारी उठानी है और हमारा आप पर विश्वास है, इसके बिना हमारे युवा को ऊर्जा कैसे मिलेगी? चलिए मान लेते हैं कि हमारी युवा शक्ति धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या ये समय धीरे धीरे आगे बढ़ने का है? पारिवारिक क्षेत्र में यदि हम बात करें तो युवाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि वे अध्ययन के लिए घर से बाहर जाना चाहे तो उन्हें मनाही, यदि वे किसी दूसरे क्षेत्र को चुनकर अपना भविष्य बनाना चाहे तब उसमें मनाही, विवाह अपनी मर्जी से करना चाहे वहां पर भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। तो साथियों ऐसे में जब हमारे युवा को एक सामान्य जीवन ही नहीं मिल पा रहा है तब युवा भारत होने के बावजूद क्या हम इसी गति से आगे बढ़ पाएंगे जैसे कि कोई एक युवा देश आगे बढ़ता है? सुविधाएं चाहिए हमारे युवाओं को और वो सुविधा आप दे सकते हैं अपने विश्वास को देकर। साथियों हम सभी अपने जीवन में जब प्रौढ़ हो जाते हैं और युवावस्था को मुड़कर देखते हैं तब ऐसा लगता है हमने बहुत सारी गलतियां की। हमें यह भी लगता है कि हमने कुछ गलत निर्णय लिए। हमें यह भी लगता है कि यदि हम कुछ सही निर्णय ले लेते तो हमारा अभी का जो जीवन है वो और बेहतर हो जाता। और ये जो हमारा अनुभव होता है अपने जीवन को लेकर, ये अनुभव हम हमारे युवा साथियों के साथ बांटना चाहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस परिस्थिति में हमारी युवावस्था गुजरी है और जिस परिस्थिति में हमारा आज का युवा जी रहा है, दोनों परिस्थितियां बहुत अलग हैं।
अब आप ही सोचिए कि आप यदि प्रौढ़ हैं और आप जब युवा थे उस समय यदि आपके माता पिता किसी चीज को लेकर आपके साथ सलाह मशविरा करते या फिर आपको सलाह देने लगते तो क्या आपको वो चीज अच्छी लगती?

हैं उनको पहचानने में उनकी मदद करें। आज का युवा दुविधा में है। आज का युवा अपने प्रत्येक प्रश्न को लेकर आपके सामने खड़ा है, लेकिन आप उत्तर नहीं जानते। यदि आप उत्तर नहीं जानते तो आप उनके प्रश्नों को टालते हैं। ऐसे में हमारे युवा की दुविधा, उसका भ्रम और ज्यादा बढ़ता है। तो साथियों, हमारे पास बहुत बड़ी संपदा है। कहा जाता है कि मानव संसाधन पूरे विश्व में सबसे बड़ा संसाधन है, और ऐसे में इस समय हमारा भारत देश सबसे ज्यादा संपन्न है। तो चलिए इस संपन्नता का लाभ उठाया जाए। हमारे आसपास की जितनी भी युवा शक्ति है, उनको हमें संगठित करके ये बताना है कि उनकी शक्तियां क्या है। दरअसल होता यह है, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक विद्यालय में या फिर महाविद्यालय में युवाओं की कमियां निकालने की प्रतिस्पर्धा चलती है। युवाओं ने क्या गलत किया, उन्होंने किस तरीके से कोई चीज गलत बोली, उन्होंने कौन से निर्णय गलत लिए, या फिर उन्होंने किस तरीके से गलत बातें कही, या फिर उनका आचरण किस तरीके से गलत है, उनकी बोलचाल गलत है, उनका व्यवहार गलत है, सब कुछ गलत है। लेकिन ऐसा करने से क्या युवाओं पर सकारात्मक असर पड़ेगा? आप स्वयं ही देख लीजिए। यदि आप बच्चों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उन्हें अपनी गलतियां ही दिखाते हैं, तो बच्चों को न सिर्फ खुद की गलतियां दिखती है, बच्चे दूसरों में भी सिर्फ गलतियां ही ढूंढना सीखते हैं। साथियों, ये गलती हम सभी कर रहे हैं। मान लिया हमारा भारत युवा है, लेकिन हमारे युवा को हम क्या पोषण दे रहे हैं? हमारे युवा को आज चाहिए सकारात्मकता का पोषण। आप उसे ये मत बताइए कि तुम्हारा आचरण गलत है। आप उसे ये बताइए कि तुम्हारा आचरण यदि इस प्रकार का हो तो तुम और ज्यादा प्रगति कर सकते हो। साथियों, ऊर्जा आपको हमेशा किसी स्थान से ऊपर ले जाती है, लेकिन यही यदि नकारात्मक ऊर्जा हो तब आपको नीचे ही ले जाएगी। हम सभी मान लिया कि अपने अनुभवों के चलते युवाओं को कम से कम तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन ये मुद्दा जो आजकल प्रत्येक स्थान पर हमें देखने को मिलता है कि युवा बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं, उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। लेकिन क्या आपने उन्हें अपनी जान की परवाह करना सिखाया था? बिल्कुल नहीं। क्या आपने उन्हें अपने सकारात्मक पक्ष को देखकर, उसे सराहकर, उसे इतना ऊपर उठाना बताया था जिसके चलते वो अपने आप को एक आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में स्थापित कर पाता? बिल्कुल नहीं। आपने हमेशा से उन्हें ये कहा है कि तुम ऐसा नहीं करो, बहुत तेज बाइक नहीं चलाओ नहीं तो गिर जाओगे। आप उन्हें ये बताइए ना कि आप बहुत अच्छे से ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। साथियों, जीवन में एक सही नजरिया होना एक युवा को सही दिशा देता है, और ऐसे में आज हमारे भारत देश को जरूरत है एक सही नजरिए की। हमारे आसपास के उदाहरण यदि हम देखें, प्रत्येक व्यक्ति ये बात करता है कि युवाओं पर बहुत ज्यादा दबाव है, लेकिन कोई भी ये बात नहीं करता कि चलिए अब हम युवाओं पर से दबाव हटाने के लिए हम कुछ कोशिश करें। क्या आपने कभी मदद का हाथ बढ़ाया है अपने किशोर होते बच्चे की ओर? क्या उसे ये पूछा है कि उसे क्या अच्छा लगता है? क्या उसे कभी जीवन में आने वाले क्षणों को लेकर या उसके लक्ष्यों को लेकर कभी बातें की हैं? नहीं। आपने हमेशा से यही देखा होगा कि वो किस समय घर आ रहा है, वो कैसे कपड़े पहन रहा है, वो किन दोस्तों के बीच घूम रहा है। क्या आपने स्वयं कभी उसके लिए एक अच्छा दोस्त बनने की पहल की? एक सही अभिभावक बनने के लिए ये कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा है साथियों यहाँ पर, लेकिन हाँ, यदि हमारे युवा साथियों के माता पिता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं, युवाओं के मन में सिर्फ आक्रोश नहीं है, युवाओं के मन में एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा को सही दिशा चाहिए, और वो दिशा यदि नकारात्मक रूप में मिलती है तब फूटता है उनका आक्रोश, क्योंकि वो सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें आपकी ओर से एक सही मार्गदर्शन चाहिए कि वो किस क्षेत्र में आगे बढ़े। साथियों, भले ही आपके आसपास आपके घर में कोई युवा ना हो, लेकिन आपके कार्यक्षेत्र में, आपके रोजाना के जीवन में यदि युवा साथी आपसे जुड़ रहे हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि आप सकारात्मकता का बीज उनमें बोएं, क्योंकि इस समय हमारे पूरे देश को सकारात्मकता की जरूरत है, क्योंकि हमारा देश युवा है। आने वाले समय में जब ढेर सारी तकनीकी शक्तियां इस पूरे विश्व को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग देने वाली हैं, ऐसे में ये युवा शक्ति ही आपको आगे लेकर जाएगी। अब आप खुद ही सोचिए, तकनीकी दृष्टि से हमारा जीवन कितना समृद्ध हो गया है, और इस सभी के पीछे कोई न

0: वो युवा शक्ति ही तो काम कर रही है। यदि हम एक अध्ययन की बात करें साथियों, तो हमारे सामने जो भी महान चित्रकार है, उस महान चित्रकार ने 30 से 35 की उम्र में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ काम कर लिया था। हमारे बीच जितने भी महान लेखक हैं, उन्होंने 40 वर्ष के अंदर की उम्र में अपनी सबसे महत्वपूर्ण ऐसी साहित्यिक कृति जिसके लिए उन्हें जाना जाता है, उसका निर्माण कर लिया था। यदि हम कलाकारों की बात करें, हम खिलाड़ियों की बात करें, हम फिल्म के नायक नायिकाओं की बात करें, तो मुझे बताइए कोई नाम जिसने 40 वर्ष के बाद की उम्र में अपने जीवन को शुरू किया हो। साथियों, बहुत सारे अपवाद हमें जरूर मिल जाएंगे, लेकिन जो प्राकृतिक नियम है उससे परे हम नहीं जा सकते। जीवन के सर्वश्रेष्ठ काम को करने के लिए जो समय है, वही स्वर्णिम समय इस समय हमारे देश को मिला हुआ है। हमें तो ये सोचना चाहिए कि ये हमारे जीवन का सर्वाधिक स्वर्णिम समय है, हमारे देश के लिए सबसे अच्छा काल है। और ऐसे में यदि हम नकारात्मकता का ही पोषण करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए, आपके भविष्य में क्या रखा हुआ आने वाला है। साथियों, सिर्फ हमारे युवाओं को सुविधा दे देने से, उन्हें मार्गदर्शन दे देने से, उनकी तारीफ कर देने से, या फिर उन्हें एक सही ऊर्जा दे देने से यदि हम सबका जीवन संवर सकता है, तो ये काम करने में हिचक कैसी। हमारे युवा संवाद चाहते हैं, वो आपसे कटना नहीं चाहते। आप स्वयं सोचिए ना कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके चलते एक उम्र हो जाने के बाद में बच्चे अपने अभिभावकों से दूर होने लगते हैं। दरअसल 14-15 की उम्र में आपका बच्चा जब स्वयं स्वतंत्र हो जाता है, ऐसे में आपको एक प्रकार का भय सताता है कि कहीं ये बच्चा आपके नियंत्रण से बाहर तो नहीं चला जाएगा। अब तक अपने प्रत्येक निर्णय के लिए आपके ऊपर निर्भर रहने वाला आपका बच्चा यदि स्वयं के निर्णय स्वयं ले लेता है, तब उसे चाहिए होती है आपकी ओर से शाबाशी। लेकिन उसे क्या मिलता है? उसे मिलती है एक फटकार, उसे मिलती है एक डांट। उसे ये समझाया जाता है कि उसे अभी समझता ही क्या है, उसने आपसे नहीं पूछा, इसके कारण आप दुखी हैं। इस प्रकार का व्यवहार आप अपने बच्चे को दिखाते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। लेकिन साथियों, आप स्वयं सोचिए, वो बच्चा अपने जीवन में पहली बार स्वतंत्र हुआ, उसने अपने जीवन का पहला निर्णय स्वतंत्र होकर अपने एक सही व्यक्तित्व के साथ में लिया है। वो अब युवा हो रहा है और आगे चलकर वो अपने आप को एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में देख रहा है। वो आज खुश है, वो आज सफल है, और अपनी सफलता को आपके साथ बांटने के लिए, इस निर्णय लेने की बात को बांटने के लिए आपके समक्ष आया है। और आप क्या कर रहे हैं? आप इस समय आपको देख ही रहे हैं। आप इस समय अपने बच्चे को नहीं, आप सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं। आपका अहंकार, आपका स्वयं का व्यक्तित्व, उस बच्चे की निर्भरता, ये सारी चीजें खंडित हो चुकी हैं। तो साथियों, यदि हमारे देश का युवा आत्मनिर्भर होना चाहता है, तो उसे ऊर्जा दीजिए। यदि हमारे देश का युवा सकारात्मक होना चाहता है, तो उसे सही विचार दीजिए, उसे मार्गदर्शन दीजिए, उसे आगे बढ़ने दीजिए। बार बार उसे ऐसी बेड़ियों में जकड़कर मत रखिए जिससे वो आप पर ही निर्भर रहे। साथियों, यदि आपको पसंद है कि कोई आपके नियंत्रण में रहे, तो क्या आप चाहेंगे कि आप पर कोई नियंत्रण करे? बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है, और जब हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए इतना समय हो गया है, और अब हमारे देश का युवा समय हमारे सामने है, तो हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि युवा शक्ति को अपने विश्वास का उपहार दे। इसी के चलते हमारे देश का स्वर्णिम भविष्य आगे आ सकता है।
1: साथियों, अभी आपने सुना आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का पुनः शुक्रिया। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं एक सुमधुर गीत।

साथियों, अभी आपने सुना आज का एक और सुमधुर गीत। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सेवा सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। साथियों, हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए। हमारा फेसबुक आईडी है rva hindi। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है rva hindi। आप ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @rva hindi। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है rva hindi। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऐप पर दैनिक खबरें, विभिन्न लेख, रचनाएं, कविताएं एवं हमारे विभिन्न प्रकार के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल, सुझाव, लेख या रचनाएं हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7974314201। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है satishwar0@gmail.com। आप पत्र के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है आरवी ऑफिस 10, सत प्रकाशन संचार केंद्र, खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो आरवीए मोबाइल ऐप में जाकर आर्काइव में यह सुन सकते हैं। साथियों, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। साथियों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते हैं। फिर मिलेंगे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हमसे जुड़े रहें और सुनते रहिए आरवीए हिंदी। मेरा यानी कि प्रियंका डामोर का आप सभी

तहे दिल से धन्यवाद ग्लोरिया जी और सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की सभा शुरू करने से पहले मैं एक कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। बढ़ता चल तू ए मुसाफिर, मंजिल तेरे निकट होगी। हौसला रख दिल में अपने, ख्वाहिशें तेरी पूरी होगी। संकल्प ले यदि मन में अपने, उत्साह कभी न कम होंगे। बड़े थे, बड़े हैं और बढ़ते रहेंगे, हर बेड़िया को तोड़ते रहेंगे। अगर दूर दिखती हो तेरी मंजिल, सब्र कर तू कभी गम न कर। झोपड़ी से महल यदि है तुझको बनाना, तो कोशिश को अपने कभी कम न कर। बड़ा चल तू हर क्षण बड़ा चल, तेरी मंजिल मिलेगी कभी न कभी। विश्वास रख तू है खुदा पर अपने, ख्वाहिशें तेरी पूरी होगी। बढ़ता चल तू है मुसाफिर, मंजिल तेरे निकट होगी। यह कविता हमें मध्य प्रदेश के देवास जिले से डेजमंड रॉबर्ट ने भेजी है। इस कविता के लिए डेजमंड जी, आरवीए की टीम आपका दिल से आभार प्रकट करती है। मित्रों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुदेव कुटुम्बकम और अंत में नाटक। तो आइए साथियों, हम भी आलस न करते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो पहला कार्यक्रम है वह है कृषि जगत से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मुखिया जी, गन्ने की खेती करने वाले किसान आजकल काफी निराश दिख रहे हैं। लगता है कि प्रकृति या मौसम ने उनकी खेती को प्रभावित किया है।
1: जैसा आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि राज्य के गन्ना उत्पादक किसान प्रकृति की मार से तो परेशान हैं ही, और रही सही कसर खाद की किल्लत ने पूरी कर दी है। लिहाजा गन्ने के साथ साथ चीनी के उत्पादन में भी कमी आने की संभावना बनने लगी है। दो चीनी मिलों के क्षेत्र के किसान प्रकृति की मार झेल रहे हैं, तो चार क्षेत्र में यूरिया की किल्लत बनी हुई है।
0: ऐसी स्थिति में सरकार आखिर क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठी है मुखिया जी?
1: हालांकि सरकार ने हर हाल में इस स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है।
0: लेकिन राज्य सरकार तो कुछ और ही दावा कर रही है कि किसानों को हर हाल में सुविधाएं प्रदान की जा रही है ताकि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
1: जहां तक सरकार की बात है तो राज्य सरकार ने इस वर्ष गन्ना उत्पादन के लक्ष्य में 18% वृद्धि की है। लक्ष्य को पाने के लिए किसानों की सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं, लेकिन प्रकृति सबसे बड़ी बाधा बन गई है।
0: आखिर किन क्षेत्रों में मौसम की मार का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है मुखिया जी?
1: जहां तक मैं समझता हूं कि गोपालगंज का जो इलाका है, गोपालगंज, हसनपुर और रीगा चीनी मिल क्षेत्रों में मौसम की मार से फसल कम होने की आशंका है। इसी तरह रीगा, हरिहर नगर, लौरिया और हसनपुर चीनी मिल क्षेत्रों के किसान भी खास करके यूरिया खाद की किल्लत से परेशान हैं, यूरिया खाद की किल्लत से वो जूझ रहे हैं।
0: इस बात की पुष्टि कैसे हुई कि इस वर्ष मौसम के कारण उत्पादन में कमी होने की आशंका है?
1: राज्य मुख्यालय में हुई बैठक के दौरान चीनी मिलों के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार मौसम की मार फसल पर है, लेकिन किसानों ने वैकल्पिक व्यवस्था का लाभ लेकर नुकसान की भरपाई की है। उत्तरा नक्षत्र में हुई वर्षा ने भी बहुत हद तक परेशानी दूर की है, लेकिन अब भी फसल को पानी की जरूरत है।
0: क्या किसी भी क्षेत्र में गन्ने की फसल अच्छी होने की सूचना नहीं है मुखिया जी?
1: जहां तक अधिकारियों से मिली जानकारी की बात करते हैं तो उनकी जानकारी के अनुसार गोपालगंज मिल के क्षेत्र में फसल तो अच्छी है, लेकिन गंगा के कटाव के कारण वहां 15% कम रोपनी हो सकी है। इसी तरह अगर समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों में वर्षा कम होने के कारण फसल प्रभावित हुई है।
0: पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष गन्ने की सबसे ज्यादा रोपनी किन किन क्षेत्रों में की गई है और वहां की स्थिति कैसी है?
1: हालांकि नरकटियागंज और हरिनगर के क्षेत्र में रोपनी पिछले वर्ष के मुकाबले 10-15% अधिक रकबे में हुई है। इन क्षेत्रों में फसल की स्थिति जो है वो भी काफी अच्छी है।
0: अब तो ये साफ हो गया है कि राज्य सरकार किसी भी कीमत में गन्ने का अनुमानित उत्पादन लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकती। धान का उत्पादन लक्ष्य क्या प्राप्त किया जा सकता है मुखिया जी?
1: देखिए, इस बार परिस्थिति अनुकूल नहीं दिख रही है। धान की उपज में चीन का रिकॉर्ड तोड़ने वाला बिहार इस बार खुद का लक्ष्य नहीं हासिल कर पाने की स्थिति में आ गया है।
0: आखिर ऐसा क्यों मुखिया जी? क्या इसकी वजह भी मानसून और मौसम का मिजाज ही है?
1: बिल्कुल, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। लेट मानसून और अनुमान से कम बारिश होने के कारण धान की खेती काफी प्रभावित हुई है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार लेट मानसून और सही समय पर सिंचाई नहीं होने के कारण राज्य उत्पादन का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा।
0: क्या सिर्फ सिंचाई उचित समय पर नहीं होने पर और मानसून की बेरुखी के कारण ही ऐसा हुआ है या फिर कोई दूसरा कारण भी है?
1: दूसरा कारण यह है कि अगर धान की कटाई के समय मजदूर नहीं मिल पाए तो किसानों को फजीहत झेलनी पड़ सकती है।
0: राज्य सरकार का अनुमानित उत्पादन लक्ष्य क्या था और उसमें कितना कमी आने की संभावना है?
1: पटना जिले में 2.5 लाख टन धान की उपज का अनुमान है, जबकि लक्ष्य 3 लाख टन का रखा गया था और पटना जिले में 1,10,000 हेक्टेयर आच्छादन का लक्ष्य था। कृषि विभाग ने इस बार राज्य में 34.75 लाख हेक्टेयर आच्छादन का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक जो स्थिति साफ है वो है कि अब तक 31.50 लाख हेक्टेयर ही आच्छादन हो पाया है, जबकि उत्पादन का लक्ष्य 48.8 लाख टन निर्धारित किया गया था। 75 लाख टन उत्पादन कम होने का अनुमान है। जो सरकारी आंकड़े हैं उसी की मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ।
0: अनुमान से कम उत्पादन क्या सिर्फ वर्षा की कमी के कारण हुआ? मुखिया जी, मौसम विभाग का इस मामले में क्या कहना है?
1: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 20% से ज्यादा कम बारिश होने का असर है और इसका खास असर धान की उपज पर दिख रहा है। धान की उपज प्रभावित हुई है। वैसे अगर हमारे किसान भाई सावधान रहें तो थोड़ा बहुत उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और क्षतिपूर्ति की जा सकती है, चाहे सरकार के द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य है उसको छुआ जा सकता है लेकिन पहुंचा नहीं जा सकता है उसके आगे।
0: तो मुखिया जी, उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस तरह की सावधानी अपनाने की जरूरत पड़ती है?
1: धान की फसल अभी तो तैयार होने की स्थिति में है, तो धान की फसल जब तैयार होने लगती है तो किसानों को कीट पतंगों के प्रकोप से धान को बचाने में परेशानी होती है। उस समय फसल पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमारे किसान भाई ऐसा करते हैं तो उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। धान जब मिल्किंग स्टेज में हो, अगर उस समय कीट पतंग लग जाते हैं तो धान की फसल 10-20% बर्बाद हो जाती है।
0: तो उसे बचाव के लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं?
1: कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कीट पतंगों से बचाव के लिए किसानों को अहले सुबह जब धरती पर ओस रहती है उस समय फॉली डडाल पाउडर का डस्टिंग करना चाहिए ताकि ओस में धान के फसल से यह जो पाउडर है वो सट जाए। इससे धान की फसल में लगने वाले कीट पतंग जो हैं वो मर जाते हैं।
0: आशा है मुखिया जी आपके द्वारा बताए गए सुझाव हमारे किसान भाई अवश्य अपनाएंगे और अपनी उत्पादकता को बरकरार रखेंगे।
1: जी जी, तो अभी हम लोग चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
0: जी। धन्यवाद मुखिया जी।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, इस वार्ता में हमें काफी सारी महत्वपूर्ण और रोचक बातें बताई गई हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी किसान श्रोताओं को इन बातों से लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव एवं रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब हम अपने अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें कानून के बारे में बताएंगे। जी हाँ साथियों, मैं अपने अगले कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और रितेश जी, कानून सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी आपका भी धन्यवाद।
0: कपूर साहब, पिछले कार्यक्रम में हम यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे।
1: बिल्कुल।
0: कि आखिर कब तक इस गंभीर समस्या पर पूर्ण विराम लगेगा, कब तक इस समस्या से यहाँ की बच्चियों को मुक्त कराया जा सकेगा, कब तक इस समस्या का निजात हो पाएगा?
2: मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि मानसिक सोच के तहत इस तरह के घिनौने करतूत को अंजाम दिया जाता है, इस विषय पर जो विशेषज्ञ हैं, जो मनोचिकित्सक हैं, उनका क्या कहना है। उसके बाद हम लोग 2012 में हुई यौन हिंसा की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और इसके लिए किस तरह का कानून हमारे संविधान में मौजूद है, किस तरह की सजा का प्रावधान ऐसे अपराधियों के लिए है।
1: बहुत बढ़िया सवाल आपने रितेश जी किया है। देखिए, मैं आपको जो विशेष बातें हैं, मुख्य बातें, मैं उस पर आपको रोशनी देना चाहूंगा। दो तीन विशेषज्ञों की बात मैं यहां पर रखना चाहूंगा। कुरुक्षेत्र स्थित वुमेन्स रिसर्च सेंटर की निदेशक ऋचा तलवार का कहना है कि तकनीक ने युवाओं को ग्लैमर की चकाचौंध तो दिखा दी है, मगर हमारे सामाजिक परिवेश और शिक्षा पद्धति ने उनका मानसिक विकास नहीं किया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कपूर साहब।
1: जिसकी वजह से कई बार जब ड्रग, अल्कोहल और ग्लैमर के नशे में वो बलात्कार जैसे अपराध को रोमांच का हिस्सा समझ लेते हैं, वहीं स्वाति प्रसाद जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि ऐसे पुरुष जिनका सेक्स जीवन सामान्य न हो, आसानी से बच्चों या कम उम्र की लड़कियों के विरुद्ध यौन हिंसा करने लगते हैं। राजेश सागर, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्रिस्ट एम्स, उनका कहना है कि कई बार लोग अपनी शारीरिक जरूरत के लिए बलात्कार न करके महज इसलिए बलात्कार करते हैं क्योंकि उनकी नजर में ये खुद को शक्तिशाली या बड़ा साबित करने का माध्यम होता है।
0: इन विशेषज्ञों की बातों में दम है कपूर साहब
1: जी।
0: इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो शोध परक है। 2012 में जो बलात्कार की घटना हुई वो बड़ी चौंकाने वाली घटनाएं हैं
1: जी।
0: पूरी तरह से हिंसक और घृणित मानसिकता से प्रेरित प्रतीत होती है और ये सिर्फ किसी एक राज्य या फिर एक शहर की नहीं, पूरे देश के विभिन्न राज्यों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया, जो कि ये ऐसा कहा जा सकता है कि एक सभ्य समाज के लिए धब्बा है और एक सभ्य समाज को सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर किस तरह की मानसिकता में हमारे युवा या पुरुष लोग जी रहे हैं।
1: देखिए वीरेंद्र जी, मानव कुकृत्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बलात्कार की घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहूंगा। 5 फरवरी कोलकाता, जहां 37 साल की महिला के साथ बंदूक दिखाकर एक व्यक्ति और उसके साथियों ने बलात्कार किया, ये घटना कोलकाता के एक पब में हुई। 13 अप्रैल नई दिल्ली, एक 14 साल की लड़की के साथ उसके मालिक ने 2 साल तक लगातार बलात्कार किया। 14 जून पटना की एक स्कूली छात्रा के साथ उसके बॉयफ्रेंड और दूसरे सहपाठियों ने सामूहिक बलात्कार किया। इस घटना का उन्होंने MMS बनाया ताकि छात्रा को ब्लैकमेल किया जा सके।
2: एक घटना कर्नाटक में हुई थी कपूर साहब, जहां पिता ने ही अपनी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया था।
1: जी हाँ, मुझे याद है, वो घटना 15 जून की है। फ्रेंच काउंसलेट अधिकारी पास्कर माजुरियन को अपनी खुद की 3.5 साल की बेटी के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसकी पत्नी ने उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज की थी। इसी वर्ष 11 अगस्त को फरीदाबाद में दिल्ली जल बोर्ड में काम करने वाली 21 वर्षीय लड़की के साथ 8 युवाओं ने सामूहिक बलात्कार किया। उसे जबरदस्ती एक कार के अंदर खींचा गया था। 9 अगस्त मुंबई में पेशे से वकील 25 साल की पल्लवी को उनके वाडला स्थित फ्लैट में सुरक्षा गार्ड ने मार डाला क्योंकि वो पल्लवी के साथ बलात्कार करना चाहता था और पल्लवी के विरोध के कारण सफल नहीं हो पा रहा था।
0: लेकिन हरियाणा में जो घटनाएं हुई है कपूर साहब
1: जी,
0: वो काफी मार्मिक और दिल को दहला देने वाली घटना है और वो भी एक दलित लड़की और महिला के साथ।
1: वो घटना इसी वर्ष 9 सितंबर को हुई थी वीरेंद्र जी। 16 साल की दलित किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस घटना का MMS बनाकर इसे बड़ी संख्या में लोगों को भेजा गया। इसी इलाके में 21 सितंबर को दो बच्चों की मां के साथ बलात्कार किया गया। हरियाणा में पिछले एक महीने में इस तरह की ये 12वीं घटना है। 25 सितंबर कोलकाता में 18 महीने की एक मासूम बच्ची के साथ उसके रिश्तेदार ने बलात्कार किया। खून से लथपथ बच्ची उसकी मम्मा को रॉड स्ट्रीट में मिली। 24 सितंबर दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी की दो छात्राओं को एक पार्टी में नशीली ड्रिंक पिलाकर उनके तीन साथियों ने उनके साथ बलात्कार किया। 7 अक्टूबर दिल्ली में ही पीतमपुरा में एक डॉक्टर के घर बतौर घरेलू नौकरानी काम करने वाली 14 साल की किशोरी ने आरोप लगाया कि उसके मालिक ने लगातार एक साल तक उसके साथ बलात्कार किया है।
2: हमारे यहाँ जो बलात्कार संबंधी कानून है वो कितना उपयोगी है इस पर तो सवालियत निशान लगता है कपूर जी। इन सारी घटनाओं को देखते हुए क्या प्रक्रियात्मक और साक्ष्य संबंधी कानून बलात्कार पीड़ितों को न्याय दिलाने में सक्षम है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए?
0: बिल्कुल बिल्कुल जैसे आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है कि हमारे यहाँ जो वर्तमान में बलात्कार संबंधी कानून है वो किस तरह से पीड़ितों को न्याय दिलाने में सक्षम है या फिर नहीं है।
1: देखिए प्रेम जी, ये बात साबित हो चुका है कि बलात्कार संबंधी वर्तमान कानून सूक्ष्म और संकीर्ण है और ये अभी भी गुलामी का प्रतीक है।
0: अच्छा अच्छा,
1: काफी फैसलों से ये प्रतीत होता है। ऐसा देखा जाता है कि जब किसी पुरुष पर बलात्कार का आरोप लगता है तब साक्ष्य कानून अभियुक्त के बुरे चरित्र पर प्रकाश डालने पर आरोप लगाता है। बुरे चरित्र का अर्थ यहाँ ये है
0: जी
1: कि इसी प्रकार के अपराध में पहले दोष सिद्ध होना पर पीड़िता के चरित्र की बात आती है तो वहाँ उल्टे पैमाने का प्रयोग किया जाता है।
0: तो क्या ऐसा माना जाए कपूर साहब कि जो साक्ष्य कानून की धारा 155 है हमारे यहाँ
1: जी
0: उसी में खामी है और अपराधी आसानी से बच निकलते हैं?
1: साक्ष्य कानून की धारा 155 के अनुसार जब किसी व्यक्ति पर व्यभिचार का आरोप लगाया जाए तब वो स्त्री के चरित्र पर इल्जाम लगाकर बच सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से इन उपबंधों पर कुछ प्रभाव पड़ा है पर अभी भी इसे कानूनी किताबों में ज्यों का त्यों रखा है
0: जी।
1: और बचाव पक्ष के वकील इसका प्रयोग गवाहों को डराने के लिए करते हैं।
2: क्या इसी कारण बहुत सारी महिलाएं यौन हिंसा के शिकार होने के बावजूद न्याय की मंदिर में जाने से घबराती हैं कपूर साहब?
1: जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा समाज जो है ना वो पुरुष प्रधान है
2: जी जी,
1: और मुकदमा विचारण के दौरान भी यही बात स्पष्ट होती है। इस कारण काफी महिलाएं न्याय मंदिर में जाने से घबराती हैं और समझती हैं कि यहाँ आना समय बर्बाद करने के बराबर है
0: जी जी।
1: जब एक पीड़िता की वस्तुस्थिति समझने के लिए विभिन्न प्रयास नहीं किए जाएंगे तब तक महिलाओं को न्याय मिलना असंभव है।
0: तो क्या आप मानते हैं कपूर साहब कि वर्तमान में जो बलात्कार संबंधी जो हमारे यहाँ कानून मौजूद है
1: जी,
0: क्या उसमें संशोधन या सुधार की गुंजाइश है?
1: देखिए वृंद जी, केवल कानून में संशोधन करना काफी नहीं है, आवश्यकता है महिलाओं के प्रति जन चेतना व उनके अधिकारों के प्रति जागृति लाने की
0: जी जी।
2: एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल बलात्कार मामलों में लागू विचारण प्रक्रिया में क्या दोष पाए गए हैं कपूर साहब?
1: देखिए रितेश जी, साक्ष्य कानून की धारा 114A को जोड़ने का ये जो विचार है या जो सरकार हमारे यहाँ जो कानून लागू कर रही है जिसको 114A को जोड़ने के पश्चात आज भी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। इस धारा के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय को ये शक्ति दी गई है कि वो महिला पीड़िता के बयान को महत्व दे और ये माने कि बलात्कार के मामले में महिला की सहमति प्राप्त हुई है या नहीं
2: जी जी,
1: और ये उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ है। फिर भी दोष सिद्ध दर अन्य अपराधों के मुकाबले बहुत कम पाई गई है और अधिकतर विचारण में पीड़ित महिला को उसे ही बलि चढ़ाया जाता है न कि व्यभिचारी व्यक्ति को
0: जी बिल्कुल।
1: आज भी बहुत सी महिलाएं अपने दुख की गाथा पुलिस के सामने बयान नहीं कर पाती क्योंकि वो आज ही पुलिस डॉक्टरों और कानून संबंधी अधिकारियों का अपमानजनक व्यवहार सहने में लज्जा अनुभव करती हैं।
0: तो ऐसी जिस परिस्थिति का आप जिक्र कर रहे हैं कपूर साहब
1: जी,
0: तो ऐसी परिस्थिति में महिलाओं के साथ किस तरह के वातावरण निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा सकती है?
1: वृंद जी, आवश्यकता है महिलाओं के मन से इस डर और लज्जा की भावना को समाप्त करने की, जिससे ऐसी दुर्घटनाएं होने पर शीघ्र ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा सकें। ऐसा करने से मुकदमे का विचारण भी शीघ्र हो सकता है और गवाह भी अपना बयान बिना किसी भय के दे सकते हैं।
2: सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार हमारी वर्तमान कानून प्रणाली में जो बलात्कार के मामलों का विचारण करती है, इसमें क्या कमियां हैं कपूर साहब?
1: हमारे वर्तमान कानूनी ढांचे में बहुत सारे दोष पाए गए हैं। पहला ये है कि शिकायतें जो है वो शिकायतों पर बेढंगे तरीके से काम किया जाता है और उन पर ऐसा ध्यान नहीं दिया जाता जैसा उन्हें मिलना चाहिए।
0: जी जी,
1: पीड़िता को पुलिस और कानून के संरक्षकों के हाथों अपमान सहना पड़ता है। बलात्कार के मामलों का विचारण महिलाओं के लिए अपमान के सिवा कुछ और नहीं होता। उन्हें इस दौरान भयंकर पीड़ा और अपमान से गुजरना पड़ता है। कोर्ट में बलात्कार के मामलों के विचारण के दौरान महिलाओं किस प्रकार पीड़ा और यातना पहुंचाई जाती है, जो बलात्कार के घिनौने अनुभव से कम नहीं होती। पीड़िता को विचारण के दौरान वो मानसिक यंत्रणा सहनी पड़ती है जो बलात्कार के अपराध से कहीं अधिक होती है।
0: बिल्कुल कपूर साहब, 1980-89 के बीच
1: जी
0: बलात्कार कानून में जो संशोधन हुए
1: जी,
0: उसका क्या कुछ खास प्रभाव पड़ा है, खास करके बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को जिस तरह की राहत मिलनी चाहिए, क्या राहत मिली है?
1: देखिए वृंद जी, सुश्री फ्लेविया एग्नेस जो बलात्कार कानून की विशेषज्ञ मानी जाती हैं, उनके अनुसार 1980-89 के बीच जो बलात्कार कानून में संशोधन हुए हैं, उनसे महिलाओं को कोई विशेष राहत नहीं मिल पाई है और न ही उसके कारण दोष सिद्धि की दर में बढ़ोतरी हो पाई है। हालांकि मामलों के दर्ज होने की दर बढ़ गई है, पर दोष सिद्धि दर अभी बहुत कम है।
0: कपूर साहब, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे तो आपसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।
1: जी
0: अभी हम लोग चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।
1: आपको भी धन्यवाद, नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। साथियों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है वसुधैव कुटुम्बकम। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है साहसी कप्तान कुक स्ट्रीट, और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा जी।

हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। व्यक्ति विशिष्ट, आज के हमारे व्यक्ति विशिष्ट कार्यक्रम में हम आपको साहसी कप्तान कुक स्ट्रेट के बारे में कुछ रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं। साथियों, सदियों का इतिहास और उसका कोई भी कालखंड हमेशा ही सुंदर और अनुकूल रहा हो, ऐसा नहीं है। त्रास देने वाली कठिनाइयां और बेहद प्रतिकूल स्थितियां भी साथ साथ चलती रहती हैं, और शायद ऐसे ही हालात वर्तमान में भी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हर कालखंड में विपरीत परिस्थितियों के घने अंधकार के बीच ऐसे व्यक्तित्व भी हुए हैं जिन्होंने सुंदर जीवन की किरणों से इस संसार को प्रकाशमय बनाया है। ऐसा व्यक्ति अपने निष्ठामय जीवन, कठोर परिश्रम और अपने कार्यों से हम सब का प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक बन जाता है। और यही सत्य है कि आज हमारे सामाजिक जीवन में जितने स्नेह और आदर्श की पूंजी सुरक्षित है, वो ऐसे ही कर्मठ व्यक्तियों के कारण है। श्रोताओं, बेहद सामान्य और मामूली शुरुआत से कुछ खास या कहें विशिष्ट बनने वाले इंसानों के जीवन की कथा बड़े ही टेढ़े मेढ़े और अजीबो गरीब रास्तों से होकर गुजरती है। ऐसे ही अनेक इंसानों की जीवन गाथा से इतिहास भरा पड़ा है, जिनके जीवन में अवसर अच्छे बुरे एक एक करके आते जाते रहते हैं और वे आगे कदम बढ़ाते हुए चलते रहते हैं, कदम कदम पर संघर्ष करते हैं और इंच इंच विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, और उनकी इस विकास यात्रा में समाहित है उनकी उपलब्धियों यानी उनके अचीवमेंट्स और प्रगति के विभिन्न प्रवाहों का इतिहास, जिसकी धाराएं आज भी देखी जा सकती हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आइए मानव के साहस और उपलब्धियों को, जो उसे विशिष्ट कहलाने का सम्मान देता है, उसके इतिहास का एक पृष्ठ ये भी है, इसे जरा खोलें। इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। ये कहानी है लहरों को अपनी मुट्ठी में समेटने वाले साहसी कप्तान कुक स्ट्रेट की। कुक बचपन से ही समुद्र की विशाल और उन्मुक्त लहरों की तरंगों और लड़ियों को देखकर रोमांचित हो जाया करते थे। एक तरह का उन्माद उनमें भर जाता था और उस बच्चे का जी करता कि वो उन लहरों के साथ खेले, उनके बीच कूद पड़े, उनको अपनी बाहों में समेट ले। लेकिन अभी बच्चा था, इसलिए पिताजी जो थे वो उन्हें कस कर पकड़ लेते थे कि बस आगे नहीं जाना। लेकिन समुद्र की लहरों, रेतीले पठार के साथ समुद्र की गहराइयों को नापने वाले साहसी यात्रियों की कहानियां वो बड़े चाव से पढ़ता रहता था, और इसी धुन में चुपके चुपके जब रात होती, शाम होती, या देखता कि घर में कोई नहीं, पिताजी नहीं खास करके, तो चुपके से समुद्र की ओर दौड़ता हुआ चला जाता और फिर वही लहरें और उनके बीच में वो उनसे खेलने लगता। लेकिन प्रिय श्रोताओं, बालक कुक का बचपन अभावों और बेहद गरीबी के बीच गुजरा। एक बिल्कुल खंडहर जैसा टूटा फूटा घर था उनका। उनके पिता एक पंसारी और एक बजाज की दुकान पर नौकरी करते थे। कुक थोड़े से बड़े हुए तो पिताजी ने उसे भी इस नौकरी पर भेज दिया और खुद मजे से घर बैठ गए। अब नौकरी के अलावा आटा
और धागे भी बेचकर घर का गुजारा जैसे तैसे पूरा करना पड़ता था और कुक वो करते थे। और उसकी दुकान वाला जो था, जो मालिक, वो शराबी तो अक्सर उसे अपमानित करता था और कभी कभी तो उसकी जमकर पिटाई भी कर देता था। लेकिन इन सब हालात के बीच समुद्र ने, जी हाँ, समुद्र ने और उसकी बल खाती लहराती लहरों ने कुक का साथ नहीं छोड़ा और कुक ने उनका साथ नहीं छोड़ा। और आखिरकार एक दिन कुक घर छोड़कर निकल पड़ा एक अनजान समुद्र सफर पर, ऐसी जगह और ऐसे देश की तलाश में जिस पर कभी किसी मनुष्य ने कदम नहीं रखा हो। और मित्रों, उसकी कभी संतुष्ट और तृप्त न होने वाली समुद्र भ्रमण की पिपासा उसे मीलों लंबी दूरी और सीमाहीन किनारों पर इधर से उधर भटकाती रही, और वो भटकता रहा। लेकिन क्या ये महज भटकन ही थी? जी नहीं, ये भटकन व्यर्थ नहीं गई और आखिरकार कुक की यात्राओं के संस्मरण मानव समाज के लिए जैसे वरदान सिद्ध हुए। कैप्टन कुक ने खगोल विद्या, भूगोल और गणित की सघन पढ़ाई और चिंतन मनन किया और अपने भ्रमण के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान संसार के सुदूरतम कोनों से वनस्पति और जीव जंतुओं का संग्रह किया और फिर उन सबको एक जगह रखने के लिए एक क्यू गार्डन बनाया और इस संग्रह को उसमें सुरक्षित रख दिया। और हाँ, ऐसा नहीं कि कैप्टन कुक की ये यात्राएं बिना किसी बाधा के संपन्न हो गई, नहीं साहब, अनेक प्राण घाती घटनाओं का सामना करना पड़ा कैप्टन कुक को अपनी समुद्र की यात्राओं के दौरान। लेकिन कैप्टन कुक ने अपने इन अनुभवों और कौशल द्वारा इस साहसी अभियान को इतना श्रेष्ठ कर दिखाया जो इसके पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने बाद में जीव विज्ञान पर अनेक पुस्तकें लिखी। और मेरे प्रिय श्रोताओं, सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। ब्रिटिश साम्राज्य में न्यूजीलैंड को मिलाने का गौरव कैप्टन कुक को ही जाता है। जी हाँ, उन्होंने ही खोज की न्यूजीलैंड की और इसके साथ ही उन्होंने ही रोमानी हवाई द्वीपों की खोज भी की थी। तो साथियों, विदा लेने से पहले, यही था इतिहास का वो पन्ना जो कैप्टन कुक के नाम पर दर्ज है। उन्होंने काल के रेतीले चप्पे चप्पे पर अपने पद चिन्ह स्थापित किए और भावी पीढ़ी के लिए एक बहुमूल्य खजाना छोड़ा।

दोस्तों, अभी आप सभी सुन रहे थे कार्यक्रम वसुधैव कुटुंबकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था साहसी कप्तान कुक स्ट्रीट, और इसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा जी। दोस्तों, आप सभी ने स्वतंत्र कुमार जी की बातें सुनी और मैं समझता हूँ कि आप सभी को इनकी बातें अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। साथियों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है नाटक, जिसका शीर्षक है अपने लिए जिए तो क्या जिए, और इसके लेखक एवं निर्देशक हैं संदीप दुबे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं नाटक।

0: कौन आया था अभी? घंटी किसने बजाई थी?
1: कोई नहीं, रामप्रसाद आया था।
0: रामप्रसाद? तो इसमें छिपाने की क्या बात है? जरूर रुपए मांगने आया होगा, उसके जैसा कोई भिख मांगा नहीं देखा। कितने रुपए दिए?
1: अरे कहा ना, ना मांगे और ना मैंने दिए।
0: मैं मान ही नहीं सकती।
1: क्यों?
0: मेरा क्या है, तुम सब पर पैसे लुटा दो, लेकिन अपनी गृहस्थी का भी तो कुछ ख्याल करो। बताओ कितने रुपए दिए?
1: तुम हमेशा उल्टा क्यों सोचती हो? वह सिर्फ यह कहने आया था कि उसकी यहाँ आज सत्यनारायण की कथा है, निमंत्रण दिया था। मुझे तो इन बेकार की बातों से चिढ़ है, इसलिए मैंने टाल दिया।
0: मैं कहती न थी रामप्रसाद यूं ही नहीं आने वाला, तुम इन बातों को मानो या न मानो, लेकिन उसे कथा के नाम से पैसे जरूर मांगे होंगे।
1: अगर मांगता भी तो क्या इन फालतू कामों के लिए मैं दे देता?
0: तो देख लेना, अगर अभी नहीं रह गया हो तो किसी न किसी बहाने आता ही होगा। आखिर प्रसाद भी तो बनाना होगा, पैसे कम पड़ गए होंगे।
1: भली मानस, अब आए भी तो तुम ही दरवाजा खोलना, ठीक है? और तुम ही उससे निबट लेना, मेरा दिमाग खराब मत करो।

0: क्या फायदा आलतू फालतू लोगों का काम करने से? बदले में क्या कभी कुछ मिलता भी है?
1: तो क्या हमेशा बदले में कुछ पाने की आशा से ही कुछ करना चाहिए? निस्वार्थ सेवा में जो आनंद है वह स्वार्थ में कहाँ?
0: तो धरे रहो अपनी निस्वार्थ सेवा, मेरे काम निकलने के बाद कभी झांकते तक नहीं कुछ।
1: यह अपने मन की बात है। संगीता, क्या बात है, तुमसे इतने असहयोग की आशा नहीं थी। बात बात पर चिढ़ती हो, जलन और कुढ़न।
0: अब कौन आ गया?
1: जाओ, तुम ही जाकर देखो। कौन था?
0: वही मिस्टर वर्मा की पत्नी, कागज के फूल बनाने संवारने आई थी आपसे।
1: फिर क्या हुआ, कहाँ मिसेज वर्मा?
0: कह दिया कि तुम घर पर नहीं हो। देखो मैं पहले से कह देती हूँ कि अब वो यहाँ नहीं आएगी। सारे काम छोड़कर उसका बस कागज के फूल ही बनाना सिखाते रहते हो।
1: ओफो, तो हमारा कौन सा नुकसान हो गया? अरे जो आता था सो बता देता हूँ, उसका भला हो गया। बच्चों को स्कूल में सिखाएगी, इससे कला का और विस्तार होगा।
0: अरे किसी ट्रेनिंग सेंटर में सीखती तो गांठ से पैसे जो खर्चा करने पड़ते, यहाँ तो मुफ्त में काम निकल गया और चाय नाश्ता भी मिल गया।
1: तुम तो बेकार झगड़ती हो, इसमें चाय पानी भी जोड़ दिया।
0: अब आपको बनानी पड़े ना तो जानो। वैसे मैंने कह दिया कि वो अब इस घर में नहीं आएगी।
1: अब कल तो आएगी ही, उसके बाद मना कर दूंगा, ठीक है?
0: कल भी नहीं।
1: क्यों?
0: मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगी।
1: अरे दरवाजा मैं खोल दूंगा, तुम कसमत करना, ठीक है?
0: क्यों, क्या वो तुम्हारी कुछ लगती है?
1: तुम तो बिल्कुल पागल, लगती है। मेरी क्या लगेगी।

0: आइए आइए प्रेम दयाल जी, कैसे आए?
1: अपने बगीचे में इस बार अच्छे पपीते हुए हैं। मैंने सोचा सुमन बाबू को एक पपीता लेकर आऊं।
0: यह तो बहुत अच्छा किया, बहुत दिनों से मन कर रहा था पपीते का। सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफी मेहनत करते हो।
1: हाँ, ये लीजिए पपीता।
0: अच्छा
1: तो मैं चलता हूँ।
0: अरे ऐसे कैसे? बैठिए भाई, एक प्याला चाय पीकर जाइए। आप मेरे लिए पपीता लाए हैं और मैं भी सोच रहा था कि कोई आए तो चाय पीने का बहाना मिले। संगीता, संगीता
2: जी,
0: जल्दी से चाय बना दो, प्रेम दयाल आए हैं।
2: तो देख रही हूँ, महीने भर से सूरत नहीं दिखाई दी, आज पपीता लाया है तो जरूर कोई मतलब होगा।
0: संगीता, अरे संगीता अभी तक चाय नहीं बनाई।
2: हाँ हाँ, प्रेम दयाल पपीता लाया ना तो चाय जरूर पिएगा।
0: अरे क्यों, बिना मतलब पपीता नहीं ला सकता क्या?
2: सब हमारी तरह मूर्ख नहीं होते सुमन, देख लेना। बस अब भी कोई काम बताएगा वो।
0: अरे छोड़ो भी, कहाँ का खटराग ले बैठे, झटपट चाय बना दो। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ।

0: और सुनाइए प्रेम दयाल जी।
1: अरे और तो सब ठीक है, बस एक बात भूल गया, कल मेरा मुन्ना आएगा आपका कुछ समय लेने।
0: अरे तो इसमें कहने पूछने की क्या बात है, कभी भी आ जाए, उसका घर है और मैं नहीं मिलूंगा तो संगीता होगी या?
1: नहीं नहीं, मेरा मतलब है उसे आपसे कुछ पढ़ना है, परीक्षा सिर पर है ना, कल ढेर सारी समस्याएं सामने रख दी उसने, अब हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ मदद कर देना उसकी।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, भेज दीजिए।
1: अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्कार।
0: नमस्कार प्रेम दयाल जी।

0: कहा था ना मैंने कि बिना मतलब प्रेम दयाल कभी सूरत नहीं दिखाएगा। पिछले साल के 4 अमरूद भूल गए क्या?
1: ओफो, अब बच्चे को कुछ समझा दूंगा तो मेरा क्या घिस जाएगा संगीता। इस तरह कभी कभी पढ़ाता रहा ना तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अपने बच्चों के भी काम आएगा, है ना?
0: चलो हटो, मुझे ठिठोली अच्छी नहीं लगती।
1: क्यों?
0: यहाँ आकर घंटों सिर खपाता रहेगा, कहाँ मिलेगा मुफ्त का मान?

0: एक पपीता देकर 500 रुपए बचा लिए।
1: लो फिर हिसाब किताब में उलझ गई। अच्छा बताओ क्या सब्जी लानी है?
0: अब क्या हुआ, सब्जी का थैला तो हाथ में है और रुपए भी मैंने दे दिए थे।
1: अरे ये निरंजन है ना, बाहर मिल गया था मुझे, उसके बच्चे को कुत्ते ने काट दिया है, उसे अस्पताल पहुंचाना है।
0: तो क्या शहर में स्कूटर और टैक्सी वालों ने हड़ताल कर दी है? लेकिन नहीं, जब मुफ्त में सवारी मिलती है तो कौन जाए, कौन भाड़ा दे।
1: अरे इंसान को जो भी सहारा मिल जाए ना, उसका ही तो आसरा मिलेगा। अभी आता हूँ और ज्यादा देर नहीं लगेगी, फिर आके सब्जी ला दूंगा।
0: सब्जी नहीं होगी तो खाना नहीं बनेगा। उस निरंजन से कह देना होटल से कुछ लेकर बनवा देगा। स्कूटर के 5 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता।
1: तुम तब तक एक काम करना, दाल चावल चढ़ाओ ना, मैं लौट के आता हूँ ना भाई।
0: मैं क्या नहीं जानती उस कंजूस को, वहाँ 2 घंटे खड़ा रखेगा और फिर वापस भी तुम्हारे साथ आएगा। 4 महीने हुए, तब मैंने कहा था कि दौरे पर हर महीने हैदराबाद जाते हो तो मेरे लिए मोतियों की माला ले आना। उस दिन से आज तक सूरत नहीं दिखाई।
1: अब क्या कहूँ संगीता, तुम्हारी तो उल्टा सोचने की कुछ आदत ही है। अब उसे क्या परेशानी है, हमें क्या मालूम। एक बार रुपए देकर देखती तब पता पड़ता कि लाता था कि नहीं।
0: भली चलाई, माला के दर्शन तो दूर, रुपए भी हाथ से जाते। मैं कह देती हूँ कि उसे अस्पताल छोड़कर चले आना, नहीं तो मैं ताला लगाकर चली जाऊंगी।
1: अच्छा बाबा अभी आता हूँ, तब तक दाल तो चढ़ाओ।

0: ये लो तुम्हारी सब्जी, ये आधा किलो आलू टमाटर और अब एक प्याला चाय हो जाए तो कहूं कि धरती पर अगर सर्वोत्तम स्थान है तो बस यही है, यही है, यही है।
1: बस
0: यही।
1: बस मुझे नहीं अच्छी लगती है खुशामद, अपने आप बना लो।
0: हाय हाय, किसी ने ठीक ही कहा है कि क्रोध में औरत की खूबसूरती दोगुनी हो जाती है। अब कहीं चौगुनी और आठगुनी सुंदर हो गई तो भला मैं कहां बर्दाश्त कर पाऊंगा। अब बना दोगी चाय तो तुम्हारे गुण गाऊंगा, नहीं तो
1: नहीं तो क्या,
0: नहीं तो क्या फिर नहीं तो क्या नीचे रहीम के ढाबे पर जाकर पी लूंगा।
1: हाँ हाँ, ढाबे पर क्यों जाओगे?
0: क्यों,
1: निरंजन के यहाँ जाओ, प्रेम दयाल के यहाँ जाओ, मिसेस वर्मा के यहाँ जाओ, बढ़िया खुशबूदार चाय मिलेगी।
0: बस मजा ही किरकिरा कर दिया इसने, क्या तीर मारा है।

0: क्या बात है, आज ऑफिस से आते ही चाय तैयार? अरे काफी खुश दिखाई दे रही हो, क्या बात है?
1: बस खुशी की है ना सुमन, छोटे भैया बहन कॉलेज की छुट्टियों में हमारे पास रहने आ रहे हैं। बाजार से कुछ सामान लाना पड़ेगा ना, सारी लिस्ट तैयार है।
0: और तुम भी तैयार हो, है ना? लगता है तुम्हारी शादी हुए एक महीना भी नहीं हुआ है। हाय हाय, क्या जच रही हो, पर आज बाजार जाना नहीं होगा भाई।
1: क्या मतलब?
0: अरे मैं ठहरा मामूली इंसान, एक ही काम कर सकता हूँ, या तो तुम्हारे साथ सामान खरीदने चलूँ या तुम्हें लोगों की नजरों से बचाता फिरूँ।
1: ये लो चाबी स्कूटर की ओर उठो, ज्यादा बातें मत बनाओ।
0: अरे चलता हूँ भाई, चलो।
1: अरे धीरे स्कूटर, धीरे चलाओ ना।
0: चिंता मत करो, मजा आ रहा है। अरे ये ले।
1: अरे सुमन सामने वाली गाड़ी। अरे राम, ये क्या हो गया, इनके सिर से तो खून आ रहा है। अरे कोई है?
2: क्या हुआ भागू? अरे सुमन भागू को चोट आ गई। अरे आप चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए, मैं संभालता हूँ। अरे टैक्सी, हॉस्पिटल लेके तो सुमन बाबू को चोट आ गई।

0: चिंता की कोई बात नहीं है भाभी जी, अधिक चोट नहीं आई है, हेलमेट होने से बच गए।
1: ये घर कब आएंगे प्रेम भाई साहब?
0: अब कुछ दिन तो अस्पताल में रहना पड़ेगा, मरहम पट्टी हो गई है, इंजेक्शन भी लगा दिए हैं, अभी सो रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है भाभी जी।
1: मैं चलूंगी उनके पास।
0: क्यों नहीं, अरे आपको ही तो लेने आया हूँ मैं। एक बार आंख खुली थी तो आपको पूछ रहे थे, मुझसे कहा था कि आपको साथ लेकर सामान ले आए।
1: कोई बात नहीं, सामान फिर आ जाएगा, आप मुझे ले चलिए ना।

0: आइए भाभी जी, आइए।
1: चिंता की कोई बात नहीं है भाभी जी, हम सब लोग हैं ना। आप बिल्कुल आराम से बैठिए, डॉक्टर साहब थोड़ी देर में आने वाले हैं।
2: इनके खाने का क्या होगा, कुछ बताया डॉक्टर ने? मैं घर से बनाकर ले आऊंगी।
0: अब आप कहाँ जा सकती हैं भाभी जी, आप तो बस इनकी देखभाल कीजिए। खाने के लिए मैंने घर खबर पहुंचा दी है, आपका खाना भी आ जाएगा।
2: लेकिन इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी
0: भाभी जी? कष्ट में जो आनंद है वह आनंद में कहाँ, कभी किसी के काम आए इसी में प्रसन्नता है। पर वैसे ऐसा अवसर कभी ना आए, बस यही इच्छा है।
3: संगीता,
0: अरे लगता है सुमन बाबू जाग गए।
3: संगीता, आज शाम तक मैं चलने लायक हो जाऊंगा। आज सामान लेने चलेंगे, पर कपड़े जरा हल्के पहनना।
2: जी, आप भी?
0: अरे क्या हुआ भाभी जी?
2: कुछ नहीं, ये यूं ही बड़बड़ा रहे हैं।
3: यहाँ कौन लाया था मुझे?
2: रामप्रसाद।
3: उसे टैक्सी के पैसे देने होंगे ना, लोगों का खाने का भी उधार हो गया है। समझ में नहीं आता यह सब एहसान कैसे चुकाऊंगा।
2: बस अब चुप रहिए, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा सबक मिल गया है।

अभी आपने सुना नाटक अपने लिए जिए तो क्या जिए। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अंतरा करवड़े, संदीप दुबे एवं सिरिल जमरे।

अभी आप सुन रहे थे नाटक जिसका शीर्षक था अपने लिए जिए तो क्या जिए, और इसके लेखक एवं निर्देशक थे संदीप दुबे। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को। नमस्कार।

दोस्तों, रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सिस्टर गंगा रावत एसएसपीएस। दोस्तों, अभी की सभा 8 से 9 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास, युग संचार और भक्ति।

तो आइए साथियों, अब हम सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा जी।

0: हमारे सभी श्रोता मित्रों को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया के हमारे सत्य स्वर कार्यक्रम में जो एक मुलाकात कार्यक्रम होता है उसमें आज सादर आमंत्रित हैं मुरुड के डॉक्टर आर बी नामजोशी। नामजोशी साहब नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: मुरुड में आप रहते हैं, ये मुरुड है कहाँ, सबसे पहले तो ये बताइए।
1: मुरुड मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर है।
0: अच्छा।
1: अलीबाग से 50 किलोमीटर दूर है।
0: अच्छा।
1: और रायगढ़ जिले में है।
0: रायगढ़ जिले में है।
1: जंजीरा किला है ना उसके आसपास। मुरुड नाम के महाराष्ट्र में 2-3 ग्राम है।
0: अच्छा।
1: और ये जंजीरा के पास है इसलिए इसको जंजीरा मुरुड बोलते हैं।
0: अच्छा अच्छा। तो इस मुरुड, ये तो मतलब जंजीरा और ये तो सब समुद्र से घिरे हुए हैं चारों तरफ से।
1: हाँ, जंजीरा तो बिल्कुल घिरा है।
0: हाँ। और मुरुड?
1: मुरुड समुद्र के पास है।
0: समुद्र के पास है,
1: पास है। हाँ।
0: तो आपको समुद्र का गर्जन, उसकी लहरों की आवाज सब
1: सुनाई बिल्कुल सुनाई देती है।
0: हाँ।
1: और बारिश में तो बहुत अच्छी तरह से।
0: अच्छा।
1: यानी अगर आप पहले आएंगे तो रात में जाग उठेंगे आप।
0: अच्छा अच्छा।
1: क्या है, कैसी आवाज है?
0: अच्छा।
1: अरे समुद्र की आवाज है ऐसी।
0: अच्छा अच्छा। तो ये मुरुड आपका जाना कैसे हुआ, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं आप?
1: मैं पहले पूना से रहने वाला हूँ।
0: हाँ।
1: मेरा शिक्षण भी पूना में हुआ, व्यवसाय की वजह से मैं मुरुड में आया था।
0: हाँ। आपने हमें ये जानकारी दी कि आप एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों का जो एक मिला जुला कोर्स या प्रशिक्षण होता है उसमें आपने डिग्री प्राप्त की है।
1: हाँ।
0: तो आप ये दोनों तरह की प्रैक्टिस अपने मरीजों की उपचार में करते हैं?
1: करते हैं, करता हूँ मैं।
0: अच्छा। ये कहाँ से किया कोर्स आपने?
1: मैंने पुणे से किया।
0: पुणे से किया? तो पुणे छोड़ना क्यों पड़ा आपको?
1: पुणे में हमारा घर था लेकिन रास्ता बंद रहा था, वो चौड़ा हो रहा था इसलिए आजू बाजू के घर तोड़े गए। उसमें हमारे 8 कमरे थे, उसमें 7 कमरे हमारे तोड़े गए, इसलिए पुणे छोड़ना पड़ा। और मेरे रिश्तेदार के सलाह के वजह से मैं मुरुड में आया।
0: अच्छा। और मुरुड में आके आपने अपना दवाखाना खोला होगा?
1: हाँ बराबर।
0: तो इस दवाखाने में आप अभी भी बैठते हैं?
1: हाँ जी।
0: कितना समय बैठते हैं?
1: सुबह में 9:30 से 1 बजे तक, शाम में 4:30 से 8 बजे तक।
0: अच्छा। दोनों तरह की दवाएं देते हैं आप, एलोपैथी?
1: हाँ,
0: और
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कोई ऐसा प्रसंग याद आता है जिसमें कि जो कि बहुत हृदय विदारक हो?
1: एक तो बहुत ही हृदय स्पर्शी प्रसंग है।
0: हाँ।
1: और मुझे उसका दुख भी होता है कि रूढ़ी से हमारा समाज कैसा बंधा है।
0: हाँ।
1: एक औरत बीमार थी।
0: हाँ।
1: 10-15 दिन पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, कम ज्यादा हो सकते 10 या 7-8 दिन।
0: हाँ।
1: और खून की बहुत कमी थी उसमें।
0: हाँ।
1: इसलिए उसका असर उसके हृदय पर हुआ था।
0: हाँ।
1: उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी।
0: हाँ।
1: और मुझे विजिट पर बुलाया गया था, मैं उसके घर गया था।
0: हाँ।
1: और उसको नस में से दवा देनी थी इसलिए उसके पास तो बहुत औरतें खड़ी थी।
0: हाँ।
1: मैंने एक औरत को बोला कि जरा आकर उसके हाथ पकड़ो नस में दवा देने।
0: हाँ।
1: तो कोई भी औरत आगे नहीं आई।
0: हाँ।
1: क्योंकि उनका मानना था कि वो अभी इसने बच्चे को जन्म दिया है तो उसको छूना नहीं।
0: हाँ हाँ।
1: मुझे बहुत बुरा लगा कि उसकी जान निकल रही है।
0: हाँ।
1: उसको मदद करना यानी परमेश्वर का काम है, फिर भी कोई उसको हाथ पकड़ने को भी तैयार नहीं है। मैं अभी तक वो भूल नहीं सकता।
0: अच्छा। ये बताइए कि आपके पास तो हर तरह के मरीज आते होंगे, तो एलोपैथी और आयुर्वेदिक जो दवाइयां होती हैं उसमें आप ज्यादातर क्या उपयोग में लाते हैं? वैसे तो केस देख करके ही ये तय करना पड़ता है, लेकिन आप हाँ, क्या करते हैं?
1: दोनों तरह की मैं दवाएं इस्तेमाल करता हूं।
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन जो बीमारियां देर तक चलने वाली है उसमें ज्यादा से आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल करता हूं।
0: हाँ।
1: क्योंकि ज्यादा देर तक अगर एलोपैथिक दवा इस्तेमाल करे
0: हाँ।
1: तो उसके बुरा असर हो सकता है इसलिए।
0: तो उससे थोड़ा आराम भी रहता होगा, नुकसान नहीं होता दादा?
1: नुकसान नहीं होता।
0: चलिए एक बात और बताइए, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि आपका मुरुड जो है ये समुद्र से लगभग जुड़ा ही हुआ है, तो मछुआरों की बस्ती होगी यहाँ तो?
1: करीब 30-40% तो है।
0: तो मछुआरों को तो बड़ा संघर्ष करना पड़ता है।
1: बराबर।
0: तो उसके बारे में
1: उनके जीवन में बहुत अनिश्चितता है।
0: अच्छा।
1: और हमें मछुआरों के जो नेता है उन्होंने एक बात कही थी और मुझे बहुत वो अच्छी लगी। हाँ। यानी समझने को और समझाने को।
0: हाँ।
1: कि मछुआरे की जो औरत रहती थी पहले।
0: हाँ।
1: पुराने जमाने में।
0: हाँ।
1: वो सिर्फ एक हाथ में चूड़िया डालती थी।
0: अच्छा।
1: और उसको पूछा कि एक हाथ में चूड़िया क्यों?
0: हाँ।
1: तो दूसरे हाथ की चूड़िया हमने समुद्र को दी है,
0: समुद्र को दी।
1: हाँ। यानी इतना हमारे जो
0: मछुआरे लोग,
1: हाँ, मछुआरे है।
0: हाँ।
1: उनका जीवन इतना अनिश्चित है कि वो वापिस आएगा या नहीं।
0: हाँ हाँ।
1: इसका हमें हमेशा डर रहता है, इसलिए समुद्र को अर्पण किए है ऐसा।
0: अच्छा। ये मछुआरों के भी बीमार आपके पास आते होंगे?
1: आते हैं।
0: तो आप फिर किस तरह से इनका उपचार करते हैं? गरीबों की मदद करना आपका उद्देश्य रहा है जीवन में?
1: हाँ, बिल्कुल रहा है। अभी मैंने करीब 35 साल मैं दवाखाना चला रहा हूँ, एक भी ऐसा पेशेंट को मैंने बोला नहीं कि तुमने पैसे नहीं लाए तो पहले पैसे लाओ फिर दवा लो, कभी नहीं। और पूछता भी नहीं मैंने कितने पैसे लाए हैं।
0: हाँ,
1: अगर नहीं दिए तो भी ठीक है।
0: हाँ, वाह, बहुत अच्छी बात है ये। ये एक प्रेरणा की बात है श्रोताओं। और अब ये बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में पत्नी है मेरी, उर्मिला नाम है उसका, बीए किया है। मेरा बेटा है, वो कंप्यूटर इंजीनियर है, अभी इन्फोसिस में है। और मेरी बहू है, उसने कथक में विशारद किया है।
0: अच्छा अच्छा। तो जब इस तरह का वातावरण है तो आपको भी संगीत में तो रुचि होगी ही होगी?
1: हाँ, मैंने संगीत सीखा है।
0: हाँ।
1: और कार्यक्रम भी किए हैं।
0: हमने ये भी सुना है कि आप मुरुड में भी कोई एक संगीत का आयोजन करते हैं हर साल।
1: बराबर।
0: उसके बारे में बताइए।
1: हाँ जी, मुरुड में खास साहेब अबीद हुसैन खा।
0: हाँ।
1: वो मुरुड संस्थान में थे।
0: हाँ।
1: और फिर वो मुरुड से इंदौर आए।
0: हाँ।
1: तो मुरुड में उनके जो शिष्य थे वामनराव भावे।
0: हाँ।
1: पंडित वामनराव भावे।
0: हाँ।
1: वो मेरे गुरु है।
0: हाँ।
1: और उनकी प्रेरणा से हमने खास साहेब अबीद हुसैन स्मृति संगीत मंडल निकाला है। और हर 13 दिसंबर को उनकी बरसी हम मनाते हैं। पहले 13 दिसंबर को मनाते थे, लेकिन अभी दिन छोड़कर।
0: तो उसमें आप कलाकार भी आमंत्रित करते हैं?
1: हाँ, बराबर।
0: अच्छा।
1: लेकिन हमारा जो बजट है यानी वो कम रहता है, इसलिए बहुत नाम वाले कलाकार तो नहीं बुला सकते, लेकिन गुणी कलाकार आते हैं हमारे यहाँ। और जो आते हैं वो क्या मिलने वाला है ये देख कर नहीं आते। हमारे यहाँ यशवंत जोशी आकर गए थे, केटी भटवड़ेकर आए थे, और सारंगी बजाते वो अनंत कुंटे जी आए थे। ऐसे कलाकार आते हैं और नए कलाकार भी आए थे।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम एक मुलाकात, जिससे प्रस्तुत कर रहे थे स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा जी, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वास मुंबई की। मित्रों, अभी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है कार्यक्रम युवा विकास का। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं कार्यक्रम युवा विकास, जिससे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वर्गीय माइकल होजस जी, और इनकी वार्ता का शीर्षक है आदर्श बराती, और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: युवा और विकास के अंतर्गत प्रस्तुत है बातचीत आदर्श बाराती। लेखक और प्रस्तुतकर्ता माइकल हॉजिस। बातचीत में भाग ले रहे हैं अपर्णा सिंह और माइकल हॉजिस।
1: युवा श्रोता साथियों को अपर्णा सिंह
0: और माइकल हॉजिस का
1: नमस्कार। तो माइकल जी, अपने युवा साथियों को हम बताते चले कि आज हम उनके लिए किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, ताकि वे हमारी बातचीत को तन्मय होकर सुन सकें। तो अपर्णा जी, सभी को पता है कि सभी लोग अपने त्योहार को खुशी खुशी और उल्लास के साथ मनाने के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। फिर उस त्योहार की खुशी और उल्लास आने वाले अगले त्योहार या अगले वर्ष उसी त्योहार तक उनके मन में एक उमंग जगाए रखते हैं और एक सुखद स्मृति के रूप में अपनी एक क्या कहते हैं, छाप भी छोड़ जाते हैं।
1: लेकिन हमारी एक परंपरा ऐसी भी होती है जिसे व्यक्ति जीवन भर के लिए भूल नहीं पाता है और परंपरा को पूरा करने के उस अवसर को जीवन भर के लिए अपनी सुखद और कभी न भूलने वाली स्मृतियों के रूप में संजोकर रखना चाहता है और संजोकर रखता भी है। माइकल जी,
0: जी अपर्णा जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारी उस परंपरा का नाम है विवाह।
1: जी हाँ,
0: विवाह या शादी किसी भी व्यक्ति के जीवन में सचमुच कभी न भूलने वाला एक अवसर ही होता है जिसका इंतजार हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में रहता है।
1: माइकल जी, मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि विवाह संपन्न होने का एक ऐसा अवसर होता है जिसमें आपके जाने बूझे और मिलने वाले लोगों के साथ साथ कुछ नितांत अपरिचित तो कुछ थोड़े बहुत परिचित लोग भी शामिल होते हैं।
0: जी जरूर।
1: और माइकल जी, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे माहौल में कभी कभी सब कुछ शांति से निपट जाता है और कभी तो जरा सी बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती।
0: जी जी।
1: और ऐसे में पूरा खुशी का माहौल और उल्लास का माहौल कसैला सा हो जाता है।
0: बिल्कुल अपर्णा जी, इसीलिए विवाह जैसे वातावरण में संयम, समझदारी और एक दूसरे से स्थिति से सामंजस्य जैसे व्यवहारों की अत्यधिक आवश्यकता रहती है, जिस कारण विवाह जैसी क्रिया को निर्विघ्न रूप से यानी बिना किसी रुकावट के हंसी खुशी के माहौल में ही संपन्न किया जा सके।
1: बिल्कुल माइकल जी, इसलिए आज हम अपने युवा साथियों से इसी विषय पर अपनी बातचीत के द्वारा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि विवाह जैसे आयोजन में भी युवा अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर चाहे वे किसी कार्य में संलग्न हों, किसी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हों या फिर वे किसी बारात में बाराती की भूमिका में ही क्यों न शामिल हो जाएं।
0: जी बिल्कुल। तो जब भी कहीं से किसी विवाह समारोह में आने का निमंत्रण मिले तो सबसे पहले इस बात को निश्चित कर लें कि आपको बारात में भी जाने का निमंत्रण है या फिर केवल विवाह भोज में ही पधारने का निमंत्रण है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि कई लोग विवाह भोज के निमंत्रण को ही बारात में जाने का निमंत्रण समझ बैठते हैं और ऐसे में बिन बुलाए बाराती बनकर हंसी का पात्र बन बैठते हैं।
1: माइकल जी, आपने एक अहम बात बताई है। वाकई कुछ लोग ऐसा करते हैं और दूसरों की नजर में अपने आप को मजाक बना लेते हैं और दूसरों को अपने ऊपर हंसने का अवसर दे बैठते हैं ऐसे में।
0: अपर्णा जी, इसके बाद आता है वो अवसर जब वाकई में आपको बारात में जाने के लिए निमंत्रित किया गया हो।
1: जी,
0: इस स्थिति में आप अपनी सुविधा अनुसार बारात में जाने की योजना बनाएं। सुविधा अनुसार का मेरा मतलब ये है अपर्णा जी कि अगर आप कहीं नौकरी करते हैं
1: जी हाँ,
0: तो अपने काम और अपनी बाकी बची हुई छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए ही अवकाश के लिए आवेदन करें तो ही ठीक रहेगा।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि आपका अवकाश आवेदन स्वीकार किया जा रहा हो तो ठीक, अन्यथा आप आवेदन के लिए अपने अधिकारी से बहस या किसी प्रकार का विवाद न करें।
1: जी हाँ,
0: ये आपकी नौकरी में आपके भविष्य के लिए ठीक होगा।
1: और माइकल जी, यदि हमारे युवा अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो वे अपनी पढ़ाई को विघ्न न पहुंचाते हुए ही बारात में जाने की योजना बनाएं। अपने कार्य से या पढ़ाई से अवकाश इस तरह का लें कि बारात के साथ वापस आने के बाद आप एक दिन भरपूर आराम कर लें और बारात तथा सफर की पूरी थकान उतार सकें, क्योंकि अधिकतर लोगों को बारात में जाने पर थकान हो ही जाती है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर आखिर घर होता है और इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए।
0: जी हाँ अपर्णा जी, इससे फायदा ये होगा कि आप दूसरे दिन अपने कार्य पर या अपने स्कूल कॉलेज तरोताजा होकर जा सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: जिससे आप अपना पूरा मन अपने काम और अपनी पढ़ाई में लगा सकेंगे। क्या कहना है अपर्णा जी?
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपसे इसीलिए मैं पूरी तरह सहमत मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ माइकल जी, वरना बारात से आते ही कार्य पर या कॉलेज जाने वाले अलसाए से रहते हैं और अपने बारात से आते ही कार्य पर या कॉलेज आने का रोना रोते रहते हैं। और माइकल जी, इसके बाद बारी आती है बारात में जाने की तैयारी करने की।
0: और अपर्णा जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही जरूरी और एक खास बात है।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि साधारणता क्या होता है कि लोग सोचते हैं बारात में तो जाना ही है, बस दो जोड़ी कपड़ा रखो और निकल पड़ो।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे ही युवाओं की ऐसी सोच ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल भी ठीक नहीं है माइकल जी, क्योंकि आप कहीं शहर ही में तो जा नहीं रहे हैं अगर बारात में जा रहे हैं तो, बल्कि आप दूसरे और पराए शहर जा रहे हैं जहां आपको अपने घर जैसी सुविधाएं तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली हैं। और इसलिए स्वयं बाराती पूर्व से ही अपनी सुविधा जुटाने का प्रयास कर लें
0: जी,
1: तो मेरे ख्याल से उन्हें बारात में किसी प्रकार से मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
0: जी हाँ, और इसके लिए पहले तो वे अपने साथ कम अज कम और केवल जरूरी काम आने वाली चीजें ही रखें।
1: जी हाँ,
0: जैसे एक जोड़ी स्लीपर, दो जोड़ कपड़े, एक चादर, और युवा अपना शेविंग सेट, ब्रश, टूथपेस्ट, कंघी तेल वगैरह आदि।
1: जी हाँ,
0: और युवतियों को चाहिए कि अपने मेकअप का सामान आदि भी वे रख लें ताकि उन्हें वहां जाने पर ये चीजें किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े,
1: माइकल जी,
0: ना होना पड़े।
1: और इसके अलावा यदि कोई दवाइयां वगैरह, जैसे अगर किसी की तबीयत खराब है वगैरह, तो आप ले सकते हैं आवश्यकता अनुसार। अपने साथ इसलिए रखना चाहिए क्योंकि दवाई ले जाने से उसकी जरूरत पड़ती ही रहती है, क्योंकि वहां पर तबीयत भी खराब हो सकती है। जहां आप बाराती बनकर जा रहे हैं वहां आपको ये दवाइयां न मिले, ऐसा भी हो सकता है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि कपड़े रखते समय मौसम का भी ध्यान अवश्य रखें और मौसम के अनुरूप ही अपने जरूरी कपड़े आप रखें।
0: पर्णा जी, अब जो सबसे जरूरी और सबसे खास बात है वो ये कि बाराती बनकर जाने से पूर्व आगे सामने आने वाली किसी भी अव्यवस्था के लिए अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर लें।
1: जी हाँ।
0: वरना कहीं ऐसा न हो कि कहीं भी जरा सी असुविधा से युवा हताश हो जाए।
1: जी हाँ।
0: और आनंद और आमोद प्रमोद का समय तनाव और कुंठा में ही बीत
1: जाए। और अक्सर ऐसा देखा गया है माइकल जी कि बारात में अक्सर ऐसा होता है कि तनाव और कुंठा लोगों में आ जाती है क्योंकि सुविधाएं आसानी से नहीं मिलती हैं।
0: बिल्कुल, तो इस वजह से वो बारात आपके लिए कड़वी स्मृतियों का एक ढेर मात्र बनकर न रह जाए और भविष्य में आप कहीं भी किसी की भी बारात में बाराती बनकर जाने से तौबा कर लें, ऐसा ना हो।
1: आपने एक बहुत अच्छी बात कही है माइकल जी, क्योंकि बारात जैसे एक बड़े और जिम्मेदार आयोजन में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी या तो रह जाती है या फिर स्थितिवश पैदा हो जाती है। इसलिए जाने से पूर्व अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर लेने का लाभ ये होगा कि आप परिस्थितियों के अनुसार अपना उनसे सामंजस्य से बैठा पाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: और ये कह सकते हैं कि वातावरण का भरपूर आनंद भी उठा पाएंगे।
0: जी अपर्णा जी, और बस के या ट्रेन के तय स्थान और तय समय के अनुसार ही सही जगह पर सही समय पर पहुंचे, वरना आपके देर से पहुंचने पर बारात के निर्धारित समय पर निकलने का कार्यक्रम अव्यवस्थित हो सकता है और उसका दोष अप्रत्याशित रूप से आप पर भी लगाया जा सकता है।
1: और माइकल जी, आपने बिल्कुल ये बात सही कही है, क्योंकि कुछ लोग अपना महत्व जताने और बताने के लिए सही समय पर न पहुंचकर लोगों से अपना इंतजार करवाते हैं। उनकी ये मानसिकता उन्हें लोगों की आलोचनाओं का शिकार भी बनाती है।
0: जी, और समय पर पहुंचने के बाद आपका ये फर्ज बनता है कि आप आपके लिए निर्धारित किए गए स्थान पर ही अपना आसन जमाएं। अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ बिल्कुल न बैठें, क्योंकि हो सकता है आप अपनी मर्जी से जहाँ बैठ जाएं वो जगह किसी और के लिए आरक्षित की गई हो।
1: और माइकल जी, वैसे तो बारात के आयोजकों द्वारा सभी बारातियों का एक दूसरे से सामान्यतः परिचय तो कराया ही जाता है, लेकिन फिर भी यदि किसी कारणवश आप परिचय से वंचित रह जाएं, तो इस बात को अन्यथा न लें आप, क्योंकि स्वयं ही आपको ऐसे में करना चाहिए कि आगे बढ़कर शालीनता से अपना परिचय देकर अन्यों से उनका परिचय प्राप्त करना चाहिए।
0: अपर्णा जी, किसी भी बात का रास्ता लंबा हो या छोटा, बाराती सारे रास्ते हंसी मजाक करते ही जाते हैं और सभी मजाक के हल्के फुल्के मूड में रहते हैं, विशेषकर युवा। इसलिए युवाओं को ऐसे समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए और वातावरण को जीवंत और हल्का फुल्का बनाए रखने में अपना भरपूर योगदान देना चाहिए, तभी तो वे अपने युवा होने को सार्थक कर पाएंगे।
1: माइकल जी, लेकिन यहाँ भी हमारे युवाओं को एक बात का ध्यान रखना होगा कि वे किसी से भी भरपूर हंसी मजाक करें,
0: जी
1: जैसा कि आपने कहा, लेकिन शालीनता की सीमा में रहकर।
0: बिल्कुल।
1: और उन्हें इस बात का ध्यान तो रखना ही होगा, वरना अशालीनता का बाण किसी को भी आहत कर सकता है और सफर का मजा ही नहीं बारात के बाकी का मजा भी किरकिरा कर सकता है।
0: इसके बाद आयोजकों की ओर से चाय नाश्ते या खाने आदि की व्यवस्था भी की जाती है। लेकिन किसी कारण यदि इस व्यवस्था में थोड़ी देर हो जाए या कोई कमी रह जाए तो उस पर हल्ला करने के बजाय शांत रहना चाहिए।
1: ये आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि हल्का फुल्का वातावरण बनाए रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए।
0: उसके लिए ये जरूरी है क्योंकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये किसी और के द्वारा की जाने वाली व्यवस्था है, हमारा घर नहीं है।
1: और माइकल जी, इसके अलावा नाश्ता खाना आदि के लिए किसी प्रकार की जल्दबाजी भी न तो करना चाहिए और न ही दिखाना चाहिए, वरना इससे लोगों को आपके बारे में आपकी राय कायम करने का मौका मिल जाएगा और आपको देखकर लोग आंखों ही आंखों में आपके बारे में बातें करने लगेंगे।
0: जी अपर्णा जी, बारात के निर्धारित स्थान पर पहुंचने के बाद भी युवा अपनी शालीनता को बनाए रखें। यदि बारात आपके मित्र की ही है तो बेवजह उसके सामने अपने स्वागत की या किसी और चीज की कमी का रोना न रोएं, न ही उससे की गई व्यवस्था के प्रति किसी भी तरह से भड़काएं या उकसाएं। लड़की वालों के यहाँ के किसी भी व्यक्ति पर बेवजह अपना रौब कायम करने का प्रयास न करें,
1: जो कि अक्सर देखा गया है कि ऐसा होता है, बाराती ऐसा करते हैं।
0: इससे भले ही आपका रौब जमे या न जमे, किंतु बारात में शामिल लोगों का चरित्र वधू पक्ष के लोगों को जरूर समझ में आ जाए।
1: और माइकल जी, घर में भी आपको जो चीज न मिलती हो ऐसी चीजों की फरमाइश कर वधू पक्ष को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें आप लोगों की व्यवस्था करने के अलावा और भी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और अलग काम भी करने रहते हैं, इसलिए उन्हें बेकार ही परेशान करने का किसी भी प्रकार से प्रयास नहीं करना चाहिए युवाओं को।
0: एक बात और अपर्णा जी, वधु पक्ष के सभी लोगों से भी बारातियों का परिचय कराया जाता है। यदि आप इस परिचय से वंचित हो जाते हैं तो मुंह न फुलाएं, क्योंकि विवाह होने से लेकर विदाई तक वैसे भी घराती और बाराती सभी एक दूसरे से परिचित हो ही जाते हैं।
1: जी हाँ,
0: रही बात मुंह फुलाने की, तो ऐसे मुंह फुलाने वालों से सभी लोग दूर रहना ही पसंद करते हैं।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा माइकल जी, वैसे भी जरा जरा सी बात पर मुंह फुलाने वाले को कोई भी नहीं पूछता है, क्योंकि उन्हें भी यही डर लगा रहता है कि न जाने किस बात पर उनसे भी मुंह न फुला ले कोई। वैसे भी ऐसे आयोजन या समारोह में किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो किसी को मनाता फिरे।
0: जी बिल्कुल। और अपर्णा जी, इसके उलट हंसी मजाक करने वाले और वातावरण को उल्लासमय बनाने वाले को सभी पूछते हैं।
1: बिल्कुल पूछते
0: सभी
1: हैं।
0: उसका साथ और उसकी निकटता चाहते हैं। विवाह समारोह भी एक हंसी मजाक और आनंद तथा उल्लास भरा कार्यक्रम होता है।
1: जी हाँ।
0: इसीलिए इस कार्यक्रम में जितना हंसी मजाक, जितना आनंद उल्लास होता है, उतनी ही इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है
1: माइकल जी, क्योंकि इससे कार्यक्रम में शामिल सभी व्यक्तियों का भरपूर मनोरंजन होता है। और यही तो वे क्षण, वे लम्हे होते हैं जब ये प्रत्येक शामिल व्यक्ति के मानस पटल पर अंकित होकर आजीवन मधुर स्मृतियों में बदल जाते हैं।
0: जी अपर्णा जी, जैसा कि इस कार्यक्रम के आरंभ में भी हम बता चुके हैं कि अव्यवस्थाओं के लिए हमें स्वयं को पूर्व से ही तैयार रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही।
0: इससे लाभ ये होता है कि ऐसे में यदि आपको साबुन, पानी, स्नानघर, शौचालय और सोने ठहरने आदि में किसी बात की कमी होती है तो आपको इनसे सामंजस्यता बैठाने में सरलता पेश आती है।
1: जी बिल्कुल। और आप ऐसी अव्यवस्थाओं को मन से स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि आप इन सबके लिए पहले से ही मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार थे,
0: इसलिए आपको इन सब का सामना करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती क्योंकि इसके लिए आप पहले से तैयार थे।
1: जी बिल्कुल। और आप ऐसे में अव्यवस्थाओं को मन से स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि आप इन सबके लिए पहले से ही मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार थे, इसलिए आपको इन सब का सामना करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप पहले से तैयार थे इन सब बातों के लिए।
0: अपर्णा जी, विवाह के समय यदि वर और वधु पक्ष के बीच यदि किसी बात पर कोई विवाद हो जाए तो युवाओं को तैश में आने की बजाय चुप रहना और तटस्थ रहना चाहिए। उन्हें बड़े बूढ़ों को बात करने देना चाहिए और जहां तक हो सके दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी एक पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए।
1: सही कहा माइकल जी आपने, उन्हें किसी भी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए क्योंकि आज नहीं तो कल या फिर कुछ ही देर में दोनों पक्षों को सहमत होते देर नहीं लगेगी और ऐसे में आप बेकार ही मध्यस्थ की भूमिका निभाकर बुरे बनकर रह जाएंगे। इसलिए या तो चुप ही रहें ऐसे में या फिर समझौता कराने का प्रयास करते रहें।
0: बिल्कुल अपर्णा जी, विषय हल्का हो चाहे गंभीर हो, पहले तो तटस्थ ही रहना चाहिए और यदि बीच में बोलना ही पड़ जाए तो समझौता ही कराने का प्रयास करना चाहिए। इससे लाभ ये होगा कि वधु और वर पक्ष दोनों ही आपकी दूरदर्शिता और समझदारी के कायल होंगे और आपकी समझदारी की प्रतिक्रिया के परिणाम सबको देखने मिलेंगे। दोनों ही पक्ष आपकी तारीफ करेंगे इसीलिए ऐसे समय पर अपनी शक्ति का व्यर्थ प्रदर्शन करने के स्थान पर समझदारी से काम लेना चाहिए।
1: बारात के लौटते समय भी माइकल जी हंसी मजाक का ही माहौल होता है
0: जी,
1: और क्योंकि परिवार के एक नए सदस्य के रूप में वधू साथ होती है। और आशा है हमारे युवा साथियों ने हमारी आज की बातचीत को भी ध्यानपूर्वक सुना होगा और वे उस पर अमल भी करेंगे।

मित्रों, अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा विकास, जिससे प्रस्तुत कर रहे थे स्वर्गीय माइकल होजेस जी, और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वास मुंबई की।

0: मित्रों, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वास मुंबई की। साथियों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार, जिससे प्रस्तुत कर रही है आस्था उपमन्यु, और इनकी वार्ता का शीर्षक है इतिहास संचार माध्यमों के विस्तार का, और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
1: युग संचार के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है वार्ता इतिहास संचार माध्यमों की विस्तार का। इसके लेखक हैं श्री कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता हैं आस्था उपमन्यु। वे थोड़ी बड़ी उम्र के व्यक्ति थे, विद्वान थे, उन्होंने वर्षों अध्यापन कार्य किया था। अपने मित्र के हाथों मोबाइल देखकर वे बोले, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम ऐसी युग सीमा पर आकर खड़े हो जाएंगे जिसमें संचार क्रांति शिखर छू रही होगी। मैं देख रहा हूं मेरे देश के 100 में से 40 हाथों में आज मोबाइल है। ये संचार क्रांति का लगातार विस्तार ही तो है। फिर हर दिन संचार क्षेत्र में कुछ नया घटित हो रहा है, बहुत कुछ नया आता जा रहा है। संचार क्षेत्र में अब बहुत कुछ है कि जिसका उपयोग है, और वो उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। वे फिर बोले, भला ये बात कैसे भूली जा सकती है कि हमें सूचना चाहिए, समाचार चाहिए, ज्ञान चाहिए, विज्ञान चाहिए। विश्व में जो कुछ भी हो रहा है, घट रहा है, उसका विवरण, उसकी जानकारी चाहिए। इस संसार में जो कुछ नया हो रहा है उस विषयक जानकारी भी चाहिए। ये सब कुछ ये संचार माध्यम आपको दे देंगे। विशेष दिशाएं दी हैं, हाँ ये सब ठीक है, लेकिन संचार माध्यमों के विस्तार का अपना एक विशेष इतिहास भी है जिसे जानना जरूरी है। कभी दो ऋषियों के बीच संवाद हुआ था। एक ने पूछा, सूर्य, चंद्र, तारे और अग्नि आदि की अनुपस्थिति में तुम किसके सहारे अपने अस्तित्व की रक्षा करोगे? तो उत्तर मिला, ध्वनि के माध्यम से। हम अपने अस्तित्व की रक्षा करेंगे, अपने होने का आभास देंगे, बताएंगे कि हम हैं, अपने से, अपनों से संवाद करेंगे। क्या ये प्राचीन युग का संवाद संचार माध्यम का ही एक रूप

तब मैं एक आदिवासी अंचल के जहां एक तरह से लोग पुराना कुछ कुछ आदम सा जीवन जीने को विवश थे, उसी पर्वतीय घाटी में एक छोटी विरल सी बस्ती थी, जहां कुछ दूर दूर थोड़ी बहुत झोपड़ियां थीं, समीप ही एक भली सी नदी बहती थी। नदी के किनारे ग्रेनाइट पत्थर वाली एक स्याह चट्टान थी। सूर्य की धूप में उसका स्याह रंग और भी गहरा नजर आ रहा था। वो चट्टान अपनी स्थिति में बहुत ही सुंदर लग रही थी। वहां के एक निवासी से मैंने पूछा, ग्रेनाइट की ऐसी सुंदर चट्टान मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इस पर उस भाई का उत्तर था कि ये चट्टान हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हाँ, ये सही है, ये इस धरती की शोभा है, लेकिन इस चट्टान में प्राकृतिक रूप से एक गूंज है। आप देख रहे हैं कि इस चट्टान के आसपास कुछ पत्थर हैं। इन गोल पत्थरों से जब हल्के से इस चट्टान पर प्रहार किया जाता है तो हर प्रहार पर इससे तरह तरह की ध्वनियां निकलने लगती हैं। और उस भाई ने चट्टान पर पत्थर से प्रहार किया और उससे गूंज निकलने लगी। वो गूंज दूर तक सुनाई देने लगी थी। इस पर फिर उस व्यक्ति ने कहा, यहां तक कि कोई दो कोस यानी 5-6 किलोमीटर दूर तक, अर्थात जहां तक इस गांव की झोपड़ियां बसी है, इसकी गूंज सुनाई देती है। जब भी इस चट्टान पर प्रहार से स्वर गूंजते हैं, लोग सजग हो जाते हैं, लोग उसे चेतावनी के रूप में लेते हैं। और मुझे आश्चर्य हुआ, उस चट्टान से अपनी गूंज के जवाब में दूर दूर से इंसानी आवाजें गूंजने लगी थी, और मुझे लगा ये इस गांव का अपना एक संचार माध्यम है। उस व्यक्ति ने यह भी बताया कि इस चट्टान में ये गूंज इसलिए है कि ये अंदर से खोखली है, वही इसकी गूंज का कारण है। और ये सुनकर मुझे याद आया, जिस तरह तालवाद्यों सूखे खोखले बड़े बड़े पेड़ों के तनों पर प्रहार करते हैं, तो उनसे भी इसी तरह की स्वर तरंगें निकलती हैं। उसके बाद उन्हीं महाशय ने फिर कहा, इसी तरह बात वर्षों पुरानी है। मेरे अपने एक मित्र हैं, पुरातत्व और इतिहास में उनकी अपनी विशेष रुचि है, पुरातत्विक खोज में भी उनकी विशेष प्रतिष्ठा है, और वे लेखक भी हैं। उनके कुछ ऐतिहासिक रिसर्च पेपर भी प्रकाशित हो चुके हैं। एक बार मैं उनसे वहां मिला जहां उनका पुरातत्व संग्रहालय है। उनके दल ने एक प्राचीन नगर से कुछ दूरी पर स्थित एक टीले की खुदाई की थी। उसमें निकली कुछ वस्तुओं को उन्होंने मुझे बताया था। उसमें एक सुंदर बर्तन था जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर छोटी छोटी खिलौने सी आकृतियां बनी थी। उन्होंने मुझे बताया कि हम अभी भी खोज रहे हैं, आखिर ये है क्या। मैंने कुछ सूत्र खोजे, कहीं ये बर्तन पर अंकित आकृतियां किसी गुप्त संदेश को भेजने के काम में तो नहीं आती थी, कहीं ये खिलौना आकृतियां कोई चित्रलिपि तो नहीं है। देखो इस पर अंकित इस खिलौने की आकृति, ये मनुष्य के सिर वाला वृषभ, इसी तरह इस आड़ी टेढ़ी रेखा के बीच फंसा उल्लू नुमा पक्षी, एक मनुष्य आकृति के हाथ में बाज है, है न सभी आकृतियां विचित्र। खैर, अभी हम सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं, पर लगता है ये एक विशेष चित्रलिपि में भेजा कोई प्राचीन संदेश है। पर हाँ, मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि जिस टीले की हमने खुदाई की थी वो एक प्राचीन ध्वंस राजमहल ही था। खुदाई में हमें उसके चारों ओर एक परकोटा था, वो भी मिला। संभवतः वह ईसा के 500 वर्ष पूर्व का निश्चित ही रहा होगा। हो सकता है कल जाकर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस तरह के चित्रांकित बर्तन राजा के अधीनस्थों को गुप्त संदेश भेजे जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हों। अगर हम इसे बहुत गौर से देखें तो प्राचीन मिस्र देशों में जिस तरह की चित्रलिपि प्रचलित थी, उससे ये बहुत कुछ मिलती जुलती और कुछ कुछ समान धर्मासी है। मित्र ने फिर कहा, प्राचीन युग में कुछ ऐसे ही विचित्र संचार माध्यम रहे होंगे जिनके माध्यम से इधर से उधर संदेश भेजे लाए जाते होंगे। कई जगह ऐसी कुछ विचित्र परंपराओं का पता चला है जिनका पुराने जमाने में इस्तेमाल किया जाता था। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आज के विद्वान भी ये बात स्वीकार करते हैं कि प्राचीन ऐतिहासिक युग में ही नहीं बल्कि प्राग ऐतिहासिक युग से ही मानव की ये आकांक्षा रही है कि संचार के नए से नए माध्यम, नए से नए साधनों का विकास किया जाए और उनका सही रूप में इस्तेमाल भी किया जाए। इसलिए निश्चित रूप से उस समय भी संचार की विभिन्न विधाएं खोजी गई।

0: होंगी। अगर हम आदिम युग के मनुष्यों द्वारा पाषाणी गुफाओं में जहां वे अपने समय में निवास करते थे, उन्होंने वहां जो रेखाचित्र बनाए थे वे आज भी मिलते हैं। उन्हें देखकर स्पष्ट लगता है उन्होंने वे शिलाचित्र इसलिए बनाए कि उनमें उनका जीवन, उनकी जीवन शैली स्पष्ट नजर आए। क्या आप इसे उनका चित्रांकित इतिहास नहीं कहेंगे? सिर्फ उस आदिम युग की गुफाओं की अगर हम बात न करें तो भारत के कई भूभागों में हमें पहाड़ी कंदराओं में ऐसे शैलचित्र देखने को मिल ही जाएंगे। उन शैलचित्रों को देखकर हम उन भूभागों की प्राचीन जो शैली रही होगी या प्राचीन जो संस्कृति रही होगी उसको बहुत ही आसानी से पहचान सकेंगे। और इन शैलचित्रों में कई तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीप लाल घाटी के शैलचित्र हैं तथा होशंगाबाद मध्य प्रदेश के समीप भीमबेटका, जहां कई कई गुफाओं में आदिम मानव की ये महत्वपूर्ण चित्रकला देखने को मिल जाएगी। साथियों, यही नहीं, वे और भी कई जगह हैं और इन शैलचित्रों से जाहिर सी बात है एक तरह से हमें सूचना ही मिलती है कि उस समय का इतिहास क्या रहा होगा, उस समय की संस्कृति क्या रही होगी। और जाते जाते अंत में उन मित्र महोदय ने मुझे ये भी कहा कि मैं तुम्हें एक खास बात बताना भूल गया। अभी कुछ ही वर्षों पहले मैं उस स्फटिक शिला वाले गांव में गया था। तब वो गूंजती और स्वर देती स्फटिक शिला वहां नहीं थी। गांव का रूप भी काफी बदल गया था। मैंने वहीं उस ध्वंस शिला के पास खड़े वहां के एक निवासी से उस शिला के बारे में पूछा तो बड़ी ही बेध्यानी में उसने कहा कि अब उस शिला की यहां कोई जरूरत नहीं। मैं अवाक सा उसे देखता रहा और ये कहते ही उसकी जेब का मोबाइल बजा और मोबाइल से बतियाता हुआ वो मुझसे दूर चला गया। उसे दूर जाते हुए देखकर मैं सोचने लगा और मुझे लगा युग बदल गया है और युग संचार की विधियां भी बदल गई हैं।
1: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम युग संचार, जिसे प्रस्तुत कर रही थी आस्था उपमन्यु, और इनकी वार्ता का शीर्षक था इतिहास संचार माध्यमों के विस्तार का, और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मन दर्पण और अंत में पर्यावरण। तो आइए साथियों, समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता जिसका शीर्षक है धर्म और नारी की मुक्ति, और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं फादर हरमन बंडोड SVD।

सर्वधर्म विचार के तहत लीजिए सुनते हैं वार्ता जिसका शीर्षक है धर्म और नारी की मुक्ति। प्रिय श्रोता मित्रों नमस्कार। नारी की मुक्ति के यथार्थ को झुठलाने के लिए सबसे ज्यादा धर्म और अध्यात्म का इस्तेमाल किया जाता है। मामला चाहे स्त्री का हो या दलित का या हाशिए पर की अन्य अस्मिताओं का, यहाँ कहा जाता है कि काशी का राजा डोम था। उत्तर प्रदेश में ही विंध्यवासिनी देवी की पूजा की जाती है। दरअसल जब से स्त्री की सत्ता छीनी गई तब से उसकी पूजा की जाने लगी। पूर्वोत्तर भारत में आज भी कई जगहों पर मातृसत्तात्मक समाज है, लेकिन अन्य पूरे भारत का समाज पितृसत्तात्मक है। यहाँ आज भी कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और खा पंचायतों द्वारा प्रेम करने पर स्त्रियों की जान ले ली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही समाज दुर्गा की भी पूजा करता है। यथार्थ यह है कि स्त्रियों की स्थिति यहाँ अच्छी नहीं है। स्त्री सशक्तिकरण पर विचार करते हुए हमें पितृसत्तात्मक समाज की स्थापना पर गौर करना चाहिए। यूनानी समाज में एडिपस की जीत पितृसत्तात्मक समाज की जीत मानी जाती है। इस समय स्त्री पर ज्यादा जोर इसलिए दिया जाता रहा है कि पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था के सामने कई तरह की अस्मिताएं आ खड़ी हुई है। अस्मिताओं के बटे समाज में जातियों धर्मों आदि के टुकड़े करने पड़ेंगे। भारतीय समाज की संरचना यूरोप से भिन्न है, इसलिए यहाँ यूरोप की तरह सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच समाज को बांटकर नहीं देखा जा सकता। दलित कहाँ जाएंगे, आदिवासी कहाँ जाएंगे, हाशिए पर की कई और अस्मिताएं कहाँ जाएगी। लिंग भेद भारत का अकेला मसला नहीं है, इसके साथ और भी कई गंभीर मुद्दे हैं। यह सच है कि भारत की स्त्रियां आज घर से बाहर निकल रही है, लेकिन वह शिकार भी हो रही है। रॉबर्ट जेनसन की बहुत चर्चित किताब गेटिंग ऑफ पोर्नोग्राफी एंड दी एंड ऑफ मैस्कुलिनिटी में उन्होंने माना है कि भूमंडलीकरण के बाद विज्ञापन बाजार और नव साम्राज्यवादी आचरण के पीछे सबसे पहला मुखौटा स्त्री का है। रॉबर्ट जेनसन बाजारवादी नारीवाद को ग्लोबल पोर्न इंडस्ट्री का ही विस्तार मानते हैं। स्त्री मुक्त आंदोलन के इस रूप में 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों तक चलने वाले उस स्त्री स्वाधीनता संग्राम के साथ जोड़ पाने में कई बार मुश्किल होती है, जिसमें स्त्री ने समाज के दलित और वंचित तबकों की मुक्ति का सपना देखा था। इस संदर्भ में देखें तो हमारे सामने क्लारा जेटकिन, क्रुप्सकाया, लेनिन की बीवी, एरन गुल, सिमोन द बाउवार, कैट मिलन और भारत में कस्तूरबा से लेकर बहुत सारी महिलाएं थीं, और आज भी मेधा पाटकर, वंदना शिवा, अरुंधति राय, सुनीता नारायण, आंग सान सूची, इरोम शर्मिला आदि ऐसी महिलाएं हैं जो आज की सत्ता के विरुद्ध समूचे मानवीय समाज की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही हैं। इन्होंने कभी लिंग भेद का नारा नहीं दिया, इनका कोई गॉडफादर नहीं है। दरअसल भारत में स्त्री मुक्ति का सवाल हाशिए पर के कई अन्य समूहों की मुक्ति से जुड़ा हुआ है। स्त्री को मुक्त करते हुए हमें पूरे समाज को मुक्त करना होगा। यह सच है कि यह शताब्दियों से सबसे उत्पीड़ित अस्मिता रही है, और जब तक यह ऐसी अन्य अस्मिताओं को साथ नहीं लेती तब तक वह बाजार और अन्य पितृसत्तात्मक सत्ता का लाभ लेकर भले ही लाभ उठाए, यह एक खास वर्ग का ही सत्तारोहण होगा, स्त्री की मुक्ति का नहीं। इस बात को जनता समझ चुकी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विजयलक्ष्मी पंडित से लेकर इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर और सोनिया गांधी तक, जयललिता से लेकर मायावती तक और भंडार नायके से लेकर शेख हसीना वादी तक सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाली महिलाएं स्त्री नहीं बल्कि पुरुष सत्ता की ही प्रतीक रही है, और यही बात संस्कृति और साहित्य में भी लागू होती है। ये गॉडफादर्स की सत्ताएं थी और है, माँ की सत्ता की प्रतिष्ठा कभी नहीं हुई। फासीवाद के बाद सबसे ज्यादा दमन फॉकलैंड वार में मार्गरेट थैचर ने किया। इंदिरा गांधी ने भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार इमरजेंसी लागू किया और लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी। बेगम खलीदा जिया ने
बांग्लादेश में फौजी शासन लागू किया। मित्रों, आज हमारे लिए लिंग भेद की निगाह से सत्ता को देखना कभी सुकूनदेह नहीं है, क्योंकि मान्यताओं का मूल्यांकन मान्य रखता है। मित्रों, यह भारत ही है जहां अर्धनारीश्वर की परिकल्पना की गई थी, जिसे पश्चिम ने 21वीं शताब्दी में जाकर समझा। भारत में स्त्रीवादी आंदोलन ने अपनी एक नई और अलग पहचान बनाई है। पश्चिम के नारीवादी आंदोलन की तरह यह पुरुष विरोधी नहीं है। दरअसल नारी मुक्ति का विद्रोह उस व्यवस्था का विद्रोह है जो नारी विकास की राह का रोड़ा है, और विडम्बना यह है पुरुष ही भारतीय स्त्री का सबसे घनिष्ठ मित्र है तो शोषक भी। बाल विवाह, सती प्रथा, शिक्षा की उपेक्षा, देवदासी प्रथा जैसी परंपराओं के विरोध में नारी स्वर को पुरुष समाज के एक बड़े वर्ग ने अपना समर्थन दिया। परिणामतः हालात बेहतर हुए। दिल्ली समूह बलात्कार कांड से देशव्यापी आंदोलन ने समाज को एक नई बहस छेड़ने के लिए प्रेरित किया है। परिणामतः समाज की कई ऐसी परंपराएं भी सामने आई जो नारी को गुलाम और निष्कर्ष जीवन जीने को विवश करती है। बिहार में सामंती युग में सद्यह ब्याहता बहू को पहले गांव के सामंत के यहाँ जाना होता था। सामंत उसका जी भरकर भोग करता था, तभी नववधु अपने पति के पास जाती थी। जाहिर है यह शोषण सिर्फ स्त्री का नहीं बल्कि दास रूपी पुरुष समाज का शोषण था। इस विषय ने भी महिला आंदोलन को हवा दी, जिसे पुरुष वर्ग का पूर्ण समर्थन मिला। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महिलाओं को राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिली, किंतु उनके सामाजिक बंधन यथावत ही रहे। विडम्बना तो यह है कि पुरुष स्त्री को एक बार आदरणीय मान भी ले तो फिर स्त्री उसके समकक्ष पशुतुल्य ही होती है, जिसे जब चाह उत्पीड़ित कर दिया। और यही वो उन्माद है जो फासिस्ट और सांप्रदायिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका ही विभत्स चेहरा सांप्रदायिक दंगों में अधिक दिखाई देता है। सर्वप्रथम स्त्री ही उत्पीड़न का शिकार बनती है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगों के दौरान स्त्री वर्ग को भी धर्म और जाति के नाम पर बांट दिया जाता है। और वह यह समय होता है जब स्त्री का नारी मुक्ति आंदोलन धर्म और जाति के नीचे दबकर रहता है। पर धर्म स्त्री का शील भंग करना उन्मादियों को पौरुष का प्रतीक लगता है। जब नारीवादी आंदोलन नारी चेतना आंदोलन का रूप ले चुका है, आज नारीवादी आंदोलन नारी चेतना आंदोलन का रूप ले चुका है और वह काफी आगे भी निकल चुका है। आज नारी की उग्रता, प्रतिस्पर्धा, स्वतंत्रता, हिंसक व्यवहार को शस्त्र बनाकर सफलता हासिल करने और पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रही है। यही शक्ति पर आधारित नारीवाद कहलाता है। इतिहास गवाह है कि भिन्न भिन्न देशों की महिलाओं को जब भी मौका मिला, उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा युद्ध क्षेत्र में अपनी योग्यता का प्रमाण दिया है। इतना ही नहीं, आधुनिक नारी ने समाज में नई अर्थव्यवस्था में न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि अपने सम्मान और अधिकारों के प्रति सजग हुई। इतना ही नहीं, वर्तमान समय में स्त्री स्वच्छंद और उन्मुक्त भी हुई है। अब वह सेक्स पर अपना अधिकार समझती है। आज उसकी इच्छा सर्वोपरि है। सत्ता व धन हासिल करना अब उसका भी लक्ष्य बन चुका है। उसके व्यवहार में हिंसा व आक्रामकता का समावेश हो चुका है। नारी मुक्ति आंदोलन ने महिलाओं की सोच को भी परिवर्तित किया है। अब नारी सशक्तिकरण का मूल्यांकन स्त्री पुरुष के बीच सिर्फ संतुलन कायम करना नहीं बल्कि समान भागीदारी पाना व शोषण व दकियानुसी बंधनों से मुक्त होना है। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था धर्म और नारी की मुक्ति, और इसे प्रस्तुत कर रहे थे फादर हरमन बंडोड SVD। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं सभी नारियों के लिए विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, आप सभी सही समझ रहे हैं कि मैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए सहेलियों, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है नारी की सहभागिता, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत सुनिए वार्ता नारी की सहभागिता। साथियों, लगभग 100 वर्ष पहले तक नारी की भागीदारी बिल्कुल नहीं के बराबर थी, परंतु आज 21वीं सदी में नारी की भागीदारी, उसकी सहभागिता क्रमशः बढ़ती चली जा रही है। देश की प्रगति, सामाजिक विकास, यूं कहें पारिवारिक उन्नति आदि में नारी की सहभागिता बढ़ गई है। पारिवारिक देखभाल तो शुरू से ही उसके अंतर्गत था, पर देश और समाज के प्रति भी उसकी भागीदारी बढ़ी है। नारी हर जगह एवं हर कार्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। वह अपनी जिम्मेदारी एवं कर्तव्य बखूबी निभा रही है। हम आज ये नहीं कह सकते कि केवल पुरुषों के बलबूते ही समाज या देश उन्नति की राह पर है, बल्कि देश की महिलाएं भी अपनी भागीदारी का निर्वहन कर रही हैं। और सच कहें तो नारी के बिना, नारी शक्ति के बिना देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहुत साल पहले तक नारियों के लिए प्रगति के द्वार लगभग बंद थे, पर समय बदलते ही माजरा हमारे सामने कुछ और है। सभी स्त्रियां, सभी महिलाएं आज विकास में बराबर की सहभागी हैं। हर उपलब्धि की वह हकदार है। इसके लिए हर नारी का सिर ऊंचा होना चाहिए। आज देखिए, देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिलाओं की कमी नहीं है। भारत रत्न सम्मान पाकर महिलाओं ने यह दिखा दिया है कि वे कहीं भी कम नहीं हैं, न ही उन्हें कमतर आंका जाना चाहिए। हर लड़ाई, हर संघर्ष में नारियां बराबर खड़ी रहती हैं। यही वजह है दोस्तों कि नारियां सर्वोच्च सम्मान से नवाजी गई हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर, मदर तेरेसा, एमएस सुब्बालक्ष्मी, इंदिरा गांधी, अरुणा आसफ अली आज सा सम्मान पूरी दुनिया में याद की जाती हैं। उनके काम एवं नाम की वजह पूरी दुनिया इन्हें जानती है और पहचानती है। कुछ वर्ष पहले जब एक पत्रिका ने भारत के सबसे चर्चित महिलाओं की सूची निकाली तो उसमें ज्यादातर उपलब्धिवान महिलाएं शामिल थीं। यह महिलाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए बलिदान, त्याग, संघर्ष, तपस्या और योगदान पर आधारित था, जिस पर महिला होने का गर्व किया जा सकता है। चाहे वह कल्पना चावला हो, महादेवी वर्मा हो, महाश्वेता देवी हो, एनी बेसेंट हो या सिस्टर निवेदिता, इन तमाम महिलाओं ने भारत के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। साथियों, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नीति स्तर पर विकास मुख्य मुद्दा है, लेकिन समानता के साथ, बराबरी के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर स्त्री पुरुष एकजुटता के साथ विकास के पथ पर अग्रसर हों, देश समाज को नई दिशा दे, यह आज की मांग है। मांग तो है ही, यह एक नया संकल्प भी है। हर कदम पर महिलाएं पुरुषों के साथ हैं। देश के सर्वोच्च पद पर प्रतिभा पाटिल जैसी राष्ट्रपति हैं, सोनिया गांधी जैसी दिशा निर्देशक एवं ऊर्जावान महिला हैं, मीरा कुमार जैसी प्रथम महिला स्पीकर हैं। इन महिलाओं के अलावा अनेक ऐसी ऊर्जावान एवं शक्तिशाली महिला हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं एवं देश की उन्नति में अपना सहयोग दे रही हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में, फिल्मों में, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक आदि सभी क्षेत्रों में अपना सर्वस्व स्थापित कर चुकी हैं। महिलाओं के बगैर किसी भी क्षेत्र में विकास असंभव है। गांव की बात करें या शहर की, प्रत्येक जगह में महिलाओं की सहभागिता बराबर बढ़ी है, बरकरार है और बढ़ती ही जा रही है। साथियों, जन भागीदारी के साथ सेवा एवं आर्थिक प्रगति के साथ मानव विकास एवं सशक्तिकरण मुख्य बिंदु हैं, जहां महिलाएं अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा लगा रही हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा साथियों कि अन्य देशों की तुलना में भारत में सर्वाधिक महिलाएं व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित हैं। भारत में महिलाएं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, राजनेता हैं, वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर हैं, कुशल कलाकार हैं और गायक भी हैं। दुनिया के किसी भी देश की तुलना में भारत की महिलाएं अधिक कामकाजी भी हैं और बेहतर कामकाजी हैं। भारत की महिलाएं बाहर के काम के अलावा घर के कामों, रिश्तेदारी, सामाजिक कामों आदि सभी में माहिर हैं। घर के कामों में बाहर के कामों में बेहतर ढंग से तालमेल बिठाकर चलती हैं। साथ ही
एक संतुलन बनाकर दोनों जगह का काम भली भांति संभालती हैं। इसलिए आज महिलाएं जहां विकास में भागीदार हैं, वहीं हर उपलब्धि में हकदार भी हैं। उन्हें भी बहुत सारे हक मिलना चाहिए ताकि उसका आत्मसम्मान बना रहे और बढ़े। उसे नीचा दिखाकर उसे मात्र उपभोग की वस्तु न माना जाए, इसके लिए सरकार को पुरजोर कोशिश करनी होगी। उसके आत्मसम्मान का भरपूर ध्यान रखना होगा। इसके लिए कुछ नए विचार रखने होंगे, नए नियम, नए कानून बनाने होंगे। विधि आयोग को आग्रह किया जाए कि महिला के लिए एक समान नियम बनाए। इसमें संपत्ति पर समान अधिकार, बच्चे पर पालक होने का समान अधिकार, तलाक जैसे कानून में समान व्यवहार, बहुविवाह पर रोक संबंधी प्रावधान नारी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाए। कानूनी तरीके से महिला को अधिकार एवं शक्ति देना, उसे बेहतर जीवन के लिए प्रेरित करना है। स्वास्थ्य एवं आर्थिक दृष्टि से नारी को अधिकार देना, उसे शक्तिशाली बनाना है, और यह जरूरी भी है। व्यवसायिक शिक्षा में महिलाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रावधान हो, ताकि महिला आर्थिक रूप से मजबूत होकर देश को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी और अच्छी तरह से निभा सके। आर्थिक रूप से सुदृढ़ महिला हर तरह से सुदृढ़ होती है, इसलिए स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए व्यवसायिक शिक्षा आवश्यकता की मांग है। ग्रामीण एवं नगरीय स्तर पर महिलाओं की शिक्षा, खासकर व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाए। इससे जन जन में व्यवसायिक आत्मबल बढ़ेगा और महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथियों, इसका परिणाम भी बेहतर होगा। सत्ता के विकेंद्रीकरण या सत्ता में महिलाओं को उनकी वाजिब भागीदारी देने संबंधी संविधान संशोधनों के प्रभाव पर हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया। इसके अनुसार यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है एवं महिलाओं को आरक्षण से उसमें आत्मविश्वास का संचार हुआ है। आरक्षण के परिणाम भी बेहतर हैं। महिलाएं ज्यादा ताकतवर हुई हैं। राजनीति में उसका आना, सत्ता का संचालन करना, बेहिचक अपनी बात को रखना, महिलाओं को आगे लाना निश्चित ही महिलाओं के सशक्तिकरण का परिणाम है। वह आज अपनी योजना में कामयाब हुई है। साथियों, आदिवासी महिलाओं, पिछड़ी महिलाओं की चर्चा करें तो आज वह भी पीछे नहीं है। भारत की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार इसका उदाहरण है। इस तरह देखा जाए तो महिला की सहभागिता देश के विकास में मजबूती के साथ अपनी पकड़ बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है, और यही है आज की महिला के विकास की कहानी, उसकी शक्तिशाली सशक्तिकरण और उसकी सहभागिता।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था नारी की सहभागिता, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। सहेलियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी आरवीए कलाकार के द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक लगी होगी और आप इन सभी बातों का लाभ भी लेंगी। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव एवं रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। आइए मित्रों, अब सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है मन हो सुरभित तो सुरभित जीवन। इस वार्ता के लेखक श्री कृष्ण कांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता है आस्था उपमन्यु।

मन दर्पण के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है वार्ता मन हो सुरभित तो सुरभित जीवन। इसके लेखक हैं श्री कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता हैं आस्था उपमन्यु। मित्रों, अपनी बात कहने के पहले एक प्राचीन प्रार्थना का स्मरण हो आता है जिसका बहुत ही सुंदर अर्थ है। हे दिव्य तेजोमय प्रभु, आप ही वास्तविक सत्यमार्ग के ज्ञाता तथा प्रदर्शक हैं। आप हमें उस सन्मार्ग का प्रदर्शन दीजिए। भगवान, हमारी सारी कुटिलता तथा अपूर्णता को हमसे दूर कीजिए। इसके लिए हम बार बार आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रार्थना के साथ एक सुंदर भाव विचार भी है जो हमारे लिए पथ दर्शन का कार्य करता है। साथियों, मनुष्य एक अच्छा और भला जीवन जिए वैसा ही जैसे फूल जिसके पास की अपनी गंध सुगंध होती है और उसकी वो सुबास चारों ओर व्याप्ती है, दूसरों को आनंदित करती है। वह गंध सुगंध सबके लिए, हर प्राणी के लिए होती है। वह सर्वव्यापी है, वो किसी के प्रति भी पक्षपात नहीं करती, वो सभी के लिए समर्पित होती है। मित्रों, एक उदाहरण है मेरे पास एक पाश्चात्य विद्वान के अद्भुत कथन का। उनका वो कथन हमें एक सीख देता है, एक मार्ग देता है। उन्होंने कहा था कि अच्छी से अच्छी चीज जो आप अपने शत्रु को दे सकते हैं वो है क्षमा, विरोधी को सहिष्णुता, मित्र को अपना हृदय, अपने बच्चे को अच्छा उदाहरण, अपने पिता को इज्जत, माँ को अपना ऐसा आचरण कि वो आप पर गर्व कर सके, और अपने आप को आत्मसम्मान और मनुष्य मात्र को उदारता। जी हाँ, जो व्यक्ति अपने जीवन को ये रूप देता है, इन गुणों को अपने जीवन में उतारता है, निश्चित ही उसका जीवन सुरभित होगा। वो इससे स्वयं ही सार्थकता पा जाएगा। इससे उसका मन दर्पण इतनी उज्ज्वलता पा जाएगा जो दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाएगी। साथियों, लोग इसे ही तो जीवन की धन्यता मानते हैं। इस संदर्भ में मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि बात कुछ समय पहले की है कि मैंने एक भले चिंतक के विचार जाने और पढ़े थे। उन्हें पढ़कर अच्छा लगा था। वे विचार भली दिशा की ओर संकेत देते से लगते थे और उन्हें पढ़कर ये भी लगा था कि आज ऐसे ही सद्विचारों की, भले विचारों की समाज को आवश्यकता है, जरूरत है। उन चिंतक ने अपने विचार देते हुए कुछ यूं कहा था, जिंदगी एक किताब है जिसके हर पृष्ठ पर हमें नई नई बातें लिखनी होती हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं उस पृष्ठ पर अपनी अच्छी बातें ही लिखते हैं। इस तरह वे जिंदगी की हर सुबह हर शाम को सुंदर बना लेते हैं। एक भली उक्ति भी है, उसमें एक सत्य निहित है और वो उक्ति कुछ यूं है कि यदि मनुष्य संपत्ति खो बैठे तो समझिए कुछ नहीं गया, वो तो हाथ का मैल है, उसे फिर प्राप्त किया जा सकता है। यदि मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ा तो समझो कुछ गया, क्योंकि उसका संभलना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन साथियों, अगर मनुष्य का चरित्र गया तो समझिए मनुष्य ने अपना सब कुछ खो दिया। यही चिंतन सदमनुष्यों की दी गई उजली राह है। इसे मनुष्य को हर समय ध्यान में रखना चाहिए। सुंदर चरित्र उसी का होता है जिसका मन दर्पण निर्मल हो। साथियों, ये कुछ बातें हैं जो मनुष्य को अच्छाई की दिशा देती हैं। जैसा कि पहले कहा गया, जिंदगी एक किताब है। अगर हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारा चरित्र, इन सभी में उज्ज्वलता है, वे अच्छे हैं, तो हम निश्चित ही जिंदगी की किताब में जो भी कुछ दर्ज करेंगे, जो भी लिखेंगे, वो उत्तम होगा। अगर हमारे व्यवहार बर्ताव में अच्छाई नहीं होगी, उज्ज्वलता नहीं होगी, तो जिंदगी की किताब में कहीं भी कोई अच्छाई दर्ज ही नहीं होगी और हम अपने जीवन को कैसे सुरभित बना पाएंगे? वो गंधहीन होकर ही रह जाएगा। आप हम सभी जानते हैं, और वो एक कहावत की तरह एक उक्ति भी है अपने आप में, यानी मनुष्य के अच्छे कर्म, अच्छी बातें ही उसके बाद स्मरण की जाती हैं। ऐसा तभी होता है जब उस व्यक्ति की जीवन किताब अच्छे कर्मों द्वारा लिखी गई हो। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी अच्छाइयों के बीच जी है।
कबीरदास जी ने कहा भी तो है, जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। सच है, समाज व्यक्ति को उसके कार्यों से, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, उसी से उसका मूल्यांकन करता है। इस बात को सदैव याद रखा जाना चाहिए। ये सही दिशा पाने के लिए बेहद जरूरी है, पर साथ ही ये भी सही है कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अच्छे काम को अंजाम देना सरल नहीं कठिन होता है। पर इसमें कितना सत्य है इसे भी परखा जाना चाहिए। साथियों, किसी ने खूब कहा है कि अच्छाइयां तो स्वयं ही प्रभु की ओर से इंसान को वरदान की तरह प्राप्त होती हैं। हमारे हृदय में सबके लिए प्रेम भाव हो, सबके लिए करुणा हो, स्नेह हो, हम में सबके लिए मैत्री भाव हो, हम में सेवा भाव हो, तो ये कोई कठिन काम नहीं है। अगर हम संकल्प सहित थोड़ा भी निश्चय कर लें कि हम अपने जीवन व्यवहार में इस भाव बोध का समावेश कर लें, तो ऐसा सब कुछ सहज हो जाएगा और फिर हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा। इस संदर्भ में कुछ लोगों का अपना अनुभव है। अच्छाइयां विकसित करने में प्रभु हर रूप में हमारी मदद करता है। इस बात को हम अपने मन में धारण कर लें, यानी हमें भले काम ही करने हैं, भली और अच्छी भाव बोध वाली जिंदगी गुजारना है, तब असंभव कुछ भी नहीं रहेगा। कहते भी तो है कि मन के जो अच्छे और भले संस्कार हैं, उनका लोप कभी नहीं होता। वर्षों पहले मैंने एक लघु कथा पढ़ी थी, नहीं याद कि वो किसकी थी, लेकिन उस कथा का मर्म आज भी याद है। एक संत अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। मार्ग में नदी आई, नदी तट सुंदर था। संत कुछ समय वहां विश्राम के लिए रुक गए। तभी उनके एक शिष्य के मन में जिज्ञासा जागृत हुई और उसने संत से प्रश्न किया, मैंने प्रेम भाव के विषय में जाना है, प्रेम अमर होता है, इसमें कितना सत्य है? इस तरह अच्छे गुण के विषय में भी कहा गया कि वे एक बार व्यक्ति के मन में पूरी तरह निर्मित हो जाने के बाद मिटते नहीं। क्या ये सही है कि विपरीत स्थिति में भी वे शेष रहते हैं? संत ने एक क्षण चिंतन किया और फिर वे उठे, नदी की धारा में पड़े पत्थर को उठाया और एक दूसरे पत्थर पर उसे रगड़ा। उससे चिंगारियां फूट पड़ी और संत ने शिष्य से यही कहा, देख रहे हो इन चिंगारियों को, युगों युगों से यह पत्थर पानी में पड़ा था, लेकिन इस पत्थर में छिपी अग्नि आज भी उसमें मौजूद है। इसी तरह मनुष्य मन में सद्गुणों के, प्रेम भाव के जो बीज होते हैं, भले ही वे सुप्र हों, लेकिन रहते अवश्य हैं। आप अगर उन्हें जागृत करने का प्रयत्न करेंगे तो वे जागृत होकर लहराने लगेंगे। ये भी सत्य है कि हम अपने अंतर्मन में सद्गुणों को, सद्भावनाओं को जागृत करने का प्रयत्न करेंगे तो वो प्रभु, वो दीन बंधु निश्चित ही हमारी मदद करेगा। बस हमें सोचना भर है कि हमें एक भली जिंदगी गुजारनी है, अपने आसपास के सारे वातावरण को सुंदर बनाना है, उसे सुरभित रखना है, तो ये सब कुछ संभव है। साथियों, जो व्यक्ति अपने मन को, अपने जीवन को भला रूप देना चाहते हैं, पहले वे अपने मन में प्रेम और मैत्री भाव जागृत करें। साथ ही जो दुखी हैं, जिन्हें सेवा की, स्नेह की, प्रेम की आवश्यकता है, उन्हें हम ये सब कुछ दें। हम निरंतर सोचें हमारे कारण किसी को कष्ट न हो, हमारे हर काम से अच्छाई का प्रसार हो। सोचिए कि इन बातों का अनुसरण करना कहाँ कठिन है। साथियों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था मन हो सुरभित तो सुरभित जीवन। इस वार्ता के लेखक थे श्री कृष्ण कांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता थी आस्था उपमन्यु। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप सभी को इन जानकारी से कुछ लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों नमस्कार, पर्यावरण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर बात करेंगे, मेरा ये विश्वास है कि आप सभी को उस विषय को लेकर बहुत प्रेम होगा, बहुत रहस्यमय आकर्षण होगा। और उस जगह का नाम है, उस स्थान का नाम है हिमालय। जी हाँ साथियों, हिमालय को लेकर हमेशा से यही कहा जाता रहा है कि ये भारत का गौरव है, भारत देश का मुकुट है। और भारत की जो महान ऋषि संपदा हम कह लें, धर्म संपदा कह लें, वन्य संपदा कह लें, इन सभी का उद्गम कहीं न कहीं से हिमालय ही है। लेकिन वर्तमान में पर्यावरण और हिमालय, इन दोनों को मिलाकर बात करें, तब जरूरत आन पड़ी है कि हिमालय के पर्यावरण को हम बचाएं। हिमालय के पर्यावरण को सबसे पहली बात है कि हम समझें। तो साथियों, हम दो भागों में हिमालय को लेकर बात करेंगे और ये लाजमी भी है। हिमालय जैसा इतना बड़ा विषय हम एक कार्यक्रम में कैसे ले सकते हैं? जी हाँ साथियों, तो आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है हिमालय का पर्यावरण और उसका संरक्षण, भाग एक। साथियों, सबसे पहला विषय जिसे लेकर हम आज बात करेंगे वो भारत के हिमालयी अंचलों के संबंध में है और यहाँ की खेती की विरासत को लेकर। साथियों, यदि हम पूरे भारतवर्ष को देखें तो यहाँ पर जितने भी विविध भौगोलिक भाग हैं, वहाँ पर खेती करने का एक विचित्र या फिर हम कह लें एक विरासत का एक तंत्र मौजूद होता है। और यदि आप गहराई में जाकर पड़ताल करेंगे तब आप उसे वैज्ञानिक रूप से भी सही पाएंगे। प्रकृति आपको बहुत सारे नियम कानून अपने आप समझाती हैं, बहुत सारे इशारे भी खुद ही देती हैं। साथियों, हम बात करेंगे इंडियन हिमालयन रीजन हेरिटेज एग्रीकल्चरल सिस्टम या फिर हिमालय के अंचलों की खेती की विरासत को लेकर। साथियों, इन दिनों ये चर्चा बहुत ज्यादा की जाती है कि अनाज का अधिक उत्पादन किया जाए। क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए खाद्यान्न को लेकर हम चर्चा करें और हमेशा से ये सोचें कि किस प्रकार से हम खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन साथियों, बढ़ती हुई उत्पादकता के विषय में कुछ दोयम तरीके से ही विचार किया जाता है, जिससे कि वो स्थानीय पारिस्थिति के साथ मेल बैठा सके। साथियों, किसी भी प्रकार की नीति का प्रचार करना जरूरी है और यदि हम सही तरीके से उसका प्रचार करें, उसकी पारिस्थिति के साथ मेल बैठा सकें, तभी उसके सही परिणाम हमें मिलते हैं। और साथियों, यदि यही नीति भारत के मैदानी इलाकों में कारगर होती है तब उसे हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में क्यों नहीं लागू किया जाता, ये सोचने के लिए हम पर दबाव डाला जाता है। लेकिन साथियों, इस प्रक्रिया में होता ये है कि शताब्दियों से हिमालय के पर्वतीय अंचलों में जो उत्पादन के पारंपरिक तंत्र विकसित हुए हैं, उन्हें अक्षम मानकर उनका अवमूल्यन कर दिया जाता है। इसके साथ ही हमें इस प्रकार के तथ्यों को सभी के साथ बांटने में बड़ा अच्छा लगता है कि इस प्रकार के तंत्र शताब्दियों में विकसित हुए हैं और इनका विकास बहुत धीमा और सृजनात्मक रहा है। साथ ही इस प्रकार के तंत्र हिमालय के पर्वतीय अंचलों की नाजुक मिजाज प्रकृति के साथ मिलकर यहाँ पर बहुत मुश्किल से उपलब्ध होने वाले जल और नमी के क्षेत्र की बातें करते हैं और उस मिट्टी की भी जिसे पानी आसानी से बहा ले जाता है। साथियों, हम ये तर्क स्वीकार करने से हिचकते हैं कि जो तंत्र शताब्दियों से चला आ रहा है, काम करने की स्थितियाँ जो कि लंबे समय से सही प्रतिफल देती आ रही हैं और खासकर यहाँ काम करने वाले व्यक्ति जो सैकड़ों वर्षों से अत्यधिक उत्पादन के साथ यहाँ टिके हुए हैं, ऐसे में पारिस्थिति के साथ साम्य बैठाने वाली तकनीक जिसे इन विशेष स्थितियों के लिए ही बनाया गया है और इस सोच के साथ बनाया गया है कि किसानों को

प्रशिक्षण दिया जाएगा और इन प्रशिक्षणों की तकनीक और उसका तरीका कठिन नहीं होगा। साथियों, इस प्रकार की पारंपरिक रूप से विकसित और सैकड़ों वर्षों से परीक्षित तकनीक का प्रमुख और सही कारण है प्रवाहित होता हुआ जल, जो कि ग्रीष्म ऋतु में संपूर्ण ढालों पर से और कृषि के क्षेत्रों से होकर गुजरता है। कई बार ये भी होता है कि किसी ढाल से प्रवाहित होने वाले जल का गुरुत्वाकर्षण बल उसे दूसरे ढाल पर ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसा होने के कारण कृषि को बिना किसी जीवाश्म ईंधन की मदद से जल मिलता है और ये प्रक्रिया इतनी सरल है साथियों कि इसे महिलाओं और यहाँ तक कि बच्चों को भी सिखाया जा सकता है और इसे वहाँ के भूदृश्य के आधार पर सही और आवश्यकतानुसार उपयोगी बनाया जा सकता है। इस प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग हम देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए क्षेत्रों में वास्तविक रूप से किया जा रहा है और यदि आप वहाँ के सामान्य लोगों के विलक्षण बुद्धि का उपयोग करते देखेंगे तो वाकई आश्चर्यचकित रह जाएंगे। साथियों, ये वाकई बहुत खेद का विषय है कि जितने भी आधुनिक वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा कभी भी इस प्रकार के उदाहरणों को संजीदा तरीके से नहीं लिया जाता है और ऊर्जा की बचत और संरक्षण से संबंधित अध्ययन को लेकर उसका उपयोग नहीं किया जाता। साथियों, पारंपरिक रूप से तैयार जैव उत्पादन तंत्र प्रकृति, प्राणी और मनुष्यों के साथ सही सामंजस्य के चलते ही तो आकार ले पाया है। इसलिए जब धान की किस्मों को चुनकर उगाया जाता है तब केवल अनाज के अलावा भी बाकी चारे को वही महत्व दिया जाता है जो कि चावल को दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे हिमालय में स्थित खेतीहर किसानों के घर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पालतू पशु हैं, उनके लिए भी चारा मुफ्त में मिल जाता है। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं साथियों जहां पर किसानों द्वारा अधिक अनाज देने वाली फसल का चुनाव किया जाता है और फिर उन्हें उनके जानवरों के भोजन के लिए अक्सर चारा बेचने वाले उन व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है जिसका संभावित यातायात करते समय अदृश्य कार्बन ज्वलन का उपयोग किया जाता है। साथियों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हिमालय के पर्यावरण को बिगाड़ने में वहाँ पर ईंधन के कारण जलने वाला जो धुआं है उसकी भूमिका बहुत ज्यादा है। यहीं पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जो पारंपरिक फसलें हैं, मान लिया कि उसमें आपको खाद्यान्न कम मिलता है लेकिन जो पशुओं का चारा उसमें बराबर की मात्रा में मिलता है उसे मैदानी इलाकों से पहाड़ों तक ले जाने के लिए जो वाहन लगते हैं, यातायात के लिए जिस प्रकार के जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है, क्या उससे हमारे पर्यावरण को ह्रास नहीं होता? इसलिए जो विरासत की पारंपरिक खेती है उसके कारण साथियों, इसी प्रकार जब हिमालय की घाटी और ढलान के क्षेत्र में अनेक प्रकार के बीजों के साथ काम किया गया तब वहां के सभी कृषकों के अनुभवों के आधार पर एक बात ये समझ में आई कि ऐसा करना अर्थात नमी के दबाव या कीटों के आक्रमण के खिलाफ किया गया सर्वश्रेष्ठ बीमा है। इस तरीके के इस्तेमाल से अनजाने में ही मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ी, क्योंकि सही फसल का चयन किया गया और वनस्पतियों के पुनर्चक्रीकरण के कारण अनेकानेक फायदे भी हुए। साथियों, जब स्थानीय तरीके से चावल की फसल की गई तब भले ही उसमें उत्पादन काफी कम मिला लेकिन इसमें उनका नमी के प्रति बचाव का तंत्र काम कर रहा हो या फिर कीटों के आक्रमण से बच पाने में सफल हो, एक प्रमुख कारण था कि वे फसलें किसी ऐसे विशेष उत्सव से संबंधित हुआ करती थी जिसमें सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं का सम्मिश्रण होता था और ऐसे समारोह में इस प्रकार की फसलों से बने व्यंजनों का ही इस्तेमाल होता था। साथियों, इसी प्रकार की विशिष्ट खेती की जाती है अरुणाचल प्रदेश में। जी हाँ, चावल की विशिष्ट प्रकार की खेती जिसमें आसपास के पहाड़ों से भी पोषक तत्व मिल जाते हैं। वाकई अरुणाचल प्रदेश में जो ऐसी खेती की जा रही है वो वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट जरूर कर रही है। साथियों, जैविक रूप से विविधतापूर्ण ये विरासत को संभालने वाली खेती यदि समाप्त हो जाएगी
तब वाकई हमारे पारंपरिक उत्सव और खुशियां मनाने के ग्राम में तरीके भी तो विलुप्त हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी परंपरा का एक भाग भी बिल्कुल समाप्त हो सकता है। इस प्रकार परंपरा के लिए होने वाली ये हानि पहले से ही बिगड़े हुए पारंपरिक ढांचे पर एक और ठोकर लगा देगी, और वो भी हम सभी के गर्व के स्थान हिमालय के क्षेत्र में। साथियों, ये तय है कि हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार की परंपरागत सोच हमेशा रहती है, चाहे किसी भी प्रकार की पारंपरिक खेती हो, चाहे किसी भी प्रकार के पारंपरिक परिणाम हमें मिलने वाले हों। लेकिन यदि बात पर्यावरण की है, तब हमें हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहना होता है, क्योंकि मौसम, जलवायु, स्थान, ये सारे तत्व हर क्षण बदलते रहते हैं, और इन सभी के बदलाव के लिए जिम्मेदार भी हम सभी होते हैं। साथियों, विरासत कृषि को लेकर आज हमने बात की। ये बात भी उतनी ही सही है कि इस प्रकार के विरासत संबंधी मुद्दों पर टिके रहने से जनता को जन वितरण तंत्र पर निर्भर रहने की और उसके कारण होने वाली अव्यवस्थाओं का शिकार होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और अब इस अंक का प्रश्न, चावल की विशिष्ट प्रकार की खेती जिसमें आसपास के पहाड़ों से भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो भारत में कहाँ की जाती है? प्रश्न एक बार और सुने। चावल की विशिष्ट प्रकार की खेती जिसमें आसपास के पहाड़ों से भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो भारत में कहाँ की जाती है?

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्यावरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था हिमालय का पर्यावरण और उसका संरक्षण, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरिटास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या आईओएस मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आरवी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट है।

साथियों, रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सिस्टर गंगा रावत, एसएसपीएस। दोस्तों, अभी की सभा 10 से 11 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक, स्वास्थ्य, बाल जगत और भक्ति गीत। दोस्तों, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक भक्ति गीत से, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वास मुंबई की।

दोस्तों, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वास मुंबई की। मित्रों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: सुख सुविधा के तमाम साधन पर्याप्त धन धान्य से हीन ये निर्धन दंपत्ति एक दूसरे के सुख व सुविधा के लिए कितने चिंतित कितने परेशान। मगर पैसा सुविधाएं और सांसारिक खुशियां ही तो सब कुछ नहीं है। यूसुफ चिंतित था कि वो अपनी निर्धनता के कारण अपनी पत्नी मरियम की रक्षा शायद नहीं कर सकेगा, पर वहीं वो मरियम को अकेला छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई न था। ईश्वर की योजना तो ऐसी ही थी कि मरियम यूसुफ के साथ बेतलेहम जाए। यूसुफ ईश्वर की योजना समझकर मरियम को साथ ले बेतलेहम की ओर चल पड़ा। उन्हें पूरा यकीन था कि समय आने पर ईश्वर उनकी मदद अवश्य करेंगे। मुक्तिदाता प्रभु को गर्भ में धारण किए मरियम और उनके पुत्र ईसा के संरक्षक पिता जोसेफ कपकपाती ठंड में निकल पड़े बेतलेहम की ओर। मरियम गधे पर सवार थी, यूसुफ गधे के एक ओर रास्ता बताते चल रहे थे। गधे पर कुछ भोजन और कपड़े भी एक कटरी में रखे हुए थे। कपकपा देने वाली सर्द हवा और भोर के उस सुनसान समय में वे अकेले नहीं थे, मगर हजारों दूत और स्वयं ईश्वर का आत्मा उनके साथ था। रास्ते उबड़ खाबड़ ही नहीं थे, थका देने वाले थे। यूसुफ मरियम के प्रति बहुत विनम्र थे। वे मरियम को दर्द में देख खुद भी दुखी हो जाते थे। चलते चलते गधा भी थक चुका था। उन्होंने न सिर्फ विश्राम किया, मगर आगे का कुछ रास्ता मरियम स्वयं चलकर पार करने लगी। ज्यादा दूर तक जा पाना मरियम के लिए संभव नहीं था। अंततः जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने कहा,
1: यूसुफ।
2: हाँ।
1: बहुत दर्द है, बहुत दर्द है।
2: मरियम,
1: अब सहा नहीं जा रहा, क्या ही अच्छा हो अगर हमें ठहरने को थोड़ी सी जगह मिल जाए।
2: हाँ मरियम, मैं वही सोच रहा हूँ। हौसला रखो, हौसला रखो, देखते हैं कहीं ठहरने की जगह मिल जाए। मरियम, मरियम तुम ठहरो, मैं वो सामने वाले घर से शरण स्थल तलाश कर आता हूँ।
3: कौन है?
2: भाई साहब, भाई साहब राहगीर हूँ, कहीं आसपास कुछ दिन ठहरने का प्रबंध हो सकता है? मेरी पत्नी
3: ये घर है सराय नहीं, जाओ कहीं और तलाश करो।
0: अवसर, दर्प, ईर्ष्या, असत्य और हिंसा का प्रभाव इतना अधिक होता है कि सत्य, अहिंसा और प्रेम से आंखें फेर ली जाती हैं, दिल के द्वार बंद कर लिए जाते हैं कि नम्रता, दया, प्रेम, शांति, सत्य और अहिंसा के रूप में ईश्वर प्रवेश न करने पाए। यूसुफ को जब अपनी पत्नी के साथ रहने का स्थल न मिला तो वे राह के किनारे ही विश्राम कर बेतलेहम चल निकले, जहां पहुंचकर हजारों की भीड़ में यूसुफ ने अपना नाम लिखवाया और फिर वे सूरज डूबने के पहले पुनः शरण स्थल की खोज में निकल पड़े।
2: भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब सुनिए, सुनिए भाई साहब, हम परदेसी हैं, नाम लिखाने आए थे। मेरी पत्नी गर्भवती है, बहुत तकलीफ है उसे, मेहरबानी करके रहने का कुछ बंदोबस्त कर दीजिए।
4: माफ कीजिए, सारी जगह भरी हुई है।
2: क्या सारी जगह भरी हुई है? क्या करूं, क्या करूं मैं? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मेरी पत्नी गर्भवती है,
5: क्या आपके यहाँ ठहरने का बंदोबस्त हो सकता है?
4: माफी चाहता हूँ भाई, परदेशी से सारे कमरे भरे हैं, कहीं और तलाश करो, हो सकता है कहीं जगह मिल जाए।
5: कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं? पता नहीं मरियम, ईश्वर की क्या मर्जी है, कहीं भी जगह खाली नहीं है, सबको जगह मिल चुकी है, एक हम ही है जो भटक रहे हैं।
1: दुखी न हो यूसुफ, ईश्वर ने हमारे लिए कहीं न कहीं जगह नियत कर रखी होगी। प्रभु अपने बेटे को यूं ही तो नहीं छोड़ देंगे ना, ईश्वर पर ही हमें भरोसा रखना है।
5: वो तो है मरियम, मगर तुम्हारी हालत भी तो देखी नहीं जाती ना।
1: मेरी चिंता ना करो यूसुफ, आज की रात हम यहीं किसी पेड़ के नीचे काट लेंगे। यूसुफ, यूसुफ,
5: क्या हुआ मरियम, क्या हुआ?
1: यूसुफ, लगता है, हाँ? लगता है बच्चे के जन्म लेने का समय आ गया है।
5: मरियम, मरियम धीरे रखो मरियम, मैं जाकर देखता हूँ, शायद किसी को हम पर दया आ जाए।
6: कौन है, क्या बात है?
5: नमस्कार बहन, बहन मेरी पत्नी गर्भवती है और लगता है वो बहुत कष्ट में है, आपके यहाँ दो एक दिन के लिए आश्रय मिल जाता तो।
6: मगर मेरे यहाँ तो सिर्फ एक गौशाला ही बाकी रह गई है।
5: गौशाला? हाँ, कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं, अगर आप आज्ञा दें तो हम वहीं शरण ले लें।
6: ठीक है, आप अपनी पत्नी को लेकर आइए, तब तक मैं गौशाला साफ कर देती हूँ।
0: कड़ाके की ठंड में प्रभु ने मरियम और यूसुफ को और भटकने नहीं दिया, बल्कि उन्हें वे वहां ले गए जहां उस मुक्तिदाता के लिए उन्होंने जगह चुन रखी थी। यूसुफ मरियम को लिए उस गौशाला में आ गए।

नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे संतोष कुमार, इंदु संतोष, स्वाति बूटे, जोस सूल, दिलीप बोस और जॉर्ज माइकल।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है जालस्वास मुंबई की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वास मुंबई की। साथियों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य, जिसे प्रस्तुत कर रही है अंतरा करवणे, और इनकी वार्ता का शीर्षक है गर्दन दर्द और आपका स्वास्थ्य, और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम का विषय है गर्दन दर्द और आपका स्वास्थ्य। साथियों, गर्दन दर्द आजकल हमारे रोजमर्रा के कामों की तरह ही बहुत आम है, लेकिन दिन भर जितना तनाव हम झेलते हैं या जिस प्रकार के काम हम करते हैं, मान लिया कि कंप्यूटर के सामने लंबे समय तक बिना सिर हिलाए बैठे रहना पड़ता है, ये मजबूरी है। लेकिन लंबे समय में ये चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। जी हाँ, कुछ आदतों पर यदि समय रहते लगाम ना कसी जाए तो हम ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में वे असाध्य रोगों का रूप ले लेती है। और वैसे भी साथियों, हमारी पीढ़ी के सामने काम का बोझ और तनाव की स्थिति इतनी ज्यादा है कि इस मामले में दो राय नहीं हो सकती कि आने वाले समय में स्वास्थ्य की समस्याओं से दो चार हमें होना ही पड़ेगा। गर्दन को गलत दिशा में रखना वाकई घातक हो सकता है। बहुत सी स्थितियों में गर्दन दर्द का कारक अधिक समय तक गर्दन की मांसपेशियों, लिगामेंट, टेंडन, हड्डियों या जोड़ों का अधिक समय तक इस्तेमाल करना होता है। दरअसल अधिक समय तक गर्दन की पेशियों और अन्य भागों को इस्तेमाल करते रहने से मांसपेशियों और गले के जोड़ों में किसी प्रकार की सूजन आ सकती है या फिर उन पर दबाव भी पड़ सकता है। दरअसल सर्वाइकल स्पाइन में किसी भी प्रकार की चोट के कारण भी गर्दन में दर्द हो सकता है, लेकिन ऐसा वास्तव में बहुत कम होता है। प्रतिदिन की हमारी दूसरी आदतें जैसे गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से मुड़ना, गलत तरीके से अपना रोजाना का काम करना, इनके कारण भी गर्दन दर्द हो सकता है। तो चलिए अब हम देखें उन स्थितियों को जिसके चलते गर्दन दर्द हो सकता है, या फिर वे स्थितियां गर्दन की स्थिति को सही स्थिति में रखने के लिए आदर्श नहीं कही जा सकती। इनकी ओर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। तो साथियों, रोजमर्रा के जीवन में आप जो विविध काम करते हैं उसमें गर्दन का इस्तेमाल कितना ज्यादा होता है ये शायद हम सभी को बहुत कम मालूम होता है। लेकिन काम करते समय सीधी गर्दन रखी जाती है, पढ़ते समय गर्दन का इस्तेमाल होता है, टीवी देखते समय, फोन पर बातें करते समय गर्दन को अधिक समय तक आगे की ओर या फिर गलत दिशा में रखने से हमें गर्दन में दर्द का एहसास हो सकता है, या फिर इस प्रकार की आदतें गर्दन में दर्द का कारण आने वाले समय में बन सकती हैं। इसके अलावा हम में से कुछ साथियों को कुछ इस प्रकार का तकिया लेकर सोने की आदत होती है जो बहुत ज्यादा ऊंचा होता है या बहुत ज्यादा नीचा होता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे तकिये का इस्तेमाल करना जो कि आपके लिए आदर्श स्थिति नहीं रख पाता हो, उस प्रकार के तकिये को इस्तेमाल करने से आपकी गर्दन सही स्थिति में नहीं रहती। ऐसा करते हुए यदि लंबे समय तक आप गलत नाप का तकिया इस्तेमाल करते रहे तब ये तय है कि आने वाले समय में गर्दन दर्द आपको होना है। इसके अलावा हमारे बहुत से साथी ऐसे होते हैं जो अपनी हथेली का सहारा अपने चेहरे को देते हैं, यानी हम लोग कई बार हाथ का सहारा अपने मुंह को देखकर और इस प्रकार से बैठते हैं, जिसे चिंतक मुद्रा कहा जाता है। चिंतक मुद्रा वाकई बहुत अच्छी है यदि आप अच्छे विचार मन में ला रहे हैं, लेकिन विचार तो आपका मस्तिष्क करता है, उसकी सजा आपकी गर्दन को क्यों। जी हाँ, लंबे समय तक यदि चिंतक मुद्रा में भी बैठा जाए तब ये आदत भी गर्दन दर्द को न्योता दे सकती है। इसके अलावा हमारे चित्रकार भाई बंधु, लंबे समय तक पेंटिंग का काम करने वाले हमारे कलाकार या हमारे कलाकर्मी, या फिर बहुत लंबे समय तक आपके शरीर का ऊपरी भाग जिस काम में इस्तेमाल होता है, वे सभी प्रकार के काम गर्दन दर्द के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं यदि आपने सही तरीके से गर्दन का इस्तेमाल करना नहीं सीखा या समय समय पर उसे आराम नहीं दिया। दरअसल गर्दन दर्द यदि होता भी है तो उससे बचने के बहुत सारे उपाय होते हैं, जैसे आइस पैक लगा लिया जाए, थोड़ी सी मालिश कर ली जाए, दवाएं ले ली जाए, लेकिन गर्दन दर्द हो ही ना, उसके लिए बचाव के कुछ उपाय यदि जान लिए जाए तो वो ज्यादा सही होंगे। यदि हम शरीर की स्थिति को भी थोड़ा सा बदल दें, आपकी बैठने की स्थिति जिसे पोस्चर कहा जाता है, मुद्रा कहा जाता है, यदि आप वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते समय क्या आप बहुत झुककर बैठते हैं,
यदि आप झुककर बैठते हैं तब ये देखें कि आप दिन भर में कितना समय वाहन चालन को देते हैं। यदि आप दिन में 2 या 3 घंटे वाहन चलाते हैं और गलत तरीके से बैठते हैं तब ये प्रभाव आपकी गर्दन पर, आपकी पीठ, मेरुदंड पर पड़ सकता है। सबसे पहली बात, सिर को आगे की मुद्रा में रखने से बचना चाहिए। आपको अपनी कुर्सी पर सीधा बैठना चाहिए और अपने लोअर बैक को सपोर्ट देना चाहिए। कुर्सी पर एक ही स्थिति में ज्यादा समय तक ना बैठें। गर्दन की मांसपेशियों को आराम देने के लिए आपको समय समय पर छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहना चाहिए। साथियों, आजकल हम में से अधिकांश व्यक्तियों के काम में कंप्यूटर एक अनिवार्य मित्र की तरह हमारे साथ होता है। उसके बिना काम करना वाकई संभव ही नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तब आपको अपने वर्क स्टेशन को बहुत अच्छे से समायोजित रखना चाहिए, सही स्थिति में रखना चाहिए। मॉनिटर को इस प्रकार से रखना चाहिए कि उसका टॉप आपकी आंखों की सीध में आए, आपकी आंखों के ऊपर या आंखों से बहुत नीचे बिल्कुल भी नहीं। साथियों, हम एक उदाहरण देख सकते हैं। बहुत से रिटेल शॉप्स में या फिर कुछ दुकानों में आप जाकर देखेंगे, वहां पर जो डेस्क होता है, डेस्क से नीचे की स्थिति में कंप्यूटर रखा जाता है, कंप्यूटर की स्क्रीन रखी जाती है। ऐसे में जिस भी व्यक्ति को कंप्यूटर पर काम करना है उसे बहुत नीचे अपनी गर्दन झुकाकर स्क्रीन को देखना पड़ता है, कीबोर्ड उसके हाथ में होता है और बहुत ही विचित्र सी स्थिति में वो व्यक्ति काम करते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां, कंप्यूटर पर बैठकर यदि ऐसी स्थिति में लंबे समय तक काम किया जाए तो निश्चित रूप से गर्दन संबंधी तकलीफें हमें होती हैं। इसके साथ ही स्क्रीन के ही स्तर पर एक डॉक्यूमेंट होल्डर भी रखें। इसकी मदद से यदि आप स्क्रीन पर देखते समय अचानक किसी कागज की जरूरत पड़ती है तब उसे ढूंढने के लिए आपको गर्दन बहुत जल्दी यहां वहां घुमानी न पड़े। दरअसल साथियों, गर्दन को एक ही स्थिति में लंबे समय तक रखने के बाद यदि जल्दी से और जोर से झटका दिया जाए तब ये संभव होता है कि गर्दन की किसी नस में खिंचाव आ जाए और फिर बहुत असहनीय दर्द होता है। इसके अलावा यदि आप बहुत लंबे समय तक टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं या फिर स्पीकर फोन का इस्तेमाल आप बहुत ज्यादा करते हैं तब आपको हैंडसेट या स्पीकर फोन का इस्तेमाल इस प्रकार से करना चाहिए कि आपके गर्दन पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़े। हम में से बहुत से लोग वाहन, दोपहिया वाहन चलाते समय कंधे की मदद से मोबाइल को पकड़े रहते हैं, उनकी गर्दन एक ओर झुकी रहती है और वो वाहन भी चलाते रहते हैं। इस स्थिति में लंबे समय तक रहने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। गर्दन की हिलने डुलने की शक्ति, उसकी लोचनीयता, ये दोनों चीजें इससे प्रभावित होती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर और फोन पर बात करना, इनके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति आजकल हम सभी के सामने आती है, वो है वाहन चलाना, वो भी चार पहिया वाहन चलाना। साथियों, यदि आप कार की सीट को अपराइट पोजीशन में रखेंगे तब आपके सर और लोअर बैक दोनों को सपोर्ट मिलेगा। हम हमेशा देखते हैं कि कार की सीट पर बैठकर जब भी आप स्टीयरिंग संभालते हैं तब आपका पूरा ध्यान होता है कि आपके कमर के हिस्से को आराम मिलना चाहिए, जबकि देखना ये है कि आपके सर को, आपकी गर्दन को भी उतना ही आराम मिल सके। ध्यान रखें कि ड्राइव करते समय आपको स्टीयरिंग व्हील तक पहुंचने की जहमत नहीं उठानी चाहिए और आपके हाथ आराम की स्थिति में होने चाहिए। इसके अलावा यदि आपकी गर्दन में इस प्रकार की स्थिति के कारण दर्द हमेशा बना रहता है तब आपको विशेष प्रकार का सर्वाइकल तकिया भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होता और बहुत ज्यादा नीचा भी नहीं होता। यदि आपको ऐसा लगता है कि गर्दन में दर्द आपके लिए समस्या बन सकता है तब सामान्य तकिए के साथ में एक तौलिए को गोल मोड़कर उसे भी सहारे के रूप में गर्दन के नीचे आप रख सकते हैं। यदि गर्दन में दर्द है तो आपको पेट के बल बिल्कुल नहीं सोना चाहिए जिससे आपकी गर्दन मुड़े। इसके साथ ही आपको प्रॉपर लिफ्टिंग तकनीक यानी सामान को उठाने की तकनीक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों, गर्दन दर्द से बचने के लिए यदि हम बात करें तो सर्वाइकल कॉलर का इस्तेमाल सामान्य रूप से किया जाता है। और यदि सर्वाइकल कॉलर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है हम कहें तो सबसे प्रमुख चीज होती है लोगों द्वारा गलत तरीके से सामान को उठाया जाना।
शरीर के भार को घुटनों पर न उठाकर पीठ के बल पर उठाना ज्यादा अच्छा होता है। जब भी आप लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर उठते हैं, तब अचानक घुटनों पर जोर देकर उठेंगे तब उतना ही जोर आपकी गर्दन पर भी पड़ता है। तीव्र गर्दन दर्द से बचाव के लिए विशेषज्ञ स्वस्थ आदतें बनाने की सलाह देते हैं। ऑफिस या घर में तनाव से बचें। मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज और मसाज से भी दर्द में राहत मिलती है। ऐसे में टहलने जैसे व्यायाम और एरोबिक्स करने की सलाह भी दी जाती है। साथियों, यदि आप धूम्रपान करते हैं तब भी आपको गर्दन दर्द की शिकायत हो सकती है, क्योंकि तनाव भरे माहौल में ही व्यक्ति को धूम्रपान ज्यादा करने की इच्छा होती है और तनाव के कारण यदि गर्दन दर्द होता है तब धूम्रपान करने से गर्दन दर्द में राहत मिलने की प्रक्रिया में तेजी नहीं आती, वो कम हो जाती है। इससे रक्त संचार की गति धीमी हो जाती है और गर्दन में दर्द खासकर इसलिए होता है क्योंकि टिश्यूज वहां कम हो जाते हैं और टिश्यूज बनने की स्थिति धूम्रपान के कारण कम बनती है। तो साथियों, आशा करते हैं कि आप आज के दिए हुए इन सुझावों पर अमल करेंगे और बहुत तनावपूर्ण जीवन शैली होने के बावजूद यदि ये स्वस्थ आदतें अपनाएं तो गर्दन दर्द से बच सकते हैं।

मित्रों, अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वास्थ्य, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंतरा करवड़े, और इनकी वार्ता का शीर्षक था गर्दन दर्द और आपका स्वास्थ्य, और यह प्रस्तुति थी सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वास मुंबई की।

साथियों, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वास मुंबई की। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं एक कार्यक्रम बाल जगत, जिससे प्रस्तुत कर रहे हैं ईशान खापड़े और इनकी वार्ता का शीर्षक है जिनसे मुक्ति, और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

प्राचीन काल में एक गांव में एक सेठ रहता था। वह इतना कंजूस था कि अपने नौकरों को काम करने के बाद मजदूरी तक नहीं देता था। इसीलिए उसके यहाँ कोई भी नौकर काम करने को तैयार नहीं होता था। उसके खेतों पर काम करने वाले मजदूरों ने भी उसका खेत जोतने से मना कर दिया। इस तरह उसके खेत बंजर पड़े थे और सिंचाई के लिए काम आने वाले पोखर और कुएं भी सूख गए। खेती और व्यापार ठप हो जाने से सेठ दिनों दिन गरीब होता गया। इतना सब हो जाने पर भी उसका व्यवहार जस का तस रहा। वह भी बहुत ही घटिया और जिद्दी इंसान था। उसे भूखो मरना गवारा था, पर अपनी तिजोरी खोलना नहीं। एक दिन गांव में एक बहुत ही नामी गिरामी महात्मा जी आए। सेठ ने सुना कि महात्मा जी के पास अपार सिद्धियां हैं और वह हर समस्या का हल निकाल देते हैं। साहस करके सेठ महात्मा जी के पास गया और बोला, महात्मन, मैं आजकल बड़ी मुसीबत से घिरा हूँ। मेरे खेत बंजर पड़े हैं और खलियानों में अनाज का एक दाना नहीं बचा है। नदी तालाब और कुएं सूख गए हैं। मेरे यहाँ कोई भी नौकर मजदूर काम करने को तैयार नहीं है। इसलिए वह दिन दूर नहीं जब भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। महात्मन, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। कृपा करके मुझे इस घोर संकट से बचाइए। महात्मा बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। तुम 3 महीनों तक यदि सुबह शाम इस मंत्र का जाप करोगे तो 4th महीने के पहले दिन तुम्हारे सम्मुख एक ब्रह्म राक्षस प्रकट होगा। वह एक दास की तरह तुम्हारी सेवा करेगा। तुम जो भी आदेश दोगे उसे पूरा करेगा, क्योंकि वह अकेला ही 100 मजदूरों के बराबर काम कर सकता है। खुश होकर सेठ महात्मा के चरणों में गिर गया और उनसे मंत्र और जाप की सारी विधि बताने के लिए कहा। महात्मा जी ने उसे मंत्र देकर और भली बात भी समझा बुझाकर विदा किया। सेठ ने 3 महीनों तक लगातार मंत्र का जाप किया और महात्मा जी के कहे अनुसार 4th महीने में ब्रह्म राक्षस उसके सम्मुख प्रकट हुआ। सेठ के समक्ष प्रकट होते ही वह बोला, भगवान, आपने मुझे क्यों याद किया है? आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना होगा? सेठ अपने सामने ब्रह्म राक्षस को देखकर पहले तो डर गया, फिर वह साहस जुटाकर बोला, तुम मेरे सेवक हो, इसलिए तुम्हें मेरे भी आदेशों को मानना होगा। ब्रह्म राक्षस बोला, ठीक है भगवान, मैं आपकी सारी आज्ञाओं का पालन करूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। किंतु आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? सेठ ने पूछा। ब्रह्म राक्षस बोला, मेरी शर्त है कि आपको मुझे हमेशा किसी न किसी काम में लगाए रखना होगा, वरना मैं आपको और आपके परिवार को मार दूंगा। सेठ यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उसे इतना अच्छा नौकर मिला है जो हमेशा सेवा में लगा रहना चाहता है। इसके बाद सेठ ने ब्रह्म राक्षस को एक सूखा हुआ कुआं दिखाते हुए कहा, इस कुएं को 2 किलोमीटर लंबा और खोदो। जो आज्ञा भगवान, आपकी हर आज्ञा का पालन होगा। सेवक ने नम्रता से कहा और काम शुरू कर दिया। सेठ ने सोचा कि ब्रह्म राक्षस को इतना बड़ा कुआं खोदने में कई महीने लग जाएंगे, पर उसने घर जाकर खाना ही खाया था कि ब्रह्म राक्षस काम खत्म करके वहाँ पहुँच गया। सेठ हैरान होकर पत्नी से बोला, यदि यह इसी रफ्तार से काम करता रहा तो हम इसे कब तक काम दे पाएंगे? इस तरह तो एक दिन खाली होकर यह हम सबको मार डालेगा। पत्नी सेठ को दिलासा देते हुए बोली, स्वामी, आप चिंता न करें, आप जब तक उसे काम दे सकते हैं दें, उसके बाद में मैं उसे ऐसा काम दूंगी जिसमें वह लंबे समय तक लगा रहेगा। सेठ ने उसे कई काम करने को दिए, पर उन कामों को उसने मिनटों में निपटा दिया। फिर ब्रह्म राक्षस ने गरज कर कहा, कोई और काम बचा है तो बताएं। वह सोच रहा था कि अब मालिक के पास कोई काम नहीं बचा है, इसलिए वह शर्त के मुताबिक उनको मारकर खा लेगा। सेठ बोला, मेरी पत्नी का एक काम तुम्हें करना होगा। मुझे लगता है

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल जगत, जिससे प्रस्तुत कर रहे थे ईशान खापड़े, और इनकी वार्ता का शीर्षक था जिन से मुक्ति, और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं बाल गीत।

साथियों, अभी आपने सुना एक बाल गीत। मित्रों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल जगत, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं ईशान खापड़े, और इनकी कहानी का शीर्षक है दोस्ती का रिश्ता, और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: कछुए और उस कबूतरी में गहरी दोस्ती थी। कछुआ एक झील में रहता था और कबूतरी झील के किनारे एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। कबूतरी ढूंढ ढूंढ कर अपने चोंच में दबाकर अच्छा अच्छा खाना लाती और कछुए के साथ मिलकर आराम से झील के किनारे बैठकर खाती। दोनों घंटों झील के किनारे बैठकर बातें किया करते। जब कबूतरी भोजन की तलाश में जाती तो कछुए को जरा भी अच्छा नहीं लगता। एक बार कहीं से घूमता हुआ एक खरगोश झील के किनारे आया। उसने कबूतरी और कछुए को बातें करते हुए देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। वह उन दोनों के पास गया और अपना परिचय देकर बोला, आप लोगों को देखकर लगता है कि आप दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती है। कबूतरी ने कहा, हाँ भैया, बस यूं ही समझ लो, हम दो शरीर एक जान है। आजकल ऐसी दोस्ती देखने को कहाँ मिलती है, मुझे आप दोनों से मिलकर बड़ी खुशी हुई, खरगोश बोला। उसने कहने से तो यह कह दिया, लेकिन वह मन ही मन उन दोनों की दोस्ती देखकर जल भुन गया था। अतः उसने उनकी दोस्ती तोड़ने का निर्णय कर लिया। कछुआ और कबूतरी खरगोश की मंशा से अनजान थे, वे दोनों तो उसे अच्छा मित्र समझ रहे थे। अब जब कबूतरी भोजन की तलाश में जाती तो कछुए को अकेला के पास आकर सबसे दोस्ती बढ़ाने लगा। जब उसे लगा कि कछुआ उस पर विश्वास करने लगा है, तब वह उसे कबूतरी के खिलाफ भड़काने लगा। यही काम वह कछुए की अनुपस्थिति में कबूतरी के साथ करता, यानी उसे कछुए के खिलाफ भड़काता। धीरे धीरे कबूतरी और कछुए की दोस्ती में दरार पड़ने लगी। वे दोनों एक दूसरे के बजाय अब खरगोश पर अधिक विश्वास करने लगी थी। एक दिन खरगोश ने अपनी आखिरी चाल चलते हुए कछुए से कहा, कछुए भाई, मैं बहुत दिनों से तुम्हें कुछ बताने का सोच रहा था, लेकिन बताते हुए संकोच हो रहा है।
1: अरे संकोच।

0: कैसा? तुम जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो, कछुए ने कहा।
1: दरअसल कबूतरी कह रही थी कि वह दिन भर प्रतीक्षा करती रहती है, जब कोई तुम्हारा शिकार करेगा तो वह भी उसे थोड़ा बहुत खाने को मिलेगा, फिर उसे तुम्हारे साथ खाना भी नहीं बांटना पड़ेगा। वह कह रही थी कि मेहनत करके अच्छा खाना वह लाती है और हिस्सेदारी बांटने तुम पहुंच जाते हो। मुझे तो यह सुनकर बड़ा बुरा लगा। मैंने सोचा तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें बड़ा बुरा लगेगा, तुम तो उसकी भलाई सोचते हो और वह,
0: खरगोश ने दुख प्रकट करते हुए कहा।
1: अच्छा, उसने ऐसा कहा? आज से उसकी और मेरी दोस्ती खत्म। तुमने अच्छा किया जो दुष्ट कबूतरी की मंशा मुझे बता दी, कछुआ बोला। यह कहकर कछुआ पानी के अंदर चला गया। अच्छा मौका जानकर खरगोश ने कबूतरी को आवाज लगाई तो कबूतरी अपने घोंसले के नीचे आ गई। खरगोश ने कबूतरी के कान भरते हुए कहा, मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ, इसलिए कछुए की मंशा से अवगत कराना चाहता हूँ। कछुए तुम्हारे अंडों पर बुरी नजर रखता है, वह इसी फिराक में लगा रहता है कि तुम्हारे अंडे नीचे गिरे और वह अपना भोजन बनाए। वह कई वर्षों से इसी जुगाड़ में है, पर भगवान करे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी ना हो, तुम्हारे अंडे कभी नहीं गिरे। तुम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसे अपना सच्चा दोस्त मानती हो, पर वह तो तुम्हारी दोस्ती के काबिल ही नहीं। मैं उस पर कितना भरोसा करती हूँ, परंतु आज उसकी असलियत जानकर मुझे उससे नफरत हो गई है। आज से उसके और मेरी दोस्ती खत्म। यह कहकर कबूतरी उड़ अपने घोंसले में आ गई। अब तो कबूतरी और कछुआ एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। खरगोश उन दोनों की दोस्ती तुड़वाकर बहुत खुश था। समय यूं ही बीत। एक बार कबूतरी ने कुछ अंडे दिए। एक दिन हवा का तेज झोंका आया और कबूतरी के अंडे झील में गिर गए। कबूतरी खरगोश के पास मदद मांगने गई।
2: भैया, मेरे अंडे झील में गिर गए हैं, कृपा करके उन्हें निकाल दो।
1: खरगोश बोला, मैं आराम कर रहा हूँ, चली आई अपना मुंह उठाकर, भाग यहाँ से।
0: कबूतरी दुख उदास होकर वापस झील के किनारे लौट गई। उसे डर था कि कहीं कछुआ उसके अंडे न खा ले। कबूतरी रोने लगी। जब कछुए ने उसे रोते हुए देखा तो वह उसके सारे अंडे बाहर निकाल लाया। अपने अंडों को सुरक्षित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने एक एक करके अपने अंडे घोंसले में सुरक्षित रखे और कछुए के पास आकर उसका शुक्रिया अदा किया। कबूतरी ने कहा,
1: दोस्त, खरगोश की बातों में आकर तुमसे नाता तोड़ दिया था। उस दुष्ट की बात मानना मेरी सारी भूल थी, मुझे माफ कर दो।
0: कछुआ बोला, मैं भी तो उसकी बातों में आ गया था। हम दोनों ने ही उसकी बातों में आकर भारी गलती की। हमें अपने दोस्ती पर भरोसा करना चाहिए था, ना कि उस दुष्ट पर। लेकिन आज से हम दोनों फिर से दोस्त बन गए। अब हम अपनी दोस्ती के बीच किसी तीसरे को नहीं आने देंगे।
1: हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मेरे अच्छे दोस्त, कबूतरी ने कहा।
0: कबूतरी और कछुआ फिर से दोस्त बन गए और मिलजुल कर रहने लगे।

जिसे प्रस्तुत कर रहे थे ईशान खापड़े, और इनकी कहानी का शीर्षक था दोस्ती का रिश्ता, और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वास मुंबई की।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम और अंत में नाटक। तो दोस्तों, अब हम अपने समय सारिणी के अनुसार हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम कृषि जगत की वार्ता से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मुखिया जी, एक बात आपसे मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या विशेष उद्यान फसल योजना से हमारे किसान भाइयों की तस्वीर सवरेगी, उन्हें कुछ फायदा होने वाला है या नहीं?
1: देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, विशेष उद्यान फसल योजना के तहत अब मंदिरों में, शादियों में और चुनाव में उपयोग होने वाले फूल राजधानी में ही खिलेंगे। राजधानी में फूलों की मांग को देखते हुए उद्यान विभाग ने पटना और जहानाबाद जिले के लिए विशेष उद्यान फसल योजना बनाई है।
0: इसके तहत किस तरह के किसानों का चयन किया जाना है?
1: इसके तहत अब भूमिहीन किसानों की जिंदगी भी अब फूलों से महकने वाली है। जमीन नहीं होने की लाचारी के कारण फूल की खेती नहीं कर पाने वाले किसानों को सरकार सहायता करेगी।
0: इसके लिए किसानों को क्या करना होगा, किस तरह के कदम उठाने होंगे?
1: इसके लिए उन्हें 10 से 12 किसानों का एक समूह बनाना पड़ेगा। लीज पर खरीदे हुए जमीन का आत्मा द्वारा रजिस्ट्रेशन कराकर समूह के नाम से स्थानीय बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा। सारे काम कृषि प्राधिकारी के देखरेख में ही होंगे।
0: इस पूरी प्रक्रिया को देखरेख करने के लिए क्या कोई समिति का भी गठन किया जाएगा?
1: ये पूरा काम कृषि प्राधिकारी की देखरेख में तो होगा ही। उसके बाद SMS और कृषि क्षेत्र के सलाहकार योजना की जांच करेंगे और अनुमान लगाएंगे कि ये समूह द्वारा फूल की खेती की जा रही है या नहीं। किसानों को फूल की खेती कैसे की जाए इसका भी प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। फिर किसान समूह के खाते में पैसा डाल दिया जाएगा।
0: इस योजना के तहत किसानों को कितना अनुदान दिया जाएगा मुखिया जी?
1: इस योजना के तहत किसानों को 90% का अनुदान दिया जाएगा। एक हेक्टेयर भूमि पर खेती की कुल लागत 24,000 रूपये में किसानों को अनुदान के रूप में राज्य सरकार 21,600 रूपया प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष कितना हेक्टेयर भूमि में खेती करने का इरादा है राज्य सरकार को?
1: 2012-13 की अगर बात करें तो 2012-13 के वित्तीय वर्ष में पटना जिले के 200 हेक्टेयर भूमि में गेंदे के फूल की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
0: राजधानी में हर दिन फूलों की मांग लगभग कितनी है मुखिया जी?
1: राजधानी में हर दिन लगभग 4,000 मीट्रिक टन फूलों की खपत होती है, लेकिन मांग के अनुसार उपज नहीं होने के कारण अधिकतर फूल दूसरे प्रदेशों से मंगाए जाते हैं या यूं कहें कि दूसरे प्रदेशों से आते हैं।
0: आशा की जानी चाहिए कि इस योजना से किसानों की दशा में सुधार होगा और वैसे किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं है उन्हें भी फायदा होगा। लेकिन मुखिया जी, एक बात का डर लगता है कि कहीं इसका भी हाल बेबी कॉर्न के जैसा ना हो जाए।
1: आपका डर उचित है। किसानों की विकास के लिए नई ऊंचाई हासिल करने के बाद भी मक्का उत्पादन में देश में स्थान रखने वाला राज्य समय के साथ कदम ताल नहीं कर सका। बड़ा बाजार होने के बावजूद पॉपकॉर्न के उत्पादन में किसानों की रुचि नहीं जगी, तो बेबी कॉर्न के उत्पादकों को राज्य में बाजार ही नहीं मिल पाया।
0: तो क्या इसी वजह से किसानों ने बेबी कॉर्न के उत्पादन में रुचि नहीं दिखाई मुखिया जी?
1: मूलतः इसी वजह से, या यूं कहें कि इस बड़ी समस्या ने किसानों को बेबी कॉर्न की खेती से मुंह मोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। किसान 3-4 वर्ष में ही पस्त हो गए। अब वे फिर से मक्का उत्पादन में जुट गए हैं और बेबी कॉर्न की खेती से उनका भटकाव हो गया है या मोह भंग हो गया है।
0: तो क्या इसे सरकार की बेरुखी मानी जाए या फिर कोई दूसरी कारण?
1: खास बात यह है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाने वाली राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 5 वर्ष पहले राज्य के कुछ किसानों ने बेबी कॉर्न का उत्पादन शुरू किया, लेकिन बाजार और रख रखाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण उनका उत्साह धीरे धीरे ठंडा होता गया और अब तो बिल्कुल ही खत्म जैसा हो गया है।
0: क्या उनके उत्पादन की खपत यहाँ के बाजार में बिल्कुल ही नहीं हो पाई मुखिया जी?
1: 2 वर्ष तक उत्पादन कम होने के कारण राजधानी पटना के बाजार में उनके माल की खपत हो जाती थी, लेकिन ज्यों ही उन्होंने उत्पादन बढ़ाना शुरू किया बाजार की समस्या उत्पन्न हो गई। 1000 क्विंटल उत्पादन करने वाले किसान 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचते बेचते थक गए। दूसरे प्रदेशों में भेजने के लिए कोल्ड चेन की व्यवस्था नहीं हो सकी। थककर किसानों ने इसे मुंह मोड़ लिया।
0: इसके प्रति किसानों में किस तरह की प्रतिक्रिया देखी गई है, उनका क्या कहना था?
1: पटना की माधुरी सिंह कहती हैं कि 5 वर्ष पूर्व उन्होंने बेबी कॉर्न की फसल लगाई, लेकिन बाजार की समस्या ने फसल बदलने पर विवश कर दिया। यही हाल बेगूसराय के रमेश और पूर्णिया के रंजन का है। उन लोगों ने भी 2 वर्ष इसकी खेती करने के बाद मक्का की खेती शुरू कर दी।
0: इससे तो किसानों का बहुत नुकसान हुआ मुखिया जी।
1: हाँ बिल्कुल, किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उनका कहना है कि उन्हें बहुत नुकसान इसलिए नहीं उठाना पड़ा क्योंकि वे बेबी कॉर्न की उस वेराइटी की खेती करते थे जो ज्यादा दिन खेत में रहने पर मक्का में बदल जाता है।
0: शुद्ध बेबी कॉर्न की खेती करने पर क्या ऐसा नहीं होता है मुखिया जी?
1: शुद्ध बेबी कॉर्न तो तैयार होने के निर्धारित समय से 2 दिन से अधिक खेत में छोड़ देने पर वो अपने आप नष्ट हो जाता है। तोड़कर रखना भी संभव नहीं होता है, इसके लिए डीप फ्रीजर की जरूरत होती है। इन्हीं सारी समस्याओं के चलते हमारे यहाँ के किसान भाई जो हैं बेबी कॉर्न की खेती से अपना मुंह मोड़ लिए हैं और पुनः उन्होंने जो परंपरागत खेती है मक्का की उसकी खेती करना शुरू कर दिया है। नुकसान शुरुआती दौर में उन्हें बहुत उठाना पड़ा क्योंकि वे उसकी वेराइटी, उसके नस्ल और उसके किस्म के बारे में भी वो सही ढंग से अवगत नहीं थे। शुरू शुरू में उन्होंने सोचा कि शायद बेबी कॉर्न की खेती करने से मक्का से ज्यादा आमदनी होगी और इससे उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बाजार में बेबी कॉर्न की मांग के से ज्यादा उनकी फसल हुई और बाजार में उनका मूल्य सही ढंग से नहीं मिल पाया, जिसके कारण उन्होंने अंततः बेबी कॉर्न की खेती नहीं करने का फैसला लिया। अगली कार्यक्रम में फिर जब आपसे मुलाकात होगी तो हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये राज्य को हरा भरा रखने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है, खास करके हरियाली मिशन योजना के तहत। तो अभी हम लोग चलते हैं, फिर बातें होगी कि खेती गृहस्थी से संबंध में। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।
0: जी धन्यवाद मुखिया जी।

दोस्तों, अभी आप सभी सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, इस वार्ता में हमें काफी सारी महत्वपूर्ण और रोचक बातें बताई गई हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी किसान श्रोताओं को इन बातों से लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rvasatyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब हम अपने अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें कानून के बारे में बताएंगे। जी हाँ साथियों, मैं अपने अगले कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान, और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: रितेश जी और कपूर साहब, आप दोनों का कानूनी परिचर्चा में स्वागत है।
1: जी, आपका भी धन्यवाद।
0: आज के इस कार्यक्रम में हम मानवाधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे।
2: जी हाँ वीरेंद्र जी, मानवाधिकार की जानकारी सभी नागरिकों को होनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: मानवाधिकार के बारे में पुरुष तो थोड़ा बहुत जागरूक है, पर हमारी महिलाओं को इसके बारे में और सजग रहने की जरूरत है। मैं यह जानना चाहता हूं कपूर साहब कि मानवाधिकार से महिलाओं का संबंध किस प्रकार से है।
1: देखिए वीरेंद्र जी और रितेश जी,
2: जी
1: हर मानवाधिकार स्त्री का अधिकार है। प्रख्यात नारीवादी दार्शनिक सिमोन डी बुवार ने अपनी चर्चित कृति द सेकंड सेक्स में एक जगह लिखा है कि स्त्री तू पैदा नहीं होती, बना दी जाती है। आज का नारीवादी आंदोलन सिमोन के युग से काफी आगे आ चुका है। ऐसा कहना गलत नहीं, किंतु विश्व के स्तर पर प्रचलित कई नारीवादी विचारधाराओं और उन पर आधारित नारीवादी एजेंडा पर गौर करने में कभी कभी गलतफहमी होती है कि जो बुनियादी समझ सिनेमा की, यूं कहें कि सिमोन की कृति में मौजूद है, वो आज की विभिन्न विचारधाराओं में प्रवर्तकों और व्यवहारकों के लिए नारा हो सकता है, लेकिन उनकी बुनियादी समझ का अंतर्निहित घटक या तत्व नहीं लगता।
0: सिमोन की इस सोच के पीछे
1: जी
0: क्या उस समय की परिस्थितियां थी कपूर साहब, जो खास करके महिलाओं को नियंत्रित करती थी, या फिर कुछ दूसरी खास वजहें रही थी?
1: वीरेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि सिमोन की सोच की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उसने न केवल यूरोपीय या पश्चिमी संस्कृति, मनोविज्ञान, सामाजिकता आदि का गंभीर अध्ययन किया था, बल्कि एशियाई और विशेषकर हिंदुस्तानी सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक मनोविज्ञान आदि को भी उतनी सूक्ष्म पकड़ हासिल की थी। जिस पाश्चात्य नारीवादी आंदोलन की छाप हिंदुस्तानी नारीवादी सोच और व्यवहारिकता में नकल की हद तक पिछले कुछ साल पहले तक स्पष्ट दिखाई देती है, सिमोन ने तब उस पाश्चात्य संस्कृति में औरत की द्वयम सामाजिक स्थिति पर पहली चोट की थी।
0: जी जी,
1: सिमोन जैसी नारीवादी दार्शनिक या क्लारा जेटकिन जैसी राजनैतिक व्यवहारिक नारीवादी के चिंतन या कर्म की व्याख्या नहीं किया जा सकता। वीरेंद्र जी,
2: विषय यह है कपूर साहब कि सिमोन ने जब महसूस किया कि स्त्री समाज में पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है, तो उसका अर्थ हमारी भारतीय सामाजिकता और संस्कृति के लिए कितना प्रासंगिक है। पैदा तो पुरुष भी होते हैं और स्त्री भी होती है।
1: ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन दोनों की कुदरती पैदाइश पालन पोषण के दौर में दो विभिन्न रोल मॉडल्स की तरह अलग अलग ढांचे में विकसित होती जाती हैं, जिसका रूप होता है पुरुष यानी एक कर्ता एवं एक्टिव मॉडल, और स्त्री एक भोक्ता और यानी कि पैसिव मॉडल। जन्म से ही शुरू के चंद वर्षों के बाद सबसे पहले हमारे पारिवारिक ढांचे में स्त्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल कपूर साहब,
1: उसका मानसिक विकास एक मनुष्य, एक व्यक्ति के रूप में रेखांकित नहीं होता, बल्कि एक सेक्स, एक लिंग यानी महज एक स्त्री के रूप में होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपने काफी निचोड़ बात कही है कपूर साहब। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि एक पुरुष का मानसिक विकास, उसकी पूरी परवरिश इस तरह से की जाती है कि वह एक मनुष्य है, एक व्यक्ति पहले होता है, एक सेक्स या पुरुष बाद में। स्त्री पुरुष के भेद तभी से शुरू हो जाते हैं जब से उन दोनों का जन्म होता है।
1: जी आप बिल्कुल सही करें वीरेंद्र जी, यानी स्त्री से उसका एक व्यक्ति या एक मनुष्य के रूप में विकसित होने का कुदरती अधिकार जन्म से छीन लिया जाता है।
0: जी जी,
1: जब मानवाधिकार के संदर्भ में स्त्री के अधिकारों पर बहस विश्लेषण के मौके आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बात यहीं से शुरू होती है। ये रोल मॉडल अलग बात है कि ऐसे व्यक्ति का होता है जिसकी भूमिका परिवार समाज में एक एक्टिव पार्टनर की तरह होती है।
2: पश्चिमी नारीवादी सोच को खारिज करते हुए यहाँ मेरी मान्यता है कि हमारी सामाजिक पारिवारिक संरचना अक्सर पुरुषों को भी एक व्यक्ति से ज्यादा एक पुरुष की तरह पलने विकसित होने को मजबूर करती है।
1: बिल्कुल सही है।
2: मिसाल के तौर पर हमारे इर्द गिर्द ऐसी नसीहत बचपन से ही लड़कों को देने वाले परिवार मिल जाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल मिल जाते हैं।
2: मर्दों को रोना शोभा नहीं देता, तुम तो मर्द हो, तुम्हें औरतों के बीच बैठना शोभा नहीं देता, आदि आदि।
1: सही सही कह रहे हैं आप रितेश जी, सही है। लेकिन ये रोल मॉडल बुनियादी रूप से जहाँ एक पुरुष को एक व्यक्ति बनने का पूरा अवसर देते हैं, वहीं एक स्त्री को महज एक स्त्री के रूप में खुद को जानने पहचानने का माहौल देते हैं। ये बुनियादी और कुदरती सच है। हर पुरुष पहले एक मनुष्य है, तब एक सेक्स, और हर स्त्री पहले एक मनुष्य है, तब एक सेक्स को नकार दिया जाता है। जब एक स्त्री और एक मानवाधिकार की बात चलती है, तो शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि हर मानवाधिकार स्त्रियों का अधिकार है, न कि केवल पुरुषों का।
0: अगर इसी सिद्धांत को भारत और खास करके बिहार के व्यवहारिक परिदृश्य में देखें कपूर साहब
1: जी,
0: तो किस तरह की परिस्थितियां नजर आती है आपको?
1: देखिए वीरेन जी, भारत और बिहार के व्यवहारिक परिदृश्य में देखते हैं तो स्थिति यह है कि मानवाधिकारों को हासिल करने का अधिकार केवल उन सुविधाभोगी सामाजिक वर्गों को है जिसके पास उसको हासिल करने की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और इन सबसे भी इतर शक्ति व साधन मौजूद है।
0: जी जी।
1: इस संदर्भ में मानवाधिकार सिर्फ उन्हीं भावनाओं को या उन्हीं लोगों की बपौती बनकर रह जाते हैं जो मानव कल्याण के योग्य हैं, और मानव कल्याण की योग्यता उन्हीं लोगों के पास है जिनके पास कम से कम कोई शक्ति या पावर मौजूद है।
2: इस बिंदु पर पहुंचकर ऐसा लगता है कि समाज में जेंडर डिवीजन ज्यादा महत्व नहीं रखता, क्लास डिवीजन ज्यादा महत्व रखता है।
1: देखिए रितेश जी, ऐसा नहीं है। जहां क्लास की धारणा सामाजिक विभाजन को ज्यादा रेखांकित करती है, वहीं जेंडर विभाजन हर क्लास में मौजूद होता है।
2: जी जी।
1: यही वजह है कि अब नारीवादी चिंतकों और व्यवहारकों को सोचना पड़ रहा है कि घर के शयन कक्ष से संयुक्त राष्ट्र संघ की साम्राज्यवादी नौकरशाही के वातानुकूलित कक्षों तक स्त्रियों के अधिकारों का विस्तार सिर्फ वर्गीय संरचना के दायरे में बांधकर देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है। ये सवाल कि स्त्रियां घर के चार दीवारी से विश्व के क्षितिज तक एक होमोजेंस ग्रुप नहीं हो पाती और समस्त सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विभाजनों के साथ ही विभाजित है, तो ग्लोबल सिस्टरहुड का नारा एक वैश्विक नारा किन किन मुद्दों पर बन सकता है, आज के नारीवादी चिंतन और आंदोलन को झकझोर रहा है।
0: बिल्कुल कपूर साहब, आपका तर्क काफी मजबूत है। तो क्या यह माना जाए कि सिर्फ स्त्री का स्त्री होना ही वैश्विक बहनों के नारे को सार्थक करता भी रहा है या कर सकता है?
1: लेकिन इतना तो वीरेंद्र जी मैं अवश्य कहूंगा कि हर समाज में स्त्री का स्त्री होना भी तो अलग अलग पहचान रखता है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हर मानवाधिकार स्त्री का अधिकार भी है। इसका सत्यापन भारत में और बिहार में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं और उस आप पाएंगे, पात्र भी हैं कि शिक्षा के रोजगार के अवसर तक, परवरिश से लेकर शादी तक, जन्म से मृत्यु तक स्त्रियां हर कदम पर, जहां तक खुद को खुद के बोध से खुद को बांध पाना या बांध पाती हैं, वही अधिकार बोध से खुद को लगभग रिक्त है। ये आम स्थिति है और समाज का एक छोटा सा हिस्सा अगर इस आम स्थिति से बेहतर है तो उसे विशेष स्थिति में रखना जाना चाहिए या रखा भी जाता है।
2: इसके लिए सामाजिक पितृसत्तात्मक कितना दोषी है कपूर साहब? ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए परिवार रूपी संस्था कि यह व्यवस्था दोषी नहीं है?
1: ये व्यवस्था जहां लड़कों के मुकाबले लड़कियों को शिक्षा, पोषण और रोजगार, स्वरोजगार आदि के लिए जरिए आर्थिक स्वावलंबन के क्षेत्र में दोयम दर्जा देता है, वही विवाह की उम्र आते आते विवाह ही एकमात्र सहारा है या स्त्री जीवन की सफलता है। इस मान्यता को स्त्री न भी चाहे तो वो व्यवस्था इसका निर्वाह करने कराने से बाज नहीं आता। सवाल चाहे वंशधरता का हो या फिर आर्थिक संसाधनों के नियंत्रण का, पितृसत्ता हमारी पारिवारिक और सामाजिक संरचना का प्रभुत्वशाली स्वरूप है।
2: जी जी,
0: बिल्कुल आपका कहना जायज है कपूर साहब कि पितृसत्ता जो है
1: जी,
0: महिलाओं को दोयम दर्जे में रखने के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है।
1: जी,
0: अगर हमारे समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था नहीं होती तो शायद आज जो महिलाओं की स्थिति है वो शायद नहीं रह पाती। दहेज का प्रचलन जो हमारे समाज में है वह भी क्या इसी व्यवस्था के कारण है, और इसको शादी के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ दिया गया है?
1: वृंद जी, शादी के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ गया दहेज प्रचलन, ये प्रथा नहीं है, क्योंकि दहेज का मौजूदा रूप प्रथा नहीं है। स्त्री को मनुष्य की श्रेणी से कितना नीचे गिरा देता है ये बताने की जरूरत नहीं। इसी संदर्भ में ये कहना गलत नहीं हुआ कि एक स्त्री को पुरुष एक साथी के रूप में पाने का जो कुदरती अधिकार है वो दहेज प्रचलन के मौजूदा स्वरूप की सामाजिक संस्थात्मकता के शिकंजे में घुटकर दम तोड़ देता है। स्त्री के लिए एक मानवाधिकार की तरह इस तरह हत्या सामाजिक पितृसत्ता की एक बर्बर मिसाल है।
2: जी जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कपूर साहब। दहेज प्रचलन का खात्मा इस मानवाधिकार की प्राप्ति की दिशा में एक जरूरी पहल है। कई बार पारिवारिक पितृसत्ता के शिकंजे ढीले पड़ जाते हैं तो सामाजिक पितृसत्ता का शिकंजा ज्यादा सख्त हो जाता है।
1: समाज की इस ढांचा में जब तक हम बदलाव नहीं करते तो फिर हम स्त्री मानवाधिकार की बात कैसे करेंगे? वीरेंद्र जी और रितेश जी, मैं आपको बता दूं कि कैसे मिलेगा उन्हें सही मायने में मानवाधिकार, ये प्रश्न भी हमारे सामने विकट स्थिति उत्पन्न करता है। इसके बारे में और भी बातें होंगी, विशेषकर आप तो वीरेंद्र जी इसके इन सब सारे विषयों के बारे में आपको सारी बातों की जानकारी हो गई है, और यदि विशेष बात की जानना चाहते हैं तो हम सब सवाल कर सकते हैं।
0: कपूर साहब, इसके बारे में और विस्तार पूर्वक हम चर्चा आपसे करेंगे
1: जी,
0: लेकिन अगले कार्यक्रम में करेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं
1: जी,
0: आगे भी स्त्री मानवाधिकार से संबंधित बातों की चर्चा आपके साथ जारी रहेगी।
1: जी बिल्कुल,
0: तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कपूर साहब, फिर मिलते हैं तो बात
1: जी। आप दोनों को भी मेरी ओर से नमस्कार, धन्यवाद।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है वसुधैव कुटुम्बकम। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है गैलीलियो और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

व्यक्ति विशिष्ट वार्ता सुनिए। गैलीलियो महान व्यक्ति, महान पुरुष हमेशा हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम प्रेरित होते हैं। हम उनके द्वारा किए कार्यों, अनुसंधानों, खोजों, दया, प्रेम, सदाचार आदि से प्रेरणा पाते हैं। दोस्तों, महान जन अपने अद्भुत कार्यों के द्वारा हमें और हमारे जीवन को अधिक सुविधाजनक एवं सुखमय बना देते हैं। उनके विशेष कार्यों से हम प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। जीवन की यह भी एक सच्चाई है कि दुनिया इन महान व्यक्तियों के कारनामों, महान कार्यों एवं सद्गुणों एवं सद्विचारों से चलती है। इन महान विभूतियों ने इतने बड़े बड़े आविष्कार एवं अनुसंधान किए हैं कि जीवन बड़ा आसान सा हो गया है। तो दोस्तों, इटली में स्थित पीसा की मीनार सारी दुनिया के लिए अजूबा है। यह आश्चर्य से भरा है और दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। इसी पीसा नगर में 15 फरवरी सन 1564 ईस्वी को गैलीलियो का जन्म हुआ था। उनके पिता एक संगीतकार थे। पीसा के चर्च में भक्ति परक वाद्य बजाया करते थे। एक पुरोहित के माध्यम से ही उन्होंने अपने बेटे गैलीलियो को मठ के एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। दोस्तों, जब गैलीलियो 16 वर्ष के हुए, उन्होंने अपने पिता से सन्यासी बनने की अनुमति मांगी। पर उनके पिता बड़े समझदार थे, गैलीलियो की प्रतिभा को जानते थे। पिता ने उन्हें डॉक्टरी पढ़ने के लिए पीसा के विश्वविद्यालय में भेज दिया। पर गैलीलियो की डॉक्टरी में कोई रुचि न थी। उन्हें तो गणित और विज्ञान विषय अच्छे लगते थे। एक दिन की बात है, गैलीलियो पीसा के महान गिरजाघर में प्रार्थना कर रहे थे। तभी उनका ध्यान झूलते हुए झाड़ फानुस को देखकर भंग हो गया। उन्होंने अपनी नाड़ी को कमानी से चलने वाली घड़ी की तरह इस्तेमाल किया और खोज निकाला कि झाड़ फानुस द्वारा बनाए गए मेहराब की लंबाई की अपेक्षा दोलन की गति में बराबर समय लगता है। इसी सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार हुआ। वे डॉक्टरी की पढ़ाई तो छोड़ चुके थे, अब तो गैलीलियो यूक्लिड एवं आर्किमिडीज के सिद्धांत में गोता लगाने लगे थे। उनके पास जो भी पूंजी थी उसे प्रयोगों पर खर्च करने लगे। क्रमशः 8 साल के कठोर परिश्रम के बाद तस्किनी के एक महान ड्यूक के रूप में उन्हें मान्यता मिली। गणित में गैलीलियो की योग्यता एवं क्षमता की जानकारी धीरे धीरे सबको होने लगी। पीसा के विश्वविद्यालय में उन्हें गणित के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। अब गैलीलियो की छोटी मोटी आर्थिक परेशानी भी दूर हो चुकी थी। दोस्तों, स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरने वाले पदार्थों की गतिशीलता के संबंध में उन्होंने अनेक नए प्रयोग किए और निर्णय दिया कि लंबवत प्रक्षिप्त वस्तुएं प्रक्षेप्य का मार्ग निर्धारण करती हैं और आकार में बलामिक होती हैं। एक दिन गजब हो गया। गैलीलियो पीसा की झुकी हुई मीनार के ऊपर चढ़ गया। वहां से उन्होंने एक साथ अलग अलग वजन की 2 वस्तुएं नीचे गिरा दी। वे दोनों वस्तुएं जमीन पर एक ही साथ गिरी। यह प्रयोग कर गैलीलियो ने अरस्तु की गतिशीलता एवं गुरुत्वाकर्षण के नियम को गलत साबित कर दिया। इसके बाद तो गैलीलियो की ख्याति पूरी इटली में फैलने लगी। ख्याति एवं सफलता प्राप्त करते ही अनेक दुश्मन एवं विद्रोही भी पैदा हो गए। स्थापित भौतिक सिद्धांतों को गलत साबित करने के कारण उन पर अनेक अभियोग लगाए गए। दोस्तों, गैलीलियो बड़े ही शांत प्रकृति के व्यक्ति थे। ऐसे क्षण में भी वे घबराए नहीं, अपितु शांति बनाए रखा उन्होंने। अपने पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और पीसा छोड़कर चले गए। 1592 में वेनिस की सीनेट द्वारा गैलीलियो को पादुआ विश्वविद्यालय में गणित विभाग में फिर से नियुक्त किया गया। ये वर्ष उनके लिए हर्षोल्लास एवं खुशी के रहे। दुनिया के तमाम विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। गुरु शिष्य की परंपरा भी गैलीलियो ने निभाई। अधिकांश विद्यार्थी परिवार के सदस्य की तरह उनके ही घर में रहते थे और पढ़ाई करते थे।
यह समय उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। वे बहुत खुश थे और खुशी खुशी अपने प्रयोगों पर ध्यान दे रहे थे और नए नए आविष्कार करने में लगे थे। उन्होंने अनेक उपलब्धियां भी हासिल की। दोस्तों, गति के लिए मानक निर्धारित किया, पदार्थ के लिए बल, ध्वनि और इसके तथ्यों, हवा का घनत्व और दबाव संबंधी सिद्धांतों का भी प्रतिपादन उन्होंने भलीभांति किया। सन 1598 में उन्होंने थर्मामीटर का आविष्कार किया। इसके बाद नाड़ी माप यंत्र का भी आविष्कार किया। 1609 में दूरस्थ नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। दूरबीन यंत्र से विद्यार्थी एवं प्रशंसक इतने प्रभावित हुए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। चंद्रमा पर बड़े बड़े पहाड़ों को देखकर एवं समुद्र को देखकर वे हक्के बक्के रह गए। तो दोस्तों, उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उन्होंने पूरे विश्व को यह भी बताया कि आकाश गंगा नक्षत्रों का समूह है और हर नक्षत्र अपने आप में एक सूर्य है। सन 1610 में गैलीलियो ने यह भी खोज निकाला कि बृहस्पति के चारों ओर और चार उपग्रह हैं। उन्हें यकीन हो गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसी के साथ उन्होंने समुद्र की गहराई तथा पहाड़ों की ऊंचाई के मापक यंत्रों का भी आविष्कार किया। 17वीं शताब्दी में गैलीलियो ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया। अब गैलीलियो विज्ञान के लिए एक चमत्कारी पुरुष बन चुके थे। यूरोपवासी उन्हें एक महान वरदान के रूप में मानने लगे थे। 46 वर्ष के हो चुके थे गैलीलियो। पादुआ विश्वविद्यालय में आजीवन गणित के पद पर नियुक्त कर लिए गए। आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो चली थी। इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी गैलीलियो अपनी मातृभूमि को भुला नहीं पाए। अंत में पीसा के राजकुमार का निमंत्रण मिला और वे अपने स्वदेश लौट आए। दोस्तों, देश लौटकर उन्होंने स्वयं को नई नई खगोलीय खोजों में लगा दिया। गैलीलियो ने सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती रहती है। दोस्तों, गैलीलियो ने 8वें संत पिता के समय अनेक किताबें भी लिखी और उन किताबों का प्रकाशन भी हुआ। यह किताब जड़त्व एवं गतिवर्धन के बारे में थी, जिसे एक शताब्दी बाद न्यूटन ने गति के सिद्धांत के रूप में पूर्णता प्रदान की। दोस्तों, 8 जनवरी सन 1642 को 78 वर्ष की आयु में गैलीलियो ने अपनी पुत्री की गोद में दम तोड़ दिया। करीब एक शताब्दी बाद गैलीलियो की अस्थियों को हटाकर फ्लोरेंस के सांता क्रोचे नामक चर्च में दफना दिया गया। उनकी स्मृति में वहां एक स्मारक भी बनाया गया है। 1979 में कलीसिया द्वारा उसकी पुनः स्थापना की गई। तो दोस्तों, गैलीलियो ने सारी दुनिया के लिए अनेक आविष्कार किए। ये सारे आविष्कार मानव जाति के लिए अनमोल तोहफा है। भले ही सदियां बढ़ती जाएं, पर गैलीलियो और उनके काम के जादू को मानव समाज कभी नहीं भुला सकता। दोस्तों, ऐसे आविष्कारक बहुत कम हुए हैं जिन्होंने सारी दुनिया के लिए इतने सारे महत्वपूर्ण आविष्कार किए। भले ही गैलीलियो का जीवन कुछ कारणों से दुखमय रहा, अभावों में बीता, पर उन्होंने अपने दम पर वे सारे आविष्कार किए जिसकी दुनिया को जरूरत थी और दुनिया में जीत हासिल की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था गैलीलियो, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है नाटक, जिसका शीर्षक है बदलते रिश्ते भाग एक। इस नाटक के लेखक एवं निर्देशक हैं संदीप दुबे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं नाटक।

0: प्रस्तुत है नाटक बदलते रिश्ते। इसके लेखक और निर्देशक हैं संदीप दुबे।
1: अजय, हाँ, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए तुम कितनी मेहनत करते हो, करते भी हो या सोचते हो? सामने वाले से मात्र लेना ही तुम्हारा अधिकार है क्या, या सोचते हो सामने वाला भला जाएगा भी कहां? आखिर वह तुम्हारा रिश्तेदार जो है। रिश्ता भी हमारे कपड़ों की तरह मैला हो जाता है, जिसे हर पल धो पोंछ कर साफ करना पड़ता है। जो 10 साल पहले तुम्हारा था, वह 10 साल बाद भी तुम्हारा ही है। इसकी क्या गारंटी है तुम्हारे पास? मां बाप तो मां बाप है ना। अजय, हो सकता है बेटे को देख मुंह जागे और छाती से लगा ले तुम्हें, लेकिन सुधा के पास क्या अधिकार लेकर जाओगे? क्या तुम्हारा बच्चा तुम्हें पिता मानेगा, जिसे अजन्मा छोड़कर तुम अमेरिका भाग गए थे चुपचाप बिना कुछ बताए?
2: श्याम, सुधा मेरी पत्नी है, उसे कोई कानून नहीं झुटला सकता, और उस बच्चे में मेरा खून है।
1: तो क्या कानून के आगे गुहार लगाओगे कि वह तुम्हें तुम्हारी पत्नी दिला दे? बीवी बच्चे का स्वाभिमान और मन क्या कोई हवेली है, जिसकी चाबी कानून तुम्हारे हाथ में रख देगा और वह तुम्हारी हो जाएगी?
2: तुम्हें सुधा की इतनी चिंता क्यों हो रही है श्याम? क्या लगती है वह तुम्हारी?
1: क्या लगती है? यह प्रश्न आज 10 साल बाद ही क्यों याद आया तुम्हें? इतने साल तो तुमने मुड़कर भी नहीं देखा कि वह जिंदा है या मर गई। जब तुम अमेरिका भाग गए थे, 100 रुपए भी नहीं थे उसके पास। उसके गहने तक निकालकर बेच डाले थे तुमने। तुम्हारे पीछे किससे हाथ फैलाए होंगे उसने, किस किस ने कैसी कैसी नजर डाली होगी, क्या तुम्हें ख्याल आया था? और आज पूछ रहे हो मेरी क्या लगती?
2: देखो श्याम, मुझसे बहस मत करो, सुधा का पता बता दो।
1: अरे जाओ, सुधा का पता बता दो, अपने घर और अपने माँ बाप से उसका पता पूछो। भला मैं उसका कौन हूँ?
2: मुझे किसी ने बताया है कि सुधा का तुमसे बहुत गहरा याराना है।
1: याराना है? यह जानते हुए भी कि उसका मेरे साथ पुराना याराना है, क्या दूषित हो चुकी पत्नी भी स्वीकार है तुम्हें?
2: मैं तुम्हारी जान ले लूंगा श्याम।
1: जान ही तो लेना आता है तुम्हें, तुमने जिंदा छोड़ा ही कहा है मुझे, जो जान लेना चाहते हो। हाथ हटाओ वरना।
2: मुझे सुधा का पता बता दो।
1: अपने भाइयों से मांगो सुधा का पता, उन्हीं के पास छोड़कर गए थे ना उसे, तब सोचा था अमेरिका में स्वर्ग बाहें फैलाए बस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह नहीं सोचा था कि सुधा का क्या होगा, मात्र 2 महीने पहले ही ब्याह कर लाई पत्नी को किसके सहारे छोड़कर गए थे तुम? रोटी के टुकड़ों के बदले तुम्हारे भाई

0: अल्लाह को अपनी जागीर समझने लगे थे।
1: वक्त देव, तुम अपना पाप छिपाना चाहते हो।
0: मेरा पाप? अजय, मेरा पाप है कहां? सुधा मेरे साथ मेरे घर में तो नहीं रहती ना? हाँ, मेरा पाप तब जरूर था जब सुधा अपने तार तार कपड़ों में मेरे घर चली आई थी, सिर्फ एक रात का सहारा मांगने के लिए। तुम्हारे भाई ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था इसके अलावा कि वह घर छोड़कर ही भाग जाती। वह एक रात जरूर यहां रही इस घर में। मेरी मां भी तब जिंदा थी। अपना पाप तुम्हारे भाई छिपा रहे हैं अजय।
1: सुधा का पता, मेरे बेटे का पता बता दो प्लीज। प्लीज सुधा का पता बता दो।
0: अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, सो जाओ। शराब पीकर क्या हालत बना ली है तुमने। कल डॉक्टर के पास चलूंगा। सो जाओ अजय, सो जाओ।

0: अजय।
1: हाँ श्याम।
0: डॉक्टर का कहना है दोनों गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया तुम्हारे। क्या अमेरिका में तुम्हारा इलाज?
1: मुझे मेरे बेटे का पता दे दो श्याम।
0: जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे मैं कुछ नहीं करूंगा, और यहीं सरकारी अस्पताल में तुम्हें फेंकाऊंगा, समझे? मैं पूछ रहा हूं, क्या अमेरिका में तुम्हारा इलाज नहीं हो पाया जो यहां चले आए?
1: मुझे मेरे बेटे का एक गुर्दा चाहिए।
0: क्या गुर्दा?
1: हाँ श्याम, वह मेरा खून है ना, उसके साथ तो मेरा खून मिल सकता है ना। मेरे बच्चे का गुर्दा तो मेरा शरीर स्वीकार कर लेगा ना। बस मुझे एक गुर्दा चाहिए।
0: क्या? तो क्या मात्र गुर्दे के लिए अपना जीवन पूरी तरह अपने ही तरीके से जी चुकने के बाद अब तुम्हारी नजर तुम्हारे बेटे पर है? वाह अजय वाह, वह मासूम बच्चा जो आज मात्र 9.5 साल का है, जिसके सामने पूरा जीवन पड़ा है, उसी के शरीर का एक हिस्सा लेने तुम इतनी दूर चले आए। वाह, तुम आदमी नहीं राक्षस हो। जिस खून की दुहाई तुम पूरे 2 दिन से दे रहे हो उसमें बस तुम्हारी अपनी ही जरूरत थी। मेरा सोचना गलत नहीं था?
1: मैं एक बार ठीक हो जाऊं श्याम, जाते ही मैं तुम्हारा पूरा कर्ज उतार दूंगा। सुधा और मेरे बेटे को भी अमेरिका बुला लूंगा। तुम चाहो तो तुम भी मेरे कारोबार में शामिल हो सकते हो। मेरे पास बहुत रुपया है श्याम।
0: हालात से तो ऐसा नहीं लगता।
1: देखो मैं रुपया लाया हूं, सारा रुपया उधार है माँ और पिताजी के पास। तुम सुधा को बुला लो।
0: इतना रुपया है तो एक गुर्दा वहीं अमेरिका में खरीद क्यों नहीं लिया? पैसे वाला इंसान तो सब खरीद सकता है ना अजय।
1: मेरा खून किसी के भी साथ मिल नहीं खाता।
0: तुम्हारा तो दिल भी किसी के साथ मिल नहीं खाता, तो खून कहां से मिल जाएगा? क्या वहां तुम्हारा परिवार नहीं
1: है? 2 बच्चे हैं मगर वे तो छोटे हैं ना।
0: तो क्या सुधा का बच्चा छोटा नहीं?
1: हम डॉक्टर से बात कर लेंगे, तुम उसे ले आओ। बस मैं पूरी कीमत देने को तैयार हूं श्याम।
0: तुम अपने घर जाओ अजय, मैं सुधा को फोन करता हूं, वह कल तक आ जाएगी।
1: हम वहीं चलते हैं ना?
0: नहीं, जो भी होगा तुम्हारे माँ बाप और भाइयों के सामने होगा। इंतजार करूं।

0: आओ सुधा, कितने दिन की छुट्टियां लेकर आई हो?
1: जब तक आप ठीक ना हो जाएं।
0: मुझे क्या हुआ?
1: तो क्या फोन पर झूठ कहा था? राहुल का परिवार उसे याद कर रहा है, जल्दी आ जाओ।
0: नहीं तो, सच कहा था। दरअसल राहुल का पिता आया है, उससे मिलने। अजय आया है सुधा।
1: क्या कह रहे हैं आप?
0: सच कह रहा हूँ, पिछले दो दिन से वह यहीं था।
1: नहीं।
0: हाँ, मेरे ही घर में, पर अभी हमें अजय के घर जाना होगा सुधा।
1: क्या?
0: अजय को तुमसे कुछ काम है, उसे क्या उत्तर देना है क्या नहीं, इसका निर्णय तो तुम्हें ही लेना होगा।
1: क्या काम है उसे? कहीं वो मुझे साथ ले जाने तो नहीं आया? अब मैं उसके साथ?
0: तुम्हारा पति है वह, आया है तो।
1: पति के नाम का सिंदूर तो मैंने कब का पोंछ दिया। नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए।
0: तो इतने साल क्या सोचती रही तुम? कुछ तो आस थी ना। मेरी बात मानो, चलो सुधा मेरे साथ चलो।

अभी आप सुन रहे थे नाटक जिसका शीर्षक था बदलते रिश्ते भाग एक, और इसके लेखक एवं निर्देशक थे संदीप दुबे। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट हैं आकाश जांगरा। नमस्कार।

दोस्तों, रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सिस्टर गंगा रावत, एसएसपीएस। दोस्तों, अभी की सभा 12 से 1 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास, युग संचार और भक्ति गीत।

तो आइए दोस्तों, हम सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा जी, और यह प्रस्तुति है सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की के।

0: तो ये मुरुड की आबादी क्या होगी?
1: मुरुड की करीब 14,000 या 15,000 आबादी है।
0: बस 14-15,000, छोटा सा गांव है। मतलब
1: छोटा सा गांव है।
0: अच्छा, तो फिर ये जैसे आप संगीत का जलसा करते हैं तो उसमें आम लोग भी आते हैं सुनने के लिए?
1: हाँ, आते हैं। अच्छा। 100-150 और आजू बाजू के गांव से, यानी अलीबाग, महाड़, पनवेल, इधर से भी लोग सुनने को आते हैं, गाने को आते हैं।
0: हाँ। मुंबई आपके गांव से कितनी दूर है?
1: करीब 150 या 200 किलोमीटर।
0: अच्छा, अगर कोई दवाइयाँ वगैरह खास तरह की मंगानी हो तो खुद जाते हैं या?
1: नहीं नहीं, मिलती है मुरुड में।
0: मुरुड में दवाइयाँ मिल जाती हैं? अच्छा अच्छा, तो संगीत आपने सीखा भी है?
1: संगीत पहले तो मैंने भारत गायन समाज में सीखा, जो भास्कर बुआ बखले जी ने स्थापित किया था। और फिर मैंने वामन राव भावे जी से सीखा। और मुरुड एकदम शांत जगह है, इसलिए खुद गाते रहता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, शास्त्रीय संगीत गाते हैं?
1: हाँ।
0: और साथ में संगत तबले पर कोई करता है आपकी?
1: पहले तो थे मेरे, लेकिन अभी नहीं है।
0: अब नहीं है? तो बिना तबले के तो शास्त्रीय संगीत का अभ्यास जरा मुश्किल होता है। ऐसा सुना है हमने।
1: बराबर है, छोटे गांव में तो ये मुश्किलें आती है, इसलिए तो ये मंडल हमने स्थापित किया।
0: हाँ।
1: क्योंकि जिधर बजाने वाले उधर गाने वाले नहीं, गाने वाले बजाने वाले नहीं।
0: हाँ।
1: एक दूसरे से मुलाकात होती है।
0: हाँ।
1: कम से कम बरस में एक दिन तो हम साथ रहते हैं, साथ गाते हैं।
0: हाँ।
1: साथ उठते बैठते हैं, गाने की बातें होती है।
0: एक बात डॉक्टर नाम जोशी हम आपसे सुनना चाहेंगे, वो ये कि जब आप एक छोटे से गांव में संगीत का एक समारोह करते हैं एक स्वर्गीय गुणी कलाकार के नाम पर, तो क्या आप इसमें किसी प्रकार की कोई शासकीय सहायता की मांग नहीं कर सकते, ताकि आपके यहाँ भी कुछ और अच्छे नामी कलाकार आए हैं? और शास्त्रीय संगीत के अलावा सुगम संगीत है, लोक संगीत है, मछुआरों का भी बड़ा लोकप्रिय संगीत होता है। होता है कि नहीं?
1: होता है, बिल्कुल होता है।
0: तो इस तरह का मिला जुला आयोजन आप करें, ऐसा आप नहीं सोचते?
1: क्या है कि भक्ति संगीत तो यानी हर जगह चालू रहता है, मछुआरों का संगीत तो त्योहार में सुनने को मिलता है, लेकिन शास्त्रीय संगीत सुनने वाले कम होते हैं, गाने वाले कम होते हैं। यानी आपको मजे की बात बताता हूँ, समझो मेरे जैसा आदमी गाने गया किधर तो पहले बोलेंगे आऊ नको, यानी शास्त्रीय संगीत मत सुनाओ, नाट्य संगीत सुनाओ, गजल सुनाओ, ये सुनाओ। तो मेरी जो चाह है और मेरे जैसे बहुत लोग है कि गाने वाला है बजाने वाला, उनकी चाह पूरी होनी चाहिए, इसलिए ये हमने मंडल बनाया है।
0: तो हम ये चाहेंगे, क्योंकि हमारे अधिकांश श्रोता, मतलब जरूरी नहीं कि वो सब शास्त्रीय संगीत ही समझते हों, गांव के भी श्रोता हैं, खास करके हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हमारे मध्य प्रदेश, यहाँ के जो श्रोता हैं। तो आपको कोई मछुआरों का गीत याद है जिसे आप गा के सुना सकें? जैसे उनके यहाँ कोई त्योहार होता है, शादी होती है, तो गाते तो वो अपनी भाषा में ही होंगे, तो वो क्या धुन होती है उसकी?
1: अभी मैं मराठी में एक भजन सुनाता हूँ जो मछुआरों को भी अच्छा लगता है,

0: बड़े बांधोनिया देसी काला हाथी
1: हाँ।
0: ऐसे काये चित्ती आले तुझा,
1: इसका मतलब क्या है बताएंगे?
0: पूरी तरह से कस के बांधा है तुमने
1: हाँ।
0: मुझे, और जो काल है
1: हाँ।
0: उसके सामने मुझे फेंक दिया
1: हाँ।
0: यानी मैं कुछ कर भी नहीं सकता
1: हाँ।
0: ऐसी मेरी हालत क्यों बनाई
1: हाँ।
0: तुझा माजा देवा कार्य वैराकार, यानी तुम्हारी और मेरी क्या दुश्मनी है
1: हाँ।
0: जो मुझ पर दुख के पहाड़ गिरा रहे हो तुम।
1: अच्छा, ये ईश्वर को उलाहना दिया जा रहा है। अच्छा अच्छा,
0: नामदेव महाराज जी,
1: संत
0: नामदेव महाराज जी थे, उनका भजन है ये,
1: संत नामदेव।
0: हाँ, संत नामदेव महाराज जी।
1: अच्छा डॉक्टर नाम जोशी, आप में कई चीजें ईश्वर ने आपको दी हैं। आप पेशे से डॉक्टर हैं, रुचि आपकी संगीत में है। आपका जो अगला जीवन है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि जीवन की डोर कितनी लंबी है, कब कट जाएगी, तो आप अपने इस जीवन से संतुष्ट हैं, एक बात, और दूसरी कि आप आगे और क्या करना चाहेंगे?
0: हाँ जी, मैं संतुष्ट तो हूँ और आगे गाने यानी शास्त्रीय संगीत ही और सीखने की कोशिश करूंगा, और ये जो मंडल का कार्य है ये आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा।
1: और अपने मरीजों की सेवा?
0: मरीजों की सेवा तो करनी ही है, वो तो काम जितने दिन हो सकेगा उतने तो करता ही रहूंगा, बिल्कुल करता रहूंगा। मरीजों की सेवा तो करनी है, अभी तक 35 साल में मैंने कभी देर रात पेशेंट बुलाने आते हैं, डॉक्टर साहब विजिट पर चलो,
1: कैसे जाते
0: किसी
1: थे?
0: को भी मैंने ना नहीं बोला, जाता हूँ।
1: और छोटे से गांव में जहाँ 14,000 की आबादी, आप जाते कैसे हैं मरीजों के?
0: पहले टांगे में भी गया था।
1: अच्छा,
0: साइकिल पर भी गया था।
1: अच्छा,
0: अभी स्कूटर पर भी जाता हूँ।
1: अच्छा अच्छा, तो हमें बहुत प्रसन्नता है कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इस कार्यक्रम में अपने बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार।

मित्रों, अभी आपने सुना कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा जी, और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वास मुंबई की।

साथियों, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वास मुंबई की। दोस्तों, हमारे समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है कार्यक्रम युवा विकास का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा विकास, जिससे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वर्गीय माइकल होजेस जी, और इनकी वार्ता का विषय है अपने आप को परखें, और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: युवा और विकास के अंतर्गत प्रस्तुत है बातचीत अपने आप को परखें। लेखक माइकल हॉजिस और बातचीत में भाग ले रही हैं अपर्णा सिंह और माइकल हॉजिस।
1: युवा और विकास कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा श्रोताओं को अपर्णा सिंह
0: और माइकल हॉजिस का नमस्कार।
1: आप सभी युवा श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम युवा और विकास में स्वागत है।
0: युवा साथियों, यूं तो हर व्यक्ति अपनी अपनी जिंदगी अपने अपने ढंग से जीता है और अपने अपने ढंग से अपनी अपनी जिंदगी गुजारता है, लेकिन
1: माइकल जी, समाज के अपने कुछ नियम और रीति रिवाज होते हैं जिनका हम सभी को पालन करना पड़ता है और उसी हिसाब से जीना भी पड़ता है।
0: बिल्कुल अपर्णा जी, समाज के नियम और कानून कायदे से बाहर जाकर अलग जाकर जिंदगी बिताना व्यर्थ के विवादों और झंझटों में फंसना है
1: जी।
0: तो क्यों ना अपनी इस नियामत जिंदगी को चैन और बिना किसी तनाव के जिए।
1: बिल्कुल माइकल जी, और इसके लिए जरूरी है विशेषकर युवाओं के लिए कि वे अपना जीवन जीते हुए अपने जीवन को परखते भी चलें या परखते रहें।
0: बिल्कुल,
1: जैसे जीवन में किसी विशेष अवसर पर या अवसर में प्रवेश करते हुए वे खास तौर पर अपने आप को परखें।
0: अपर्णा जी, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है। जैसे उदाहरण के लिए, यूं तो प्रत्येक युवा के जीवन में साक्षात्कार, परीक्षा, नौकरी, खरीदारी और विवाह जैसे अनेक अवसर आते हैं जिनसे युवा अभिभूत हो उठते हैं।
1: मेरे ख्याल से माइकल जी, लेकिन युवाओं के जीवन में इनमें से सबसे अलग और सबसे सुखद अवसर विवाह का ही होता है।
0: बिल्कुल, ये तो सही कहा आपने
1: जी, क्योंकि किसी के भी जीवन में विवाह मुख्यतः जोश और धूमधाम से एक ही बार होता है।
0: इसीलिए अपर्णा जी, ऐसे अवसरों के पूर्व युवाओं को अपने आप को विशेष तौर से परखना चाहिए, क्योंकि अपर्णा जी, विवाह बंधन कोई एक दो दिन का बंधन तो होता नहीं है। ये बंधन तो उम्र भर का बंधन है।
1: और इसलिए माइकल जी, हम अपने युवा साथियों को यही सलाह देना चाहेंगे कि विवाह की रजामंदी के पूर्व या विवाह करने के पूर्व यदि हमारे युवा साथी कुछ विशेष प्रश्नों और कुछ मुद्दों का जो उनके विवाह से संबंधित हो तो उन्हें उस पर विचार विमर्श जरूर करना चाहिए।
0: जी हाँ अपर्णा जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे ख्याल से इस विचार विमर्श से वे अपने भविष्य में होने और घटने वाली अनेक अनचाही दुर्घटनाओं और विसंगतियों तथा समस्याओं से बच सकते हैं।
1: जी, अनचाही दुर्घटनाओं, हादसों और विसंगतियों और समस्याओं से बच सकते हैं, साथ ही साथ अपना भविष्य और अपना जीवन सुखी बना सकते हैं।
0: बिल्कुल अपर्णा जी, सबसे पहले तो उन्हें इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि क्या उनकी आयु वास्तव में विवाह के योग्य है।
1: पहला प्रश्न, पहली
0: जी,
1: सोच
0: जी, या फिर महज वे किसी भावना के अतिरेक या किसी जोश में आकर यह कदम उठाने जा रहे हैं।
1: माइकल जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अक्सर ये भी देखा गया है कि कई बार युवा किसी के प्रेम में पड़कर या फिर किसी के मोह में पड़कर समय से पहले ही विवाह करने की तैयारी करते हैं। मेरे ख्याल से इसीलिए आपने उम्र की बात की है सबसे
0: जी,
1: पहले।
0: जी। इसके अलावा अपर्णा जी, किसी और युवा को विवाहित जिंदगी बिताते देखकर या किसी विवाहित को देखकर भी उनका मन विवाह करने के लिए डोलने लगता है कि हम भी शादीशुदा होते या हम भी शादी कर ही लें। मेरे ख्याल से ये विचार इस समय किसी भी हालत में सही नहीं हो सकता, क्योंकि विवाह करने के पूर्व वैचारिक विमर्श अपने आप में मैं समझता हूँ जरूरी है।
1: और माइकल जी, कई बार विशेषकर गांव के या गांव की पृष्ठभूमि वाले युवा अपने माता पिता के कहने पर विवाह के लिए राजी हो जाते हैं बिना ये जाने और सोचे समझे कि इस उम्र में विवाह करने से वे अपने भविष्य में फूल बो रहे हैं या कांटे बो रहे हैं।
0: जी हाँ अपर्णा जी, और इसके अलावा उन्हें इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए कि क्या वे अपने पैरों पर खड़े हैं, यानी कि क्या वे नौकरी कर खुद कोई कमाई कर रहे हैं या फिर माँ बाप पर ही आश्रित हैं और शादी करने जा रहे हैं। ये एक अहम सवाल उनके सामने होना चाहिए।
1: डिपेंडेंट है या नहीं, ये कह रहे हैं आप, जो बहुत जरूरी है किसी के लिए भी। आपने एक बहुत अहम सवाल की ओर ध्यान दिलाया है कि वाकई क्या शादी करने वाला युवा कोई नौकरी करके इतना कमा रहा है कि शादी के बाद वो अपने परिवार का पालन पोषण ठीक तरीके से कर पाता है।
0: इसके अलावा अपर्णा जी, कई बार आपने ये भी देखा होगा कि किसी युवा के, विशेषकर युवती के प्रेम विवाह करने पर या करने के पूर्व घर परिवार या बाहर किसी न किसी बात पर आपत्ति जरूर होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: विशेषकर युवती के करने पर
1: जी।
0: इसलिए इस बात का ध्यान भी वे जरूर रखें कि सारी आपत्तियों के निराकरण के बाद ही अपने विवाह के बारे में कोई युवती या युवक सोचे।
1: जी हाँ माइकल जी, क्योंकि वैसे तो उनका विवाह हर हाल में अगर वे चाहेंगे तो हो ही जाएगा।
0: जी हाँ।
1: लेकिन किसी को नाराज करके क्या वे अपने भावी जीवन के लिए किसी से आशीर्वाद पा सकेंगे, इस बात का विचार उन्हें जरूर करना चाहिए।
0: अपर्णा जी, यहाँ मैं एक बात विशेष तौर पर युवतियों के लिए कहना चाहूंगा
1: जी,
0: कि युवतियों को भी इन बातों पर विचार करना चाहिए कि क्या मुझे अभी विवाह करना है या अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना है
1: जी।
0: क्या मुझे पहले अपना करियर बना लेना चाहिए और फिर शादी के बारे में सोचना चाहिए।
1: और सबसे बड़ी बात माइकल जी, उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि जिस घर परिवार में मेरी शादी होने वाली है या मैं जाने वाली हूँ, वो घर परिवार मेरे लायक है या नहीं, मैं उस घर परिवार के लायक हूँ या नहीं, और क्या मेरा सारा जीवन वहाँ बिना किसी परेशानी के, किसी बड़ी परेशानी के सुखद हो सकता है या नहीं, या सुखपूर्वक बीतेगा या नहीं।
0: पन्ना जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि युवतियों को तो बहुत ही सोच समझ कर और बहुत देखभाल कर अपने आप को परख कर ही अपने आप को शादी के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।
1: और इसके साथ ही एक ये बात भी जरूरी हो जाती है माइकल जी, कि युवती के परिवार वाले भी उसे अपने आप को परखने का अवसर दें
0: जी,
1: इसके बाद ही उसे अपने विवाह पर सहमति प्रकट करने दें, क्योंकि ये उसके जीवन भर का सवाल होता है।
0: अपर्णा जी मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि इस दृष्टि से युवती का परिवार भी युवती यानी कि अपनी बेटी के सुखद भविष्य के प्रति आश्वस्त हो सकता है, क्योंकि अपनी बेटी के सुखमय और सुरक्षित जीवन के लिए जो हर माँ बाप ही लालायित रहते हैं और सोचते हैं ऐसा अपनी बेटी के सुखद भविष्य के लिए।
1: और एक बात और कहना चाहूंगी माइकल जी,
0: जी जरूर,
1: कि इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि माता पिता अपने बेटे और बेटी को स्वयं को परखने का अवसर दें और बेटा बेटी भी अपने आप को परखें।
0: अपर्णा जी हम अपने युवा श्रोता साथियों को ये भी बताते चले कि हम यहाँ अपने आप को परखने की बात क्यों कर रहे हैं।
1: क्यों कर रहे हैं
0: ये बात? हम इसलिए कर रहे हैं अपर्णा जी क्योंकि बिना परखे व्यक्ति अपने आप को तैयार कर ही नहीं सकता है, और अपने आप को बिना परखे वो किसी भी प्रतियोगिता या अवसर के लिए अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सकता।
1: बहुत अच्छी और गहरी बात कही है माइकल जी आपने, और अपने आप को न परखने का परिणाम भी व्यक्ति को खुद ही भुगतना पड़ता है।
0: अपर्णा जी, और मेरे ख्याल से उसकी कीमत भी उसको चुकानी पड़ती है,
1: क्योंकि जब तक आप अपने आप को परखेंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितने पानी में हैं और आप किस लायक हैं या किस लायक नहीं हैं।
0: जरूर, ये पता होने के बाद ही तो आप किसी प्रतियोगिता किसी अवसर के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं।
1: और माइकल जी, अपने आप को बिना तैयार करे ही किसी प्रतियोगिता या अवसर में शामिल करने का खामियाजा उसे असफलता या नाकामयाबी के रूप में भुगतना पड़ता है
0: जी।
1: और जहां तक मैं समझती हूं, किसी भी प्रतियोगिता में सबसे अधिक युवा ही शामिल होते हैं, और अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी सबसे अधिक मुझे लगता है कि युवा ही अपने आप को प्रस्तुत करते हैं।
0: जी हाँ जी हाँ, और अपर्णा जी यही कारण है कि युवा ही किसी परीक्षा प्रतियोगिता अथवा किसी अवसर के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों से प्रभावित होते हैं।
1: बिल्कुल, और किसी भी परीक्षा या प्रतियोगिता में शामिल होना युवाओं की एक अनिवार्य विवशता भी होती है।
0: अपर्णा जी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप युवाओं के किसी भी परीक्षा अथवा प्रतियोगिता में शामिल होने को एक अनिवार्य विशेषता क्यों कह रही हैं? क्योंकि युवाओं को अपना करियर बनाने के लिए किसी प्रतियोगिता परीक्षा को उत्तीर्ण तो करना ही होगा।
1: बिल्कुल,
0: ये तो एक नियम है, और इसको कोई मजबूरी कैसे कह सकता है, जरा स्पष्ट कीजिए।
1: देखिए माइकल जी, जहाँ कहीं भी कोई नियम किसी बारे में होता है तो उस नियम को मानना, उसका पालन करना अपने आप में एक मजबूरी ही तो होती है।
0: जी जी,
1: ऐसा मैं सोचती हूँ।
0: हाँ,
1: और मजबूरी मैंने इसलिए कहा क्योंकि आजकल के युवा चाहते तो ऊंचे पद पर और प्रतिष्ठित पद पर जाना है
0: जी।
1: लेकिन इन सबको पाने के लिए जो मेहनत और पढ़ाई करनी होती है वो कितने युवा करते हैं, और ऐसे ही लोगों के लिए ये व्यवस्था बन जाती है।
0: अपर्णा जी, अच्छे करियर और ऊंचे पद की कामना तो हर युवा करता ही है, जैसा कि आपने भी कहा, लेकिन एक पुरानी कहावत भी तो है कि कुछ त्यागे बिना कुछ प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से यूं भी कहा जा सकता है कि कुछ पाने के लिए उससे पाने से पहले योजना बनानी पड़ती है और तैयारी भी करना पड़ती है।
1: माइकल जी, इसे यूं भी कह सकते हैं हम कि यदि आपको कोई पद प्राप्त करना है तो पहले अपने आप को उस पद के योग्य बनाना होगा, यानी आप उस पद के योग्य बनकर ही उस पद को प्राप्त कर सकते हैं, बिना उसके तो बिल्कुल संभव ही नहीं है।
0: यानी कि आपको पहले अपने आप को परखना होगा कि आप उस पद को पाने की योग्यता रखते हैं या नहीं।
1: जी यही बात कह रहे हैं।
0: अगर नहीं रखते हैं योग्यता तो आपको उस पद को प्राप्त करने की कामना छोड़ देनी चाहिए।
1: छोड़ देनी।
0: और अगर आप में उस पद को प्राप्त करने की योग्यता है तो फिर आपको उस पद को प्राप्त करने की तैयारी में जुट जाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: उस पद को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत शुरू कर देना चाहिए।
1: और माइकल जी, यूं भी कह सकते हैं हम कि यदि व्यक्ति को कुछ पाना है तो पाने से पूर्व उसे अपने आप को उस पद के योग्य अवश्य बना लेना चाहिए या अपने आप को उस पद के योग्य सिद्ध करना चाहिए।
0: जी हाँ अपर्णा जी, और ये सारी बातें बिना किसी पूर्व तैयारी और बिना कड़ी मेहनत के तो बिल्कुल भी संभव नहीं है।
1: बिल्कुल माइकल जी, क्योंकि फिर उस पद पर व्यक्ति को एक दो दिन नहीं बल्कि वर्षों तक कार्य करना पड़ता है, तभी तो व्यक्ति की सही कार्य क्षमता और उसके कार्य करने के ढंग और उस पद पर उस व्यक्ति के योग्य और अयोग्य होने के बारे में टिप्पणी भी की जा सकती है।
0: लेकिन अपर्णा जी, प्राथमिक रूप से तो उस पद को पाने के लिए उसे अपनी योग्यता तो सिद्ध करनी ही पड़ेगी। जो सफल हो जाते हैं वे अपनी सफलता का जश्न उस पद को पाकर मनाते ही, और जो युवा सफल हो जाते हैं आगे से कुछ अपनी उस सफलता को गंभीरता से लेते हैं, कुछ आगे जाकर और कुछ हल्के फुल्के ढंग से लेते हैं। क्या कहेंगे आप?
1: और माइकल जी, यदि आपकी बात पर गौर किया जाए तो मेरे ख्याल से असफलता की श्रेणी में आने वाले तीन श्रेणी में बांटा जा सकता है।
0: कौन कौन सी तीन श्रेणियां पढ़ना जी, बताइए जरा।
1: देखिए माइकल जी, पहली श्रेणी में तो वे असफल लोग होते हैं जो किसी प्रतियोगिता या परीक्षा में असफल हो जाने पर उसे बहुत हल्के रूप में ले लेते हैं और कुछ ही दिनों में अपनी असफलता को भूलकर फिर से अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं।
0: और दूसरी श्रेणी वाले?
1: और दूसरी श्रेणी उनकी होती है माइकल जी, जो अपनी असफलता को गंभीरता से लेते हैं और अपनी इस असफलता से सबक सीखकर दुगने जोश से और दुगने उत्साह से अपनी असफलता को एक बार फिर से मेहनत कर सफलता में बदलने के लिए जुट जाते हैं।
0: और तीसरी श्रेणी?
1: माइकल जी, तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो अपनी असफलता को लेते तो गंभीरता से हैं
0: जी,
1: लेकिन अपनी असफलता का दोष ये खुद को नहीं मानते। ऐसे लोग अपनी असफलता का दोष किसी और के माथे मारते हैं और यहाँ तक देखा गया है कि आत्महत्या के रूप में सजा खुद को दे डालते हैं।
0: जाहिर सी बात है, ऐसे युवा स्वयं की पढ़ना जी केवल स्वयं की निगाह में ही सही रहते हैं, लेकिन सारे समाज की निगाह में उनका ये काम गलत, अविवेकपूर्ण और ईश्वर के विरुद्ध ही रहता है।
1: और मेरे ख्याल से माइकल जी, यदि ऐसे युवा इस तरह का कोई कदम उठाने के पहले यदि अपने आप को परख लेते तो यकीनन ऐसी नौबत ही नहीं आती। उन्हें तब खुद ही पता चल जाता कि उनकी असफलता या जिन भी कारणों से वे असफल हुए हैं उनके जिम्मेदार कौन है, वे खुद या फिर कोई और है।
0: और अपने आप को परखने के क्रम में उसे ये भी पता चल जाता कि उसकी परीक्षा की तैयारी में उससे कब, कहां और कैसे चूक हो गई, उसकी तैयारी पूरी थी या अधूरी।
1: और यदि वो अपनी इस अधूरी तैयारी के बजाय पूरी तैयारी के साथ बिना किसी प्रकार की कमी लिए परीक्षा में शामिल होता तो आज उसे यूं इस तरह से असफलता का सामना नहीं करना पड़ता।
0: अपर्णा जी, हमारे युवाओं के साथ यही स्थिति प्रेम में भी होती है
1: जी।
0: वे बिना स्थिति को या किसी शख्स को परखे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को प्रेम का नाम दे बैठते हैं या उस स्थिति को प्रेम समझ लेते हैं, आकर्षण की स्थिति को, जबकि प्रेम मनुष्य को ईश्वर का एक अनुपम उपहार है। यह क्षणिक आकर्षण बिल्कुल भी नहीं है।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा माइकल जी, इसलिए युवाओं को विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने पर उसे प्रेम की संज्ञा देने के पूर्व अपने पर एक दृष्टि डालते हुए अपने आप को परख लेना चाहिए
0: जी। अपने आप को परखते समय उन्हें ये देखना और सोचना समझना चाहिए कि जिस विपरीत लिंग के प्रति वे आकर्षण महसूस कर रहे हैं वो महज एक आकर्षण ही है, मित्रता है, या फिर वास्तव में भविष्य में वह एक सुदृढ़, सच्चे और आदर्श प्रेम में बदल जाने वाला विषय है।
1: इसके साथ साथ माइकल जी, उन्हें इस बात को भी परखना और देखना और सोचना चाहिए कि क्या परिवार और समाज भविष्य में सहजता से इस संबंध को स्वीकार कर लेंगे या नहीं करेंगे, और यदि इस संबंध में भविष्य में बाधाएं आएंगी तो कौन सी बाधाएं वे हो सकती हैं।
0: और अपर्णा जी, क्या इन हालातों में भविष्य में भी उनके आपस के संबंध सामान्य और हो सकते हैं?
1: बिल्कुल सही,
0: बने रहेंगे और उनके बीच में प्रेम बना रहेगा। इन तमाम सभी प्रश्नों पर भी उन्हें विचार कर अपने आप को स्थिति के साथ साथ परखना चाहिए।
1: तो माइकल जी, हम आशा करते हैं कि अब से हमारे युवा अपने कार्यों को और खुद को परखते हुए आगे बढ़ेंगे और जीवन में सफलता पाएंगे।
0: जी अपर्णा जी, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने युवा साथियों से इजाजत लेते हैं, माइकल को
1: और अपर्णा को।

मित्रों, अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा विकास, जिससे प्रस्तुत कर रहे थे स्वर्गीय माइकल होजिस जी, और इनकी वार्ता का विषय था अपने आप को परखें, और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वास मुंबई की।

0: साथियों, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वास मुंबई की। मित्रों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार, जिसे प्रस्तुत कर रही है भवानी कौल, और इनकी वार्ता का विषय है रिश्तों में दरारों को बढ़ावा देता मोबाइल, और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
1: युग संचार वार्ता सुनिए, रिश्तों में दरार को बढ़ावा देता मोबाइल। साथियों, ये शीर्षक सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन सत्य है। युग संचार में लगातार जिस प्रकार से तरक्की हो रही है, उसे देखकर सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आज हमारे पूर्वज होते तो सोचते और यही कहते, हमने अपना जीवन ठीक से जिया ही नहीं। मीलों पैदल चलते थे, दूर कहीं खबर या संदेश लेना पड़े तो हफ्ते महीने लग जाते थे। नाते रिश्तेदार से खैर खबर मिले भी अरसों हो जाते थे। पर अब तो भाई सात समंदर पार भी 5 मिनट में बात हो जाती है। दुनिया घटित कोई भी घटना को सारी दुनिया पल भर में देखती और सुनती है। इसलिए आजकल के बुजुर्ग यही कहते हैं, भैया जमाना बड़ा बदल चुका है। इसे यूं भी मोबाइल का जमाना कहें तो बिल्कुल सही है। साथियों, आज संचार व्यवस्था ने जितनी धड़ल्ले से तरक्की की है, उसके बनिस्पत शायद और किसी क्षेत्र में तरक्की हो। संचार व्यवस्था ने तो कमाल ही कर दिया। छोटी सी छोटी जगह एवं बड़ी सी बड़ी जगह में संचार के लंबे तार इस तरह फैले हैं कि बातचीत करने में कुछ समय नहीं लगते। बटन दबाया कि बातचीत शुरू। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोबाइल के बारे में। बहुत ही कमाल की चीज है यह मोबाइल। जिस तरह से मोबाइल आज 5 में से हर 3रे और 4थे आदमी के हाथ में है, वह चौंकाने वाला है। इस मोबाइल ने दुनिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। समय की गति को इसने बढ़ा दिया है। संचार के जितने भी साधन आज उपलब्ध हैं, उनमें मोबाइल का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। साइकिल से लेकर कार वाले तक सबके पास मोबाइल होता है। मोबाइल के बारे में कहा जाए कि यह आज सबकी जरूरत बन गई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके बिना किसी का काम पूरा नहीं होता और न ही किसी काम में सफलता मिलती है। या बगैर मोबाइल के सफलता मिल गई कहें तो यह भी असंभव है। इतनी सख्त जरूरत है सबको मोबाइल की। मोबाइल जरूरत भी है और काम की पूर्णता भी है। साथियों, मोबाइल के लाभ के बारे में सोचे तो लाभ ही लाभ है। इसके बिना कोई भी काम अधूरा ही माना जाएगा। इतने ज्यादा फायदे हैं इसके। फिर भी मोबाइल से हानि भी बहुत है। आप कहेंगे, बेचारा मोबाइल तो

करने के बजाय वो अपने मोबाइल से ही लगे रहते हैं। पत्नी कुछ बोलना शुरू करती है कि फोन आ जाता है, फिर वह कुछ पति से पूछना चाहती है तो फिर फोन की घंटी बज उठती है। बेचारी पत्नी तंग आ जाती है, अब भाई करे तो क्या करे। मोबाइल में पति द्वारा लगातार बातचीत ने पत्नी का जीना हराम कर रखा है। वह अपने पति से इस वजह आज बहुत हैरान परेशान दिखती है। मोबाइल के बढ़ते प्रचलन से वाकई में पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ने लगे हैं। ऐसे अनेक किस्से हैं जिससे लगता है कि रिश्तों की बुनियाद कमजोर होने लगी है। अब श्रीमती माला को ही लें। माला से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उनका कहना था कि मोबाइल आज की तारीख में जीवन का एक अंग बन चुका है, परंतु गुस्सा तब आता है जब पति महोदय ऑफिस से घर आते हैं तो लगातार मोबाइल से बातें करते रहते हैं। ये नहीं सोचते कि घर आकर घर का हालचाल पूछ लें, बच्चों के बारे में पूछ लें कि कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, घर का कामकाज कैसा रहा। ये सब पूछने के बजाय वे अपने दोनों कानों में मोबाइल पूरे समय लगाए रखते हैं। हमें कोई साधारण सी बात पूछने के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। अब बात खत्म होगी तब बात खत्म होगी, पर बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। फिर क्या है, मौका मिलते ही मैं उन पर उबल पड़ती हूँ। फिर पति जी भी शुरू हो जाते हैं। इस तरह मोबाइल के कारण आए दिन हम दोनों में कहा सुनी होती रहती है। मुझे पता है कि मोबाइल बहुत काम की चीज है, पर मुझे मोबाइल से चिढ़ होने लगी है। मैं तो उसे सौतन कहती हूँ, सौतन, और सचमुच मेरे अंदर सौतिया डहा है। रेखा के पति ऑफिस से घर आए, नहाने के लिए जैसे ही वे बाथरूम में गए, रेखा चुपचाप पति के मोबाइल में वो सब कुछ देखने लगी कि उसके पति ने दिन भर क्या क्या किया, किस किस से बातें की, किसका मैसेज या संदेश आया, किसका एसएमएस आया, या उसका रोज का काम था। पति मोबाइल छोड़ इधर उधर होते कि रेखा ढूंढने लगती कि किसी महिला या लड़की का फोन तो नहीं आया था। एक दिन सचमुच एक लड़की का मैसेज उसे मिला मोबाइल पर। उसमें लिखा था, तुम मिलो तो हम मिलेंगे, तुम आगे बढ़ो तो हम आगे बढ़ेंगे, तुम रुको तो हम रुकेंगे, इस तरह के कुछ संदेश थे। यह पढ़कर अब तो रेखा से रहा नहीं गया। गुस्से से लाल पीली आखिर वह पति से पूछ ही बैठी, ये लड़की कौन है जिसने तुमको ऐसा मैसेज भेजा है? तुमसे उसका क्या संबंध है? क्या काम करती है? ऐसा सवाल सुनकर रेखा के पति तो हक्के बक्के रह गए। उसे अपनी पत्नी पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, मेरे पीठ पीछे यह मेरा मोबाइल टटोलती रहती है। उसके पति ने गुस्से से जवाब दिया, क्या ऑफिस में महिला काम नहीं करती? लेकिन रेखा का कहना था, इस तरह का कोई मैसेज भेजता है? ऐसा मैसेज तो प्रेमी प्रेमिका ही एक दूसरे को भेज सकते हैं। इस खींचतान में दोनों के बीच में खूब झगड़े हुए। बात इतनी बढ़ गई कि रेखा ने पति से अलग रहने का मन बना लिया। दोनों की गृहस्थी पल भर में उजड़ गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के कारण। दोस्तों, ये सारी बातें घटनाएं बिल्कुल सही हैं। इसी तरह मानसी ने पति के मोबाइल में कुछ ऐसे तस्वीर देखे जिससे उसका पति से पूरा भरोसा और विश्वास ही उठ गया। आपत्तिजनक तस्वीर से मानसी की दिमागी हालत भी कुछ समय के लिए गड़बड़ा गई थी, पर किसी तरह उसने अपने आप को संभाल लिया। अब परिस्थितियां भी पूरी तरह बदल चुकी थीं। वे दोनों एक घर में साथ साथ तो रहते हैं, पर एक दूसरे से बातें नहीं करते। कोई किसी को पसंद करता है या नापसंद करता है, पर कोई रोक टोक नहीं करते। दोनों अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं। मानसी और उसके पति ने केवल एक छत के नीचे रहने का फैसला इसलिए लिया कि ताकि बच्चों का भविष्य बिगड़े नहीं, बल्कि उनका भविष्य उज्ज्वल बने। साथियों, मोबाइल के कारण घर परिवार टूटने के अनेक किस्से कहानियां आप सुन सकते हैं। पति द्वारा मोबाइल में घंटों बातें करना महिलाओं को बहुत चुभता है, उन्हें टीस पहुंचाता है। इसी तरह पत्नी भी अगर नौकरी पेशा है और मोबाइल पर लगातार बातें करती है तो पति भी उसे
शक की निगाह

0: से देखता है, अंदर ही अंदर पति जल भुन जाता है। तो साथियों, युग संचार ने विकास की ऊंचाइयों को छुआ जरूर है, वहीं रिश्तों को बिगाड़ने में मोबाइल के हाथ भी लंबे होते जा रहे हैं। संचार के साधन मोबाइल सुविधा तो देते हैं, पर सुख नहीं। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पति पत्नी दोनों को मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बचना होगा। जहाँ जरूरत है वहीं बातें करें, और लगातार अनावश्यक बातें वो भी घर के अंदर, इससे तो दूर रहना ही उचित है। साथियों, मोबाइल आपकी सुविधा के लिए बनी है, संचार की सुविधा है, बातचीत की सुविधा है, तरक्की की सुविधा है। इसके लिए ये मोबाइल बनाया गया है और इसका आविष्कार हुआ है। तो आप मोबाइल पर उतना ही बातें करें जिससे कि आपकी पत्नी चिढ़े नहीं या आपका पति नाराज न हो।
1: श्रोता साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम युग संचार, जिसे प्रस्तुत कर रही थी भवानी कौल, और इनकी वार्ता का विषय था रिश्तों में दरारों को बढ़ावा देता मोबाइल, और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मन दर्पण और अंत में पर्यावरण। तो आइए साथियों, समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। प्रस्तुत करता है फादर हरमन बंडोड SVD।

सर्वधर्म विचार के तहत लीजिए सुनते हैं वार्ता जिसका शीर्षक है हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। मित्रों, गरीब लोग अगर कहीं 2 जून की रोटी कमाने जाए और वहां से भी उन्हें भगाया जाए तो उनके पास विकल्प कम ही बचते हैं। ऐसे में पहले से ही देश के लिए नासूर बने नक्सलवाद को बल मिल सकता है। ये लोग हथियार उठा सकते हैं और फिर उनके भयावह नतीजों का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। जब देश आजाद हुआ था तो उस वक्त प्रभुत्व समझे जाने वाले कई लोगों ने यह घोषणा की थी कि विविधताओं के इस देश का बिखरना तय है। सीधे तौर पर देखें तो आज उनकी बात असत्य मालूम पड़ती है, पर अगर गहराई से जाकर समझा जाए तो यह समझने में देर नहीं लगती कि भले ही देश न टूटा हो लेकिन धर्म जाति आदि के नाम पर समाज बटा जरूर है। सियासतदान समय समय पर धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटकर राजनीति की रोटी सेकते रहे हैं। फिर का परिस्थिति के लिए अब भाषा और क्षेत्र को भी हथियार बनाया जा रहा है। हाल ही में राज ठाकरे के इशारे पर देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में मराठी अस्मिता के नाम पर उपद्रव मचाया गया। असम में दर्जनों हिंदी भाषी मजदूरों की हत्या भी क्षेत्रीयता के नाम पर ही की गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और यहां के उपराज्यपाल को भी बिहारियों और उत्तर प्रदेश वालों का देश की राजधानी में रहना नहीं सुहाता है। दक्षिण भारत में क्षेत्रवाद का इतिहास काफी पुराना है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्षेत्रवाद की इस आंधी में राष्ट्रवाद का क्या होगा। मन में यह शंका भी पैदा होती है कि विविधताओं को खुद में समेटने वाला यह देश बिखराव की राह तो नहीं चल पड़ा है। मित्रों, अब जब संसदीय चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो हमारे देश की कुछ सियासी पार्टियां और कुछ राजनेता कुर्सी पाने के खातिर जिस प्रकार की गंदी राजनीति पर उतारू हो गए हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद छोटी जाति बड़ी जातियों में हमें बांटकर हम भारतवासियों के दिलों में जिस प्रकार ये लोग नफरत का जहर भर रहे हैं वो निसंदेह हमारे देश की एकता अखंडता के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस धर्म की राजनीति का सबसे बुरा प्रभाव हमारी युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। आज से 10-20 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। हम सब लोग तमाम त्योहार और शादी विवाह की रस्में मिलजुल कर मनाते थे। गांव और कस्बों में शाम को चौपालें सजती थी। हुक्के की गुड़गड़ाहट के बीच सांग और लोकगीतों की धुनों के बीच लोग प्यार सौहार्द के साथ ईद दिवाली दशहरा होली का गुलाल खेलते थे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते थे। गांव के हर एक बुजुर्ग का युवा पीढ़ी सम्मान करती थी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। आज राह से पूरी तरह भटकी हुई सत्ता के भूखे भेड़िया रूपी राजनेताओं की इस दौर की राजनीति ने फिजा में किस तरह सांप्रदायिक जहर भर दिया है। गांव और कस्बों की बात तो छोड़िए, आज एक ही घर में सिर्फ कुर्सी के कारण भाई भाई के खून का प्यासा हो गया है, बाप बेटे का और बेटा बाप के खून का प्यासा है। पर आज भी हमारे मुल्क कश्मीर घाटी में जिस मुगल बादशाह शाहजहां ने जन्नत का खिताब दिया था, यह जन्नत भी गंदी राजनीति के कारण दोखज बन गई है। इस घाटी में उगने वाले तमाम खूबसूरत फूलों को बारूद के धुएं ने काला और बदरंग बना दिया है। इस सब के बावजूद आज भी देश में ऐसी तमाम मिसालें हम भारतवासियों की ओर से सुनने को मिलती हैं, जिसे सुनकर अमन पसंद लोगों का सीना गर्व से फूल जाता है। मित्रों, ऐसी ही एक मिसाल कश्मीर घाटी के पहलगाम में लिद्दर नदी के किनारे स्थित 900 वर्ष प्राचीन शिव मंदिर में आज भी देखने को मिलती है, जिसके पुजारी मुस्लिम हैं। कश्मीर घाटी का यूं तो ये एकमात्र ही मंदिर है। इस मंदिर का संचालन लंबे समय से पंडित राधाकृष्ण के नेतृत्व में स्थानीय कश्मीर पंडित संघ किया करता था, लेकिन 1989 में हिंदू कश्मीर पंडितों को कश्मीरी आतंकवाद के चलते कश्मीर छोड़ना पड़ा। कश्मीर छोड़ने से पूर्व पंडित जी ने पास के गांव में रहने वाले एक मुस्लिम मित्र अब्दुल भट्ट को मंदिर का पूरा दायित्व
यह कहकर दिया था कि तुम रोज मंदिर के दरवाजे खोलकर इसकी साफ सफाई कर दिया करना। और वायदे के मुताबिक अब्दुल बट ने वर्ष 2004 में हुए तबादले के पहले तक रोज मंदिर की देखरेख करना और उसका दरवाजा खोलना और बंद करना जारी रखा। अब्दुल बट के बाद मोहम्मद अब्दुल्ला और गुलाम हसन ने इस मामालक मंदिर की जिम्मेदारी जब से ली है, तब से आज तक मंदिर के दरवाजे को बंद नहीं होने दिया। इस मंदिर की घंटियों को बजने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मोहम्मद अब्दुल्ला और गुलाम हसन का कहना है कि हम केवल मंदिर की देखरेख ही नहीं करते बल्कि रोज मंदिर में आरती भी करते हैं। मंदिर में स्थित 3 फुट ऊंचे शिवलिंग की सुरक्षा का ही सिर्फ ध्यान नहीं रखते बल्कि मोहम्मद अब्दुल्ला और गुलाम हसन रोजाना ये भी ध्यान रखते हैं कि कोई भी श्रद्धालु मंदिर से प्रसाद लिए बगैर न चला जाए। राजा जयसूर्या द्वारा निर्मित इस मंदिर का महत्व एक समय ऐसा था कि कोई भी अमरनाथ यात्री इस मंदिर के दर्शन किए बगैर अपनी आगे की यात्रा शुरू नहीं करता था। दरअसल मोहम्मद अब्दुल्ला और गुलाम हसन मंदिर की सेवा ही नहीं करते बल्कि भगवान शिव में अपार आस्था भी रखते हैं। इनके द्वारा मंदिर के अंदर समय समय पर मरम्मत की जाती है। मंदिर का तमाम काम ये लोग आतंकवादियों की धमकियों के बावजूद सुचारू रूप से चला रहे हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला और गुलाम हसन ने यूं तो कश्मीरी पंडितों के इस मंदिर की सुरक्षा हेतु हर एक जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वाह किया है, फिर भी ये लोग चाहते हैं कि इस मंदिर के असली हकदार कश्मीरी पंडित लौट आए और अपने इस मंदिर की तमाम जिम्मेदारियां फिर से संभाल ले। मित्रों, इस सुंदर और अनोखे शिव मंदिर में गणेश, पार्वती और हनुमान की मूर्तियां भी स्थापित है और इसके अलावा मंदिर परिसर के अंदर कलकल करता एक दुधिया झरना भी बहता है। पिछले 4 वर्षों में इस मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। इन श्रद्धालुओं में अब वो लोग भी शामिल हैं जो यहां से अपने अपने घर और ये मंदिर छोड़कर चले गए थे, पर अब ये लोग एक पर्यटक के रूप में इस मंदिर के दर्शन करने आया करते हैं। 900 वर्ष पुराने इस शिव मंदिर की देखरेख करते इन मुस्लिम पुजारियों द्वारा नियमित रूप से मंदिर में आरती की जाती है और श्रद्धालुओं में प्रसाद बांटा जाता है। मोहम्मद अब्दुल्ला और गुलाम हसन की मेहनत और आस्था देखकर हिंदू श्रद्धालुओं की खुशी देखते ही बनती है। दर्शन के साथ साथ कुछ श्रद्धालु मोहम्मद अब्दुल्ला और गुलाम हसन के दर्शन कर पांव छूकर आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। मित्रों, हिंदू मुस्लिम एकता की ऐसी तमाम मिसालें फिरकापरस्त लोगों के मुंह पर बार बार तमाचे मारती है, पर कुत्ते की टेढ़ी पूंछ की तरह ये राह से भटके कुछ राजनेता और कुछ धर्म के ठेकेदार फिर भी सीधे नहीं हो पा रहे हैं। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। प्रस्तुतकर्ता थे फादर हनुमान बंडोड SVD। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं सभी नारियों के लिए विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, आप सभी सही समझ रहे हैं कि मैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए सहेलियों, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है नारी शक्ति को भुनाइए मत, और प्रस्तुत करता है भवानी कॉल।

नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत वार्ता सुनिए, नारी शक्ति को भुनाइए मत। साथियों, बहुत दिनों बाद कविता अपनी प्रिय सहेली अनीता के घर आई थी। न जाने कितने समय बाद दोनों सहेलियां एक दूसरे से मिल रही थीं। अनीता जहां कविता के आने से खुश थी, वहीं कविता कुछ दुखी दिख रही थी। उसे अनीता से मिलने की खुशी तो थी, पर चेहरे में उसके अंदर की भावनाएं साफ झलक रही थीं। काफी देर तक दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे, फिर चाय पानी का दौर चला। अनीता अपने ससुराल में अपने पति व बच्चों के साथ खुश थी, यानी उसका जीवन हंसी खुशी से भरा पूरा था। अनीता कविता से चहकते हुए बतिया रही थी, जबकि कविता बुझी बुझी थी। आखिर में खाने का समय हो चला था। चूंकि अनीता काफी समझदार महिला थी, उसने अपनी सहेली के मन की बात ताड़ ली। अनीता कविता से पूछने लगी, अच्छा बता कविता, तुम कॉलेज के दिनों में खूब हंसती थी, खूब मस्ती करती थी। तुम्हारी ठाके वाली हंसी पूरे कॉलेज में प्रसिद्ध थी, पूरे कॉलेज में गूंजा करती थी। यहां तक कि जब तुम जोर जोर से हंसती थी, तब प्रोफेसरों को भी पता चल जाता था कि कविता हंस रही है। तुम्हारा साथ पाने के लिए सारी सहेलियां तरसती थीं, क्योंकि तुम फोकट में सबको हंसाती थी। कॉलेज वाली जिंदगी कितनी मजेदार और खुशनुमा थी, और कभी कभी तो ऐसा लगता है काश कॉलेज वाली जिंदगी दोबारा मिल जाती। क्यों कविता, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? कविता बोली, लगता तो है, पर सब कुछ अपने वश में नहीं होता। तुम तो बात बात में हंसती थी, आज तुम्हें क्या हो गया? शादी होते ही तुम हंसना भूल गई? कविता अपनी उस प्रिय सहेली के सामने रो पड़ी, कहने लगी, हाँ हाँ अनीता, मैं अब हंसना भूल चुकी हूँ। हंसना तो क्या, मुस्कुराना भी भूल गई हूँ। मेरा जीवन कांटों से भरा पड़ा है। मेरा पति कमाता बहुत अच्छा है, 50-60 हजार महीने में कमाता है। खाते पीते घूमते फिरते सब है, पर छोटी छोटी बातों में वो मुझे लताड़ते हैं, ताने मारते हैं, चाहे मेरी गलती हो या ना हो। बच्चे जब छोटे थे तब तक सब ठीक था, लेकिन बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चों के सामने वो मुझे गंदी गंदी गालियां भी देते हैं। गुस्से के मारे घर का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं, चीजों को तोड़ना फोड़ना आए दिन की बात है। और उनसे कोई जवाब तलब करे तो और अधिक तोड़ फोड़ करते हैं। इतना ही नहीं, शराब पीकर सारा गुब्बार निकालते हैं। खूब शराब पीना और गाली गलौज करना जैसे उसकी आदत बन गई है। इतना ही काफी नहीं, वो हर वक्त घर से निकल जाने की बात कहते हैं, तलाक लेने की बात कहते हैं। सचमुच साथियों, हमारे समाज में ऐसी बहुत सी कविता होंगी जो इस तरह की घटनाओं की, पति उत्पीड़न की शिकार होती होंगी। न जाने कितनी महिलाएं या नारियां होंगी जिन्होंने अपने आप को ऐसी खाई में झोंक दी है। कभी वे हंसमुख एवं खुशियों के पल से लबरेज हुआ करती थी, खुशी और उमंग जिसके आसपास घूमती थी, पर शादी के बाद का जीवन कैसा नारकी बन जाता है। कविता जैसी अनेक नारियां बहुत महत्वाकांक्षी होती हैं। आगे बढ़ने का, तरक्की करने का उन्हें बड़ा शौक होता है। वो भी पति की तरह आगे बढ़ना चाहती हैं, जीवन में कुछ हासिल करना चाहती हैं। अपनी मेहनत के बल पर नारियां आज कहां से कहां पहुंच चुकी हैं, पर कुछ महिलाएं अपने बच्चों के खातिर, अपने पति के खातिर, अपने परिवार के खातिर और उनको भरपूर समय देने के लिए उसी कारण अपनी महत्वाकांक्षाएं छोड़ देती हैं। खुद के कैरियर का ध्यान
अपने दिमाग से निकाल देती हैं ताकि वे परिवार का हर वक्त साथ दे सकें। सुबह से लेकर शाम तक खटने वाली नारी को कब तक, आखिर कब तक ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, नहीं मालूम। इसका कोई अंत नहीं दिखता। साथियों, हम लोग हमेशा गरीब नारियों को इस तरह की समस्याओं से जूझते हुए देखते हैं, पर ऐसा नहीं है। आज पढ़े लिखे आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों में भी नारियां ऐसी कष्टदायक स्थिति से अछूती नहीं हैं। सुशिक्षित एवं बुद्धिमान नारियां पति की गंदी गालियां सहती हैं, यहां तक भी मार भी सहती हैं। इस तरह के तमाम मानसिक एवं शारीरिक तनाव को झेलने वाली नारी सिर्फ अपने बच्चों के मोह के कारण पति के घर से बाहर नहीं निकलती हैं। महिला को बार बार घर से बाहर भागने के लिए मजबूर करना अत्यंत पीड़ादायक है। दोस्तों, ऐसी नारी जो दिन रात परिवार की सेवा करती है, पति व बच्चों की देखभाल में सारा समय लगा देती है, इसके परिणाम स्वरूप उसे क्या मिलता है? बच्चों के जन्म से लालन पालन तक, पति को तैयार कर ऑफिस भेजने तक लगातार उसकी भूमिका जारी रहती है। उसके बाद सास ससुर की खातिरदारी एवं उनकी देखरेख, दिन भर का उसका यही कार्यक्रम चलता रहता है। अब कई नारियां हैं जिन्हें पढ़ने लिखने का शौक होता है, पर वो जिम्मेदारियां निभाते निभाते दिन भर में अखबार तक नहीं पढ़ पाती हैं। इन सबको संभालते संवारते नारी ना जाने अपने लिए कोई वक्त निकाल पाती है या नहीं। बिल्कुल नहीं निकाल पाती है, ना अपने शौक पूरे कर पाती है। एक तरह से इन सब के लिए वह अपनी सारी इच्छाओं को मार देती है। इसी तरह पुरुष तलाक देने की धमकी आए दिन नारियों को देते रहते हैं। ये पुरुषों की कैसी मानसिकता है? वह नारी जो दिन रात अपने दायित्वों को निभाते हुए आपको आगे बढ़ने में सहयोग दे रही है, आपको पूरी तरह साफ कपड़ों के साथ ऑफिस भेजती है, आपकी मानसिकता को, भावनाओं को समझती है, आपके बच्चे व परिवार के सुख दुख में बराबर साथ निभाती है, दुख के क्षणों में हमदर्द बनकर खड़ी रहती है, ऐसी नारी को तलाक देने, प्रताड़ित करने व ताने मारने की बात करना भला कहां तक उचित है? तो नारी शक्ति को भुनाइए मत, उसे संभाल कर रखिए।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था नारी शक्ति को भुनाइए मत, और प्रस्तुतकर्ता थी भवानी कौल। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rvasatyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है मन दर्पण। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है मन क्यों सोचता है ऐसे। इस वार्ता के लेखक हैं कृष्ण कांत दुबे और प्रस्तुत करता है भवानी कौल।

मन दर्पण वार्ता सुनिए। मन क्यों सोचता ऐसे, लेखक हैं कृष्णकांत दुबे। एक दोपहर जब मैंने उस आम वृक्ष की ओर देखा तो लगा उसमें मंजरियों का जन्म होने लगा है। वह वृक्ष अपनी कुछ रंगत बदल रहा है। उसी आम वृक्ष के पास खड़े उस ग्रामवासी युवा से मैंने कहा, वसंत आ रहा है। उसने मेरे कहे पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह मेरी बात सुनकर भी अनासक्त सा खड़ा रहा। लगा प्रकृति में वसंत आ रहा है, उसमें उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। वह वहां खड़े हो खेत में लहराती गेहूं फसल को देख रहा था। मैंने सोचा शायद उसमें उसकी विशेष रुचि हो। इस पर मैंने फिर कहा, सुनो इस बार गेहूं फसल समझो ठीक ठाक ही है। मेरी इस बात का भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर मैंने उसके चेहरे की ओर गौर से देखा तो लगा शायद कोई दुख है, कोई संतरास है जो उसे घेरे हुए है, या शायद कोई गहरा अवसाद है जिसे वह भोग रहा है। जब मैंने गौर से उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें उसकी गवाह थी। वे यही कह रही थी, आप मेरे अंतर में झांक कर देखें तो आपको यही लगेगा, हजार दर्द है जिसे मैं अपने मन दर्पण में छुपाए बैठा हूं। याद रखें, यह सामान्य दर्पण नहीं जिसमें देख आप हट जाएं तो आपकी छाया भी उससे लोप हो जाती है। यह तो मन दर्पण है, इसमें जिसकी भी छवि एक बार अंकित हुई फिर वह मिटती नहीं, स्थायी हो जाती है, फिर उससे निजात पाना मुश्किल है। एक बार अंकित हो गई सो हो गई बस। जी हाँ, यही आज का मानुष सत्य और समाज का सत्य है। चाहे गांव हो या शहर या फिर महानगर हो, आज हर कहीं दुख ही लहरे हैं जो हर मन में निरंतर हरहरा रही है। आप हर कहीं इस अनुभव को पा जाएंगे, उसे अपने में भी महसूस करेंगे। और मैंने तब इस विषय में सोचा, चिंतन किया और तब वर्षों पहले पढ़ी एक कविता की कुछ पंक्तियां मन में जैसे उभर आई, जो आज की सामाजिक व्यथा की सीधी बयानी है। एक काला दरवाजा, उसके भीतर बन बिलाओं का रुदन, ऐसा यथार्थ हमें सहना पड़ता है। और यह यथार्थ आज का है जिसे आज का मनुष्य लगातार भोगने को विवश है। क्यों है ऐसा कि आज हर व्यक्ति यह महसूस करने लगा है कि उसके दुख पहले से कहीं अधिक बढ़ गए हैं। उन दुखों की छाया दिन प्रतिदिन और अधिक गहरी और अधिक लंबी होती जा रही है। क्यों है ऐसा कि आज उसके विस्तार को रोकने की शक्ति किसी में भी नहीं है। आज बहुत से लोग कुछ यही सोचते हैं, वे सभी इसी दौर से गुजर रहे हैं। पर अगर आप इसके कारण को देखने की कोशिश करें, उसे गहराई से सोचें, तो पाएंगे कहीं ये दुख की दीवारें खुद उन्होंने अपने हाथों तैयार तो नहीं की है, या वे ही इस दुख विस्तार के कारणों में स्वयं भागीदारी तो नहीं निभा रहे हैं। हमें इस सच से भी इनकार नहीं करना चाहिए कि वर्तमान में हमारे सामुदायिक सोच में भी कई कई दोष आ गए हैं। आज कुछ ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया गया है कि हर व्यक्ति केवल अपने ही हित के बारे में सोचने लगा है। आज तो लगातार यह स्थिति बनती जा रही है कि किसी को भी न अपने पड़ोस से, न समाज समुदाय से, न गांव नगर से, न राज्य, न देश, न विश्व से स्नेह है, न वह इस संदर्भ में कभी कोई चिंता करता है, न उसके प्रति कहीं कोई संवेदना है, न ही कोई उचित सोच। आज तो स्थिति यह है कि कितनों को इस बात की परवाह है कि उसके अपने कार्यकलाप से दूसरों को भी कहीं कोई कष्ट हो रहा है, जब अधिकांश इसी लहर में बहे जा रहे हैं, वे यही कुछ कर रहे हैं, तो निश्चित है कष्टों का विस्तार होगा ही, वे बढ़ेंगे ही और सारा समाज उस स्थिति से उत्पन्न दुख झेलेगा ही। साथियों, आज हर व्यक्ति का करीब करीब यही सोच बनता जा रहा है। इनमें पढ़े लिखे की संख्या
सबसे अधिक है कि उन्हीं के पास सारे सुख हों, सुख के सारे साधन हों, सब कुछ आधुनिक हो, एकदम आज के हों। जो विज्ञापनों में गूंजते या दिखाई देते वे सभी कुछ हों, किसी भी तरह का कोई कष्ट कोई दुख ना हो। ऐसे में भला वह दूसरों की क्यों परवाह करे, क्यों देखे दूसरों के कष्ट दूसरों के दुख। बस उन्हें तो सिर्फ अपना देखना है और अधिक से अधिक देखना है, तो सिर्फ अपने परिवार को इससे आगे उनकी अपनी कोई सोच सीमा नहीं। अधिकांश व्यक्ति हर कहीं अपनी छवि बनाने की ही कोशिशों में जुटा मिलेगा। वह यह नहीं सोचता कि उसके कार्यकलाप उसकी अपनी गतिविधियां दूसरों के लिए भी समस्याएं पैदा कर रहे हैं। आज आप गांव हो या कस्बे या नगर या महानगर, एक बात वहां की सड़कों पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जल्दी में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने की कोशिश में अधिकांश व्यक्ति अपने अपने वाहन को जिस गति से दौड़ाते भगाते हैं कि पूछो नहीं। वे इस बात को देखने की कोशिश तक नहीं करते कि उससे दूसरों को कितना कष्ट हो रहा है। इससे कभी कभी भयंकर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसमें कई की जीवन लीला तक समाप्त हो जाती है। ऐसे में कुछ घरों में जिंदगी तबाह हो जाती है। क्या कभी वे लोग सोचते हैं इस विषय में? शायद नहीं। अगर वे इस संदर्भ में सोच लें तो ये सब कुछ नहीं हो, पर आज यह सोच किसके पास है? साथियों, हम यह भी नहीं भूलें कि थोड़े से पैसे बचाने के लिए लोग अपने वाहनों में जिस घटिया किस्म के ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, यह जानते हुए कि इससे वातावरण में प्रदूषण फैलेगा, लोगों को सांस लेने में कठिनाई होगी, तकलीफ होगी। जो लोग श्वास रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए तो यह बेहद पीड़ादायक होगा, फिर भी वे ऐसा करते हैं। आप इसे क्या कहेंगे और इस प्रदूषण का आगे क्या परिणाम होगा, वे इसे भी जानते हैं, फिर भी यह सब कुछ हमारे यहाँ घटित हो रहा है। आज हर सूचना तंत्र हर बार प्रदूषण से होने वाली हर तरह की हानि की सूचनाएं प्रकाशित प्रसारित करता है, फिर भी इस दिशा में कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। यही नहीं, वे बताते हैं गांवों, नगरों, महानगरों में जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसके कितने भयावह परिणाम हो रहे हैं। वे यह भी बताते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कुछ किया जाए, इसकी भी दिशा देते हैं। पर यह बात सभी जानते हैं कि बावजूद इसके सबके पर्यावरण संरक्षण की कहीं कोई चेतना दिखाई नहीं देती, बल्कि हो या रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए जो भी महत्वपूर्ण संसाधन हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फिर पर्यावरण संरक्षण कहां होगा? तब उससे होने वाली हानि को कौन रोकेगा? 5 सितारा होटलों में होने वाले सेमिनारों में इस संदर्भ में जरूर चर्चाएं होती हैं, लेकिन वही लोग जो वहां पर्यावरण संरक्षण का समर्थन सुंदर भाषा शैली में करते हैं और वे ही लोग बाहर आकर खुद उसके दोषी बन जाते हैं। तो साथियों, ऐसा लगता है और भले लोग सोचने लगते हैं, यह सब क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लोगों के मन दर्पण पर कालिमा पसरती जा रही है? क्यों मन हो रहे हैं ऐसे? ऐसे में बस मुंह से एक ही प्रार्थना निकलती है, हे प्रभु, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था मन क्यों सोचता है ऐसे। इस वार्ता के लेखक थे कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता थी भवानी कौल। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप सभी को इन जानकारी से कुछ लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है कार्यक्रम पर्यावरण। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं हमारे कार्यक्रम पर्यावरण में, जिसका शीर्षक है हो जाए कॉफी। इस वार्ता की लेखिका एवं प्रस्तुतकर्ता है समता खानचंदानी।

पर्यावरण के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है हो जाए कॉफी। इसकी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता है समता कामचंदन। श्रोता साथियों, आप सभी को समता का प्यार वाला नमस्कार। दोस्तों, क्या आपका भी गर्मी के मारे बुरा हाल है और गला सूख रहा है? मेरा भी हाल आपके ही जैसा है और मुझे ठंडी कॉफी पीने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ, क्या कहा, आपको भी कॉफी पसंद है? अरे साथियों, कॉफी तो दुनिया भर में बहुत पसंद की जाती है। आपको बता दूं कि दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में कॉफी का नाम दूसरे स्थान पे आता है और चाय से ज्यादा दुनिया में कॉफी के दीवाने हैं। बरिस्ता, कैफे कॉफी डे, कॉफी हाउस, कोस्टा और कैरेबियन कॉफी जैसे कॉफी बेचने वाले शॉप भी दुनिया भर में मशहूर।

अल्कोहल पर पाबंदी थी और शायद इसी कारण लोगों का रुझान कॉफी के प्रति बहुत बढ़ गया। 16वीं शताब्दी तक कॉफी का उत्पादन अरब देशों में बड़े खुफिया तरीके से किया जाता था। यहाँ तक कि उपजाऊ कॉफी के बीज अरब देशों के बाहर मिलते ही नहीं थे। 1650 में कॉफी इंग्लैंड आ गई और ऑक्सफर्ड व लंदन में कॉफी की दुकानें भी खुल गई। हैरत की बात तो यह दोस्तों कि जहाँ 16वीं शताब्दी तक कॉफी का उत्पादन केवल अरब देशों में ही किया जाता था, वहीं 19वीं शताब्दी में कॉफी का 80% उत्पादन केवल अकेले ब्राजील ने किया। कितनी जल्दी लोकप्रिय हुई होगी ना दोस्तों। भारत में भी कॉफी चोरी चोरी 16वीं शताब्दी में ही आई। अब तो करीब 70 देशों में कॉफी बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। चलिए दोस्तों अब इसके पेड़ के बारे में कुछ बातें जान लें। कॉफी का पेड़ करीब 10 से 12 फुट लंबा होता है और इसको आमतौर पर झाड़ यानी शर्द ही कहा जाता है। 3 से 5 वर्ष की आयु के झाड़ पर फलाना शुरू हो जाते हैं और लगभग 50 वर्षों तक यह पेड़ उपजाऊ रहता है। इसके फल को कॉफी बीन्स कहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि फल मिल गया यानी बस मिल गई कॉफी, तो दोस्तों आप गलत हैं। कॉफी बीन्स से कॉफी निकालना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले कॉफी के दानों को तोड़कर उसमें से नरम पदार्थ जिसे कि पल्प कहा जाता है उसे निकाला जाता है। इसके पश्चात कॉफी के बीजों से निकले पल्प को 36 घंटे पानी में भिगोकर रखा जाता है। इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। इससे कॉफी में कुछ रासायनिक बदलाव हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें धोकर सुखाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत समय लगता है दोस्तों, लेकिन इसी मेहनत और समय के कारण कॉफी का स्वाद लाजवाब बन जाता है। कॉफी की दो प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें कैफिया अरेबिका सबसे पुरानी प्रजाति है। दोस्तों इसकी उत्पत्ति का स्थान इथियोपिया था और वहीं से यह मिस्र और यूरोप होते हुए सारी दुनिया में फैली थी, लेकिन क्योंकि यह सबसे पहले अरब देशों में पसंद की गई, इसीलिए इसे अरेबिका नाम दिया गया। कॉफी की यह प्रजाति बेहद संवेदनशील थी और दोस्तों यह हर कहीं उग नहीं पाती थी। कॉफी की दूसरी प्रजाति कैफिया रोबस्टा ऐसे वातावरण में भी पनप सकती थी जहां अरेबिका नहीं उग पाती थी। यूं तो दोस्तों अब कॉफी की बहुत सी प्रजातियां हैं, लेकिन यही दो प्रजाति सबसे पुरानी और मुख्य है। कैफिया अरेबिका स्वाद और गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, परंतु कैफिया रोबस्टा में उससे 40 से 50% तक ज्यादा कैफीन होता है। दोस्तों उगाने से लेकर पीसने तक हर कदम पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होता है। कॉफी के झाड़ पर बहुत से कीड़े लगने की आशंका हमेशा बनी रहती है और इसमें डाले जाने वाली खाद भी कॉफी की गुणवत्ता पर असर डालती है। इसके बाद कॉफी के पके हुए दानों को तोड़ना भी खासा मायने रखता है। यहाँ यदि सावधानी नहीं बरती गई, तो अच्छे पके दानों के साथ अधपके दानों के मिल जाने की संभावना हो जाती है और इससे सारी की सारी मेहनत पानी में मिल सकती है। एक एक दाना चुन चुन कर तोड़ा जाता है। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कॉफी इतनी महंगी क्यों मिलती है। खैर दोस्तों आजकल कॉफी सिर्फ स्वाद के ही लिए नहीं पी जाती। कॉफी कैफीन का अच्छा स्रोत है। कैफीन एक उत्तेजक होता है जो हमारे दिमाग की नसों को सचेत करता है। साथ ही साथ दोस्तों कॉफी में ऐसे कई सारे गुण हैं जिनका लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कॉफी में कुछ ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो कि कैंसर जैसी बीमारी में फायदा पहुंचाते हैं। दोस्तों ये तो आपने खुद अनुभव किया होगा कि कॉफी पीने के बाद थकान से राहत मिल जाती है और कॉफी नींद भी भगा देती है। इसीलिए रात में जाकर पढ़ाई करने वाले बच्चों में कॉफी पीने का प्रचलन है। इससे न सिर्फ उनकी नींद उड़ जाती है बल्कि उनकी एकाग्रता भी बढ़ती है। इसी गुण के कारण कई दफ्तरों में काम के दौरान कॉफी ब्रेक दिया जाता है। साथ ही साथियों कॉफी में कई औषधीय गुण भी होते हैं। यह दर्द निवारक दवाओं का असर बढ़ा देती है। जिनका रक्तचाप सामान्य से कम हो जाता है उन्हें भी तुरंत कॉफी पीने की सलाह दी जाती है। इसीलिए दोस्तों मैं तो अक्सर ही कॉफी पीने के बहाने ढूंढती रहती हूँ। दोस्तों जिन्हें अस्थमा की शिकायत है उन्हें भी मैं कॉफी पीने की सलाह दूंगी, क्योंकि अस्थमा के रोगियों को भी कॉफी पीने से राहत महसूस होती है। हाल ही में साथियों एक शोध ने यह निष्कर्ष निकाला

है कि कॉफी के साथ चीनी मिलाकर पीने से दिमाग की क्षमता बढ़ जाती है। ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाए तो यह मेमोरी यानी कि याददाश्त और एकाग्रता को बढ़ा देती है। खैर श्रोता साथियों, शोध तो और भी बहुत हुए कॉफी पर। जैसे कि एक शोध ये कहता है कि कॉफी का महिलाओं और पुरुषों पर असर अलग अलग होता है। कैपेचिनो या एस्प्रेसो कॉफी पीने से जहां महिलाओं का दिमाग तेजी से काम करने लगता है, वहीं पुरुषों पर इसका कोई खास असर नहीं होता। जो भी हो दोस्तों, लेकिन कॉफी दर्द में राहत तो निश्चय ही पहुंचाती है और इसी कारण दर्द निवारक दवाइयों में कैफीन का सम्मिश्रण दिया जाता है। कैफीन इन दवाओं के अवशोषण की क्षमता को बेहतर बनाता है और इसके दर्द निवारक असर को बढ़ा देता है। दोस्तों कई लोग ये भी दावा करते हैं कि कैफीन वाली कड़क कॉफी माइग्रेन में आराम देती है और अगर शुरुआती दौर में ही इसे लिया जाए तो माइग्रेन पूरी तरह से ठीक हो सकता है। दोस्तों कॉफी का सेवन मधुमेह की बीमारी में भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कॉफी का सेवन मेलिटस टाइप 2 मधुमेह यानी कि डायबिटीज की संभावना को भी कम करता है और तो और दिल के दौरे की गुंजाइश भी कॉफी पीने वालों में कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों इतने सारे औषधीय गुणों को जान लेने के बाद ऐसा मत कीजिएगा कि बस एक के बाद एक कॉफी के प्याले पे प्याले चढ़ाए जाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ज्यादा मात्रा में कॉफी पीने से नुकसान भी होता है। आखिर दोस्तों अति तो हर चीज की बुरी होती है ना। खास करके दोस्तों गर्भवती महिलाओं को तो कॉफी का सेवन बिल्कुल ना करने की सलाह दूंगी मैं, क्योंकि अधिक कैफीन पीने से गर्भपात का खतरा हो सकता है। मेरी राय तो यह है दोस्तों कि किसी भी चीज का अधिक सेवन अच्छा नहीं होता, इसीलिए कॉफी के एडिक्ट मत बन जाइए। जैसा कि आजकल का ट्रेंड हो चला है, चाय और कॉफी के बगैर तो लोग रह ही नहीं पाते। दोस्तों जो लोग कॉफी का स्वाद तो लेना चाहते हैं लेकिन उसके अंदर पाए जाने वाले कैफीन का सेवन नहीं करना चाहते, उनके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। अब बाजार में डी कैफीनेटेड कॉफी भी उपलब्ध है जिसमें कैफीन की अधिकांश मात्रा निकाल दी जाती है। तो देखा दोस्तों, प्रकृति और पर्यावरण ने हमारी सेहत और हमारे स्वाद दोनों का हमेशा से ख्याल रखा है। तो चलिए ना शुक्रिया अदा करते हैं पर्यावरण का एक कप कॉफी के साथ। तो चलिए एक एक कप कॉफी का प्याला पीते हैं और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्यावरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था हो जाए कॉफी। इस वार्ता की लेखिका एवं प्रस्तुतकर्ता थी समता खानचंदानी। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दें आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट हैं आकाश चांगरा। नमस्कार।

सत्य स्वर सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को ग्लोरिया गांगले का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी की सभा 2 से 3 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक स्वास्थ्य, बाल जगत और भक्ति गीत। दोस्तों, हम कार्यक्रम की शुरुआत से पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, आप सुनते हैं कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: आदम और हेवा की बाग में रहने की खुशी ही सब कुछ नहीं था। बाग में एक पेड़ ऐसा भी था जो सब पेड़ों से अलग था और उसके फल मन को लुभाने वाले थे। वो पेड़ था जीवन वृक्ष का, जिसे भले और बुरे का ज्ञान कराने वाला कहा जाता था। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि ईश्वर ने आदम और हेवा से इसे छूने व खाने के लिए मना किया था, वरना वे मर जाएंगे। बेशक काफी दिनों से बाग में रहते हुए उन दोनों का मौत नामक वस्तु से या बला से साक्षात्कार नहीं हुआ था। वे नहीं जानते थे कि मौत क्या है। ईश्वर ने उन्हें ये पेड़ यही जानने के लिए दिया था कि वे उसकी आज्ञा मानते हैं या नहीं। एक रोज की बात है,
1: आदम, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले हम एक पहाड़ पर घूम रहे थे। हमने वहां से एक सुंदर नदी भी देखी थी। आदम, चलो ना, हम एक बार फिर वहां चलते हैं।
2: हेवा, नदी तो बहुत दूर है और फिर तुम तो चलते चलते थक जाती हो। यहीं घूमो, देखो हमारा ये अदन बाग ही कितना सुंदर है।
1: वो तो है आदम, लेकिन मैं उस नदी में तैरना चाहती हूँ, उस पानी को छूना और उसमें खेलना चाहती हूँ। चलो ना, तुम वहाँ के पशु पक्षियों के साथ खेलना और घूमना, और मैं वहाँ के पानी में जी भर के तैरूंगी।
2: और अगर तैरते तैरते मेरी प्यारी हेवा को नदी बहा ले गई तो?
1: वो कैसे, ईश्वर ने तो मुझे तुम्हारे लिए ही बनाया है ना? नदी कैसे ले जाएगी मुझे?
2: नदी का पानी एक जगह रुका थोड़े ही रहता है, वो तो बहता रहता है। तुम बहके मुझसे दूर कहीं चली गई तो?
1: आदम, तुम हो तो सही मुझे बचाने के लिए।
2: और अगर उस समय मैं वहाँ ना रहा तो?
1: तो ठीक है आदम, हम वहाँ नहीं जाएंगे। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकूंगी आदम। इस धरती पर हम दो ही तो हैं, और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो?
2: इसलिए तो कह रहा हूँ हेवा, आदन बाग बहुत सुंदर है, यहीं घूमो, रोज एक ना एक नई चीज देखने को मिलती है।
1: आदम, तुम भी चलो ना।
2: तुम जाओ हेवा, कुछ अच्छी चीज देखे तो मुझे आवाज देना, और सुनो उस पेड़ से दूर रहना।
1: अच्छा। कितना सुंदर पेड़ है, देखो इसके फल भी कितने सुंदर हैं। भला है कहीं ऐसा फल? न तो कहीं ऐसा फल है और न पेड़ ही। पता नहीं ईश्वर ने इन्हें खाने से मना क्यों किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ये फल खाऊं और आदम से दूर हो जाऊं, या आदम खाए और मुझसे दूर हो जाए। पर दूर कैसे, उन्होंने तो कहा है मर जाओगे। ये मरना क्या होता है? आदम भी कहता है उस पेड़ तक न जाओ, उस फल को न छुओ। आखिर ईश्वर ने हमें मना क्यों किया है? क्यों किया है मना?
3: हे वाह, क्या सोच रही हो?
1: अरे ये कितना सुंदर जीव, पर ये तो हमारे जैसा बोलता है।
3: हेवा हेवा, क्या हुआ?
1: कौन हो तुम?
3: अरे छोड़ो छोड़ो, ये बताओ तुम इन फलों के बारे में क्या सोच रही हो हेवा?
1: मैं इन्हीं के बारे में सोच रही हूँ, पर तुम बताओ तुम कौन हो?
3: मैं शैतान हूँ, शैतान। शैतान, तो तुम सोच रही हो ना ये कितने सुंदर हैं?
0: हाँ।
3: तो इसमें घबराना कैसा? तुम इन्हें खाकर क्यों नहीं देखती हेवा?
0: नहीं नहीं नहीं, मैं तो इन्हें छूना भी नहीं चाहती।
3: क्यों? क्या ईश्वर ने तुम्हें इस बाग के किसी भी पेड़ का फल खाने से मना कर रखा है हेवा?
0: नहीं, हम इस बाग के और तो सभी पेड़ों के फल खा सकते हैं, पर इस पेड़ के लिए उन्होंने कहा है कि इसके फल खाने पर हम मर जाएंगे।
3: नहीं हेवा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम मरोगी नहीं। पता है, ईश्वर जानता है कि जिस क्षण भी तुमने ये फल खाया तुम्हारी आंख खुल जाएगी और तुम ईश्वर के समान बन जाओगे। तुम्हें भी अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाएगा।
0: पर तुम्हें कैसे पता?
3: क्योंकि मैंने इस पेड़ का फल खाया है और अब मैं तुम्हारे समान बोल सकता हूँ।
0: लेकिन
3: हेवा, हेवा, तुम बहुत सुंदर हो लेकिन बड़ी भोली हो, बहुत भोली हो। थोड़ी होशियार बनो, बुद्धू नहीं।
0: वो कैसे?
3: अरे जब तुम इस पेड़ का फल खाओगी तो सुंदरता के साथ साथ तुम्हें होशियारी भी आएगी। तुम बुद्धिमान हो जाओगी, ईश्वर के समान। हेवा, हेवा, लो मैं तुम्हारे लिए ये फल तोड़ता हूँ। लो लो खाओ हेवा, लो लो, डरती क्यों हो?
0: इसकी तो खुशबू भी बहुत ही अच्छी है।
3: खुशबू ही नहीं हेवा, इसका तो स्वाद भी बहुत अच्छा है। तुम खाकर तो देखो हेवा।
0: मैं? पर ईश्वर ने तो कहा था अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे।
3: फिर सोचने लगी हेवा, क्या सोच रही हो?
0: नहीं नहीं, मैं ये फल नहीं खाऊंगी।
3: क्यों, क्या हुआ हेवा? बड़ी भोली हो, डर गई ईश्वर से? उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि तुमने ये फल खाया है। लो लो खाओ हेवा, खाओ।

0: कहो कैसा लगा ये फल?
1: सचमुच बहुत मजेदार।
0: और देखो खाने के बाद भी तुम जिंदा हो ना? और खाओ और खाओ।
1: नहीं, मैंने तो खा लिया। मैं इसे अपने पति आदम को भी देना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ।

अभी आपने सुना कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं अंतरा करवड़े और इनकी वार्ता का शीर्षक है जीवन में उत्साह और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों नमस्कार, स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कहा जाता है कि जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है तब शुरुआत में तो उत्साह बड़ा बना रहता है, लेकिन आगे चलकर वो उत्साह कहीं भी नहीं रहता। तो चलिए आज के स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम आपको यही बताएं कि जीवन में हर समय उत्साह कैसे बनाकर रखें। साथियों, ये तो बिल्कुल सही है कि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होता तब तक जीवन में उत्साह नहीं आता, लेकिन यदि जीवन में उत्साह बना रहे तो कई बार शरीर को अस्वस्थ होने की नौबत ही नहीं आती। जी हाँ साथियों, स्वास्थ्य कार्यक्रम में हमने कई बार ये चीज आपको बताई है और शायद आप भी इस चीज से सहमत होंगे कि व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है उस मानसिक स्थिति का उसके शारीरिक स्थिति पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और यदि आपकी मानसिक स्थिति उत्साह से भरी है, खुशियों से भरी है, तो वाकई इसका असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, यानी दोनों चीजें एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो हम ये देखें कि जीवन भर में यदि हमें उत्साह का माहौल बनाए रखना है, खुशियां हमेशा आपके आसपास रहें, ऐसा माहौल बना रखना है, ऐसी परिस्थिति बनाए रखना है, तो हमें क्या करना चाहिए? जी नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि अपने आसपास की स्थितियों को बदल डाले। जी नहीं साथियों, कई बार हम लोग कोशिशें यही करते हैं कि हम अपने आसपास की परिस्थिति बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें शिकायतें या तो अपने आसपास की परिस्थिति से होती है या फिर अपने घर में रहने वाले सदस्यों से। हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे लिए ये सदस्य अपने स्वभाव के कुछ विशेष गुणों को बदल डालें, या फिर यदि घर में परिस्थिति कुछ विपरीत है हमारे लिए तो परिस्थिति बदल जाए। लेकिन साथियों, क्या आपने कभी खुद को लेकर ये सोचा है कि जो चीजें आपको दूसरे लोगों की खटकती है, कुछ न कुछ वैसा आप में भी होगा? जी हाँ, मेरा कहना यही है कि यदि हम खुद को भी बदलने की ओर चलें तो जीवन में उत्साह बिल्कुल अच्छे से बना रह सकता है। दरअसल हमें इस चीज की ओर सबसे पहले ध्यान देना होगा कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन से काम हैं जो हमारे जीवन में उत्साह को भर देते हैं। ये तो सही है साथियों कि जब भी आप जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे अपने काम करते करते, अपने लक्ष्यों को पूरा करते करते, तो कई बार जीवन में एक रास्ता आ जाती है, हताशा आ जाती है, थकान, ऊब और निराशा भी आ जाती है। लेकिन जब भी ये स्थिति निरंतर बनी रहती रहे तब आपको ये सोच लेना चाहिए कि अब समय है कुछ बदलाव का। जी हाँ, बदलाव की स्थिति कभी भी आपके सामने ये कहकर नहीं आती कि अब मुझे बदलिए। ये चीज आपको स्वयं ही समझनी होती है कि अब आप एक रास्ता से ऊब चुके हैं, अब आप एक ही प्रकार का काम करते करते ऊब चुके हैं, और जब किसी काम को करने में ऊब महसूस होने लगती है इसका मतलब वो काम करने में आपको मजा नहीं आ रहा, वो काम करने से आपको खुशी नहीं मिल रही। तब जब आप रोजाना कर रहे काम में खुशी नहीं पा रहे हैं तो आप में उत्साह कहाँ से आएगा? दरअसल उत्साह और उमंग आपके जीवन को ढेर सारी ऊर्जा देते हैं, और उसी ऊर्जा के बल पर हम कठिन से कठिन काम हंसते हंसते कर लेते हैं। जी हाँ, लेकिन साथियों, यही उत्साह यदि आपके जीवन में नहीं है, ये उमंग, ये खुशी आपके जीवन में नहीं है, तो चाहे दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशी भी आपके सामने क्यों न हो, आपको वो फीकी लगेगी। तो यदि किसी भी प्रकार की खुशी आपके सामने है या परिस्थिति आपके सामने है, आपके मन की अवस्था उत्साह से भरी होनी चाहिए, खुशियों से भरी होनी चाहिए, तब जाकर आप उन खुशियों का सही आनंद ले पाएंगे। दूसरी चीज ये होती है साथियों कि यदि आप में ऊर्जा है, आप में उत्साह है, तो आप इस चीज का प्रवाह दूसरे लोगों की ओर भी करते हैं। आप सभी ने ये चीज देखी होगी कि जब परिवार में एक खुशनुमा व्यक्ति आ जाता है जो बहुत उत्साह से लबरेज है, जो ढेर सारी हंसी मजाक की बातें बार बार कहता है, और आप जब भी किसी समस्या का जिक्र करते हैं उसे यूं धुएं में उड़ा देता है जैसे कि वो हो ही ना, उसके ढेर सारे हल और वो भी बड़े आसान से हल आपके सामने इस तरीके से ले आता है कि आप स्वयं आश्चर्य करते रह जाते हैं कि ये हल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आए। और रही सही समस्या जिसने आपको थका कर रखा हुआ था, वो तो शायद अब आपके सामने होती ही नहीं है। तो साथियों, अब हम ये बताएंगे आपको कि जीवन में आपको उत्साह किस प्रकार से हमेशा के लिए मिल सकता है। जैसे कि हमने सबसे पहले आपसे कहा, पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ साथियों, आपको चुस्त दुरुस्त रखने में आप स्वयं ही अपनी मदद कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको बनावटी जीवन शैली के पीछे भागकर
अपने शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सरल और सहज जीवन को जिए, संयमित जीवन को जिए, इसी से आप अपने जीवन को सहज बना पाएंगे। आपको लोगों की देखा देखी करने की बजाय स्वयं का आकलन करना चाहिए कि इस समय आपकी उम्र क्या है, आपकी शारीरिक दृष्टि किस प्रकार की है। उस स्थिति के अनुरूप आपको संतुलित भोजन लेना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप नियमित दिनचर्या का पालन कर सकें, व्यायाम को उसमें स्थान दे सकें और भारी चटपटे तले और बाहर के भोजन से जितना हो सके उतना बचें, तो वाकई आप सुबह की सैर के बाद जैसा मन प्रफुल्लित हो जाता है, वैसा आपका प्रफुल्लित मन हमेशा बना रह सकता है। इसके साथ ही साथियों, कई बार हमारे जो भी श्रोतागण हैं उन्हें भी लगता होगा कि स्वास्थ्य कार्यक्रम में बैठकर इस प्रकार के उपदेश देना तो बड़ा सरल है, लेकिन यदि वास्तविक जीवन में हमें स्वस्थ रहना हो तो यह नियमित जीवनचर्या को या फिर रोजाना व्यायाम करना या संतुलित भोजन करना, ये सारी चीजें व्यवहार में लाने तो बहुत मुश्किल होती है। जी हाँ साथियों, ये बिल्कुल मुश्किल होती है सोचने में, लेकिन जब आप इसे करते हैं तब धीरे धीरे आप में ऊर्जा जरूर आती है। सबसे पहली बात यह होती है कि हम सभी से जो एक गलती होती है, हम सभी कोणों पर एक साथ काम करना चाहते हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि हम एक ही दिन में संतुलित भोजन करना भी सीख लें। हम सभी ये चाहते हैं कि रोजाना हम ढेर सारी एक्सरसाइज करना या व्यायाम करना, इन सारी चीजों को एक साथ अपने जीवन में लेकर आ जाए। और जब आपकी आराम तलब जिंदगी में भूचाल की मानिंद ये सारी चीजें एकदम आ जाती हैं, तो आप घबरा उठते हैं। एक या दो दिन बड़े भक्ति भाव से स्वस्थ शरीर पाने की कामना में आप ये सारी चीजें कर जरूर लेते हैं, लेकिन तीसरे चौथे दिन या ज्यादा से ज्यादा एक दो सप्ताह के बाद आपका मन विद्रोह कर उठता है। होता है ना ऐसा? इसलिए यदि आपको स्वस्थ जीवन शैली अपनानी है तो बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपनी उम्र के अनुरूप भोजन करना चाहते हैं तो धीरे धीरे इन चीजों पर काम करें। यदि आपको लगता है कि आपके भोजन में वसा की मात्रा जरा ज्यादा है तो उसकी मात्रा को कम करने की धीरे धीरे कोशिश करें। एक सप्ताह तक इसी पर काम करें। फिर आपको लगता है कि आपके भोजन में मीठे की मात्रा जरूरत से जरा ज्यादा ही हो रही है, तो अब आप चूंकि कम वसा खाने के आदि हो चुके हैं, अब मीठे की ओर जाएं। इसके बाद यदि आपको लगता है कि आप एक ही बार में बहुत ज्यादा खा लेते हैं, दिन भर में आप दो बार ठूस ठूस कर खाते हैं और बाकी दिन भर कुछ खाते ही नहीं है, शायद ये स्थिति है जिसके चलते आपका पाचन तंत्र गड़बड़ाता है या फिर आप शरीर में भारीपन महसूस करते हैं, तो एक बार जब आपने वसा पर नियंत्रण कर लिया, आपने मीठे पर नियंत्रण कर लिया, तब धीरे धीरे अपने भोजन को मात्रा वही रहने दीजिए, लेकिन दिन भर में चार या पांच भागों में बांट दीजिए। तो इस तरीके से पूरे एक महीने तक जब आप अपने भोजन और उसके प्रबंधन पर काम करेंगे, तब जाकर एक स्वस्थ भोजन संबंधी दिनचर्या आपके सामने तैयार होगी। और अब जब आपका शरीर सही और स्वस्थ भोजन करने का आदि हो चुका है, तो धीरे धीरे बहुत कम मात्रा में व्यायाम करना शुरू करें। शुरुआत सिर्फ 10 मिनट की पैदल सैर से की जा सकती है और धीरे धीरे इसे हर सप्ताह में 2 मिनट या 3 मिनट बढ़ाकर पूरे महीने भर में 25 से 30 मिनट तक ले जाया जा सकता है। साथियों, 2 महीने में ही आप स्वयं को व्यायाम और संतुलित भोजन, इन दोनों चीजों में प्रशिक्षित कर देंगे तो हो गई ना आपकी स्वस्थ जीवन शैली तैयार। तो जब ये स्वस्थ जीवन शैली आपके पास रहेगी, उसके साथ ही आप पा सकेंगे धीरे धीरे एक अच्छा स्वास्थ्य। और जब ये सारी चीजें आपके साथ रहेंगी, तब अगली चीज जो आपको करनी है वो है वक्त की पाबंदी। साथियों, किसी भी काम को अगर वक्त पर पूरा कर दिया जाता है तो आपको एक ऊर्जा मिलती है। हमेशा एक चीज ध्यान रखें, जब किसी काम को करने का वक्त पूरा हो जाता है और उसके बाद भी आपका काम पूरा नहीं होता, तो आपका मन अपने आप ही बहाने सोचने लगता है कि ये काम करने में मुझे देरी इसलिए हुई क्योंकि मुझे मेरे साथी से काम समय पर नहीं मिला था, या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति जो आपको काम करने से रोकती हो। लेकिन इसका सीधा मतलब ये होता है कि आपका समय प्रबंधन सही नहीं है। और यदि आप एक नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहते हैं तो वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथियों, जो चीज हमें भोजन के साथ ही लेनी चाहिए या फिर भोजन के साथ ही जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, वो है जल सेवन। जी हाँ,
अब अखबारों के स्वास्थ्य कॉलम में या फिर यहाँ वहाँ जहाँ भी स्वास्थ्य संबंधी बात होती है, आप एक चीज बार बार सुनते हैं कि हमें भरपूर पानी पीना चाहिए। हमारे बहुत से श्रोता इस संबंध में एक विपरीत मत भी रखते हैं कि आवश्यकता से अधिक या फिर प्यास लगने से ज्यादा, जब प्यास नहीं लगी है तब भी पानी पीना, ये शायद शरीर पर कुछ अत्याचार करना होगा क्योंकि इससे किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन नहीं साथियों, यदि आप दिन भर में 10 या 12 ग्लास पानी अच्छे से पी लेते हैं, इसकी ताजगी आपको इस नियम को इस्तेमाल करने के 4-5 दिन बाद महसूस होगी। इसके साथ ही आपको पानी के साथ ही कुछ इस प्रकार के मौसमी फलों को भी लेना चाहिए जो आपको पूरी ऊर्जा दे और आपके शरीर के सभी आवश्यक तत्वों का संतुलन बनाकर रखे। अगर हम बात करें सूरजमुखी के बीजों की, इनमें होता है मैग्नीशियम जो आपकी हड्डियों, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। उसी प्रकार से यदि आप दिन भर में, जैसे मैंने आपको बताया, 4 या 5 बार में अपने भोजन को बांट लें और उसे अच्छे से पौष्टिकता पूर्वक खाएं, उसमें यदि आप सूरजमुखी के बीज जिनमें मैग्नीशियम होता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप भोजन के एक भाग में सिर्फ फल या कच्ची सब्जियां या सलाद ले सकते हैं। बाकी इस प्रकार के प्रयोग यदि आप करते रहते हैं तब आपको ये चीज समझ में आती है कि यदि नियमित दिनचर्या रखी जाए तो उसके कितने फायदे होते हैं।

अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वास्थ्य, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंतरा करवड़े, और इनकी वार्ता का शीर्षक था जीवन में उत्साह, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों आइए सुनते हैं कार्यक्रम बाल जगत, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं ईशान खापड़े और इनकी कहानी का शीर्षक है गोलू का गोरख धंधा और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

एक समय की बात है, एक गांव में गोलू नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह काफी बुद्धिमान था। एक दिन उसने सोचा, मैं सारा दिन इधर उधर बेकार भटकता रहता हूँ, क्यों ना कोई काम किया जाए। यह विचार आते ही वह शहर चला गया और वहाँ जाकर उसने एक दुकान किराए पर ले ली। दुकान पर उसने एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, अक्ल की सेल। उसकी दुकान के आसपास बड़े बड़े व्यापारों की दुकान लगी थी। उन्होंने जब गोली की दुकान पर वह विचित्र बोर्ड टंगा देखा तो सब गोलू पर हंसने लगे, वह उसे चिढ़ाने लगे। गोलू ने उनकी परवाह नहीं की और दुकान के बाहर खड़ा होकर आवाज लगाने लगा, अक्ल ले लो, अक्ल ले लो। एक दिन एक व्यापारी का बेटा अमित उस दुकान के सामने से गुजरा। उसने गोलू की आवाज सुनी, अक्ल ले लो, यहाँ तरह तरह की अक्लें मिलती हैं। अमित को समझ नहीं आया कि यह दुकानदार क्या बेच रहा है, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसी सेल के बारे में कभी नहीं सुना था। कौतूहलवश वह उस दुकान पर पहुंचा और बोला, एक किलो अक्ल का क्या भाव है? यह सुनकर गोलू हंसकर बोला, मैं अक्ल तौल कर नहीं बेचता, बल्कि इस किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। अमित ने अपनी जेब से एक रुपया निकालकर उसे दिया और बोला, मुझे एक रुपये वाली अकल चाहिए। गोलू ने एक पर्ची अमित को थमा दी। अमित वह पर्ची लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा। घर जाकर उसने पर्ची अपने पिता को दिखाते हुए कहा, पिताजी देखिए मैंने एक रुपये की अकल खरीदी है। उनके पिता ने पर्ची पढ़ी और अपना माथा पकड़कर बोले, मूर्ख, यह बात कौन नहीं जानता कि जब दो लोग लड़ रहे हों तो उनके पास खड़े नहीं होना चाहिए। दुकानदार ने अति साधारण बात बताकर तुमसे एक रुपया ठग लिया, मुझे उस दुकानदार के पास ले चलो, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। अमित पिता को लेकर गोलू की दुकान पर पहुँच गया। वे बहुत गुस्से में थे। दुकान पर जाकर वह चिल्लाकर बोले, मेरे बेटे को बेवकूफ बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारा रुपया वापिस करो, हमें तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर उन्होंने पर्ची गोली के मुंह पर दे मारी। गोलू घबरा गया कि पहला ही सौदा उल्टा पड़ गया। फिर कुछ सोचकर वह बोला, मुझे अपनी कागज का टुकड़ा नहीं वरन अपनी सलाह वापस चाहिए। आपका बेटा लिखकर दे कि वह उस स्थान पर खड़ा होगा जहां दो व्यक्ति आसपास में लड़ रहे हों, तो मैं उसका रुपया वापस कर दूंगा। अमित के पिता ने आओ दिखाना ताओ अमित की ओर से लिखकर दे दिया कि वह उस स्थान पर खड़ा रहेगा जहां दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे होंगे। इसके बाद दोनों घर लौट गए। उस देश के राजा की दो रानियां थी। दोनों एक दूसरे से इतनी ईर्ष्या रखती थी कि एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। यही हाल उनकी नौकरानियों का भी था। एक दिन दोनों नौकरानियां बाजार से सब्जी खरीदने गईं। संयोग से दोनों एक ही दुकान पर एक साथ पहुंच गईं। दुकानदार के पास एक ही सीताफल था और दोनों जोर दे रही थी कि सीताफल उसे मिलना चाहिए। दुकानदार कुछ बोलता उससे पहले ही वापस में गुतमुता गए। अमित पास खड़ा होकर दोनों का झगड़ा देख रहा था। पहली नौकरानी बोली, तुम गवाह हो कि इस नौकरानी ने मुझे पीटा है। यही बात दूसरी नौकरानी ने भी कही। कुछ देर के बाद दोनों नौकरानियां महल लौट गईं। अगले दिन अमित के पास राजा का फरमान पहुंचा। उसे दो दिन बाद राजा के दरबार में पहुंचकर गवाही देनी थी। फरमान पाकर अमित के पिता बहुत डर गए। वह दौड़े दौड़े गोलू की दुकान पर पहुंचे और उन्होंने सारी बात बताकर उससे सलाह मांगी कि अब क्या करना चाहिए। गोलू ने सबसे पहले उनसे 100 रुपए रखवाए और फिर सलाह दी, अमित राजा के पास दरबार में पागल की तरह व्यवहार करें। अमित ने वैसा ही किया। राजा ने यह देखकर कि गवाह के रूप में पेश किया गया लड़का तो पागल है, मुकदमा ही रद्द कर दिया। वहां से लौटकर अमित के पिता ने सोचा, पागल का अभिनय करके आज तो अमित बच गया है, किंतु यदि राजा को देर सवेर यह बात चला कि अमित पागल नहीं है और उसने धोखा दिया है तो वे इसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद भी जब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो उन्होंने गोलू से सलाह लेने की सोची। गोलू के पास जाकर बोले, तुम्हारे कहने के मुताबिक अमित राज दरबार में पागल का अभिनय करके बच तो गया है, पर भविष्य में यदि राजा को पता चल गया
कि हमने उनके साथ धोखा किया है तो क्या होगा? बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? गोलू ने सबसे पहले उनसे सलाह की कीमत के रूप में 100 का नोट लिया, फिर बोला, किसी दिन जब राधा का मिजाज अच्छा हो उन्हें सारी बात सच सच बता देना। उन्हें गोलू की सलाह अच्छी लगी और वे निश्चिंत होकर घर लौट आए। कुछ दिनों बाद अमित के पिता दरबार में गए तो उन्होंने देखा कि राजा बहुत प्रसन्न है। अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने राजा को सारी घटना सच सच बता दी। सुनकर राजा हंस पड़े और उन्होंने अमित को माफ कर दिया। गोलू की दुकान की शहर भर में चर्चा थी। खबर जब राजा के कानों तक पहुंची, तो उन्हें भी उससे मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने सिपाही को भेजकर गोलू को दरबार में बुला लिया। जब गोलू राजा के सामने उपस्थित हुआ तो वह बोले, सुना है कि तुम लोगों को अकल बेचते हो, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई खास अकल है? गोलू निडरता से बोला, महाराज मेरे पास एक खास अकल है जो आपके बहुत काम आ सकती है, परंतु उसकी कीमत 1,00,000 रुपये है। राजा ने गोलू को 1,00,000 रुपये दिए। बदले में गोलू ने एक पर्ची पर लिख

राजवैद ने राजा को पीने के लिए जो दवा दी उसमें जहर मिला हुआ था। वह उसे पीने ही वाले थे कि उनकी नजर गिलास पर लिखे गोलू की सलाह पर पड़ी। वे सतर्क हो गए और गिलास को घुमा घुमा कर ध्यान से देखने लगे। यह देखकर राजवैद्य डर गया। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई। वह राजा के पैरों में गिर गया और बोला, महाराज मैं निर्दोष हूँ, मुझे महारानी और महामंत्री ने दवा में जहर मिलाने के लिए कहा था। राजा ने सिपाही को आदेश देकर राजवैद्य को कारागार में डाल दिया। फिर उन्होंने महामंत्री और अपनी बड़ी रानी को बुलाया। राजा ने उनसे कहा, यह दवा पियो। दोनों जानते थे कि दवा में जहर है और यदि उन्होंने दवा पी तो वे मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार करने में ही भलाई समझी। राजा ने उन दोनों को भी जेल में डाल दिया। फिर उन्होंने गोलू को बुलाया और सबके सामने अपना महामंत्री घोषित कर दिया।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल जगत, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे ईशान खापड़े, और इनकी कहानी का शीर्षक था गोलू का गोरख धंधा, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं बाल गीत।

ಶ್ರೀ

अभी आपने सुना बाल गीत। आइए साथियों, आप सुनते हैं कार्यक्रम बाल जगत, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं ईशान खापड़े, और इनकी कहानी का शीर्षक है मोबाइल चोर, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

रवि और श्रेय दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों दिल्ली के एक ही कॉलोनी में रहते थे। दोनों के घर आसपास थे। दोनों एक ही स्कूल के एक ही क्लास में पढ़ते थे। जब इतनी समानताएं थी तो दोनों में दोस्ती होना स्वाभाविक ही था। रवि देहरादून का रहने वाला था और श्रेय कानपुर का। रवि के दादा दादी देहरादून में रहते थे। वह हर साल गर्मी की छुट्टियों में उनसे मिलने देहरादून जाता था। इस बार भी गर्मी की छुट्टियां पड़ते ही रवि ने मम्मी पापा से देहरादून जाने की रट शुरू कर दी। पापा को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, इसलिए रवि मम्मी के साथ देहरादून जाने की तैयारी करने लगा। रवि अक्सर श्रेया से अपने शहर देहरादून की बातें किया करता। श्रेया का मन भी देहरादून जाने का होता। इस बार जब रवि

0: देहरादून जाने की तैयारी करने लगा तो उसने श्रेय को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। श्रेय ने अपने पापा से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। रवि ने अपनी मम्मी को बताया, मम्मा श्रेय भी हमारे साथ देहरादून चलना चाहता है पर उसके पापा उसे नहीं भेज रहे हैं। यदि आप अंकल से बात करेंगी तो वे जरूर मान जाएंगे।
1: ठीक है,
0: कहकर रवि की मम्मी उस वक्त श्रेय के घर गई। उन्होंने श्रेय के पापा से कहा,
1: भाई साहब श्रेय का देहरादून जाना का बड़ा मन है, आप उसे भेज दीजिए। इस बार रवि के पापा भी हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। यदि श्रेय हमारे साथ जाएगा तो रवि को साथ मिल जाएगा। हम लोग कल ही जा रहे हैं, यदि आप अनुमति दें तो श्रेय भी अपनी पैकिंग कर लेगा।
0: श्रेय के पापा मान गए। फिर उसने खुशी खुशी अपनी पैकिंग कर ली। अगले दिन सुबह सवेरे रवि के पापा उसे, उसकी मम्मी और श्रेय को देहरादून की बस में बैठा आए। पापा ने रवि को बस में बैठाते हुए हिदायत दी, मम्मी को परेशान मत करना और गाड़ी से हाथ आदि अंग बाहर मत निकालना। रास्ते में यदि कोई परेशानी हो तो फोन कर लेना। रवि ने पापा की बात समझ ली। पापा मैं फोन कर लूंगा, वैसे भी मम्मी हर बार की तरह इस बार भी बस में सो जाएंगी, मोबाइल मेरे पास ही रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। गाड़ी आगे बढ़ चली। रवि और श्रेय दोनों साथ साथ खुश थे। दोनों कभी अंताक्षरी खेलते तो कभी एक दूसरे को चुटकुले सुनाते। मम्मी भी उनकी बातों का मजा ले रही थी। इसी तरह वे आधी से अधिक दूरी तय कर चुके थे। तभी फोन बजा। मम्मी ने फोन रिसीव कर बात की। रवि के पापा का फोन था। रवि मचलते हुए बोला,
1: मम्मी मैं भी पापा से बात करूंगा, फोन दीजिए।
0: मम्मी ने रवि को फोन दिया। रवि पापा से बात करने के बाद फोन पर गेम खेलने लगा। मम्मी ने उसे फोन वापस मांगा तो वह बोला,
1: मम्मा हम गेम खेल रहे हैं, बाद में दे देंगे।
0: मम्मी को झपकी आ गई। रवि और श्रेया भी गेम खेलते खेलते सो गए। बस का कंडक्टर बहुत देर से उन दोनों पर नजर जमाए हुए था। उसने देखा कि फोन रवि के हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया है। जब बस देहरादून स्टेशन पर आ रुकी तो मम्मी ने श्रेय और रवि को उठाते हुए कहा,
1: उठो देहरादून आ गया है,
0: और वे सामान उतारने लगी। तभी मम्मी ने रवि से मोबाइल मांगते हुए कहा,
1: रवि फोन दे, मैं तेरे पापा को फोन कर दूं।
0: रवि अपने हाथ में मोबाइल न देखकर हैरान हो गया। उसने अपने जेब और सीट के नीचे देखा पर मोबाइल कहीं नहीं मिला। वह बोला,
1: मम्मा लगता है मेरे हाथ से मोबाइल कहीं गिर गया, पर कहाँ जा सकता है।
0: फिर उन तीनों ने बस की एक एक सीट छान मारी पर मोबाइल नहीं मिला। उन्हें परेशान देखकर ड्राइवर ने पूछा,
1: बहन जी आप क्या ढूंढ रही हैं? हमारा मोबाइल बस में कहीं गिर गया है, क्या आप कंडक्टर को बुला देंगे, हो सकता है उसने मोबाइल देखा हो।
0: मम्मी ने विनम्रता से कहा। ड्राइवर ने तुरंत कंडक्टर को बुलाया। कंडक्टर अपना एक हाथ जेब में डाले हुए उसके सामने खड़ा था। मम्मी ने उससे पूछा,
1: क्या आपने कोई मोबाइल देखा।
0: कंडक्टर हिचकिचाते हुए बोला,
1: नहीं नहीं नहीं तो।
0: कंडक्टर को हिचकिचाता देखकर श्रेय बोला, तुम अपना हाथ जेब से बाहर तो निकालो। कंडक्टर ने अपना हाथ जेब से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की पर वह निकल नहीं पाया। यह देखकर श्रेय रवि की तरफ देखकर हंस दिया। फिर रवि और श्रेय दोनों ने पकड़कर कंडक्टर का हाथ जेब से बाहर निकाला। उसके हाथ में चुंगम के साथ साथ मोबाइल भी लटक रहा था। यह देखकर रवि और सूरी ने मोबाइल उसके हाथ से ले लिया।
1: मम्मा यह रहा मोबाइल चोर, आज तो चुंगम ने हमारा मोबाइल बचा लिया,
0: रवि बोला। कंडक्टर ने उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। मम्मी ने तो उसे माफ कर दिया। फिर दोनों दोस्त हंस पड़े। मम्मी भी हंसते हुए बोली,
1: यह धर्मवीर की जोड़ी जहाँ जाएगी वहाँ कमाल ही करेगी।

ईशान खापड़े और इनकी कहानी का शीर्षक था मोबाइल चोर और यह प्रस्तुति थी सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, मैं आगे की सभा का निर्देशन करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी विवेक पीटर रॉबर्ट जी को। धन्यवाद।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम और अंत में नाटक। तो दोस्तों, अब हम अपने समय सारिणी के अनुसार हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम कृषि जगत की वार्ता से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: मुखिया जी, हमारे राज्य में बीज के बाजार में निजी कंपनियों की सरगर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि निजी कंपनियां ही बीज बाजार को नियंत्रित करेंगी।
1: नहीं, ऐसा तो नहीं है। राज्य के बीज बाजार से निजी कंपनियों के पांव उखड़ जाएंगे। संकर प्रभेदों के बीज में उनका जो एकाधिकार था उसको खत्म करने की पहल सरकार ने शुरू कर दी है।
0: वो कैसे मुखिया जी? संकर प्रभेदों पर तो उनका एकाधिकार था और रहेगा भी, तो फिर किस तरह से राज्य सरकार उनके एकाधिकार को खत्म कर पाएगी?
1: देखिए, ऐसा है कि ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने मक्के के संकर बीज के नए प्रभेद की अनुशंसा की है। DHM 117 नाम का यह प्रभेद किसान खुद ही पैदा करेंगे और सरकार उसको खरीदेगी। जो यह निजी कंपनियों का एकाधिकार है इसके मार्फत या इस पहल से खत्म कर देगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस प्रभेद की खासियत यह है कि भुट्टों के पक जाने के बाद भी खेतों में खड़े डंठल हरे ही रहते हैं, लिहाजा किसानों को पशु चारे के लिए दूसरी फसल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी खेती रबी या खरीफ दोनों मौसम में की जा सकती है।
0: क्या इस नए प्रभेद का प्रयोग करके इसकी खासियत का अंदाजा लगाया जा चुका है या फिर इसका प्रयोग अभी जारी है?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने अभी इस नए प्रभेद की खेती मात्र 40 हेक्टेयर में शुरू की। यह प्रभेद निजी कंपनियों के बीज के मुकाबले बहुत अच्छी है, या यूं कहें कि ये निजी कंपनियों के बीज से वो मुकाबला कर सकती है। इसकी विशेष खासियत यह है कि इसका प्रयोग जो किया गया वो काफी सफल रहा, तो इसका विस्तार होते ही मक्के की खेती करने वाले लगभग 13-14 लाख किसानों की निजी कंपनियों से निर्भरता बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी।
0: अगर ऐसा होता है तो किस तरह का फायदा किसानों को या राज्य सरकार को मिलने वाला है मुखिया जी?
1: देखिए, अगर ऐसा होता है तो राज्य में पहली बार मक्के के संकर प्रभेद की खेती किसान करेंगे। इससे किसानों को तो लाभ होगा ही, राज्य का पैसा भी बाहर जाने से बचेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राज्य के किसानों का 400 करोड़ रुपये निजी कंपनियों से बीज खरीदने में खर्च होते हैं, क्योंकि राज्य के बीज व्यापार पर निजी कंपनियों का कब्जा है। संकर प्रभेद के मामले में तो इनका एकाधिकार है। पुनः मैं आपको बता दूं कि बीज का कुल व्यापार हमारे यहाँ जो है वो लगभग 400 करोड़ रुपए का होता है।
0: बीज के कुल व्यापार में निजी कंपनियों का हिस्सा कितना प्रतिशत है मुखिया जी, और कितनी मात्रा में इनके द्वारा बीज की आपूर्ति की जाती है?
1: बीज के व्यापार में निजी कंपनियों का हिस्सा या यो कहें कि शेयर लगभग 95 से 97.33% है। निजी कंपनियों के द्वारा बीज की आपूर्ति प्रतिवर्ष 1.76 लाख क्विंटल की जाती है।
0: तो क्या हमारा राष्ट्रीय बीज निगम किसानों को बीज मुहैया नहीं कर पाता या फिर इसकी कोई दूसरी वजह है? कारण क्या है मुखिया जी?
1: सच बात तो यह है कि राष्ट्रीय बीज निगम किसानों की मांग का 1% हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाता है। दूसरी बात यह है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पुराने संकर प्रभेद मार्केट में चल ही नहीं पाते हैं। इसका बीज 90 रुपये प्रति किलो की दर से बाजार में रहता है, फिर भी निजी कंपनियों के 250 रुपये प्रति किलो वाले बीज की मांग ज्यादा होती है, उनकी मांग ज्यादा होती है, बाजार पर उनकी पकड़ ज्यादा होती है।
0: लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि निजी कंपनियों के बीज के इस्तेमाल करने के बावजूद भी फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती है।
1: आपका कहना सही है। समस्या यह है कि फसल ठीक नहीं होने पर निजी कंपनियों की भूल के लिए मुआवजा सरकार को देनी पड़ती है। 2 वर्ष पहले बीज फेल हो गया, 61,000 एकड़ हेक्टेयर में लगी मक्के की फसल में दाने नहीं आए। कभी कभी ऐसा होता है।
0: यह बात तो सही है कि सरकार को दोहरी मार झेलनी पड़ती है और गलती कंपनियों की होती है और मुआवजा सरकार को देना पड़ता है।
1: हाँ, वही हुआ ना। 2 वर्ष पहले जब मक्के की फसल में दाने नहीं आए तो कंपनियों को कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि सरकार को किसानों को बतौर मुआवजा 61 करोड़ रुपए देने पड़े। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था शुरू कर दी है।
0: तो क्या बीज के उत्पादन के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने का भी प्रोग्राम है मुखिया जी?
1: हाँ, प्रसार निदेशक जो हैं आरके सुहाने ने कहा है कि इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अगर आप सोचिए कि राष्ट्रीय बीज निगम 4,000 क्विंटल बीज की आपूर्ति करती है, तराई बीज निगम की आपूर्ति 600 क्विंटल है, वहीं संकर बीज आपूर्ति करने वाली कंपनियों की संख्या 60 है। ऐसे में अगर यहाँ के किसान संकर प्रभेद के बीज उपजाएंगे तो उन्हें फायदा तो होगा ही होगा।
0: आशा की जानी चाहिए मुखिया जी कि सरकार की यह पहलकदमी किसानों के लिए फायदे का सौदा होगा और बीज बाजार से निजी कंपनियों के पांव उखड़ जाएंगे। निजी कंपनियों के बीज से किसानों को लगातार होने वाली हानि से मुक्ति भी मिल जाएगी, साथ ही साथ राज्य का राजस्व भी राज्य में ही रहेगा।
1: बिल्कुल, ऐसी आशा की जानी चाहिए कि ये सरकार की जो पहलकदमी है खास करके संकर प्रभेद को उगाने की, उससे किसान भाइयों को तो अवश्य ही फायदा होगा और साथ ही साथ राज्य का जो राजस्व था जो निजी कंपनियों के हिस्से जाता था वो अब राज्य सरकार के पास ही रहेगी, किसानों को फायदा होगा और एक नए तरह के सोच के साथ किसान भाई इस कार्य को अपनाएंगे ताकि हमारे राज्य में भी संकर प्रभेद के बीज उपजाए जाएं और उगाए जाएं। और खासकर जब निजी कंपनियों के बीज लगाए जाते थे तो कभी कभी ऐसा शिकायत भी सुनने को मिलता था कि मक्के में दाने नहीं आए, तो इस समस्या से भी उनको निजात मिलेगा और आने वाले समय में हमारे यहाँ संकर प्रभेद के बीजों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे बात करेंगे।
0: मुखिया जी, इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली बार जब हम मिलेंगे तो गन्ने की खेती के बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें आपसे करेंगे।
1: हाँ, उस पर भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि हमारे राज्य में गन्ने की खेती करने वाले किसान काफी हताश हैं, काफी निराश हैं, तो उस पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि आखिर उनकी स्थिति ऐसी क्यों है। तभी हम लोग सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद मुखिया जी।

अभी आप सभी सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, इस वार्ता में हमें काफी सारी महत्वपूर्ण और रोचक बातें बताई गई हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी किसान श्रोताओं को इन सभी बातों से लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब हम अपने अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें कानून के बारे में बताएंगे। जी हाँ साथियों, मैं अपने अगले कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान, और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और रितेश जी, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी आपका भी स्वागत है, धन्यवाद।
0: कपूर साहब, यौन हिंसा की घटनाएं घटने के बजाय आए दिन बढ़ती ही जा रही है, जो कि हमारे सभ्य समाज के ऊपर एक धब्बा है, कलंक है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है।
2: जी हाँ, 2012 में हुई बलात्कार की घटनाएं सबसे ज्यादा चौंकाती हैं। ऐसा लगता है कि लड़कियों का वजूद ही खत्म समाप्त होता जा रहा है।
1: एकदम आप लोग सही कह रहे हैं वीरेंद्र जी और रितेश जी। असल में सबसे आश्चर्य की बात ये है
0: जी
1: कि 12 अरब से भी ज्यादा की जनसंख्या वाले इस देश में बलात्कार सबसे तेजी से बढ़ने वाले अपराधों की श्रेणी में शामिल है।
0: बिल्कुल।
1: हालांकि बलात्कार करने वालों के खिलाफ मृत्यु दंड जैसी कड़ी सजा तक पर कई बार विचार और बहस की गई, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है जिससे इस पर अंकुश लगाया जा सके।
0: लेकिन एक बात है कपूर साहब
1: जी,
0: यौन हिंसा का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है।
1: बिल्कुल।
0: जबकि न्यायिक प्रक्रिया का ग्राफ जो है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है, लगातार घटते जा रहा है।
1: वीरेंद्र जी, स्थिति ये है कि भारतीय महिला के साथ बलात्कार होने की आशंका पिछले 2 दशक में दोगुनी हो गई है, जबकि अपराधी को दंडित किए जाने या न्याय मिलने की दर नीचे गिर गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े इस बात की तस्दीक भी करते हैं।
0: जी
2: इसका मतलब यह निकलता है कपूर जी कि भारत औरतों के एक खतरनाक जोखिम भरा देश है, जहां कोई भी औरत अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है।
1: आपने बिल्कुल सही कहा, कोई भी इलाका इससे छूटा नहीं है, फिर चाहे वो खाप के खौफ में जीते हरियाणा या गांव हो, या तरक्की पसंद या स्त्री शक्ति के प्रतीक पश्चिम बंगाल के महानगर हो। बलात्कार और यौन अपराध इन सबकी वास्तविकता है। वैसे जैसे सामाजिक और आर्थिक विपन्नता इस देश की संस्कृति की वास्तविकता है।
0: एक बहुत गंभीर समस्या है कपूर साहब
1: जी।
0: इस गंभीर समस्या पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा किस तरह की तस्वीर पेश करता है, इसको मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: स्थिति इतनी गंभीर है वीरेंद्र जी कि हर 20 मिनट में भारत में किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार किया जाता है। इन पीड़ितों में से हर तीसरी पीड़ित कोई बच्ची होती है। ये आंकड़े साल 2011 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पर आधारित है।
0: अच्छा,
2: इस मामले में न्याय की प्रक्रिया की स्थिति क्या है कपूर साहब? क्या पीड़ितों को इंसाफ मिल भी पाता है या नहीं?
1: न्याय की प्रक्रिया की हालत ये है कि 4 मामलों में केवल 1 मामले में ही ट्रायल हो पाता है।
0: जी
1: जिसमें भी कई बार सालों का समय लग जाता है। पिछले 2 दशक में मामलों के लंबित पड़े रहने की दर में काफी इजाफा हुआ है। पहले ये दर 78% थी तो आज 83% हो गई है।
0: कपूर साहब, ये जो बलात्कार मामले पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं
1: जी,
0: इस गंभीर मसले पर, तो बलात्कार मामले तो वैसे सभी प्रदेशों में है कपूर जी, लेकिन ये जानना जरूरी है कि किन प्रदेशों में यह जो समस्या है वो काफी विकराल है, बहुत ज्यादा गंभीर है।
1: बलात्कार के मामलों में मध्य प्रदेश का पहला नंबर है। पिछले साल वहां रेप के सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए। हरियाणा की स्थिति भी बेहद बुरी है। पिछले 1 महीने के अंदर वहां दर्जन भर रेप के मामलों की रिपोर्ट की गई है।
2: ये तो वे मामले हैं कपूर जी जो पुलिस तक पहुंच पाते हैं।
0: जी बिल्कुल।
2: ऐसे ना जाने कितने मामले होंगे जो पुलिस तक पहुंचते ही नहीं है।
1: बिल्कुल सही बात है। अगर आंकड़ों से आगे बढ़कर सोचें और देखें तो NCRB केवल उन मामलों की बात करती है जो पुलिस तक जाते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: जबकि आधिकारिक खुद स्वीकार करते हैं कि इनसे हटकर एक बड़ी जनसंख्या उन मामलों की है जिनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। एक सीनियर पुलिस अधिकारी का तो ये भी कहना है कि कई मामले तो पुलिस खुद दर्ज नहीं करती, पीड़ित को डरा धमकाकर या समझा बुझाकर वापस लौटा देती है। कई बार पुलिस खुद अपराधियों से प्रभावित या भयभीत भी होती है।
0: बिल्कुल कपूर साहब, आपका कहना बिल्कुल जायज है और ये हकीकत के बहुत करीब है। कई बार तो अपराधी पीड़ित के परिवार वालों को भी धमकाते हैं, ताकि वे मामले को दर्ज न करवाएं या फिर मामले वापस ले लें। ऐसा भी हादसा कई बार होता है कपूर साहब।
1: वीरेंद्र जी, रोहतक स्थित MDU यूनिवर्सिटी में वुमेन्स स्टडी की निदेशक जगमती सांगवान मानती हैं कि ऐसे मामले भी होते हैं जहां अपराधी पीड़ित लड़की या महिला के माँ बाप या परिवार वालों को डरा धमकाकर चुप करा देते हैं। वो ये भी मानती हैं कि छानबीन करने वाले अपना काम सही से नहीं करते, गवाही या तथ्यों को वो सही से परखते नहीं, सबूत इकट्ठे करने में भी लापरवाही बरतते हैं।
0: जी जी,
1: नतीजा ये निकलता है कि ज्यादातर लोग न्याय की आस में कोर्ट में 10 या उससे भी ज्यादा साल गुजार देते हैं या फिर मामले को अपने स्तर पर ही खत्म कर देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यह बात तो बिल्कुल सत्य है कपूर जी
1: जी,
0: कि कई बार या कई मामलों में ऐसा होता चला आ रहा है। न्याय में विलम्ब होने का एक बड़ा कारण जो मैं समझता हूँ वो यह भी है।
1: सही कह रहे हैं आप। मिसाल के तौर पर साल 1990 में मात्र 41% मामलों में अपराध साबित किया जा सका है। साल 2000 में ये प्रतिशत घटकर 30 ही रह गया। पिछले साल की बात करें तो 4 में केवल 1 को जेल हुई जबकि 3 आसानी से छूट गए।
2: ऐसे जो भी कहे कपूर जी, लेकिन अदालत का फैसला आने में भी काफी समय लग जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे लोग अदालत के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल सही आपने बात कही है। ध्यान देने लायक बात यह भी है कि अदालत का फैसला आने में भी काफी समय लग जाता है।
0: जी जी बिल्कुल,
1: NCRB के अनुसार 1.27 लाख लोग रेप के मामले में ट्रायल का सामना कर रहे हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि न्याय की उम्मीद जल्दी नहीं की जा सकती।
0: कुछ लोगों की टिप्पणियां हैं जो काफी अजीबोगरीब लगती है कपूर साहब
1: जी,
0: जो इसकी गंभीर समस्या पर से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है।
1: बिल्कुल,
0: पता नहीं यह विडम्बना कब तक हमारे देश में जारी रहेगा। जैसे खाप पंचायत का जो मामला है
1: जी,
0: जिसकी जिक्र और चर्चा आपने कुछ देर पहले की।
1: बिल्कुल,
0: तो ये सब जो खाप पंचायत का जो समस्या है, आपस में बैठ करके जिस तरह से क्रूरतापूर्वक लोग निर्णय करते हैं
1: जी,
0: और किसी एक खास पक्ष को, खास करके लड़कियों के पक्ष में ही अपना निर्णय को वाजिब ठहराने की कोशिश करते हैं, तो ये खाप पंचायत भी अजीबोगरीब भूमिका अदा कर रहा है।
1: जी बिल्कुल, आपने सही बात कही है वीरेंद्र जी, और ये बड़ी अजीब बात है। खाप पंचायत इस समस्या का ये हल सुझाती है कि शादी की उम्र कम कर देनी चाहिए ताकि पुरुषों का सेक्स जीवन जल्दी शुरू हो सके। वही हरियाणा के डायरेक्टर जनरल पुलिस RS दलाल तो रेप की बढ़ती घटनाओं से इनकार कर देते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: वे कहते हैं कि घटनाएं इतनी ज्यादा नहीं है जितना मीडिया में हो हल्ला है, जिसकी वजह से लगता है कि समस्या ज्यादा विकराल है।
2: लेकिन जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कपूर साहब, उससे तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है ना, और वो भी फिल्टराइज्ड आंकड़े। 2011 में पूरे 12 महीने के अंदर 723 मामलों की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। यह क्या यह चौंकाने वाला तथ्य नहीं है?
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रितेश जी। इस बात में मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा।
2: जी जी,
1: हिसार के दबरा गांव में 16 साल की लड़की के साथ 7 युवाओं ने सामूहिक बलात्कार किया। वो लड़की दलित किशोरी है। बलात्कार करने वाले ऊंची जाति के सदस्य हैं। सितंबर 9 तारीख को घटी इस घटना के 9 दिन बाद लड़की के पिता ने आत्महत्या कर ली। वो बलात्कार की घटना से ज्यादा आहत इस बात से थे कि उस घटना को MMS बनाकर उसे प्रचारित किया गया। लड़की के 18 वर्षीय भाई के लिए भी इस शर्मिंदगी को बर्दाश्त करना आसान नहीं है। फिलहाल वो अपनी दादी के साथ रह रहा है, लेकिन लड़की अपनी जिंदगी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती। वो मानती है कि जो कुछ हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं है।
0: ऐसे में कपूर साहब, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में उस लड़की की हिम्मत की दाद देनी होगी।
1: बिल्कुल,
0: नहीं तो ऐसे हालात में लड़कियां अपना आत्मविश्वास खो बैठती हैं और जिंदगी से निजात पाने की कोशिश करने लगती हैं या फिर उसके बारे में सोचने लगती हैं।
1: आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो लड़की 11वीं परीक्षा की तैयारी कर रही है। वो शिक्षित है और आत्मनिर्भर होना चाहती है। उसकी बातों और भाव भंगिमाओं से अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है का भाव साफ झलकता है। इस भाव को इसी इलाके की एक 30 वर्षीय दलित महिला बखूबी समझती है जिसके खुद के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इतना ही नहीं, उसके बच्चों को बंदूक का भय दिखाकर मजबूर किया गया कि वो अपनी मां के साथ बलात्कार होते देखे। इस महिला के साथ 21 सितंबर को जिंद के पीलू खेरा गांव में बलात्कार किया गया। ये महिला बताती है कि मेरे साथ हुए बलात्कार का एमएमएस इस गांव के सब ने देखा। अब सब मुझे देखकर इशारा करते हैं कि ये वही महिला है जिसके साथ बलात्कार किया गया। इसके बावजूद मैं जिंदा हूं, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। उसके पति की भी यही इच्छा है। वो मानती है कि इस घटना का शोक मनाने के लिए रुका या बैठा नहीं जा सकता है, आखिर परिवार को चलाना भी तो है।
0: बिल्कुल बिल्कुल कपूर साहब,
2: ऐसे में तो बच्चों पर बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। पुरुषवादी शक्तियां हमेशा उनके मनोबल को तोड़ना चाहती है। वैसे में मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है वह तो दिल को दहला देने वाला है।
1: मध्य प्रदेश में सन 2011 में अवयस्कों के साथ बलात्कार के 1262 मामले दर्ज किए गए। वही उत्तर प्रदेश में 2011 में 1088 यानी 1088 मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में 2011 में 818 मामले दर्ज किए गए। हरियाणा में सन 2011 में 723 मामले दर्ज किए गए। इसे बच्चों पर संकट तो नहीं और क्या कहा जा सकता है?
0: बिल्कुल कपूर साहब, ये बच्चियों पर संकट ही है। जब तक पुरुषवादी मानसिकता, पुरुषवादी सोच बदलती नहीं है, तब तक शायद इस तरह की घटनाओं में कमी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है।
1: जी
0: कपूर साहब, अगले कार्यक्रम में फिर कानून से संबंधित, देश के हालात से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अभी हम रुक सकते हैं कपूर साहब, नमस्कार, धन्यवाद।
1: जी आप लोगों को भी नमस्कार, धन्यवाद।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है वसुधैव कुटुम्बकम। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

सदियों व्यक्ति विशिष्ट में आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं महान क्रांतिकारी ऊधम सिंह से। साथियों, भारत की आजादी की लड़ाई में पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह का नाम अमर है। आम धारणा यह है कि उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के उत्तरदायी जनरल डायर को लंदन में जाकर गोली मारी और निर्दोष लोगों की हत्या का बदला लिया। लेकिन साथियों, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने माइकल ओडवायर को मारा था, जो जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर थे। ओडवायर जहां ऊधम सिंह की गोली से मरे, वहीं जनरल डायर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होकर मरे। लेकिन भारत की आजादी की लड़ाई में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड का नाम आता है, तब आज भी सभी भारतीयों के मन में एक घृणा की लहर दौड़ जाती है। हम सभी जानते हैं जनरल डायर के नाम को। इस नाम को हम बचपन से इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते आए हैं और हमारे मन में इस नाम को लेकर एक घृणा है, एक इस प्रकार की विपरीत भावना है कि इस प्रकार का व्यक्ति जिसने इतने सारे जनसमूह को बड़ी निर्ममता से मार डालने के पश्चात मन में कोई पाप की भावना नहीं रखी और आगे चलकर लंदन में एक विलासितापूर्ण जीवन भी बिताया। साथियों, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में जितने महान क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिए हैं, उनमें ऊधम सिंह प्रमुख हैं। क्रांतिकारी यानी आजादी की चिंगारी को मन में एक बीज के रूप में रोपकर स्वयं उस क्रांति की ज्वाला को अपने साथियों के बीच ले जाकर भारत को आजादी दिलाने वाला ऐसा वीर जिसका अकेले का नाम भले ही प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर नहीं हो, लेकिन इस पूरे आजादी के समुद्र में यदि उसके खून की एक बूंद नहीं होती तो शायद आज हम आजादी की, सुकून की और चैन की सांसें नहीं ले पाते। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे ऊधम सिंह। इतिहासकारों का मत चाहे जो हो, ऊधम सिंह के मन में स्वतंत्रता को लेकर, आजादी को लेकर जो जज्बा था, उसे सलाम करते हैं और सुनते हैं उस आजाद भारत के सपने देखने वाले युवा वीर की कहानी। साथियों, ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। सन 1901 में ऊधम सिंह की माता और सन 1907 में उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। ऊधम सिंह का बचपन का नाम था शेर सिंह और उनके भाई का नाम था मुक्ता सिंह, लेकिन उन्हें अनाथालय में नाम मिले ऊधम सिंह और साधु सिंह। इतिहासकार मालती मलिक के अनुसार ऊधम सिंह देश में सर्वधर्म संभाव के प्रतीक थे और यही कारण था उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद आजाद सिंह रख लिया था, जो भारत के तीन प्रमुख धर्मों का प्रतीक था। यही प्रतीक है साथियों कि ऊधम सिंह के मन में देश प्रेम की भावना बहुत प्रबल थी। धर्म को लेकर आजादी के मार्ग में कोई रोड़ा उन्होंने नहीं डाला। अनाथालय में ऊधम सिंह की जिंदगी चल ही रही थी कि सन 1917 में उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। ऊधम सिंह पूरी तरह से अनाथ हो गए। सन 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। चूंकि ऊधम सिंह अनाथ हो गए थे, बावजूद इसके वे विचलित नहीं हुए और देश की आजादी और डायर को मारने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहे। साथियों, ऊधम सिंह 13 अप्रैल 1919 को घटे जालियांवाला बाग नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी थे। राजनीतिक कारणों से जालियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों की सही संख्या कभी भी सामने नहीं आ पाई। इस घटना से वीर ऊधम सिंह तिलमिला गए और उन्होंने जालियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर माइकल ओडायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ले ली।
अपने मिशन को अंजाम देने के लिए ऊधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा की। सन 1934 में ऊधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और साथ में अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीदी। इस प्रकार भारत का ये वीर क्रांतिकारी हत्यारे माइकल ओडायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित वक्त का इंतजार करने लगा। साथियों, क्रांतिकारी ये शब्द सुनते ही हम सभी के मन में एक ऐसे व्यक्ति की छवि आती है जिसका मन गुस्से से भरा हुआ है। वो जब तक अपने दुश्मन से बदला नहीं ले लेता तब तक चैन से नहीं बैठेगा। शायद क्रांतिकारी इस शब्द का या इस व्यक्तित्व का संबंध विवेक शक्ति या धैर्य से होता ही नहीं है, लेकिन ऊधम सिंह जैसे वीर और परिपक्व व्यक्ति के साथ क्रांतिकारी होने के बावजूद परिपक्वता, विवेक शक्ति और धैर्य, ये सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई थी। और यही कारण था साथियों कि ऊधम सिंह लंदन पहुंचे थे 1934 में, लेकिन अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका उन्हें मिला सन 1940 में। इतने सालों तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के बाद भी उन्होंने अपने मन के संकल्प को मिटने नहीं दिया। साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद यानी 13 मार्च सन 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी और उस बैठक में माइकल ओडायर भी वक्ताओं में से एक था। अपने जीवन भर की साध पूरी करने के लिए ऊधम सिंह उस दिन समय से पहले ही बैठक स्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने अपने रिवॉल्वर एक मोटी किताब में छुपा ली थी और उन्होंने किताब के कुछ पृष्ठों को रिवॉल्वर के आकार में उस तरह से काट लिया था जिससे डायर की जान लेने वाला हथियार आसानी से छिपाया जा सके। जब बैठक पूरी हुई तब दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर पर गोलियां दाग दी। 2 गोलियां माइकल ओडायर को लगी और उससे उनकी तत्काल मौत हो गई। साथियों, ऊधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने इस दुनिया को संदेश दिया कि अत्याचारियों को हम भारतीय वीर कभी बख्शा नहीं करते हैं। ऊधम सिंह ने वहां से भागने की कोई कोशिश नहीं की और एक वीर की भांति उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। उन पर मुकदमा चला। अदालत में जब उनसे पूछा गया कि वे डायर के अन्य साथियों को भी तो मार सकते थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऊधम सिंह ने जवाब दिया कि वहां पर कई महिलाएं भी थीं और भारतीय संस्कृति में महिलाओं पर हमला करना पाप है। साथियों, 4 जून सन 1940 को ऊधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई सन 1940 को उन्हें पैंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। और इस तरह से अपने धीरज के साथ, अपने क्रांतिकारी विचारों के साथ और संकल्प के साथ ये क्रांतिकारी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया। सन 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भी भारत को सौंप दिए।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है नाटक, जिसका शीर्षक है बदलते रिश्ते भाग दो। इस नाटक के लेखक एवं निर्देशक हैं संदीप दुबे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं नाटक।

0: सुधा, सुधा कैसी हो?
1: ठीक हूं।
0: मैं राहुल को ले जाने के लिए आया हूं। मेरी बात हो चुकी है श्याम से। श्याम, तुमने बताया होगा ना सुधा को सब? मैं पूरी पूरी कीमत देने को तैयार हूं सुधा।
2: मेरी कोई बात नहीं हुई। सुधा तुम्हारी पत्नी है, जो कहना है खुद ही उससे कहो। मुझे मध्यस्थ बनाने की जरूरत नहीं है।
0: तुम समझाओ ना उसे।
2: क्यों समझाऊं मैं? अरे क्या लगता हूं मैं उसका? 10 साल पहले जब मेरा सब लूट फाट कर चोर की तरह चले गए थे, तब क्या जाते जाते सुधा की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गए थे तुम? मेरी कुछ नहीं लगती तुम्हारी पत्नी, और ना ही तुम्हारा बेटा मेरा कुछ लगता है। जो कुछ कहना है अपने मुंह से कहो। सुधा तुम फैसला करो। राहुल का गुर्दा चाहिए अजय को। पूरी पूरी कीमत देगा तुम्हें राहुल का बाप। जिस बच्चे के सहारे तुम पूरी उम्र गुजारना चाहती हो, उसी को खरीदने आया है अजय। अजय के दोनों गुर्दे समाप्त हो चुके हैं, और जीने के लिए उसे राहुल का गुर्दा चाहिए। राहुल जिंदा रहे या मर जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुना तुमने? बस यही काम है अजय को तुमसे।
1: बेटे श्याम, अजय की मदद करो। एक माँ होने के नाते मैं तुमसे विनती करती हूँ।
2: आप घर की बुजुर्ग है ना? आपकी नाक के नीचे आपके बेटे क्या क्या कर गए, क्या आपने कभी जाना? मुझ पर इल्जाम लगा दिया भाई साहब ने कि मेरा सुधा के साथ नाजायज संबंध है। क्या यह नहीं बताया कैसी हालात में सुधा आधी रात को मेरे घर पर आई थी, और क्यों आई थी? सुधा आपकी अपनी बेटी होती तब भी क्या आप अपनी आंखें मूंदे रहती?
1: तुम क्या चाहती हो सुधा? क्या राहुल को अजय पर कुर्बान करना चाहती हो? अजय का रक्त किसी से नहीं मिलता, इसलिए एक आस के साथ यह यहाँ चला आया कि शायद राहुल के शरीर का एक हिस्सा इसके काम आ जाए। अजय यहाँ क्या सोचकर चला आया, पूछो इससे। सुधा बेटी, क्या सचमुच राहुल अजय का बेटा है?
3: तो क्या कहना चाहती हैं आप? अजय का बेटा न होता तो किस विश्वास पर अजय यहाँ चलाता? आप कहना क्या चाहती हैं? राहुल किसका बेटा?
2: खैर छोड़ो, तुम बोलो सुधा, क्या अजय को राहुल देना चाहती हो?
1: राहुल हमारा पोता है, तो हमें बताया क्यों नहीं?
3: मैं कोई अधिकार मांगने नहीं आई हूँ। श्याम ने मुझे इतना मजबूत बना दिया है माँ जी, कि किसी के भी सामने झुकना ना पड़े। श्याम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरा दोष क्या था? मेरा दोष यही था ना कि मेरे पति मुझसे दगा करके भाग गए, और मैंने अपने देवर जेठ की वासना का शिकार होना नहीं चाहता। मैं तब कहाँ जाती? माँ जी, श्याम ने मुझे वो दिया है जो मुझे इस घर में मिलना चाहिए था। रहा सवाल राहुल को आपको देने का, तो मैं...
4: हाँ बहू, उसका क्या?
3: वो मैं कैसे कर सकती हूँ? मात्र जन्म दे

0: जन्मदिन पर भी नहीं।
1: सुधा, राहुल को गोद में ले लो, घबरा रहा है। सच भी हो उसका कहना, 7 साल तक कोई नहीं लौटे तो कानून भी उसे मरा हुआ मान लेता है। और फिर मैं तो 10 साल बाद लौटा हूं। मैं तो अमेरिका में अपना जीवन जीता रहा, सुधा का जीवन रुक गया, श्याम का जीवन रुक गया। तुम दोनों के साथ अन्याय हुआ है। आज मैं आप दोनों पर अपना अधिकार समाप्त करता हूं। तुम दोनों कोई भी निर्णय लेने को आजाद हो। अपने ठहरे हुए जीवन को तुम उचित दिशा दो। मैं आभारी हूं तुम्हारा, जो तुमने मेरे घर की इज्जत को अपने पास संभाल कर रखा। तुमसे अच्छा इंसान कौन होगा सुधा के लिए? राहुल के पापा बस तुम ही हो सकते हो श्याम। पीछे मुड़कर मत देखना, अब पीछे तुम्हारा कुछ नहीं है। सुधा, जीती रहो, खुश रहो। मैं

0: 소탄.
1: 소탄.
2: 응.
1: 야 सोच रही हो?
2: कुछ नहीं.
1: मरता हुआ अजय यदि ईमानदार होता तो मैं ही अपना शरीर काटकर एक गुर्दा उसे दे देता. कुछ भी करता, कैसे भी तुम्हारा सुहाग बचाने का प्रयास करता, पर वह लौटा भी था तो एक जल्लाद बनकर, एक अजनबी बनकर. मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी?
2: ऐसा ऐसा क्यों हो जाता है श्याम? ऐसा क्यों हो जाता है कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता? रिश्ते इस तरह बदल क्यों जाते हैं श्याम?
1: सुधा, कुछ प्रश्नों के उत्तर होते ही कहाँ हैं जो मैं कोई उत्तर देता. कुछ प्रश्न तो सदा अनुत्तरित ही रह जाते हैं. तुम्हें जी जान से चाहने के बाद भी एक लक्ष्मण रेखा का सम्मान किया है हमने. सदा एक अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं मैं. राहुल ही तो एक सेतु है जिसने हमें कच्चे धागे से बांध रखा है.
2: मुझे खुशी है श्याम, मुझे खुशी है कि मेरा राहुल अब लावारिस नहीं है.
1: हाँ सुधा.

बदलते रिश्ते। अभी आपने सुना ये नाटक। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे संदीप दुबे, अपर्णा सिंह, अंतरा करवड़े और मास्टर संकल्प।

अभी आप सुन रहे थे नाटक जिसका शीर्षक था बदलते रिश्ते भाग दो और इसके लेखक एवं निर्देशक थे संदीप दुबे। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

सत्य स्वर सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को ग्लोरिया गांगले का प्यार भरा नमस्कार तथा आज की सभा में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अभी की सभा 4 से 5 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास, युग संचार और भक्ति गीत।

0: श्रोता साथियों नमस्कार। मातृत्व के आज के अंक के साथ मैं समता। और देखिए हमारा जो पिछला एपिसोड था उसमें हमने इनवाइट किया था डॉक्टर रक्षा गोयल को, और वही बात अब हम आज आगे जारी रखेंगे। रक्षा जी आपका एक बार फिर हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद।
0: तो रक्षा जी, हमने जो पिछला एपिसोड था उसमें हमने बात की कि हम प्रेगनेंसी के पहले कैसे अपने आप को तैयार करें, और अब जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई है तो उस समय तो उसकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि न सिर्फ उसे अपने आप को हेल्दी रखना है बल्कि अपने बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन उसके शरीर में जाए उसकी भी तैयारी करनी है। तो ऐसे समय हमारा जो खान पान है, हमारी डाइट है, वो कैसी हो?
1: अब जबकि कोई लेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है तो जैसे बोला जाता है यूजुअली घरों में कि अब आपको दो लोगों का खाना खाना है, एक आपका भी और एक आपके बच्चे के लिए भी। जी हाँ, ये कुछ हद तक सही है लेकिन पूरी तरह से नहीं।
0: अच्छा।
1: दो लोगों का खाना खाना मतलब ये नहीं होता है कि आप जितना खा रहे हो उसे डबल
0: खाओ।
1: हमें डबल करने का जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है प्रॉपर तरीके का खाना खाना,
0: जिसे संतुलित आहार,
1: संतुलित आहार जिसे हम बोलते हैं। माने अगर हम कोई खाना सब माना कि हम प्रोटीन ले रहे हैं तो हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन का जरूरत है, अच्छी क्वालिटी के, मतलब यहाँ हम क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। उस तरह का फूड अगर हम लेते हैं, उस तरह का खाना अगर हम खाते हैं तो हमारे बच्चे का विकास के लिए जरूरी है, इंटरनली उसकी हड्डियां बनने के लिए, उसका सांचा बनने के लिए, उसके ब्रेन के लिए, इन सब के लिए हमारा खाना सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
0: तो रक्षा जी, जो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग फेज जो होता है, पहली तिमाही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसमें बहुत सारी महिलाएं बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करती और हम जोर देते हैं कि आपको अच्छा खाना है, लेकिन उस वक्त तो एक निवाला खाना भी दुश्वार होता है और ऐसे समय बहुत हालत खराब होती है, तो हम उस वक्त में अपने आप को कैसे मेंटेन करें?
1: जी हाँ, जो पहला तिमाह जिसे हम बोलते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा जो हमें कंप्लेन आती है एक मदर की साइड से, या वुड बी मदर जिसे बोले उनकी साइड से, वो होता है कि हमें कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है,
0: वॉमिटिंग
1: बहुत ज्यादा हो रही है, खाना देखकर उल्टी जैसी इच्छा होती है जिसे हम नोशिया बोलते हैं, होता है, बहुत कॉमन है ये चीज होती है। पर ध्यान हमें ये रखना है कि इनका कई बार कारण होता है कमजोरी। ये ज्यादातर उन लोगों में देखा जाता है जो प्रेगनेंसी से पहले अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखते हैं। अगर प्रेगनेंसी से पहले हमारा शरीर उस चीज के लिए तैयार है तो इस तरह की परेशानियां हमें कम से कम महसूस होती हैं। अब इसके बाद अगर उसके बाद भी ये परेशानी उन्हें लगती है तो यूजुअली होता है कि लोग खाना बंद कर देते हैं कि नहीं इच्छा हो रही है मत खाओ, नहीं इच्छा हो रही है तो उस जगह आप खाना चेंज करके खाओ, जो खाने की इच्छा नहीं है वो छोड़कर आप दूसरा खाना खाओ। कई बार प्रेगनेंसी में होता है कि जो खाना हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है प्रेगनेंसी के टाइम पर वही चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। कोई दिक्कत नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर। अगर हम ये सोचें, एक सेट रूल होता है कई जगह पर कि जब कोई प्रेग्नेंट होती है तो उसे एक क्राइटेरिया मिल जाता है कि आपको ये नहीं खाना, ये चीज नहीं खाना, ये नहीं खाना, लेकिन घर वाले ये नहीं बोलते कि आप ये सब चीजें खा सकते हो। आजकल हम किसी भी चीज को खाने में मना नहीं करते हैं, आप वो खाओ जो आपको पसंद आता है, जो आपका शरीर डाइजेस्ट कर सकता है, जो आपका शरीर उसे पचा सकता है। जहां तक उल्टी की बात होती है, अगर किसी को बहुत फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग होती है, बहुत ज्यादा उल्टियां होती है, इसका मतलब होता है कि शरीर से पानी की कमी हो रही है, तो उस टाइम पे जरूरी है कि हम शरीर में पानी का इंटेक अच्छा रखें। पानी किसी भी रूप में पिया जा सकता है, चाहे आप नींबू पानी बना के पियो, रो अफजा शरबत बना के पियो, आप शिकंजी बना के पियो, छाछ, लस्सी, किसी भी रूप में। आपको बस ध्यान रखना है कि अगर मुझे उल्टियां ज्यादा हो रही है तो शरीर में पानी की कमी ना हो।
0: तो इसका कुछ हम ऐसा कुछ तरीका है कि हम जो, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि यदि आप सुबह सुबह उठ रहे हैं और अर्ली मॉर्निंग उठते से ब्रश के भी पहले अगर आप कुछ खा लेती हैं तो मे बी आपको जो थोड़ी सी उल्टी की जो समस्या है उसमें कंट्रोल होगा।
1: जी हाँ बिल्कुल, ये होता है क्योंकि कई बार उल्टियां होती है एसिडिटी के कारण या खाली पेट के कारण। हम पहले ही 8 घंटे कुछ नहीं खाए होते हैं क्योंकि हम सोए रहते हैं, उठने के बाद में अगर हम 2 घंटा और इस चीज में वेस्ट कर दें कि हमने कुछ नहीं खाया, पहले घर का काम किया या पहले अपनी और जिम्मेदारियों को देखा, तो हमारे पेट में एसिड का लेवल बढ़ जाता है। अब वो एसिड किसी न किसी तरीके से तो शरीर से बाहर निकलेगा, और जहाँ प्रेगनेंसी होती है तो वो फिर आता है ऊपर की साइड, यानी उल्टी होना या नोशिया वाला सेंसेशन होना। तो इसके लिए जरूरी है कि उठते से थोड़ा सा कुछ खा लें,
0: बिस्किट खा लें, टोस्ट खा लें या ऐसा कुछ।
1: उससे भी अच्छा होगा आप एक गिलास दूध ले लें या उसके साथ में बादाम खा लें या एक फल खा लें, वो सबसे हेल्दी फूड रहेगा।
0: तो चलिए, ये तो हुई हमारी स्टार्टिंग फेज वाली बात। उसके बाद जब आपका बच्चा जो पेट में सेटल हो गया और अब हमें चाहिए वेट गेन, तो उस समय हमें क्या खाना है?
1: जहां हम वेट गेन का बात करते हैं वहां हमें बेसिकली चाहिए होता है मसल गेन। वहां हम मसल गेन अगर बात करते हैं तो मसल हमारी बनती है प्रोटीन से। फिर से प्रोटीन का रोल यहां पर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि हम जो भी अपना खाना खा रहे हैं, जो मैंने आपसे बात की थी कि हमारा क्वालिटी ऑफ फूड अच्छा होना चाहिए,
0: तो गुणवत्ता जो हमारी श्रोता, हमारे खाने की गुणवत्ता पर हमें ध्यान देना
1: है जी। तो यहाँ पर हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि अगर हम वजन बढ़ाना चाह रहे हैं तो वह सही तरीके का वजन बढ़े, क्योंकि एक वजन होता है कि आप बहुत सारा घी वाला चिकनाई वाला खाना खा लो तो उससे वजन बढ़ रहा है, लेकिन वो अच्छा वजन बढ़ना नहीं माना जाता है। तो फिर से हमें, यानी हमारे खाना एक संतुलित आहार, एक थाली इतनी अच्छी हो जो देखने में कलरफुल हो, जिसको देखकर मन अच्छा हो जाए।
0: यानी हमें सलाद खाना है,
1: बिल्कुल
0: हमें दाल जरूर चाहिए, चावल जरूर चाहिए, सब्जी चाहिए, रोटी,
1: बिल्कुल। और कलर की जहां हम बात करते हैं, रंगों की जहां हम बात करते हैं खाने में, यहां हम बात करते हैं नेचुरल कलर, प्राकृतिक कलर की, ना कि हम किसी इंजेक्शन वाले कलर की बात कर रहे हैं।
0: नहीं, आजकल है ना रक्षा जी, ये बड़ी समस्या है क्योंकि पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा डलते हैं, तो हमारे मन में एक ये कंफ्यूजन रहता है कि हम जो भी चीज खा रहे हैं तो हम खा क्या रहे हैं, हम अच्छा खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा कोई बस नहीं। लेकिन श्रोता साथियों, फिर भी हम एटलीस्ट अपनी साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं। हम जो भी चीज पका रहे हैं उसको आप ठीक तरीके से धोइए, साफ बर्तन इस्तेमाल कीजिए, अपने हाथ साफ रखिए, और मैं सोचती हूँ कि जो हम कर सकते हैं वो तो हम करें ही।
1: बिल्कुल, जब हम खरीदते हैं तब हम कई चीजों पे ध्यान दे सकते हैं कि कलर जो दिख रहा है, सबसे जरूरी होता है कि उस मौसम का फल या सब्जी खाएं जो जिस मौसम में उगता है। अगर हम वो लेना शुरू करेंगे तो हमें नेचुरली वही मिलेगा जो उस सीजन में मिल रहा है, जो सीजन में उगता है उसमें कोई कलर नहीं डालता। लेकिन अगर हम ऑफ सीजन में कोई फल या सब्जी खरीदने जाते हैं तो वो पहला चीज कि हमें फ्रिज का रखा हुआ मिलेगा जो कि कोल्ड स्टोरेज में होता है, और उसे उगाने के लिए इन्हें एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर, जो हम बोलते हैं कि खाद, केमिकल वाली, उसका यूज करना पड़ेगा। अगर वो होगा तो नेचुरल सी बात है कि हमारे खाने में वो सब आ ही जाएंगे। तो सबसे जरूरी है मौसमी फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना। इसके अलावा में, जैसे हमने बात की प्रोटीन क्वालिटी को लेकर, इसके दूसरा चीज होता है आयरन। एक और हमारे यहाँ पर समताजी एक मिथ होता है या भ्रांति है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर कुछ फल बंद कर दिए जाते हैं,
0: जैसे पपीता
1: मना करते हैं, कुछ लोग मौसमी मना कर देते हैं, कुछ पाइनएप्पल मना कर देते हैं। किसी भी तरह से इन फल का रोल मिसकैरेज में नहीं होता है, आराम से ये सारे फल खाए जा सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर सबसे ज्यादा कब्जी की शिकायत होती है एक मदर को। कब्जी तभी दूर होगी जबकि रेशे वाली चीजें खाई जाएं, और हम सब जानते हैं कि पपीता कब्जी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ये सब चीजें खाना चाहिए, रेशे जितना ज्यादा हम खाने में ले सके वो अच्छी बात है। आयरन का जैसे हमने बात किया, एक सामान्य लेडी से ज्यादा आयरन का जरूरत बढ़ जाता है शरीर में। जैसे हम सामान्य बात करें तो 30 मिलीग्राम आयरन सफिशियंट होता है कि एक नॉर्मल
0: महिला
1: के लिए जरूरी है। लेकिन जहां गर्भावस्था की बात करें वहां इसका मात्रा बढ़कर 38 ग्राम पहुंच जाता है। माने जो हमें ज्यादा 8 ग्राम लेना है वो हमें अपने खाने के थ्रू, तो जो हमने बात की गुणवत्ता की, वो तब भी आएगा जब हमारा खाना उतना अच्छा होगा। एक चीज और इसमें है, आजकल जो लेडीज होती हैं, कई लोगों में कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे हम बोले पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज PCOD या हम डायबिटीज का बात करते हैं, कई लेडीज में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी गर्भावस्था के टाइम पर ब्लड में शक्कर का लेवल बढ़ जाता है।
0: हाँ।
1: जिसे हम गर्भावस्था की डायबिटीज कहते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत से लोगों को होता है। हमें ध्यान ये रखना है कि इस समय पर डॉक्टर के पास जाएं, उन्होंने जो मेडिसिन दिया है उसे लेना शुरू करें, अपनी मर्जी से बंद ना करें। और दूसरा, उसी के साथ में जो आपको खाना पीना बताया है उन चीजों पे ध्यान दें। और अगर आप में गर्भावस्था के टाइम पर ये कोई बीमारी है, ये कॉम्प्लिकेशन है, तो डिलीवरी के बाद में हो सकता है कुछ टाइम तक आपको ये ठीक लगे, लेकिन आपको ज्यादा सजग होने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस पे आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो ये आपके बेबी को भी अफेक्ट कर सकता है।
0: तो श्रोता साथियों, देखिए समय जो है वो तो पंख लगाए उड़ता चला जाता है। हमारे इस एपिसोड का समय तो खत्म होने को है, लेकिन बातें अभी बहुत सी बची हैं। तो उम्मीद है कि हमारे अगले एपिसोड में एक बार फिर मैं रक्षा जी को आपकी सेवा में लेकर आऊंगी। आज के लिए इतना ही। मुझे अन्य समता को दे इजाजत। नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम एक मुलाकात और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आपने सुना भक्ति गीत और प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, अब सुनते हैं कार्यक्रम युवा विकास और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: कार्यक्रम है युवा विकास और इसके अंतर्गत चर्चा है भारतीय युवा नई दिशा। इसका आलेख श्री कृष्णकांत दुबे ने तैयार किया है और भाग ले रहे हैं मैं इंदु
1: और मैं भवानी।
0: नमस्कार श्रोताओं।
1: मित्रों, विश्व में यह अवधारणा फिर विकसित हो रही है कि जब तक नैतिक मूल्यों का विस्तार नहीं होगा, दुनिया में व्याप्त व्यथाएं कभी समाप्त नहीं होंगी।
0: क्योंकि आज हर तरफ आर्थिक विषमताएं हैं, गरीबी और असहायता है, आतंक से उपजा भय है। उस भय से मनुष्य जाति बुरी तरह आहत है, संतरस्त है। एक ओर समृद्धि के महाशिखर हैं, तो दूसरी ओर अंधकार भरी गरीबी और उससे उपजी खाइयां, जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता।
1: इस बीच एक प्रश्न है, क्या इन सबसे मुक्ति संभव है? आज सार्वजनिक रूप से यह प्रश्न किया जाए तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि विषमता का अंधेरा इस तरह व्याप्त है कि उसमें आशा की किरणें नजर ही नहीं आती हैं।
0: लेकिन भवानी
1: जी,
0: समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कि हर जो उत्तर जो है
1: जी
0: वो सकारात्मक
1: है। हाँ, जी हाँ।
0: उनका विश्वास है कि अगर हर व्यक्ति व्यक्ति में इन नैतिक मूल्यों का प्रसार कर सकेंगे तो निश्चित ही इस विश्वव्यापी दुखद स्थिति से, जिसका हमने भी पहले जिक्र किया, निजात पाई जा सकती है।
1: अगर युवा शक्ति आगे बढ़कर इस दिशा को ग्रहण कर ले तो इस संदर्भ में बहुत कुछ किया जा सकता है। समाज में सही नैतिकता सचमुच विस्तार पा सकती है, विषमताएं भी दूर हो सकती हैं, मातृभाव का विस्तार हो सकता है और इससे प्रेम और अहिंसा की स्थापना, मानवीय भावनाओं का व्यक्ति चरित्र में प्रवेश हो सकता है। पर इसके लिए अगर ईमानदार कोशिश हो तो इसमें निसंदेह सफलता प्राप्त हो सकती है।
0: अगर इसके लिए ग्राम, नगर, प्रदेश, देश और फिर विश्व स्तर पर यही सही प्रयत्न किए जाएं,
1: जी हाँ,
0: तो ये स्वप्न सहज ही पूरा हो सकता है। लेकिन भवानी
1: जी,
0: हम एक बात नजरअंदाज कर जाते हैं।
1: कौन सी बात?
0: कि दुनिया में कुशक्तियों के बजाय
1: हाँ।
0: शुभ और मंगलकारी शक्तियां अधिक हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: यही कारण है कि वही दुनिया चल रही है
1: हाँ।
0: और विकास की गतिविधियां हैं और मनुष्य जाति का
1: अस्तित्व बना हुआ है।
0: बना।
1: लेकिन इंदु जी, अब समय आ गया है जब उन शुभ शक्तियों को संपूर्ण रूप से जागृत करना होगा। अगर यह हुआ, यानी समाज की ये शुभ शक्तियां सही रूप में जागृत हो गई, तो बुरी शक्तियों का पराभव होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन इसके लिए विशेष प्रयास की निश्चित आवश्यकता होगी। आप क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में?
0: देखा गया है कि जब भी कभी कहीं कोई अनहोनी होती है, कोई दुर्घटना आदि घटती है, प्राकृतिक प्रकोप होता है, तब जिनके हृदय में मानवीय संवेदनाएं होती हैं, जिनमें प्राणी मात्र के लिए सद्भावना होती है, वे ऐसे विकट और ऐसे संकट की मुक्ति के लिए हर तरह की भागीदारी निभाते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं
1: जी।
0: और उस अपने कर्तव्य को निभाते हैं
1: हाँ हाँ।
0: यही तो उनकी सद्वृत्ति कहेंगे
1: जी।
0: ऐसे में अक्सर देखा गया है कि युवा वर्ग हमेशा आगे होता
1: बिल्कुल
0: है।
1: हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। यह जानकर सचमुच अच्छा लगा कि इस संदर्भ में कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ संस्थाएं इस दिशा में अपनी भागीदारी भी निभा रही है। यह अपने आप में एक भली बात है, अच्छी बात है। अगर अंधकार के बीच कहीं कोई दीपक जलाता है तो वह निश्चित प्रकाशदाता बन जाता है। कभी देखने में कोई छोटा प्रयास भी कभी कभी बड़ा आकार ग्रहण कर लेता है। यह अपने में भली बात ही तो हो सकती है और भली बात कही जाएगी
0: हाँ,
1: इसे।
0: हाँ, अगर युवा वर्ग ऐसी किसी संस्था या आंदोलन से जुड़ पाए तो इससे अच्छी बात की भला क्या होगी।
1: बिल्कुल,
0: अगर वे ऐसी संस्था और आंदोलन से न भी जुड़ पाए
1: जी,
0: लेकिन अपने में
1: हाँ।
0: उन अच्छे भावों को, उन विचारों को, उन आदर्शों को जागृत कर लें और उस दिशा में अपने को प्रवृत्त कर लें, तो बहुत कुछ हो सकता है।
1: बिल्कुल बहुत कुछ हो सकता है, तो बस आवश्यकता होगी उस दिशा में प्रवृत्त होने की। हाँ, इसके लिए अपने में कुछ गुण आदर्शों का समावेश कर लें, तो ये गुण आदर्श उन्हें अच्छी दिशा देने में समर्थ होंगे। कोई युवा कहे कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टि जागृत कर ले, उससे उसके जीवन में, बल्कि कहें उसके आसपास, उसके निकट रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में भी वही भाव विचार जागृत होने में मदद मिलेगी। और कई हैं जो हर कहीं कमी, हर कहीं शून्यता को ही देखते पाते हैं। उनका यह दृष्टिकोण सदैव के लिए कुछ इस तरह बन जाता है कि सब कुछ होने के बाद भी वे अपने में निरंतर अभाव और दुख महसूस करते रहते हैं।
0: लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से
1: जी
0: अपने में सुख और संतुष्टि महसूस कर लेते हैं। ऐसे आशावादी लोग समाज में अच्छा भला वातावरण निर्मित करते हैं तथा प्रेममय वातावरण बनाते हैं, आस्थावादी वातावरण बनाने में भी समर्थ होते हैं, मतलब बहुत कुछ करते हैं।
1: जी हाँ,
0: ऐसे स्वस्थ आस्थावादी वातावरण के अभाव में समाज में कई विसंगतियां जन्म लेती रहती हैं। अगर जागृत नहीं रहेंगे तो विसंगतियां होंगी।
1: जी हाँ, हाँ, जो लगातार बढ़ती ही जाती है। यूं कहें, अच्छा वातावरण समाज को सदैव शुभ दिशा देता है। याद रखें, जिन्हें आधे करे दूध के गिलास को हमेशा आधा खाली ही नजर आए, उन्हें आप क्या कहेंगे समझ लें। उनके जीवन में कभी संपूर्णता नजर नहीं आ सकती। जब ग्लास आधा भरा नजर न आए, ऐसी दृष्टि में आप आनंद और उत्साह के भाव विचार
0: कभी नहीं पा सकेंगे। सच तो ये है कि मनुष्य के अपने भाव विचार ही उसके अपने सुख दुख में सुख दुख के कारण होते हैं।
1: जी हाँ,
0: सुख दुख समझ लो कि उन्हीं की वजह से होता है। जो युवा अपने जीवन को शिक्षा दे रहे हैं, ये दिशा दे रहे हैं, उन्हें निश्चित सकारात्मक दृष्टि कोण की ही आवश्यकता होती है। युवा वर्ग अगर इस भाव विचार को ग्रहण करेगा तो समाज स्वयं स्वस्थ दिशा पा जाएगा।
1: तो बस
0: क्योंकि युवा वर्ग ही तो है।
1: जी हाँ,
0: हमारे
1: देश को, समाज को, परिवार को आगे बढ़ाने वाला। तो बस अगर युवा इस संदर्भ में बुनियादी परिवर्तन कर लें तो बहुत कुछ संभव है। इसी तरह इंदु जी, युवा वर्ग को वर्तमान स्थितियों के बीच अपने हृदय में, अपने दिल में एक विश्वास जागृत करना होगा, और वह विश्वास होगा उन्हें अपने उद्देश्य में सफल होना है, तो वे सफलता भी शुद्ध मार्ग से ही अर्जित करें। उन्हें इसी का संकल्प लेना होगा। हाँ जी, और उसी से उन्हें अपनी जीत का मार्ग बनाना होगा और वही रास्ता बनाना होगा।
0: हम पराजित नहीं होंगे, चाहे कैसी भी स्थितियों का सामना करना पड़े, हम हार नहीं मानेंगे।
1: बिल्कुल,
0: पर हमारी जीत, हमारी सफलता नैतिक मूल्यों पर ही आधारित होगी।
1: लेकिन इंदु जी,
0: जी
1: इस पर विचार किया जाए तो यह तभी संभव होगा जब युवा वर्ग जीवन के 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे।
0: वो कौन से?
1: और आप कहेंगे, पूछ रही है मुझसे कौन से, तो मैं बताती हूँ वो बिंदु कौन कौन से हैं। वे बिंदु हैं ईमानदारी, वैचारिक शुद्धता, प्रेम, निस्वार्थता और नैतिकता। इन्हीं गुणों को अपने में जागृत करना होगा हमारे युवाओं को। जीवन के इन्हीं प्रकाश बिंदुओं को अपने में धारण करना होगा। इन गुणों को धारण करके ही युवा वर्ग अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तो यह सब बातें उन्हें जीवन में आनंद देगी और वे इससे निरंतर अपनी प्रगति की दिशा को विस्तार देने में पूरी तरह समर्थ भी हो सकेंगे।
0: वर्तमान भारतीय युवा वर्ग से हमारा यही कहना है कि वे जीवन के इस प्रकाश बिंदुओं को, जो बताए हैं 6, अपने चरित्र का अंग बना लें, तो वे देखेंगे कि उन्हें किन किन बातों की उपलब्धियां प्राप्त होंगी। बस वे एक बार उस सूत्र को अपने जीवन में अपना तो लें, उनके उच्चतम परिणाम उनके सामने आने लगेंगे।
1: बिल्कुल सही लिखा है दुबे जी ने। जो युवा सजग हैं, थोड़े बौद्धिक हैं, वे समाज, प्रदेश, देश और विश्व के संदर्भ में अवश्य सोचते ही हैं। इन स्तरों पर जो घटनाएं, चाहे वे भली हों या बुरी, उस पर निश्चित चिंतन करते ही हैं। उस संदर्भ में उनके मन में प्रश्न होते हैं कि क्यों होता है ऐसा। जी, आज भारत जिन स्थितियों परिस्थितियों से गुजर रहा है, हर कहीं जो दुखद स्थितियां निर्मित की जा रही हैं, वह सब भी उनकी सोच के दायरे में है। अगर इस विषय में इंदु जी गहराई से सोचा जाए, विचार किया जाए, तो ज्ञात होगा कि समाज में लगातार कुछ ऐसे तत्व उभर आए हैं जिन्होंने संपूर्ण भारतीय समाज में कई अंतर विरोधों को जन्म दे दिया है और जो देश समाज को अंधी दिशाओं में धकेल देने की कोशिश कर रहे हैं।
0: वे चाहते नहीं ना ये बात।
1: जी हाँ, वे नहीं चाहते देश समाज में शांति, प्रेम और भाईचारे का विस्तार हो। इस संदर्भ में युवाओं से हमारा यही कहना है, वे स्वयं सबसे पहले यह देखें कि कहीं उनके अपने काम इन सब में कहीं सहायक तो नहीं है।
0: हाँ, देखें उनके अपने विचार स्वयं शुद्ध हैं या नहीं, देखें कि कहीं उनके अंतर्मन में कहीं कोई विशेष की भावना तो नहीं है। अगर है तो वे संकल्प करें
1: जी हाँ
0: कि हम इसे दूर करके रहेंगे, उससे मुक्ति पाएंगे और स्वयं कोई ऐसी आदत तो नहीं है जो अन्य लोगों को
1: आहत करती है,
0: परेशान करती है।
1: भारतीय युवा जानते हैं, अच्छी तरह से ये जानते हैं कि देश का एक बड़ा भाग हर वर्ष जल अभाव से पीड़ित होता है। आज देश का हर युवा इस स्थिति से परिचित है। एक बार युवाओं के परिसंवाद के दौरान एक युवा ने एक बहुत प्रेरक प्रसंग सुनाया था। और वह था, स्वतंत्रता संग्राम के दिन थे, तब एक बार महात्मा गांधी इलाहाबाद आए और वे पंडित मोतीलाल नेहरू के निवास आनंद भवन में ठहरे। जब सुबह महात्मा गांधी हाथ मुंह धो रहे थे, तब श्री जवाहरलाल नेहरू उनसे बातें कर रहे थे। जब गांधी जी हाथ मुंह धोकर कुल्ला करने लगे, तब तक पात्र का पानी समाप्त हो चुका था। इससे महात्मा गांधी का मन कुछ उखड़ा सा गया और बातचीत बीच में ही बंद हो गई। जब जवाहरलाल जी ने इसका कारण पूछा, तो वे बोले, मैं बातचीत में इतना खो गया था कि सारा पानी खर्च हो गया, अब मुझे दोबारा पानी लेना पड़ रहा है। गांधी जी की यह बात सुन जवाहरलाल जी हंसते हुए बोले, बापू बस इतनी सी बात है, इलाहाबाद में तो गंगा और यमुना दोनों बहती हैं, जितना चाहे उतना पानी इस्तेमाल कीजिए।
0: इस पर गांधी जी ने क्या कहा?
1: हाँ, इस पर गांधी जी ने कहा, ये गंगा और यमुना अकेले मेरे लिए तो नहीं बहती, प्रकृति में कोई भी चीज किसी भी मात्रा में क्यों न उपलब्ध हो, परंतु मनुष्य को अपने लिए उतनी ही मात्रा में लेनी चाहिए जितनी की जरूरत हो। इंदु जी, दुबे जी ने आगे यह भी लिखा है कि सकारात्मक सोच में भी मानवता हो तो ही वह उत्तम होगा। तो इस संदर्भ में एक घटना स्मरण हो आता है, देखिए वो घटना क्या है। आप
0: अपने युग के गोल्फ चैंपियन श्री रॉबर्टो डी वाइचेंजो के पास एक महिला आई और उनसे रोते हुए बोली, मेरी बेटी को रक्त कैंसर है और उसके इलाज के लिए काफी धन की जरूरत है। ये सुनकर उन्होंने उस महिला को वो रकम दे दी। एक दिन उनके एक मित्र ने आकर कहा, ये आपने क्या किया, उस महिला की बेटी का कोई कैंसर वैंसर नहीं है। उसने वो पैसे अपने लिए मांगे, उसे पैसे की जरूरत कैंसर के लिए नहीं थी।
1: अच्छा,
0: इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा, मित्र तुमने सचमुच बहुत अच्छी खबर सुनाई, मुझे पैसे देने से कहीं ज्यादा खुशी ये बात सुनकर हो रही है कि उसे कैंसर
1: नहीं है। तो मित्रों, इस प्रसंग ने जो सकारात्मक सोच की ध्वनि दी है, उसे युवा वर्ग अपना लें

अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा विकास और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, आप सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार, जिसका शीर्षक है आदिवासी संस्कृति की अनूठी कलाएं, और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वतंत्र कुमार ओझा, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
1: हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। युग संचार, आज के युग संचार कार्यक्रम का शीर्षक हमने रखा है आदिवासी संस्कृति की अनूठी कलाएं। साथियों, आज जब रोहित स्कूल से घर आया तो बड़ा खुश नजर आ रहा था। ड्राइंग रूम में आया, सोफे पर बस्ता पटका और वहीं बैठे दादाजी की गोद में बैठ गया। दादाजी ने प्यार से सर पर हाथ फेरा और बोले, क्या बात है छोटे नवाब, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे हाँ दादाजी, पता है आज हमारे स्कूल में आदिवासी लोगों की मंडली का नाच गाना बड़ा बड़ा बड़ा शानदार प्रोग्राम हुआ, बहुत मजा आया सबको, बहुत मजा आया। और फिर रोहित गोदी में से एकदम उतर कर पास ही बैठ गया। बोला, दादाजी कार्यक्रम तो वैसे बहुत बहुत अच्छा था, लेकिन एक बात सभी कलाकारों में मैंने देखी, सभी के हाथ पैर मुंह तथा पीठ पर गहरे नीले रंग की कुछ आकृतियां और कुछ निशान छपे हुए थे। इसको सुनते ही दादाजी झट से बोले, बेटा रोहित, ये निशान छपने से नहीं बनते, बल्कि गोदने से बनते हैं, और ये आदिवासी जनजाति और ग्रामीण संस्कृति की बरसों बरसों पुरानी कला है, और इस कला को ये लोग गुदना कहते हैं। और खास बात ये है कि ये निशान महिलाओं के शरीर पर ज्यादातर गुदे रहते हैं, ये निशान उनके लिए गहनों की तरह होते हैं, और इन निशानों के कारण ये औरतें कुछ अलग आकर्षक और सुंदर नजर आती हैं। रोहित को बड़ा मजा आ रहा था ये सब बातें सुन के। बोला, दादाजी और बताइए ना, और बताइए ना इस बारे में। दादाजी ने बोलना शुरू किया, देखो छोटू, इन लोगों में ये मान्यता है कि सोने चांदी के गहने तो जब तक जिंदा हैं तब तक ही साथ रहते हैं, लेकिन गुदने के निशान मरने के बाद भी शरीर का साथ नहीं छोड़ते। इसके साथ ही ये लोग ऐसा भी मानते हैं कि गुदने मौत के बाद भी आने वाली अगर कोई यातनाएं हैं, दुख हैं, तो उनसे भी रक्षा करके मुक्ति दिलाते हैं। दादाजी ने रोहित की ओर देखा, हाँ, अरे अरे कहाँ खो गए छोटू, यही सोच रहे हो ना कि ये भला कैसी मान्यता है। पर बेटा, इन मान्यताओं का आधार विश्वास और इन लोगों के पुरखों द्वारा विरासत में छोड़ी गई रीतियों और रिवाजों के अनुसार ही तो कायम हुई हैं, और इन्हीं का एक संचार आज तक जारी है। और दरअसल गुदना ये एक बड़ी ही अनोखी कला है, जिसको कुछ मान्यताओं के साथ जोड़ दिया गया है। हम वृक्षों की पूजा क्यों करते हैं, उन्हें देवता मानते हैं ना, इसीलिए करते हैं। और ये भी है उसके साथ कि हमें वृक्ष शीतल छाया और फल देते हैं, तो ये गुदना भी एक ऐसी ही परंपरा है, और आदिवासी क्षेत्रों में ये बेहद लोकप्रिय है। जिस महिला के अंग पर जितने ज्यादा गुदने के निशान होंगे, वो अपने समुदाय में उतनी ही ज्यादा लोकप्रिय होगी। लेकिन दादाजी, ये गुदने जो कभी मिटते नहीं ना, ये बनाए कैसे जाते हैं अगर छपते नहीं है तो, रोहित ने एकदम से सवाल किया। अरे बेटा पूछो मत, दादाजी बोले, ये निशान जो है ना, सुई की नोक से गोद गोद कर सुई चुभो चुभो कर बनाए जाते हैं। हाय हाय हाय हाय, अरे तब तो बड़ा ज्यादा दर्द होता होगा ना दादाजी, है, रोहित बोला। हाँ बेटा, बहुत दर्द तो होता है, लेकिन ये स्त्रियां हंसते हंसते इसकी बेहद पीड़ा को सहन कर लेती हैं, इस विश्वास के साथ कि गुदाने से इनकी मनचाही मुराद इच्छा जरूर पूरी होगी। अब सुनो क्या क्या गोदा जाता है। आड़ी तिरछी लकीरें शरीर के सब हिस्सों में बनाई जाती हैं, जो किसी मंत्र के समान प्रतीक के रूप में माना जाता है, और छाती पर मोर या टोकनी, माथे पर त्रिकोण का निशान, हाथ के पीछे की ओर झोपड़ी और जांघों पर धनुष गोदा जाता है। रोहित चुपचाप सुन रहा था और दादाजी सुना रहे थे। हाँ तो बेटा, इस कला का कार्यक्रम आदिवासियों द्वारा एक खास उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस शुभ कार्य का संदेश वाद्यों जैसे तुरही, मादल, ढोल वगैरह बजा बजाकर दूर दूर तक पहुंचाया जाता है। फिर सारे लोग इकट्ठे होकर जोर शोर से नाचते गाते हैं, ताकि गुदना गुदाने वाली स्त्रियों को हो रहे दर्द से इनका ध्यान हटाया जा सके। क्योंकि एक तरफ तो गुदने का कार्यक्रम चल रहा है औरतों के शरीर पर, और दूसरी तरफ दूर दूर से ढोल मादल बजते हैं तो उनका ध्यान बढ़ जाता है। तो समझे रोहित, ऐसी दर्द से भरी विचित्र और अनोखी कला से भरपूर है हमारा देश, जो परंपराओं का संचार भी करता है और आपस में एक दूसरे से हम सबको जोड़ता है। और ये कलाएं विदेश में भी विस्तार पा रही हैं, तो यही इनका संचार है, और हमारे यहां शहरों में भी इस कला को अपनाया गया है। तो क्या दादाजी, शहरों में भी औरतें या आदमी इस तरह के रिवाजों को मानते हैं? क्या वे भी ये सुई के चुभने की पीड़ा सहन करके गुदने गुदवा सकते हैं? रोहित ने फिर प्रश्न किया। बेटा, तुमने सवाल तो बहुत अच्छा किया, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में रहने वाले इन सबको नहीं मानते। जैसे जैसे विकास की प्रक्रियाएं हो रही हैं, शहरीकरण हो रहा है, उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, बाजारवादी संस्कृति बढ़ रही है, ये सब चीजें धीरे धीरे धीरे धीरे नकारते जा रहे हैं। लोग इन सबको नहीं मानते हैं। अब ना माने, लेकिन आज भी ये परंपराएं जीवित हैं, क्योंकि शुद्ध रूप से ये केवल हमारी आदिवासी जनजाति संस्कृति की कला है। हाँ, कुछ साल पहले शहरों के आसपास जो गांव होते थे ना, वहां के कुछ लोग अपने हाथों पर अपना नाम जो है वो जरूर गुदवा लेते थे। औरतें भी गुदवाती थी, और कभी कुछ ऐसा मौका आ जाए, कोई प्रसंग आ जाए और उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे पति का नाम क्या है, तो वो नाम मुंह से नहीं बोलती थी, वो अपना हाथ बढ़ता देती थी जिस पर उसके पति का नाम गुदा हुआ रहता था। तो स्त्रियां जो विवाहित होती थी ना, वे जैसा कि मैंने अभी बताया, अपने पति का नाम गुदवा लेती थी और अपना हाथ दिखा देती थी। क्योंकि हमारे यहां आज भी अधिकतर गांव देहातों में ये मान्यता है कि भाई पति का नाम मुंह से नहीं लेना चाहिए, ये भी एक

0: घरों में आजकल टैटू का चलन बहुत जोरों पर है। हाँ, ये टैटू जो है ना, ये बने बनाए कुछ भी चित्र या तो बदन पर चिपका दिए जाते हैं या छपवा दिए जाते हैं, पर ये गुदना की कला नहीं है, जैसा कि सुई से गोद गोद कर किया जाता वो नहीं है, ये अलग है। लेकिन ये इसको टैटू कहा जाता है और ये बहुत चल रहा है शहरों में। दादाजी, आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हाँ छोटू, समझे ना, तो ये क्या है कि हमारी प्राचीन और आधुनिक मान्यताएं हैं और ये भी एक युग संचार की तरह हमारी जीवनधारा में प्रवाहित होती रही हैं। और यही नहीं, ऐसी अनेक कलाएं हैं बरसों पुरानी, तो कुछ आज के युग की, कुछ पुराने युग की, और जब भी इनका प्रयोग और चलन होता है तो धीरे धीरे संचार की सहायता से इनका प्रचार प्रसार होता है और ये जनमानस में लोकप्रियता पाने लगती है। तो श्रोताओं, कलाएं असीम हैं, अनंत हैं, और इसी संदर्भ में आदिवासी कलाओं का चलन अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम युग संचार, जिसका शीर्षक था आदिवासी संस्कृति की अनूठी कलाएं, और इसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वतंत्र कुमार ओझा, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, इसी के साथ आज्ञा दीजिए ग्लोरिया गांगले को। अगली मुलाकात में आपसे बात करेंगे विवेक पीटर रॉबर्ट। धन्यवाद।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मन दर्पण और अंत में पर्यावरण। तो आइए साथियों, समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है न धर्म की सीमा न जात का बंधन। इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता हैं फादर हरमन मंडोट SVD।

सर्वधर्म विचार के तहत लीजिए सुनते हैं वार्ता जिसका शीर्षक है न धर्म की सीमा न जात का बंधन। प्रिय श्रोता मित्रों नमस्कार। भारत में बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों का होना सांप्रदायिकता नहीं है। जब लोगों के धार्मिक हित आपस में टकराने लगते हैं तब सांप्रदायिकता पैदा होने लगती है। चाहे पंडित मुल्ला कुछ भी कहे, सलमान खान अपने घर में गणपति बैठाते हैं और बाकायदा पूरे अनुष्ठान के साथ उनकी खातिरदारी करते हैं। वे ईद भी मनाते हैं और क्रिसमस भी। फिर सिर्फ वे ही क्यों, शाहरुख खान भी दिवाली मनाते हैं और वह भी बड़ी सी पार्टी देकर। हकीकत में इस देश की गंगा जमुनी तहजीब यदि कहीं दिखाई देती है तो वो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। यहाँ हर स्तर पर समानता नजर आती है। धर्म जाति उम्र को तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ राष्ट्रीयता का सवाल भी हास्य पर ही होता है। व्यवसायिक तौर पर तो खैर ये नजरिया जरूरी है ही, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी ये नजरिया यहाँ का सच है। और ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि सालों साल से यह परंपरा इस इंडस्ट्री की विशेषता है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सही मायनों में धर्मनिरपेक्ष कहा जा सकता है। एक तो किसी भी फिल्म के निर्माण में इतने सारे लोग होते हैं कि उनमें हर धर्म जाति क्षेत्र और संप्रदाय के लोग काम करते हैं। इस दुनिया में कई अलग अलग तरह के कामों की जरूरत होती है और उसी के अनुरूप लोगों की भी। फिल्म निर्माण एक ही साथ रचनात्मक कर्म भी है और तकनीकी भी, तो जाहिर है यहाँ धर्म भाषा जाति संप्रदाय और हर क्षेत्र के प्रश्न उठते ही नहीं है। यहाँ एक ही धर्म है और वो है सफलता, किसी भी कीमत पर बस सफलता। और इस धर्म के इर्द गिर्द और कोई धर्म टिक नहीं पाता। तभी तो यहाँ के रिश्तों का स्वरूप भी वैसा ही है, तरल प्रवाहमान बिना किसी गांठ पत्थर के बहते हुए से। राजनीति की तरह ही व्यवसायिक दुनिया में कोई स्थायी दोस्त और कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। इस दुनिया में रिश्तों का सीधा सा हिसाब या तो दिल से है या फिर दौलत। जब मामला काम का हो तो पूरा का पूरा ध्यान काम की गुणवत्ता मतलब फिल्म की सफलता पर होता है। फिर ये नहीं देखा जाता कि काम करने वाला कौन है। इसी तरह इंडस्ट्री के परिवारों में भी दुनिया के सारे रंग देखने को मिल जाते हैं। चाहे हमारी दुनिया में ये अब उतना असामान्य नहीं रहा है, लेकिन फिल्मी दुनिया में ये कभी भी असामान्य नहीं रहा। जब शशि कपूर ने जेनिफर कैंडल से शादी की तब भी नहीं, और अभी अभी जब रितेश देशमुख ने जेनेलिया डिसूजा से शादी की तब भी नहीं। फिल्मी दुनिया में कितने परिवार ऐसे हैं जहां अंतरजातीय और अंतर्राष्ट्रीय शादियां हुई है। शशि कपूर जेनिफर कैंडल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जहां यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। सलमान खान का परिवार इसका प्रतिनिधि उदाहरण है। सलमान के पिता सलीम खान ने पहले हिंदू लड़की सुशीला चरण के साथ शादी की, जिन्हें सलमान नाम दिया गया। बाद में हेलन से शादी की। इसी परंपरा को आगे बढ़ाया सलमान के भाइयों अरबाज और सोहेल ने। अरबाज ने पंजाबी क्रिश्चियन लड़की मलाइका अरोड़ा से शादी की, तो सोहेल ने सीमा सचदेव से। बेटी अलवीरा खान ने अतुल अग्निहोत्री से शादी की, तो सलीम खान ने अर्पिता नाम की एक हिंदू लड़की को भी गोद लिया। सुनील दत्त के परिवार में भी यही क्रम चलता रहा। सुनील दत्त ने नरगिस से शादी की, संजय ने पहले ऋचा शर्मा से शादी की, लेकिन ऋचा की जल्दी ही मृत्यु हो गई। बाद में कई हीरोइनों से उनके अफेयर की चर्चा चलती रही और अंत में उन्होंने मान्यता उर्फ दिलनवाज शेख से शादी की। साथ काम करते हुए प्यार होना तो खैर बहुत साधारण बात है। नसरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक, पंकज कपूर, नीलिमा अजीम, राज बब्बर, नादिरा जहीर, कयाज जगदीत कौर, किशोर कुमार मधुबाला, जावेद अख्तर, हनी ईरानी, अर्जुन रामपाल, मेहर जेसिया, आमिर खान और किरण राव जैसे साथ साथ काम करने वालों के बीच के रिश्ते हो या फिर फिल्म परिवारों में ही एक ही से परिवेश से संपर्क में आने के उदाहरण हैं,
जैसे ऋतिक रोशन, सुदेन खान का उदाहरण, बल्कि ये कहना कि अंतर धार्मिक विवाह आम जिंदगियों में चाहे उतने सामान्य न हो, लेकिन फिल्मी दुनिया में हर दूसरे परिवार में यही होता आया है, होता रहा है और होता रहेगा। फिल्मी और गैर फिल्मी जोड़ों में भी अंतर धार्मिक विवाह बहुत आम है। फिरोज खान के परिवार में यही क्रम चल रहा है। फिरोज खान ने सुंदरी से विवाह किया और फरदीन ने नताशा माधवानी से। अंतर धार्मिक विवाहों का ये सिलसिला यही खत्म नहीं हो रहा है। अभी इसी कतार में कई कपल इंतजार कर रहे हैं, जैसे सेफ करीना और कुणाल सोहा। असल में शायद उस दुनिया में धर्म और जाति पर विचार ही नहीं किया जाता है। हाँ, सुरैया और देवानंद जैसे संकीर्ण मामले भी हुआ करते थे, लेकिन वे बहुत कम हैं। आमतौर पर फिल्मी दुनिया इस तरह की संकीर्णताओं से ऊपर ही हुआ करती है। भिन्न भिन्न धर्मों का होना सांप्रदायिकता नहीं है। लोगों के समुदायों के धार्मिक हित कभी नहीं टकराते, इसलिए उनमें कोई हिंसा तनाव होने का सवाल ही नहीं उठता। कुछ लोगों के सांसारिक हित टकराते हैं तो वे अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए इस बात का धुआंधार प्रचार करते हैं कि एक धर्म के मानने वाले लोगों के हित समान है और भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के हित परस्पर विपरीत एवं विरोधी हैं। बस यहीं से सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है। सांप्रदायिकता को फैलाने वाले स्वार्थी लोग इतने चालाकी से इस काम को करते हैं कि कुछ लोग उन लोगों के हितों को अपने हित मानने की भूल कर बैठते हैं। उन स्वार्थी सांप्रदायिक लोगों के भौतिक स्वार्थ लोगों को अपने आध्यात्मिक हित नजर आए, इसके लिए वे धर्म का सहारा लेते हैं। चूंकि धर्म से लोगों का भावनात्मक लगाव होता है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसका सहारा लेकर उनको आसानी से एकत्रित किया जा सकता है। लोगों की आस्था व विश्वास को सांप्रदायिकता में बदलकर दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ प्रयोग करके स्वार्थी सांप्रदायिक लोग अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। मित्रों, यहां हमें फिल्मी दुनिया के लोगों से सीख लेनी होगी कि धर्म और जाति से ऊपर मानवता है। फिल्मी दुनिया में सफलता कलाकारों को जोड़ती है। हमें सफलता भले ही आपस में न जोड़े, मानवता जरूर हमें आपस में जोड़ सकती है। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था न धर्म की सीमा न जात का बंधन, और इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता थे फादर हरमन मंडोड SVD। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं सभी नारियों के लिए विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, आप सभी सही समझ रहे हैं कि मैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए सहेलियों, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है नारी उद्यमिता, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत आज सुनिए वार्ता नारी उद्यमिता। बहनों, पिछले कुछ वर्षों में हम सभी ने देखा है कि कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। हम इसे महिलाओं की प्रगति का आधार जरूर मान सकते हैं, लेकिन एक और क्षेत्र है जिसके द्वारा महिला न केवल स्वावलंबी हो सकती है वरन अपने प्रबंधन और निर्णय क्षमता के गुणों का और अच्छे से विकास कर सकती है। जी हाँ, ये क्षेत्र है उद्यमिता का। उद्यमिता अर्थात किसी कंपनी या संस्थान में नौकरी करने के स्थान पर स्वयं का उपक्रम प्रारंभ करना और अपने उत्पाद या सेवाओं का विक्रय करना। अब उदाहरण के लिए, मेरी एक परिचिता को अलग अलग पोशाकों पर सजने वाले मोती, कुंदन, सिक्के और घुंघरुओं को सजाने का शौक था। उसके सजे सजाए ड्रेस और साड़ियां हमेशा ही पार्टियों की शान होते थे। अब ये देखकर उसके परिचितों और सहेलियों ने अपने वस्त्रों की ऊपरी साज सज्जा का काम उसे सौंपना शुरू कर दिया। शुरुआती समय में जब उसका बेटा सिर्फ 2 वर्ष का था, घर बैठकर ये स्वावलंबन उसे खूब भाया। लेकिन बेटे के बड़े होने और परिवार के साथ सामंजस्य के चलते उसे जब अपने काम के लिए समय मिलने लगा, तब उसके पति ने स्वयं निवेश कर उसे एक सुंदर बुटीक बनाकर दिया। उसने अपने साथ 7-8 कारीगर रखे और धीरे धीरे दूसरे प्रदेशों के प्रसिद्ध वस्त्र भी बिक्री के लिए रखने लगी। और धीरे धीरे बढ़ती उसकी इस उद्यमिता के फलस्वरूप आज मेरी सहेली एक व्यस्त बुटीक की मालकिन है। बहनों, उद्यमिता यानी सिर्फ काम करना और लाभ कमाना ही नहीं होता, इसके अनेक फायदे भी हैं। जैसे आप अपने समय और परिवार की प्राथमिकताओं का निर्धारण स्वयं कर सकती हैं। आपका अपना काम है। जिनके बच्चे छोटे हैं, वे उनके स्कूल में जाने का समय, छोटा मोटा काम शुरू करते हुए धीरे धीरे ही अपना काम बढ़ा सकती हैं। रोजाना 1 या 2 घंटे किया हुआ काम आगे चलकर एक पूरे दिन के काम में कब बदल जाता है आपको स्वयं मालूम नहीं पड़ता, और उस समय तक आप अपने बच्चों के बचपन को भी बचा चुके होते हैं, उनकी परवरिश बहुत अच्छे से कर चुके होते हैं। दूसरी बात बहनों, आप स्वयं के निर्णयों से जो सीखती है ना, इससे आपको व्यापारिक समझ और प्रबंधन का खासा ज्ञान हो जाता है। आप यदि किताबों में पढ़कर प्रबंधन के गुर सीखेंगी तो वो ज्यादा से ज्यादा परीक्षा पास करने के काम आएंगे, लेकिन स्वयं के निर्णय लेकर उन्हें अपने व्यापार में लागू करना और इस प्रकार से अपने व्यापार का प्रबंधन करना, इससे आपको जो सीख मिलेगी वो जिंदगी भर के लिए आपके काम आएगी। दूसरी बात, स्वावलंबन और आत्मविश्वास होने के कारण आप अपने जीवन को आसान बना लेती हैं। आप निर्णय जल्दी ले लेती हैं, निर्णय सही लेती हैं। हर बात में पति या परिवार पर निर्भर रहने के स्थान पर आप अपने विचारों से भी स्वतंत्र होने लगती हैं। फलस्वरूप होता यह है कि आपके परिवार का, आपके समाज का आपके ऊपर विश्वास होने लगता है। वैसे भी सभी को ऐसे ही व्यक्तित्व तो चाहिए होते हैं जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़े, सभी के हित में निर्णय ले लें और सफल भी रहें। बहनों, बाजार के चलन के अनुरूप अपने आप को और अपने उत्पाद और सेवाओं को बनाए रखने के लिए आप प्रयत्न करती हैं। उद्यमिता में इसके फलस्वरूप आपकी शिक्षा की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आप नई पीढ़ी के साथ भी सामंजस्य बैठा पाती हैं। बाजार का चलन जब भी आप देखती हैं, इस प्रकार से आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है और उस प्रकार को, उस बदलाव को जब आप अपने व्यापार में लागू करती हैं, तब आपको एक नवीन आत्मविश्वास मिलता है और जब वो चलन, वो बदलाव आपको और अधिक लाभ देता है, तब ये सिद्ध होता है कि आपके द्वारा लिया गया बदलाव का निर्णय बिल्कुल सही था। बहनों, उद्यमिता किसी भी महिला को और उसके व्यक्तित्व को पूर्ण बनाती है। इससे आप अपने पारिवारिक मसलों को बहुत आसानी से हल कर लेती हैं। आखिर उद्यमिता के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में जो समस्याएं आती हैं और परिवार में जो समस्याएं आती हैं, उनमें कुछ न कुछ एक रास्ता तो होती है। तो जब आप अपनी उद्यमिता की समस्याओं को हल कर पा रही हैं, तब घर की समस्याएं तो बहुत आसान हैं। दरअसल स्वावलंबन और आधुनिकता हमेशा एक साथ चलते हैं, लेकिन नौकरी करने से मिलने वाली स्वावलंबन की भावना और उद्यमिता के कारण मिलने वाली स्वतंत्रता में फर्क है।
और ये फर्क आप इसके अनुभव से ही जान सकती हैं। समय की पाबंदी के बिना अपनी पूरी मेहनत का पूरा मूल्य जब आपको मिलता है, तब उस स्वावलंबन का अर्थ ये होता है कि ये सारा उपक्रम आपका अपना है। अब बहनों, जब हम उद्यमिता की इतनी तारीफें आपके सामने कर रहे हैं, तो चलिए आपको ये भी बता दें कि यदि आपको इस क्षेत्र में आना है तो आप शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले तो बहनों, अपना आकलन करें। क्या आप छोटे मोटे खतरे उठा पाने में सक्षम हैं? एक बहुत अच्छी ग्रीक कहावत कही जाती है बहनों कि जो भी महिला बिना किसी की मदद के न्यूनतम समय में एक व्यस्त सड़क को पार कर लेती है, कहा जाता है कि वो बहुत अच्छी उद्यमी बनती है। दरअसल यातायात के नियम, आने जाने वाली गाड़ियां, ये निर्भर करती हैं, ये प्रतीक होती हैं आने वाले खतरे की। और आप यदि उन खतरों से अपने आप को बचाकर बहुत अच्छे से आगे जा सकती हैं, बहुत सही तरीके से सड़क को पार कर सकती हैं, तो ये सोच लीजिए कि आपके उद्यम में आने वाली किसी भी परेशानी को आप बहुत आसानी से आगे ले जाएंगी। इसके बाद बहनों, आपको परिवार की स्थिति को देखना है। अब ये देखिए कि यदि आपके घर में बीमार बुजुर्ग है और छोटे बच्चों की उपस्थिति है और वे आप पर ही निर्भर हैं, अब ऐसे में सोच समझ कर निर्णय लें और धीमी और छोटी सी शुरुआत करें। इसके अगली बात कि आपको अपनी रुचि का क्षेत्र चुनना है। अब आप ज्यादा पैसे देने वाला क्षेत्र चुनेंगी जिसमें आपको ज्ञान भी कम है और रुचि भी, तो आपका ज्यादा समय तक चल पाना मुश्किल होगा। आपको अपनी रुचि और सुविधा का ख्याल तो हमेशा रखना ही होगा। इसके बाद वित्तीय स्थिति। बहनों, कई महिलाएं ये करती हैं कि वे दूसरों की देखा देखी किसी व्यापार में धन लगाती हैं और फिर बाद में पछताती हैं। हो सकता है कि आपकी सहेली ने कोई बुटीक खोला, आपकी सहेली ने किसी नई वस्तु की एजेंसी ली और उसको उसमें बहुत सारी सफलता मिली, लेकिन हो सकता है उसे उस वस्तु का बहुत अच्छे से ज्ञान हो या फिर उसे किसी का बहुत अच्छे से मार्गदर्शन मिल रहा हो, लेकिन ये बात आपके साथ तो सही नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप भी नकल करें और उद्यमिता को प्राप्त करें। आपको ये देखना है कि आपकी रुचि, आपका क्षेत्र क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रशिक्षण। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता विकास शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें उन्नत खेती से लगाकर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इकाई तक के लिए लगने वाले ज्ञान, वित्त और बाजार की स्थिति आदि की जानकारी दी जाती है। बेहतर होगा कि ऐसा ही कोई प्रशिक्षण लेकर जिस उद्यम को लगाने का सपना आप देख रही हैं, उसके बारे में प्रशिक्षण लिया जाए और सही स्थिति को जान लिया जाए। तो फिर बहनों, अब आप तैयार हैं अपने उद्यमिता के गुणों को सभी के सामने रखने के लिए? देखिए, अपने भीतर किसी उत्पादन या सेवा प्रदाता के बतौर आने वाले कुछ वर्षों में आपकी पहचान अवश्य बनेगी।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था नारी उद्यमियता, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है मंत्रपण। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम मंत्रपण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है मन में हो सेवा भाव संवेदना। इस वार्ता के लेखक हैं कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता हैं भवानी कौर।

मन दर्पण के अंतर्गत सुनिए वार्ता मन में हूँ सेवा भाव संवेदना। लेखक हैं कृष्णकांत दुबे, वाचिका भवानी कौल। क्या यह सत्य है, जिस मन में सेवा भाव तथा संवेदना है वह मन सुख पाता है? प्रश्न यही था, उत्तर मिला हाँ, कुछ ऐसा ही होता है। जिसने भी सेवा भाव तथा संवेदना के मार्ग को ग्रहण किया उसने यही कुछ पाया। उस चर्चा के दौरान यही तथ्य सामने आया। इस पर एक मित्र जो कृषि वैज्ञानिक हैं, बोले, मित्रों, सेवा भाव तथा संवेदना मनुष्य प्राणी जगत में ही नहीं बल्कि हम वनस्पति जगत में भी पाते हैं। उन्होंने आगे कहा, मित्रों, अभी तक यही समझा जाता रहा है कि आपसी स्नेह संवेदना केवल ज्ञानवान इंसान के पास ही है। वही अपने व्यवहार से शब्दों से उन्हें प्रकट करता है, पर यही बात पशु पक्षियों में भी है। यही नहीं, पेड़ पौधों में भी यही बात देखने को मिलती है। उनमें भी आपसी सद्भाव होता है। समय पड़ने पर वे एक दूसरे की खुलकर मदद करते और सेवा करते हैं, पूरी संवेदना के साथ। लेकिन वनस्पति जगत पेड़ पौधों के बीच यह व्यवहार हमारी आंखें देख नहीं पाती। इसके बाद उन्होंने फिर कहा, जी हाँ, कुछ वनस्पति वैज्ञानिकों ने जब इस संदर्भ में परीक्षण किए तो वे पेड़ पौधों में आपसी सहयोग, एक दूसरे के प्रति संवेदना, सेवा भाव देख आश्चर्यचकित रह गए थे। मित्रों, उन वैज्ञानिकों ने बतौर परीक्षण एक क्यारी में अनाज के कुछ बीज बोए और कुछ बीज अलग से बोकर उन्हें कांच के बर्तन से ढक दिया। समय आने पर दोनों ही जगह पौधे उगे, लेकिन उन वैज्ञानिकों ने क्यारी के पौधों में पानी दिया और कांच के नीचे ढके जो पौधे थे उन्हें बिल्कुल पानी नहीं दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उन वैज्ञानिकों ने देखा कि कांच के नीचे ढके पौधे भी क्यारियों में उगे पौधों की ही तरह हरे भरे और स्वस्थ हैं, जबकि उन्हें कहीं से भी एक बूंद पानी नहीं मिला था। यह सोच वे सब वैज्ञानिक अचरज में पड़ गए कि बावजूद पानी न मिलने के इन पौधों को जिंदा रहने के लिए नमी कहाँ से मिली। इस पर वैज्ञानिकों ने यही निष्कर्ष निकाला कि यह मदद उन्हें क्यारियों में उगे पौधों के सेवा भाव और संवेदना के कारण बराबर मिलती रही और इसी कारण वे इतने दिनों बिना पानी नमी के न केवल जिंदा ही रहे बल्कि हरे भरे भी रहे। मित्रों, इससे हम निश्चित जान सकते हैं कि भले पेड़ पौधे अचल रहते हों, वे संवाद नहीं कर सकते हों, लेकिन अपने साथियों अपने पड़ोसियों की समय आने पर चुपचाप सेवा तथा संवेदना पूर्वक मदद जरूर करते हैं। इस संदर्भ में मुझे एक प्राचीन कथा का स्मरण हो आया जिसे मैंने कभी पढ़ा और सुना था। वह एक सेवाभावी संवेदनशील तथा दयालु बुलबुल की कहानी है। आप सब उसे सुनना निश्चित ही पसंद करेंगे। तब एक छोटे से नगर के पास नदी किनारे प्रार्थना स्थल था जहां नगरवासी प्रभु प्रार्थना के लिए आते थे। उसी प्रार्थना स्थल के समीप एक बड़ा सा वृक्ष था। उसी के नीचे एक बड़ा सा चबूतरा बना था जहां कुछ लोग आकर बैठते और विश्राम करते थे, ठंडी हवा का आनंद लेते थे। उसी वृक्ष पर एक बुलबुल रहा करती थी। प्रार्थना के पश्चात जब लोग उस वृक्ष के नीचे आ बैठते तब वह बुलबुल अपने मीठे स्वरों में गाने लगती। लोग उसका वह मीठा गीत सुनकर बहुत प्रसन्न होते। उन्हें बुलबुल का वह गीत सुनकर यही लगता जैसे वह कोई स्वर्गिक संगीत हो। हाँ, एक समय किसी दूर प्रदेश में रहने वाला बुलबुलों का एक समूह उस अंचल में आया और उसी वृक्ष पर ठहरा जहाँ वह बुलबुल रहा करती थी। उस बुलबुल को वहाँ अकेली देख उस समूह के प्रमुख ने उससे कहा, तुम भी कैसी हो जो यहाँ अकेली रहती हो, चलो हमारे साथ। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि समूह में रहना कितना सुख देता है, उसमें निश्चिंतता भी होती है
और सुख भी मिलता है। अब अकेली रहना छोड़ो और चलो हमारे साथ। यह बात सुन उस वृक्ष पर रहने वाली बुलबुल ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी यह बात स्वीकारती हूँ, लेकिन मैं यहाँ इसलिए रहती हूँ कि जो लोग प्रार्थना घर से प्रभु प्रार्थना कर लौटने के बाद इस वृक्ष के नीचे आ बैठते हैं, तब मैं अपने गीत सुनाकर बस उन्हें थोड़ी प्रसन्नता दे देती हूँ। यह मेरा नित्य कर्म है। उनकी वह थोड़ी बहुत प्रसन्नता मेरे लिए बहुत कुछ है। इस बहाने मैं उनकी थोड़ी बहुत सेवा कर देती हूँ, इसलिए मैं इस विष को छोड़ कहीं और भी नहीं जाती। इससे मुझे भी खुशी और संतोष मिलता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मैं जहाँ हूँ सुखी हूँ, खुश हूँ। उस बुलबुल की यह बात सुनकर वह बुलबुल समूह वहाँ से उड़कर कहीं और चला गया। यह कथा हमें एक सोच देती है। अपने सुख, अपनी खुशी, अपनी उन्नति की खोज तो सभी करते हैं, लेकिन आज कितने ऐसे हैं जो अन्यों की खुशी और सुख की ओर ध्यान देते हैं। पहले यह भाव समाज में जरूर नजर आता था, आज वह उतना नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए तो जीवन उन्हीं का सफलता पाता है जिनके भाव विचारों में परहित हो, सेवा भाव हो, संवेदना हो। ऐसे ही लोगों को मनुष्यों ने श्रेष्ठ माना है और स्वीकारा भी है। एक तर्क यह भी हो सकता है, आज के इस युग में जबकि लोगों के पास एक दूसरे को देखने और सुनने की फुर्सत तक नहीं है, तब भला किसको एक दूसरे के सुख दुख नजर आएंगे? ऐसे में कोई किसके प्रति सेवा और संवेदना भाव रखे? तर्क अपने में एकदम निरर्थक है, एकदम असंगत है। जरा इस भाव संज्ञा को अपनाकर तो देखें, देखें कि यह भाव विचार वर्तमान युग में भी उतना ही संगत है जितना पहले था। भूले नहीं, यह युग पहले से अधिक विषाद भरा है, दुख बढ़ गए हैं, इसलिए आज एक दूसरे की मदद, एक दूसरे के प्रति सहयोग, एक दूसरे के प्रति संवेदना भाव रखना जरूरी होता जा रहा है। आज हर मन को कुछ ऐसा ही बनना होगा, वरना आगे और मानव कष्टों की अनंत धाराएं हर जगह प्रवाहित होती दिखेंगी और नजर आएंगी। इस संदर्भ में मुझे वर्षों पूर्व घटी एक घटना का स्मरण हो आया। अपने युग के एक गोल्फ चैंपियन रोबार्टो डी वाइनचेंजो के पास एक महिला आई और रोते हुए बोली, मेरी बेटी को रक्त कैंसर की बीमारी है और उसके इलाज के लिए काफी धनराशि की आवश्यकता है, कृपया हमारी मदद करें। श्री डी वाई चेंजो ने उस महिला को वह रकम दे दी। एक दिन उनके एक मित्र ने आकर कहा, तुमने यह क्या किया? उस महिला की बेटी को रक्त कैंसर वगैरह कुछ नहीं है, तुमने उसे यूं ही पैसे दे दिए। यह सुन श्री डी वाई चेंजो ने प्रसन्न होते हुए कहा, यह तो तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई कि उस बालिका को वह बीमारी नहीं है। सुनो, पैसे देने से कहीं अधिक प्रसन्नता मुझे यह सुनकर अधिक हो रही है कि उसे ऐसी कोई बीमारी नहीं है, वह बालिका स्वस्थ है। मित्रों, अगर मानवता को सही रूपाकार देना हो तो ऐसा सब कुछ आवश्यक है, वरना मनुष्य का हृदय मरुस्थल बनकर रह जाएगा।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था मन में हो सेवा भाव संवेदना, और इस वार्ता के लेखक थे कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता थी भवानी कौल। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप सभी को इन जानकारी से कुछ लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है कार्यक्रम पर्यावरण। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं हमारे कार्यक्रम पर्यावरण में, जिसका शीर्षक है मानव जीवन के लिए अभिशाप, बेकार प्लास्टिक। इस वार्ता के लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजेस।

पर्यावरण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता, मानव जीवन के लिए अभिशाप, बेकार प्लास्टिक। इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजिस। श्रोता साथियों, मानव द्वारा स्वयं की सुविधा के लिए किया गया प्लास्टिक का आविष्कार आज उसके जीवन के लिए अभिशाप भी बन गया है। आज पर्यावरण को सबसे अधिक दूषित करने वाला यदि कोई पदार्थ है तो वह बेकार प्लास्टिक ही है। एक जमाना था जब मानव जीवन में ग्लास, प्लेट, जूते, चप्पल जैसी वस्तुओं तक एक सीमित उपयोग ही था प्लास्टिक का। किंतु समय के साथ साथ भार में हल्का होने, मौसम से अप्रभावित रहने और टिकाऊ क्षमता के कारण आज प्लास्टिक मानव जीवन का एक मुख्य भाग बन गया है। लेकिन प्लास्टिक के साथ एक विडंबना भी जुड़ी हुई है। प्लास्टिक जब मानव के काम आ रहा होता है तो लगता है कि इससे अच्छा काम में आने वाला पदार्थ और कोई नहीं है। लेकिन जब यही पदार्थ मानव जीवन में अपने कार्य की उम्र पूरी कर लेता है तो फिर प्लास्टिक से बेकार पदार्थ और कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आज समय की मांग के अनुसार पॉलिथीन से लेकर बड़ी बड़ी टंकियों और आकाश में उड़ने वाले वायुयान तथा पानी में चलने वाले जहाज और सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों के निर्माण में भी प्लास्टिक का उपयोग आम बात हो गई है। आज मानव जीवन में प्लास्टिक की इतनी पैठ हो गई है कि कोई भी वैवाहिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो, बिना प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं के संपन्न ही नहीं होता है। अब मानव जीवन में प्लास्टिक का इतना अधिक दखल हो गया है कि प्लास्टिक के बिना आज मानव जीवन और उसकी सुविधाओं की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। श्रोता साथियों, यह बात इस उदाहरण से भी स्पष्ट हो जाती है कि पहले व्यक्ति जब कभी बाजार जाता था तो अपने साथ कपड़े का थैला या थैली जरूर लेकर जाया करता था। लेकिन आज का व्यक्ति ऑफिस से, पिकनिक से या कहीं से और कभी भी बाजार से सामान ले आता है, क्योंकि अब बाजार में पॉलिथीन की थैली में सामान देने का प्रचलन आम हो गया है। अब व्यक्ति को बाजार जाते समय न तो कपड़े की थैली लेकर जाने की जरूरत है और न ही रुपये लेकर जाने की। अब व्यक्ति थैली दुकानदार से ले लेता है और रुपये एटीएम से। आजकल के बड़े दुकानदारों ने भी प्लास्टिक की थैली पर अपनी दुकान का नाम छपवाकर प्रचार का नया तरीका निकाला है और प्लास्टिक के उपयोग को और भी बढ़ावा दिया है। व्यक्ति की प्लास्टिक के प्रायः बढ़ती मानसिकता के कारण ही आज कई छोटी बड़ी कंपनियां न केवल आवश्यक घरेलू वस्तुओं को बल्कि कई खाद्य पदार्थों को भी वायुदाब के प्लास्टिक के पैकेट्स में बिकने के लिए प्रस्तुत करती हैं। प्लास्टिक निर्माताओं ने भी मांग और मांग की आपूर्ति को देखते हुए ही अपना माल बाजार में उतारा है। लोगों ने प्लास्टिक के इस माल को हाथों हाथ भी लिया है। प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माताओं ने जब देखा कि वन संपदा संरक्षण कानून लागू होने से वन में से लकड़ियों की प्राप्ति सहज और सुलभ नहीं रही है तो उन्होंने लकड़ी के विकल्प के रूप में बाजार में प्लास्टिक को उतार दिया। उन्होंने प्लास्टिक से उन सारी वस्तुओं का निर्माण शुरू कर दिया जो अब तक केवल लकड़ियों से ही बनाई जाती थी। इसके बाद लकड़ियों और बांस की अप्राप्ति की वजह से जब कागज के दाम आसमान छूने लगे तो इन्हीं प्लास्टिक निर्माताओं ने प्लास्टिक को भी कागज के विकल्प के रूप में लोगों के हाथ में थमा दिया। परिणाम स्वरूप आज बाजार में प्लास्टिक के विजिटिंग कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, कैलेंडर्स और फाइल्स आदि देखने को मिलती हैं। एक समय था जब किसी वैवाहिक कार्यक्रम में या अन्य किसी कार्यक्रम में टीन के पाइप पर प्लास्टिक के तार की बुनी हुई कुर्सियों का प्रचलन अधिक था, किंतु वर्तमान में पूरी तरह से प्लास्टिक से बनी हुई कुर्सियों ने उक्त पुरानी कुर्सियों को प्रचलन से बाहर कर दिया है। यहाँ भी प्लास्टिक को उसकी मजबूती, टिकाऊ और मौसम से अप्रभावित उसके गुणों के कारण ही लोगों द्वारा अपनाया गया। ऐसा भी नहीं है कि प्लास्टिक की क्रांति केवल वयस्कों के जीवन में ही आई है। प्लास्टिक पदार्थों ने बच्चों के संसार में भी समान रूप से घुसपैठ की है। पूर्व की अपेक्षा आज बच्चों के खिलौने और उनकी अन्य सुविधाओं के साधन भी प्लास्टिक से बनाने का चलन जोरों पर है। वहाँ यह भी एक वास्तविकता ही है कि प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं पतरे की अपेक्षा
बच्चों के लिए बेहद सुरक्षात्मक ही है। इस कारण बच्चों को चोट लगने और हानि पहुंचने के अवसर बहुत कम न के बराबर हो जाते हैं। प्लास्टिक को ढालकर मनचाहे आकार में बनाना भी प्लास्टिक का एक मुख्य गुण ही कहा जा सकता है। श्रोता साथियों, यदि हम चिकित्सा के क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग की बात करें तो वहां पर भी प्लास्टिक का बहुआयामी और बहु उपयोग किसी से छिपा नहीं है। यदि किसी भी अस्पताल, नर्सिंग होम्स अथवा क्लिनिक पर एक नजर डाली जाए तो बोतल, पीने की दवाएं, मलहम, सिरिंज से लेकर ड्रिप और ऑपरेशन से लेकर उपचार तक में हमें प्लास्टिक के सहज ही दर्शन हो जाते हैं। इसलिए निसंकोच रूप से यह कहा जा सकता है कि समाज का कोई भी वर्ग आज प्लास्टिक से अछूता नहीं है। यहाँ तक कि सेना भी आज प्लास्टिक के उपयोग से वंचित नहीं है। आज सेना में उसके साजो सामान के साथ साथ बंदूकों के हत्थे, जो कभी लकड़ी से बनाए जाते थे, आज प्लास्टिक से बनाए जाने लगे हैं। क्योंकि प्लास्टिक हर हाल में लकड़ी से हल्का ही होता है, इसलिए उसको लकड़ी और अन्य पदार्थों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाने लगी है। निसंकोच रूप से यह कहा जा सकता है कि आज समाज का कोई भी वर्ग प्लास्टिक से

की बात तो ये गरीब तबका प्लास्टिक की छत के नीचे ही वर्षा ऋतु के पूरे 4 माह बिताकर गर्मी और ठंड में भी इसी प्लास्टिक का सहारा लेता है। प्लास्टिक निर्मित अपनी झोपड़ी में मौसम की सारी ऋतुएं बिताना उसे सहज लगता है, क्योंकि प्लास्टिक सस्ता, मजबूत और टिकाऊ होता है। उपयोग पश्चात यहाँ वहाँ फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियों को खाकर जाने अनजाने में पशु पक्षी भी असमय ही कालकल्वित होते रहते हैं। पॉलिथीन और प्लास्टिक की प्रवृत्ति अस्थायी न होने के कारण ये मिट्टी में दबकर उसकी उर्वरता को भी नष्ट किए दे रहे हैं। यह प्लास्टिक का गुण है या अवगुण, वह मिट्टी में दबने के बाद भी नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार से प्लास्टिक मिट्टी में न रहकर केवल उसकी उर्वरता को ही नष्ट नहीं कर रहा है, बल्कि मिट्टी की जल संग्रहण क्षमता को भी नष्ट कर रहा है अथवा कम कर रहा है, क्योंकि मिट्टी में दबे प्लास्टिक के कारण ही धरती पर गिरा वर्षा जनित जल मिट्टी की अनंत तहों में नहीं पहुंच पाता है। इसलिए वह संग्रहित नहीं हो पाता है, क्योंकि ऊपर पड़ा दबा प्लास्टिक उसे मिट्टी की सतह में जाने नहीं देता है। श्रोता साथियों, प्लास्टिक के इन तमाम अवगुणों के कारण अब व्यक्ति को प्लास्टिक और प्लास्टिक के अंधाधुंध उपयोग या प्रयोग के प्रति सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के कचरे की समस्या दिनों दिन एक गंभीर समस्या का रूप धारण करती जा रही है। क्योंकि प्लास्टिक न तो पड़े पड़े स्वयं ही नष्ट होता है और न ही जलाने पर पर्यावरण को नुकसान से बचा पाता है। श्रोता साथियों, यदि विशेष परिस्थितियों में प्लास्टिक उपयोग किया भी जाए तो प्रयोग के पश्चात प्लास्टिक के कचरे को सामान्य कचरे के साथ मिलाकर न रखें, बल्कि उसे एक अलग बास्केट या एक कोठी में रखें और प्लास्टिक बीनने वालों के हाथों में दे दें। इसलिए प्लास्टिक के उपयोग के प्रति अत्यंत सावधानी रखें, यह आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्यावरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था मानव जीवन के लिए अभिशाप, बेकार प्लास्टिक। इस वार्ता के लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे माइकल हॉजेस। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ग्लोरिया को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

0: रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि प्रियंका डामोर की ओर से नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचय करवाती हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे पवित्र सुसमाचार, भक्ति गीत एवं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार।
1: मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वो संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरु मत बनो। तुमने मुझको ये कहते सुना, मैं जा रहा हूं और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, क्योंकि पिता मुझसे महान है। मैंने पहले ही तुम लोगों को ये बताया, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूं।
0: साथियों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चुका है मधुर गीत का। तो आइए साथियों, अब सुनते हैं एक मधुर गीत। साथियों, इस मधुर गीत के बाद आप सुन सकेंगे आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।

साथियों, अभी आपने सुना यह मधुर गीत। साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। साथियों, इस समय आप रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। साथियों, अब समय हो चला है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम का। तो साथियों, आइए सुनते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। साथियों, इस कार्यक्रम के बाद आप सुन सकेंगे एक और मधुर गीत। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहें और सुनिए आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम युवा और विकास।

0: साथियों नमस्कार, युवा और विकास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज का हमारा जो विषय है वो है युवा भारत। जी हाँ, आज के लिए हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या फिर विज्ञापन जगत, हर जगह हमें एक ही सुर नहीं सुनाई देता, युवा शक्ति। हमें बार बार ये बताया जा रहा है, बार बार हर मीडिया की ओर से ये संदेश हम तक आ रहा है साथियों कि हमारा भारत एक युवा देश है और आने वाले समय में हमारी कार्यशक्ति हो, हमारी ऊर्जा हो या फिर हमारे संसाधन हो, ये सारे के सारे युवा शक्ति के हाथ में रहेंगे और हम दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन साथियों यदि हम आंकड़े देखें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे भारत की, हमारे देश की जो औसत उम्र है वो इस समय 25 वर्ष है। आप इसे किसी कल्पना के आधार पर कही हुई बात बिल्कुल नहीं समझे। लगभग ढाई दशक बाद यानी हम 2025 की बात करें तब हमारी औसत उम्र हो जाएगी 30 वर्ष। और साथियों यदि हम हमारे पड़ोसी देश चीन की बात करें तो चीन में अभी औसत उम्र 34 वर्ष है और आने वाले सालों में ये उम्र बढ़ती ही जाने वाली है। और इस दौरान हमारे आसपास के जितने देश हैं उन सभी में औसत उम्र धीरे धीरे बढ़ती ही जाने वाली है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हमारा देश युवा है। तो साथियों बहुत सारे दूसरे भी आंकड़े हैं, उनकी बात करना इस समय बहुत जरूरी नहीं है। और इन आंकड़ों से होना क्या है, मुझे एक चीज बताइए कि हमारा देश यदि युवा है तो क्या वास्तव में हम एक युवा देश की भांति यहां के नागरिक को पा रहे हैं? क्या हम वास्तव में इस तरीके से जी रहे हैं जैसे एक युवा देश को जीना चाहिए? बहुत सारे सवाल इस समय हमारे मन में हैं और बहुत सारी दुविधाएं हमारे युवा के सामने हैं। हम ये देख सकते हैं साथियों कि कितनी सारी दुविधाओं के बीच में जीता हुआ युवा आज प्रगति भी कर रहा है। यही युवा अपने परिवार के साथ में संघर्ष भी कर रहा है क्योंकि सामाजिक मान्यताएं इतनी ज्यादा बदल रही हैं कि जिसके चलते एक सामान्य जीवन जीना प्रत्येक व्यक्ति के लिए मुश्किल हो रहा है। साथियों परिवार का क्षेत्र हो, आपके कार्य का क्षेत्र हो या फिर देश को लेकर आगे बढ़ने जितना बड़ा सवाल हो, यदि हमारा देश युवा है, यदि हमारा परिवार युवा है, यदि हमारी सोच युवा है तो कहां है वो ऊर्जा जो एक युवा भारत में, एक युवा राष्ट्र में होनी चाहिए? आज की तारीख में यदि हम प्रौढ़ों की बात करें या वृद्धों की बात करें तो प्रत्येक का मत युवाओं को लेकर हमेशा नकारात्मक ही है। युवाओं की बात किसी भी प्रौढ़ से कीजिए तब उन्हें समझता ही क्या है, वृद्धों से कीजिए तब उनके मुंह से अपशब्द ही निकलते हैं। साथियों यदि आप युवा शक्ति के हाथ में किसी प्रकार के अधिकार ही नहीं देंगे, उन्हें ये ज्ञान ही नहीं देंगे कि आपको ही आने वाले समय में देश की बागडोर संभालनी है, आपको जिम्मेदारी उठानी है और हमारा आप पर विश्वास है, इसके बिना हमारे युवा को ऊर्जा कैसे मिलेगी? चलिए मान लेते हैं कि हमारी युवा शक्ति धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या ये समय धीरे धीरे आगे बढ़ने का है? पारिवारिक क्षेत्र में यदि हम बात करें तो युवाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि वे अध्ययन के लिए घर से बाहर जाना चाहे तो उन्हें मनाही, यदि वे किसी दूसरे क्षेत्र को चुनकर अपना भविष्य बनाना चाहे तब उसमें मनाही, विवाह अपनी मर्जी से करना चाहे वहां पर भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। तो साथियों ऐसे में जब हमारे युवा को एक सामान्य जीवन ही नहीं मिल पा रहा है तब युवा भारत होने के बावजूद क्या हम इसी गति से आगे बढ़ पाएंगे जैसे कि कोई एक युवा देश आगे बढ़ता है? सुविधाएं चाहिए हमारे युवाओं को और वो सुविधा आप दे सकते हैं अपने विश्वास को देकर। साथियों हम सभी अपने जीवन में जब प्रौढ़ हो जाते हैं और युवावस्था को मुड़कर देखते हैं तब ऐसा लगता है हमने बहुत सारी गलतियां की। हमें यह भी लगता है कि हमने कुछ गलत निर्णय लिए। हमें यह भी लगता है कि यदि हम कुछ सही निर्णय ले लेते तो हमारा अभी का जो जीवन है वो और बेहतर हो जाता। और ये जो हमारा अनुभव होता है अपने जीवन को लेकर, ये अनुभव हम हमारे युवा साथियों के साथ बांटना चाहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस परिस्थिति में हमारी युवावस्था गुजरी है और जिस परिस्थिति में हमारा आज का युवा जी रहा है, दोनों परिस्थितियां बहुत अलग हैं। अब आप ही सोचिए कि आप यदि प्रौढ़ हैं और आप जब युवा थे उस समय यदि आपके माता पिता किसी चीज को लेकर आपके साथ सलाह मशविरा करते या फिर आपको सलाह देने लगते तो क्या आपको वो चीज अच्छी लगती? बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। साथियों, ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपनी राह खुद बनाना चाहता है, वो खुद गिरकर ही अनुभव लेना चाहता है। सामने वाले को गिरता देखकर उसे वो चोट उतनी गहराई से महसूस नहीं होगी, आगे चलकर उसके निर्णय गलत होंगे। मेरा ये कहना नहीं है कि आप अपने युवा होते बच्चों को या फिर अपने परिवार के युवाओं को कुछ ना सिखाएं, लेकिन सबसे पहली बात यह है साथियों कि अनुभव हमें जो सिखाता है उससे अच्छी कोई पाठशाला नहीं होती। हमें ये देखना होगा कि हम अपने युवा साथियों की जो शक्तियां हैं उनको पहचानने में उनकी मदद करें। आज का युवा दुविधा में है, आज का युवा अपने प्रत्येक प्रश्न को लेकर आपके सामने खड़ा है लेकिन आप उत्तर नहीं जानते। यदि आप उत्तर नहीं जानते तो आप उनके प्रश्नों को टालते हैं, ऐसे में हमारे युवा की दुविधा, उसका भ्रम और ज्यादा बढ़ता है। तो साथियों, हमारे पास बहुत बड़ी संपदा है। कहा जाता है कि मानव संसाधन पूरे विश्व में सबसे बड़ा संसाधन है और ऐसे में इस समय हमारा भारत देश सबसे ज्यादा संपन्न है। तो चलिए इस संपन्नता का लाभ उठाया जाए। हमारे आसपास की जितनी भी युवा शक्ति है उनको हमें संगठित करके ये बताना है कि उनकी शक्तियां क्या है। दरअसल होता यह है, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक विद्यालय में या फिर महाविद्यालय में युवाओं की कमियां निकालने की प्रतिस्पर्धा चलती है। युवाओं ने क्या गलत किया, उन्होंने किस तरीके से कोई चीज गलत बोली, उन्होंने कौन से निर्णय गलत लिए, या फिर उन्होंने किस तरीके से गलत बातें कही, या फिर उनका आचरण किस तरीके से गलत है, उनकी बोलचाल गलत है, उनका व्यवहार गलत है, सब कुछ गलत है। लेकिन ऐसा करने से क्या युवाओं पर सकारात्मक असर पड़ेगा? आप स्वयं ही देख लीजिए, यदि आप बच्चों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उन्हें अपनी गलतियां ही दिखाते हैं, तो बच्चों को न सिर्फ खुद की गलतियां दिखती है, बच्चे दूसरों में भी सिर्फ गलतियां ही ढूंढना सीखते हैं। साथियों, ये गलती हम सभी कर रहे हैं। मान लिया हमारा भारत युवा है, लेकिन हमारे युवा को हम क्या पोषण दे रहे हैं? हमारे युवा को आज चाहिए सकारात्मकता का पोषण। आप उसे ये मत बताइए कि तुम्हारा आचरण गलत है, आप उसे ये बताइए कि तुम्हारा आचरण यदि इस प्रकार का हो तो तुम और ज्यादा प्रगति कर सकते हो। साथियों, ऊर्जा आपको हमेशा किसी स्थान से ऊपर ले जाती है, लेकिन यही यदि नकारात्मक ऊर्जा हो तब आपको नीचे ही ले जाएगी। हम सभी मान लिया कि अपने अनुभव के चलते युवाओं को कम से कम तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन ये मुद्दा जो आजकल प्रत्येक स्थान पर हमें देखने को मिलता है कि युवा बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं, उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। लेकिन क्या आपने उन्हें अपनी जान की परवाह करना सिखाया था? बिल्कुल नहीं। क्या आपने उन्हें अपने सकारात्मक पक्ष को देखकर, उसे सराहकर, उसे इतना ऊपर उठाना बताया था जिसके चलते वो अपने आप को एक आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में स्थापित कर पाता? बिल्कुल नहीं। आपने हमेशा से उन्हें ये कहा है कि तुम ऐसा नहीं करो, बहुत तेज बाइक नहीं चलाओ नहीं तो गिर जाओगे। आप उन्हें ये बताइए ना कि आप बहुत अच्छे से ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। साथियों, जीवन में एक सही नजरिया होना एक युवा को सही दिशा देता है, और ऐसे में आज हमारे भारत देश को जरूरत है एक सही नजरिए की। हमारे आसपास के उदाहरण यदि हम देखें, प्रत्येक व्यक्ति ये बात करता है कि युवाओं पर बहुत ज्यादा दबाव है, लेकिन कोई भी ये बात नहीं करता कि चलिए अब हम युवाओं पर से दबाव हटाने के लिए हम कुछ कोशिश करें। क्या आपने कभी मदद का हाथ बढ़ाया है अपने किशोर होते बच्चे की ओर? क्या उसे ये पूछा है कि उसे क्या अच्छा लगता है? क्या उसे कभी जीवन में आने वाले क्षणों को लेकर या उसके लक्ष्यों को लेकर कभी बातें की हैं? नहीं। आपने हमेशा से यही देखा होगा कि वो किस समय घर आ रहा है, वो कैसे कपड़े पहन रहा है, वो किन दोस्तों के बीच घूम रहा है। क्या आपने स्वयं कभी उसके लिए एक अच्छा दोस्त बनने की पहल की? एक सही अभिभावक बनने के लिए ये कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा है साथियों यहाँ पर, लेकिन हाँ, यदि हमारे युवा साथियों के माता पिता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तब मैं आपको ये बता दूं, युवाओं के मन में सिर्फ आक्रोश नहीं है, युवाओं के मन में एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा को सही दिशा चाहिए और वो दिशा यदि नकारात्मक रूप में मिलती है तब फूटता है उनका आक्रोश, क्योंकि वो सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें आपकी ओर से एक सही मार्गदर्शन चाहिए कि वो किस क्षेत्र में आगे बढ़े। साथियों, भले ही आपके आसपास आपके घर में कोई युवा ना हो लेकिन आपके कार्यक्षेत्र में, आपके रोजाना के जीवन में यदि युवा साथी आपसे जुड़ रहे हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि आप सकारात्मकता का बीज उनमें बोएं, क्योंकि इस समय हमारे पूरे देश को सकारात्मकता की जरूरत है, क्योंकि हमारा देश युवा है। आने वाले समय में जब ढेर सारी तकनीकी शक्तियां इस पूरे विश्व को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग देने वाली हैं, ऐसे में ये युवा शक्ति ही आपको आगे लेकर जाएगी। अब आप खुद ही सोचिए, तकनीकी दृष्टि से हमारा जीवन कितना समृद्ध हो गया है और इस सभी के पीछे कोई न कोई युवा शक्ति ही तो काम कर रही है। यदि हम एक अध्ययन की बात करें साथियों, तो हमारे सामने जो भी महान चित्रकार है, उस महान चित्रकार ने 30 से 35 की उम्र में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ काम कर लिया था। हमारे बीच जितने भी महान लेखक हैं, उन्होंने 40 वर्ष के अंदर की उम्र में अपनी सबसे महत्वपूर्ण ऐसी साहित्यिक कृति जिसके लिए उन्हें जाना जाता है, उसका निर्माण कर लिया था। यदि हम कलाकारों की बात करें, हम खिलाड़ियों की बात करें, हम फिल्म के नायक नायिकाओं की बात करें, तो मुझे बताइए कोई नाम जिसने 40 वर्ष के बाद की उम्र में अपने जीवन को शुरू किया हो। साथियों, बहुत सारे अपवाद हमें जरूर मिल जाएंगे लेकिन जो प्राकृतिक नियम है उससे परे हम नहीं जा सकते। जीवन के सर्वश्रेष्ठ काम को करने के लिए जो समय है वही स्वर्णिम समय इस समय हमारे देश को मिला हुआ है। हमें तो ये सोचना चाहिए कि ये हमारे जीवन का सर्वाधिक स्वर्णिम समय है, हमारे देश के लिए सबसे अच्छा काल है। और ऐसे में यदि हम नकारात्मकता का ही पोषण करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए, आपके भविष्य में क्या रखा हुआ आने वाला है। साथियों, सिर्फ हमारे युवाओं को सुविधा दे देने से, उन्हें मार्गदर्शन दे देने से, उनकी तारीफ कर देने से या फिर उन्हें एक सही ऊर्जा दे देने से यदि हम सबका जीवन संवर सकता है तो ये काम करने में हिचक कैसी। हमारे युवा संवाद चाहते हैं, वो आपसे कटना नहीं चाहते। आप स्वयं सोचिए ना कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके चलते एक उम्र हो जाने के बाद में बच्चे अपने अभिभावकों से दूर होने लगते हैं। दरअसल 14-15 की उम्र में आपका बच्चा जब स्वयं स्वतंत्र हो जाता है, ऐसे में आपको एक प्रकार का भय सताता है कि कहीं ये बच्चा आपके नियंत्रण से बाहर तो नहीं चला जाएगा। अब तक अपने प्रत्येक निर्णय के लिए आपके ऊपर निर्भर रहने वाला आपका बच्चा यदि स्वयं के निर्णय स्वयं ले लेता है तब उसे चाहिए होती है आपकी ओर से शाबाशी, लेकिन उसे क्या मिलता है? उसे मिलती है एक फटकार, उसे मिलती है एक डांट। उसे ये समझाया जाता है कि उसे अभी समझता ही क्या है, उसने आपसे नहीं पूछा, इसके कारण आप दुखी हैं। इस प्रकार का व्यवहार आप अपने बच्चे को दिखाते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। लेकिन साथियों, आप स्वयं सोचिए, वो बच्चा अपने जीवन में पहली बार स्वतंत्र हुआ, उसने अपने जीवन का पहला निर्णय स्वतंत्र होकर अपने एक सही व्यक्तित्व के साथ में लिया है। वो अब युवा हो रहा है और आगे चलकर वो अपने आप को एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में देख रहा है। वो आज खुश है, वो आज सफल है और अपनी सफलता को आपके साथ बांटने के लिए, इस निर्णय लेने की बात को बांटने के लिए आपके समक्ष आया है। और आप क्या कर रहे हैं? आप इस समय आपको देख ही रहे हैं। आप इस समय अपने बच्चे को नहीं, आप सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं। आपका अहंकार, आपका स्वयं का व्यक्तित्व, उस बच्चे की निर्भरता, ये सारी चीजें खंडित हो चुकी हैं। तो साथियों, यदि हमारे देश का युवा आत्मनिर्भर होना चाहता है तो उसे ऊर्जा दीजिए। यदि हमारे देश का युवा सकारात्मक होना चाहता है तो उसे सही विचार दीजिए, उसे मार्गदर्शन दीजिए, उसे आगे बढ़ने दीजिए। बार बार उसे ऐसी बेड़ियों में जकड़कर मत रखिए जिससे वो आप पर ही निर्भर रहे। साथियों, यदि आपको पसंद है कि कोई आपके नियंत्रण में रहे तो क्या आप चाहेंगे कि आप पर कोई नियंत्रण करे? बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है और जब हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए इतना समय हो गया है और अब हमारे देश का युवा समय हमारे सामने है, तो हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि युवा शक्ति को अपने विश्वास का उपहार दे। इसी के चलते हमारे देश का स्वर्णिम भविष्य आगे आ सकता है।
1: साथियों, अभी आपने सुना आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का पुनः शुक्रिया। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं एक सुमधुर गीत।

साथियों, अभी आपने सुना आज का एक और सुमधुर गीत। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सेवा सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। साथियों, हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए। हमारा फेसबुक आईडी है rvahindi। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है rvahindi। आप ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @rvahindi। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है rvahindi। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऐप पर दैनिक खबरें, विभिन्न लेख, रचनाएं, कविताएं एवं हमारे विभिन्न प्रकार के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल, सुझाव, लेख या रचनाएं हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7974314201। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है satishwar0@gmail.com। आप पत्र के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है आरवी ऑफिस 10, सत प्रकाशन संचार केंद्र, खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो आरवीए मोबाइल ऐप में जाकर आर्काइव में यह सुन सकते हैं। साथियों, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। साथियों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते हैं। फिर मिलेंगे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हमसे जुड़े रहें और सुनते रहिए rvahindi। मेरा यानी कि प्रियंका डामोर का आप सभी का हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद।

0: रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि प्रियंका डामोर की ओर से नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचय करवाती हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे पवित्र सुसमाचार, भक्ति गीत एवं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार।
1: मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वो संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरु मत बनो। तुमने मुझको ये कहते सुना, मैं जा रहा हूं और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, क्योंकि पिता मुझसे महान है। मैंने पहले ही तुम लोगों को ये बताया, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूं।
0: साथियों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चुका है मधुर गीत का। तो आइए साथियों, अब सुनते हैं एक मधुर गीत। साथियों, इस मधुर गीत के बाद आप सुन सकेंगे आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।

साथियों, अभी आपने सुना यह मधुर गीत। साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। साथियों, इस समय आप रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। साथियों, अब समय हो चला है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम का। तो साथियों, आइए सुनते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। साथियों, इस कार्यक्रम के बाद आप सुन सकेंगे एक और मधुर गीत। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहें और सुनिए आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम युवा और विकास।

साथियों नमस्कार, युवा और विकास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज का हमारा जो विषय है वो है युवा भारत। जी हाँ, आज के लिए हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या फिर विज्ञापन जगत, हर जगह हमें एक ही सुर नहीं सुनाई देता, युवा शक्ति। हमें बार बार ये बताया जा रहा है, बार बार हर मीडिया की ओर से ये संदेश हम तक आ रहा है साथियों कि हमारा भारत एक युवा देश है और आने वाले समय में हमारी कार्यशक्ति हो, हमारी ऊर्जा हो या फिर हमारे संसाधन हो, ये सारे के सारे युवा शक्ति के हाथ में रहेंगे और हम दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन साथियों यदि हम आंकड़े देखें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे भारत की, हमारे देश की जो औसत उम्र है वो इस समय 25 वर्ष है। आप इसे किसी कल्पना के आधार पर कही हुई बात बिल्कुल नहीं समझे, लगभग ढाई दशक बाद यानी हम 2025 की बात करें तब हमारी औसत उम्र हो जाएगी 30 वर्ष। और साथियों यदि हम हमारे पड़ोसी देश चीन की बात करें तो चीन में अभी औसत उम्र 34 वर्ष है और आने वाले सालों में ये उम्र बढ़ती ही जाने वाली है। और इस दौरान हमारे आसपास के जितने देश हैं उन सभी में औसत उम्र धीरे धीरे बढ़ती ही जाने वाली है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हमारा देश युवा है। तो साथियों बहुत सारे दूसरे भी आंकड़े हैं, उनकी बात करना इस समय बहुत जरूरी नहीं है। और इन आंकड़ों से होना क्या है, मुझे एक चीज बताइए कि हमारा देश यदि युवा है तो क्या वास्तव में हम एक युवा देश की भांति यहाँ के नागरिक को पा रहे हैं? क्या हम वास्तव में इस तरीके से जी रहे हैं जैसे एक युवा देश को जीना चाहिए? बहुत सारे सवाल इस समय हमारे मन में हैं और बहुत सारी दुविधाएं हमारे युवा के सामने हैं। हम ये देख सकते हैं साथियों कि कितनी सारी दुविधाओं के बीच में जीता हुआ युवा आज प्रगति भी कर रहा है। यही युवा अपने परिवार के साथ में संघर्ष भी कर रहा है क्योंकि सामाजिक मान्यताएं इतनी ज्यादा बदल रही हैं कि जिसके चलते एक सामान्य जीवन जीना प्रत्येक व्यक्ति के लिए मुश्किल हो रहा है। साथियों परिवार का क्षेत्र हो, आपके कार्य का क्षेत्र हो या फिर देश को लेकर आगे बढ़ने जितना बड़ा सवाल हो, यदि हमारा देश युवा है, यदि हमारा परिवार युवा है, यदि हमारी सोच युवा है तो कहाँ है वो ऊर्जा जो एक युवा भारत में, एक युवा राष्ट्र में होनी चाहिए? आज की तारीख में यदि हम प्रौढ़ों की बात करें या वृद्धों की बात करें तो प्रत्येक का मत युवाओं को लेकर हमेशा नकारात्मक ही है। युवाओं की बात किसी भी प्रौढ़ से कीजिए तब उन्हें समझता ही क्या है, वृद्धों से कीजिए तब उनके मुंह से अपशब्द ही निकलते हैं। साथियों यदि आप युवा शक्ति के हाथ में किसी प्रकार के अधिकार ही नहीं देंगे, उन्हें ये ज्ञान ही नहीं देंगे कि आपको ही आने वाले समय में देश की बागडोर संभालनी है, आपको जिम्मेदारी उठानी है और हमारा आप पर विश्वास है, इसके बिना हमारे युवा को ऊर्जा कैसे मिलेगी? चलिए मान लेते हैं कि हमारी युवा शक्ति धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या ये समय धीरे धीरे आगे बढ़ने का है? पारिवारिक क्षेत्र में यदि हम बात करें तो युवाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि वे अध्ययन के लिए घर से बाहर जाना चाहे तो उन्हें मनाही, यदि वे किसी दूसरे क्षेत्र को चुनकर अपना भविष्य बनाना चाहे तब उसमें मनाही, विवाह अपनी मर्जी से करना चाहे वहां पर भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। तो साथियों ऐसे में जब हमारे युवा को एक सामान्य जीवन ही नहीं मिल पा रहा है तब युवा भारत होने के बावजूद क्या हम इसी गति से आगे बढ़ पाएंगे जैसे कि कोई एक युवा देश आगे बढ़ता है? सुविधाएं चाहिए हमारे युवाओं को और वो सुविधा आप दे सकते हैं अपने विश्वास को देकर। साथियों हम सभी अपने जीवन में जब प्रौढ़ हो जाते हैं और युवावस्था को मुड़कर देखते हैं तब ऐसा लगता है हमने बहुत सारी गलतियां की। हमें यह भी लगता है कि हमने कुछ गलत निर्णय लिए। हमें यह भी लगता है कि यदि हम कुछ सही निर्णय ले लेते तो हमारा अभी का जो जीवन है वो और बेहतर हो जाता। और ये जो हमारा अनुभव होता है अपने जीवन को लेकर, ये अनुभव हम हमारे युवा साथियों के साथ बांटना चाहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस परिस्थिति में हमारी युवावस्था गुजरी है और जिस परिस्थिति में हमारा आज का युवा जी रहा है, दोनों परिस्थितियां बहुत अलग हैं।
अब आप ही सोचिए कि आप यदि प्रौढ़ हैं और आप जब युवा थे उस समय यदि आपके माता पिता किसी चीज को लेकर आपके साथ सलाह मशविरा करते या फिर आपको सलाह देने लगते तो क्या आपको वो चीज अच्छी लगती? बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। साथियों, ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपनी राह खुद बनाना चाहता है, वो खुद गिरकर ही अनुभव लेना चाहता है। सामने वाले को गिरता देखकर उसे वो चोट उतनी गहराई से महसूस नहीं होगी, आगे चलकर उसके निर्णय गलत होंगे। मेरा ये कहना नहीं है कि आप अपने युवा होते बच्चों को या फिर अपने परिवार के युवाओं को कुछ ना सिखाएं, लेकिन सबसे पहली बात यह है साथियों कि अनुभव हमें जो सिखाता है उससे अच्छी कोई पाठशाला नहीं होती। हमें ये देखना होगा कि हम अपने युवा साथियों की जो शक्तियां हैं उनको पहचानने में उनकी मदद करें। आज का युवा दुविधा में है, आज का युवा अपने प्रत्येक प्रश्न को लेकर आपके सामने खड़ा है लेकिन आप उत्तर नहीं जानते। यदि आप उत्तर नहीं जानते तो आप उनके प्रश्नों को टालते हैं, ऐसे में हमारे युवा की दुविधा, उसका भ्रम और ज्यादा बढ़ता है। तो साथियों, हमारे पास बहुत बड़ी संपदा है। कहा जाता है कि मानव संसाधन पूरे विश्व में सबसे बड़ा संसाधन है और ऐसे में इस समय हमारा भारत देश सबसे ज्यादा संपन्न है। तो चलिए इस संपन्नता का लाभ उठाया जाए। हमारे आसपास की जितनी भी युवा शक्ति है उनको हमें संगठित करके ये बताना है कि उनकी शक्तियां क्या है। दरअसल होता यह है, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक विद्यालय में या फिर महाविद्यालय में युवाओं की कमियां निकालने की प्रतिस्पर्धा चलती है। युवाओं ने क्या गलत किया, उन्होंने किस तरीके से कोई चीज गलत बोली, उन्होंने कौन से निर्णय गलत लिए, या फिर उन्होंने किस तरीके से गलत बातें कही, या फिर उनका आचरण किस तरीके से गलत है, उनकी बोलचाल गलत है, उनका व्यवहार गलत है, सब कुछ गलत है। लेकिन ऐसा करने से क्या युवाओं पर सकारात्मक असर पड़ेगा? आप स्वयं ही देख लीजिए, यदि आप बच्चों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उन्हें अपनी गलतियां ही दिखाते हैं, तो बच्चों को न सिर्फ खुद की गलतियां दिखती है, बच्चे दूसरों में भी सिर्फ गलतियां ही ढूंढना सीखते हैं। साथियों, ये गलती हम सभी कर रहे हैं। मान लिया हमारा भारत युवा है, लेकिन हमारे युवा को हम क्या पोषण दे रहे हैं? हमारे युवा को आज चाहिए सकारात्मकता का पोषण। आप उसे ये मत बताइए कि तुम्हारा आचरण गलत है, आप उसे ये बताइए कि तुम्हारा आचरण यदि इस प्रकार का हो तो तुम और ज्यादा प्रगति कर सकते हो। साथियों, ऊर्जा आपको हमेशा किसी स्थान से ऊपर ले जाती है, लेकिन यही यदि नकारात्मक ऊर्जा हो तब आपको नीचे ही ले जाएगी। हम सभी मान लिया कि अपने अनुभव के चलते युवाओं को कम से कम तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन ये मुद्दा जो आजकल प्रत्येक स्थान पर हमें देखने को मिलता है कि युवा बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं, उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। लेकिन क्या आपने उन्हें अपनी जान की परवाह करना सिखाया था? बिल्कुल नहीं। क्या आपने उन्हें अपने सकारात्मक पक्ष को देखकर, उसे सराहकर, उसे इतना ऊपर उठाना बताया था जिसके चलते वो अपने आप को एक आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में स्थापित कर पाता? बिल्कुल नहीं। आपने हमेशा से उन्हें ये कहा है कि तुम ऐसा नहीं करो, बहुत तेज बाइक नहीं चलाओ नहीं तो गिर जाओगे। आप उन्हें ये बताइए ना कि आप बहुत अच्छे से ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। साथियों, जीवन में एक सही नजरिया होना एक युवा को सही दिशा देता है, और ऐसे में आज हमारे भारत देश को जरूरत है एक सही नजरिए की। हमारे आसपास के उदाहरण यदि हम देखें, प्रत्येक व्यक्ति ये बात करता है कि युवाओं पर बहुत ज्यादा दबाव है, लेकिन कोई भी ये बात नहीं करता कि चलिए अब हम युवाओं पर से दबाव हटाने के लिए हम कुछ कोशिश करें। क्या आपने कभी मदद का हाथ बढ़ाया है अपने किशोर होते बच्चे की ओर? क्या उसे ये पूछा है कि उसे क्या अच्छा लगता है? क्या उसे कभी जीवन में आने वाले क्षणों को लेकर या उसके लक्ष्यों को लेकर कभी बातें की हैं? नहीं। आपने हमेशा से यही देखा होगा कि वो किस समय घर आ रहा है, वो कैसे कपड़े पहन रहा है, वो किन दोस्तों के बीच घूम रहा है। क्या आपने स्वयं कभी उसके लिए एक अच्छा दोस्त बनने की पहल की? एक सही अभिभावक बनने के लिए ये कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा है साथियों यहाँ पर, लेकिन हाँ, यदि हमारे युवा साथियों के माता पिता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तब मैं आपको ये बता दूं, युवाओं के मन में सिर्फ आक्रोश नहीं है, युवाओं के मन में एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा को सही दिशा चाहिए
और वो दिशा यदि नकारात्मक रूप में मिलती है तब फूटता है उनका आक्रोश, क्योंकि वो सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें आपकी ओर से एक सही मार्गदर्शन चाहिए कि वो किस क्षेत्र में आगे बढ़े। साथियों, भले ही आपके आसपास आपके घर में कोई युवा ना हो लेकिन आपके कार्यक्षेत्र में, आपके रोजाना के जीवन में यदि युवा साथी आपसे जुड़ रहे हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि आप सकारात्मकता का बीज उनमें बोएं, क्योंकि इस समय हमारे पूरे देश को सकारात्मकता की जरूरत है, क्योंकि हमारा देश युवा है। आने वाले समय में जब ढेर सारी तकनीकी शक्तियां इस पूरे विश्व को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग देने वाली हैं, ऐसे में ये युवा शक्ति ही आपको आगे लेकर जाएगी। अब आप खुद ही सोचिए, तकनीकी दृष्टि से हमारा जीवन कितना समृद्ध हो गया है और इस सभी के पीछे कोई न कोई युवा शक्ति ही तो काम कर रही है। यदि हम एक अध्ययन की बात करें साथियों, तो हमारे सामने जो भी महान चित्रकार है, उस महान चित्रकार ने 30 से 35 की उम्र में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ काम कर लिया था। हमारे बीच जितने भी महान लेखक हैं, उन्होंने 40 वर्ष के अंदर की उम्र में अपनी सबसे महत्वपूर्ण ऐसी साहित्यिक कृति जिसके लिए उन्हें जाना जाता है, उसका निर्माण कर लिया था। यदि हम कलाकारों की बात करें, हम खिलाड़ियों की बात करें, हम फिल्म के नायक नायिकाओं की बात करें, तो मुझे बताइए कोई नाम जिसने 40 वर्ष के बाद की उम्र में अपने जीवन को शुरू किया हो। साथियों, बहुत सारे अपवाद हमें जरूर मिल जाएंगे लेकिन जो प्राकृतिक नियम है उससे परे हम नहीं जा सकते। जीवन के सर्वश्रेष्ठ काम को करने के लिए जो समय है वही स्वर्णिम समय इस समय हमारे देश को मिला हुआ है। हमें तो ये सोचना चाहिए कि ये हमारे जीवन का सर्वाधिक स्वर्णिम समय है, हमारे देश के लिए सबसे अच्छा काल है। और ऐसे में यदि हम नकारात्मकता का ही पोषण करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए, आपके भविष्य में क्या रखा हुआ आने वाला है। साथियों, सिर्फ हमारे युवाओं को सुविधा दे देने से, उन्हें मार्गदर्शन दे देने से, उनकी तारीफ कर देने से या फिर उन्हें एक सही ऊर्जा दे देने से यदि हम सबका जीवन संवर सकता है तो ये काम करने में हिचक कैसी। हमारे युवा संवाद चाहते हैं, वो आपसे कटना नहीं चाहते। आप स्वयं सोचिए ना कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके चलते एक उम्र हो जाने के बाद में बच्चे अपने अभिभावकों से दूर होने लगते हैं। दरअसल 14-15 की उम्र में आपका बच्चा जब स्वयं स्वतंत्र हो जाता है, ऐसे में आपको एक प्रकार का भय सताता है कि कहीं ये बच्चा आपके नियंत्रण से बाहर तो नहीं चला जाएगा। अब तक अपने प्रत्येक निर्णय के लिए आपके ऊपर निर्भर रहने वाला आपका बच्चा यदि स्वयं के निर्णय स्वयं ले लेता है तब उसे

0: चलकर वो अपने आप को एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में देख रहा है। वो आज खुश है, वो आज सफल है और अपनी सफलता को आपके साथ बांटने के लिए, इस निर्णय लेने की बात को बांटने के लिए आपके समक्ष आया है। और आप क्या कर रहे हैं? आप इस समय आपको देख ही रहे हैं। आप इस समय अपने बच्चे को नहीं, आप सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं। आपका अहंकार, आपका स्वयं का व्यक्तित्व, उस बच्चे की निर्भरता, ये सारी चीजें खंडित हो चुकी हैं। तो साथियों, यदि हमारे देश का युवा आत्मनिर्भर होना चाहता है तो उसे ऊर्जा दीजिए। यदि हमारे देश का युवा सकारात्मक होना चाहता है तो उसे सही विचार दीजिए, उसे मार्गदर्शन दीजिए, उसे आगे बढ़ने दीजिए। बार बार उसे ऐसी बेड़ियों में जकड़कर मत रखिए जिससे वो आप पर ही निर्भर रहे। साथियों, यदि आपको पसंद है कि कोई आपके नियंत्रण में रहे, तो क्या आप चाहेंगे कि आप पर कोई नियंत्रण करे? बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है, और जब हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए इतना समय हो गया है और अब हमारे देश का युवा समय हमारे सामने है, तो हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि युवा शक्ति को अपने विश्वास का उपहार दे। इसी के चलते हमारे देश का स्वर्णिम भविष्य आगे आ सकता है।
1: साथियों, अभी आपने सुना आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का पुनः शुक्रिया। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं एक सुमधुर गीत।

साथियों, अभी आपने सुना आज का एक और सुमधुर गीत। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सेवा सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। साथियों, हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए। हमारा फेसबुक आईडी है rva hindi। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है rva hindi। आप ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @rva hindi। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है rva hindi। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऐप पर दैनिक खबरें, विभिन्न लेख, रचनाएं, कविताएं एवं हमारे विभिन्न प्रकार के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल, सुझाव, लेख या रचनाएं हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7974314201। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है satishwar0@gmail.com। आप पत्र के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है आरवी ऑफिस 10, सत प्रकाशन संचार केंद्र, खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो आरवीए मोबाइल ऐप में जाकर आर्काइव में यह सुन सकते हैं। साथियों, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। साथियों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हमसे जुड़े रहें और सुनते रहिए आरवीए हिंदी। मेरा यानी कि प्रियंका डामोर का आप सभी

तहे दिल से धन्यवाद ग्लोरिया जी, और सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की सभा शुरू करने से पहले मैं एक कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। बढ़ता चल तू ए मुसाफिर, मंजिल तेरे निकट होगी। हौसला रख दिल में अपने, ख्वाहिशें तेरी पूरी होगी। संकल्प ले यदि मन में अपने, उत्साह कभी न कम होंगे। बड़े थे, बड़े हैं और बढ़ते रहेंगे, हर बेड़िया को तोड़ते रहेंगे। अगर दूर दिखती हो तेरी मंजिल, सब्र कर तू कभी गम न कर। झोपड़ी से महल यदि है तुझको बनाना, तो कोशिश को अपने कभी कम न कर। बड़ा चल तू हर क्षण बड़ा चल, तेरी मंजिल मिलेगी कभी न कभी। विश्वास रख तू है खुदा पर अपने, ख्वाहिशें तेरी पूरी होगी। बढ़ता चल तू है मुसाफिर, मंजिल तेरे निकट होगी। यह कविता हमें मध्य प्रदेश के देवास जिले से डेजमंड रॉबर्ट ने भेजी है। इस कविता के लिए डेजमंड जी, आरवीए की टीम आपका दिल से आभार प्रकट करती है। मित्रों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम और अंत में नाटक। तो आइए साथियों, हम भी आलस न करते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो पहला कार्यक्रम है वह है कृषि जगत से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता, और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मुखिया जी, गन्ने की खेती करने वाले किसान आजकल काफी निराश दिख रहे हैं। लगता है कि प्रकृति या मौसम ने उनकी खेती को प्रभावित किया है।
1: जैसा आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि राज्य के गन्ना उत्पादक किसान प्रकृति की मार से तो परेशान हैं ही, और रही सही कसर खाद की किल्लत ने पूरी कर दी है। लिहाजा गन्ने के साथ साथ चीनी के उत्पादन में भी कमी आने की संभावना बनने लगी है। दो चीनी मिलों के क्षेत्र के किसान प्रकृति की मार झेल रहे हैं, तो चार क्षेत्र में यूरिया की किल्लत बनी हुई है।
0: ऐसी स्थिति में सरकार आखिर क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठी है मुखिया जी?
1: हालांकि सरकार ने हर हाल में इस स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है।
0: लेकिन राज्य सरकार तो कुछ और ही दावा कर रही है कि किसानों को हर हाल में सुविधाएं प्रदान की जा रही है ताकि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
1: जहां तक सरकार की बात है तो राज्य सरकार ने इस वर्ष गन्ना उत्पादन के लक्ष्य में 18% वृद्धि की है। लक्ष्य को पाने के लिए किसानों की सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं, लेकिन प्रकृति सबसे बड़ी बाधा बन गई है।
0: आखिर किन क्षेत्रों में मौसम की मार का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है मुखिया जी?
1: जहां तक मैं समझता हूं कि गोपालगंज का जो इलाका है, गोपालगंज, हसनपुर और रीगा चीनी मिल क्षेत्रों में मौसम की मार से फसल कम होने की आशंका है। इसी तरह रीगा, हरिहर नगर, लौरिया और हसनपुर चीनी मिल क्षेत्रों के किसान भी खास करके यूरिया खाद की किल्लत से परेशान हैं। यूरिया खाद की किल्लत से वो जूझ रहे हैं।
0: इस बात की पुष्टि कैसे हुई कि इस वर्ष मौसम के कारण उत्पादन में कमी होने की आशंका है?
1: राज्य मुख्यालय में हुई बैठक के दौरान चीनी मिलों के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार मौसम की मार फसल पर है, लेकिन किसानों ने वैकल्पिक व्यवस्था का लाभ लेकर नुकसान की भरपाई की है। उत्तरा नक्षत्र में हुई वर्षा ने भी बहुत हद तक परेशानी दूर की है, लेकिन अब भी फसल को पानी की जरूरत है।
0: क्या किसी भी क्षेत्र में गन्ने की फसल अच्छी होने की सूचना नहीं है मुखिया जी?
1: जहां तक अधिकारियों से मिली जानकारी की बात करते हैं तो उनकी जानकारी के अनुसार गोपालगंज मिल के क्षेत्र में फसल तो अच्छी है, लेकिन गंगा के कटाव के कारण वहां 15% कम रोपनी हो सकी है। इसी तरह अगर समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों में वर्षा कम होने के कारण फसल प्रभावित हुई है।
0: पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष गन्ने की सबसे ज्यादा रोपनी किन किन क्षेत्रों में की गई है और वहां की स्थिति कैसी है?
1: हालांकि नरकटियागंज और हरिनगर के क्षेत्र में रोपनी पिछले वर्ष के मुकाबले 10-15% अधिक रकबे में हुई है। इन क्षेत्रों में फसल की स्थिति जो है वो भी काफी अच्छी है।
0: अब तो ये साफ हो गया है कि राज्य सरकार किसी भी कीमत में गन्ने का अनुमानित उत्पादन लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकती। धान का उत्पादन लक्ष्य क्या प्राप्त किया जा सकता है मुखिया जी?
1: देखिए, इस बार परिस्थिति अनुकूल नहीं दिख रही है। धान की उपज में चीन का रिकॉर्ड तोड़ने वाला बिहार इस बार खुद का लक्ष्य नहीं हासिल कर पाने की स्थिति में आ गया है।
0: आखिर ऐसा क्यों मुखिया जी? क्या इसकी वजह भी मानसून और मौसम का मिजाज ही है?
1: बिल्कुल, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। लेट मानसून और अनुमान से कम बारिश होने के कारण धान की खेती काफी प्रभावित हुई है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार लेट मानसून और सही समय पर सिंचाई नहीं होने के कारण राज्य उत्पादन का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा।
0: क्या सिर्फ सिंचाई उचित समय पर नहीं होने पर और मानसून की बेरुखी के कारण ही ऐसा हुआ है या फिर कोई दूसरा कारण भी है?
1: दूसरा कारण यह है कि अगर धान की कटाई के समय मजदूर नहीं मिल पाए तो किसानों को फजीहत झेलनी पड़ सकती है।
0: राज्य सरकार का अनुमानित उत्पादन लक्ष्य क्या था और उसमें कितना कमी आने की संभावना है?
1: पटना जिले में 2.5 लाख टन धान की उपज का अनुमान है, जबकि लक्ष्य 3 लाख टन का रखा गया था और पटना जिले में 1,10,000 हेक्टेयर आच्छादन का लक्ष्य था। कृषि विभाग ने इस बार राज्य में 34.75 लाख हेक्टेयर आच्छादन का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक जो स्थिति साफ है वो है कि अब तक 31.50 लाख हेक्टेयर ही आच्छादन हो पाया है, जबकि उत्पादन का लक्ष्य 48.8 लाख टन निर्धारित किया गया था। 75 लाख टन उत्पादन कम होने का अनुमान है। जो सरकारी आंकड़े हैं उसी की मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ।
0: अनुमान से कम उत्पादन क्या सिर्फ वर्षा की कमी के कारण हुआ? मुखिया जी, मौसम विभाग का इस मामले में क्या कहना है?
1: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 20% से ज्यादा कम बारिश होने का असर है और इसका खास असर धान की उपज पर दिख रहा है। धान की उपज प्रभावित हुई है। वैसे अगर हमारे किसान भाई सावधान रहें तो थोड़ा बहुत उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और क्षतिपूर्ति की जा सकती है, चाहे सरकार के द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य है उसको छुआ जा सकता है लेकिन पहुंचा नहीं जा सकता है उसके आगे।
0: तो मुखिया जी, उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस तरह की सावधानी अपनाने की जरूरत पड़ती है?
1: धान की फसल अभी तो तैयार होने की स्थिति में है, तो धान की फसल जब तैयार होने लगती है तो किसानों को कीट पतंगों के प्रकोप से धान को बचाने में परेशानी होती है। उस समय फसल पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमारे किसान भाई ऐसा करते हैं तो उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। धान जब मिल्किंग स्टेज में हो, अगर उस समय कीट पतंग लग जाते हैं तो धान की फसल 10-20% बर्बाद हो जाती है।
0: तो उसे बचाव के लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं?
1: कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कीट पतंगों से बचाव के लिए किसानों को अहले सुबह जब धरती पर ओस रहती है उस समय फॉली डडाल पाउडर का डस्टिंग करना चाहिए ताकि ओस में धान के फसल से यह जो पाउडर है वो सट जाए। इससे धान की फसल में लगने वाले कीट पतंग जो हैं वो मर जाते हैं।
0: आशा है मुखिया जी आपके द्वारा बताए गए सुझाव हमारे किसान भाई अवश्य अपनाएंगे और अपनी उत्पादकता को बरकरार रखेंगे।
1: जी जी, तो अभी हम लोग चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
0: जी। धन्यवाद मुखिया जी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, इस वार्ता में हमें काफी सारी महत्वपूर्ण और रोचक बातें बताई गई हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी किसान श्रोताओं को इन बातों से लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या आईओएस मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव एवं रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है आरवीए ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब हम अपने अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें कानून के बारे में बताएंगे। जी हाँ साथियों, मैं अपने अगले कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और रितेश जी, कानून सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी आपका भी धन्यवाद।
0: कपूर साहब, पिछले कार्यक्रम में हम यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे।
1: बिल्कुल।
0: कि आखिर कब तक इस गंभीर समस्या पर पूर्ण विराम लगेगा, कब तक इस समस्या से यहाँ की बच्चियों को मुक्त कराया जा सकेगा, कब तक इस समस्या का निजात हो पाएगा?
2: मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि मानसिक सोच के तहत इस तरह के घिनौने करतूत को अंजाम दिया जाता है, इस विषय पर जो विशेषज्ञ हैं, जो मनोचिकित्सक हैं, उनका क्या कहना है? उसके बाद हम लोग 2012 में हुई यौन हिंसा की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और इसके लिए किस तरह का कानून हमारे संविधान में मौजूद है, किस तरह की सजा का प्रावधान ऐसे अपराधियों के लिए है।
1: बहुत बढ़िया सवाल आपने रितेश जी किया है। देखिए, मैं आपको जो विशेष बातें हैं, मुख्य बातें, मैं उस पर आपको रोशनी देना चाहूंगा। दो तीन विशेषज्ञों की बात मैं यहां पर रखना चाहूंगा। कुरुक्षेत्र स्थित वुमेन्स रिसर्च सेंटर की निदेशक ऋचा तलवार का कहना है कि तकनीक ने युवाओं को ग्लैमर की चकाचौंध तो दिखा दी है, मगर हमारे सामाजिक परिवेश और शिक्षा पद्धति ने उनका मानसिक विकास नहीं किया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कपूर साहब।
1: जिसकी वजह से कई बार जब ड्रग, अल्कोहल और ग्लैमर के नशे में वो बलात्कार जैसे अपराध को रोमांच का हिस्सा समझ लेते हैं, वहीं स्वाति प्रसाद जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि ऐसे पुरुष जिनका सेक्स जीवन सामान्य न हो, आसानी से बच्चों या कम उम्र की लड़कियों के विरुद्ध यौन हिंसा करने लगते हैं। राजेश सागर, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्रिस्ट एम्स, उनका कहना है कि कई बार लोग अपनी शारीरिक जरूरत के लिए बलात्कार न करके महज इसलिए बलात्कार करते हैं क्योंकि उनकी नजर में ये खुद को शक्तिशाली या बड़ा साबित करने का माध्यम होता है।
0: इन विशेषज्ञों की बातों में दम है कपूर साहब
1: जी।
0: इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो शोध परक है। 2012 में जो बलात्कार की घटना हुई वो बड़ी चौंकाने वाली घटनाएं हैं
1: जी।
0: पूरी तरह से हिंसक और घृणित मानसिकता से प्रेरित प्रतीत होती है और ये सिर्फ किसी एक राज्य या फिर एक शहर की नहीं, पूरे देश के विभिन्न राज्यों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया, जो कि ये ऐसा कहा जा सकता है कि एक सभ्य समाज के लिए धब्बा है और एक सभ्य समाज को सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर किस तरह की मानसिकता में हमारे युवा या पुरुष लोग जी रहे हैं।
1: देखिए वीरेंद्र जी, मानव कुकृत्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बलात्कार की घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहूंगा। 5 फरवरी कोलकाता, जहां 37 साल की महिला के साथ बंदूक दिखाकर एक व्यक्ति और उसके साथियों ने बलात्कार किया, ये घटना कोलकाता के एक पब में हुई। 13 अप्रैल नई दिल्ली, एक 14 साल की लड़की के साथ उसके मालिक ने 2 साल तक लगातार बलात्कार किया। 14 जून पटना की एक स्कूली छात्रा के साथ उसके बॉयफ्रेंड और दूसरे सहपाठियों ने सामूहिक बलात्कार किया। इस घटना का उन्होंने MMS बनाया ताकि छात्रा को ब्लैकमेल किया जा सके।
2: एक घटना कर्नाटक में हुई थी कपूर साहब, जहां पिता ने ही अपनी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया था।
1: जी हां, मुझे याद है वो घटना 15 जून की है। फ्रेंच काउंसलेट अधिकारी पास्कर माजुरियन को अपनी खुद की 3.5 साल की बेटी के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसकी पत्नी ने उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज की थी। इसी वर्ष 11 अगस्त को फरीदाबाद में दिल्ली जल बोर्ड में काम करने वाली 21 वर्षीय लड़की के साथ 8 युवाओं ने सामूहिक बलात्कार किया। उसे जबरदस्ती एक कार के अंदर खींचा गया था। 9 अगस्त मुंबई में पेशे से वकील 25 साल की पल्लवी को उनके वाडला स्थित फ्लैट में सुरक्षा गार्ड ने मार डाला क्योंकि वो पल्लवी के साथ बलात्कार करना चाहता था और पल्लवी के विरोध के कारण सफल नहीं हो पा रहा था।
0: लेकिन हरियाणा में जो घटनाएं हुई है कपूर साहब
1: जी,
0: वो काफी मार्मिक और दिल को दहला देने वाली घटना है और वो भी एक दलित लड़की और महिला के साथ।
1: वो घटना इसी वर्ष 9 सितंबर को हुई थी वीरेंद्र जी। 16 साल की दलित किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस घटना का MMS बनाकर इसे बड़ी संख्या में लोगों को भेजा गया। इसी इलाके में 21 सितंबर को दो बच्चों की मां के साथ बलात्कार किया गया। हरियाणा में पिछले एक महीने में इस तरह की ये 12वीं घटना है। 25 सितंबर कोलकाता में 18 महीने के एक मासूम बच्ची के साथ उसके रिश्तेदार ने बलात्कार किया। खून से लथपथ बच्ची उसकी मम्मा को रॉड स्ट्रीट में मिली। 24 सितंबर दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी की दो छात्राओं को एक पार्टी में नशीली ड्रिंक पिलाकर उनके तीन साथियों ने उनके साथ बलात्कार किया। 7 अक्टूबर दिल्ली में ही पीतमपुरा में एक डॉक्टर के घर बतौर घरेलू नौकरानी काम करने वाली 14 साल की किशोरी ने आरोप लगाया कि उसके मालिक ने लगातार एक साल तक उसके साथ बलात्कार किया है।
2: हमारे यहाँ जो बलात्कार संबंधी कानून है वो कितना उपयोगी है इस पर तो सवालियत निशान लगता है कपूर जी। इन सारी घटनाओं को देखते हुए क्या प्रक्रियात्मक और साक्ष्य संबंधी कानून बलात्कार पीड़ितों को न्याय दिलाने में सक्षम है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए?
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है कि हमारे यहाँ जो वर्तमान में बलात्कार संबंधी कानून है वो किस तरह से पीड़ितों को न्याय दिलाने में सक्षम है या फिर नहीं है।
1: देखिए प्रेम जी, ये बात साबित हो चुका है कि बलात्कार संबंधी वर्तमान कानून सूक्ष्म और संकीर्ण है और ये अभी भी गुलामी का प्रतीक है।
0: अच्छा अच्छा,
1: काफी फैसलों से ये प्रतीत होता है। ऐसा देखा जाता है कि जब किसी पुरुष पर बलात्कार का आरोप लगता है तब साक्ष्य कानून अभियुक्त के बुरे चरित्र पर प्रकाश डालने पर आरोप लगाता है। बुरे चरित्र का अर्थ यहाँ ये है
0: जी
1: कि इसी प्रकार के अपराध में पहले दोष सिद्ध होना पर पीड़िता के चरित्र की बात आती है तो वहाँ उल्टे पैमाने का प्रयोग किया जाता है।
0: तो क्या ऐसा माना जाए कपूर साहब कि जो साक्ष्य कानून की धारा 155 है हमारे यहाँ
1: जी,
0: उसी में खामी है और अपराधी आसानी से बच निकलते हैं?
1: साक्ष्य कानून की धारा 155 के अनुसार जब किसी व्यक्ति पर व्यभिचार का आरोप लगाया जाए तब वो स्त्री के चरित्र पर इल्जाम लगाकर बच सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से इन उपबंधों पर कुछ प्रभाव पड़ा है पर अभी भी इसे कानूनी किताबों में ज्यों का त्यों रखा है
0: जी।
1: और बचाव पक्ष के वकील इसका प्रयोग गवाहों को डराने के लिए करते हैं।
2: क्या इसी कारण बहुत सारी महिलाएं यौन हिंसा के शिकार होने के बावजूद न्याय की मंदिर में जाने से घबराती हैं कपूर साहब?
1: जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा समाज जो है ना वो पुरुष प्रधान है
2: जी
1: और मुकदमा विचारण के दौरान भी यही बात स्पष्ट होती है। इस कारण काफी महिलाएं न्याय मंदिर में जाने से घबराती हैं और समझती हैं कि यहाँ आना समय बर्बाद करने के बराबर है
0: जी।
1: जब एक पीड़िता की वस्तुस्थिति समझने के लिए विभिन्न प्रयास नहीं किए जाएंगे तब तक महिलाओं को न्याय मिलना असंभव है।
0: तो क्या आप मानते हैं कपूर साहब कि वर्तमान में जो बलात्कार संबंधी जो हमारे यहाँ कानून मौजूद है
1: जी,
0: क्या उसमें संशोधन या सुधार की गुंजाइश है?
1: देखिए वृंद जी, केवल कानून में संशोधन करना काफी नहीं है, आवश्यकता है महिलाओं के प्रति जन चेतना व उनके अधिकारों के प्रति जागृति लाने की
0: जी।
2: एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल बलात्कार मामलों में लागू विचारण प्रक्रिया में क्या दोष पाए गए हैं कपूर साहब?
1: देखिए रितेश जी, साक्ष्य कानून की धारा 114A को जोड़ने का ये जो विचार है या जो सरकार हमारे यहाँ जो कानून लागू कर रही है जिसको 114A को जोड़ने के पश्चात आज भी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। इस धारा के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय को ये शक्ति दी गई है कि वो महिला पीड़िता के बयान को महत्व दे और ये माने कि बलात्कार के मामले में महिला की सहमति प्राप्त हुई है या नहीं
2: जी
1: और ये उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ है। फिर भी दोष सिद्ध दर अन्य अपराधों के मुकाबले बहुत कम पाई गई है और अधिकतर विचारण में पीड़ित महिला को उसे ही बलि चढ़ाया जाता है न कि व्यभिचारी व्यक्ति को
0: जी बिल्कुल।
1: आज भी बहुत सी महिलाएं अपने दुख की गाथा पुलिस के सामने बयान नहीं कर पाती क्योंकि वो आज ही पुलिस डॉक्टरों और कानून संबंधी अधिकारियों का अपमानजनक व्यवहार सहने में लज्जा अनुभव करती हैं।
0: तो ऐसी जिस परिस्थिति का आप जिक्र कर रहे हैं कपूर साहब
1: जी,
0: तो ऐसी परिस्थिति में महिलाओं के साथ किस तरह के वातावरण निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा सकती है?
1: वृंद जी, आवश्यकता है महिलाओं के मन से इस डर और लज्जा की भावना को समाप्त करने की, जिससे ऐसी दुर्घटनाएं होने पर शीघ्र ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा सके। ऐसा करने से मुकदमे का विचारण भी शीघ्र हो सकता है और गवाह भी अपना बयान बिना किसी भय के दे सकते हैं।
2: सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार हमारी वर्तमान कानून प्रणाली में जो बलात्कार के मामलों का विचारण करती है, इसमें क्या कमियां हैं कपूर साहब?
1: हमारे वर्तमान कानूनी ढांचे में बहुत सारे दोष पाए गए हैं। पहला ये है कि शिकायतें जो है वो शिकायतों पर बेढंगे तरीके से काम किया जाता है और उन पर ऐसा ध्यान नहीं दिया जाता जैसा उन्हें मिलना चाहिए।
0: जी जी,
1: पीड़िता को पुलिस और कानून के संरक्षकों के हाथों अपमान सहना पड़ता है। बलात्कार के मामलों का विचारण महिलाओं के लिए अपमान के सिवा कुछ और नहीं होता। उन्हें इस दौरान भयंकर पीड़ा और अपमान से गुजरना पड़ता है। कोर्ट में बलात्कार के मामलों के विचारण के दौरान महिलाओं किस प्रकार पीड़ा और यातना पहुंचाई जाती है, जो बलात्कार के घिनौने अनुभव से कम नहीं होती। पीड़िता को विचारण के दौरान वो मानसिक यंत्रणा सहनी पड़ती है जो बलात्कार के अपराध से कहीं अधिक होती है।
0: बिल्कुल कपूर साहब, 1980-89 के बीच
1: जी
0: बलात्कार कानून में जो संशोधन हुए
1: जी,
0: उसका क्या कुछ खास प्रभाव पड़ा है, खास करके बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को जिस तरह की राहत मिलनी चाहिए, क्या राहत मिली है?
1: देखिए वृंद जी, सुश्री फ्लेविया एग्नेस जो बलात्कार कानून की विशेषज्ञ मानी जाती हैं, उनके अनुसार 1980-89 के बीच जो बलात्कार कानून में संशोधन हुए हैं, उनसे महिलाओं को कोई विशेष राहत नहीं मिल पाई है और न ही उसके कारण दोष सिद्धि की दर में बढ़ोतरी हो पाई है। हालांकि मामलों के दर्ज होने की दर बढ़ गई है, पर दोष सिद्धि दर अभी बहुत कम है।
0: कपूर साहब, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे तो आपसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे
1: जी।
0: अभी हम लोग चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।
1: आपको भी धन्यवाद, नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। साथियों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है वसुधैव कुटुम्बकम। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है साहसी कप्तान कुक स्ट्रीट, और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा जी।

हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। व्यक्ति विशिष्ट, आज के हमारे व्यक्ति विशिष्ट कार्यक्रम में हम आपको साहसी कप्तान कुक स्ट्रेट के बारे में कुछ रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं। साथियों, सदियों का इतिहास और उसका कोई भी कालखंड हमेशा ही सुंदर और अनुकूल रहा हो ऐसा नहीं है। त्रास देने वाली कठिनाइयां और बेहद प्रतिकूल स्थितियां भी साथ साथ चलती रहती हैं और शायद ऐसे ही हालात वर्तमान में भी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हर कालखंड में विपरीत परिस्थितियों के घने अंधकार के बीच ऐसे व्यक्तित्व भी हुए हैं जिन्होंने सुंदर जीवन की किरणों से इस संसार को प्रकाशमय बनाया है। ऐसा व्यक्ति अपने निष्ठामय जीवन, कठोर परिश्रम और अपने कार्यों से हम सबका प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक बन जाता है। और यही सत्य है कि आज हमारे सामाजिक जीवन में जितने स्नेह और आदर्श की पूंजी सुरक्षित है वो ऐसे ही कर्मठ व्यक्तियों के कारण है। श्रोताओं, बेहद सामान्य और मामूली शुरुआत से कुछ खास या कहें विशिष्ट बनने वाले इंसानों के जीवन की कथा बड़े ही टेढ़े मेढ़े और अजीबो गरीब रास्तों से होकर गुजरती है। ऐसे ही अनेक इंसानों की जीवन गाथा से इतिहास भरा पड़ा है, जिनके जीवन में अवसर अच्छे बुरे एक एक करके आते जाते रहते हैं और वे आगे कदम बढ़ाते हुए चलते रहते हैं, कदम कदम पर संघर्ष करते हैं और इंच इंच विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और उनकी इस विकास यात्रा में समाहित है उनकी उपलब्धियों यानी उनके अचीवमेंट्स और प्रगति के विभिन्न प्रवाहों का इतिहास, जिसकी धाराएं आज भी देखी जा सकती हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आइए मानव के साहस और उपलब्धियों को, जो उसे विशिष्ट कहलाने का सम्मान देता है, उसके इतिहास का एक पृष्ठ ये भी है, इसे जरा खोलें। इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। ये कहानी है लहरों को अपनी मुट्ठी में समेटने वाले साहसी कप्तान कुक स्ट्रेट की। कुक बचपन से ही समुद्र की विशाल और उन्मुक्त लहरों की तरंगों और लड़ियों को देखकर रोमांचित हो जाया करते थे। एक तरह का उन्माद उनमें भर जाता था और उस बच्चे का जी करता कि वो उन लहरों के साथ खेले, उनके बीच कूद पड़े, उनको अपनी बाहों में समेट ले। लेकिन अभी बच्चा था, इसलिए पिताजी जो थे वो उन्हें कस कर पकड़ लेते थे कि बस आगे नहीं जाना। लेकिन समुद्र की लहरों, रेतीले पठार के साथ समुद्र की गहराइयों को नापने वाले साहसी यात्रियों की कहानियां वो बड़े चाव से पढ़ता रहता था। और इसी धुन में चुपके चुपके जब रात होती, शाम होती या देखता कि घर में कोई नहीं, पिताजी नहीं खास करके, तो चुपके से समुद्र की ओर दौड़ता हुआ चला जाता और फिर वही लहरें और उनके बीच में वो उनसे खेलने लगता। लेकिन प्रिय श्रोताओं, बालक कुक का बचपन अभावों और बेहद गरीबी के बीच गुजरा। एक बिल्कुल खंडहर जैसा टूटा फूटा घर था उनका। उनके पिता एक पंसारी और एक बजाज की दुकान पर नौकरी करते थे। कुक थोड़े से बड़े हुए तो पिताजी ने उसे भी इस नौकरी पर भेज दिया और खुद मजे से घर बैठ गए। अब नौकरी के अलावा आटा
और धागे भी बेचकर घर का गुजारा जैसे तैसे पूरा करना पड़ता था और कुक वो करते थे। और उसकी दुकान वाला जो था, जो मालिक, वो शराबी तो अक्सर उसे अपमानित करता था और कभी कभी तो उसकी जमकर पिटाई भी कर देता था। लेकिन इन सब हालात के बीच समुद्र ने, जी हाँ, समुद्र ने और उसकी बल खाती लहराती लहरों ने कुक का साथ नहीं छोड़ा और कुक ने उनका साथ नहीं छोड़ा। और आखिरकार एक दिन कुक घर छोड़कर निकल पड़ा एक अनजान समुद्र सफर पर, ऐसी जगह और ऐसे देश की तलाश में जिस पर कभी किसी मनुष्य ने कदम नहीं रखा हो। और मित्रों, उसकी कभी संतुष्ट और तृप्त न होने वाली समुद्र भ्रमण की पिपासा उसे मीलों लंबी दूरी और सीमाहीन किनारों पर इधर से उधर, इधर से उधर भटकाती रही। और वो भटकता रहा, लेकिन क्या ये महज भटकन ही थी? जी नहीं, ये भटकन व्यर्थ नहीं गई। और आखिरकार कुक की यात्राओं के संस्मरण मानव समाज के लिए जैसे वरदान सिद्ध हुए। कैप्टन कुक ने खगोल विद्या, भूगोल और गणित की सघन पढ़ाई और चिंतन मनन किया और अपने भ्रमण के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान संसार के सुदूरतम कोनों से वनस्पति और जीव जंतुओं का संग्रह किया और फिर उन सबको एक जगह रखने के लिए एक क्यू गार्डन बनाया और इस संग्रह को उसमें सुरक्षित रख दिया। और हाँ, ऐसा नहीं कि कैप्टन कुक की ये यात्राएं बिना किसी बाधा के संपन्न हो गई। नहीं साहब, अनेक प्राण घाती घटनाओं का सामना करना पड़ा कैप्टन कुक को अपनी समुद्र की यात्राओं के दौरान। लेकिन कैप्टन कुक ने अपने इन अनुभवों और कौशल द्वारा इस साहसी अभियान को इतना श्रेष्ठ कर दिखाया जो इसके पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने बाद में जीव विज्ञान पर अनेक पुस्तकें लिखी। और मेरे प्रिय श्रोताओं, सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। ब्रिटिश साम्राज्य में न्यूजीलैंड को मिलाने का गौरव कैप्टन कुक को ही जाता है। जी हाँ, उन्होंने ही खोज की न्यूजीलैंड की और इसके साथ ही उन्होंने ही रोमानी हवाई द्वीपों की खोज भी की थी। तो साथियों, विदा लेने से पहले, यही था इतिहास का वो पन्ना जो कैप्टन कुक के नाम पर दर्ज है। उन्होंने काल के रेतीले चप्पे चप्पे पर अपने पद चिन्ह स्थापित किए और भावी पीढ़ी के लिए एक बहुमूल्य खजाना छोड़ा।

दोस्तों, अभी आप सभी सुन रहे थे कार्यक्रम वसुधैव कुटुंबकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था साहसी कप्तान कुक स्ट्रीट, और इसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा जी। दोस्तों, आप सभी ने स्वतंत्र कुमार जी की बातें सुनी और मैं समझता हूँ कि आप सभी को इनकी बातें अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। साथियों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है नाटक, जिसका शीर्षक है अपने लिए जिए तो क्या जिए, और इसके लेखक एवं निर्देशक हैं संदीप दुबे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं नाटक।

0: कौन आया था अभी? घंटी किसने बजाई थी?
1: कोई नहीं, रामप्रसाद आया था।
0: रामप्रसाद? तो इसमें छिपाने की क्या बात है? जरूर रुपए मांगने आया होगा, उसके जैसा कोई भिखमंगा नहीं देखा। कितने रुपए दिए?
1: अरे कहा ना, ना मांगे और ना मैंने दिए।
0: मैं मान ही नहीं सकती।
1: क्यों?
0: मेरा क्या है, तुम सब पर पैसे लुटा दो, लेकिन अपनी गृहस्थी का भी तो कुछ ख्याल करो। बताओ कितने रुपए दिए?
1: तुम हमेशा उल्टा क्यों सोचती हो? वह सिर्फ यह कहने आया था कि उसकी यहाँ आज सत्यनारायण की कथा है, निमंत्रण दिया था। मुझे तो इन बेकार की बातों से चिढ़ है, इसलिए मैंने टाल दिया।
0: मैं कहती न थी रामप्रसाद यूं ही नहीं आने वाला। तुम इन बातों को मानो या न मानो, लेकिन उसे कथा के नाम से पैसे जरूर मांगे होंगे।
1: अगर मांगता भी तो क्या इन फालतू कामों के लिए मैं दे देता?
0: तो देख लेना, अगर अभी नहीं रह गया हो तो किसी न किसी बहाने आता ही होगा। आखिर प्रसाद भी तो बनाना होगा, पैसे कम पड़ गए होंगे।
1: भली मानस, अब आए भी तो तुम ही दरवाजा खोलना, ठीक है? और तुम ही उससे निबट लेना, मेरा दिमाग खराब मत करो। अगर हो सके तो एक प्याली चाय बना दो, कब से बैठा इंतजार कर रहा हूँ।
0: एक प्याली चाय भी नहीं बना सकते, बड़े 30 मार खां बनते हैं कि दफ्तर में ये करता हूँ वो करता हूँ।
1: दफ्तर में तुम्हारे जैसे 50 चपरासी हैं। अब जल्दी जाओ और चाय बना दो।

0: ये लो चाय। लेकिन एक बात तो बताओ,
1: क्या
0: क्या फायदा आलतू फालतू लोगों का काम करने से? बदले में क्या कभी कुछ मिलता भी है?
1: तो क्या हमेशा बदले में कुछ पाने की आशा से ही कुछ करना चाहिए? निस्वार्थ सेवा में जो आनंद है वह स्वार्थ में कहाँ?
0: तो धरे रहो अपनी निस्वार्थ सेवा, मरे काम निकलने के बाद कभी झांकते तक नहीं कोई।
1: यह अपने मन की बात है। संगीता, क्या बात है? तुमसे इतने असहयोग की आशा नहीं थी। बात बात पर चिढ़ती हो, जलन और कुढ़न।
0: अब कौन आ गया?
1: जाओ, तुम ही जाकर देखो। कौन था?
0: वही मिस्टर वर्मा की पत्नी, कागज के फूल बनाने संवारने आई थी आपसे।
1: फिर क्या हुआ? कहाँ मिसेज वर्मा?
0: कह दिया कि तुम घर पर नहीं हो। देखो मैं पहले से कह देती हूँ कि अब वो यहाँ नहीं आएगी। सारे काम छोड़कर उसका बस कागज के फूल ही बनाना सिखाते रहते हो।
1: ओफो, तो हमारा कौन सा नुकसान हो गया? अरे जो आता था सो बता देता हूँ, उसका भला हो गया। बच्चों को स्कूल में सिखाएगी, इससे कला का और विस्तार होगा।
0: अरे किसी ट्रेनिंग सेंटर में सीखती तो गांठ से पैसे जो खर्चा करने पड़ते, यहाँ तो मुफ्त में काम निकल गया और चाय नाश्ता भी मिल गया।
1: तुम तो बेकार झगड़ती हो, इसमें चाय पानी भी जोड़ दिया।
0: अब आपको बनानी पड़े ना तो जानो। वैसे मैंने कह दिया कि वो अब इस घर में नहीं आएगी।
1: अब कल तो आएगी ही, उसके बाद मना कर दूंगा, ठीक है?
0: कल भी नहीं।
1: क्यों?
0: मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगी।
1: अरे दरवाजा मैं खोल दूंगा, तुम कसमत करना, ठीक है?
0: क्यों, क्या वो तुम्हारी कुछ लगती है?
1: तुम तो बिल्कुल पागल हो, लगती है। मेरी क्या लगेगी?

0: आइए आइए प्रेम दयाल जी, कैसे आए?
1: अपने बगीचे में इस बार अच्छे पपीते हुए हैं। मैंने सोचा सुमन बाबू को एक पपीता लेकर आऊं।
0: यह तो बहुत अच्छा किया, बहुत दिनों से मन कर रहा था पपीते का। सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफी मेहनत करते हो।
1: हाँ, ये लीजिए पपीता।
0: अच्छा
1: तो मैं चलता हूँ।
0: अरे ऐसे कैसे? बैठिए भाई, एक प्याला चाय पीकर जाइए। आप मेरे लिए पपीता लाए हैं और मैं भी सोच रहा था कि कोई आए तो चाय पीने का बहाना मिले। संगीता, संगीता
2: जी,
0: जल्दी से चाय बना दो, प्रेम दयाल आए हैं।
2: तो देख रही हूँ, महीने भर से सूरत नहीं दिखाई दी, आज पपीता लाया है तो जरूर कोई मतलब होगा।
0: संगीता, अरे संगीता अभी तक चाय नहीं बनाई।
2: हाँ हाँ, प्रेम दयाल पपीता लाया ना तो चाय जरूर पिएगा।
0: अरे क्यों, बिना मतलब पपीता नहीं ला सकता क्या?
2: सब हमारी तरह मूर्ख नहीं होते सुमन, देख लेना। बस अब भी कोई काम बताएगा वो।
0: अरे छोड़ो भी, कहाँ का खटराग ले बैठे, झटपट चाय बना दो। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ।

0: और सुनाइए प्रेम दयाल जी।
1: अरे और तो सब ठीक है, बस एक बात भूल गया, कल मेरा मुन्ना आएगा आपका कुछ समय लेने।
0: अरे तो इसमें कहने पूछने की क्या बात है, कभी भी आ जाए, उसका घर है और मैं नहीं मिलूंगा तो संगीता होगी या?
1: नहीं नहीं, मेरा मतलब है उसे आपसे कुछ पढ़ना है, परीक्षा सिर पर है ना, कल ढेर सारी समस्याएं सामने रख दी उसने, अब हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ मदद कर देना उसकी।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, भेज दीजिए।
1: अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्कार।
0: नमस्कार प्रेम दयाल जी।

0: कहा था ना मैंने कि बिना मतलब प्रेम दयाल कभी सूरत नहीं दिखाएगा। पिछले साल के 4 अमरूद भूल गए क्या?
1: ओफो, अब बच्चे को कुछ समझा दूंगा तो मेरा क्या घिस जाएगा संगीता। इस तरह कभी कभी पढ़ाता रहा ना तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अपने बच्चों के भी काम आएगा, है ना?
0: चलो हतो, मुझे ठिठोली अच्छी नहीं लगती।
1: क्यों?
0: यहाँ आकर घंटों सिर खपाता रहेगा, कहाँ मिलेगा मुफ्त का मास्टर, एक पपीता देकर 500 रुपए बचा लिए।
1: लो, फिर हिसाब किताब में उलझ गई। अच्छा बताओ, क्या सब्जी लानी है?
0: अब क्या हुआ, सब्जी का थैला तो हाथ में है और रुपए भी मैंने दे दिए थे।
1: अरे ये निरंजन है ना, बाहर मिल गया था मुझे, उसके बच्चे को कुत्ते ने काट दिया है, उसे अस्पताल पहुंचाना है।
0: तो क्या शहर में स्कूटर और टैक्सी वालों ने हड़ताल कर दी है? लेकिन नहीं, जब मुफ्त में सवारी मिलती है तो कौन जाए, कौन भाड़ा दे।
1: अरे इंसान को जो भी सहारा मिल जाए ना, उसका ही तो आसरा मिलेगा। अभी आता हूँ और ज्यादा देर नहीं लगेगी, फिर आके सब्जी ला दूंगा।
0: सब्जी नहीं होगी तो खाना नहीं बनेगा। उस निरंजन से कह देना होटल से कुछ लेकर बनवा देगा, स्कूटर के 5 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता।
1: तुम तब तक एक काम करना, दाल चावल चढ़ाओ ना, मैं लौट के आता हूँ ना भाई।
0: मैं क्या नहीं जानती उस कंजूस को, वहाँ 2 घंटे खड़ा रखेगा और फिर वापस भी तुम्हारे साथ आएगा। 4 महीने हुए, तब मैंने कहा था कि दौरे पर हर महीने हैदराबाद जाते हो तो मेरे लिए मोतियों की माला ले आना, उस दिन से आज तक सूरत नहीं दिखाई।
1: अब क्या कहूँ संगीता, तुम्हारी तो उल्टा सोचने की कुछ आदत ही है। अब उसे क्या परेशानी है, हमें क्या मालूम, एक बार रुपए देकर देखती तब पता पड़ता कि लाता था कि नहीं।
0: भली चलाई, माला के दर्शन तो दूर, रुपए भी हाथ से जाते। मैं कह देती हूँ कि उसे अस्पताल छोड़कर चले आना, नहीं तो मैं ताला लगाकर चली जाऊंगी।
2: अच्छा बाबा, अभी आता हूँ, तब तक दाल तो चढ़ाओ।

0: ढाबे पर क्यों जाओगे?
1: क्यों?
0: निरंजन के यहाँ जाओ, प्रेम दयाल के यहाँ जाओ, मिसेस वर्मा के यहाँ जाओ, बढ़िया खुशबूदार चाय मिलेगी।
1: बस मजा ही किरकिरा कर दिया इसने, क्या तीर मारा है।

0: क्या बात है, आज ऑफिस से आते ही चाय तैयार? अरे काफी खुश दिखाई दे रही हो, क्या बात है?
1: बात खुशी की है ना सुमन, छोटे भैया बहन कॉलेज की छुट्टियों में हमारे पास रहने आ रहे हैं। बाजार से कुछ सामान लाना पड़ेगा ना, सारी लिस्ट तैयार है।
0: और तुम भी तैयार हो है ना, लगता है तुम्हारी शादी हुए एक महीना भी नहीं हुआ है। हाय क्या जच रही हो, पर आज बाजार जाना नहीं होगा भाई।
1: क्या मतलब?
0: अरे मैं ठहरा मामूली इंसान एक ही काम कर सकता हूँ, या तो तुम्हारे साथ सामान खरीदने चलूं या तुम्हें लोगों की नजरों से बचाता फिरूं।
1: ये लो चाबी स्कूटर की ओर उठो, ज्यादा बातें मत बनाओ।
0: अरे चलता हूँ भाई, चलो।
1: अरे धीरे स्कूटर, धीरे चलाओ ना।
0: चिंता मत करो, मजा आ रहा है। अरे ये ले।
1: अरे सुमन सामने वाली गाड़ी। ये क्या हो गया, इनके सिर से तो खून आ रहा है। अरे कोई है?
2: क्या हुआ बाबू? अरे सुमन बाबू को चोट आ गई। अरे आप चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए, मैं संभालता हूँ। अरे टैक्सी, हॉस्पिटल ले चलो, सुमन बाबू को चोट आ गई।

0: चिंता की कोई बात नहीं है भाभी जी, अधिक चोट नहीं आई है, हेलमेट होने से बच गए।
1: ये घर कब आएंगे प्रेम भाई साहब?
0: अब कुछ दिन तो अस्पताल में रहना पड़ेगा, मरहम पट्टी हो गई है, इंजेक्शन भी लगा दिए हैं, अभी सो रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है भाभी जी।
1: मैं चलूंगी उनके पास।
0: क्यों नहीं, अरे आपको ही तो लेने आया हूँ मैं, एक बार आंख खुली थी तो आपको पूछ रहे थे, मुझसे कहा था कि आपको साथ लेकर सामान ले आए।
1: कोई बात नहीं, सामान फिर आ जाएगा, आप मुझे ले चलिए ना।

0: आइए भाभी जी, आइए।
1: चिंता की कोई बात नहीं है भाभी जी, हम सब लोग हैं ना। आप बिल्कुल आराम से बैठिए, डॉक्टर साहब थोड़ी देर में आने वाले हैं।
2: इनके खाने का क्या होगा, कुछ बताया डॉक्टर ने? मैं घर से बनाकर ले आऊंगी।
0: अब आप कहाँ जा सकती हैं भाभी जी, आप तो बस इनकी देखभाल कीजिए। खाने के लिए मैंने घर खबर पहुँचा दी है, आपका खाना भी आ जाएगा।
2: लेकिन इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी
0: भाभी जी? कष्ट में जो आनंद है वह आनंद में कहाँ, कभी किसी के काम आए इसी में प्रसन्नता है। पर वैसे ऐसा अवसर कभी ना आए, बस यही इच्छा है।
3: संगीता,
0: अरे लगता है सुमन बाबू जाग गए।
3: संगीता, आज शाम तक मैं चलने लायक हो जाऊंगा।
0: आज सामान लेने चलेंगे, पर कपड़े जरा हल्के पहनना।
2: जी, आप भी?
0: अरे क्या हुआ भाभी जी?
2: कुछ नहीं, ये यूं ही बड़बड़ा रहे हैं।
0: यहाँ कौन लाया था मुझे?
2: रामप्रसाद।
0: उसे टैक्सी के पैसे देने होंगे ना, लोगों का खाने का भी उधार हो गया है।

0: समझ में नहीं आता यह सब एहसान कैसे चुकाऊंगा।
1: बस अब चुप रहिए, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा सबक मिल गया है।

अभी आपने सुना नाटक अपने लिए जिए तो क्या जिए। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अंतरा करवड़े, संदीप दुबे एवं सिरिल जमरे।

अभी आप सुन रहे थे नाटक जिसका शीर्षक था अपने लिए जिए तो क्या जिए, और इसके लेखक एवं निर्देशक थे संदीप दुबे। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को। नमस्कार।

दोस्तों, रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सिस्टर गंगा रावत, एसएसपीएस। दोस्तों, अभी की सभा 8 से 9 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास, युग संचार और भक्ति गीत।

आइए साथियों, अब हम सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा जी।

0: हमारे सभी श्रोता मित्रों को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया के हमारे सत्य स्वर कार्यक्रम में जो एक मुलाकात कार्यक्रम होता है उसमें आज सादर आमंत्रित हैं मुरुड के डॉक्टर आर बी नामजोशी। नामजोशी साहब नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: मुरुड में आप रहते हैं, ये मुरुड है कहाँ, सबसे पहले तो ये बताइए।
1: मुरुड मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर है।
0: अच्छा।
1: अलीबाग से 50 किलोमीटर दूर है।
0: अच्छा।
1: और रायगढ़ जिले में है।
0: रायगढ़ जिले में है।
1: जंजीरा किला है ना उसके आसपास। मुरुड नाम के महाराष्ट्र में दो तीन ग्राम है।
0: अच्छा।
1: और ये जंजीरा के पास है इसलिए इसको जंजीरा मुरुड बोलते हैं।
0: अच्छा अच्छा। तो इस मुरुड, ये तो मतलब जंजीरा और ये तो सब समुद्र से घिरे हुए हैं चारों तरफ से।
1: हाँ, जंजीरा तो बिल्कुल घिरा है।
0: हाँ। और मुरुड
1: समुद्र के पास है।
0: समुद्र के पास
1: है, पास है। हाँ।
0: तो आपको समुद्र का गर्जन, उसकी लहरों की आवाज सब
1: सुनाई बिल्कुल सुनाई देती है।
0: हाँ।
1: और बारिश में तो बहुत अच्छी तरह से।
0: अच्छा।
1: यानी अगर आप पहले आएंगे तो रात में जाग उठेंगे आप।
0: अच्छा अच्छा।
1: क्या है, कैसी आवाज है?
0: अच्छा।
1: अरे समुद्र की आवाज है ऐसी।
0: अच्छा अच्छा। तो ये मुरुड आपका जाना कैसे हुआ, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं आप?
1: मैं पहले पूना से रहने वाला हूँ।
0: हाँ।
1: मेरा शिक्षण भी पूना में हुआ, व्यवसाय की वजह से मैं मुरुड में आया था।
0: हाँ। आपने हमें ये जानकारी दी कि आप एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों का जो एक मिला जुला कोर्स या प्रशिक्षण होता है उसमें आपने डिग्री प्राप्त की है।
1: हाँ।
0: तो आप ये दोनों तरह की प्रैक्टिस अपने मरीजों की उपचार में करते हैं?
1: करते हैं, करता हूँ मैं।
0: अच्छा। ये कहाँ से किया कोर्स आपने?
1: मैंने पूना से किया।
0: पूना से किया। तो पूना छोड़ना क्यों पड़ा आपको?
1: पूना में हमारा घर था लेकिन रास्ता बंद रहा था, वो चौड़ा हो रहा था इसलिए आजू बाजू के घर तोड़े गए। उसमें हमारे 8 कमरे थे, उसमें 7 कमरे हमारे तोड़े गए, इसलिए पूना छोड़ना पड़ा। और मेरे रिश्तेदार के सलाह के वजह से मैं मुरुड में आया।
0: अच्छा। और मुरुड में आके आपने अपना दवाखाना खोला होगा?
1: हाँ बराबर।
0: तो इस दवाखाने में आप अभी भी बैठते हैं?
1: हाँ जी।
0: कितना समय बैठते हैं?
1: सुबह में 9:30 से 1 बजे तक, शाम में 4:30 से 8 बजे तक।
0: अच्छा। दोनों तरह की दवाएं देते हैं आप, एलोपैथी?
1: हाँ,
0: और
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कोई ऐसा प्रसंग याद आता है जिसमें कि जो कि बहुत हृदय विदारक हो?
1: एक तो बहुत ही हृदय स्पर्शी प्रसंग है।
0: हाँ।
1: और मुझे उसका दुख भी होता है कि रूढ़ी से हमारा समाज कैसा बंधा है।
0: हाँ।
1: एक औरत बीमार थी।
0: हाँ।
1: 10-15 दिन पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, कम ज्यादा हो सकते 10 या 7-8 दिन।
0: हाँ।
1: और खून की बहुत कमी थी उसमें।
0: हाँ।
1: इसलिए उसका असर उसके हृदय पर हुआ था।
0: हाँ।
1: उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी।
0: हाँ।
1: और मुझे विजिट पर बुलाया गया था, मैं उसके घर गया था।
0: हाँ।
1: और उसको नस में से दवा देनी थी इसलिए उसके पास तो बहुत औरतें खड़ी थी।
0: हाँ।
1: मैंने एक औरत को बोला कि जरा आकर उसके हाथ पकड़ो नस में दवा देने।
0: हाँ।
1: तो कोई भी औरत आगे नहीं आई।
0: हाँ।
1: क्योंकि उनका मानना था कि वो अभी इसने बच्चे को जन्म दिया है तो उसको छूना नहीं।
0: हाँ हाँ।
1: मुझे बहुत बुरा लगा कि उसकी जान निकल रही है।
0: हाँ।
1: उसको मदद करना यानी परमेश्वर का काम है, फिर भी कोई उसको हाथ पकड़ने को भी तैयार नहीं है। मैं अभी तक वो भूल नहीं सकता।
0: अच्छा। ये बताइए कि आपके पास तो हर तरह के मरीज आते होंगे, तो एलोपैथी और आयुर्वेदिक जो दवाइयां होती हैं उसमें आप ज्यादातर क्या उपयोग में लाते हैं? वैसे तो केस देख करके ही ये तय करना पड़ता है, लेकिन आप क्या करते हैं?
1: दोनों तरह की मैं दवाएं इस्तेमाल करता हूं। लेकिन जो बीमारियां देर तक चलने वाली है उसमें ज्यादा से आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल करता हूं। क्योंकि ज्यादा देर तक अगर एलोपैथिक दवा इस्तेमाल करे तो उसके बुरा असर हो सकता है, इसलिए
0: तो उससे थोड़ा आराम भी रहता होगा, नुकसान नहीं होता।
1: नुकसान नहीं होता।
0: चलिए एक बात और बताइए, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि आपका मुरुड जो है ये समुद्र से लगभग जुड़ा ही हुआ है, तो मछुआरों की बस्ती होगी यहाँ तो?
1: करीब 30-40% तो है।
0: तो मछुआरों को तो बड़ा संघर्ष करना पड़ता है।
1: बराबर।
0: तो उसके बारे में
1: उनके जीवन में बहुत अनिश्चितता है।
0: अच्छा।
1: और हमें मछुआरों के जो नेता है उन्होंने एक बात कही थी और मुझे बहुत वो अच्छी लगी। हाँ। यानी समझने को और समझाने को।
0: हाँ।
1: कि मछुआरे की जो औरत रहती थी पहले।
0: हाँ।
1: पुराने जमाने में।
0: हाँ।
1: वो सिर्फ एक हाथ में चूड़िया डालती थी।
0: अच्छा।
1: और उसको पूछा कि एक हाथ में चूड़िया क्यों?
0: हाँ।
1: तो दूसरे हाथ की चूड़िया हमने समुद्र को दी है।
0: समुद्र को दी है।
1: हाँ। यानी इतना हमारे जो
0: मछुआरे लोग।
1: हाँ, मछुआरे है।
0: हाँ।
1: उनका जीवन इतना अनिश्चित है कि वो वापिस आएगा या नहीं।
0: हाँ, हाँ।
1: इसका हमें हमेशा डर रहता है, इसलिए समुद्र को अर्पण किए है ऐसा।
0: अच्छा। ये मछुआरों के भी बीमार आपके पास आते होंगे?
1: आते हैं।
0: तो आप फिर किस तरह से इनका उपचार करते हैं? गरीबों की मदद। हाँ। करना आपका उद्देश्य रहा है जीवन में?
1: हाँ, बिल्कुल रहा है। अभी मैंने करीब 35 साल मैं दवाखाना चला रहा हूँ, एक भी ऐसा पेशेंट को मैंने बोला नहीं कि तुमने पैसे नहीं लाए तो पहले पैसे लाओ फिर दवा लो, कभी नहीं। और पूछता भी नहीं मैंने कितने पैसे लाए हैं।
0: अच्छा।
1: अगर नहीं दिए तो भी ठीक है।
0: वाह, बहुत अच्छी बात है। ये एक प्रेरणा की बात है श्रोताओं। और अब ये बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में पत्नी है मेरी, उर्मिला नाम है उसका, बीए किया है। मेरा बेटा है, वो कंप्यूटर इंजीनियर है, अभी इन्फोसिस में है। और मेरी बहू है, उसने कथक में विशारद किया है।
0: अच्छा अच्छा। तो जब इस तरह का वातावरण है तो आपको भी संगीत में तो रुचि होगी ही होगी?
1: हाँ, मैंने संगीत सीखा है।
0: हाँ।
1: और कार्यक्रम भी किए हैं।
0: हमने ये भी सुना है कि आप मुरुड में भी कोई एक संगीत का आयोजन करते हैं हर।
1: हाँ,
0: साल।
1: बराबर।
0: उसके बारे में बताइए।
1: हाँ जी, मुरुड में खा साहेब अबीद हुसैन खा।
0: हाँ।
1: वो मुरुड संस्थान में थे।
0: हाँ।
1: और फिर वो मुरुड से इंदौर आए।
0: हाँ।
1: तो मुरुड में उनके जो शिष्य थे वामन राव भावे।
0: हाँ।
1: पंडित वामन राव भावे।
0: हाँ।
1: वो मेरे गुरु है।
0: हाँ।
1: और उनकी प्रेरणा से हमने खा साहेब अबीद हुसैन स्मृति संगीत मंडल निकाला है। और हर 13 दिसंबर को उनकी बरसी हम मनाते हैं। पहले 13 दिसंबर को मनाते थे, लेकिन अभी दिन छोड़कर।
0: तो उसमें आप कलाकार भी आमंत्रित करते हैं?
1: हाँ, बराबर।
0: अच्छा।
1: लेकिन हमारा जो बजट है यानी वो कम रहता है, इसलिए बहुत नाम वाले कलाकार तो नहीं बुला सकते, लेकिन गुणी कलाकार आते हैं हमारे यहाँ। और जो आते हैं वो क्या।
0: हाँ।
1: मिलने वाला है ये देख कर नहीं आते। हमारे यहाँ यशवंत जोशी आकर गए थे, केटी भटवड़ेकर आए थे, और सारंगी बजाते वो अनंत कुंटे जी आए थे।
0: हाँ।
1: ऐसे कलाकार आते हैं और नए कलाकार भी आए थे।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम एक मुलाकात, जिससे प्रस्तुत कर रहे थे स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा जी, और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वास मुंबई की। मित्रों, अभी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है कार्यक्रम युवा विकास का। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं कार्यक्रम युवा विकास, जिससे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वर्गीय माइकल होजस जी, और इनकी वार्ता का शीर्षक है आदर्श बराती, और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: युवा और विकास के अंतर्गत प्रस्तुत है बातचीत आदर्श बराती। लेखक और प्रस्तुतकर्ता माइकल हॉजिस। बातचीत में भाग ले रही हैं अपर्णा सिंह और माइकल हॉजिस।
1: युवा श्रोता साथियों को अपर्णा सिंह
0: और माइकल हॉजिस का
1: नमस्कार। तो माइकल जी, अपने युवा साथियों को हम बताते चले कि आज हम उनके लिए किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, ताकि वे हमारी बातचीत को तन्मय होकर सुन सकें। तो अपर्णा जी, सभी को पता है कि सभी लोग अपने त्योहार को खुशी खुशी और उल्लास के साथ मनाने के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। फिर उस त्योहार की खुशी और उल्लास आने वाले अगले त्योहार या अगले वर्ष उसी त्योहार तक उनके मन में एक उमंग जगाए रखते हैं और एक सुखद स्मृति के रूप में अपनी एक क्या कहते हैं छाप भी छोड़ जाते हैं।
1: लेकिन हमारी एक परंपरा ऐसी भी होती है जिसे व्यक्ति जीवन भर के लिए भूल नहीं पाता है और परंपरा को पूरा करने के उस अवसर को जीवन भर के लिए अपनी सुखद और कभी न भूलने वाली स्मृतियों के रूप में संजोकर रखना चाहता है और संजोकर रखता भी है। माइकल जी,
0: जी अपर्णा जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारी उस परंपरा का नाम है विवाह।
1: जी हाँ,
0: विवाह या शादी किसी भी व्यक्ति के जीवन में सचमुच कभी न भूलने वाला एक अवसर ही होता है जिसका इंतजार हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में रहता है।
1: माइकल जी, मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि विवाह संपन्न होने का एक ऐसा अवसर होता है जिसमें आपके जाने बूझे और मिलने वाले लोगों के साथ साथ कुछ नितांत अपरिचित तो कुछ थोड़े बहुत परिचित लोग भी शामिल होते हैं।
0: जी जरूर।
1: और माइकल जी, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे माहौल में कभी कभी सब कुछ शांति से निपट जाता है और कभी तो जरा सी बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती।
0: जी जी।
1: और ऐसे में पूरा खुशी का माहौल और उल्लास का माहौल कसैला सा हो जाता है।
0: बिल्कुल अपर्णा जी, इसीलिए विवाह जैसे वातावरण में संयम, समझदारी और एक दूसरे से स्थिति से सामंजस्य जैसे व्यवहारों की अत्यधिक आवश्यकता रहती है, जिस कारण विवाह जैसी क्रिया को निर्विघ्न रूप से यानी बिना किसी रुकावट के हंसी खुशी के माहौल में ही संपन्न किया जा सके।
1: बिल्कुल माइकल जी, इसलिए आज हम अपने युवा साथियों से इसी विषय पर अपनी बातचीत के द्वारा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि विवाह जैसे आयोजन में भी युवा अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर चाहे वे किसी कार्य में संलग्न हों, किसी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हों या फिर वे किसी बारात में बाराती की भूमिका में ही क्यों न शामिल हो जाएं।
0: जी बिल्कुल। तो जब भी कहीं से किसी विवाह में विवाह समारोह में आने का निमंत्रण मिले तो सबसे पहले इस बात को निश्चित कर लें कि आपको बारात में भी जाने का निमंत्रण है या फिर केवल विवाह भोज में ही पधारने का निमंत्रण है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि कई लोग विवाह भोज के निमंत्रण को ही बारात में जाने का निमंत्रण समझ बैठते हैं और ऐसे में बिन बुलाए बाराती बनकर हंसी का पात्र बन बैठते हैं।
1: माइकल जी, आपने एक अहम बात बताई है। वाकई कुछ लोग ऐसा करते हैं और दूसरों की नजर में अपने आप को मजाक बना लेते हैं और दूसरों को अपने ऊपर हंसने का अवसर दे बैठते हैं ऐसे में।
0: अपर्णा जी, इसके बाद आता है वो अवसर जब वाकई में आपको बारात में जाने के लिए निमंत्रित किया गया हो।
1: जी,
0: इस स्थिति में आप अपनी सुविधा अनुसार बारात में जाने की योजना बनाएं। सुविधा अनुसार का मेरा मतलब ये है अपर्णा जी कि अगर आप कहीं नौकरी करते हैं
1: जी हाँ,
0: तो अपने काम और अपनी बाकी बची हुई छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए ही अवकाश के लिए आवेदन करें तो ही ठीक रहेगा।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि आपका अवकाश आवेदन स्वीकार किया जा रहा हो तो ठीक, अन्यथा आप आवेदन के लिए अपने अधिकारी से बहस या किसी प्रकार का विवाद न करें।
1: जी हाँ,
0: ये आपकी नौकरी में आपके भविष्य के लिए ठीक होगा।
1: और माइकल जी, यदि हमारे युवा अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो वे अपनी पढ़ाई को विघ्न न पहुंचाते हुए ही बारात में जाने की योजना बनाएं। अपने कार्य से या पढ़ाई से अवकाश इस तरह का लें कि बारात के साथ वापस आने के बाद आप एक दिन भरपूर आराम कर लें और बारात तथा सफर की पूरी थकान उतार सकें, क्योंकि अधिकतर लोगों को बारात में जाने पर थकान हो ही जाती है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर आखिर घर होता है और इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए।
0: जी हाँ अपर्णा जी, इससे फायदा ये होगा कि आप दूसरे दिन अपने कार्य पर या अपने स्कूल कॉलेज तरोताजा होकर जा सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: जिससे आप अपना पूरा मन अपने काम और अपनी पढ़ाई में लगा सकेंगे। क्या कहना है अपर्णा जी?
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपसे इसीलिए मैं पूरी तरह सहमत मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ माइकल जी, वरना बारात से आते ही कार्य पर या कॉलेज जाने वाले अलसाए से रहते हैं और अपने बारात से आते ही कार्य पर या कॉलेज आने का रोना रोते रहते हैं। और माइकल जी, इसके बाद बारी आती है बारात में जाने की तैयारी करने की।
0: और अपर्णा जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही जरूरी और एक खास बात है।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि साधारणता क्या होता है कि लोग सोचते हैं बारात में तो जाना ही है, बस दो जोड़ी कपड़ा रखो और निकल पड़ो।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे ही युवाओं की ऐसी सोच ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल भी ठीक नहीं है माइकल जी, क्योंकि आप कहीं शहर ही में तो जा नहीं रहे हैं अगर बारात में जा रहे हैं तो, बल्कि आप दूसरे और पराए शहर जा रहे हैं जहां आपको अपने घर जैसी सुविधाएं तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली हैं। और इसलिए स्वयं बाराती पूर्व से ही अपनी सुविधा जुटाने का प्रयास कर लें तो मेरे ख्याल से उन्हें बारात में किसी प्रकार से मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
0: जी हाँ, और इसके लिए पहले तो वे अपने साथ कम से कम और केवल जरूरी काम आने वाली चीजें ही रखें।
1: जी हाँ,
0: जैसे एक जोड़ी स्लीपर, दो जोड़ कपड़े, एक चादर, और युवा अपना शेविंग सेट, ब्रश, टूथपेस्ट, कंघी तेल वगैरह आदि।
1: जी हाँ,
0: और युवतियों को चाहिए कि अपने मेकअप का सामान आदि भी वे रख लें ताकि उन्हें वहां जाने पर ये चीजें किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े,
1: माइकल जी,
0: ना होना पड़े।
1: और इसके अलावा यदि कोई दवाइयां वगैरह, जैसे अगर किसी की तबीयत खराब है वगैरह, तो आप ले सकते हैं आवश्यकता अनुसार। अपने साथ इसलिए रखना चाहिए क्योंकि दवाई ले जाने से उसकी जरूरत
0: पड़ सकती है,
1: पड़ती ही रहती है, क्योंकि वहां पर तबीयत भी खराब हो सकती है। जहां आप बाराती बनकर जा रहे हैं वहां आपको ये दवाइयां न मिले, ऐसा भी हो सकता है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि कपड़े रखते समय मौसम का भी ध्यान अवश्य रखें और मौसम के अनुरूप ही अपने जरूरी कपड़े आप रखें।
0: हाँ, पढ़ना जी, अब जो सबसे जरूरी और सबसे खास बात है वो ये कि बाराती बनकर जाने से पूर्व आगे सामने आने वाली किसी भी अव्यवस्था के लिए अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर लें।
1: जी हाँ।
0: वरना कहीं ऐसा न हो कि कहीं भी जरा सी असुविधा से युवा हताश हो जाए।
1: जी हाँ।
0: और आनंद और आमोद प्रमोद का समय तनाव और कुंठा में ही भी,
1: और अक्सर ऐसा देखा गया है माइकल जी कि बारात में अक्सर ऐसा होता है कि तनाव और कुंठा लोगों में आ जाती है क्योंकि सुविधाएं आसानी से नहीं मिलती हैं।
0: बिल्कुल, तो इस वजह से वो बारात आपके लिए कड़वी स्मृतियों का एक ढेर मात्र बनकर न रह जाए। और भविष्य में आप कहीं भी किसी की भी बारात में बाराती बनकर जाने से तौबा कर लें, ऐसा ना हो।
1: आपने एक बहुत अच्छी बात कही है माइकल जी, क्योंकि बारात जैसे एक बड़े और जिम्मेदार आयोजन में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी या तो रह जाती है या फिर स्थितिवश पैदा हो जाती है। इसलिए जाने से पूर्व अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर लेने का लाभ ये होगा कि आप परिस्थितियों के अनुसार अपना उनसे सामंजस्य बैठा पाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: और ये कह सकते हैं कि वातावरण का भरपूर आनंद भी उठा पाएंगे।
0: जी अपर्णा जी, और बस के या ट्रेन के तय स्थान और तय समय के अनुसार ही सही जगह पर सही समय पर पहुंचे, वरना आपके देर से पहुंचने पर बारात के निर्धारित समय पर निकलने का कार्यक्रम अव्यवस्थित हो सकता है और उसका दोष अप्रत्याशित रूप से आप पर भी लगाया जा सकता है।
1: और माइकल जी, आपने बिल्कुल ये बात सही कही है, क्योंकि कुछ लोग अपना महत्व जताने और बताने के लिए सही समय पर न पहुंचकर लोगों से अपना इंतजार करवाते हैं। उनकी ये मानसिकता उन्हें लोगों की आलोचनाओं का शिकार भी बनाती है।
0: जी, और समय पर पहुंचने के बाद आपका ये फर्ज बनता है कि आप आपके लिए निर्धारित किए गए स्थान पर ही अपना आसन जमाएं, अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि हो सकता है आप अपनी मर्जी से जहाँ बैठ जाएं वो जगह किसी और के लिए आरक्षित की गई हो।
1: और माइकल जी, वैसे तो बारात के आयोजकों द्वारा सभी बारातियों का एक दूसरे से सामान्यतः परिचय तो कराया ही जाता है, लेकिन फिर भी यदि किसी कारणवश आप परिचय से वंचित रह जाएं, तो इस बात को अन्यथा न लें आप, क्योंकि स्वयं ही आपको ऐसे में करना चाहिए कि आगे बढ़कर शालीनता से अपना परिचय देकर अन्यों से उनका परिचय प्राप्त करना चाहिए।
0: अपर्णा जी, किसी भी बारात का रास्ता लंबा हो या छोटा, बाराती सारे रास्ते हंसी मजाक करते ही जाते हैं और सभी मजाक के हल्के फुल्के मूड में रहते हैं, विशेषकर युवा। इसलिए युवाओं को ऐसे समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए और वातावरण को जीवंत और हल्का फुल्का बनाए रखने में अपना भरपूर योगदान देना चाहिए, तभी तो वे अपने युवा होने को सार्थक कर पाएंगे।
1: माइकल जी, लेकिन यहाँ भी हमारे युवाओं को एक बात का ध्यान रखना होगा कि वे किसी से भी भरपूर हंसी मजाक करें,
0: जी
1: जैसा कि आपने कहा, लेकिन शालीनता की सीमा में रहकर।
0: बिल्कुल।
1: और उन्हें इस बात का ध्यान तो रखना ही होगा, वरना अशालीनता का बाण किसी को भी आहत कर सकता है और सफर का मजा ही नहीं बारात के बाकी का मजा भी किरकिरा कर सकता है।
0: इसके बाद आयोजकों की ओर से चाय नाश्ते या खाने आदि की व्यवस्था भी की जाती है। लेकिन किसी कारण यदि इस व्यवस्था में थोड़ी देर हो जाए या कोई कमी रह जाए तो उस पर हल्ला करने के बजाय शांत रहना चाहिए।
1: ये आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि हल्का फुल्का वातावरण बनाए रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए।
0: उसके लिए ये जरूरी है क्योंकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये किसी और के द्वारा की जाने वाली व्यवस्था है, हमारा घर नहीं है।
1: और माइकल जी, इसके अलावा नाश्ता खाना आदि के लिए किसी प्रकार की जल्दबाजी भी न तो करना चाहिए और न ही दिखाना चाहिए, वरना इससे लोगों को आपके बारे में आपकी राय कायम करने का मौका मिल जाएगा और आपको देखकर लोग आंखों ही आंखों में आपके बारे में बातें करने लगेंगे।
0: जी अपर्णा जी, बारात के निर्धारित स्थान पर पहुंचने के बाद भी युवा अपनी शालीनता को बनाए रखें। यदि बारात आपके मित्र की ही है तो बेवजह उसके सामने अपने स्वागत की या किसी और चीज की कमी का रोना न रोएं, न ही उससे की गई व्यवस्था के प्रति किसी भी तरह से भड़काएं या उकसाएं। लड़की वालों के यहाँ के किसी भी व्यक्ति पर बेवजह अपना रौब कायम करने का प्रयास न करें,
1: जो कि अक्सर देखा गया है कि ऐसा होता है, बाराती ऐसा करते हैं।
0: इससे भले ही आपका रौब जमे या न जमे, किंतु बारात में शामिल लोगों का चरित्र वधू पक्ष के लोगों को जरूर समझ में आ जाए।
1: और माइकल जी, घर में भी आपको जो चीज न मिलती हो ऐसी चीजों की फरमाइश कर वधू पक्ष को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें आप लोगों की व्यवस्था करने के अलावा और भी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और अलग काम भी करने रहते हैं, इसलिए उन्हें बेकार ही परेशान करने का किसी भी प्रकार से प्रयास नहीं करना चाहिए युवाओं को।
0: एक बात और अपर्णा जी, वधु पक्ष के सभी लोगों से भी बारातियों का परिचय कराया जाता है। यदि आप इस परिचय से वंचित हो जाते हैं तो मुंह न फुलाएं, क्योंकि विवाह होने से लेकर विदाई तक वैसे भी घराती और बाराती सभी एक दूसरे से परिचित हो ही जाते हैं।
1: जी हाँ,
0: रही बात मुंह फुलाने की, तो ऐसे मुंह फुलाने वालों से सभी लोग दूर रहना ही पसंद करते हैं।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा माइकल जी, वैसे भी जरा जरा सी बात पर मुंह फुलाने वाले को कोई भी नहीं पूछता है, क्योंकि उन्हें भी यही डर लगा रहता है कि न जाने किस बात पर उनसे भी मुंह न फुला ले कोई। वैसे भी ऐसे आयोजन या समारोह में किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो किसी को मनाता फिरे।
0: जी बिल्कुल। और अपर्णा जी, इसके उलट हंसी मजाक करने वाले और वातावरण को उल्लासमय बनाने वाले को सभी पूछते हैं।
1: बिल्कुल पूछते
0: सभी
1: हैं।
0: उसका साथ और उसकी निकटता चाहते हैं। विवाह समारोह भी एक हंसी मजाक और आनंद तथा उल्लास भरा कार्यक्रम होता है।
1: जी हाँ।
0: इसीलिए इस कार्यक्रम में जितना हंसी मजाक, जितना आनंद उल्लास होता है, उतनी ही इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है
1: माइकल जी, क्योंकि इससे कार्यक्रम में शामिल सभी व्यक्तियों का भरपूर मनोरंजन होता है। और यही तो वे क्षण, वे लम्हे होते हैं जब ये प्रत्येक शामिल व्यक्ति के मानस पटल पर अंकित होकर आजीवन मधुर स्मृतियों में बदल जाते हैं।
0: जी अपर्णा जी, जैसा कि इस कार्यक्रम के आरंभ में भी हम बता चुके हैं कि अव्यवस्थाओं के लिए हमें स्वयं को पूर्व से ही तैयार रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही।
0: इससे लाभ ये होता है कि ऐसे में यदि आपको साबुन, पानी, स्नानघर, शौचालय और सोने ठहरने आदि में किसी बात की कमी होती है तो आपको इनसे सामंजस्यता बैठाने में सरलता पेश आती है।
1: जी बिल्कुल। और आप ऐसी अव्यवस्थाओं को मन से स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि आप इन सबके लिए पहले से ही मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार थे,
0: इसलिए आपको इन सब का सामना करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती, क्योंकि इसके लिए आप पहले से तैयार थे।
1: जी बिल्कुल। और आप ऐसे में अव्यवस्थाओं को मन से स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि आप इन सबके लिए पहले से ही मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार थे, इसलिए आपको इन सब का सामना करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप पहले से तैयार थे इन सब बातों के लिए।
0: अपर्णा जी, विवाह के समय यदि वर और वधु पक्ष के बीच यदि किसी बात पर कोई विवाद हो जाए तो युवाओं को तैश में आने की बजाय चुप रहना और तटस्थ रहना चाहिए। उन्हें बड़े बूढ़ों को बात करने देना चाहिए और जहां तक हो सके दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी एक पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए।
1: सही कहा माइकल जी आपने, उन्हें किसी भी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल या फिर कुछ ही देर में दोनों पक्षों को सहमत होते देर नहीं लगेगी और ऐसे में आप बेकार ही मध्यस्थ की भूमिका निभाकर बुरे बनकर रह जाएंगे। इसलिए या तो चुप ही रहें ऐसे में, या फिर समझौता कराने का प्रयास करते रहें।
0: बिल्कुल अपर्णा जी, विषय हल्का हो चाहे गंभीर हो, पहले तो तटस्थ ही रहना चाहिए और यदि बीच में बोलना ही पड़ जाए तो समझौता ही कराने का प्रयास करना चाहिए। इससे लाभ ये होगा कि वधु और वर पक्ष दोनों ही आपकी दूरदर्शिता और समझदारी के कायल होंगे और आपकी समझदारी की प्रतिक्रिया के परिणाम सबको देखने मिलेंगे। दोनों ही पक्ष आपकी तारीफ करेंगे, इसीलिए ऐसे समय पर अपनी शक्ति का व्यर्थ प्रदर्शन करने के स्थान पर समझदारी से काम लेना चाहिए।
1: बारात के लौटते समय भी माइकल जी हंसी मजाक का ही माहौल होता है
0: जी,
1: और क्योंकि परिवार के एक नए सदस्य के रूप में वधु साथ होती है। और आशा है हमारे युवा साथियों ने हमारी आज की बातचीत को भी ध्यानपूर्वक सुना होगा और वे उस पर अमल भी करेंगे।

मित्रों, अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा विकास, जिससे प्रस्तुत कर रहे थे स्वर्गीय माइकल होजेस जी, और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वास मुंबई की।

0: मित्रों, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वास मुंबई की। साथियों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार, जिससे प्रस्तुत कर रही है आस्था उपमन्यु और इनकी वार्ता का शीर्षक है इतिहास संचार माध्यमों के विस्तार का, और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
1: युग संचार के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है वार्ता इतिहास संचार माध्यमों के विस्तार का। इसके लेखक हैं श्री कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता हैं आस्था उपमन्यु। वे थोड़ी बड़ी उम्र के व्यक्ति थे, विद्वान थे, उन्होंने वर्षों अध्यापन कार्य किया था। अपने मित्र के हाथों मोबाइल देखकर वे बोले, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम ऐसी युग सीमा पर आकर खड़े हो जाएंगे जिसमें संचार क्रांति शिखर छू रही होगी। मैं देख रहा हूं मेरे देश के 100 में से 40 हाथों में आज मोबाइल है। ये संचार क्रांति का लगातार विस्तार ही तो है। फिर हर दिन संचार क्षेत्र में कुछ नया घटित हो रहा है, बहुत कुछ नया आता जा रहा है। संचार क्षेत्र में अब बहुत कुछ है कि जिसका उपयोग है, और वो उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। वे फिर बोले, भला ये बात कैसे भूली जा सकती है कि हमें सूचना चाहिए, समाचार चाहिए, ज्ञान चाहिए, विज्ञान चाहिए। विश्व में जो कुछ भी हो रहा है, घट रहा है, उसका विवरण, उसकी जानकारी चाहिए। इस संसार में जो कुछ नया हो रहा है, उस विषयक जानकारी भी चाहिए। ये सब कुछ ये संचार माध्यम आपको दे देंगे। विशेष दिशाएं दी हैं, हाँ ये सब ठीक है, लेकिन संचार माध्यमों के विस्तार का अपना एक विशेष इतिहास भी है जिसे जानना जरूरी है। कभी दो ऋषियों के बीच संवाद हुआ था। एक ने पूछा, सूर्य, चंद्र, तारे और अग्नि आदि की अनुपस्थिति में तुम किसके सहारे अपने अस्तित्व की रक्षा करोगे? तो उत्तर मिला, ध्वनि के माध्यम से। हम अपने अस्तित्व की रक्षा करेंगे, अपने होने का आभास देंगे, बताएंगे कि हम हैं, अपने से, अपनों से संवाद करेंगे। क्या ये प्राचीन युग का संवाद संचार माध्यम का ही एक रूप नहीं है? लेकिन आज जितने भी संचार साधन हैं, वे मानव समाज के आवश्यक अंग बनते चले जा रहे हैं। आज उन्हें नकारना मुश्किल है। उनके बिना आज व्यक्ति और समाज दोनों का ही काम नहीं चलता। पर हम इस बात को भी नहीं भूलें कि पुराने जमाने में भी संचार माध्यमों का अपना रूप, अपनी विधाएं थीं, उनका अस्तित्व था। हर युग के हर मनुष्य समाज ने, चाहे वे किसी भी स्थिति, किसी भी युग में रहे हों, उनका किसी न किसी रूप में इस्तेमाल किया है। साथियों, बात लगभग 50 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। तब मैं एक आदिवासी अंचल के, जहां एक तरह से लोग पुराना, कुछ कुछ आदम सा जीवन जीने को विवश थे, उसी पर्वतीय घाटी में एक छोटी विरल सी बस्ती थी, जहां कुछ दूर दूर थोड़ी बहुत झोपड़ियां थीं, समीप ही एक भली सी नदी बहती थी। नदी के किनारे ग्रेनाइट पत्थर वाली एक स्याह चट्टान थी। सूर्य की धूप में उसका स्याह रंग और भी गहरा नजर आ रहा था। वो चट्टान अपनी स्थिति में बहुत ही सुंदर लग रही थी। वहां के एक निवासी से मैंने पूछा, ग्रेनाइट की ऐसी सुंदर चट्टान मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इस पर उस भाई का उत्तर था कि ये चट्टान हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हाँ, ये सही है, ये इस धरती की शोभा है, लेकिन इस चट्टान में प्राकृतिक रूप से एक गूंज है। आप देख रहे हैं कि इस चट्टान के आसपास कुछ पत्थर हैं। इन गोल पत्थरों से जब हल्के से इस चट्टान पर प्रहार किया जाता है, तो हर प्रहार पर इससे तरह तरह की ध्वनियां निकलने लगती हैं। और उस भाई ने चट्टान पर पत्थर से प्रहार किया और उससे गूंज निकलने लगी। वो गूंज दूर तक सुनाई देने लगी थी। इस पर फिर उस व्यक्ति ने कहा, यहां तक कि कोई दो कोस यानी 5-6 किलोमीटर दूर तक, अर्थात जहां तक इस गांव की झोपड़ियां बसी हैं, इसकी गूंज सुनाई देती है। जब भी इस चट्टान पर प्रहार से स्वर गूंजते हैं, लोग सजग हो जाते हैं, लोग उसे चेतावनी के रूप में लेते हैं। और मुझे आश्चर्य हुआ, उस चट्टान से अपनी गूंज के जवाब में दूर दूर से इंसानी आवाजें गूंजने लगी थी। और मुझे लगा ये इस गांव का अपना एक संचार माध्यम है। उस व्यक्ति ने ये भी बताया कि इस चट्टान में ये गूंज इसलिए है कि ये अंदर से खोखली है, वही इसकी गूंज का कारण है। और ये सुनकर मुझे याद आया जिस तरह तालवाद्यों सूखे खोखले बड़े बड़े पेड़ों के तनों पर प्रहार करते हैं, तो उनसे भी इसी तरह की स्वर तरंगें निकलती हैं। उसके बाद उन्हीं महाशय ने फिर कहा, इसी तरह बात वर्षों पुरानी है। मेरे अपने एक मित्र हैं, पुरातत्व और इतिहास में उनकी अपनी विशेष रुचि है, पुरातत्विक खोज में भी उनकी विशेष प्रतिष्ठा है और वे लेखक भी हैं। उनके कुछ ऐतिहासिक रिसर्च पेपर भी प्रकाशित हो चुके हैं। एक बार मैं उनसे वहां मिला जहां उनका पुरातत्व संग्रहालय है। उनके दल ने एक प्राचीन नगर से कुछ दूरी पर स्थित एक टीले की खुदाई की थी। उसमें निकली कुछ वस्तुओं को उन्होंने मुझे बताया था। उसमें एक सुंदर बर्तन था जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर छोटी छोटी खिलौने सी आकृतियां बनी थी। उन्होंने मुझे बताया कि हम अभी भी खोज रहे हैं, आखिर ये है क्या। मैंने कुछ सूत्र खोजे, कहीं ये बर्तन पर अंकित आकृतियां किसी गुप्त संदेश को भेजने के काम में तो नहीं आती थी, कहीं ये खिलौना आकृतियां कोई चित्रलिपि तो नहीं है। देखो इस पर अंकित इस खिलौने की आकृति, ये मनुष्य के सिर वाला वृषभ, इसी तरह इस आड़ी टेढ़ी रेखा के बीच फंसा उल्लू नुमा पक्षी, एक मनुष्य आकृति के हाथ में बाज है न सभी आकृतियां विचित्र। खैर अभी हम सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं, पर लगता है ये एक विशेष चित्रलिपि में भेजा कोई प्राचीन संदेश है। पर हाँ, मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि जिस टीले की हमने खुदाई की थी वो एक प्राचीन ध्वंस राजमहल ही था। खुदाई में हमें उसके चारों ओर एक परकोटा था, वो भी मिला। संभवतः वह ईसा के 500 वर्ष पूर्व का निश्चित ही रहा होगा। हो सकता है कल जाकर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस तरह के चित्रांकित बर्तन राजा के अधीनस्थों को गुप्त संदेश भेजे जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हों। अगर हम इसे बहुत गौर से देखें तो प्राचीन मिस्र देशों में जिस तरह की चित्रलिपि प्रचलित थी उससे ये बहुत कुछ मिलती जुलती और कुछ कुछ समान धर्मासी है। मित्र ने फिर कहा, प्राचीन युग में कुछ ऐसे ही विचित्र संचार माध्यम रहे होंगे जिनके माध्यम से इधर से उधर संदेश भेजे लाए जाते होंगे। कई जगह ऐसी कुछ विचित्र परंपराओं का पता चला है जिनका पुराने जमाने में इस्तेमाल किया जाता था। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आज के विद्वान भी ये बात स्वीकार करते हैं कि प्राचीन ऐतिहासिक युग में ही नहीं बल्कि प्राग ऐतिहासिक युग से ही मानव की ये आकांक्षा रही है कि संचार के नए से नए माध्यम, नए से नए साधनों का विकास किया जाए और उनका सही रूप में इस्तेमाल भी किया जाए। इसलिए निश्चित रूप से उस समय भी संचार की विभिन्न विधाएं खोजी गई होंगी। अगर हम आदिम युग के मनुष्यों द्वारा पाषाणी गुफाओं में जहां वे अपने समय में निवास करते थे, उन्होंने वहां जो रेखाचित्र बनाए थे वे आज भी मिलते हैं, उन्हें देखकर स्पष्ट लगता है उन्होंने वे शिलाचित्र इसलिए बनाए कि उनमें उनका जीवन, उनकी जीवन शैली स्पष्ट नजर आए। क्या आप इसे उनका चित्रांकित इतिहास नहीं कहेंगे? सिर्फ उस आदिम युग की गुफाओं की अगर हम बात न करें तो भारत के कई भूभागों में हमें पहाड़ी कंदराओं में ऐसे शैलचित्र देखने को मिल ही जाएंगे। उन शैलचित्रों को देखकर हम उन भूभागों की प्राचीन जो शैली रही होगी या प्राचीन जो संस्कृति रही होगी उसको बहुत ही आसानी से पहचान सकेंगे। और इन शैलचित्रों में कई तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीप लाल घाटी के शैलचित्र हैं तथा होशंगाबाद मध्य प्रदेश के समीप भीमबेटका, जहां कई कई गुफाओं में आदिम मानव की ये महत्वपूर्ण चित्रकला देखने को मिल जाएगी। साथियों यही नहीं, वे और भी कई जगह हैं और इन शैलचित्रों से जाहिर सी बात है एक तरह से हमें सूचना ही मिलती है कि उस समय का इतिहास क्या रहा होगा, उस समय की संस्कृति क्या रही होगी। और जाते जाते अंत में उन मित्र महोदय ने मुझे ये भी कहा कि मैं तुम्हें एक खास बात बताना भूल गया। अभी कुछ ही वर्षों पहले मैं उस स्फटिक शिला वाले गांव में गया था। तब वो गूंजती और स्वर देती स्फटिक शिला वहां नहीं थी। गांव का रूप भी काफी बदल गया था। मैंने वहीं उस ध्वंस शिला के पास खड़े वहां के एक निवासी से उस शिला के बारे में पूछा तो बड़ी ही बेध्यानी में उसने कहा कि अब उस शिला की यहां कोई जरूरत नहीं। मैं अवाक सा उसे देखता रहा और ये कहते ही उसकी जेब का मोबाइल बजा और मोबाइल से बतियाता हुआ वो मुझसे दूर चला गया।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मन दर्पण और अंत में पर्यावरण। तो आइए साथियों, समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता जिसका शीर्षक है धर्म और नारी की मुक्ति, और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं फादर हरमन बंडोड SVD।

सर्व धर्म विचार के तहत लीजिए सुनते हैं वार्ता जिसका शीर्षक है धर्म और नारी की मुक्ति। प्रिय श्रोता मित्रों नमस्कार। नारी की मुक्ति के यथार्थ को झुठलाने के लिए सबसे ज्यादा धर्म और अध्यात्म का इस्तेमाल किया जाता है। मामला चाहे स्त्री का हो या दलित का या हाशिए पर की अन्य अस्मिताओं का। यहाँ कहा जाता है कि काशी का राजा डोम था। उत्तर प्रदेश में ही विंध्यवासिनी देवी की पूजा की जाती है। दरअसल जब से स्त्री की सत्ता छीनी गई तब से उसकी पूजा की जाने लगी। पूर्वोत्तर भारत में आज भी कई जगहों पर मातृसत्तात्मक समाज है, लेकिन अन्य पूरे भारत का समाज पितृसत्तात्मक है। यहाँ आज भी कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और खा पंचायतों द्वारा प्रेम करने पर स्त्रियों की जान ले ली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही समाज दुर्गा की भी पूजा करता है। यथार्थ यह है कि स्त्रियों की स्थिति यहाँ अच्छी नहीं है। स्त्री सशक्तिकरण पर विचार करते हुए हमें पितृसत्तात्मक समाज की स्थापना पर गौर करना चाहिए। यूनानी समाज में एडिपस की जीत पितृसत्तात्मक समाज की जीत मानी जाती है। इस समय स्त्री पर ज्यादा जोर इसलिए दिया जाता रहा है कि पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था के सामने कई तरह की अस्मिताएं आ खड़ी हुई है। अस्मिताओं के बटे समाज में जातियों धर्मों आदि के टुकड़े करने पड़ेंगे। भारतीय समाज की संरचना यूरोप से भिन्न है, इसलिए यहाँ यूरोप की तरह सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच समाज को बांटकर नहीं देखा जा सकता। दलित कहाँ जाएंगे, आदिवासी कहाँ जाएंगे, हाशिए पर की कई और अस्मिताएं कहाँ जाएगी। लिंग भेद भारत का अकेला मसला नहीं है, इसके साथ और भी कई गंभीर मुद्दे हैं। यह सच है कि भारत की स्त्रियां आज घर से बाहर निकल रही है, लेकिन वह शिकार भी हो रही है। रॉबर्ट जेनसेन की बहुत चर्चित किताब गेटिंग ऑफ पोर्नोग्राफी एंड दी एंड ऑफ मैस्कुलिनिटी में उन्होंने माना है कि भूमंडलीकरण के बाद विज्ञापन बाजार और नव साम्राज्यवादी आचरण के पीछे सबसे पहला मुखौटा स्त्री का है। रॉबर्ट जेनसेन बाजारवादी नारीवाद को ग्लोबल पोर्न इंडस्ट्री का ही विस्तार मानते हैं। स्त्री मुक्त आंदोलन के इस रूप में 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों तक चलने वाले उस स्त्री स्वाधीनता संग्राम के साथ जोड़ पाने में कई बार मुश्किल होती है, जिसमें स्त्री ने समाज के दलित और वंचित तबकों की मुक्ति का सपना देखा था। इस संदर्भ में देखें तो हमारे सामने क्लारा जेटकिन, क्रुप्सकाया, लेनिन की बीवी, एरन गुर, सिमोन द बाउवार, कैट मिलन और भारत में कस्तूरबा से लेकर बहुत सारी महिलाएं थी, और आज भी मेधा पाटकर, वंदना शिवा, अरुंधति राय, सुनीता नारायण, आंग सान सूची, इरोम शर्मिला आदि ऐसी महिलाएं हैं जो आज की सत्ता के विरुद्ध समूचे मानवीय समाज की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही हैं। इन्होंने कभी लिंग भेद का नारा नहीं दिया, इनका कोई गॉडफादर नहीं है। दरअसल भारत में स्त्री मुक्ति का सवाल हाशिए पर के कई अन्य समूहों की मुक्ति से जुड़ा हुआ है। स्त्री को मुक्त करते हुए हमें पूरे समाज को मुक्त करना होगा। यह सच है कि यह शताब्दियों से सबसे उत्पीड़ित अस्मिता रही है, और जब तक यह ऐसी अन्य अस्मिताओं को साथ नहीं लेती तब तक वह बाजार और अन्य पितृसत्तात्मक सत्ता का लाभ लेकर भले ही लाभ उठाए, यह एक खास वर्ग का ही सत्तारोहण होगा, स्त्री की मुक्ति का नहीं। इस बात को जनता समझ चुकी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विजय लक्ष्मी पंडित से लेकर इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर और सोनिया गांधी तक, जयललिता से लेकर मायावती तक और भंडार नायके से लेकर शेख हसीना वादी तक सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाली महिलाएं स्त्री नहीं बल्कि पुरुष सत्ता की ही प्रतीक रही है, और यही बात संस्कृति और साहित्य में भी लागू होती है। ये गॉडफादर्स की सत्ताएं थी और है, माँ की सत्ता की प्रतिष्ठा कभी नहीं हुई। फासीवाद के बाद सबसे ज्यादा दमन फॉकलैंड वार में मार्गरेट थैचर ने किया। इंदिरा गांधी ने भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार इमरजेंसी लागू किया और लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी। बेगम खलीदा जिया ने
बांग्लादेश में फौजी शासन लागू किया। मित्रों, आज हमारे लिए लिंग भेद की निगाह से सत्ता को देखना कभी सुकूनदेह नहीं है, क्योंकि मान्यताओं का मूल्यांकन माने रखता है। मित्रों, यह भारत ही है जहां अर्धनारीश्वर की परिकल्पना की गई थी, जिसे पश्चिम ने 21वीं शताब्दी में जाकर समझा। भारत में स्त्रीवादी आंदोलन ने अपनी एक नई और अलग पहचान बनाई है। पश्चिम के नारीवादी आंदोलन की तरह यह पुरुष विरोधी नहीं है। दरअसल नारी मुक्ति का विद्रोह उस व्यवस्था का विद्रोह है जो नारी विकास की राह का रोड़ा है, और विडम्बना यह है पुरुष ही भारतीय स्त्री का सबसे घनिष्ठ मित्र है, तो शोषक भी। बाल विवाह, सती प्रथा, शिक्षा की उपेक्षा, देवदासी प्रथा जैसी परंपराओं के विरोध में नारी स्वर को पुरुष समाज के एक बड़े वर्ग ने अपना समर्थन दिया। परिणामतः हालात बेहतर हुए। दिल्ली समूह बलात्कार कांड से देशव्यापी आंदोलन ने समाज को एक नई बहस छेड़ने के लिए प्रेरित किया है। परिणामतः समाज की कई ऐसी परंपराएं भी सामने आई जो नारी को गुलाम और निष्कर्ष सा जीवन जीने को विवश करती है। बिहार में सामंती युग में सद्य ब्याहता बहू को पहले गांव के सामंत के यहाँ जाना होता था। सामंत उसका जी भरकर भोग करता था, तभी नववधू अपने पति के पास जाती थी। जाहिर है यह शोषण सिर्फ स्त्री का नहीं बल्कि दास रूपी पुरुष समाज का शोषण था। इस विषय ने भी महिला आंदोलन को हवा दी, जिसे पुरुष वर्ग का पूर्ण समर्थन मिला। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महिलाओं को राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिली, किंतु उनके सामाजिक बंधन यथावत ही रहे। विडम्बना तो यह है कि पुरुष स्त्री को एक बार आदरणीय मान भी ले तो फिर स्त्री उसके समकक्ष पशुतुल्य ही होती है, जिसे जब चाह उत्पीड़ित कर दिया। और यही वो उन्माद है जो फासिस्ट और सांप्रदायिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका ही विभत्स चेहरा सांप्रदायिक दंगों में अधिक दिखाई देता है। सर्वप्रथम स्त्री ही उत्पीड़न का शिकार बनती है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगों के दौरान स्त्री वर्ग को भी धर्म और जाति के नाम पर बांट दिया जाता है। और वह यह समय होता है जब स्त्री का नारी मुक्ति आंदोलन धर्म और जाति के नीचे दबकर रहता है। पर धर्म स्त्री का शील भंग करना उन्मादियों को पौरुष का प्रतीक लगता है। जब नारीवादी आंदोलन नारी चेतना आंदोलन का रूप ले चुका है, आज नारीवादी आंदोलन नारी चेतना आंदोलन का रूप ले चुका है और वह काफी आगे भी निकल चुका है। आज नारी की उग्रता, प्रतिस्पर्धा, स्वतंत्रता, हिंसक व्यवहार को शस्त्र बनाकर सफलता हासिल करने और पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रही है। यही शक्ति पर आधारित नारीवाद कहलाता है। इतिहास गवाह है कि भिन्न भिन्न देशों की महिलाओं को जब भी मौका मिला, उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा युद्ध क्षेत्र में अपनी योग्यता का प्रमाण दिया है। इतना ही नहीं, आधुनिक नारी ने समाज में नई अर्थव्यवस्था में न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि अपने सम्मान और अधिकारों के प्रति सजग हुई। इतना ही नहीं, वर्तमान समय में स्त्री स्वच्छंद और उन्मुक्त भी हुई है। अब वह सेक्स पर अपना अधिकार समझती है। आज उसकी इच्छा सर्वोपरि है। सत्ता व धन हासिल करना अब उसका भी लक्ष्य बन चुका है। उसके व्यवहार में हिंसा व आक्रामकता का समावेश हो चुका है। नारी मुक्ति आंदोलन ने महिलाओं की सोच को भी परिवर्तित किया है। अब नारी सशक्तिकरण का मूल्यांकन स्त्री पुरुष के बीच सिर्फ संतुलन कायम करना नहीं बल्कि समान भागीदारी पाना व शोषण व दकियानुषी बंधनों से मुक्त होना है। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था धर्म और नारी की मुक्ति, और इसे प्रस्तुत कर रहे थे फादर हरमन बंडोड SVD। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं सभी नारियों के लिए विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, आप सभी सही समझ रहे हैं कि मैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए सहेलियों, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है नारी की सहभागिता, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत सुनिए वार्ता नारी की सहभागिता। साथियों, लगभग 100 वर्ष पहले तक नारी की भागीदारी बिल्कुल नहीं के बराबर थी, परंतु आज 21वीं सदी में नारी की भागीदारी, उसकी सहभागिता क्रमशः बढ़ती चली जा रही है। देश की प्रगति, सामाजिक विकास, यूं कहें पारिवारिक उन्नति आदि में नारी की सहभागिता बढ़ गई है। पारिवारिक देखभाल तो शुरू से ही उसके अंतर्गत था, पर देश और समाज के प्रति भी उसकी भागीदारी बढ़ी है। नारी हर जगह एवं हर कार्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। वह अपनी जिम्मेदारी एवं कर्तव्य बखूबी निभा रही है। हम आज ये नहीं कह सकते कि केवल पुरुषों के बलबूते ही समाज या देश उन्नति की राह पर है, बल्कि देश की महिलाएं भी अपनी भागीदारी का निर्वहन कर रही हैं। और सच कहें तो नारी के बिना, नारी शक्ति के बिना देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहुत साल पहले तक नारियों के लिए प्रगति के द्वार लगभग बंद थे, पर समय बदलते ही माजरा हमारे सामने कुछ और है। सभी स्त्रियां, सभी महिलाएं आज विकास में बराबर की सहभागी हैं। हर उपलब्धि की वह हकदार है। इसके लिए हर नारी का सिर ऊंचा होना चाहिए। आज देखिए, देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिलाओं की कमी नहीं है। भारत रत्न सम्मान पाकर महिलाओं ने यह दिखा दिया है कि वे कहीं भी कम नहीं हैं, न ही उन्हें कमतर आंका जाना चाहिए। हर लड़ाई, हर संघर्ष में नारियां बराबर खड़ी रहती हैं। यही वजह है दोस्तों कि नारियां सर्वोच्च सम्मान से नवाजी गई हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर, मदर तेरेसा, एमएस सुब्बालक्ष्मी, इंदिरा गांधी, अरुणा आसफ अली आज सा सम्मान पूरी दुनिया में याद की जाती हैं। उनके काम एवं नाम की वजह पूरी दुनिया इन्हें जानती है और पहचानती है। कुछ वर्ष पहले जब एक पत्रिका ने भारत के सबसे चर्चित महिलाओं की सूची निकाली तो उसमें ज्यादातर उपलब्धिवान महिलाएं शामिल थीं। यह महिलाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए बलिदान, त्याग, संघर्ष, तपस्या और योगदान पर आधारित था, जिस पर महिला होने का गर्व किया जा सकता है। चाहे वह कल्पना चावला हो, महादेवी वर्मा हो, महाश्वेता देवी हो, एनी बेसेंट हो या सिस्टर निवेदिता, इन तमाम महिलाओं ने भारत के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। साथियों, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नीति स्तर पर विकास मुख्य मुद्दा है, लेकिन समानता के साथ, बराबरी के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर स्त्री पुरुष एकजुटता के साथ विकास के पथ पर अग्रसर हों, देश समाज को नई दिशा दे, यह आज की मांग है। मांग तो है ही, यह एक नया संकल्प भी है। हर कदम पर महिलाएं पुरुषों के साथ हैं। देश के सर्वोच्च पद पर प्रतिभा पाटिल जैसी राष्ट्रपति हैं, सोनिया गांधी जैसी दिशा निर्देशक एवं ऊर्जावान महिला हैं, मीरा कुमार जैसी प्रथम महिला स्पीकर हैं। इन महिलाओं के अलावा अनेक ऐसी ऊर्जावान एवं शक्तिशाली महिला हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं एवं देश की उन्नति में अपना सहयोग दे रही हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में, फिल्मों में, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक आदि सभी क्षेत्रों में अपना सर्वस्व स्थापित कर चुकी हैं। महिलाओं के बगैर किसी भी क्षेत्र में विकास असंभव है। गांव की बात करें या शहर की, प्रत्येक जगह में महिलाओं की सहभागिता बराबर बढ़ी है, बरकरार है और बढ़ती ही जा रही है। साथियों, जन भागीदारी के साथ सेवा एवं आर्थिक प्रगति के साथ मानव विकास एवं सशक्तिकरण मुख्य बिंदु हैं, जहां महिलाएं अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा लगा रही हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा साथियों कि अन्य देशों की तुलना में भारत में सर्वाधिक महिलाएं व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित हैं। भारत में महिलाएं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, राजनेता हैं, वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर हैं, कुशल कलाकार हैं और गायक भी हैं। दुनिया के किसी भी देश की तुलना में भारत की महिलाएं अधिक कामकाजी भी हैं और बेहतर कामकाजी हैं। भारत की महिलाएं बाहर के काम के अलावा घर के कामों, रिश्तेदारी, सामाजिक कामों आदि सभी में माहिर हैं। घर के कामों में बाहर के कामों में बेहतर ढंग से तालमेल बिठाकर चलती हैं। साथ ही
एक संतुलन बनाकर दोनों जगह का काम भली भांति संभालती हैं। इसलिए आज महिलाएं जहां विकास में भागीदार हैं, वहीं हर उपलब्धि में हकदार भी हैं। उन्हें भी बहुत सारे हक मिलना चाहिए ताकि उसका आत्मसम्मान बना रहे और बढ़े। उसे नीचा दिखाकर उसे मात्र उपभोग की वस्तु न माना जाए, इसके लिए सरकार को पुरजोर कोशिश करनी होगी। उसके आत्मसम्मान का भरपूर ध्यान रखना होगा। इसके लिए कुछ नए विचार रखने होंगे, नए नियम, नए कानून बनाने होंगे। विधि आयोग को आग्रह किया जाए कि महिला के लिए एक समान नियम बनाए। इसमें संपत्ति पर समान अधिकार, बच्चे पर पालक होने का समान अधिकार, तलाक जैसे कानून में समान व्यवहार, बहुविवाह पर रोक संबंधी प्रावधान नारी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाए। कानूनी तरीके से महिला को अधिकार एवं शक्ति देना, उसे बेहतर जीवन के लिए प्रेरित करना है। स्वास्थ्य एवं आर्थिक दृष्टि से नारी को अधिकार देना, उसे शक्तिशाली बनाना है, और यह जरूरी भी है। व्यवसायिक शिक्षा में महिलाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रावधान हो, ताकि महिला आर्थिक रूप से मजबूत होकर देश को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी और अच्छी तरह से निभा सके। आर्थिक रूप से सुदृढ़ महिला हर तरह से सुदृढ़ होती है, इसलिए स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए व्यवसायिक शिक्षा आवश्यकता की मांग है। ग्रामीण एवं नगरीय स्तर पर महिलाओं की शिक्षा, खासकर व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाए। इससे जन जन में व्यवसायिक आत्मबल बढ़ेगा और महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथियों, इसका परिणाम भी बेहतर होगा। सत्ता के विकेंद्रीकरण या सत्ता में महिलाओं को उनकी वाजिब भागीदारी देने संबंधी संविधान संशोधनों के प्रभाव पर हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया। इसके अनुसार यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है एवं महिलाओं को आरक्षण से उसमें आत्मविश्वास का संचार हुआ है। आरक्षण के परिणाम भी बेहतर हैं। महिलाएं ज्यादा ताकतवर हुई हैं। राजनीति में उसका आना, सत्ता का संचालन करना, बेहिचक अपनी बात को रखना, महिलाओं को आगे लाना निश्चित ही महिलाओं के सशक्तिकरण का परिणाम है। वह आज अपनी योजना में कामयाब हुई है। साथियों, आदिवासी महिलाओं, पिछड़ी महिलाओं की चर्चा करें तो आज वह भी पीछे नहीं है। भारत की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार इसका उदाहरण है। इस तरह देखा जाए तो महिला की सहभागिता देश के विकास में मजबूती के साथ अपनी पकड़ बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है, और यही है आज की महिला के विकास की कहानी, उसकी शक्तिशाली सशक्तिकरण और उसकी सहभागिता।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था नारी की सहभागिता, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। सहेलियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी आरवीए कलाकार के द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक लगी होगी और आप इन सभी बातों का लाभ भी लेंगी। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव एवं रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्यस्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। आइए मित्रों, अब सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है मन हो सुरभित तो सुरभित जीवन। इस वार्ता के लेखक श्री कृष्ण कांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता हैं आस्था उपमन्यु।

मन दर्पण के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है वार्ता मन हो सुरभित तो सुरभित जीवन। इसके लेखक हैं श्री कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुत करता है आस्था उपमन्यु। मित्रों, अपनी बात कहने के पहले एक प्राचीन प्रार्थना का स्मरण हो आता है जिसका बहुत ही सुंदर अर्थ है। हे दिव्य तेजोमय प्रभु, आप ही वास्तविक सत्य मार्ग के ज्ञाता तथा प्रदर्शक हैं। आप हमें उस सन्मार्ग का प्रदर्शन दीजिए। भगवान, हमारी सारी कुटिलता तथा अपूर्णता को हमसे दूर कीजिए। इसके लिए हम बार बार आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रार्थना के साथ एक सुंदर भाव विचार भी है जो हमारे लिए पथ दर्शन का कार्य करता है। साथियों, मनुष्य एक अच्छा और भला जीवन जिए वैसा ही जैसे फूल जिसके पास की अपनी गंध सुगंध होती है और उसकी वो सुबास चारों ओर व्याप्ती है, दूसरों को आनंदित करती है। वह गंध सुगंध सबके लिए, हर प्राणी के लिए होती है। वह सर्वव्यापी है, वो किसी के प्रति भी पक्षपात नहीं करती, वो सभी के लिए समर्पित होती है। मित्रों, एक उदाहरण है मेरे पास एक पाश्चात्य विद्वान के अद्भुत कथन का। उनका वो कथन हमें एक सीख देता है, एक मार्ग देता है। उन्होंने कहा था कि अच्छी से अच्छी चीज जो आप अपने शत्रु को दे सकते हैं वो है क्षमा, विरोधी को सहिष्णुता, मित्र को अपना हृदय, अपने बच्चे को अच्छा उदाहरण, अपने पिता को इज्जत, माँ को अपना ऐसा आचरण कि वो आप पर गर्व कर सके, और अपने आप को आत्मसम्मान और मनुष्य मात्र को उदारता। जी हाँ, जो व्यक्ति अपने जीवन को ये रूप देता है, इन गुणों को अपने जीवन में उतारता है, निश्चित ही उसका जीवन सुरभित होगा। वो इससे स्वयं ही सार्थकता पा जाएगा। इससे उसका मन दर्पण इतनी उज्ज्वलता पा जाएगा जो दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाएगी। साथियों, लोग इसे ही तो जीवन की धन्यता मानते हैं। इस संदर्भ में मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि बात कुछ समय पहले की है कि मैंने एक भले चिंतक के विचार जाने और पढ़े थे। उन्हें पढ़कर अच्छा लगा था। वे विचार भली दिशा की ओर संकेत देते से लगते थे, और उन्हें पढ़कर ये भी लगा था कि आज ऐसे ही सद्विचारों की, भले विचारों की समाज को आवश्यकता है, जरूरत है। उन चिंतक ने अपने विचार देते हुए कुछ यूं कहा था, जिंदगी एक किताब है जिसके हर पृष्ठ पर हमें नई नई बातें लिखनी होती हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं उस पृष्ठ पर अपनी अच्छी बातें ही लिखते हैं। इस तरह वे जिंदगी की हर सुबह हर शाम को सुंदर बना लेते हैं। एक भली उक्ति भी है, उसमें एक सत्य निहित है, और वो उक्ति कुछ यूं है कि यदि मनुष्य संपत्ति खो बैठे तो समझिए कुछ नहीं गया, वो तो हाथ का मैल है, उसे फिर प्राप्त किया जा सकता है। यदि मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ा तो समझो कुछ गया, क्योंकि उसका संभलना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन साथियों, अगर मनुष्य का चरित्र गया तो समझिए मनुष्य ने अपना सब कुछ खो दिया। यही चिंतन सदमनुष्यों की दी गई उजली राह है। इसे मनुष्य को हर समय ध्यान में रखना चाहिए। सुंदर चरित्र उसी का होता है जिसका मन दर्पण निर्मल हो। साथियों, ये कुछ बातें हैं जो मनुष्य को अच्छाई की दिशा देती हैं। जैसा कि पहले कहा गया, जिंदगी एक किताब है। अगर हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारा चरित्र, इन सभी में उज्ज्वलता है, वे अच्छे हैं, तो हम निश्चित ही जिंदगी की किताब में जो भी कुछ दर्ज करेंगे, जो भी लिखेंगे, वो उत्तम होगा। अगर हमारे व्यवहार बर्ताव में अच्छाई नहीं होगी, उज्ज्वलता नहीं होगी, तो जिंदगी की किताब में कहीं भी कोई अच्छाई दर्ज ही नहीं होगी, और हम अपने जीवन को कैसे सुरभित बना पाएंगे? वो गंधहीन होकर ही रह जाएगा। आप हम सभी जानते हैं, और वो एक कहावत की तरह एक उक्ति भी है अपने आप में, यानी मनुष्य के अच्छे कर्म, अच्छी बातें ही उसके बाद स्मरण की जाती हैं। ऐसा तभी होता है जब उस व्यक्ति की जीवन किताब अच्छे कर्मों द्वारा लिखी गई हो। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी अच्छाइयों के बीच जी है।
कबीरदास जी ने कहा भी तो है, जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। सच है, समाज व्यक्ति को उसके कार्यों से, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, उसी से उसका मूल्यांकन करता है। इस बात को सदैव याद रखा जाना चाहिए। ये सही दिशा पाने के लिए बेहद जरूरी है, पर साथ ही ये भी सही है कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अच्छे काम को अंजाम देना सरल नहीं कठिन होता है। पर इसमें कितना सत्य है, इसे भी परखा जाना चाहिए। साथियों, किसी ने खूब कहा है कि अच्छाइयां तो स्वयं ही प्रभु की ओर से इंसान को वरदान की तरह प्राप्त होती हैं। हमारे हृदय में सबके लिए प्रेम भाव हो, सबके लिए करुणा हो, स्नेह हो, हम में सबके लिए मैत्री भाव हो, हम में सेवा भाव हो, तो ये कोई कठिन काम नहीं है। अगर हम संकल्प सहित थोड़ा भी निश्चय कर लें कि हम अपने जीवन व्यवहार में इस भाव बोध का समावेश कर लें, तो ऐसा सब कुछ सहज हो जाएगा और फिर हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा। इस संदर्भ में कुछ लोगों का अपना अनुभव है। अच्छाइयां विकसित करने में प्रभु हर रूप में हमारी मदद करता है। इस बात को हम अपने मन में धारण कर लें, यानी हमें भले काम ही करने हैं, भली और अच्छी भावबोध वाली जिंदगी गुजारना है, तब असंभव कुछ भी नहीं रहेगा। कहते भी तो हैं कि मन के जो अच्छे और भले संस्कार हैं, उनका लोप कभी नहीं होता। वर्षों पहले मैंने एक लघु कथा पढ़ी थी, नहीं याद कि वो किसकी थी, लेकिन उस कथा का मर्म आज भी याद है। एक संत अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। मार्ग में नदी आई, नदी तट सुंदर था। संत कुछ समय वहां विश्राम के लिए रुक गए। तभी उनके एक शिष्य के मन में जिज्ञासा जागृत हुई और उसने संत से प्रश्न किया, मैंने प्रेम भाव के विषय में जाना है, प्रेम अमर होता है, इसमें कितना सत्य है? इस तरह अच्छे गुण के विषय में भी कहा गया कि वे एक बार व्यक्ति के मन में पूरी तरह निर्मित हो जाने के बाद मिटते नहीं। क्या ये सही है कि विपरीत स्थिति में भी वे शेष रहते हैं? संत ने एक क्षण चिंतन किया और फिर वे उठे, नदी की धारा में पड़े पत्थर को उठाया और एक दूसरे पत्थर पर उसे रगड़ा। उससे चिंगारियां फूट पड़ी और संत ने शिष्य से यही कहा, देख रहे हो इन चिंगारियों को, युगों युगों से यह पत्थर पानी में पड़ा था, लेकिन इस पत्थर में छिपी अग्नि आज भी उसमें मौजूद है। इसी तरह मनुष्य मन में सद्गुणों के, प्रेम भाव के जो बीज होते हैं, भले ही वे सुप्र हों, लेकिन रहते अवश्य हैं। आप अगर उन्हें जागृत करने का प्रयत्न करेंगे तो वे जागृत होकर लहराने लगेंगे। ये भी सत्य है कि हम अपने अंतर्मन में सद्गुणों को, सद्भावनाओं को जागृत करने का प्रयत्न करेंगे तो वो प्रभु, वो दीन बंधु निश्चित ही हमारी मदद करेगा। बस हमें सोचना भर है कि हमें एक भली जिंदगी गुजारनी है, अपने आसपास के सारे वातावरण को सुंदर बनाना है, उसे सुरभित रखना है, तो ये सब कुछ संभव है। साथियों, जो व्यक्ति अपने मन को, अपने जीवन को भला रूप देना चाहते हैं, पहले वे अपने मन में प्रेम और मैत्री भाव जागृत करें। साथ ही जो दुखी हैं, जिन्हें सेवा की, स्नेह की, प्रेम की आवश्यकता है, उन्हें हम ये सब कुछ दें। हम निरंतर सोचें हमारे कारण किसी को कष्ट न हो, हमारे हर काम से अच्छाई का प्रसार हो। सोचिए कि इन बातों का अनुसरण करना कहाँ कठिन है। साथियों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था मन हो सुरभित तो सुरभित जीवन। इस वार्ता के लेखक थे श्री कृष्ण कांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता थी आस्था उपमन्यु। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप सभी को इन जानकारी से कुछ लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है कार्यक्रम पर्यावरण। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं पर्यावरण के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक है हिमालय का पर्यावरण और उसका संरक्षण, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों नमस्कार, पर्यावरण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर बात करेंगे, मेरा ये विश्वास है कि आप सभी को उस विषय को लेकर बहुत प्रेम होगा, बहुत रहस्यमय आकर्षण होगा। और उस जगह का नाम है, उस स्थान का नाम है हिमालय। जी हाँ साथियों, हिमालय को लेकर हमेशा से यही कहा जाता रहा है कि ये भारत का गौरव है, भारत देश का मुकुट है। और भारत की जो महान ऋषि संपदा हम कह लें, धर्म संपदा कह लें, वन्य संपदा कह लें, इन सभी का उद्गम कहीं न कहीं से हिमालय ही है। लेकिन वर्तमान में पर्यावरण और हिमालय, इन दोनों को मिलाकर बात करें तब जरूरत आन पड़ी है कि हिमालय के पर्यावरण को हम बचाएं। हिमालय के पर्यावरण को सबसे पहली बात है कि हम समझें। तो साथियों, हम दो भागों में हिमालय को लेकर बात करेंगे और ये लाजमी भी है। हिमालय जैसा इतना बड़ा विषय हम एक कार्यक्रम में कैसे ले सकते हैं? जी हाँ साथियों, तो आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है हिमालय का पर्यावरण और उसका संरक्षण, भाग एक। साथियों, सबसे पहला विषय जिसे लेकर हम आज बात करेंगे वो भारत के हिमालयी अंचलों के संबंध में है और यहाँ की खेती की विरासत को लेकर। साथियों, यदि हम पूरे भारतवर्ष को देखें तो यहाँ पर जितने भी विविध भौगोलिक भाग हैं, वहाँ पर खेती करने का एक विचित्र या फिर हम कह लें एक विरासत का एक तंत्र मौजूद होता है। और यदि आप गहराई में जाकर पड़ताल करेंगे तब आप उसे वैज्ञानिक रूप से भी सही पाएंगे। प्रकृति आपको बहुत सारे नियम कानून अपने आप समझाती हैं, बहुत सारे इशारे भी खुद ही देती हैं। साथियों, हम बात करेंगे इंडियन हिमालयन रीजन हेरिटेज एग्रीकल्चरल सिस्टम या फिर हिमालय के अंचलों की खेती की विरासत को लेकर। साथियों, इन दिनों ये चर्चा बहुत ज्यादा की जाती है कि अनाज का अधिक उत्पादन किया जाए। क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए खाद्यान्न को लेकर हम चर्चा करें और हमेशा से ये सोचें कि किस प्रकार से हम खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन साथियों, बढ़ती हुई उत्पादकता के विषय में कुछ दोयम तरीके से ही विचार किया जाता है, जिससे कि वो स्थानीय पारिस्थिति के साथ मेल बैठा सके। साथियों, किसी भी प्रकार की नीति का प्रचार करना जरूरी है और यदि हम सही तरीके से उसका प्रचार करें, उसकी पारिस्थिति के साथ मेल बैठा सकें, तभी उसके सही परिणाम हमें मिलते हैं। और साथियों, यदि यही नीति भारत के मैदानी इलाकों में कारगर होती है तब उसे हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में क्यों नहीं लागू किया जाता, ये सोचने के लिए हम पर दबाव डाला जाता है। लेकिन साथियों, इस प्रक्रिया में होता ये है कि शताब्दियों से हिमालय के पर्वतीय अंचलों में जो उत्पादन के पारंपरिक तंत्र विकसित हुए हैं, उन्हें अक्षम मानकर उनका अवमूल्यन कर दिया जाता है। इसके साथ ही हमें इस प्रकार के तथ्यों को सभी के साथ बांटने में बड़ा अच्छा लगता है कि इस प्रकार के तंत्र शताब्दियों में विकसित हुए हैं और इनका विकास बहुत धीमा और सृजनात्मक रहा है। साथ ही इस प्रकार के तंत्र हिमालय के पर्वतीय अंचलों की नाजुक मिजाज प्रकृति के साथ मिलकर यहाँ पर बहुत मुश्किल से उपलब्ध होने वाले जल और नमी के क्षेत्र की बातें करते हैं और उस मिट्टी की भी जिसे पानी आसानी से बहा ले जाता है। साथियों, हम ये तर्क स्वीकार करने से हिचकते हैं कि जो तंत्र शताब्दियों से चला आ रहा है, काम करने की स्थितियाँ जो कि लंबे समय से सही प्रतिफल देती आ रही हैं और खासकर यहाँ काम करने वाले व्यक्ति जो सैकड़ों वर्षों से अत्यधिक उत्पादन के साथ यहाँ टिके हुए हैं, ऐसे में पारिस्थिति के साथ साम्य बैठाने वाली तकनीक जिसे इन विशेष स्थितियों के लिए ही बनाया गया है और इस सोच के साथ बनाया गया है कि किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इन प्रशिक्षणों की तकनीक और उसका तरीका कठिन नहीं होगा। साथियों, इस प्रकार की पारंपरिक रूप से विकसित और सैकड़ों वर्षों से परीक्षित तकनीक का प्रमुख और सही कारण है प्रवाहित होता हुआ जल, जो कि ग्रीष्म ऋतु में संपूर्ण ढालों पर से और कृषि के क्षेत्रों से होकर गुजरता है। कई बार ये भी होता है कि किसी ढाल से प्रवाहित होने वाले जल का गुरुत्वाकर्षण बल उसे दूसरे ढाल पर ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर कर देता है,
ऐसा होने के कारण कृषि को बिना किसी जीवाश्म ईंधन की मदद से जल मिलता है और ये प्रक्रिया इतनी सरल है साथियों कि इसे महिलाओं और यहाँ तक कि बच्चों को भी सिखाया जा सकता है और इसे वहाँ के भूदृश्य के आधार पर सही और आवश्यकतानुसार उपयोगी बनाया जा सकता है। इस प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग हम देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए क्षेत्रों में वास्तविक रूप से किया जा रहा है और यदि आप वहाँ के सामान्य लोगों के विलक्षण बुद्धि का उपयोग करते देखेंगे तो वाकई आश्चर्यचकित रह जाएंगे। साथियों, ये वाकई बहुत खेद का विषय है कि जितने भी आधुनिक वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा कभी भी इस प्रकार के उदाहरणों को संजीदा तरीके से नहीं लिया जाता है और ऊर्जा की बचत और संरक्षण से संबंधित अध्ययन को लेकर उसका उपयोग नहीं किया जाता। साथियों, पारंपरिक रूप से तैयार जैव उत्पादन तंत्र प्रकृति, प्राणी और मनुष्यों के साथ सही सामंजस्य के चलते ही तो आकार ले पाया है। इसलिए जब धान की किस्मों को चुनकर उगाया जाता है तब केवल

यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हिमालय के पर्यावरण को बिगाड़ने में वहां पर ईंधन के कारण जलने वाला जो धुआं है उसकी भूमिका बहुत ज्यादा है। यहीं पर हम देख सकते हैं कि वहां पर जो पारंपरिक फसलें हैं, मान लिया कि उसमें आपको खाद्यान्न कम मिलता है, लेकिन जो पशुओं का चारा उसमें बराबर की मात्रा में मिलता है, उसे मैदानी इलाकों से पहाड़ों तक ले जाने के लिए जो वाहन लगते हैं, यातायात के लिए जिस प्रकार के जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है, क्या उससे हमारे पर्यावरण को ह्रास नहीं होता? इसलिए जो विरासत की पारंपरिक खेती है उसके कारण साथियों, इसी प्रकार जब हिमालय की घाटी और ढलान के क्षेत्र में अनेक प्रकार के बीजों के साथ काम किया गया, तब वहां के सभी कृषकों के अनुभवों के आधार पर एक बात ये समझ में आई कि ऐसा करना अर्थात नमी के दबाव या कीटों के आक्रमण के खिलाफ किया गया सर्वश्रेष्ठ बीमा है। इस तरीके के इस्तेमाल से अनजाने में ही मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ी, क्योंकि सही फसल का चयन किया गया और वनस्पतियों के पुनर्चक्रीकरण के कारण अनेकानेक फायदे भी हुए। साथियों, जब स्थानीय तरीके से चावल की फसल की गई, तब भले ही उसमें उत्पादन काफी कम मिला, लेकिन इसमें उनका नमी के प्रति बचाव का तंत्र काम कर रहा हो या फिर कीटों के आक्रमण से बच पाने में सफल हो, एक प्रमुख कारण था कि वे फसलें किसी ऐसे विशेष उत्सव से संबंधित हुआ करती थी जिसमें सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं का सम्मिश्रण होता था, और ऐसे समारोह में इस प्रकार की फसलों से बने व्यंजनों का ही इस्तेमाल होता था। साथियों, इसी प्रकार की विशिष्ट खेती की जाती है अरुणाचल प्रदेश में। जी हाँ, चावल की विशिष्ट प्रकार की खेती जिसमें आसपास के पहाड़ों से भी पोषक तत्व मिल जाते हैं। वाकई अरुणाचल प्रदेश में जो ऐसी खेती की जा रही है वो वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट जरूर कर रही है। साथियों, जैविक रूप से विविधतापूर्ण ये विरासत को संभालने वाली खेती यदि समाप्त हो जाएगी, तब वाकई हमारे पारंपरिक उत्सव और खुशियां मनाने के ग्राम्य तरीके भी तो विलुप्त हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी परंपरा का एक भाग भी बिल्कुल समाप्त हो सकता है। इस प्रकार परंपरा के लिए होने वाली ये हानि पहले से ही बिगड़े हुए पारंपरिक ढांचे पर एक और ठोकर लगा देगी, और वो भी हम सभी के गर्व के स्थान हिमालय के क्षेत्र में। साथियों, ये तय है कि हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार की परंपरागत सोच हमेशा रहती है, चाहे किसी भी प्रकार की पारंपरिक खेती हो, चाहे किसी भी प्रकार के पारंपरिक परिणाम हमें मिलने वाले हों, लेकिन यदि बात पर्यावरण की है तब हमें हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहना होता है, क्योंकि मौसम, जलवायु, स्थान, ये सारे तत्व हर क्षण बदलते रहते हैं और इन सभी के बदलाव के लिए जिम्मेदार भी हम सभी होते हैं। साथियों, विरासत कृषि को लेकर आज हमने बात की, ये बात भी उतनी ही सही है कि इस प्रकार के विरासत संबंधी मुद्दों पर टिके रहने से जनता को जन वितरण तंत्र पर निर्भर रहने की और उसके कारण होने वाली अव्यवस्थाओं का शिकार होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और अब इस अंक का प्रश्न, चावल की विशिष्ट प्रकार की खेती जिसमें आसपास के पहाड़ों से भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो भारत में कहाँ की जाती है? प्रश्न एक बार और सुने, चावल की विशिष्ट प्रकार की खेती जिसमें आसपास के पहाड़ों से भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो भारत में कहाँ की जाती है?

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्यावरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था हिमालय का पर्यावरण और उसका संरक्षण, और यह प्रस्तुत थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरिटास एशिया का

हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आरवी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट है।

साथियों, रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सिस्टर गंगा रावत, एसएसपीएस। दोस्तों, अभी की सभा 10 से 11 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक, स्वास्थ्य, बाल जगत और भक्ति गीत। दोस्तों, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक भक्ति गीत से और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वास मुंबई की।

दोस्तों, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वास मुंबई की। मित्रों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: सुख सुविधा के तमाम साधन पर्याप्त धन धान्य से हीन ये निर्धन दंपत्ति एक दूसरे के सुख व सुविधा के लिए कितने चिंतित कितने परेशान। मगर पैसा सुविधाएं और सांसारिक खुशियां ही तो सब कुछ नहीं है। यूसुफ चिंतित था कि वो अपनी निर्धनता के कारण अपनी पत्नी मरियम की रक्षा शायद नहीं कर सकेगा, पर वहीं वो मरियम को अकेला छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई न था। ईश्वर की योजना तो ऐसी ही थी कि मरियम यूसुफ के साथ बेतलेहम जाए। यूसुफ ईश्वर की योजना समझकर मरियम को साथ ले बेतलेहम की ओर चल पड़ा। उन्हें पूरा यकीन था कि समय आने पर ईश्वर उनकी मदद अवश्य करेंगे। मुक्तिदाता प्रभु को गर्भ में धारण किए मरियम और उनके पुत्र ईसा के संरक्षक पिता जोसेफ कपकपाती ठंड में निकल पड़े बेतलेहम की ओर। मरियम गधे पर सवार थी, यूसुफ गधे के एक ओर रास्ता बताते चल रहे थे। गधे पर कुछ भोजन और कपड़े भी एक कटरी में रखे हुए थे। कपकपा देने वाली सर्द हवा और भोर के उस सुनसान समय में वे अकेले नहीं थे, मगर हजारों दूत और स्वयं ईश्वर का आत्मा उनके साथ था। रास्ते उबड़ खाबड़ ही नहीं थे, थका देने वाले थे। यूसुफ मरियम के प्रति बहुत विनम्र थे। वे मरियम को दर्द में देख खुद भी दुखी हो जाते थे। चलते चलते गधा भी थक चुका था। उन्होंने न सिर्फ विश्राम किया, मगर आगे का कुछ रास्ता मरियम स्वयं चलकर पार करने लगी। ज्यादा दूर तक जा पाना मरियम के लिए संभव नहीं था। अंततः जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने कहा,
1: यूसुफ।
2: हाँ।
1: बहुत दर्द है
2: मरियम,
1: अब सहा नहीं जा रहा। क्या ही अच्छा हो अगर हमें ठहरने को थोड़ी सी जगह मिल जाए।
2: हाँ मरियम, मैं वही सोच रहा हूँ। हौसला रखो, हौसला रखो, देखते हैं कहीं ठहरने की जगह मिल जाए। मरियम मरियम तुम ठहरो, मैं वो सामने वाले घर से शरण स्थल तलाश कर आता हूँ।
3: कौन है?
2: भाई साहब, भाई साहब राहगीर हूँ। कहीं आसपास कुछ दिन ठहरने का प्रबंध हो सकता है? मेरी पत्नी
3: ये घर है सराय नहीं, जाओ कहीं और तलाश करो।
0: अवसर, दर्प, ईर्ष्या, असत्य और हिंसा का प्रभाव इतना अधिक होता है कि सत्य, अहिंसा और प्रेम से आंखें फेर ली जाती हैं, दिल के द्वार बंद कर लिए जाते हैं कि नम्रता, दया, प्रेम, शांति, सत्य और अहिंसा के रूप में ईश्वर प्रवेश न करने पाए। यूसुफ को जब अपनी पत्नी के साथ रहने का स्थल न मिला तो वे राह के किनारे ही विश्राम कर बेतलेहम चल निकले, जहां पहुंचकर हजारों की भीड़ में यूसुफ ने अपना नाम लिखवाया और फिर वे सूरज डूबने के पहले पुनः शरण स्थल की खोज में निकल पड़े।
2: भाई साहब सुनिए, सुनिए भाई साहब, हम परदेसी हैं, नाम लिखाने आए थे। मेरी पत्नी गर्भवती है, बहुत तकलीफ है उसे, मेहरबानी करके रहने का कुछ बंदोबस्त कर दीजिए।
4: माफ कीजिए, सारी जगह भरी हुई है।
2: क्या सारी जगह भरी हुई है? क्या करूं, क्या करूं मैं? भाई साहब मेरी पत्नी गर्भवती है,
5: क्या आपके यहाँ ठहरने का बंदोबस्त हो सकता है?
4: माफी चाहता हूँ भाई, परदेसी से सारे कमरे भरे हैं, कहीं और तलाश करो, हो सकता है कहीं जगह मिल जाए।
5: कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं? पता नहीं मरियम, ईश्वर की क्या मर्जी है, कहीं भी जगह खाली नहीं है, सबको जगह मिल चुकी है, एक हम ही है जो भटक रहे हैं।
1: दुखी न हो यूसुफ, ईश्वर ने हमारे लिए कहीं न कहीं जगह नियत कर रखी होगी। प्रभु अपने बेटे को यूं ही तो नहीं छोड़ देंगे ना, ईश्वर पर ही हमें भरोसा रखना है।
5: वो तो है मरियम, मगर मगर तुम्हारी हालत भी तो देखी नहीं जाती ना।
1: मेरी चिंता ना करो यूसुफ, आज की रात हम यहीं किसी पेड़ के नीचे काट लेंगे।

0: यूसुफ, यूसुफ।
1: क्या हुआ मरियम? क्या हुआ?
0: यूसुफ लगता है, हाँ? लगता है बच्चे के जन्म लेने का समय आ गया है।
1: हाँ। मरियम, धीरज रखो मरियम, मैं जाकर देखता हूँ, शायद किसी को हम पर दया आ जाए।
2: कौन है? क्या बात है?
1: नमस्कार बहन। बहन, मेरी पत्नी गर्भवती है और लगता है वो बहुत कष्ट में है। आपके यहाँ दो एक दिन के लिए आश्रय मिल जाता तो।
2: मगर मेरे यहाँ तो सिर्फ एक गौशाला ही बाकी रह गई है।
1: गौशाला? हाँ, कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं, अगर आप आज्ञा दें तो हम वहीं शरण ले लें।
2: ठीक है, आप अपनी पत्नी को लेकर आइए, तब तक मैं गौशाला साफ कर देती हूँ।
3: कड़ाके की ठंड में प्रभु ने मरियम और यूसुफ को और भटकने नहीं दिया, बल्कि उन्हें वे वहां ले गए जहां उस मुक्तिदाता के लिए उन्होंने जगह चुन रखी थी। यूसुफ मरियम को लिए उस गौशाला में आ गए।

इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे संतोष कुमार, इंदु संतोष, स्वाति बूटे, जोस सूल, दिलीप बोस और जॉर्ज माइकल।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है जालस्वास मुंबई।

श्रोताओं, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वास मुंबई की। साथियों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य, जिसे प्रस्तुत कर रही है अंतरा करवणे, और इनकी वार्ता का शीर्षक है गर्दन दर्द और आपका स्वास्थ्य, और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम का विषय है गर्दन दर्द और आपका स्वास्थ्य। साथियों, गर्दन दर्द आजकल हमारे रोजमर्रा के कामों की तरह ही बहुत आम है, लेकिन दिन भर जितना तनाव हम झेलते हैं या जिस प्रकार के काम हम करते हैं, मान लिया कि कंप्यूटर के सामने लंबे समय तक बिना सिर हिलाए बैठे रहना पड़ता है, ये मजबूरी है। लेकिन लंबे समय में ये चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। जी हाँ, कुछ आदतों पर यदि समय रहते लगाम न कसी जाए तो हम ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में वे असाध्य रोगों का रूप ले लेती है। और वैसे भी साथियों, हमारी पीढ़ी के सामने काम का बोझ और तनाव की स्थिति इतनी ज्यादा है कि इस मामले में दो राय नहीं हो सकती कि आने वाले समय में स्वास्थ्य की समस्याओं से दो चार हमें होना ही पड़ेगा। गर्दन को गलत दिशा में रखना वाकई घातक हो सकता है। बहुत सी स्थितियों में गर्दन दर्द का कारक अधिक समय तक गर्दन की मांसपेशियों, लिगामेंट, टेंडन, हड्डियों या जोड़ों का अधिक समय तक इस्तेमाल करना होता है। दरअसल अधिक समय तक गर्दन की पेशियों और अन्य भागों को इस्तेमाल करते रहने से मांसपेशियों और गले के जोड़ों में किसी प्रकार की सूजन आ सकती है या फिर उन पर दबाव भी पड़ सकता है। दरअसल सर्वाइकल स्पाइन में किसी भी प्रकार की चोट के कारण भी गर्दन में दर्द हो सकता है, लेकिन ऐसा वास्तव में बहुत कम होता है। प्रतिदिन की हमारी दूसरी आदतें जैसे गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से मुड़ना, गलत तरीके से अपना रोजाना का काम करना, इनके कारण भी गर्दन दर्द हो सकता है। तो चलिए अब हम देखें उन स्थितियों को जिसके चलते गर्दन दर्द हो सकता है या फिर वे स्थितियां गर्दन की स्थिति को सही स्थिति में रखने के लिए आदर्श नहीं कही जा सकती, इनकी ओर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। तो साथियों, रोजमर्रा के जीवन में आप जो विविध काम करते हैं उसमें गर्दन का इस्तेमाल कितना ज्यादा होता है ये शायद हम सभी को बहुत कम मालूम होता है। लेकिन काम करते समय सीधी गर्दन रखी जाती है, पढ़ते समय गर्दन का इस्तेमाल होता है, टीवी देखते समय, फोन पर बातें करते समय गर्दन को अधिक समय तक आगे की ओर या फिर गलत दिशा में रखने से हमें गर्दन में दर्द का एहसास हो सकता है या फिर इस प्रकार की आदतें गर्दन में दर्द का कारण आने वाले समय में बन सकती हैं। इसके अलावा हम में से कुछ साथियों को कुछ इस प्रकार का तकिया लेकर सोने की आदत होती है जो बहुत ज्यादा ऊंचा होता है या बहुत ज्यादा नीचा होता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे तकिए का इस्तेमाल करना जो कि आपके लिए आदर्श स्थिति नहीं रख पाता हो, उस प्रकार के तकिए को इस्तेमाल करने से आपकी गर्दन सही स्थिति में नहीं रहती। ऐसा करते हुए यदि लंबे समय तक आप गलत नाप का तकिया इस्तेमाल करते रहे तब ये तय है कि आने वाले समय में गर्दन दर्द आपको होना है। इसके अलावा हमारे बहुत से साथी ऐसे होते हैं जो अपनी हथेली का सहारा अपने चेहरे को देते हैं, यानी हम लोग कई बार हाथ का सहारा अपने मुंह को देखकर और इस प्रकार से बैठते हैं जिसे चिंतक मुद्रा कहा जाता है। चिंतक मुद्रा वाकई बहुत अच्छी है यदि आप अच्छे विचार मन में ला रहे हैं, लेकिन विचार तो आपका मस्तिष्क करता है, उसकी सजा आपकी गर्दन को क्यों। जी हाँ, लंबे समय तक यदि चिंतक मुद्रा में भी बैठा जाए तब ये आदत भी गर्दन दर्द को न्योता दे सकती है। इसके अलावा हमारे चित्रकार भाई बंधु, लंबे समय तक पेंटिंग का काम करने वाले हमारे कलाकार या हमारे कलाकर्मी, या फिर बहुत लंबे समय तक आपके शरीर का ऊपरी भाग जिस काम में इस्तेमाल होता है, वे सभी प्रकार के काम गर्दन दर्द के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं यदि आपने सही तरीके से गर्दन का इस्तेमाल करना नहीं सीखा या समय समय पर उसे आराम नहीं दिया। दरअसल गर्दन दर्द यदि होता भी है तो उससे बचने के बहुत सारे उपाय होते हैं, जैसे आइस पैक लगा लिया जाए, थोड़ी सी मालिश कर ली जाए, दवाएं ले ली जाए, लेकिन गर्दन दर्द हो ही ना, उसके लिए बचाव के कुछ उपाय यदि जान लिए जाए तो वो ज्यादा सही होंगे। यदि हम शरीर की स्थिति को भी थोड़ा सा बदल दें, आपकी बैठने की स्थिति जिसे पोस्चर कहा जाता है, मुद्रा कहा जाता है, यदि आप वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते समय क्या आप बहुत झुककर बैठते हैं,
यदि आप झुककर बैठते हैं तब ये देखें कि आप दिन भर में कितना समय वाहन चालन को देते हैं। यदि आप दिन में 2 या 3 घंटे वाहन चलाते हैं और गलत तरीके से बैठते हैं तब ये प्रभाव आपकी गर्दन पर, आपकी पीठ, मेरुदंड पर पड़ सकता है। सबसे पहली बात, सिर को आगे की मुद्रा में रखने से बचना चाहिए। आपको अपनी कुर्सी पर सीधा बैठना चाहिए और अपने लोअर बैक को सपोर्ट देना चाहिए। कुर्सी पर एक ही स्थिति में ज्यादा समय तक ना बैठें। गर्दन की मांसपेशियों को आराम देने के लिए आपको समय समय पर छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहना चाहिए। साथियों, आजकल हम में से अधिकांश व्यक्तियों के काम में कंप्यूटर एक अनिवार्य मित्र की तरह हमारे साथ होता है। उसके बिना काम करना वाकई संभव ही नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तब आपको अपने वर्क स्टेशन को बहुत अच्छे से समायोजित रखना चाहिए, सही स्थिति में रखना चाहिए। मॉनिटर को इस प्रकार से रखना चाहिए कि उसका टॉप आपकी आंखों की सीध में आए, आपकी आंखों के ऊपर या आंखों से बहुत नीचे बिल्कुल भी नहीं। साथियों, हम एक उदाहरण देख सकते हैं। बहुत से रिटेल शॉप्स में या फिर कुछ दुकानों में आप जाकर देखेंगे, वहां पर जो डेस्क होता है, डेस्क से नीचे की स्थिति में कंप्यूटर रखा जाता है, कंप्यूटर की स्क्रीन रखी जाती है। ऐसे में जिस भी व्यक्ति को कंप्यूटर पर काम करना है उसे बहुत नीचे अपनी गर्दन झुकाकर स्क्रीन को देखना पड़ता है, कीबोर्ड उसके हाथ में होता है और बहुत ही विचित्र सी स्थिति में वो व्यक्ति काम करते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां, कंप्यूटर पर बैठकर यदि ऐसी स्थिति में लंबे समय तक काम किया जाए तो निश्चित रूप से गर्दन संबंधी तकलीफें हमें होती हैं। इसके साथ ही स्क्रीन के ही स्तर पर एक डॉक्यूमेंट होल्डर भी रखें। इसकी मदद से यदि आप स्क्रीन पर देखते समय अचानक किसी कागज की जरूरत पड़ती है तब उसे ढूंढने के लिए आपको गर्दन बहुत जल्दी यहां वहां घुमानी न पड़े। दरअसल साथियों, गर्दन को एक ही स्थिति में लंबे समय तक रखने के बाद यदि जल्दी से और जोर से झटका दिया जाए तब ये संभव होता है कि गर्दन की किसी नस में खिंचाव आ जाए और फिर बहुत असहनीय दर्द होता है। इसके अलावा यदि आप बहुत लंबे समय तक टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं या फिर स्पीकर फोन का इस्तेमाल आप बहुत ज्यादा करते हैं तब आपको हैंडसेट या स्पीकर फोन का इस्तेमाल इस प्रकार से करना चाहिए कि आपके गर्दन पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़े। हम में से बहुत से लोग वाहन, दोपहिया वाहन चलाते समय कंधे की मदद से मोबाइल को पकड़े रहते हैं, उनकी गर्दन एक ओर झुकी रहती है और वो वाहन भी चलाते रहते हैं। स्थिति में लंबे समय तक रहने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। गर्दन की हिलने डुलने की शक्ति, उसकी लोचनीयता, ये दोनों चीजें इससे प्रभावित होती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर और फोन पर बात करना, इनके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति आजकल हम सभी के सामने आती है, वो है वाहन चलाना, वो भी चार पहिया वाहन चलाना। साथियों, यदि आप कार की सीट को अपराइट पोजीशन में रखेंगे तब आपके सर और लोअर बैक दोनों को सपोर्ट मिलेगा। हम हमेशा देखते हैं कि कार की सीट पर बैठकर जब भी आप स्टीयरिंग संभालते हैं तब आपका पूरा ध्यान होता है कि आपके कमर के हिस्से को आराम मिलना चाहिए, जबकि देखना ये है कि आपके सर को, आपकी गर्दन को भी उतना ही आराम मिल सके। ध्यान रखें कि ड्राइव करते समय आपको स्टीयरिंग व्हील तक पहुंचने की जहमत नहीं उठानी चाहिए और आपके हाथ आराम की स्थिति में होने चाहिए। इसके अलावा यदि आपकी गर्दन में इस प्रकार की स्थिति के कारण दर्द हमेशा बना रहता है तब आपको विशेष प्रकार का सर्वाइकल तकिया भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होता और बहुत ज्यादा नीचा भी नहीं होता। यदि आपको ऐसा लगता है कि गर्दन में दर्द आपके लिए समस्या बन सकता है तब सामान्य तकिए के साथ में एक तौलिए को गोल मोड़कर उसे भी सहारे के रूप में गर्दन के नीचे आप रख सकते हैं। यदि गर्दन में दर्द है तो आपको पेट के बल बिल्कुल नहीं सोना चाहिए जिससे आपकी गर्दन मुड़े। इसके साथ ही आपको प्रॉपर लिफ्टिंग तकनीक यानी सामान को उठाने की तकनीक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों, गर्दन दर्द से बचने के लिए यदि हम बात करें तो सर्वाइकल कॉलर का इस्तेमाल सामान्य रूप से किया जाता है। और यदि सर्वाइकल कॉलर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है हम कहें तो सबसे
प्रमुख चीज होती है लोगों द्वारा गलत तरीके से सामान को उठाया जाना। शरीर के भार को घुटनों पर न उठाकर पीठ के बल पर उठाना ज्यादा अच्छा होता है। जब भी आप लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर उठते हैं, तब अचानक घुटनों पर जोर देकर उठेंगे तब उतना ही जोर आपकी गर्दन पर भी पड़ता है। तीव्र गर्दन दर्द से बचाव के लिए विशेषज्ञ स्वस्थ आदतें बनाने की सलाह देते हैं। ऑफिस या घर में तनाव से बचें, मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज और मसाज से भी दर्द में राहत मिलती है। ऐसे में टहलने जैसे व्यायाम और एरोबिक्स करने की सलाह भी दी जाती है। साथियों, यदि आप धूम्रपान करते हैं तब भी आपको गर्दन दर्द की शिकायत हो सकती है, क्योंकि तनाव भरे माहौल में ही व्यक्ति को धूम्रपान ज्यादा करने की इच्छा होती है और तनाव के कारण यदि गर्दन दर्द होता है तब धूम्रपान करने से गर्दन दर्द में राहत मिलने की प्रक्रिया में तेजी नहीं आती, वो कम हो जाती है। इससे रक्त संचार की गति धीमी हो जाती है और गर्दन में दर्द खासकर इसलिए होता है क्योंकि टिश्यूज वहां कम हो जाते हैं और टिश्यूज बनने की स्थिति धूम्रपान के कारण कम बनती है। तो साथियों, आशा करते हैं कि आप आज के दिए हुए इन सुझावों पर अमल करेंगे और बहुत तनावपूर्ण जीवन शैली होने के बावजूद यदि ये स्वस्थ आदतें अपनाएं तो गर्दन दर्द से बच सकते हैं।

मित्रों, अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वास्थ्य, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंतरा करवड़े, और इनकी वार्ता का शीर्षक था गर्दन दर्द और आपका स्वास्थ्य, और यह प्रस्तुति थी सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चाल स्वास मुंबई की।

साथियों, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वास मुंबई की। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं एक कार्यक्रम बाल जगत, जिससे प्रस्तुत कर रहे हैं ईशान खापड़े और इनकी वार्ता का शीर्षक है जिनसे मुक्ति, और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

प्राचीन काल में एक गांव में एक सेठ रहता था। वह इतना कंजूस था कि अपने नौकरों को काम करने के बाद मजदूरी तक नहीं देता था। इसीलिए उसके यहाँ कोई भी नौकर काम करने को तैयार नहीं होता था। उसके खेतों पर काम करने वाले मजदूरों ने भी उसका खेत जोतने से मना कर दिया। इस तरह उसके खेत बंजर पड़े थे और सिंचाई के लिए काम आने वाले पोखर और कुएं भी सूख गए। खेती और व्यापार ठप हो जाने से सेठ दिनों दिन गरीब होता गया। इतना सब हो जाने पर भी उसका व्यवहार जस का तस रहा। वह भी बहुत ही घटिया और जिद्दी इंसान था। उसे भूखों मरना गवारा था, पर अपनी तिजोरी खोलना नहीं। एक दिन गांव में एक बहुत ही नामी गिरामी महात्मा जी आए। सेठ ने सुना कि महात्मा जी के पास अपार सिद्धियां हैं और वह हर समस्या का हल निकाल देते हैं। साहस करके सेठ महात्मा जी के पास गया और बोला, महात्मन, मैं आजकल बड़ी मुसीबत से घिरा हूँ। मेरे खेत बंजर पड़े हैं और खलियानों में अनाज का एक दाना नहीं बचा है। नदी तालाब और कुएं सूख गए हैं। मेरे यहाँ कोई भी नौकर मजदूर काम करने को तैयार नहीं है। इसलिए वह दिन दूर नहीं जब भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। महात्मन, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। कृपा करके मुझे इस घोर संकट से बचाइए। महात्मा बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। तुम 3 महीनों तक यदि सुबह शाम इस मंत्र का जाप करोगे तो 4वें महीने के पहले दिन तुम्हारे सम्मुख एक ब्रह्म राक्षस प्रकट होगा। वह एक दास की तरह तुम्हारी सेवा करेगा। तुम जो भी आदेश दोगे उसे पूरा करेगा, क्योंकि वह अकेला ही 100 मजदूरों के बराबर काम कर सकता है। खुश होकर सेठ महात्मा के चरणों में गिर गया और उनसे मंत्र और जाप की सारी विधि बताने के लिए कहा। महात्मा जी ने उसे मंत्र देकर और भली बात भी समझा बुझाकर विदा किया। सेठ ने 3 महीनों तक लगातार मंत्र का जाप किया और महात्मा जी के कहे अनुसार 4वें महीने में ब्रह्म राक्षस उसके सम्मुख प्रकट हुआ। सेठ के समक्ष प्रकट होते ही वह बोला, भगवान, आपने मुझे क्यों याद किया है? आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना होगा? सेठ अपने सामने ब्रह्म राक्षस को देखकर पहले तो डर गया, फिर वह साहस जुटाकर बोला, तुम मेरे सेवक हो, इसलिए तुम्हें मेरे भी आदेशों को मानना होगा। ब्रह्म राक्षस बोला, ठीक है भगवान, मैं आपकी सारी आज्ञाओं का पालन करूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। किंतु आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? सेठ ने पूछा। ब्रह्म राक्षस बोला, मेरी शर्त है कि आपको मुझे हमेशा किसी न किसी काम में लगाए रखना होगा, वरना मैं आपको और आपके परिवार को मार दूंगा। सेठ यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उसे इतना अच्छा नौकर मिला है जो हमेशा सेवा में लगा रहना चाहता है। इसके बाद सेठ ने ब्रह्म राक्षस को एक सूखा हुआ कुआं दिखाते हुए कहा, इस कुएं को 2 किलोमीटर लंबा और खोदो। जो आज्ञा भगवान, आपकी हर आज्ञा का पालन होगा। सेवक ने नम्रता से कहा और काम शुरू कर दिया। सेठ ने सोचा कि ब्रह्म राक्षस को इतना बड़ा कुआं खोदने में कई महीने लग जाएंगे, पर उसने घर जाकर खाना ही खाया था कि ब्रह्म राक्षस काम खत्म करके वहाँ पहुँच गया। सेठ हैरान होकर पत्नी से बोला, यदि यह इसी रफ्तार से काम करता रहा तो हम इसे कब तक काम दे पाएंगे? इस तरह तो एक दिन खाली होकर यह हम सबको मार डालेगा। पत्नी सेठ को दिलासा देते हुए बोली, स्वामी, आप चिंता न करें, आप जब तक उसे काम दे सकते हैं दें, उसके बाद में मैं उसे ऐसा काम दूंगी जिसमें वह लंबे समय तक लगा रहेगा। सेठ ने उसे कई काम करने को दिए, पर उन कामों को उसने मिनटों में निपटा दिया। फिर ब्रह्म राक्षस ने गरज कर कहा, कोई और काम बचा है तो बताएं। वह सोच रहा था कि अब मालिक के पास कोई काम नहीं बचा है, इसलिए वह शर्त के मुताबिक उनको मारकर खा लेगा। सेठ बोला, मेरी पत्नी का एक काम तुम्हें करना होगा। मुझे लगता है कि इस काम को पूरा करने में तुम्हें वर्षों लग जाएंगे।
इसके बाद सेठ की पत्नी ने अपने सिर से एक बाल तोड़कर ब्रह्म राक्षस को देते हुए कहा, इस बाल को सीधा करके मुझे दो। ब्रह्म राक्षस ने बाल लेकर उसे सीधा करने का बहुत प्रयास किया, पर वह उसे सीधा नहीं कर पाया। तब ब्रह्म राक्षस ने सोचा, सुनार सोने के तार को आग में गर्म करके सीधा करता है, क्यों न मैं भी उसी उपाय को अपना कर देखूं? यह सोचकर उसने जैसे ही आग के सामने बाल को किया, बाल जल गया। ब्रह्म राक्षस डर गया कि उसका मालिक काम पूरा न होने पर उसे दंडित करेगा, इसलिए वह वहाँ से कहीं दूर भाग गया।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल जगत, जिससे प्रस्तुत कर रहे थे ईशान खापड़े, और इनकी वार्ता का शीर्षक था जिन से मुक्ति, और यह प्रस्तुति थी सप्तकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं बाल गीत।

साथियों, अभी आपने सुना एक बाल गीत। मित्रों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल जगत, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं ईशान खापड़े, और इनकी कहानी का शीर्षक है दोस्ती का रिश्ता, और यह प्रस्तुति है सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: कछुए और कबूतरी में गहरी दोस्ती थी। कछुआ एक झील में रहता था और कबूतरी झील के किनारे एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। कबूतरी ढूंढ ढूंढ कर अपने चोंच में दबाकर अच्छा अच्छा खाना लाती और कछुए के साथ मिलकर आराम से झील के किनारे बैठकर खाती। दोनों घंटों झील के किनारे बैठकर बातें किया करते। जब कबूतरी भोजन की तलाश में जाती तो कछुए को जरा भी अच्छा नहीं लगता। एक बार कहीं से घूमता हुआ एक खरगोश झील के किनारे आया। उसने कबूतरी और कछुए को बातें करते हुए देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। वह उन दोनों के पास गया और अपना परिचय देकर बोला, आप लोगों को देखकर लगता है कि आप दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती है। कबूतरी ने कहा, हाँ भैया, बस यूं ही समझ लो, हम दो शरीर एक जान हैं। आजकल ऐसी दोस्ती देखने को कहाँ मिलती है, मुझे आप दोनों से मिलकर बड़ी खुशी हुई, खरगोश बोला। उसने कहने से तो यह कह दिया, लेकिन वह मन ही मन उन दोनों की दोस्ती देखकर जल भुन गया था। अतः उसने उनकी दोस्ती तोड़ने का निर्णय कर लिया। कछुआ और कबूतरी खरगोश की मंशा से अनजान थे, वे दोनों थे उसे अच्छा मित्र समझ रहे थे। अब जब कबूतरी भोजन की तलाश में जाती तो कछुए को अकेला के पास आकर सबसे दोस्ती बढ़ाने लगा। जब उसे लगा कि कछुआ उस पर विश्वास करने लगा है, तब वह उसे कबूतरी के खिलाफ भड़काने लगा। यही काम वह कछुए की अनुपस्थिति में कबूतरी के साथ करता, यानी उसे कछुए के खिलाफ भड़काता। धीरे धीरे कबूतरी और कछुए की दोस्ती में दरार पड़ने लगी। वे दोनों एक दूसरे के बजाय अब खरगोश पर अधिक विश्वास करने लगी थे। एक दिन खरगोश ने अपनी आखिरी चाल चलते हुए कछुए से कहा, कछुए भाई, मैं बहुत दिनों से तुम्हें कुछ बताने का सोच रहा था, लेकिन बताते हुए संकोच हो रहा है।
1: अरे संकोच कैसा, तुम जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो, कछुए ने कहा।
0: दरअसल कबूतरी कह रही थी कि वह दिन भर प्रतीक्षा करती रहती है, जब कोई तुम्हारा शिकार करेगा तो वह भी उसे थोड़ा बहुत खाने को मिलेगा, फिर उसे तुम्हारे साथ खाना भी नहीं बांटना पड़ेगा। वह कह रही थी कि मेहनत करके अच्छा खाना वह लाती है और हिस्सेदारी बांटने तुम पहुंच जाते हो। मुझे तो यह सुनकर बड़ा बुरा लगा। मैंने सोचा तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें बड़ा बुरा लगेगा, तुम तो उसकी भलाई सोचते हो और वह,
1: खरगोश ने दुख प्रकट करते हुए कहा।
0: अच्छा, उसने ऐसा कहा, आज से उसकी और मेरी दोस्ती खत्म। तुमने अच्छा किया जो दुष्ट कबूतरी की मंशा मुझे बता दी, कछुआ बोला। यह कहकर कछुआ पानी के अंदर चला गया। अच्छा मौका जानकर खरगोश ने कबूतरी को आवाज लगाई तो कबूतरी अपने घोंसले के नीचे आ गई। खरगोश ने कबूतरी के कान भरते हुए कहा, मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ, इसलिए कछुए की मंशा से अवगत कराना चाहता हूँ। कछुए तुम्हारे अंडों पर बुरी नजर रखता है, वह इसी फिराक में लगा रहता है कि तुम्हारे अंडे नीचे गिरे और वह अपना भोजन बनाए। वह कई वर्षों से इसी जुगाड़ में है, पर भगवान करे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी ना हो, तुम्हारे अंडे कभी नहीं गिरे। तुम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसे अपना सच्चा दोस्त मानती हो, पर वह तो तुम्हारी दोस्ती के काबिल ही नहीं। मैं उस पर कितना भरोसा करती हूँ, परंतु आज उसकी असलियत जानकर मुझे उससे नफरत हो गई है, आज से उसकी और मेरी दोस्ती खत्म। यह कहकर कबूतरी उड़ अपने घोंसले में आ गई। अब तो कबूतरी और कछुआ एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। खरगोश उन दोनों की दोस्ती तुड़वाकर बहुत खुश था। समय यूं ही बीत। एक बार कबूतरी ने कुछ अंडे दिए। एक दिन हवा का तेज झोंका आया और कबूतरी के अंडे झील में गिर गए। कबूतरी खरगोश के पास मदद मांगने गई।

अदा किया। कबूतरी ने कहा, दोस्त, खरगोश की बातों में आकर तुमसे नाता तोड़ दिया था। उस दुष्ट की बात मानना मेरी सारी भूल थी, मुझे माफ कर दो। कछुआ बोला, मैं भी तो उसकी बातों में आ गया था। हम दोनों ने ही उसकी बातों में आकर भारी गलती की। हमें अपने दोस्ती पर भरोसा करना चाहिए था, ना कि उस दुष्ट पर। लेकिन आज से हम दोनों फिर से दोस्त बन गए। अब हम अपनी दोस्ती के बीच किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मेरे अच्छे दोस्त, कबूतरी ने कहा। कबूतरी और कछुआ फिर से दोस्त बन गए और मिलजुल कर रहने लगे।

जिसे प्रस्तुत कर रहे थे ईशान खापड़े, और इनकी कहानी का शीर्षक था दोस्ती का रिश्ता, और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वास मुंबई की।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम और अंत में नाटक। तो दोस्तों, अब हम अपने समय सारिणी के अनुसार हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम कृषि जगत की वार्ता से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मुखिया जी, एक बात आपसे मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या विशेष उद्यान फसल योजना से हमारे किसान भाइयों की तस्वीर सवरेगी, उन्हें कुछ फायदा होने वाला है या नहीं?
1: देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, विशेष उद्यान फसल योजना के तहत अब मंदिरों में, शादियों में और चुनाव में उपयोग होने वाले फूल राजधानी में ही खिलेंगे। राजधानी में फूलों की मांग को देखते हुए उद्यान विभाग ने पटना और जहानाबाद जिले के लिए विशेष उद्यान फसल योजना बनाई है।
0: इसके तहत किस तरह के किसानों का चयन किया जाना है?
1: इसके तहत अब भूमिहीन किसानों की जिंदगी भी अब फूलों से महकने वाली है। जमीन नहीं होने की लाचारी के कारण फूल की खेती नहीं कर पाने वाले किसानों को सरकार सहायता करेगी।
0: इसके लिए किसानों को क्या करना होगा, किस तरह के कदम उठाने होंगे?
1: इसके लिए उन्हें ये 10 से 12 किसानों का एक समूह बनाना पड़ेगा। लीज पर खरीदे हुए जमीन का आत्मा द्वारा रजिस्ट्रेशन कराकर समूह के नाम से स्थानीय बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा। सारे काम कृषि प्राधिकारी के देखरेख में ही होंगे।
0: इस पूरी प्रक्रिया को देखरेख करने के लिए क्या कोई समिति का भी गठन किया जाएगा?
1: ये पूरा काम कृषि प्राधिकारी की देखरेख में तो होगा ही। उसके बाद SMS और कृषि क्षेत्र के सलाहकार योजना की जांच करेंगे और अनुमान लगाएंगे कि ये समूह द्वारा फूल की खेती की जा रही है या नहीं। किसानों को फूल की खेती कैसे की जाए इसका भी प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। फिर किसान समूह के खाते में पैसा डाल दिया जाएगा।
0: इस योजना के तहत किसानों को कितना अनुदान दिया जाएगा मुखिया जी?
1: इस योजना के तहत किसानों को 90% का अनुदान दिया जाएगा। एक हेक्टेयर भूमि पर खेती की कुल लागत 24,000 रूपये में किसानों को अनुदान के रूप में राज्य सरकार 21,600 रूपया प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष कितना हेक्टेयर भूमि में खेती करने का इरादा है राज्य सरकार को?
1: 2012-13 की अगर बात करें तो 2012-13 के वित्तीय वर्ष में पटना जिले के 200 हेक्टेयर भूमि में गेंदे के फूल की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
0: राजधानी में हर दिन फूलों की मांग लगभग कितनी है मुखिया जी?
1: राजधानी में हर दिन लगभग 4,000 मीट्रिक टन फूलों की खपत होती है, लेकिन मांग के अनुसार उपज नहीं होने के कारण अधिकतर फूल दूसरे प्रदेशों से मंगाए जाते हैं या यूं कहें कि दूसरे प्रदेशों से आते हैं।
0: आशा की जानी चाहिए कि इस योजना से किसानों की दशा में सुधार होगा और वैसे किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं है उन्हें भी फायदा होगा। लेकिन मुखिया जी, एक बात का डर लगता है कि कहीं इसका भी हाल बेबी कॉर्न के जैसा ना हो जाए।
1: आपका डर उचित है। किसानों की विकास के लिए नई ऊंचाई हासिल करने के बाद भी मक्का उत्पादन में देश में स्थान रखने वाला राज्य समय के साथ कदम ताल नहीं कर सका। बड़ा बाजार होने के बावजूद पॉपकॉर्न के उत्पादन में किसानों की रुचि नहीं जगी, तो बेबी कॉर्न के उत्पादकों को राज्य में बाजार ही नहीं मिल पाया।
0: तो क्या इसी वजह से किसानों ने बेबी कॉर्न के उत्पादन में रुचि नहीं दिखाई मुखिया जी?
1: मूलतः इसी वजह से, या यूं कहें कि इस बड़ी समस्या ने किसानों को बेबी कॉर्न की खेती से मुंह मोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। किसान 3-4 वर्ष में ही पस्त हो गए। अब वे फिर से मक्का उत्पादन में जुट गए हैं और बेबी कॉर्न की खेती से उनका भटकाव हो गया है या मोह भंग हो गया है।
0: तो क्या इसे सरकार की बेरुखी मानी जाए या फिर कोई दूसरी कारण?
1: खास बात यह है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाने वाली राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 5 वर्ष पहले राज्य के कुछ किसानों ने बेबी कॉर्न का उत्पादन शुरू किया, लेकिन बाजार और रख रखाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण उनका उत्साह धीरे धीरे ठंडा होता गया और अब तो बिल्कुल ही खत्म जैसा हो गया है।
0: क्या उनके उत्पादन की खपत यहाँ के बाजार में बिल्कुल ही नहीं हो पाई मुखिया जी?
1: 2 वर्ष तक उत्पादन कम होने के कारण राजधानी पटना के बाजार में उनके माल की खपत हो जाती थी, लेकिन ज्यों ही उन्होंने उत्पादन बढ़ाना शुरू किया बाजार की समस्या उत्पन्न हो गई। 1000 क्विंटल उत्पादन करने वाले किसान 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचते बेचते थक गए। दूसरे प्रदेशों में भेजने के लिए कोल्ड चेन की व्यवस्था नहीं हो सकी। थककर किसानों ने इसे मुंह मोड़ लिया।
0: इसके प्रति किसानों में किस तरह की प्रतिक्रिया देखी गई है, उनका क्या कहना था?
1: पटना की माधुरी सिंह कहती हैं कि 5 वर्ष पूर्व उन्होंने बेबी कॉर्न की फसल लगाई, लेकिन बाजार की समस्या ने फसल बदलने पर विवश कर दिया। यही हाल बेगूसराय के रमेश और पूर्णिया के रंजन का है। उन लोगों ने भी 2 वर्ष इसकी खेती करने के बाद मक्का की खेती शुरू कर दी।
0: इससे तो किसानों का बहुत नुकसान हुआ मुखिया जी?
1: हाँ बिल्कुल, किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उनका कहना है कि उन्हें बहुत नुकसान इसलिए नहीं उठाना पड़ा क्योंकि वे बेबी कॉर्न की उस वेराइटी की खेती करते थे जो ज्यादा दिन खेत में रहने पर मक्का में बदल जाता है।
0: शुद्ध बेबी कॉर्न की खेती करने पर क्या ऐसा नहीं होता है मुखिया जी?
1: शुद्ध बेबी कॉर्न तो तैयार होने के निर्धारित समय से 2 दिन से अधिक खेत में छोड़ देने पर वो अपने आप नष्ट हो जाता है। तोड़कर रखना भी संभव नहीं होता है, इसके लिए डीप फ्रीजर की जरूरत होती है। इन्हीं सारी समस्याओं के चलते हमारे यहाँ के किसान भाई जो हैं बेबी कॉर्न की खेती से अपना मुंह मोड़ लिए हैं और पुनः उन्होंने जो परंपरागत खेती है मक्का की उसकी खेती करना शुरू कर दिया है। नुकसान शुरुआती दौर में उन्हें बहुत उठाना पड़ा क्योंकि वे उसकी वेराइटी, उसके नस्ल और उसके किस्म के बारे में भी वो सही ढंग से अवगत नहीं थे। शुरू शुरू में उन्होंने सोचा कि शायद बेबी कॉर्न की खेती करने से मक्का से ज्यादा आमदनी होगी और इससे उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बाजार में बेबी कॉर्न की मांग के से ज्यादा उनकी फसल हुई और बाजार में उनका मूल्य सही ढंग से नहीं मिल पाया, जिसके कारण उन्होंने अंततः बेबी कॉर्न की खेती नहीं करने का फैसला लिया। अगले कार्यक्रम में फिर जब आपसे मुलाकात होगी तो हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये राज्य को हरा भरा रखने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है, खास करके हरियाली मिशन योजना के तहत। तो अभी हम लोग चलते हैं, फिर बातें होगी कि खेती गृहस्थी से संबंध में। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।
0: धन्यवाद मुखिया जी।

दोस्तों, अभी आप सभी सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, इस वार्ता में हमें काफी सारी महत्वपूर्ण और रोचक बातें बताई गई हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी किसान श्रोताओं को इन बातों से लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब हम अपने अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें कानून के बारे में बताएंगे। जी हाँ साथियों, मैं अपने अगले कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान, और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: रितेश जी और कपूर साहब, आप दोनों का कानूनी परिचर्चा में स्वागत है।
1: जी, आपका भी धन्यवाद।
0: आज के इस कार्यक्रम में हम मानवाधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे।
2: जी हाँ वीरेंद्र जी, मानवाधिकार की जानकारी सभी नागरिकों को होनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: मानवाधिकार के बारे में पुरुष तो थोड़ा बहुत जागरूक है, पर हमारी महिलाओं को इसके बारे में और सजग रहने की जरूरत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कपूर साहब कि मानवाधिकार से महिलाओं का संबंध किस प्रकार से है।
1: देखिए वीरेंद्र जी और रितेश जी,
2: जी
1: हर मानवाधिकार स्त्री का अधिकार है। प्रख्यात नारीवादी दार्शनिक सिमोन डी बुवार ने अपनी चर्चित कृति द सेकंड सेक्स में एक जगह लिखा है कि स्त्री तू पैदा नहीं होती, बना दी जाती है। आज का नारीवादी आंदोलन सिमोन के युग से काफी आगे आ चुका है। ऐसा कहना गलत नहीं, किंतु विश्व के स्तर पर प्रचलित कई नारीवादी विचारधाराओं और उन पर आधारित नारीवादी एजेंडा पर गौर करने में कभी कभी गलतफहमी होती है कि जो बुनियादी समझ सिनेमा की, यूं कहें कि सिमोन की कृति में मौजूद है, वो आज की विभिन्न विचारधाराओं में प्रवर्तकों और व्यवहारकों के लिए नारा हो सकता है, लेकिन उनकी बुनियादी समझ का अंतर्निहित घटक या तत्व नहीं लगता।
0: सिमोन की इस सोच के पीछे
1: जी
0: क्या उस समय की परिस्थितियां थी कपूर साहब, जो खास करके महिलाओं को नियंत्रित करती थी, या फिर कुछ दूसरी खास वजहें रही थी?
1: वीरेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि सिमोन की सोच की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उसने न केवल यूरोपीय या पश्चिमी संस्कृति, मनोविज्ञान, सामाजिकता आदि का गंभीर अध्ययन किया था, बल्कि एशियाई और विशेषकर हिंदुस्तानी सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक मनोविज्ञान आदि को भी उतनी सूक्ष्म पकड़ हासिल की थी। जिस पाश्चात्य नारीवादी आंदोलन की छाप हिंदुस्तानी नारीवादी सोच और व्यवहारिकता में नकल की हद तक पिछले कुछ साल पहले तक स्पष्ट दिखाई देती है, सिमोन ने तब उस पाश्चात्य संस्कृति में औरत की द्वयम सामाजिक स्थिति पर पहली चोट की थी।
0: जी जी।
1: सिमोन जैसी नारीवादी दार्शनिक या क्लारा जेटकिन जैसी राजनैतिक व्यवहारिक नारीवादी के चिंतन या कर्म की व्याख्या नहीं किया जा सकता। वीरेंद्र जी,
2: विषय यह है कपूर साहब कि सिमोन ने जब महसूस किया कि स्त्री समाज में पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है, तो उसका अर्थ हमारी भारतीय सामाजिकता और संस्कृति के लिए कितना प्रासंगिक है। पैदा तो पुरुष भी होते हैं और स्त्री भी होती है।
1: ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन दोनों की कुदरती पैदाइश पालन पोषण के दौर में दो विभिन्न रोल मॉडल्स की तरह अलग अलग ढांचे में विकसित होती जाती है, जिसका रूप होता है पुरुष यानी एक कर्ता एवं एक्टिव मॉडल, और स्त्री एक भोक्ता और यानी कि पैसिव मॉडल। जन्म से ही शुरू के चंद वर्षों के बाद सबसे पहले हमारे पारिवारिक ढांचे में स्त्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल कपूर साहब।
1: उसका मानसिक विकास एक मनुष्य, एक व्यक्ति के रूप में रेखांकित नहीं होता, बल्कि एक सेक्स, एक लिंग यानी महज एक स्त्री के रूप में होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपने काफी निचोड़ बात कही है कपूर साहब। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि एक पुरुष का मानसिक विकास, उसकी पूरी परवरिश इस तरह से की जाती है कि वह एक मनुष्य है, एक व्यक्ति पहले होता है, एक सेक्स या पुरुष बाद में। स्त्री पुरुष के भेद तभी से शुरू हो जाते हैं जब से उन दोनों का जन्म होता है।
1: जी आप बिल्कुल सही करें वीरेंद्र जी, यानी स्त्री से उसका एक व्यक्ति या एक मनुष्य के रूप में विकसित होने का कुदरती अधिकार जन्म से ही छीन लिया जाता है।
0: जी जी।
1: जब मानवाधिकार के संदर्भ में स्त्री के अधिकारों पर बहस विश्लेषण के मौके आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बात यहीं से शुरू होती है। ये रोल मॉडल अलग बात है कि ऐसे व्यक्ति का होता है जिसकी भूमिका परिवार समाज में एक एक्टिव पार्टनर की तरह होती है।
2: पश्चिमी नारीवादी सोच को खारिज करते हुए यहाँ मेरी मान्यता है कि हमारी सामाजिक पारिवारिक संरचना अक्सर पुरुषों को भी एक व्यक्ति से ज्यादा एक पुरुष की तरह पलने विकसित होने को मजबूर करती है।
1: बिल्कुल सही है।
2: मिसाल के तौर पर हमारे इर्द गिर्द ऐसी नसीहत बचपन से ही लड़कों को देने वाले परिवार मिल जाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल मिल जाते हैं।
2: मर्दों को रोना शोभा नहीं देता, तुम तो मर्द हो, तुम्हें औरतों के बीच बैठना शोभा नहीं देता, आदि आदि।
1: सही सही कह रहे हैं आप रितेश जी, सही है। लेकिन ये रोल मॉडल बुनियादी रूप से जहाँ एक पुरुष को एक व्यक्ति बनने का पूरा अवसर देते हैं, वही एक स्त्री को महज एक स्त्री के रूप में खुद को जानने पहचानने का माहौल देते हैं। ये बुनियादी और कुदरती सच है। हर पुरुष पहले एक मनुष्य है तब एक सेक्स, और हर स्त्री पहले एक मनुष्य है तब एक सेक्स को नकार दिया जाता है। जब एक स्त्री और एक मानवाधिकार की बात चलती है तो शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि हर मानवाधिकार स्त्रियों का अधिकार है, न कि केवल पुरुषों का।
0: अगर इसी सिद्धांत को भारत और खास करके बिहार के व्यवहारिक परिदृश्य में देखें कपूर साहब
1: जी,
0: तो किस तरह की परिस्थितियां नजर आती है आपको?
1: देखिए वीरेंद्र जी, भारत और बिहार के व्यवहारिक परिदृश्य में देखते हैं तो स्थिति यह है कि मानवाधिकारों को हासिल करने का अधिकार केवल उन सुविधाभोगी सामाजिक वर्गों को है जिसके पास उसको हासिल करने की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और इन सबसे भी इतर शक्ति व साधन मौजूद है।
0: जी जी।
1: इस संदर्भ में मानवाधिकार सिर्फ उन्हीं भावनाओं को या उन्हीं लोगों की बपौती बनकर रह जाते हैं जो मानव कल्याण के योग्य हैं, और मानव कल्याण की योग्यता उन्हीं लोगों के पास है जिनके पास कम से कम कोई शक्ति या पावर मौजूद है।
2: इस बिंदु पर पहुंचकर ऐसा लगता है कि समाज में जेंडर डिवीजन ज्यादा महत्व नहीं रखता, क्लास डिवीजन ज्यादा महत्व रखता है।
1: देखिए रितेश जी, ऐसा नहीं है। जहां क्लास की धारणा सामाजिक विभाजन को ज्यादा रेखांकित करती है, वहीं जेंडर विभाजन हर क्लास में मौजूद होता है।
2: जी जी।
1: यही वजह है कि अब नारीवादी चिंतकों और व्यवहारकों को सोचना पड़ रहा है कि घर के शयन कक्ष से संयुक्त राष्ट्र संघ की साम्राज्यवादी नौकरशाही के वातानुकूलित कक्षों तक स्त्रियों के अधिकारों का विस्तार सिर्फ वर्गीय संरचना के दायरे में बांधकर देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है। ये सवाल कि स्त्रियां घर के चार दीवारी से विश्व के क्षितिज तक एक होमोजेंस ग्रुप नहीं हो पाती और समस्त सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विभाजनों के साथ ही विभाजित है, तो ग्लोबल सिस्टरहुड का नारा एक वैश्विक नारा किन किन मुद्दों पर बन सकता है, आज के नारीवादी चिंतन और आंदोलन को झकझोर रहा है।
0: बिल्कुल कपूर साहब, आपका तर्क काफी मजबूत है। तो क्या यह माना जाए कि सिर्फ स्त्री का स्त्री होना ही वैश्विक बहनों के नारे को सार्थक करता भी रहा है या कर सकता है?
1: लेकिन इतना तो वीरेंद्र जी मैं अवश्य कहूंगा कि हर समाज में स्त्री का स्त्री होना भी तो अलग अलग पहचान रखता है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हर मानवाधिकार स्त्री का अधिकार भी है। इसका सत्यापन भारत में और बिहार में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं और उस आप पाएंगे, पात्र भी हैं कि शिक्षा के रोजगार के अवसर तक, परवरिश से लेकर शादी तक, जन्म से मृत्यु तक स्त्रियां हर कदम पर, जहां तक खुद को खुद के बोध से खुद को बांध पाना या बांध पाती हैं, वही अधिकार बोध से खुद को लगभग रिक्त है। ये आम स्थिति है और समाज का एक छोटा सा हिस्सा अगर इस आम स्थिति से बेहतर है तो उसे विशेष स्थिति में रखना जाना चाहिए या रखा भी जाता है।
2: इसके लिए सामाजिक पितृसत्तात्मक कितना दोषी है कपूर साहब? ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए परिवार रूपी संस्था कि यह व्यवस्था दोषी नहीं है?
1: ये व्यवस्था जहां लड़कों के मुकाबले लड़कियों को शिक्षा, पोषण और रोजगार, स्वरोजगार आदि के लिए जरिए आर्थिक स्वावलंबन के क्षेत्र में दुय्यम दर्जा देता है, वही विवाह की उम्र आते आते विवाह ही एकमात्र सहारा है या स्त्री जीवन की सफलता है। इस मान्यता को स्त्री न भी चाहे तो वो व्यवस्था इसका निर्वाह कराने से बाद नहीं आता। सवाल चाहे वंशधरता का हो या फिर आर्थिक संसाधनों के नियंत्रण का, पितृसत्ता हमारी पारिवारिक और सामाजिक संरचना का प्रभुत्वशाली स्वरूप है।
2: जी जी,
0: बिल्कुल आपका कहना जायज है कपूर साहब कि पितृसत्ता जो है
1: जी,
0: महिलाओं को दोयम दर्जे में रखने के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है।
1: जी।
0: अगर हमारे समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था नहीं होती तो शायद आज जो महिलाओं की स्थिति है वो शायद नहीं रह पाती। दहेज का प्रचलन जो हमारे समाज में है वह भी क्या इसी व्यवस्था के कारण है और इसको शादी के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ दिया गया है?
1: वृंद जी, शादी के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ गया दहेज प्रचलन ये प्रथा नहीं है, क्योंकि दहेज का मौजूदा रूप प्रथा नहीं है। स्त्री को मनुष्य की श्रेणी से कितना नीचे गिरा देता है ये बताने की जरूरत नहीं। इसी संदर्भ में ये कहना गलत नहीं हुआ कि एक स्त्री को पुरुष एक साथी के रूप में पाने का जो कुदरती अधिकार है वो दहेज प्रचलन के मौजूदा स्वरूप की सामाजिक संस्थात्मकता के शिकंजे में घुटकर दम तोड़ देता है। स्त्री के लिए एक मानवाधिकार की तरह इस तरह हत्या सामाजिक पितृसत्ता की एक बर्बर मिसाल है।
2: जी जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कपूर साहब। दहेज प्रचलन का खात्मा इस मानवाधिकार की प्राप्ति की दिशा में एक जरूरी पहल है। कई बार पारिवारिक पितृसत्ता के शिकंजे ढीले पड़ जाते हैं तो सामाजिक पितृसत्ता का शिकंजा ज्यादा सख्त हो जाता है।
1: समाज की इस ढांचा में जब तक हम बदलाव नहीं करते तो फिर हम स्त्री मानवाधिकार की बात कैसे करेंगे? वीरेंद्र जी और रितेश जी, मैं आपको बता दूं कि कैसे मिलेगा उन्हें सही मायने में मानवाधिकार, ये प्रश्न भी हमारे सामने विकट स्थिति उत्पन्न करता है। इसके बारे में और भी बातें होंगी, विशेषकर आप तो वीरेंद्र जी इसके इन सब सारे विषयों के बारे में आपको सारी बातों की जानकारी हो गई है और यदि विशेष बात की जानना चाहते हैं तो हम सब सवाल कर सकते हैं।
0: कपूर साहब, इसके बारे में और विस्तार पूर्वक हम चर्चा आपसे करेंगे
1: जी,
0: लेकिन अगले कार्यक्रम में करेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं
1: जी।
0: आगे भी स्त्री मानवाधिकार से संबंधित बातों की चर्चा आपके साथ जारी रहेगी।
1: जी बिल्कुल,
0: तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कपूर साहब, फिर मिलते हैं तो बात
1: जी। आप दोनों को भी मेरी ओर से नमस्कार, धन्यवाद।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है वसुधैव कुटुम्बकम। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है गैलीलियो और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

व्यक्ति विशिष्ट वार्ता सुनिए। गैलीलियो महान व्यक्ति, महान पुरुष हमेशा हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम प्रेरित होते हैं। हम उनके द्वारा किए कार्यों, अनुसंधानों, खोजों, दया, प्रेम, सदाचार आदि से प्रेरणा पाते हैं। दोस्तों, महान जन अपने अद्भुत कार्यों के द्वारा हमें और हमारे जीवन को अधिक सुविधाजनक एवं सुखमय बना देते हैं। उनके विशेष कार्यों से हम प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। जीवन की यह भी एक सच्चाई है कि दुनिया इन महान व्यक्तियों के कारनामों, महान कार्यों एवं सद्गुणों एवं सद्विचारों से चलती है। इन महान विभूतियों ने इतने बड़े बड़े आविष्कार एवं अनुसंधान किए हैं कि जीवन बड़ा आसान सा हो गया है। तो दोस्तों, इटली में स्थित पीसा की मीनार सारी दुनिया के लिए अजूबा है। यह आश्चर्य से भरा है और दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। इसी पीसा नगर में 15 फरवरी सन 1564 ईस्वी को गैलीलियो का जन्म हुआ था। उनके पिता एक संगीतकार थे। पीसा के चर्च में भक्ति परक वाद्य बजाया करते थे। एक पुरोहित के माध्यम से ही उन्होंने अपने बेटे गैलीलियो को मठ के एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। दोस्तों, जब गैलीलियो 16 वर्ष के हुए, उन्होंने अपने पिता से सन्यासी बनने की अनुमति मांगी। पर उनके पिता बड़े समझदार थे, गैलीलियो की प्रतिभा को जानते थे। पिता ने उन्हें डॉक्टरी पढ़ने के लिए पीसा के विश्वविद्यालय में भेज दिया। पर गैलीलियो की डॉक्टरी में कोई रुचि न थी। उन्हें तो गणित और विज्ञान विषय अच्छे लगते थे। एक दिन की बात है, गैलीलियो पीसा के महान गिरजाघर में प्रार्थना कर रहे थे। तभी उनका ध्यान झूलते हुए झाड़ फानुस को देखकर भंग हो गया। उन्होंने अपनी नाड़ी को कमानी से चलने वाली घड़ी की तरह इस्तेमाल किया और खोज निकाला कि झाड़ फानुस द्वारा बनाए गए मेहराब की लंबाई की अपेक्षा दोलन की गति में बराबर समय लगता है। इसी सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार हुआ। वे डॉक्टरी की पढ़ाई तो छोड़ चुके थे, अब तो गैलीलियो यूक्लिड एवं आर्किमिडीज के सिद्धांत में गोता लगाने लगे थे। उनके पास जो भी पूंजी थी उसे प्रयोगों पर खर्च करने लगे। क्रमशः 8 साल के कठोर परिश्रम के बाद तस्किनी के एक महान ड्यूक के रूप में उन्हें मान्यता मिली। गणित में गैलीलियो की योग्यता एवं क्षमता की जानकारी धीरे धीरे सबको होने लगी। पीसा के विश्वविद्यालय में उन्हें गणित के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। अब गैलीलियो की छोटी मोटी आर्थिक परेशानी भी दूर हो चुकी थी। दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरने वाले पदार्थों की गतिशीलता के संबंध में उन्होंने अनेक नए प्रयोग किए और निर्णय दिया कि लंबवत प्रक्षिप्त वस्तुएं प्रक्षेप्य का मार्ग निर्धारण करती हैं और आकार में बलामिक होती हैं। एक दिन गजब हो गया। गैलीलियो पीसा की झुकी हुई मीनार के ऊपर चढ़ गया। वहां से उन्होंने एक साथ अलग अलग वजन की 2 वस्तुएं नीचे गिरा दी। वे दोनों वस्तुएं जमीन पर एक ही साथ गिरी। यह प्रयोग कर गैलीलियो ने अरस्तु की गतिशीलता एवं गुरुत्वाकर्षण के नियम को गलत साबित कर दिया। इसके बाद तो गैलीलियो की ख्याति पूरी इटली में फैलने लगी। ख्याति एवं सफलता प्राप्त करते ही अनेक दुश्मन एवं विद्रोही भी पैदा हो गए। स्थापित भौतिक सिद्धांतों को गलत साबित करने के कारण उन पर अनेक अभियोग लगाए गए। दोस्तों, गैलीलियो बड़े ही शांत प्रकृति के व्यक्ति थे। ऐसे क्षण में भी वे घबराए नहीं, अपितु शांति बनाए रखा उन्होंने। अपने पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और पीसा छोड़कर चले गए। 1592 में वेनिस की सीनेट द्वारा गैलीलियो को पादुआ विश्वविद्यालय में गणित विभाग में फिर से नियुक्त किया गया। ये वर्ष उनके लिए हर्षोल्लास एवं खुशी के रहे। दुनिया के तमाम विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। गुरु शिष्य की परंपरा भी गैलीलियो ने निभाई। अधिकांश विद्यार्थी परिवार के सदस्य की तरह उनके ही घर में रहते थे और पढ़ाई करते थे।
यह समय उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। वे बहुत खुश थे और खुशी खुशी अपने प्रयोगों पर ध्यान दे रहे थे और नए नए आविष्कार करने में लगे थे। उन्होंने अनेक उपलब्धियां भी हासिल की। दोस्तों, गति के लिए मानक निर्धारित किया, पदार्थ के लिए बल, ध्वनि और इसके तथ्यों, हवा का घनत्व और दबाव संबंधी सिद्धांतों का भी प्रतिपादन उन्होंने भलीभांति किया। सन 1598 में उन्होंने थर्मामीटर का आविष्कार किया। इसके बाद नाड़ी माप यंत्र का भी आविष्कार किया। 1609 में दूरस्थ नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। दूरबीन यंत्र से विद्यार्थी एवं प्रशंसक इतने प्रभावित हुए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। चंद्रमा पर बड़े बड़े पहाड़ों को देखकर एवं समुद्र को देखकर वे हक्के बक्के रह गए। तो दोस्तों, उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उन्होंने पूरे विश्व को यह भी बताया कि आकाश गंगा नक्षत्रों का समूह है और हर नक्षत्र अपने आप में एक सूर्य है। सन 1610 में गैलीलियो ने यह भी खोज निकाला कि बृहस्पति के चारों ओर और चार उपग्रह हैं। उन्हें यकीन हो गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसी के साथ उन्होंने समुद्र की गहराई तथा पहाड़ों की ऊंचाई के मापक यंत्रों का भी आविष्कार किया। 17वीं शताब्दी में गैलीलियो ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया। अब गैलीलियो विज्ञान के लिए एक चमत्कारी पुरुष बन चुके थे। यूरोपवासी उन्हें एक महान वरदान के रूप में मानने लगे थे। 46 वर्ष के हो चुके थे गैलीलियो। पादुआ विश्वविद्यालय में आजीवन गणित के पद पर नियुक्त कर लिए गए। आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो चली थी। इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी गैलीलियो अपनी मातृभूमि को भुला नहीं पाए। अंत में पीसा के राजकुमार का निमंत्रण मिला और वे अपने स्वदेश लौट आए। दोस्तों, देश लौटकर उन्होंने स्वयं को नई नई खगोलीय खोजों में लगा दिया। गैलीलियो ने सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती रहती है। दोस्तों, गैलीलियो ने 8वें संत पिता के समय अनेक किताबें भी लिखीं और उन किताबों का प्रकाशन भी हुआ। यह किताब जड़त्व एवं गतिवर्धन के बारे में थी, जिसे एक शताब्दी बाद न्यूटन ने गति के सिद्धांत के रूप में पूर्णता प्रदान की। दोस्तों, 8 जनवरी सन 1642 को 78 वर्ष की आयु में गैलीलियो ने अपनी पुत्री की गोद में दम तोड़ दिया। करीब एक शताब्दी बाद गैलीलियो की अस्थियों को हटाकर फ्लोरेंस के सांता क्रोचे नामक चर्च में दफना दिया गया। उनकी स्मृति में वहां एक स्मारक भी बनाया गया है। 1979 में कलीसिया द्वारा उसकी पुनः स्थापना की गई। तो दोस्तों, गैलीलियो ने सारी दुनिया के लिए अनेक आविष्कार किए। ये सारे आविष्कार मानव जाति के लिए अनमोल तोहफा है। भले ही सदियां बढ़ती जाएं, पर गैलीलियो और उनके काम के जादू को मानव समाज कभी नहीं भुला सकता। दोस्तों, ऐसे आविष्कारक बहुत कम हुए हैं जिन्होंने सारी दुनिया के लिए इतने सारे महत्वपूर्ण आविष्कार किए। भले ही गैलीलियो का जीवन कुछ कारणों से दुखमय रहा, अभावों में बीता, पर उन्होंने अपने दम पर वे सारे आविष्कार किए जिसकी दुनिया को जरूरत थी और दुनिया में जीत हासिल की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था गैलीलियो, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है नाटक, जिसका शीर्षक है बदलते रिश्ते भाग एक। इस नाटक के लेखक एवं निर्देशक हैं संदीप दुबे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं नाटक।

0: प्रस्तुत है नाटक बदलते रिश्ते। इसके लेखक और निर्देशक हैं संदीप दुबे।
1: अजय, हाँ, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए तुम कितनी मेहनत करते हो, करते भी हो या सोचते हो? सामने वाले से मात्र लेना ही तुम्हारा अधिकार है क्या, या सोचते हो सामने वाला भला जाएगा भी कहां? आखिर वह तुम्हारा रिश्तेदार जो है। रिश्ता भी हमारे कपड़ों की तरह मेला हो जाता है, जिसे हर पल धो पोंछ कर साफ करना पड़ता है। जो 10 साल पहले तुम्हारा था, वह 10 साल बाद भी तुम्हारा ही है। इसकी क्या गारंटी है तुम्हारे पास? मां बाप तो मां बाप है ना। अजय, हो सकता है बेटे को देख मोह जागे और छाती से लगा ले तुम्हें, लेकिन सुधा के पास क्या अधिकार लेकर जाओगे? क्या तुम्हारा बच्चा तुम्हें पिता मानेगा, जिसे अजन्मा छोड़कर तुम अमेरिका भाग गए थे चुपचाप बिना कुछ बताए?
2: श्याम, सुधा मेरी पत्नी है, उसे कोई कानून नहीं झुटला सकता, और उस बच्चे में मेरा खून है।
1: तो क्या कानून के आगे गुहार लगाओगे कि वह तुम्हें तुम्हारी पत्नी दिला दे? बीवी बच्चे का स्वाभिमान और मन क्या कोई हवेली है जिसकी चाबी कानून तुम्हारे हाथ में रख देगा और वह तुम्हारी हो जाएगी?
2: तुम्हें सुधा की इतनी चिंता क्यों हो रही है श्याम? क्या लगती है वह तुम्हारी?
1: क्या लगती है? यह प्रश्न आज 10 साल बाद ही क्यों याद आया तुम्हें? इतने साल तो तुमने मुड़कर भी नहीं देखा कि वह जिंदा है या मर गई। जब तुम अमेरिका भाग गए थे, 100 रुपए भी नहीं थे उसके पास। उसके गहने तक निकालकर बेच डाले थे तुमने। तुम्हारे पीछे किससे हाथ फैलाए होंगे उसने, किस किस ने कैसी कैसी नजर डाली होगी, क्या तुम्हें ख्याल आया था? और आज पूछ रहे हो मेरी क्या लगती?
2: देखो श्याम, मुझसे बहस मत करो, सुधा का पता बता दो।
1: अरे जाओ, सुधा का पता बता दो, अपने घर और अपने माँ बाप से उसका पता पूछो। भला मैं उसका कौन हूँ?
2: मुझे किसी ने बताया है कि सुधा का तुमसे बहुत गहरा याराना है।
1: याराना है, यह जानते हुए भी कि उसका मेरे साथ पुराना याराना है? क्या दूषित हो चुकी पत्नी भी स्वीकार है तुम्हें?
2: मैं तुम्हारी जान ले लूंगा श्याम।
1: जान ही तो लेना आता है तुम्हें, तुमने जिंदा छोड़ा ही कहा है मुझे, जो जान लेना चाहते हो। हाथ हटाओ वरना
2: मुझे सुधा का पता बता दो।
1: अपने भाइयों से मांगो सुधा का पता, उन्हीं के पास छोड़कर गए थे ना उसे। तब सोचा था अमेरिका में स्वर्ग बाहें फैलाए बस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह नहीं सोचा था कि सुधा का क्या होगा। मात्र 2 महीने पहले ही ब्याह कर लाई पत्नी को किसके सहारे छोड़कर गए थे तुम? रोटी के टुकड़ों के बदले तुम्हारे भाई सुधा को अपनी जागीर समझने लगे थे।
2: बकते हो तुम अपना पाप छिपाना चाहते हो।
1: मेरा पाप? अजय, मेरा पाप है कहां? सुधा मेरे साथ मेरे घर में तो नहीं रहती ना? हाँ, मेरा पाप तब जरूर था जब सुधा अपने तार तार कपड़ों में मेरे घर चली आई थी, सिर्फ एक रात का सहारा मांगने के लिए। तुम्हारे भाई ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था इसके अलावा कि वह घर छोड़कर ही भाग जाती। वह एक रात जरूर यहां रही इस घर में। मेरी मां भी तब जिंदा थी। अपना पाप तुम्हारे भाई छिपा रहे हैं अजय।
2: सुधा का पता, मेरे बेटे का पता बता दो प्लीज। प्लीज सुधा का पता बता दो।
1: अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, सो जाओ। शराब पीकर क्या हालत बना ली है तुमने, कल डॉक्टर के पास चलूंगा। सो जाओ अजय, सो जाओ।

0: अजय।
1: हाँ श्याम।
0: डॉक्टर का कहना है दोनों गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया तुम्हारे। क्या अमेरिका में तुम्हारा इलाज?
1: मुझे मेरे बेटे का पता दे दो श्याम।
0: जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे मैं कुछ नहीं करूंगा, और यहीं सरकारी अस्पताल में तुम्हें फेंक आऊंगा, समझे? मैं पूछ रहा हूं क्या अमेरिका में तुम्हारा इलाज नहीं हो पाया जो यहां चले आए?
1: मुझे मेरे बेटे का एक गुर्दा चाहिए।
0: क्या गुर्दा?
1: हाँ श्याम, वह मेरा खून है ना, उसके साथ तो मेरा खून मिल सकता है ना। मेरे बच्चे का गुर्दा तो मेरा शरीर स्वीकार कर लेगा ना। बस

0: मैं तुम्हारा पूरा कर्ज उतार दूंगा। सुधा और मेरे बेटे को भी अमेरिका बुला लूंगा। तुम चाहो तो तुम भी मेरे कारोबार में शामिल हो सकते हो। मेरे पास बहुत रुपया है श्याम।
1: हालात से तो ऐसा नहीं लगता।
0: देखो, मैं रुपया लाया हूं, सारा रुपया उधार है माँ और पिताजी के पास। तुम सुधा को बुला लो।
1: इतना रुपया है तो एक गुर्दा वहीं अमेरिका में खरीद क्यों नहीं लिया? पैसे वाला इंसान तो सब खरीद सकता है ना जय।
0: मेरा खून किसी के भी साथ मिल नहीं खाता।
1: तुम्हारा तो दिल भी किसी के साथ मिल नहीं खाता, तो खून कहां से मिल जाएगा? क्या वहां तुम्हारा परिवार नहीं
0: है? दो बच्चे हैं, मगर वे तो छोटे हैं ना।
1: तो क्या सुधा का बच्चा छोटा नहीं?
0: हम डॉक्टर से बात कर लेंगे, तुम उसे ले आओ बस। मैं पूरी कीमत देने को तैयार हूं श्याम।
1: तुम अपने घर जाओ अजय, मैं सुधा को फोन करता हूं, वह कल तक आ जाएगी।
0: हम वही चलते हैं ना?
1: नहीं, जो भी होगा तुम्हारे माँ बाप और भाइयों के सामने होगा। इंतजार करूं।

0: आओ सुधा, कितने दिन की छुट्टियां लेकर आई हो?
1: जब तक आप ठीक ना हो जाएं।
0: मुझे क्या हुआ?
1: तो क्या फोन पर झूठ कहा था? राहुल का परिवार उसे याद कर रहा है, जल्दी आ जाओ।
0: नहीं तो, सच कहा था। दरअसल राहुल का पिता आया है, उससे मिलने। अजय आया है सुधा।
1: क्या कह रहे हैं आप?
0: सच कह रहा हूँ, पिछले दो दिन से वह यहीं था।
1: नहीं।
0: हाँ, मेरे ही घर में, पर अभी हमें अजय के घर जाना होगा सुधा।
1: क्या?
0: अजय को तुमसे कुछ काम है, उसे क्या उत्तर देना है क्या नहीं, इसका निर्णय तो तुम्हें ही लेना होगा।
1: क्या काम है उसे? कहीं वो मुझे साथ ले जाने तो नहीं आया? अब मैं उसके साथ?
0: तुम्हारा पति है वह, आया है तो।
1: पति के नाम का सिंदूर तो मैंने कब का पोंछ दिया। नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए।
0: तो इतने साल क्या सोचती रही तुम? कुछ तो आज थी ना, मेरी बात मानो। चलो सुधा, मेरे साथ चलो।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक जिसका शीर्षक था बदलते रिश्ते भाग एक, और इसके लेखक एवं निर्देशक थे संदीप दुबे। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोताओं को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास और अंत में युग संचार। तो दोस्तों, अब हम अपनी समय सारणी के अनुसार हमारा यह कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात से, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वतंत्र कुमार ओझा और उनके साथ हैं अजमेर से आए श्री मुकेश व्यास। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात स्वतंत्र कुमार ओझा के साथ।

0: रेडियो वेरिटास के हमारे सभी सुनने वाले साथियों को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं अजमेर से आए श्री मुकेश व्यास। आप विगत 30 वर्षों से राजस्थान में रह रहे हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे और इनके बारे में और कई सारी जानकारी हमें जानने को मिलेगी। व्यास जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ?
1: मेरा जन्म रतलाम में हुआ था, मध्य प्रदेश के अंदर।
0: तो फिर राजस्थान कैसे पहुंच गए आप?
1: राजस्थान मेरे पिताजी जो हैं वो प्रमुख थे बिजली घर के, जो एक निजी संस्था हुआ करती थी, कंपनी हुआ करती थी। उसमें 9 या ब्रांचेस थी अलग अलग जगह पे। उनके वो प्रमुख थे और राजस्थान में अजमेर में ही निवास करते थे।
0: तो उन दिनों में मतलब शासकीय बिजली नहीं होती थी क्या?
1: जी नहीं, उस टाइम पे निजी ही कंपनी थी अजमेर के अंदर।
0: कितने वर्ष पुरानी बात है ये?
1: ये कम से कम 71 तक जो है निजी ही रही।
0: 1971 तक निजी बिजली कंपनियां चलती थी।
1: जी।
0: तो उसमें आपके पिताजी चीफ इंजीनियर थे।
1: जी।
0: तो इस तरह से आप राजस्थान?
1: राजस्थान।
0: अच्छा, शिक्षण कहाँ हुआ आपका?
1: शिक्षण मेरा स्कूल में तो जो शिक्षा हुई है वह तो अजमेर से ही हुई है।
0: कहाँ तक हुई?
1: 11वीं तक।
0: अच्छा।
1: और सैंड असलम स्कूल का नाम था। उसके बाद मैं इंदौर से ही पढ़ा हूँ। मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में यहाँ इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज से ही किया था।
0: तो स्कूल या कॉलेज के जमाने की कोई खास रोमांचक याद रखने वाली बात याद है आपको?
1: जी, हमारे टीचर्स को खास करके याद करते हैं।
0: करते हैं
1: जी।
0: उस युग में बहुत अच्छे शिक्षक होते थे।
1: उस युग में काफी अच्छे शिक्षक थे और मतलब जो है ज्ञान उनका जो था, तो उससे काफी हम लोगों को आगे के लिए काफी मार्गदर्शन मिलता था।
0: राजनीति शास्त्र में आपने मतलब स्नातकोत्तर शिक्षण लिया, एमए तक की आपने?
1: जी।
0: तो राजनीति में कोई रुचि है आपकी?
1: जी नहीं, मेरी राजनीति में कभी रुचि नहीं रही।
0: तो जैसे ही आपका ये शिक्षण सत्र समाप्त हुआ, उसके बाद जाहिर है कि व्यक्ति को एक जॉब ढूंढने की, नौकरी पाने की एक तीव्र लालसा रहती है कि भाई अब जल्दी से नौकरी मिल जाए। तो आपको भी ऐसा कुछ हुआ होगा, वो बताइए।
1: जी, मैंने फिर यहां से एमए करने के बाद अजमेर में मतलब मेरे एक दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे लॉ भी करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने ही मेरा फॉर्म वगैरह भरा।
0: अच्छा।
1: और साथ के साथ मुझे एक नौकरी निजी कंपनी थी अजमेर के अंदर, तोशनी वाले इंडस्ट्रीज करके, जो एक फैक्ट्रियों के लिए उपक्रम बना दी थी, वो उनमें मतलब मुझे सेल्स प्रमोटर के तौर से, बिक्री प्रतिनिधि के तौर से एक जॉब मिल गई थी।
0: अच्छा अच्छा। लॉ भी किया आपने?
1: लॉ भी किया मैंने, एमबीए भी किया सेल्स और मार्केटिंग में।
0: अरे वाह। तो फिर आपने वकालत शुरू क्यों नहीं की जबकि आप एमए एलएलबी थे?
1: जी, मुझे निजी कंपनी में काम करने का थोड़ा शौक था।
0: मतलब आपको शासकीय सेवा में कोई रुचि नहीं थी?
1: जी नहीं, मतलब मेरे फादर को देखते हुए वो प्रेरणा थी कि निजी कंपनी में काफी कुछ ज्यादा किया जा सकता है और ज्यादा सीखने को मिलता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद ये जो उपकरण वाली बात, जो आपने उपक्रम वाली बात जो बताई थी एक कंपनी में आप, उसके बाद कितने दिन रहे आप वहां?
1: मैं उसमें करीब साल भर काम किया और उसी दरमियान मैंने सोच लिया था कि यहाँ पे मतलब जो है मेरा आगे उन्नति नहीं हो सकती है, तो मुझे सिंगर कंपनी जो सिलाई और बुनाई मशीन उस वक्त बनाती थी, तो उसमें नौकरी का एक चांस मिला था और वो मैंने पूरा उसका फायदा उठाया।
0: क्या काम करते थे आप उसमें, क्या देखते थे?
1: मैं जो है सिलाई और बुनाई मशीन का राजस्थान और मध्य प्रदेश का सेल्स का जो है प्रबंधक था।
0: अच्छा, बिक्री वहाँ?
1: बिक्री का।
0: तो राजस्थान की कढ़ाई सिलाई के बारे में क्या बात कहना चाहेंगे आप?
1: बुनाई में जो है नीचे सरकार ने उस टाइम पे काफी प्रोत्साहित किया था और लोग बागों को भी काफी प्रोत्साहन था कि बुनाई में काम करने से पैसा मिलता है, तो उस वक्त सिलाई और बुनाई का एक दौर था जब लोगों को इतना फैशन का तो नहीं था, पर मतलब जो है घर में अपने सिलाई और बुनाई मशीन होनी जरूरी होती थी, तो वो घर के उपयोग में मतलब और एक नया कंसेप्ट था, तो उसमें लोग
0: अच्छा ये क्योंकि वस्त्रों की बात चली है कपड़ों की, तो राजस्थान की वो बंधेज की साड़ियां और लहरिया और ये सब काफी आज भी इनकी लोकप्रियता है। बंधेज साड़ी क्या होती है?
1: बंधेज जो है वो हाथ से गांठ लगा के और फिर उसको रंग में उतारते हैं।
0: अच्छा।
1: और रंग में उतारने से वो जो है उसकी डिजाइन आ जाती है।
0: हाँ।
1: तो उस डिजाइन से आने के बाद उस साड़ी का जो है जो रूप है वो बहुत सुहावना और सुनहरा होता है।
0: अच्छा, तो बंधेज क्यों कहते हैं इसको, बांध के रखते हैं क्या?
1: जी, वो बांध के मतलब जो है हर जगह से बनती है और फिर उसको रंग में उतारते हैं।
0: अच्छा।
1: तो वो कलर जो है रंग जो है उसके
0: बहुरंगी हो जाए इंद्रधनुषी रंग हो जाए।
1: जी,
0: इसलिए इसका नाम बंधेज।
1: बंधेज
0: और क्या क्या खास बात है राजस्थान की? आप तो लगभग 30 वर्षों से वहां रह रहे हैं, तो
1: देखिए खाने वगैरह में भी मतलब जो है काफी वहां की हर तरह से रिच खाना है, मतलब जो है बहुत
0: अच्छा खाना है। क्या क्या खाना अच्छा है
1: वहां की? जो बाटी है, गट्टे की सब्जी है।
0: अच्छा।
1: और दाल वगैरह है।
0: अच्छा।
1: ये काफी मतलब वहां की फेमस है।
0: और मीठे में?
1: मीठे में जो है सोन हलवा, जैसे अजमेर का तो सोन हलवा बहुत लोग पसंद करते हैं,
0: पूरे भारत में प्रसिद्ध है वो।
1: प्रसिद्ध है।
0: हाँ। और राजस्थान में हमने सुना है कि चूरमा करके भी बहुत ज्यादा चलन में। ये चूरमा क्या होता है?
1: चूरमा एक तरह से जो अपन शक्कर का लड्डू रहते हैं, तो वो मतलब उसको आटे के रूप में वो शक्कर वगैरह मिला के जो लड्डू का रूप है वो मतलब आटे के रूप में होता है।
0: चलिए आगे चलते हैं। आपने ये सिलाई मशीन के बाद भी कोई और जॉब की क्या?
1: जी, मैं उसमें सिलाई मशीन में काफी अनुभव लेने के बाद मुझे कैल्विनेटर जो रेफ्रिजरेटर कंपनी थी उसके अंदर यूपी के अंदर मुख्य प्रबंधक के रूप में जाना, मतलब मेरे को नौकरी का अनुभव हुआ।
0: यूपी में कहाँ? उत्तर प्रदेश में है ने?
1: उत्तर प्रदेश में मेरा कानपुर जगह
0: पोस्टिंग हुई। हाँ। कानपुर में कब तक रहे आप?
1: मैं करीब 2.5 साल रहा, उसके बाद मुझे ट्रांसफर जयपुर हुआ।
0: कैसा लगा कानपुर आपको?
1: कानपुर बहुत बढ़िया जगह है।
0: अच्छा। और क्या खास बात है वहाँ की?
1: कानपुर की खास बात तो मतलब क्रिकेट के मैदान वगैरह अच्छे हैं, तो क्रिकेट के हिसाब से हमें क्रिकेट में भी रुचि है।
0: कानपुर में आप 2.5 बरस रहे, उसके बाद?
1: उसके बाद मैं जयपुर आ गया राजस्थान वापस।
0: क्यों, वहां से आपने छोड़ दी थी वो नौकरी?
1: नहीं, छोड़ी नहीं थी, मुझे ट्रांसफर मिला था। अच्छा, जयपुर आने का।
0: और फिर जयपुर में ही फिर आप रहे कि वहां से भी कहीं और?
1: जयपुर से फिर मुझे दिल्ली और भी प्रमोशन देके और तरक्की मिलके इसी कंपनी के अंदर।
0: तो इसमें आप क्या मुख्य प्रबंधक थे आप?
1: जी।
0: तो दिल्ली में रहे आप?
1: दिल्ली रहा मैं।
0: कब तक रहे?
1: मैं दिल्ली 1990 तक रहा।
0: अच्छा, उसके बाद आपने छोड़ी क्यों वो नौकरी, या आपका कार्यकाल पूरा हो गया था क्या?
1: मेरा कार्यकाल पूरा होने के बाद मुझे उससे और भी अच्छी जॉब मिली थी, एल्कोबैक्स मेटल्स के अंदर, जोधपुर बेस्ड था, और वो ये कॉपर और ब्रास के आइटम्स बनाते थे।
0: अब इस समय आप लगभग 60 को छू रहे हैं आप।
1: जी।
0: तो अब इस समय आप क्या कर रहे हैं?
1: मैं अस्पताल का जनसंपर्क अधिकारी और मुख्य प्रबंधक हूँ वहाँ पे।
0: अस्पताल में आप काम करते हैं?
1: जी।
0: अच्छा, क्या काम करते हैं आप वहाँ
1: अस्पताल में? मैं एक तो सारा प्रबंधन से जो और प्रशासनिक जो भी कार्य हैं।
0: अच्छा।
1: वो सारे मैं देखता हूँ।
0: अच्छा।
1: और वहाँ के साफ सफाई वगैरह का और इन हाइजीनिक पेशेंट के तौर पे सेवाएं जो मिलनी चाहिए अस्पताल से।
0: अच्छा।
1: वो सारी चीजों का सुपरविजन रखते हैं।
0: ये आज तो मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की की है।
1: जी।
0: तो उस हिसाब से आपके अस्पताल में वो सारे इक्विपमेंट्स यानी उपकरण हैं जो आज बहुत जरूरी माने जाते हैं?
1: जी, जैसे आईसीयू होना चाहिए, इंटेंसिव केयर यूनिट जो कहते हैं, वो एक जरूरी सेवाओं में से आता है। डायलिसिस आज के जमाने में जरूरी उपकरणों में से है, और सर्जरी के जितने भी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, और वो लेटेस्ट जो है दूरबीन पद्धति से जो ऑपरेशन किए जाते हैं, वो सारी सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में
0: है। आपके हॉस्पिटल में है
1: जी।
0: आपके अस्पताल में जो मरीज आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते और मान लीजिए कि किसी कारणवश उनको आना पड़ता है, तो उनकी देखभाल, उनकी आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए क्या अस्पताल उसका ध्यान रखता है क्या?
1: कुछ मरीजों के लिए हम लोग उसमें बीपीएल कार्ड जिनके पास होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के कार्ड बनते हैं,
0: गरीबी रेखा के कार्ड
1: जो है, उन लोगों को उसमें काफी मतलब लाभान्वित करते हैं। और इसी तरह से कुछ सेवा समिति भी जुड़ी हुई है, वो मरीजों के लिए मतलब अपने सेवाएं देते हैं और आर्थिक रूप से भी उनको,
0: जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो
1: जी।
0: अच्छा, तो आपका ये अस्पताल शासकीय नहीं है?
1: नहीं, ये निजी अस्पताल है।
0: निजी अस्पताल है, तो कैसा लग रहा है इसमें काम करके अब आपको, क्योंकि आप तो कई तरह की नौकरियां करके आए हैं
1: जी,
0: हैं? कहां आप कढ़ाई बुनाई के काम में थे और कहां आप मरीजों की देखभाल ही एक तरह से भी, प्रबंधक का मतलब ये होता है कि अस्पताल का सब काम सुचारू रूप से चलता रहे।
1: सुचारू रूप से चलता रहे और जितने भी मरीज हैं उनको कोई असुविधा ना हो।
0: हाँ, तो आप इस कार्य को अच्छा मानते हैं अपने जीवन में, क्योंकि ये एक ऐसा अवसर है जिसमें आप एक तरह से सेवा करते हैं मरीजों की। आपको कैसा लगता है वहाँ?
1: बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसा आपने अभी कहा कि 60 वर्ष के आसपास मेरी उम्र हो रही है, तो वो 60 वर्ष की उम्र के आसपास अगर सेवा का मौका मिले तो उससे बढ़िया और कोई नौकरी नहीं हो सकती।
0: तो आपके यहाँ अस्पताल में तो हर तरह के मरीज आते होंगे
1: जी,
0: कोई अचानक से दुर्घटनावश किसी को चोट लग जाए या और किसी बीमारी से, जिसको हम आपातकालीन बीमारी कहते हैं
1: जी,
0: अचानक से कोई बीमारी, तो उस समय सब सारी व्यवस्थाएं देखना पड़ती होंगी?
1: उसको सारी व्यवस्थाएं भी देखनी पड़ती है और उसको एक प्रोत्साहित भी करना पड़ता है पेशेंट को, ताकि उसको ये अनुभव हो कि उसका हिम्मत पूरी रहे, तो वो सहयोग देता है डॉक्टर को भी कि मरीज को और अच्छी तरह से उसका ट्रीटमेंट हो सके।
0: तो एक सवाल अब मैं आपसे थोड़ा सा अपने बारे में, आपके स्वयं के बारे में पूछना चाहूंगा कि आज के समाज में स्थितियां काफी बदल गई हैं। जब आप युवा थे, जब आप पढ़ते थे, उसके बाद जब आपने इतनी सारी नौकरियां की, और आज जो स्थिति है कि भाई पहले तो ये था कि आप मास्टर बन जाइए, वकील बन जाइए, इंजीनियरिंग और एमबीबीएस ने डॉक्टर की पढ़ाई तो मुश्किल होती थी, तो बहुत कम लड़के लड़कियां होते थे, लेकिन आजकल तो ये है कि इतने सारे विकल्प हैं, इतनी सारी नौकरियां हैं कि एक भ्रम सी स्थिति पैदा हो जाती कि क्या करें। तो आज के जो विद्यार्थी हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह, किस दिशा में जाएं? कई बार वो स्वयं तय नहीं कर पाते, कई बार तो ये होता है कि माता पिता चाहते हैं कि नहीं तुम यही करो, और कई बार वो खुद कुछ और करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए आपकी राय में?
1: सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता पिता को उसकी रुचि देखनी चाहिए, माता पिता को उसके विचारों को जानकर उसके ऊपर कोई थोपना नहीं चाहिए। अगर थोपते हैं तो वो मतलब उसकी रुचि के बिना अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उसको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है।
0: अच्छी बात कही आपने, और एक तरह से तो आप चूंकि अब अस्पताल में काम कर रहे हैं, इसलिए ये तो एक तरह की बहुत बड़ी समाज सेवा है, और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह समाज की सेवा करते रहें, क्योंकि अस्पताल एक ऐसा स्थान है जिसके नाम से ही लोग डरते हैं, और वहां पर अगर अच्छे विचार वाले, दयावान और सहायता करने वाले व्यक्ति होंगे तो मरीज को एक बड़ी सांत्वना मिलती है। क्या ख्याल है आपका?
1: बिल्कुल आपने सही कहा, सांत्वना भी मिलती है और उसको ये महसूस होना चाहिए कि वो इस ऐसी जगह पे आ गया है जहां पे वो जल्दी से जल्दी अच्छा
0: होकर के जाए,
1: जो कर के जाए।
0: अच्छा, अब अंत में आप दो शब्दों में क्या कहना चाहेंगे अपने जीवन के बारे में, अपने अंतरात्मा के बारे में क्या विचार है आप? आपका जीवन, जीवन को किस रूप में आपने देखा?
1: जो अस्पताल से जुड़ने के बाद यही मैं कहना चाहूंगा कि जितनी भी हम लोग सेवा कर सकें मनुष्य की और उस रूप में कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सुनने वाले साथियों को वो सब बातें बताई जो कि बहुत उपयोगी हैं, और खास करके अस्पताल की जो बातें हैं आपकी उससे आप जुड़े हैं। हम यही चाहेंगे कि आप अपने आगामी जीवन में भी इसी तरह समाज की सेवा करते रहें।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वतंत्र कुमार ओझा जी और उनके साथ थे अजमेर से आए श्री मुकेश व्यास। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता का, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वतंत्र कुमार ओझा जी और उनके साथ हैं सरदार पुनीत सिंह।

0: हमारे सभी युवा साथियों को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। युवा साथियों, आज के हमारे युवा विकास कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में आए हैं सरदार पुनीत सिंह। इनके जीवन की, हालांकि ये भी युवा हैं, लेकिन इनके जीवन की जो कहानी है, आज जो ये कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में हम इन्हीं के मुंह से ये सब बातें जानेंगे। तो पुनीत जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद सर।
0: सबसे पहले ये बताइए कि आपकी शिक्षा कहाँ कहाँ हुई?
1: मेरी जो प्राथमिक शिक्षा थी, प्राथमिक शिक्षा मैंने इंदौर से ग्रहण की। तत्पश्चात मैं मेरी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने की है, वो 4 साल मैंने भोपाल में रहकर मेरी पढ़ाई की है इंजीनियरिंग की।
0: क्या सब्जेक्ट क्या था, क्योंकि इंजीनियरिंग कई तरह की होती है, तो आपका विषय क्या था?
1: मेरा विषय कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग था।
0: कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। भोपाल में 4 साल रहे आप?
1: जी सर, भोपाल में मैं 4 साल रहा हूँ।
0: हाँ, कैसे रहते थे, हॉस्टल में रहते थे?
1: जी, जब मेरा प्रथम वर्ष था, जो मेरा पहला साल था, पहले साल में मैं हॉस्टल में रहा। उसके बाद फिर एक कर्नल आर्मीज की आर्मी को बिलोंग करने वाली फैमिली थी, तो उनके साथ 3 साल मेरे वहाँ पे व्यतीत हुए। बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था, पढ़ाई का मुझे बहुत अच्छा वातावरण मिला और बिल्कुल मेरा ऐसा लगता था वहाँ कि मैं माता पिता के साथ ही हूँ।
0: और आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का माहौल कैसा लगा?
1: कॉलेज का माहौल, एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का एकदम इंजीनियरिंग में जाए, तो शुरू में तो मुझे पहले 2-3 महीने बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं उस माहौल में ढलता गया, कई नए दोस्त मिले, अलग अलग हिंदुस्तान के कोने से आए हुए दोस्त मिले।
0: कहाँ कहाँ से आते थे?
1: बिहार, पटना।
0: अच्छा अच्छा
1: जी, यूपी, अलग अलग स्टेट से, महाराष्ट्र के थे कुछ, तो सभी से मेलजोल हुआ, अलग अलग लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला, कई नए दोस्त मिले, और बस उन्हीं के साथ 4 साल कब निकले, मेरी पढ़ाई भी हो गई और दोस्त भी अच्छे बन गए।
0: क्योंकि कंप्यूटर साइंस और ये जो आपने विषय बताया
1: जी,
0: इसमें तो काफी पढ़ना पड़ता है, काफी मेहनत लगती है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसके अलावा कुछ रिक्रिएशन, कुछ मनोरंजन भी होता था आप बच्चों के साथ?
1: जी हाँ, जैसे हमारे फैकल्टीज वगैरह भी थे, हम लोग आउटिंग के लिए भी जाते थे, बाहर घूमने भी जाते थे।
0: कहाँ?
1: पिकनिक पर भी गए। भोपाल के आगे ही भीम बैठिका करके एक बहुत ही अच्छी जगह है, भीम बैठिका हम लोग अक्सर जाया करते थे। इसके अलावा भोपाल में एक झील है, भोपाल जिस तरीके से जाना जाता है झीलों का शहर, तो बड़ी झील हुई, इस तरीके से हम लोग वहाँ पे मनोरंजन के लिए भी जाया करते थे। साथ ही हमारा पढ़ाई का भी हम लोग वहाँ पर एक वातावरण बनाकर हम लोग भी करते थे।
0: आपके परिवार, माता पिता ये तो इंदौर में रहते?
1: जी हाँ, माता पिता उस समय इंदौर में थे, मेरा आना जाना लगा रहता था। 15-20 दिन में मैं एक बार माता पिता के पास मेरे इंदौर आकर मैं वापस भोपाल पढ़ाई के लिए जाया करता था।
0: अच्छा, तो ये पढ़ाई पूरी करने के बाद आपका क्या सपना था, क्या बनना चाहते थे आप?
1: मेरा सपना जो था, मुझे मेरा खुद का इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना, ये मेरा सपना है। बट उसके लिए बहुत ही अमाउंट की, पैसों की जरूरत है, तो मैं धीरे धीरे मेरे सपनों की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। और मेरा जो रिजल्ट था इंजीनियरिंग का, वो 6 जुलाई 2006 को डिक्लेयर हुआ था। तत्पश्चात अगले ही 15 दिनों में मैंने सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में पहली जॉब की। वहां मैंने बहुत ही एक्सपीरियंस मैंने गेन किया।
0: क्या किस किस्म का काम था वहाँ?
1: वहाँ पर जो मेरा काम था पूरा, मुझे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, बच्चों से लेकर काउंसलिंग तक, वो पूरा मुझे संभालना होता था। फीस वगैरह का डिपार्टमेंट है, मतलब वो जो जितना भी था वो मेरे ही अंडर में था।
0: हाँ, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन देखते
1: जी,
0: थे।
1: जी जी।
0: अच्छा, वहाँ कितने दिन रहे आप?
1: सर मैं वहाँ 7 महीने रहा।
0: 7 महीने?
1: जी हाँ, 5 मार्च को मैंने 5 मार्च 2007 को मैंने वो जॉब छोड़ दी थी।
0: अच्छा, उसके बाद?
1: उसके बाद मैंने रुचि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जो कि एशिया का जाना माना नाम है, वहां उसके आईटी डिवीजन में मैंने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया।
0: सॉफ्टवेयर इंजीनियर?
1: सॉफ्टवेयर इंजीनियर।
0: अच्छा, अभी भी आप उसी में काम
1: करते? जी हाँ, अभी मैं रुचि सोया ग्रुप का जो आईटी डिवीजन है, रुचि इन्फोटेक लिमिटेड, वहीं पर कार्यरत हूँ।
0: तो आपने ये जो दो जॉब बताए अपने, जो दो काम आपने शुरू किए अपनी पढ़ाई के बाद, उससे आपको ऐसा लगा कि ये संतोषप्रद हैं आपके लिए, आपके सपने को पूरा करेंगे आगे जाकर, कैसा लगा आपको?
1: देखिए, सपनों को पूरा करने वाली जहां तक बात है, सपने देखना सभी का हक है, सपने पूरे होना या नहीं होना ये एक अलग बात है। मैं मेरे सपनों को पूरा करने की और अपने पूरे तन मन से मैं उस चीज की ओर लगा हुआ हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं मेरा सपना एक दिन जरूर पूरा करूंगा।
0: अच्छा, ये इसके अलावा भी कोई आप काम करते हैं?
1: जी हाँ, इसके अलावा मैं मेरे समाज के लिए समाज सेवा के रूप में जो पुलिस विभाग है इंदौर का उसको मैंने साइबर कैफे control.com नामक एक वेब पोर्टल बनाकर दिया है।
0: अच्छा
1: जी, इस वेब पोर्टल की सहायता से इंदौर में जितने भी साइबर कैफेज हैं इनको अपना रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से क्राइम ब्रांच में आकर करवाना होता है। वहां पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद इन्हें जो भी इनके यहाँ कस्टमर्स जो आते हैं वहां पर आके इनको एंट्री करना होती है। तो इसके माध्यम से, इसके द्वारा, इस साइबर कैफे control.com पोर्टल के माध्यम से इंदौर में कितने बज के कितने मिनट पे कौन सा व्यक्ति किस साइबर कैफे पर उपस्थित है इसकी पूरी जानकारी कंट्रोल रूम पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी ऑफिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस में मौजूद रहती है।
0: अच्छा, तो उसमें भी आपका योगदान रहा है?
1: जी हाँ, ये जो मैंने ही इस चीज के बारे में सोचा था, इसको सोचने के बाद मैंने यहाँ के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मैंने चर्चा की, उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मुझे और इसके लिए उत्साहित किया और मैंने बहुत ही कम समय में, एक से डेढ़ महीने के समय में मैंने इस चीज को पूरा करके और इस चीज को मैंने लाइव कर दिया, जागरूक कर दिया और ये आज सफलतापूर्वक इंदौर क्राइम ब्रांच के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। उन्हें सारी जो जानकारी होती है अब उन्हें किसी साइबर कैफे पर जाकर जानकारी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वहीं अपने एसपी ऑफिस में बैठकर, अपने ऑफिस में बैठकर इसकी पूरी जानकारी वो एक कंप्यूटर पे एक क्लिक के माध्यम से वो प्राप्त कर सकते हैं।
0: हाँ पुनीत जी, आपने ये साइबर कैफे की बात कही
1: जी।
0: और ये जो एक शुरुआत आपने आपके माध्यम से हुई
1: जी,
0: ये एक बहुत ही शुभ कार्य है
1: जी।
0: ऐसा ही माना जाना चाहिए। तो अब हम इस साइबर कैफे के बारे में जानना चाहते हैं
1: जी।
0: आज तो कंप्यूटर और साइबर कैफे और ईमेल और ये सब .com और ये सब इस तरह से चलते हैं जैसे हमारे जमाने में जिसको कहते हैं कि गुल्ली डंडा और
1: जी जी बिल्कुल
0: खो खो और ये हमारे राष्ट्रीय खेल हैं
1: जी जी।
0: बचपन में तो या पतंग उड़ाना इस तरह के, तो आजकल तो ये नाम ज्यादा चलते हैं।
1: सर जिस तरीके से देखिए, पानी हवा ये हमारे जीवन की जरूरत है। आज के जो युग है, युवा पीढ़ी जो आ गई है, उसके लिए एक कंप्यूटर जो नाम है ये नया जुड़ गया है लाइफ में। आज बिना कंप्यूटर के एक युवा जो एक इंजीनियरिंग की बात करें या हम लोग छात्रवृत्ति की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो छात्रवृत्ति दी जा रही है वो भी आजकल ऑनलाइन हो गई है, कंप्यूटर के माध्यम से हो गई है। तो कंप्यूटर भी आज के आम आदमी की एक जरूरत बन गया है।
0: तो साइबर कैफे के बारे में बताइए कि इसके क्या गुण हैं और क्या इसके दोष हैं।
1: साइबर कैफे control.com जो पोर्टल है इसकी मैं विस्तार में आपको जानकारी देता हूं। सबसे पहले जो साइबर कैफे का मालिक होता है, साइबर कैफे का मालिक जो कि साइबर कैफे संचालित कर रहा है, जहां कंप्यूटर रखे हैं, इंटरनेट के माध्यम से वो सुविधा लोगों को प्रदान कर रहा है, तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना होता है। अब हम लोग साइबर कैफे के, हम लोग अगर ड्रॉबैक्स की बात करें, अब जो उसके दोष की बात करें, तो आज की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी अगर कंप्यूटर का माध्यम, कंप्यूटर को एक अच्छे रूप में ले, इंटरनेट के कई दुरुपयोग ना करें, कोई ईमेल जो है वो गलत ना भेजें, अश्लील जो वेबसाइट्स होती हैं वो ना खोलें, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही आगे बढ़ाने वाली चीज साबित होगी। वहीं अगर हम इस चीज का मिसयूज करें, अगर दुरुपयोग करें, तो ये हमारे समाज के लिए हानिकारक भी हो सकती है। जिस तरीके से सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरीके से इंटरनेट के भी दो पहलू हैं। तो मैं हमारे युवा साथियों से यही गुजारिश करूंगा कि इसको हमारे समाज को बढ़ाने में आगे योगदान करें, इस चीज का सदुपयोग करें, दुरुपयोग से बचें,
0: अन्यथा
1: विनाश
0: भी हुए हैं इसके
1: जी कारण। जी बिल्कुल हुए हैं,
0: है? एक राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी
1: बिल्कुल
0: इसके दुरुपयोग के भयानक परिणाम
1: बिल्कुल
0: हमें देखने सुनने को मिले हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही
1: जी।
0: कि आज जितने भी आधुनिकतम, जिसको कि हम लेटेस्ट कहते हैं, जो भी उपकरण हमें मिले हैं वो मनुष्य की खुशी के लिए, मनुष्य की सेवा के लिए, मनुष्य का जीवन बेहतर बनाने के लिए है, मनुष्य को दुखी करने के लिए नहीं।
1: बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं और युवा साथियों से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो इस चीज का सदुपयोग करें।
0: तो आपका अपना भी, आपने कोई साइबर कैफे खोल रखा है?
1: जी हाँ, मेरे पिताजी के लिए मैंने एक साइबर कैफे खोल रखा है। मेरे पिताजी वो साइबर कैफे संभालते हैं।
0: अच्छा।
1: और जी हाँ, शाम के समय मैं उनके साथ समय व्यतीत करता हूँ, वो साइबर कैफे मैं जाके संभालता हूँ। और आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे माता पिता के आशीर्वाद से हूँ, बहुत ही उन्होंने मेहनत की है। इसके साथ ही साथ मेरा जो मेरी दोस्त, मेरी बड़ी, मेरी मासी जो मेरे लिए भगवान का दर्जा रखती है, बबली गंभीर, उनके सहायता, उनकी दोस्ती, उनके आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा के बिना पुनीत सिंह नाम हो ही नहीं सकता था। तो मैं बहुत ही आभारी, बहुत ही धन्यवाद दूंगा मेरे माता पिता को और मेरे मासी, मेरी बबली गंभीर को, जिन्हें कि मैं बबली दीदी कहता हूँ।
0: और आपके परिवार में माता पिता के अलावा कौन है?
1: एक मेरी छोटी बहन है।
0: वो क्या करती हैं?
1: वो 12वीं कक्षा में सेंट रेफेल्स स्कूल है, इंदौर का जाना माना स्कूल है, वहाँ वो पढ़ रही है। जी, उसका जो विषय है उसने कॉमर्स लिया है।
0: अच्छा,
1: जी।
0: तो अब अंत में ये बताइए कि हमारे हर युवा साथी के जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है, तब उसके मन में अपने करियर को लेकर के चिंता भी होती है।
1: बिल्कुल।
0: और कुछ सपने भी होते हैं जो वो देखता है।
1: जी।
0: अब मान लीजिए कि कोई, चलिए हम बात करें फिल्म लाइन की।
1: जी।
0: किसी को अचानक से लगे कि नहीं, मुझे तो जाकर के हीरो ही बनना है, तो वो बगैर सोचे विचारे चल पड़ता है।
1: जी।
0: है, किसी भी तरह से पहुंच गया वहाँ, और मान लो अगर उसका सपना पूरा नहीं होता है, तो क्या ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई सपना देखते हैं और वो पूरा नहीं होता है,
1: जी,
0: तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है जीवन में, कोई विकल्प नहीं है क्या? आप क्या सोचते हैं?
1: सर, विकल्प तो हर चीज का होता है, और विकल्प जो है वो होना ही चाहिए। अगर वो किसी कारणवश किसी स्थिति कोई ऐसी बन जाती है जिसके कारण वो अपना सपना पूरा नहीं कर सकता, तो उसके साथ जो उसके सामने जो विकल्प है, उस चीज को वो फॉलो करे, उस विकल्प के ऊपर चले, और बिल्कुल अगर उस विकल्प के माध्यम से वो अब उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। हम लोग अगर एक एग्जांपल ले लें, एक उदाहरण ले लें, कि अगर बंदा एक्टर, जैसा आपने फिल्म लाइन का बोला, वो एक्टर बनने गया है, एक्टर ना बन पाने के कारण हो सकता है कि वो उसी फील्ड में कुछ और बन जाए, वो एडिटिंग की फील्ड में चले जाए, वो सिंगिंग में चले जाए, तो जरूरी नहीं है कि एक्टर बनना, वो अगर एडिटिंग में चले जाए तो वो और ऊंचाई पर पहुंच सकता है। तो सभी अपनी अपनी हर चीज की एक इम्पोर्टेंस होती है, चाहे वो फिल्म लाइन हो, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो या कोई और इंजीनियरिंग हो, वो आईपीएस की प्रिपरेशन करना चाहता है, वो आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहता है, उसके विकल्प हमेशा खुले होने चाहिए कि अगर ये नहीं तो ये, मुझे मेरा सपने तक पहुंचना है, चाहे इधर से या उधर से। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी शॉर्टकट यूज ना करें, लाइफ में शॉर्टकट नहीं होना चाहिए।
0: क्या बात है?
1: जी हाँ, आप उस चीज को अपने गोल तक पहुंचने के लिए हार्ड वर्किंग जरूर, एक जो बात होती है वो जरूर होना चाहिए, शॉर्टकट का रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए।
0: आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा आज का जो दौर है
1: जी,
0: उसको विज्ञापन युग कहा जा रहा है? मतलब
1: हाँ,
0: विज्ञापनों की इतनी भरमार है, ब्रांड की, प्रोडक्ट की, और कुछ कहें कि कुछ अनुपयोगी किस्म के जो विज्ञापन आते
1: जी,
0: हैं
1: जी,
0: या इस तरह के विज्ञापन जिनको कि आप परिवार के साथ बैठ के देख भी नहीं सकते।
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये सब क्या है, इससे क्या भविष्य है हमारा?
1: सर, भविष्य इस चीज से अंधकार में ही जाएगा। इस चीज के लिए हमारे जैसे युवा साथियों को आगे आना पड़ेगा, हमारे द्वारा चुने गए जो जनप्रतिनिधि है, इस चीज के लिए उन्हें आगे स्टेप्स लेना पड़ेंगी, उन्हें कदम बढ़ाने होंगे, तभी इस चीज का कुछ सॉल्यूशन, कुछ हल निकल पाएगा। तो हमारे जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि ऐसे विज्ञापनों पर वो रोक लगाए। हमारे युवा साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि कुछ इस चीज के लिए वो आगे आकर इस चीज को रोकने का प्रयास करें, तो जरूर हमारे समाज का विकास होगा, समाज का सुधार होगा, और हमारा हिंदुस्तान ऊंचाई पर पहुंचेगा।
0: समाज सेवा भी आप कर रहे हैं, साइबर कैफे भी चला रहे हैं, और नौकरी भी कर रहे हैं एक तरह।
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: तो आपको लगता है कि आर्थिक रूप से आज जो आर्थिक बढ़ोतरियां हो गई हैं,
1: जी जी जी,
0: उसको देखते हुए आप संतुष्ट हैं?
1: जी हाँ, आज की तारीख में जो आर्थिक मामलों की बात करेंगे तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। आज के जो जिस युग के साथ मैं चल रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल मेरे परिवार को और अच्छे लेवल से, और सेविंग भी मैं कर सकता हूँ आज की हालत में।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कामना के साथ हम विदा लेते हैं कि आपका जो सपना है कि आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलें, तो अब देखते हैं ये सपना कब पूरा होता है, और अगर पूरा हो तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को एक बार फिर से आकर के ये बात बताएं। भले ही इसमें कितना भी समय लग जाए।
1: जी जी,
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: धन्यवाद सर आपको मुझे यहाँ पर बुलाने का, इनवाइट करने का।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वतंत्र कुमार ओझा जी और उनके साथ थे सरदार पुनीत सिंह। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, अब समय हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम का, तो साथियों सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता जिसका शीर्षक है सुगंध का संचार, और इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता हैं स्वतंत्र कुमार ओझा जी।
1: हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। युग संचार, आज के हमारे युग संचार में जो वार्ता आप सुनेंगे उसका शीर्षक हमने रखा है सुगंध का संचार। श्रोता मित्रों, जब इठलाती झूमती हवाएं वन उपवन की ओर बहती हैं, तो बगिया के फूल सर उठाकर गुनगुनाने लगते हैं। चंपा, चमेली, जूही, मोगरा और गुलाब के फूलों की सुगंध वातावरण में एक आत्मिक भक्ति आराधना के क्षण उपस्थित कर देती है, और यही संचारी भाव हमें भाव विभोर कर देता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन्हीं फूलों से बनता है इत्र, जो विश्व के किसी भी कोने में आप जाइए, अपनी सुगंध, अपनी मादक खुशबू, अपनी महक से हम सबको एक सूत्र में बांध देता है। यही सुगंध संचार इत्र के द्वारा सदियों से अनवरत बिना रुके चल रहा है। तो आइए सुनते हैं देश विदेश में व्याप्त इस सुगंध की कहानी। शुरुआत करते हैं जाने माने गीतकार, फिल्म लेखक और निर्देशक गुलजार की लिखी इन दो पंक्तियों से। वो कहते हैं, जब भी ख्यालों में तू आए, जब भी ख्यालों में तू आए, तेरे बदन से खुशबू आए। ये ख्याल और खुशबू हमारी यादों और भावनाओं का संचार ही तो है, जो कई यादों को लेकर आती है, कभी कड़वी, कभी मीठी, या फिर पहली बारिश की सौंधी खुशबू, या फिर बचपन में कागज की नाव चलाते हुए। ये सब एक मीठी गंध से हमें महका देते हैं। इन यादों की सुगंध कभी भूली नहीं जाती। तो दोस्तों, सुगंध और इत्र का भी चोली दामन की तरह का ही साथ होता है। और इत्र ही क्यों, ये जितने भी परफ्यूम्स हैं, लोशंस हैं, क्रीम हैं, यहां तक कि नहाने के साबुन में भी जो सुगंध ताजगी हमें मिलती है, इन सब में भी इत्र या कहें सेंट का पुट रहता ही है, एसेंस जिसको कहते हैं। तो मूल बात है सुगंध की, जिसका सीधा और प्रत्यक्ष संबंध और संचार इंसान और उसकी भावनाओं से है। इस सत्य को मनुष्य ने सदियों पहले जान लिया था, और हां, वो इसे अध्यात्म और भक्ति आराधन के लिए भी बहुत बहुत बहुत उपयोगी मानता था। तब से इस युग के आज तक इसका चलन चल रहा है, जारी है। अगर सुगंध के इतिहास के बारे में जानना चाहें तो माना जाता है कि लगभग 4000 साल पहले मेसोपोटामिया में लोबान की खोज की गई। लोबान हम सभी जानते हैं, आज भी पूजा हवन आदि में अग्नि के साथ जलाया जाता है। कुछ इतिहासकार इसकी खोज का श्रेय मिस्र को भी देते हैं, और भारत में तो वैदिक काल से ही यज्ञ जो होते थे, तो यज्ञों में धूप, लोबान आदि को जलाने का चलन तो था ही। ऐसी मान्यता थी और है भी कि इनकी सुगंध आराधन और अध्यात्म के वातावरण का संचार इतना प्रभावशाली होता है कि चारों ओर वातावरण सुगंधित हो जाता है, भक्तिमय हो जाता है और भक्त को प्रभु के समीप होने का एहसास कराता है। इन सभी सुगंधित पदार्थों का चिकित्सीय महत्व भी माना जाता है। प्राचीन मिस्र के लोग शरीर पर तरह तरह के सुगंधित तेल मलते थे जो उस युग की भीषण गर्मी से उनकी त्वचा की रक्षा करके उसे आकर्षक बनाए रखती थी। यहां तक कि मृत्यु के बाद भी कब्र में शव के साथ तरह तरह के इत्र, सुगंधित जड़ी बूटियां ये सब रखी जाती थी ताकि मृतात्मा की परलोक गमन तक की यात्रा सुगंधमय हो, सुगम हो। हमारे यहां भी शव को जलाने से पूर्व घी, इत्र आदि लगाने की परंपरा है ही। इनका भी अर्थ और महत्व सुगंध से ही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्राचीन रोम के इतिहास को जानते हैं। वहां भी खुशबू का बेहद महत्व था। कहां? रोम में। उस जमाने में लोग खुद के शरीर पर दिन भर में तीन तीन बार तो इत्र लगाते ही थे और इसके साथ ही अपने पालतू कुत्तों और घोड़ों को भी इत्र लगाते थे। अब यूनान की बात करें तो वहां तो हर चार पांच दुकान छोड़कर इत्र की दुकानें होती ही थीं और जिन पर भयंकर भीड़ बनी रहती थी। हमारे भारत के कन्नौज शहर में भी इत्र की दुकानों और वहां के तरह तरह के विशेष इत्रों के सुगंध का चलन आज भी हो रहा है, ये सभी जानते हैं। तो सुगंध के संचार और उसकी विशेषताओं का शताब्दियों से प्रयोग मानव समाज करता चला आया है। सुगंध का व्यक्तिगत प्रयोग तो है ही, लेकिन जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, सुगंध का समस्त धर्मों में प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि अमूमन सभी धर्मों में धूप, चंदन की लकड़ियां, जौ, घी, तिल और लोबान आदि को प्रज्वलित करके वातावरण में अध्यात्म का संचार किया जाता रहा है। इनके साथ ही सुगंधित तेलों और जड़ी बूटियों का भी विशेष स्थान है। ऐसी मान्यता भी है कि इन्हें तैयार करने की विधि स्वयं ईश्वर ने हजरत मूसा को बताई थी। प्रभु यीशु के जन्म पर वे उन्हें देखने आए। विशिष्ट जनों ने उन्हें सुगंधित जड़ी बूटियां भेंट की थी, ऐसा भी कहा गया है। मध्ययुग में माना जाता था कि जिस प्रकार फूलों से उनका रस, पराग या उसको आसव भी कहते हैं, ये निकाला जाता है ना, और सुगंधित इत्र आदि बनाए जाते हैं, तो उसका एक विशेष महत्व होता था और होता है। उसी प्रकार पदार्थ में से भी दिव्यता का सत्व निकाला जा सकता है, पदार्थ में से भी, और इसके तरीके निकालने के भी वैसे ही होते हैं या होते थे जैसे इत्र बनाने वाले करते थे पदार्थ में से। इस दिव्यता से मन को अपार शांति की अनुभूति और आध्यात्मिकता का संचार होता है। और श्रोता मित्रों, ये संचार ही तो है जो हमें एक दूसरे के बहुत बहुत बहुत करीब लेकर के आता है। जब हम ईश्वर की शरण में शांत चित्त से जाते हैं,

0: पास रहने के लिए कैसा आचरण करते हैं। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि सुगंध एक माध्यम है स्वयं को भी सुवासित बनाए रखने का और ईश्वर के दर्शन करने का, क्योंकि सुगंध भी एक एहसास ही तो है और उसकी अनुभूति को केवल महसूस किया जा सकता है। कामना करें कि समस्त मानव समुदाय में दिव्य सुगंध का संचार ऐसे ही होता रहे जैसा शताब्दियों से होता चला रहा है। नमस्कार।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था सुगंध का संचार, और इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता थे स्वतंत्र कुमार ओझा जी। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्यस्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्यस्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं आपकी दोस्त ग्लोरिया गांगले और आज की एक से दो की सभा में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी

शक्तिकरण, मन दर्पण, पर्यावरण और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, आप सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं फादर हरमन बंडोड और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

मित्रों, फादर हरमन बंडोड एसवीडी का प्यार भरा नमस्कार। आज सर्वधर्म विचार के तहत लीजिए सुनते हैं वार्ता, जिसका शीर्षक है क्या धर्म और संस्कृति बलात्कार की जिम्मेदार है। मित्रों, पिछले साल 16 दिसंबर की दिल्ली में चलती हुई बस में हुए गैंगरेप की तरह एक अमानवीय घटना बिहार में भी सामने आई थी। मुजफ्फरपुर जिले के मंडई खुर्द की एक महिला 27 मार्च को अपने पति के साथ पास ही के सकरा फरीदपुर गांव से लौट रही थी। रास्ते में कुछ दरिंदों ने उसे पकड़ लिया। दरिंदों ने पहले उसके पति को बांध दिया, पति के सामने ही महिला के साथ गैंगरेप किया। महिला ने विरोध करने की कोशिश की तो उसके पूरे शरीर को दांत से काटा। इसके बाद दरिंदों ने हैवानियत की सारी सीमाएं लांघ दी। उन्होंने महिला के गुप्तांग में कपड़े के साथ पत्थर और मिट्टी भर दी और उसे तड़पता छोड़कर भाग गए। परिवार वाले इलाज के लिए महिला को समस्तीपुर अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। अभी दिल्ली में 5 साल की उस मासूम बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसे हैवानियत कहना भी हैवान को जलील करने जैसा होगा। पहले महिलाएं और अब बच्चे, इतना तो तय है कि समाज का कमजोर तबका निशाने पर है। कल तक हम महिला सुरक्षा बिल के लिए लड़ रहे थे, लेकिन क्या आप बाल सुरक्षा कानून को रिव्यू करने पर भी बहस छेड़ेंगे? सदियों से यही सब होता चला आ रहा है। दिल्ली गैंगरेप के बाद जो माहौल बना था उससे लगा था कि शायद कुछ बदलाव आएगा, लेकिन यह उम्मीद बेमानी साबित हुई। बच्चे हमेशा से आसान टारगेट रहे हैं, लेकिन अब जब महिलाओं ने भी अत्याचारों और शोषण के खिलाफ आवाज उठा दी है, वे अपने हक के लिए खड़ी होने लगी है, तो बच्चों पर आ गए। आखिर यह कैसी कुंठा है? जब भी हम इस तरह की ज्यादतियों पर बात करते हैं तो बात सिर्फ और सिर्फ सेक्स पर आकर टिक जाती है, लेकिन हवस क्या किसी बच्ची के शरीर में शीशे या खिलौने घुसा देने का फितूर चढ़ा सकती है? दोष दरअसल मानसिकता में है। सेक्स करना, काटना, नोचना, खसोटना हवस का नतीजा हो सकता है, लेकिन निर्भया के पेट में रात डाल देना, 5 साल की मासूम बच्ची को बोतल से बींध देना, मैं इसे सेक्स का भूत नहीं समझता। दूसरों को परेशान करने में मिलने वाली खुशी ही इसकी वजह है। यह सब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करवाता है। खुद को बड़ा, ताकतवर, माचो और मर्द साबित करने की मूर्खतापूर्ण कोशिश इन सब चीजों का कारण है। मित्रों, फांसी देने से क्या इसका इलाज हो जाएगा? हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पहले राम सिंह के लिए फांसी मांगी, अब इस दरिंदे के लिए फांसी मांग रहे हैं, लेकिन क्या इन्हें फांसी मिलने से समाज को सही दिशा मिल जाएगी? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्यों आज हमारे बीच इतने फासले हो गए हैं कि हमें पड़ोसी का बच्चा बच्चा नहीं दिखाई देता? क्यों हम खुद में इतने खो गए हैं कि अपने अपनी इच्छाओं के और अपनी जरूरतों के अलावा सब चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं? निसंदेह मृत्यु का भय, सजा का भय अपराधी को अपराध करने से रोकता है, लेकिन समाज यह भी तो तय करे कि नारी का अपमान अपराध है। विवाह में दहेज की मांग करना, जबरी लेना और मजबूरी में देना दोनों अपराध है। क्या हम सभ्य कहलाने वाले लोग किसी न किसी बहाने से रोज इस कानून को नहीं तोड़ते? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं बेटा ही पैदा हो, सामर्थ्यवान हुए तो पैदा ही नहीं होने देते। न चाहने पर भी पैदा हो गई तो मन ही मन भाग्य को कोसते हुए झूठा राग अलापते फिरते हैं कि लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई। विवाह के लिए जन्म के बाद से ही दहेज जुटाना प्रारंभ कर देते हैं। बार बार इनके कारण इज्जत खतरे में पड़ जाती है। मित्रों, मैं आप लोगों को यहाँ यह याद दिलाना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के एक बीजेपी के मंत्री ने बलात्कार की घटना के संदर्भ में बयान दिया था कि पूरे भारत में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए और यह सब विदेशी संस्कृति के प्रभाव से ऐसा हो रहा है। कांग्रेस के एक नेता ने भी लड़कियों को रात में न निकलने देने की वकालत करते सुने गए। इसके अलावा भी धर्म और संस्कृति के झंडा बरदारों ने लड़कियों को रात में बाहर निकलने और उनके पहनावे इत्यादि को बलात्कार का जिम्मेदार ठहराया था। स्त्री की स्वतंत्रता का पूर्ण रूपेण हनन कर देने वाले एक धर्म के अनुयायी तो कहने लगे कि ईश्वर ने औरत को कमजोर बनाया है। इसके संदर्भ में एक महिला लेखक कहती है, धर्म और संस्कृति के पैरोकारों को शर्म आनी चाहिए।
क्योंकि उनके हिसाब से औरत कमजोर है, तारण के अधिकारी है, नरक का द्वार है, पराया धन है और दान करने योग्य वस्तु है। मित्रों, स्वामी बालेंदु कहते हैं कि बलात्कार दरअसल एक धार्मिक समस्या है, क्योंकि धर्म ने ही औरत को भोग्य वस्तु, अपवित्र, आज्ञाकारिणी, पर्दे वाली, कमजोर और दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया है। कुछ धर्म तो साफ साफ उसे पीटने की भी वकालत करते हैं। यहाँ समस्या की जड़ में जाओ, जरा सोचो कि औरत के प्रति इस प्रकार की धारणा का निर्माण धर्म ने ही किया है। फांसी की सजा से बलात्कार नहीं रुकने वाले, औरत के प्रति दृष्टिकोण को बदलना होगा। जहाँ स्त्री होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। इस तरह के छलने वाले और दोगले वक्तव्य देने वाले शास्त्र ही यह भी कहते हैं कि स्त्री नर्क का द्वार होती है। और कहीं कहीं तो कुछ तथाकथित साधु संन्यासी कहते हैं कि स्त्री की शक्ल देखना भी पाप है, और दिख भी जाए तो वो प्रायश्चित भी करते हैं, और उसी संप्रदाय के संन्यासिनियों की सेक्स फिल्में भी बाजार में आ जाती है। देखो कितने दोगले हैं ये धार्मिक लोग और इनके ग्रंथ। स्वामी आगे कहते हैं, मैं तो उन्हीं शास्त्रों में यह भी लिख दूंगा कि भारत में जहां अकेली स्त्री होती है वहां वह सी बलात्कारियों का वास होता है। यहां उन्हें शर्म आनी चाहिए जो कि स्त्री की स्वतंत्रता और पहनावे को बलात्कार का जिम्मेदार ठहराते हैं, और लड़कियों से कहते हैं कि ये मत करो, वो मत पहनो, वहां मत जाओ, ऐसे रहो और वैसा करो। खुद को मर्द कहने वाले अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते और औरतों को उपदेश देते हैं। बताओ अपने चरित्र को देखकर कौन हुआ कमजोर, मर्द या औरत? ये तर्क देते हैं कि अगर औरत ऐसे पहनेगी और बाहर निकलेगी तो और क्या होगा। इसी मानसिकता के लोग ही हैं वो जो मौका मिलने पर अपनी माँ, बहन और बेटी का बलात्कार करने में भी नहीं चूकते, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो यह स्वाभाविक है। जहाँ औरत की चमड़ी दिखी और ये बेकाबू हुए। मित्रों, आपको पता है कि एक रिपोर्ट के अनुसार 93% बलात्कार घर वालों, नाते रिश्तेदारों, परिचितों के द्वारा ही होते हैं। अब बताइए यहाँ कौन सा पहनावा, मोबाइल और रात में निकलना कारण है बलात्कार का? सब कुछ घर में ही होता है और औरत को उसके औरत होने की कीमत चुकानी पड़ती है। इस प्रकार की पुरुषवादी मानसिकता और प्रवृत्तियों से ही औरत को बचाने के लिए ही परिवार तक के मर्दों से पर्दा करना औरतों को सिखाया गया। अक्सर ही आजकल आप अखबार में पढ़ सकते हैं कि पिता, ससुर, जेठ, भाई, चाचा इत्यादि के द्वारा औरतों का ही नहीं बल्कि नाबालिग बच्चियों का भी बलात्कार होता है। मित्रों, यहाँ स्वामी बालेंदु पूछते हैं कि पहनावे और औरत की आजादी को बलात्कार का कारण मानने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि जब लगभग रोज ही हम अखबारों में पढ़ते हैं कि 2 अथवा 3 साल की बच्ची से लेकर 10 साल तक की बच्चियों से बलात्कार हो रहे हैं, तो कृपया बताइए कि इस उम्र की बच्चियां कैसा कपड़ा पहनकर और किस प्रकार का अंग प्रदर्शन करके इन पुरुषों को इतना कामोत्तेजित कर देती है कि वो उनका बलात्कार करने पर विवश हो जाता है। क्या आप सच में यह समझते हैं कि बलात्कार कानून व्यवस्था की समस्या है, या फिर यह सोचते हैं कि कड़ी सजा देने से आप इसे रोक सकेंगे? सत्य तो यह है कि बलात्कार एक सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या है। वह धर्म जो कि स्त्री को 2वें दर्जे का नागरिक बनाता है, जो कि स्त्री को पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में रहने की वकालत करते हुए उसे कमजोर बनाता है, वह समाज और संस्कृति जिसमें स्त्री के चेहरे को देखकर योनि की कल्पना से उत्तेजित हो जाने वाले पुरुष की कुदृष्टि से बचने के लिए औरत को घूंघट, पर्दा और बुर्का पहनना पड़ता है, वहां आप बलात्कार को कैसे रोक पाएंगे? याद रखिए, जिस समाज में इस प्रकार की पुरुषवादी मानसिकता रहेगी उसे आप बलात्कार जैसे अपराध से किसी भी कानून और सजा के द्वारा मुक्त नहीं कर पाएंगे। स्वामी बालेंदु आगे कहते हैं कि धर्म और संस्कृति के झूठे गर्व में मदहोश लोगों को आजकल यदि कुछ भी हो जाए तो पाश्चात्य संस्कृति को दोष देने का फैशन चल पड़ा है, जबकि सत्य यह है कि यहाँ पश्चिम से बहुत ज्यादा व्यभिचार हो रहा है। स्वामी कहते हैं कि ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों संस्कृतियों को जी रहा हूँ। पैदा पला बड़ा यहाँ हूँ और पिछले 12 साल से वहाँ रह और काम कर रहा हूँ। जितने अपराध, बलात्कार, बेईमानी यहाँ होती है वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ के महानगर हो या गांव,
आपकी माँ, बहन, बेटी अंधेरा होने पर बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करती है। 2 साल की बच्ची से लेकर 80 साल तक की बुढ़िया तक से बलात्कार की घटनाएं प्रायः सुनने में आती है, परंतु वहाँ सामान्यतः ऐसा नहीं है। एक जवान लड़की भी अकेले रात को बस अथवा ट्रेन में सुरक्षित यात्रा कर सकती है। आखिर हम वहाँ की संस्कृति के गुणों को क्यों नहीं देखते और आयात करते हैं? क्या दशा है हमारे धर्म के प्रमुखता वाले देश की, जहाँ राजनीति हो, नौकरशाही हो, धार्मिक जगत हो, सब तरफ दुराचार और भ्रष्टाचार नजर आता है। मैं धर्म और संस्कृति की दुहाई देने वाले लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इन समस्याओं का हल पाश्चात्य सभ्यताओं को दोष देने से नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी जड़ में देखना होगा कि समस्या आखिर उत्पन्न कहाँ से होती है। मित्रों, जब तक हम समाज की मानसिकता नहीं बदलेंगे, भारत को बलात्कार से मुक्त नहीं कर पाएंगे। नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे फादर हेरमन बंडोर, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, आप सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं नुपुर दीक्षित, और इनकी वार्ता का शीर्षक है तबादला और महिलाएं, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत आज प्रस्तुत है विषय तबादला और महिलाएं। बहनों, आज के नारी सशक्तिकरण के अंक में हम बात करेंगे तबादलों की। जी हाँ, तबादलों के मौसम में जैसे किसी कार्यालय का माहौल गर्म होता है, वैसी ही कुछ हलचल होती है घर की महिला के मन में भी। पता नहीं नए लोग कैसे होंगे, घर कैसा मिलेगा, काम करने के लिए नौकर मिल पाएंगे या नहीं, या फिर बच्चों के स्कूल की ही बात ले, एक ना दो हजार मसले होते हैं तबादलों के साथ। आज हम भले ही सभी साधन संपन्न हो गए हैं, नारी मुक्ति, स्वावलंबन और शिक्षा के साथ तकनीक की बातें करते हैं, लेकिन कुछ बातें आज भी नहीं बदली। मेरी सहेली पूजा ने जब दिल्ली से बैंगलोर तबादला होने के बाद अपने सजे सजाए फ्लैट में कदम रखा तो लगा जैसे किसी होटल में आ गई हो। उसे तो महानगर में भाषा की भी समस्या थी। उसके पतिदेव घर आने के घंटे भर के भीतर ही अपने काम पर निकल गए। पूजा को बड़ा आश्चर्य हुआ जब थोड़ी ही देर बाद उसकी ही उम्र की एक महिला ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसने बड़े प्रेम से अपना परिचय दिया। वो नाश्ते का सूखा सामान और पीने का पानी साथ लाई थी। साथ में थी काम वाली बाइयों के मोबाइल नंबरों की लिस्ट और शहर के अच्छे स्कूलों के नाम और पते। वाकई पूजा को उसका साथ बहुत भाया और लगा कि इस महानगर में भी उसके लिए सोचने वाला कोई है। कितनी आसानी से उसकी पड़ोसन ने ये समझ लिया था कि नए शहर में आने के बाद किसी भी स्त्री के लिए क्या क्या जरूरतें अहम हो सकती हैं। अपनी भली पड़ोसन के साथ मिलकर पूजा ने न केवल बड़ी जल्दी अपने आप को नए शहर में सेट कर लिया, उसी के साथ घूम घूम कर आस पास का बाजार भी देख आई और बहुत जल्दी स्वावलंबी हो जाने पर अपने पति से तारीफें भी पाई। क्या होता यदि उसे कोई भी मदद करने नहीं आता? ये तो तय था कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रहती, लेकिन अपने आप सब काम करने में उसे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। उसके मन में उस शहर के प्रति, वहां के लोगों के प्रति एक नकारात्मक छवि बन जाती। तबादला होने पर एक साथ आपके जीवन में कई बदलाव होते हैं। आपके पुराने संगी साथियों का बिछड़ना, अपने घर से बिछोह, नई जगह जाने का डर, वहां के वातावरण को लेकर की जाने वाली बातें, एक साथ कितने ही विचार हम सभी के मन में आने लगते हैं। महिलाओं को अक्सर ये दुख होता है कि वे नई जगह से अपना तालमेल कैसे बैठा पाएंगी। बच्चों को जहां अपने स्कूल छोड़ने का दुख होता है, वहीं नया घर, नया स्कूल और नए संगी साथियों के मिलने की खुशी भी। यदि आप तबादलों की स्थिति से गुजरने वाली हैं, तब आपके लिए कुछ खास बातें। बहनों, जिस स्थान पर आपका तबादला होने वाला है, वहां की संस्कृति, रहन सहन और परंपराओं को लेकर जितनी जानकारी ले सकती हैं ले ले। खासकर भारत जैसे देश में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है आप किसी ऐसे स्थान पर जा रही हो जहां पर मेहमान नवाजी को बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। आप यदि अपनी ओर से परिचय दे तो उसे बुरा माना जाता है। आपके द्वारा अपने बच्चों को किसी के भरोसे छोड़ना उसके प्रति विश्वास का प्रतीक माना जाता है, या फिर किसी को अपने घर की चाबियां सौंप देना बुरा भी माना जा सकता है। तो यदि आपको पता है कि किस स्थान पर आपका तबादला होने वाला है, तब उस स्थान को लेकर, वहां की परंपराओं, मान्यताओं और विचारों को लेकर जितनी हो सकती है उतनी जानकारी जरूर एकत्र कर लें। अब यदि आपके परिवार में नवजात शिशु है, तब तबादलों के दौरान के थकान भरे कामों के लिए निसंकोच नौकरों की अतिरिक्त मदद जरूर लें। इसके स्थान पर आप ये भी कर सकती हैं कि परिवार के ही किसी सदस्य को बुलाकर नवजात की जिम्मेदारी दे दें और स्वयं अपनी देखरेख में अपने तबादले का सामान पैक करवाती रहें। अब यदि आपके परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, तब भी सभी का ख्याल करते हुए काम करना मुश्किल हो जाता है।
इस दौरान उन्हें काम से थोड़ा अलग रखें और रसोई या बच्चों की ओर ध्यान रखने जैसे काम उन्हें दिए जा सकते हैं। बहनों, तबादलों के दौरान आप जब भी पुराने स्थान को छोड़ें, तब हो सके तब सभी संबंधितों से भेंट जरूर करें। सामान्यतः ये होता है कि आपके जाने के दिन नजदीक आते हैं, घर पर काम पड़ा होता है और आपके भले पड़ोसी आपको चाय का निमंत्रण देने लगते हैं। अब ऐसे में मना भी नहीं किया जाता और मन लगाकर जाया भी नहीं जाता। बेहतर यही होगा कि आपके तबादले की सूचना और शहर छोड़कर जाने की तारीख पहले से ही पड़ोसियों को बता दें। और यदि इस समस्या से बचना चाहते हैं तो बेहतर उपाय यही है कि यदि आपका तबादला जब भी होना है उसके 15 दिन पहले एक छोटा सा आयोजन अपने घर में ही रख लें और आपके जितने भी पड़ोसी हैं, सगे संबंधी हैं या फिर उस शहर में आपके जितने भी परिचित हैं, उन सभी को एक साथ एक आयोजन में अपने पास बुला लें। ऐसे में आपका बहुत सारा समय आसानी से बच जाएगा। अब चले उस जगह पर जहाँ हुआ है आपका तबादला। जी हाँ बहनों, नए स्थान पर जाकर आपको जिन बातों का ध्यान रखना है उसमें सबसे पहली, सबसे जरूरी, सबसे अहम बात है नजदीकी डॉक्टर को ढूंढकर उनसे परिचय करना। अब ऐसा क्यों? बहनों, अक्सर तबादले होते हैं बारिश के मौसम में, पहले ही मौसम खराब, उस पर काम का बोझ और नई जगह। ऐसे में यदि साथ में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए रात बेरात किसी पड़ोसी को परेशान करने के स्थान पर कितना अच्छा होगा यदि आप ही के पास सारी जानकारी होगी, है ना? तो बहनों, नई जगह आने के बाद सबसे पहली बात ये भी करें कि इस बात की राह न देखें कि कोई आपसे मिलने आएगा। यदि कोई भला पड़ोसी आपको चाय नाश्ता पेश कर देता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन एक बात बताऊं कि एक शोध में भी यही कहा गया है कि वे ही नए पड़ोसी सबसे ज्यादा पसंद किए गए हैं जिन्होंने आगे रहकर अपना परिचय दिया हो। अब अपने सामान को लगा लेने के बाद कम से कम 2 दिनों तक खाने की व्यवस्था को हल्का फुल्का रखें। अब एक बार जब अपने नए घर में अच्छे से जम गए हैं, नए पड़ोसियों का साथ मिल गया है, तब एक फोन अपने पुराने पड़ोसियों को घुमा लें। उन्हें भी बता दें कि आप उन्हें याद करते हैं और ऐसा पड़ोस आपको कभी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा नियोजन और थकान को भुलाकर किए जाने वाले छोटे छोटे व्यवहारिक काम आपके तबादले को एक सुखद अनुभव बना दें।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण, जिसे प्रस्तुत कर रही थी नुपुर दीक्षित, और इनकी वार्ता का शीर्षक था तबादला और महिलाएं, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, आप सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva@satyaswar.yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं वंदना तिवारी, और इनकी वार्ता का शीर्षक है नव विवाहिता के मन में झांके, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, मन दर्पण कार्यक्रम में प्रस्तुत है आज का विषय नव विवाहिता के मन में झांके। साथियों, मन दर्पण कार्यक्रम में हमेशा से ही मन में उठने वाली तरंगों, हिलोरों और विचारों का ये कार्यक्रम रहा है। हमेशा से ही विभिन्न परिस्थितियां मन पर अपना प्रभाव डालती आई हैं। सिर्फ परिस्थितियां ही क्यों, बारिश की एक फुहार और माटी से निकलती सम्मोहक सुगंध ही काफी होती है। मन में कितने ही ज्वार उमड़ते हैं और कल्पनाएं आकार लेती हैं। मन की यही गति उस समय द्रुत हो जाती है जब आपके जीवन की कोई चिर प्रतीक्षित और महत्वपूर्ण घटना होने वाली हो। और साथियों, ऐसे में यदि विवाह संस्कार की बात आती है तब मन प्रसन्न हो उठता है। और वाकई जीवन में किसी नए साथी का आना, नए सपनों का खिलना कितना आनंद देता है। लेकिन आनंद के साथ ही विवाह नाम है बदलाव का। आपकी सोच में बदलाव, दिनचर्या में बदलाव और नजरिए में भी बदलाव। तो साथियों, इस कोण से देखेंगे तो पाएंगे कि विवाह के कारण किसी स्त्री के जीवन में सबसे ज्यादा बदलाव आते हैं। न केवल अपना घर, अपना नाम, उसे तो अपना पूरा वजूद ही बदल देना होता है। इस बदलाव से वो सही तरीके से अपना निभा भी नहीं कर पाती है कि उस पर लाद दिया जाता है अपेक्षाओं का बोझ। साथियों, हम हमारे आसपास ही देखें तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा अपेक्षाएं, टीका टिप्पणी और छींटाकशी नववधुओं पर ही तो की जाती है। किसी के भी घर जाने पर यही देखा जाता है कि नई दुल्हन सबके चरण स्पर्श करती है या नहीं, सभी को आदर देती है या नहीं, उसे काम काज का सलीका है या नहीं। लेकिन क्या कभी हम में से कोई ये सोचने की कोशिश करता है कि वो लड़की जो अपना जन्म स्थान, अपना परिवार, अपना नाम और पूरा अस्तित्व ही छोड़कर यहाँ आई है, क्या हम सभी उसकी अपेक्षाओं को पूरा कर पा रहे हैं? श्रोताओं, जब भी बात की जाती है किसी नवविवाहिता स्त्री की, तब हमेशा ये सोचा जाता है कि उसने घर के सभी सदस्यों के प्रति अपनी अपेक्षाएं पूरी करनी चाहिए। एक नवविवाहिता को हमेशा ही एक साधन संपन्न स्त्री समझा जाता है जिसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। लेकिन श्रोताओं, एक नवविवाहिता का मन बड़ी कातर स्थिति से गुजरता है। जिस जीवन साथी के भरोसे उसने इस नए घर में कदम रखा है, उससे भी उसका पूरा परिचय नहीं होता। उसे स्वाभाविक ही हर क्षण अपने मायके की याद सताती है। वहाँ के सदस्यों की बातें, वहाँ का भोजन, बातचीत का तरीका और खुद उसे मिली हुई स्वतंत्रता, ये सब कुछ मिलकर उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ वो बार बार तुलना करती है। यदि शहर नया हो, गलियां अनजानी हो, तो उसकी तकलीफ और भी बढ़ जाती है। जबकि हम सभी की हमेशा से ये सोच होती है कि एक नवविवाहिता स्त्री हमेशा से ही प्रसन्न, उत्फुल्ल और आनंद से भरपूर ही होगी। आखिर उसे अपने जीवन में नया साथी जो मिल गया है, एक नया परिवार, एक नया घर जो मिल गया है, जिसे वो सिर्फ अपना कह सकती है। लेकिन ये तो सोचे कि जब भी कोई पौधा किसी एक आंगन से उखाड़कर दूसरे आंगन में लगाया जाता है, तब उसे नए आंगन में अपनी जड़ें जमाने में थोड़ा समय तो लगता है। इसके अलावा नववधु के प्रत्येक कार्य को बड़ी बारीक नजर से देखा जाता है। उसका पहनावा, खान पान, बातचीत का तरीका, इन सभी को ससुराल की तर्ज पर ढालने का प्रयत्न किया जाता है। उसकी उपलब्धियां, उसके गुण तो जैसे गौण हो जाते हैं। वो जितना सामंजस्य बैठाए उतनी अच्छी। अपने मायके के बारे में बातें करे तो सभी को तकलीफ। उसकी सारी बातें उसके पति से शुरू होनी चाहिए और परिवार वालों की पसंद नापसंद का ख्याल भी उसे ही रखना है। भले ही उसकी पसंद नापसंद से किसी को कोई लेना देना ही ना हो। अब ऐसी स्थिति में एक नवविवाहिता स्त्री का मन सभी संबंधों की पड़ताल करता है। वो सभी स्थितियों की, सभी संबंधों की तुलना करती है।
अपनी सास की तुलना अपनी माँ से, देवर की तुलना अपने भाई से और इस घर की तुलना उस घर से। उसे वाकई आश्चर्य होता है इस सोच से कि जिन व्यक्तियों को उसने आज से महीना भर पहले तक कभी देखा भी नहीं था, अचानक वो अपने मन में इन सभी के प्रति आदर सम्मान का भाव कैसे ले आए। यदि हम कभी नवविवाहिता के मन में झांक कर देखेंगे तो अनेक प्रश्न पाएंगे। इनमें से कई प्रश्न तो समय के साथ ही अपने उत्तर पाते हैं और कई के उत्तर न मिलने की स्थिति में स्त्री उसे अपनी नियति मान लेती है। क्या परिस्थितियों से समझौता करना ही परिपक्वता है? आज कोई स्त्री अपने दमन को चुपचाप सह ले तो उसे सहनशील और स्त्रीयोचित कहा जाता है। वहीं अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली स्त्री को आज भी समाज स्वीकार नहीं करता। श्रोताओं, नवविवाहिता का मन एक शिशु के मन की भांति होता है। ससुराल में पहले कुछ महीनों में उसे मिलने वाला व्यवहार जीवन पर्यंत उसके मन में अंकित होता है। खासकर इसी समय जब भी जो व्यवहार उसके साथ होता है, जिस प्रकार का वातावरण उसे मिलता है, उसी आधार पर वो अपने ससुराल पक्ष के लोगों के व्यक्तित्व को लेकर अपने मन में एक बात बना लेती है। और दूसरी खास बात यह है कि वो अपने प्रति ससुराल के अच्छे व्यवहार को लेकर उतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि अपने मायके के प्रति उनके व्यवहार से। कहा भी जाता है कि आप यदि अपनी पत्नी को बनारसी साड़ी भी लाकर देंगे तो वो मुस्कुराएगी, लेकिन अपनी सास को कॉटन की साड़ी भर दे देने से आपकी पत्नी खिलखिलाएगी। खैर श्रोताओं, इन बातों को मजाक में न लेते हुए हम ये सोचें कि एक नवविवाहिता जिस तरीके से अपना सारा जीवन एक परिवार के लिए समर्पित कर देती है, उसी से ये सिद्ध होता है कि नारी की क्षमताएं असीम हैं। उनकी संवेदनाओं को यदि आप प्रेम और विश्वास से अपनाएंगे तो प्रत्येक परिवार खुशहाल हो सकेगा। और यदि हम इन बातों को प्रायोगिक तरीके से ले श्रोताओं, तो हम हमेशा ये पाएंगे कि ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। इन बातों को सिद्धांतों के तौर पर लेना हमें बहुत भाता है। हम सहमत भी होते हैं कि हाँ, हमें नारी का सम्मान करना है, हाँ हमें उससे उसके हक दिलवाने हैं, हाँ हमें नवविवाहिता को एक बहुत अच्छे व्यवहार के लिए तैयार करना है, लेकिन क्या आपने कभी मुड़कर अपने घर की ओर देखा? क्या आपके घर में कोई ऐसी स्त्री है जो नवविवाहिता है? क्या आपकी बहन है? क्या आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई अन्याय तो उस पर नहीं हो रहा? आप अपने गरिमा में झांकिए, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर सहज मिलेंगे। नारी के आत्मसम्मान को बनाए रखना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जैसे पुरुष के हृदय का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, वैसे ही स्त्री के हृदय का रास्ता उसके मन से होकर जाता है। उसके मन में झांक कर देखेंगे तो असंख्य सपनों की तितलियां और कल्पनाओं के ज्वार नजर आएंगे। जरूरत है इन्हें अपनाने की और उसे अपना वजूद बनाने के लिए स्थान देने की। आशा करते हैं आने वाले समय में आप भी जब भी परिवार में किसी नवविवाहिता को देखेंगे, उसके मन में जरूर झांकेंगे।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम मन दर्पण, जिसे प्रस्तुत कर रही थी वंदना तिवारी, और इनकी वार्ता का शीर्षक था नवविवाहिता के मन में झांके, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आइए सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

दोस्तों अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। तो आइए दोस्तों आप सुनते हैं कार्यक्रम पर्यावरण, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं माइकल होजेस और इनकी वार्ता का शीर्षक है मानव जीवन के लिए अभिशाप बेकार प्लास्टिक और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

पर्यावरण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता मानव जीवन के लिए अभिशाप बेकार प्लास्टिक। इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजिस। श्रोता साथियों, मानव द्वारा स्वयं की सुविधा के लिए किया गया प्लास्टिक का आविष्कार आज उसके जीवन के लिए अभिशाप भी बन गया है। आज पर्यावरण को सबसे अधिक दूषित करने वाला यदि कोई पदार्थ है तो वह बेकार प्लास्टिक ही है। एक जमाना था जब मानव जीवन में ग्लास, प्लेट, जूते, चप्पल जैसी वस्तुओं तक एक सीमित उपयोग ही था प्लास्टिक का। किंतु समय के साथ साथ भार में हल्का होने, मौसम से अप्रभावित रहने और टिकाऊ क्षमता के कारण आज प्लास्टिक मानव जीवन का एक मुख्य भाग बन गया है। लेकिन प्लास्टिक के साथ एक विडंबना भी जुड़ी हुई है। प्लास्टिक जब मानव के काम आ रहा होता है तो लगता है कि इससे अच्छा काम में आने वाला पदार्थ और कोई नहीं है। लेकिन जब यही पदार्थ मानव जीवन में अपने कार्य की उम्र पूरी कर लेता है तो फिर प्लास्टिक से बेकार पदार्थ और कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आज समय की मांग के अनुसार पॉलिथीन से लेकर बड़ी बड़ी टंकियों और आकाश में उड़ने वाले वायुयान तथा पानी में चलने वाले जहाज और सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों के निर्माण में भी प्लास्टिक का उपयोग आम बात हो गई है। आज मानव जीवन में प्लास्टिक की इतनी पैठ हो गई है कि कोई भी वैवाहिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो बिना प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं के संपन्न ही नहीं होता है। अब मानव जीवन में प्लास्टिक का इतना अधिक दखल हो गया है कि प्लास्टिक के बिना आज मानव जीवन और उसकी सुविधाओं की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। श्रोता साथियों, यह बात इस उदाहरण से भी स्पष्ट हो जाती है कि पहले व्यक्ति जब कभी बाजार जाता था तो अपने साथ कपड़े का थैला या थैली जरूर लेकर जाया करता था। लेकिन आज का व्यक्ति ऑफिस से, पिकनिक से या कहीं से और कभी भी बाजार से सामान ले आता है, क्योंकि अब बाजार में पॉलिथीन की थैली में सामान देने का प्रचलन आम हो गया है। अब व्यक्ति को बाजार जाते समय न तो कपड़े की थैली लेकर जाने की जरूरत है और न ही रुपये लेकर जाने की। अब व्यक्ति थैली दुकानदार से ले लेता है और रुपये एटीएम से। आजकल के बड़े दुकानदारों ने भी प्लास्टिक की थैली पर अपनी दुकान का नाम छपवाकर प्रचार का नया तरीका निकाला है और प्लास्टिक के उपयोग को और भी बढ़ावा दिया है। व्यक्ति की प्लास्टिक के प्राय बढ़ती मानसिकता के कारण ही आज कई छोटी बड़ी कंपनियां न केवल आवश्यक घरेलू वस्तुओं को बल्कि कई खाद्य पदार्थों को भी वायुदाब के प्लास्टिक के पैकेट्स में बिकने के लिए प्रस्तुत करती हैं। प्लास्टिक निर्माताओं ने भी मांग और मांग की आपूर्ति को देखते हुए ही अपना माल बाजार में उतारा है। लोगों ने प्लास्टिक के इस माल को हाथों हाथ भी लिया है। प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माताओं ने जब देखा कि वन संपदा संरक्षण कानून लागू होने से वन में से लकड़ियों की प्राप्ति सहज और सुलभ नहीं रही है तो उन्होंने लकड़ी के विकल्प के रूप में बाजार में प्लास्टिक को उतार दिया। उन्होंने प्लास्टिक से उन सारी वस्तुओं का निर्माण शुरू कर दिया जो अब तक केवल लकड़ियों से ही बनाई जाती थी। इसके बाद लकड़ियों और बांस की अप्राप्ति की वजह से जब कागज के दाम आसमान छूने लगे तो इन्हीं प्लास्टिक निर्माताओं ने प्लास्टिक को भी कागज के विकल्प के रूप में लोगों के हाथ में थमा दिया। परिणाम स्वरूप आज बाजार में प्लास्टिक के विजिटिंग कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, कैलेंडर्स और फाइल्स आदि देखने को मिलती हैं। एक समय था जब किसी वैवाहिक कार्यक्रम में या अन्य किसी कार्यक्रम में टीन के पाइप पर प्लास्टिक के तार की बुनी हुई कुर्सियों का प्रचलन अधिक था, किंतु वर्तमान में पूरी तरह से प्लास्टिक से बनी हुई कुर्सियों ने उक्त पुरानी कुर्सियों को प्रचलन से बाहर कर दिया है। यहाँ भी प्लास्टिक को उसकी मजबूती, टिकाऊ और मौसम से अप्रभावित उसके गुणों के कारण ही लोगों द्वारा अपनाया गया। ऐसा भी नहीं है कि प्लास्टिक की क्रांति केवल वयस्कों के जीवन में ही आई है। प्लास्टिक पदार्थों ने बच्चों के संसार में भी समान रूप से घुसपैठ की है। पूर्व की अपेक्षा आज बच्चों के खिलौने और उनकी अन्य सुविधाओं के साधन भी प्लास्टिक से बनाने का चलन जोरों पर है। वहां यह भी एक वास्तविकता ही है कि प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं पतरे की अपेक्षा
बच्चों के लिए बेहद सुरक्षात्मक ही है। इस कारण बच्चों को चोट लगने और हानि पहुंचने के अवसर बहुत कम न के बराबर हो जाते हैं। प्लास्टिक को ढालकर मनचाहे आकार में बनाना भी प्लास्टिक का एक मुख्य गुण ही कहा जा सकता है। श्रोता साथियों, यदि हम चिकित्सा के क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग की बात करें तो वहां पर भी प्लास्टिक का बहुआयामी और बहु उपयोग किसी से छिपा नहीं है। यदि किसी भी अस्पताल, नर्सिंग होम्स अथवा क्लिनिक पर एक नजर डाली जाए तो बोतल, पीने की दवाएं, मलहम, सिरिंज से लेकर ड्रिप और ऑपरेशन से लेकर उपचार तक में हमें प्लास्टिक के सहज ही दर्शन हो जाते हैं। इसलिए निसंकोच रूप से यह कहा जा सकता है कि समाज का कोई भी वर्ग आज प्लास्टिक से अछूता नहीं है। यहाँ तक कि सेना भी आज प्लास्टिक के उपयोग से वंचित नहीं है। आज सेना में उसके साजो सामान के साथ साथ बंदूकों के हत्थे, जो कभी लकड़ी से बनाए जाते थे, आज प्लास्टिक से बनाए जाने लगे हैं। क्योंकि प्लास्टिक हर हाल में लकड़ी से हल्का ही होता है, इसलिए उसको लकड़ी और अन्य पदार्थों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाने लगी है। निसंकोच रूप से यह कहा जा सकता है कि आज समाज का कोई भी वर्ग प्लास्टिक से अछूता नहीं है। आज प्लास्टिक ने घर घर

के नीचे ही वर्षा ऋतु के पूरे 4 माह बिताकर गर्मी और ठंड में भी इसी प्लास्टिक का सहारा लेता है। प्लास्टिक निर्मित अपनी झोपड़ी में मौसम की सारी ऋतुएं बिताना उसे सहज लगता है, क्योंकि प्लास्टिक सस्ता, मजबूत और टिकाऊ होता है। उपयोग पश्चात यहाँ वहाँ फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियों को खाकर जाने अनजाने में पशु पक्षी भी असम ही काल कलवित होते रहते हैं। पॉलिथीन और प्लास्टिक की प्रवृत्ति अस्थायी न होने के कारण ये मिट्टी में दबकर उसकी उर्वरता को भी नष्ट किए दे रहे हैं। यह प्लास्टिक का गुण है या अवगुण, वह मिट्टी में दबने के बाद भी नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार से प्लास्टिक मिट्टी में न रहकर केवल उसकी उर्वरता को ही नष्ट नहीं कर रहा है, बल्कि मिट्टी की जल संग्रहण क्षमता को भी नष्ट कर रहा है अथवा कम कर रहा है, क्योंकि मिट्टी में दबे प्लास्टिक के कारण ही धरती पर गिरा वर्षा जनित जल मिट्टी की अनंत तहों में नहीं पहुंच पाता है। इसलिए वह संग्रहित नहीं हो पाता है, क्योंकि ऊपर पड़ा दबा प्लास्टिक उसे मिट्टी की सतह में जाने नहीं देता है। श्रोता साथियों, प्लास्टिक के इन तमाम अवगुणों के कारण अब व्यक्ति को प्लास्टिक और प्लास्टिक के अंधाधुंध उपयोग या प्रयोग के प्रति सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के कचरे की समस्या दिनों दिन एक गंभीर समस्या का रूप धारण करती जा रही है। क्योंकि प्लास्टिक न तो पड़े पड़े स्वयं ही नष्ट होता है और न ही जलाने पर पर्यावरण को नुकसान से बचा पाता है। श्रोता साथियों, यदि विशेष परिस्थितियों में प्लास्टिक उपयोग किया भी जाए तो प्रयोग के पश्चात प्लास्टिक के कचरे को सामान्य कचरे के साथ मिलाकर न रखें, बल्कि उसे एक अलग बास्केट या एक कोठी में रखें और प्लास्टिक बीनने वालों के हाथों में दे दें। इसलिए प्लास्टिक के उपयोग के प्रति अत्यंत सावधानी रखें, यह आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

अभी आपने सुना कार्यक्रम पर्यावरण, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे माइकल होजेस, और इनकी वार्ता का शीर्षक था मानव जीवन के लिए अभिशाप, बेकार प्लास्टिक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, इसी के साथ आज्ञा दीजिए ग्लोरिया कांगले को। अगली मुलाकात में आपसे बात करेंगे विवेक पीटर रॉबर्ट।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोताओं को आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक स्वास्थ्य और बाल जगत। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बाल जगत से, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं हमारी बाल कलाकार मल्लिन जेकब, और उनकी कहानी का शीर्षक है अकल भड़ी या भैंस।

नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है अक्कल बड़ी या भैंस। तो आइए यह कहानी सुनते हैं। बुद्धि तथा अबुद्धि दो भाई थे। इनमें से बुद्धि बड़ा भाई था जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। छोटा भाई संस्कृत ही जानता था। इस पर भी उसके पास बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं थी। मोटी अकल का होने के कारण जो भी बात उससे कही जाती वह उसे मान लेता। दोनों भाइयों में अति प्रेम था। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी लेकिन उसका गौना होना शेष रह गया था। यह भी एक विचित्र बात थी कि गौने के लिए जिस दिन वह जाने वाला था उस दिन बुद्धि के कारोबार के विषय में बहुत जरूरी काम से जाना पड़ गया था। धन का लोभ कभी कभी इंसान को मजबूर कर देता है। यही हाल हुआ था बुद्धि का। एक और गौना तो दूसरी ओर हजारों रुपयों का लाभ। अब इन दोनों में से किसे छोड़े? यही सोचकर बुद्धि ने अपने विवेक पर जोर डाला और अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचा कि गौना तो उसका भाई भी करा के ले आएगा, इसीलिए अच्छा यही होगा कि अबुद्धि को गौना कराने के लिए भेज दिया जाए और वह स्वयं धन कमाने चला जाए। इस प्रकार से एक पंथ दो काज हो जाएंगे। यही फैसला करके बुद्धि अपने छोटे भाई अबुद्धि को अपने पास बुलाया और अपनी सारी योजना उसे बताते हुए कहा, देखो भाई अबुद्धि, तुम मेरी ससुराल जाकर अपनी भाभी को लिवा लाओ। मैं उस व्यापारी से धन कमाकर लाता हूँ, परंतु इस बात का ध्यान रहे कि ससुराल वालों के घर जाकर अधिक बोलना अच्छा नहीं होता। वहाँ जैसे ही तुमसे कोई प्रश्न करे तो बस हाँ या ना में उत्तर दे देना। ठीक है भैया, जैसे आपकी आज्ञा होगी वैसे ही मैं करूँगा। हाँ और नहीं से अधिक और कुछ नहीं कहूँगा। यह कहकर अबुद्धि वहाँ से उठ खड़ा हुआ। अब दोनों भाई अपने अपने कामों में चल पड़े। अबुद्धि अपने भाई की ससुराल जा पहुँचा तो ससुराल के लोगों ने उसे घेर लिया। गांव के लोग घर आए मेहमान के स्वागत के लिए इकट्ठे हो गए और उससे पूछने लगे कि भाई, तुम्हारे गांव वाले तथा घर के लोग तो कुशलतापूर्वक हैं। अबुद्धि को अपने भाई का यही आदेश मिला था कि उसने हर प्रश्न का उत्तर हाँ और नहीं में ही देना है, इसीलिए उसने झट से कहा, हाँ हाँ सब कुशल से हैं। फिर लोगों ने पूछा, क्या घर में कोई बीमारी है? क्या तुम्हारा भाई बीमार है? जी हाँ, अबुद्धि बोला। क्या उसको दवाई दारू दे रहे हो? जी हाँ। क्या अधिक बीमार है? हाँ हाँ। अबुद्धि का यह उत्तर सुनकर सब लोग निराश हो गए। उन्होंने अबुद्धि की ओर निराशा भरी दृष्टि डालते हुए फिर पूछा कि उसके बचने की उम्मीद है या नहीं। नहीं, फिर क्या था? अबुद्धि के मुख से तो यह शब्द सुनकर सब लोग जोर जोर से रोने लगे। उन्हें रोते देखकर अबुद्धि भी रोने लगा। अबुद्धि को रोते देखकर तो उन्हें इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि बुद्धि वास्तव में ही बहुत बीमार है, उसके बचने की कोई आशा नहीं है। सारा दिन इसी तरह रोते पीटते गुजर गया। दूसरे दिन सुबह उठते ही अबुद्धि जैसे ही अपनी भाभी को ले जाने को तैयार हुआ तो लड़की वालों ने उसे साफ कह दिया कि हम तो अपनी लड़की को विदा नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि इसका पति इसके जाने तक जीवित नहीं रहेगा। अब तो यह विधवा जैसे ही चुकी है। ससुराल वालों का यह जवाब सुनकर अबुद्धि वहाँ से वापस चल पड़ा। जैसे ही वह अकेला घर वापस आया तो बड़े भाई बुद्धि ने उससे पूछा, क्यों भाई अपनी भाभी को नहीं लाए? भैया, वह तो विधवा हो गई, उन्हें भला कैसे लेकर आता? यह तुम क्या कह रहे हो अबुद्धि? जब मैं जीवित हूँ तो वह कैसे विधवा हो सकती है? मुझे क्या पता भैया, मैं तो उनकी हर बात का आपकी आज्ञा के अनुसार हाँ न में उत्तर दे रहा हूँ। उन्होंने कहा, तुम बीमार हो,
मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा अधिक बीमार हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा बचने की कोई आशा नहीं? मैंने कहा नहीं। बस बस अबुद्धि, बस। बुद्धि अपने माथे पर हाथ मारते हुए अपना सिर पीट लिया और उसी समय घोड़े पर सवार होकर अपने ससुराल जा पहुंचा और उन्हें सारी बात समझाई। उसके छोटे भाई अबुद्धि के कारण सबको जो कष्ट हुआ उसके लिए बुद्धि ने सबसे माफी मांगी। उसे जीवित देखकर सब लोग बहुत प्रसन्न थे। घर के बड़े बूढ़ों ने कहा, बेटा अक्कल भरी या भैंस? इस बात को सुनकर सब जोर जोर से हंस पड़े।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत के अंतर्गत एक कहानी, जिसे प्रस्तुत कर रही थी हमारी बाल कलाकार मदलिन जेकब, और उनकी कहानी का शीर्षक था अकल बड़ी या भैंस। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं एक बाल गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक बाल गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल जगत के अंतर्गत एक कहानी जिसे प्रस्तुत कर रही हैं हमारी बाल कलाकार मल्ली जेकब, और उनकी कहानी का शीर्षक है मदद।

मदद। निकिता ने अभी अभी सातवीं क्लास में एडमिशन लिया था। वह क्लास में चुपचाप बैठी रहती थी। वह न किसी से कुछ बोलती थी, न किसी के साथ खेलती थी। वह इस शहर में नई नई आई थी। क्लास के सभी लड़कियां सोचती थी कि निकिता घमंडी है, इसीलिए वह किसी से बोलती नहीं है। निकिता के बगल वाली सीट पर राधा बैठती थी। एक दिन राधा बहुत परेशान थी। निकिता राधा को देखकर समझ गई थी कि वह परेशान है, पर वह उससे कुछ पूछने की हिम्मत न जुटा सकी। तभी जूही ने राधा से उसकी परेशानी का कारण पूछा। राधा रोने लगी तो जूही ने उसे चुप कराते हुए कहा, राधा बताओ तो बात क्या है। रोने से काम नहीं चलने वाला है, राधा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मेरी माँ बीमार है, वह सिलाई का काम करती है, तब जाकर हमें पैसे मिलते हैं और मैं स्कूल की फीस भर पाती हूँ। लेकिन अब माँ ग्राहकों के कपड़े सही समय पर नहीं सिल पाएगी और मैं स्कूल की फीस नहीं भर पाऊंगी। तो तुम वे कपड़े सिल दो। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिलाई नहीं सिखाई? जूही ने कहा। उन्होंने तो कई बार सिखाने की कोशिश की, पर मैंने ही आलस के कारण नहीं सीखी। हर दिन मैं कल पर बात टाल देती थी, राधा ने बताया। तुम कहो तो मैं तुम्हारी फीस भर देती हूँ। मैं अपने पापा से कह दूंगी, जूही ने राधा के सामने प्रस्ताव रखा। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, राधा ने कहा। निकिता ने जूही और राधा के बीच हुई पूरी बात सुन ली थी। वह राधा की परेशानी का कारण समझ गई थी। शाम को छुट्टी के बाद जब राधा घर पहुंची, तो उसने देखा कि निकिता पहले से ही उसके घर पहुंची हुई है और उसकी माँ के सिराहने बैठकर उनका सिर दबा रही है। राधा चौंक कर बोली, तुम यहाँ? वह जब मुझे पता लगा कि तुम्हारी माँ बीमार है, तो मैं उन्हें देखने चली आई। यह कहते कहते निकिता का गला रुंध गया और आंख से आंसू बह निकले। राधा ने अपना बैग रखकर निकिता को चुप कराया। निकिता बोली, दरअसल मेरी माँ नहीं है, उन्हें मरे एक साल हो गए हैं। पिताजी अक्सर ऑफिस के काम से घर से बाहर ही रहते हैं, इसीलिए मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। साथ ही मुझे किसी से भी जुड़ने में बहुत डर लगता है कि कहीं उससे अलग ना होना पड़े। बस इसी डर के कारण मैं किसी से दोस्ती नहीं करती। राधा की माँ निकिता को पुचकारते हुए बोली, बेटी जब भी तेरा मन करे तू तो यहाँ चली आया कर, मैं हूँ ना तेरी माँ, आज से अपने को अकेला मत समझना और मैं तुम्हारी दोस्त, मेरे रहते तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा, मैं स्कूल में हर समय तुम्हारे साथ रहूंगी, राधा ने निकिता के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा। राधा और निकिता दोनों अब दोस्त बन गई थी। निकिता धीरे धीरे राधा की मदद से क्लास में भी घुल मिल गई थी। एक दिन प्रिंसिपल ने राधा को बुलाकर कहा, राधा तुम्हारी फीस भर दी गई है, अब तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो। कैसे, किसने भरी मेरी फीस? राधा ने चौंकते हुए पूछा। प्रिंसिपल ने बताया, निकिता ने तुम्हारी फीस भर दी है, उसने कपड़े सिलने में तुम्हारी माँ की सहायता की, जिस कारण वे सही समय पर ग्राहकों को उनके कपड़े दे सकी। राधा यह सुनकर चकित रह गई। वह दौड़कर निकिता के पास गई और उसे धन्यवाद देते हुए बोली, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, सबसे अच्छी। निकिता बस मुस्कुरा दी।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत के अंतर्गत एक कहानी, जिसे प्रस्तुत कर रही थी हमारी बाल कलाकार मल्लिन जेकब, और उनकी कहानी का शीर्षक था मदद। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अब हम अपनी समय सारणी के अनुसार हमारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक से, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: इधर हेरोद अब तक उन ज्योतियों का रास्ता देख रहा था, मगर जब वे ना पहुंचे तो क्रोध में हेरोद सोचने लगा,
1: लगता है इन राजाओं ने मुझे धोखा दिया है। हो ना हो ये मुझसे अधिकार और मेरा राज्य छीनने का कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, मगर मुझे खामोश नहीं बैठना है। कुछ ना कुछ युक्ति जरूर सोच निकालनी है, पर कैसी युक्ति? हत्या। प्यादों बैतलहम और उसके आसपास के सभी क्षेत्रों में जाकर 2 बरस तथा उससे छोटे सभी बच्चों को मरवा डालो। और याद रहे, एक भी बालक न बचने पाए यहूदियों का राजा।
0: यहाँ हेरोदेस का सत्ता अभिमान सर चढ़कर बोल रहा था, तो वहीं विनम्र और धार्मिक दंपति मरियम और यूसुफ प्रार्थना में मगन थे। तभी
2: यूसुफ, उठो, बालक और उसकी माता को लेकर मिश्र देश चले जाओ, क्योंकि हेरोद बच्चे को मार डालना चाहता है। और तब तक मिस्र में रहो जब तक मैं न कहूं।
3: मरियम, मरियम, हमें तुरंत यहाँ से भाग निकलना है, क्योंकि स्वर्गदूत ने मुझसे कहा कि हेरोद बच्चे की जान लेना चाहता है। मेरी प्रिय पत्नी, तैयारी करो कि तुम इस यात्रा का कष्ट सहन कर सको, और मुझे बताओ कि मैं उन्हें कम करने में कैसे मदद करूं।
4: मेरे स्वामी, यदि हमें ईश्वर से इतने वरदान और कृपाएं मिली हैं, तो हमें थोड़ी बहुत कठिनाई खुशी से झेलनी होगी। हम जहां भी जाएंगे, हम अपने ईश्वर के साथ जाएंगे। वे ही हमारे रक्षक, वही हमारा शरण स्थल है। चलो हम उनकी पवित्र इच्छा पूरी करें।
3: हाँ मरियम।
0: राजा हेरोदेस की क्रूरता से बच ये दंपत्ति भाग निकले। उन्हें चिंता नहीं थी कि सफर कितना कठिन होगा, उन्हें फिक्र थी तो मात्र प्रभु के बेटे के अमूल्य जीवन की। राजा हेरोद उन कई सरकारी अधिकारियों व शासकों के मात्र उदाहरण थे, जिन्हें अपने अधिकार को लेकर हमेशा भय बना रहता है। वे ये नहीं सोचते कि उनके अधिकार व सत्ता की ये भूख कितने मासूम, कितने निर्दोषों का रक्त पी रही है। लेकिन फिर भी उनका ये अन्याय, ये रक्तपात ईश्वर की योजना पूरी होने से कैसे रोक सकता है? बेतलहम में माताओं का करुण क्रंदन सुनाई पड़ रहा था। राजा के सैनिक इन निर्दोष बच्चों को उनकी गोद से छीन छीन कर मौत के घाट उतार रहे थे। ओह, कितना करुण दृश्य था ये। अपनी ही संतान का बिना किसी अपराध के ये वध, किससे विनय करें, कौन पुकार सुने? जब सबके सिर पर राजा के क्रोध और ईर्ष्या की तलवार लटकी हो, माताओं के इस क्रंदन ने नबी यरमिया कि ये भविष्यवाणी पूरी कर दी। रामा में रुदन और विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और किसी को अपने आंसू पोंछने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। उधर मरियम और यूसुफ बच तो निकले, मगर वे उन बच्चों को नहीं भूले जिन्हें उनके बेटे के कारण अपनी आहुति देनी पड़ी थी। मरियम व यूसुफ ने उन मासूम बच्चों की आत्माओं के लिए प्रार्थना की।
3: मरियम, बढ़ई का काम तो मैं कर ही रहा हूँ, मगर मुझे दुख है कि तुम दोनों को हर तरह की सुविधा नहीं दे पा रहा हूँ। यहाँ जो काम करवाने आते हैं उनका व्यवहार भी मेरे प्रति ठीक नहीं रहता है। मेरे साथ विदेशी और एक शरणार्थी का सा व्यवहार करते हैं।
4: निराश न हो यूसुफ, हम इस गरीबी में भी संतुष्टि और खुशी से जी लेंगे। और हाँ, अब मैं भी आपके काम में हाथ बटाया करूंगी। मुझे सिलाई कढ़ाई का ज्ञान है, मैं यहाँ आसपास की महिलाओं के लिए काम किया करूंगी।
3: लेकिन मरियम।
4: अरे तुम चिंता मत करो यूसुफ,
0: कड़ी मेहनत करने के बाद जब वे नन्हे ईसा की ओर देखते या उसे गोद में उठाते तो उनकी थकान व दर्द पल भर में दूर हो जाते और वे उसी के प्यार के लिए सारी कठिनाई हंसते मुस्कुराते झेल लेते। बाल ईसा अपने माता पिता के साथ प्रार्थना में ही नहीं बल्कि उनके घरेलू कामकाज में भी सहायता करता, यूसुफ को बड़ाईगिरी में मदद देता तो माँ मरियम द्वारा सिले वस्त्र ले जाकर ग्राहकों को देता और रास्ते में आते जाते वक्त लोगों की पीड़ा व दर्द देखकर दुखी भी होता। बच्चों के बीच ईसा अपनी दयालुता और नेतृत्व क्षमता के कारण बहुत प्रिय और प्रसिद्ध था। सिर्फ खेलकूद ही नहीं, वे अपने नन्हे दोस्तों को ईश्वर के ज्ञान तथा सदाचार की अनौपचारिक शिक्षाएं भी देता। माता पिता के सदाचरण और विनम्र व्यवहार तथा बालक की अद्भुत क्षमता ने शीघ्र ही मिस्रियों के बीच अपनी जान पहचान बना ली। लोग उनसे शिक्षा ग्रहण करते और बुरे कर्म त्याग अच्छा जीवन जीने का प्रण कर लेते। मगर कुछ ही वर्षों बाद एक रोज
2: यूसुफ।
3: हाँ।
2: उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल देश चले जाइए।
1: इज़राइल?
2: क्योंकि वे जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर चुके हैं।
3: ओह मरियम, मरियम।
4: हाँ?
3: ईसा, चलो हमें अपने देश इज़राइल चलना होगा क्योंकि हेरोद की मृत्यु हो गई है और अब हमें कोई खतरा नहीं है। प्रभु के दूत ने मुझसे कहा है कि मैं तुम दोनों को इज़राइल ले जाऊं।
4: हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करने में देरी नहीं करनी चाहिए।
0: बिना देरी किए वे तीनों इज़राइल अपने पूर्वजों के देश की ओर रवाना हो गए। उनके आसपास के यहूदी व मिस्री मित्र उनके विछोह से दुखी थे, मगर ईश्वर की इच्छा वे कैसे टाल सकती थी। यूसुफ अपने वफादार गधे पर मरियम और बालक ईसा को बैठाकर अपने पूर्वजों के देश चल पड़े। जब वे फिलिस्तीन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि नया राजा आर्खेलोस राज्य कर रहा है और वो बहुत क्रूर है। तो यूसुफ वहां ठहरने से भयभीत था, मगर स्वर्गदूत की प्रेरणा से वो अपने पुराने घर नाजरेत में आ गए। यूसुफ की चचेरी बहन उनकी उपस्थिति में उस घर की देखरेख कर रही थी। जब उसने इन तीनों को सुरक्षित देखा तो जमीन पर सर टेक कर प्रभु को धन्यवाद दिया। जीवन एक बार फिर अपने पुराने तरीके से चलने लगा। यूसुफ बड़ाईगिरी में व्यस्त तो मरियम घरेलू कामकाज के साथ साथ प्रार्थना में, और बाल ईसा न सिर्फ माता पिता के काम में मदद करते मगर अपने मित्रों के साथ भी समय बिताते। उनके आसपास के बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। खेलकूद के साथ ही वे बच्चों के साथ प्रार्थना भी करते और बच्चों को माता पिता का आज्ञाकारी बनने की सलाह देते।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भंवर कुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पर हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, कार्यक्रम स्वास्थ्य का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य के अंतर्गत वार्ता जिसका शीर्षक है बदलते मौसम में जरूरी है सावधानी, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों नमस्कार, स्वास्थ्य और पर्यावरण कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, जरूरी है हम सभी सावधानी बरतें, और यही कारण है कि आज के हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण कार्यक्रम का विषय है बदलते मौसम में जरूरी है सावधानी। साथियों, स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जो लोग मौसम बदलने के साथ खाने पीने की आदतों में सुधार नहीं लाते, उनकी पाचन प्रणाली पर बुरा असर पड़ता है। अब मौसम बदलने के साथ खाने पीने और कपड़े पहनने की आदतों को आप नहीं सुधारेंगे तो जाहिर है आप पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो साथियों, सर्दियां शुरू हो चुकी होती हैं, लेकिन आपको दिखाना होता है कि हम पर तो सर्दियों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, हम तो गर्मियों के ही वस्त्र पहनेंगे। या फिर बारिश शुरू हो चुकी है, भीगने में बहुत मजा आता है, चाहे हम कितने भी गीले हो जाएं, हमारे स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता, हमारी त्वचा तो बिल्कुल अच्छी रहती है। ये आदतें आगे चलकर आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती हैं। साथियों, यदि मौसम बदल रहा है तो आपको भी बदलना ही चाहिए। आपकी शारीरिक स्वास्थ्य की प्रणाली बदलते मौसम के हिसाब से आपको ढाल जरूर देती है, लेकिन आपकी आदतों को लेकर वो कुछ नहीं कर सकती। साथियों, पेट के रोग साधारणतः इन्हीं कारणों के चलते होते हैं। निमोनिया या फिर दूसरे पाचन तंत्र के रोग होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि व्यक्ति बारिश के मौसम में उचित खान पान नहीं रखते, ठंड के मौसम में उचित वस्त्र नहीं पहनते, गर्मियों के मौसम में पसीने को निकल जाने के लिए सही राह नहीं देते। साथियों, आधुनिक जीवन शैली के चलते प्रत्येक के घर में वातानुकूलन यंत्र है, लेकिन यदि बाहर 45 डिग्री का तापमान है और आप 20 डिग्री वातानुकूलन के यंत्र के तापमान से एकदम बाहर जाएंगे, तब वाकई जो असर आपकी त्वचा पर पड़ना है, आपके शारीरिक तापमान पर पड़ना है, वो हम सभी को ज्ञात है। हम सभी बचपन से ये सुनते आए हैं कि बाहर से अचानक दौड़कर यदि आप घर में आए हैं तब आपको सीधे पानी नहीं पीना है, शांति से बैठिए, थोड़ी देर आराम कीजिए, उसके बाद पानी पीजिए। लेकिन इन दिनों ये सारे नुस्खे सिर्फ सुने जाते हैं और सुनाए जाते हैं, उनका पालन नहीं किया जाता। साथियों, प्रदूषित वातावरण, शुद्ध पानी नहीं होना, वर्षा नहीं होना, उड़ने वाली धूल और धुआं, ये सारी चीजें मनुष्य के शरीर पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। हम सभी जानते हैं मौसम के बदलने के साथ ही तापमान बदलता है, हमारे आसपास की स्थितियां बदलती हैं, धूल उड़ना और धूल उड़ने के साथ ही उसके विभिन्न बीमारियों के कणों के साथ उसका हमारे आसपास होना, ये सारी चीजें खासकर बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा सामने आती हैं। साथियों, बारिश के दिनों में त्वचा पर किसी भी प्रकार का संक्रमण होना बहुत आम बात है। हम ये भी देखते हैं कि बारिश के दिनों में पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां बहुत होती हैं। इसके साथ ही बुखार होना, सिरदर्द, चक्कर आना, ये सारी चीजें बदलते मौसम में बहुत आम होती हैं। बारिश में ऐसा होने का कारण सबसे ज्यादा ये होता है कि हवा में धूल के साथ ही पानी के कण यानी नमी, ये बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के त्वचा रोग और विभिन्न प्रकार के संक्रमण होते हैं। चलिए अब बात करते हैं त्वचा की। यदि ठंड बढ़ जाती है तो हम सभी की त्वचा अचानक खुश्क होने लगती है। उस समय बहुत सारे विज्ञापन आने लगते हैं क्रीम और लोशन के, उन्हें देखने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उनका उपयोग सही तरीके से कौन करता है? सिर्फ युवा पीढ़ी? जी नहीं साथियों, इन सभी का उपयोग सही तरीके से सभी व्यक्तियों को करने की जरूरत है, खासकर प्रौढ़ व्यक्तियों को और बच्चों को सबसे ज्यादा। प्रौढ़ों को हमेशा यही लगता है कि हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, हम अपने ऊपर जितना कम खर्च कर सके उतना अच्छा है, लेकिन आप उम्र के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब आपको अपने आप में अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना, अपने प्रतिरक्षा तंत्र की रक्षा करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और मनुष्य के शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र हमेशा बदलते मौसम में कमजोर पड़ता है। हम सभी सामान्य सर्दी खांसी को मौसम का मिजाज कहकर बदल देते हैं या फिर टाल देते हैं। कई बार साथियों, इस प्रकार की चीजें एलर्जिक भी होती हैं। हम सभी जानते हैं आसपास बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, जरा से धूल में गए नहीं कि उन्हें छींकें आने लगती हैं।
धूप में जाने पर उनकी त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं, बारिश में भीगने पर उन्हें पैरों में फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। लेकिन इन सभी चीजों को हम बहुत सामान्य मानते हैं, लेकिन मौसम बदलने के साथ ही यदि आप अपने खान पान को बदले, आप अपने पहनावे को बदले और आप अपने जीने के ढंग को बदलेंगे तो ये सारी परेशानियां आपको बिल्कुल नहीं सताएंगी। त्वचा की बात करें तो त्वचा रोग विशेषज्ञ का कहना यह है कि जिस प्रकार शरीर में गर्म हवाएं त्वचा को हानि पहुंचाती हैं, उसी प्रकार सर्द हवाएं भी त्वचा को हानि बिल्कुल पहुंचाती हैं। सर्द हवाएं त्वचा में खुश्की पैदा करती हैं और उसे खुरदरा कर देती हैं। इसके साथ ही सिर में सीकरी और शरीर में खुश्की का होना बिल्कुल आम बात है। और साथियों, इस रोग से महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और अब बात करें हमारे पाचन तंत्र की, यानी हमारे पेट की। साथियों, मौसम बदला नहीं कि उल्टी दस्त होना आम बात है। छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और हम उन पर दोष भी मढ़ देते हैं कि वो हाथ धोकर खाना नहीं खाते या फिर बाजार जाकर उल्टी सीधी चीजें खा लेते हैं। लेकिन हम यदि आयुर्वेद की बात करें साथियों, तो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनका कहना है कि जिस प्रकार ऋतुएं प्रकृति का नियम है, उसी प्रकार हमारे खान पान को बदलना भी हमें प्राकृतिक रूप से एक नियम के अनुसार लेना ही चाहिए। यदि इस चीज को लोग गंभीरता से ले लें तो कई बीमारियों से हम बच सकते हैं। साथियों, हमारे संस्कारों की ही ये देन है कि मौसम बदलते ही पाचन प्रणाली पर असर पड़ता है, लेकिन लोग खाने पीने की आदतें नहीं बदलते और यही कारण है कि हर बीमारी पेट से शुरू होती है। सबसे अधिक मौसम बदलते समय ही लोग गले और पेट के रोगों से ग्रस्त होते हैं और इन सभी रोगों का इलाज विभिन्न आयुर्वेदिक प्रणालियों से भी संभव है। अब इसका हम एक उदाहरण लें। बारिश शुरू होते ही हम सभी को ऐसा लगता है कि गरम गरम पकौड़े की खुशबू घर में तैरनी चाहिए, अलग अलग सब्जियों के पकौड़े बनने चाहिए और पेट भरकर तली हुई चीजें खानी चाहिए। ठीक है, मौसम का तकाजा है, लेकिन ये चीजें यदि आप नवंबर की ठंड में भी करेंगे तब आपको नुकसान ही पहुंचाएंगी। मान लिया कि बारिश जाने वाली है, मान लिया कि अब ऐसी ऋतु आपको अगले साल ही देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ऋतु बदलती है उसी प्रकार आपका पाचन तंत्र अपने आप को बदलने की कवायद शुरू कर चुका होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब ऋतु का संध्याकाल हो, ऐसे में आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने आप पर संयम रखना चाहिए। साथियों, प्रत्येक धर्म में ये कहा गया है कि जब किसी भी प्रहर का सांध्य काल हो, जैसे दिन का ढलना या फिर सूर्योदय होना, ये दोनों समय हम ईश्वर की आराधना में बिताना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ही समय तापमान के घटने या बढ़ने से संबंधित हैं। जब आप सुबह उठते हैं तब तापमान न्यूनतम से अधिकतम की ओर बढ़ता होता है, जब शाम होती है ऐसे में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। इस दौरान यदि आप असंयमित होकर अपने खान पान को जारी रखेंगे जैसा कि आप दिन भर किया करते हैं, तब आपके पाचन तंत्र पर विपरीत प्रभाव तो पड़ेगा ही। शायद इसीलिए प्रत्येक धर्म में मनुष्य को संयमित रहने के लिए प्रातःकाल की प्रार्थना और सायंकाल की प्रार्थना ये जरूरी कर दी गई होगी। लेकिन हम यदि इन नियमों को माने तब न, इन नियमों के पीछे वैज्ञानिक कारण भी छिपे होते हैं। और वैसे भी कहा यही जाता है कि उपचार से सावधानी बेहतर है। साथियों, मौसम बदलने के समय इतनी सारी परेशानियां हम सभी को होती हैं, तब इसका निदान क्या है? निदान ये है कि मौसम का बदलाव सामने आते ही आपको लेना है संतुलित भोजन। हरी सब्जियां और ताजे फलों का सेवन करें और अपने आसपास जितनी हो सके उतनी सफाई रखें। मच्छर पैदा ना हो सके इसलिए घर के बाहर बनी नालियों को साफ सुथरा रखें। धूल और मिट्टी से बचने के लिए मुंह ढककर रखें या फिर बढ़िया किस्म का मास्क पहनें। सांस के रोगी धूल धुआं और शोर शराबे से जितना दूर रह सके उतना रहें। बहुत सारी दवाएं इन दिनों चर्चा में आती हैं साथियों। हम अपने आसपास सर्दी जुकाम के बहुत सारे मरीज देखते हैं, कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों में संक्रमण की बीमारी के भी बहुत सारे मरीज देखते हैं।
जरा सा बुखार आने और सिरदर्द के मरीज देखते हैं और प्रत्येक का कहना यही होता है कि हमने ये विशेष दवाई ली और हमें बहुत आराम आया। लेकिन क्या आपको पता है कि जो बीमारी उन्हें हुई थी वही बीमारी आपको हुई है? साथियों, बिना डॉक्टर को दिखाए बदलते मौसम में चर्चित दवाएं बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और जैसे बच्चों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनसे बचने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों के लिए खुश्की दूर करने के लिए उन्हें नारियल का तेल लगाया जाना चाहिए। बहुत पहले से हमारे सभी धर्मों में कहा गया है कि बच्चों को बहुत जतन से रखा जाना चाहिए और उनकी तेल से मालिश की जानी बहुत जरूरी है। इन सभी के पीछे वैज्ञानिक कारण है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, घर के प्रत्येक सदस्य का यदि बदलते मौसम में ख्याल रखा जाए तो बीमारियां हमसे बहुत दूर भागेंगी।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था बदलते मौसम में जरूरी है सावधानी। दोस्तों, अब आप सभी को हमारे स्वास्थ्य के बारे में इतना तो समझ आ ही गया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप इन सब बातों को अपने करीबी परिजनों को भी बताएंगे। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो विरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्यस्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्यस्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट है आकाश चांगरा। नमस्कार।

रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं आपकी दोस्त ग्लोरिया गांगले। आज की सभा 3 से 4 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुदेव कुटुम्बकम, नाटक और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: आपका भी स्वागत है और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: एक बात ये बताइए मुखिया जी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि हाँ। मखाना की खेती बढ़ाने के लिए सरकार ने शायद कोई नई योजना बनाई है।
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वीरेंद्र जी, सरकार ने मखाना की पैदावार को दोगुनी करने के लिए स्वर्ण वैदेही योजना की शुरुआत की है।
0: यह है किस तरह की योजना है मुखिया जी, और इसके तहत किसानों को किस तरह से सहूलियतें दी जाएंगी?
1: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बिहार की सबसे अधिक डिमांड वाली फसल मखाना से जुड़े

0: किसानों के लिए अच्छी खबर है।
1: जी जी,
0: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूर्वी क्षेत्र पटना के वैज्ञानिकों ने मखाना की पहली उन्नत प्रजाति के बीज स्वर्ण वैदेही को विकसित किया है।
1: जिस बीज की आप बात कर रहे हैं, स्वर्ण वैदेही बीज, इस बीज की क्या खासियत है और क्या यह बीज किसानों के बीच वितरित किया जाएगा?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, ये बीज इस बार मखाना किसानों को मुहैया कराई जा रही है। दावा है कि इस बीज से मखाना की उपज सीधे दोगुनी हो जाएगी।
1: अच्छा अच्छा।
0: उत्तर बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार आदि जिलों में मखाना की खेती बहुतायत में होती है। यह क्षेत्र पूरे भारत का इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहां पर इसकी व्यावसायिक खेती की जाती है।
1: आप बता रहे हैं कि इन क्षेत्रों में बहुतायत मात्रा में मखाना की खेती होती है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या मखाना यहां से निर्यात भी किया जाता है?
0: देश के अन्य राज्यों के साथ ही खाड़ी देशों में यहां का मखाना जाता है।
1: जी,
0: इस क्षेत्र के 13,000 हेक्टेयर जलाशयों में किसान और मल्लाह मखाना की खेती करते हैं।
1: अगर उपज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी मखाना की उपज इन क्षेत्रों में कितनी है?
0: अभी इन क्षेत्रों में 9500 टन मखाना तैयार किया जाता है।
1: अच्छा।
0: ये उत्पादन उस स्थिति में है जब जलाशयों में प्रति हेक्टेयर महज 1.4 से 1.6 टन तक मखाना होता है।
1: ऐसा भी कहा जाता है मुखिया जी कि ये मखाना किसानों को सरकार की ओर से एक ड्राइविंग सूट भी उपलब्ध करवाया जाएगा, क्या यह बात सही है मुखिया जी?
0: हाँ बिल्कुल सही है। जान जोखिम में डालकर गहरे पानी में घुस के मखाना निकालने वाले किसानों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है।
1: अच्छा।
0: केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल और भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूर्वी क्षेत्र पटना के वैज्ञानिकों ने मखाना खेती से जुड़े किसानों के लिए डाइविंग सूट तैयार की है, यानी तैराकी वाली सूट।
1: जी जी, इस सूट के प्रयोग से किसानों को किस तरह का फायदा होने वाला है, क्या इससे उन्हें खतरा कम मूल्य देना पड़ेगा?
0: इस सूट के प्रयोग से किसानों का समय तो बचेगा ही
1: जी,
0: काम के दौरान कोई खतरा भी नहीं रहेगा।
1: अच्छा।
0: उत्तर बिहार के किसान, खासकर मखाना की खेती करने वाले किसान, मखाना बीज तैयार हो जाने के बाद गहरे पानी में गोता लगाकर उसे धीरे धीरे निकालते हैं।
1: जी जी।
0: लगातार कोशिश के बाद भी वो ठीक से मखाना नहीं निकाल पाते हैं।
1: जो मखाना किसानों को ड्राइविंग सूट दिया जाएगा मुखिया जी, उस सूट की खासियत क्या होगी? क्या इसमें ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर भी लगा होगा ताकि उनको पानी के अंदर किसी तरह की परेशानी न हो?
0: सबसे पहली बात यह है कि जो सूट है ये वो सिंथेटिक कपड़े से तैयार किया जाएगा।
1: अच्छा।
0: और इसमें 14 किलो का ऑक्सीजन सिलेंडर लगा होगा।
1: अच्छा।
0: इसके अलावा पानी के अंदर ठीक से देख सकने वाला चश्मा भी लगा रहेगा।
1: एक बात ये बताइए मुखिया जी कि इस सूट की लागत की अगर बात की जाए तो यह तो काफी महंगी होगी, फिर भी एक सूट पर कितना खर्च आने का अनुमान लगाया जा रहा है?
0: देखिए, गोताखोरी की इस सूट की लागत करीब 25,000 रूपये आ रही है।
1: अच्छा।
0: बताया जा रहा है कि सूट पहनने के बाद किसान पहले घंटे में 12 किलो और दूसरे घंटे में 8 किलो तक मखाना बीज बाहर निकाल सकेंगे। इसके सहयोग से पानी में बहुत अधिक बीज छूटेगा भी नहीं।
1: बिना सूट के प्रयोग से किसान कितनी मात्रा में बीज पानी से बाहर निकाल पाते थे?
0: परंपरागत तरीके से किसान पहले घंटे में 4 किलो और दूसरे घंटे में महज 2.5 किलो तक ही बीज निकाल पाते थे।
1: ऐसा भी कहा जाता है कि पिछले साल सरकार मखाना की खेती पर 25,00,000 रुपए खर्च की थी, लेकिन कोई उसका सार्थक परिणाम देखने को नहीं मिला।
0: देखिए वीरेंद्र भाई, उत्तर बिहार के मखाना किसानों को समेकित खेती के गुर सिखाने के लिए पिछले साल यानी कि पिछले 4 साल से
1: जी जी
0: सरकार कृषि अनुसंधान केंद्र में 25,00,000 रुपए किसानों पर खर्च कर दिए।
1: अच्छा अच्छा।
0: इस कोशिश में महज 23 हेक्टेयर जल क्षेत्र में समेकित खेती कराने में सफलता मिली।
1: समेकित खेती के तहत किसानों को मखाना के साथ साथ और किन किन चीजों की खेती के लिए प्रेरित किया गया है मुखिया जी?
0: वैज्ञानिकों का दावा है कि सभी किसान मखाना के साथ साथ सिंघाड़ा आप समझते होंगे,
1: जी, पानी फल जिसको बोलते हैं,
0: हाँ पानी फल, और मछली कि समेकित खेती करें तो उनकी आमदनी सीधे दोगुनी हो सकती है।
1: जी जी।
0: ICAR यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के पटना केंद्र और दरभंगा स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों के शोध में ये बात सामने आई कि एक हेक्टेयर के तालाब या पोखर में यदि किसान सिर्फ मखाना की खेती करते हैं तो प्रति हेक्टेयर महज 40,000 रूपये की शुद्ध आय होती है।
1: जी।
0: यदि इतने ही रकबे में किसान मखाना के साथ ही मछली और सिंघाड़े की खेती करते हैं तो उनकी आमदनी 80,000 रूपये तक हो जाती है,
1: यानी सीधे दुगनी हो जाती है।
0: हाँ।
1: जिस आमदनी की आप बात कर रहे हैं मुखिया जी, क्या वह लागत घटाने के बाद है या फिर लागत को जोड़ करके है?
0: जी हाँ, ये आमदनी लागत घटाने के बाद है यानी शुद्ध आय है।
1: जी जी।
0: इतने रकबे में सिंघाड़ा की खेती करने पर 17,000 रूपये और मछली पालन में कुल 11,000 रूपये का अतिरिक्त खर्च आता है।
1: अभी वर्तमान में कितने क्षेत्रों में इस तरह की समेकित खेती की जा रही है?
0: वैसे दरभंगा के आसपास के 23 हेक्टेयर जल क्षेत्र में मखाना, सिंघाड़ा और मछली की समेकित खेती हो रही है।
1: जी।
0: उत्तर बिहार के 13,000 हेक्टेयर में विस्तारित मखाना खेती वाले तालाब और पोखरों को इस समेकित खेती के तहत लाने की कोशिश की जा रही है। क्षेत्र में लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है।
1: तो आशा की जानी चाहिए मुखिया जी कि सरकार की यह पहल कारगर सिद्ध हो ताकि किसानों की आमदनी बढ़े और साथ ही साथ मखाना का निर्यात भी हो ताकि राज्य का कोष बढ़े, कोष में वृद्धि हो। मुखिया जी, एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा कि ये
0: हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए।
1: ये जो सरकार लगातार
0: हाँ,
1: किसानों को सुविधा मुहैया कराई जा रही है, ऐसी तमाम तरह की घोषणाएं होती
0: हैं।
1: जैसे अभी आप बात किए मखाना की खेती के बारे में, लेकिन वास्तविकता की धरातल पर कुछ खास हो नहीं पाता है।
0: आपका कहना सही है, लेकिन आपका इशारा किस ओर है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। जरा खुलकर अपनी बात को आप रखें तो मैं उस पर विचार प्रकट कर सकता।
1: अब धान खरीद का ही मामला दे दीजिए मुखिया जी, जो अभी तक 2 माह गुजरने के बाद भी मात्र 2% ही धान की खरीद हो सकी है, जबकि लक्ष्य और कुछ निर्धारित किया गया था।
0: हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है वीरेंद्र भाई कि धान खरीद की गति धीमी है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 24 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा, 2 महीने हो गए पर मात्र 60,000 टन ही धान की खरीद हो सकी। सरकार के लक्ष्य का मात्र 1.5-2%।
1: जी जी बिल्कुल। तो आखिर इस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए, यह भी एक विकराल प्रश्न है मुखिया जी।
0: देखिए, अगर देखा जाए तो 15 अप्रैल तक लक्ष्य पूरा करने के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को लगभग 23.5 लाख टन धान खरीदने होंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर दिन औसतन 25,000 टन धान खरीदना होगा।
1: मुखिया जी, इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी आपसे प्राप्त करेंगे, लेकिन अगले कार्यक्रम में अभी हम लोग चलते हैं। इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद।

दोस्तों अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि जगत और प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। आइए साथियों अब सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और श्याम जी, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी आपका भी,
2: और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: यौन हिंसा की घटना घटने की बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही है। पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई उसने पूरे मानवता को झकझोर कर रख दिया। क्या आदमी इतना विकृत रूप धारण कर सकता है, ऐसा कोई सोच भी सकता है?
2: देखिए, सोचने वाली बात तो ये है कि उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं आए दिन घटित हो रही हैं।
0: जी बिल्कुल,
2: ये पूरे भारतीय समाज के लिए चिंता की बात है। पिछले दिनों बिहार के दनियावा में जिस तरह की घटना हुई, या फिर ब्रह्मपुत्र मेल में सैनिकों द्वारा जो घिनौनी हरकत की गई, बिहार की ही एक लड़की 107 दिनों से गायब है और पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। ये सारी घटनाएं इस बात को दर्शाती हैं कि आज हमारा समाज कितने गर्त में जा रहा है।
0: बिल्कुल
1: सही बात है। इन सारी घटनाओं से एक बात तो साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है कि लोगों के दिलों में कानून का खौफ है ही नहीं। आप जिस दिल्ली की घटना का जिक्र कर रहे हैं, इस घटना ने पूरे समाज को आंदोलित कर दिया है। पुलिस जिस सक्रियता के साथ इस पूरे घटना के तह तक पहुंचने की कोशिश की है, वो भी सराहनीय योग्य बात है। सजा के तौर पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी।
0: कपूर साहब, दिल्ली की ये जो गैंग रेप की घटना हुई थी, कुछ इसी तरह की घटना कुछ दिन पहले पटना में भी एक छात्रा के साथ हुई है, जिसमें चार्जशीट तो दाखिल किया गया है लेकिन अभी तक सजा नहीं सुनाया गया।
1: जी,
0: मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि दिल्ली में जो घटना हुई थी उसमें किन किन अपराधों को चार्जशीट में शामिल किया गया, क्योंकि सजा तो चार्जशीट के आधार पर ही तय की जाती है ना?
1: देखिए वीरेंद्र जी, गैंग रेप मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सामूहिक दुष्कर्म की घटना एक सुनियोजित घटना थी।
0: जी,
1: इसमें किशोर आरोपी की भूमिका का भी जिक्र किया है। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि इस वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया।
0: आरोप पत्र में सबूत के तौर पर किन किन साक्ष्यों का हवाला दिया गया था श्याम जी, खास करके दिल्ली की घटना का अगर जिक्र करते हैं तो?
2: आरोप पत्र में सबूत के तौर पर सीसीटीवी कैमरे में कैद बस के फुटेज, पीड़िता और उसके दोस्त की मॉल से निकलते हुए समय की फुटेज, मोबाइल लोकेशन, बस से बरामद फोरेंसिक लैब उसके सैंपल का जिक्र किया गया है। अभियोजन पक्ष ने कहा है कि वारदात को अंजाम देने में प्रत्येक आरोपी ने एक खास भूमिका निभाई है।
0: लेकिन आरोप पत्र दाखिल करने में इतना देर क्यों हुआ, इस पर काफी सवालिया निशान उस समय लगा था, किस कारण से देरी हुई, क्या इस बात का खुलासा उस समय किया गया था?
1: न्यायाधीश ने लोक अभियोजक से देर से आरोप पत्र दाखिल करने का कारण पूछा तो लोक अभियोजक ने बताया कि जांचकर्ताओं को अधिक संख्या में दस्तावेज और आरोप पत्र के क्रम में लगने में जो देरी हुई है उसके पीछे का जो मौलिक कारण है वो फॉरेंसिक रिपोर्टों को भी ये सिद्ध करता है, उसी के खिलाफ जो लगाए गए हैं वो सिद्ध करता है, आरोपों की पुष्टि होने का दावा किया गया है वो करता है, इसमें भी देरी हुई है और कुछ एक कारण जो बताए गए हैं जिसकी वजह से और देरी हुई है।
0: कानूनविदों की राय है
1: जी,
0: कि हमारे यहाँ जो बलात्कार के खिलाफ सजा का जो प्रावधान है वो काफी ढीला ढाला है, कानून में उतनी सख्ती नहीं बरती गई है। प्रश्न आकर फिर वहीं पर ठहर जाता है श्याम जी, कि क्या बलात्कारियों को फांसी की सजा देनी चाहिए?
1: सभी पक्षों का अपना अपना नजरिया है, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, तो कुछ लोग इसके विपक्ष में। लेकिन एक बात मैं आपको साफ बता दूं कि मानवाधिकार कानून के तहत आज पूरी दुनिया में फांसी की सजा कुछ चुनिंदा मामलों में ही दी जाती है। एक बात यह भी है कि फांसी की सजा इस समस्या का समाधान नहीं है, वैसे और भी तरीके हैं जिससे बलात्कारियों को जिंदगी भर एहसास कराया जा सकता है।
0: वामदलों का एक स्टेटमेंट आया था उस समय कि बलात्कार के मामलों में फांसी की सजा न दी जाए।
1: जी,
0: क्या कहना था उनका?
1: देखिए, वाम फ्रंट से जुड़े महिला संगठन बलात्कार के दोषियों को फांसी देने के हक में नहीं है। उनकी मांग है कि मौजूदा कानून में संशोधन करके बलात्कार के बर्बर मामलों में दोषियों को मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा दी जाए। वामदलों से जुड़े महिला संगठनों ने जस्टिस जेएस वर्मा समिति को अपने सुझाव भेजे हैं। इनमें प्रमुख सुझाव बलात्कार के गंभीर और विभत्स मामलों में मौत तक जेल में रखने का है। इसके अलावा बलात्कार के मामलों का निपटारा तय समय सीमा में फास्ट ट्रैक अदालतों के अंतर्गत करने की मांग शामिल है।
0: ये तो बहुत पहले की बात है कपूर साहब, करीब करीब उस घटना को हुए 4 या 5 साल हो गया है। सुनने में यह भी आ रहा है कि सरकार इन घटनाओं से बहुत आहत है और एक ऐसा कानून लाना चाहती है जिससे बलात्कार के दरिंदों में खौफ घर कर जाए और ऐसे कुकृत्य करने की हिम्मत ही न जुटा सके। श्याम भाई, इस पर आप क्या कहना?
2: अगर सचमुच सरकार की ऐसी मंशा है तो उसे दक्षिण कोरिया के कानून से सीखने की जरूरत है।
0: जी जी,
2: हम ये भी मानते हैं कि हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं, फिर भी अगर सख्त कानून बनाना है तो दक्षिण कोरिया के जैसा ही कानून बनना चाहिए।
0: दक्षिण कोरिया की आप बात कर रहे हैं तो दक्षिण कोरिया में बलात्कार या यौन उत्पीड़न से संबंधित किस तरह के कानून हैं और वहां किस परिप्रेक्ष्य में इतने सख्त कानून बनाने की जरूरत आन पड़ी, इस बात का थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे कपूर साहब।
1: दक्षिण कोरिया की अदालत ने बाल यौन शोषण के दोषी व्यक्ति को नपुंसक बनाने के आदेश दिए हैं। 15 साल की सजा के साथ ही उसे जेल में दवाओं के जरिए नपुंसक बनाया जाएगा। किसी एशियाई देश में इस तरह की सजा सुनाए जाने का ये पहला मामला है।
0: किस परिप्रेक्ष्य में दक्षिण कोरिया की अदालत को इतना सख्त कानून बनाने पर बाध्य होना पड़ा, किस तरह की घटना घटी थी?
2: देखिए, समाचार एजेंसी चीन की शिन्हुआ के अनुसार सियोल दक्षिणी जिला अदालत ने 31 वर्षीय पायो को 15 साल कैद की सजा सुनाई है।
0: अच्छा अच्छा,
2: जेल में ही उसे ऐसी दवाएं दी जाएंगी जिससे उसकी यौन इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। न्यायालय ने कहा कि पायो स्वयं पर नियंत्रण रखने में अक्षम है। उसे नवंबर 2011 से मई 2012 के बीच 5 किशोरों के साथ दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया गया है। उसने यौन वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित करने की धमकी भी दी थी।
0: इस कानून के बनने के बाद क्या इस पर पहल की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है कपूर साहब?
1: दक्षिण कोरिया में 2011 में इस प्रकार का कानून बनाया गया था जिसमें बाल यौन शोषण के दोषी अपराधियों को हार्मोनल उपचार या रसायनों के जरिए नपुंसक बनाने का प्रावधान किया गया था। कानून बनाए जाने के बाद से पहली बार इसका प्रयोग किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया की योनहैप न्यूज एजेंसी के मुताबिक पायो स्मार्टफोन चैट के जरिए किशोरों से दोस्ती गांठता था जिसके बाद वह उन्हें दुष्कर्म का शिकार बना लेता था।
0: कुछ इसी तरह का कानून बनाने की जरूरत शायद हमारे देश में भी महसूस की जा रही है।
1: जी।
0: जब तक ऐसे कानून नहीं बनेंगे तो इस तरह की घटनाएं रुकने के बजाय बढ़ती जाएगी, लेकिन फिर भी ऐसा मानना है खास करके सामाजिक कार्यकर्ताओं का कि ये दक्षिण कोरिया का जो कानून है वो काफी सख्त है। श्याम जी, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
2: अब देखिए, नया कानून जो आने वाला है
0: जी,
2: उसमें किस तरह का प्रावधान किया गया है। दंड की भयावहता अवश्य होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि सामाजिक चेतना और विश्वास का वातावरण बनाने की भी जरूरत है।
0: जी बिल्कुल, बिल्कुल।
2: इसका थोड़ा अंश यूपी में अवश्य देखने को मिल रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा यौन उत्पीड़न के मामले उत्तर प्रदेश में ही सामने आ रहे हैं।
0: पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार विगत वर्षों से प्रदर्शन होते आ रहे हैं कपूर साहब
1: जी।
0: ठोस और सख्त कानून बनाए जाने की बात भी की जा रही है और इसकी पहल भी सरकार के द्वारा की गई थी जेएस वर्मा कमेटी बनाने के बाद
1: जी।
0: ऐसे में सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए एक मजबूत कानून बनाया जाए जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं घटित न हो सके।
1: इस तरह के आरोपियों के खिलाफ कानून बनाने का, यूं कहें कि सख्त कानून बनाने का भी काम भी हुआ है। इसी को ध्यान में रखकर जस्टिस जेएस वर्मा समिति बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है और कानून में बदलाव भी किया गया है। हालांकि इसे और सख्त बनाने की आवश्यकता है।
0: श्याम जी, महिलाओं पर हो रही यौन हिंसा के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग लगातार उठ रही है। उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक छोटी सी पहल की है ताकि यौन हिंसा और घरेलू हिंसा को कम किया जा सके। इस पहल को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं?
2: देखिए इसे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को दिया गया सशक्तिकरण का एक तोहफा माना जा रहा है।
0: जी जी,
2: प्रदेश सरकार ने एक महिला पावर लाइन की शुरुआत की है। इसके तहत 1090 पर शिकायत करने पर महिला पुलिस खुद पीड़िता के पास पहुंचेगी, उसको थाने में नहीं आना पड़ेगा और समस्याओं को सुलझाने की कोशिश के साथ ही उसकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
0: क्या इस नंबर पर फ्री कॉल करने की सुविधा होगी या फिर इसके लिए कोई शुल्क वगैरह भी अदा करना होगा?
1: देखिए, ये नंबर टोल फ्री होगा और जब तक पीड़िता की समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा पुलिस उसके संपर्क में रहेगी। माना जा रहा है कि इससे न केवल अपराधों और छेड़छाड़ पर अंकुश लगेगा बल्कि प्रशासन के प्रति आम जनता में विश्वास भी पैदा होगा।
0: जिन लोगों के विरुद्ध शिकायतें सही पाई जाएगी तो कार्रवाई के तौर पर किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी श्याम जी?
2: जिन लोगों के विरुद्ध शिकायतें सही पाई जाएंगी उनका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा।
0: अच्छा अच्छा,
2: इतना ही नहीं उनके लिए नौकरी पाना भी आसान नहीं होगा। देश में जिस तरह से यौन अपराधों की बाढ़ आई है उससे निपटने की राह में इस पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
0: इस तरह है कि छेड़छाड़ की ज्यादातर शिकायतें जो होती है और ज्यादातर जो शिकार होती हैं वह हमारे गरीब महिलाएं ही होती हैं। शायद इस पहल से उनको न्याय मिले।
1: आपका कहना बिल्कुल सही है। ये माना जाता है कि इस तरह की छेड़छाड़ और शोषण की सबसे ज्यादा शिकायत दलित और आदिवासी तबकों की महिलाएं ज्यादा होती हैं।
0: जी,
1: इस लिहाज से इसे इन तबकों के सशक्तिकरण की कवायद भी कहा जा रहा है कि जो महिलाएं या लड़कियां थाने आने से डरती हैं उन्हें इससे काफी मदद मिलेगी।
0: इस फोन लाइन को शुरू करने के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं महिलाओं में देखने को मिल रही है श्याम जी?
2: देखिए वीरेंद्र जी, इस फोन लाइन को शुरू किया गया तो पहले दिन ही इस नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल आई।
0: अच्छा,
2: लेकिन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसके जो नतीजे निकले वैसी उम्मीद क्या पूरे उत्तर प्रदेश के मामले में की जा सकती है? यह लाइन टोल फ्री जरूर है लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां बिजली ही नहीं पहुंची है और मोबाइल फोन के सिग्नल भी नहीं पहुंचते हैं।
0: जी जी,
2: जबकि वे ये इलाके हैं जहां के लोगों को ऐसी कोशिशों की सबसे ज्यादा जरूरत है।
0: पुलिस से किस तरह की उम्मीद की जा रही है खास करके ऐसे मामलों में कपूर साहब?
1: देखिए वीरेंद्र जी, ऐसे मामलों में हम पुलिस से कोई उम्मीद उसी सूरत में कर सकते हैं जब सामान्य पुलिस वाले महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता से लैस हों।
0: जी,
1: जो पुलिस उपलब्ध है वे भी खुद जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जूझ रही हैं। ऐसे में उससे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि जरूरत पड़ने पर वो तुरंत मौके वारदात पर पहुंच जाएगी?
0: इस तरह के कई तरह के पहल पहले भी किए जा चुके हैं लेकिन कभी भी सार्थक नतीजा देखने को नहीं मिला। कभी नंबर ही फेल हो जाता है तो कभी वो हमेशा इंगेज ही मिलता है।
2: हाँ, ये बात सही है। अभी तक जो टोल फ्री नंबर उपलब्ध हैं ये ज्यादा भरोसेमंद नहीं माने जाते। इसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन 100 नंबर के असंवेदनशील हो जाने की खबरें अक्सर आती ही रहती हैं।
0: जी जी,
2: ऐसा 1090 नंबर के साथ भी हो सकता है। फिर दहेज विरोधी कानून के की तरह ही इसके दुरुपयोग का भी डर बना हुआ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की इस व्यवस्था के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इसे अपनाया है। यकीनन औरतों के हक में ये एक सराहनीय पहल है जिसे अन्य प्रदेश भी अपना सकते हैं।
0: इस जानकारी के लिए कपूर साहब और श्याम जी आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे तो कानून से संबंधित कुछ और जानकारी आपसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आपको भी धन्यवाद।

अभी आपने सुना कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। आइए साथियों अब सुनते हैं भक्ति और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

दोस्तों अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। दोस्तों इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं। दोस्तों अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से RVM मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rvasatyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। और हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम वसुधैव कुटुंबकम, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं समता बोरेकर। और इस कार्यक्रम का शीर्षक है मैया कब ही बढ़ेगी चोटी।

व्यक्ति विशिष्ट के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है मैया कभी बढ़ेगी चोटी। इसकी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता है समता बोरेकर। श्रोता साथियों, बाल गोपाल की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। उनके मुंह पर माखन लगा है और हाथ भी माखन से सने हुए हैं, मगर फिर भी बड़ी मासूमियत से अपनी माता यशोदा को वे कह रहे हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ते सखा सबे मिल मेरे मुख लपटायो। मतलब मैया मैंने माखन नहीं खाया, वो तो उन सभी सखाओं ने मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। दोस्तों, कैसी भोली बात है, कैसा मीठा बहाना। बाल कन्हैया दूध नहीं पी रहे, माता यशोदा उन्हें मना मना कर थक गई। फिर बोली, कान्हा चलो जल्दी दूध पियो, दूध पीने से तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। बस कन्हैया ने झट से दूध पी लिया और फिर अपने बाल देखने लगे, मगर चोटी तो बड़ी ही नहीं। वे मैया को बोले, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पीवत भैया अजू है छोटी। श्रोताओं, और ऐसी कितनी ही मनोहर कलाएं और लीलाएं बाल गोपाल की हैं, जो बस बरबस ही मन को मोह लेती है। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण का यह जादुई माया संसार किसने रचा है? ये वो रचनाकार थे दोस्तों, जिनकी कल्पना संसार अनूठा था और इस संसार का केंद्र था भगवान कृष्ण की भक्ति और संवेदना इतनी सूक्ष्म कि उनके जीवन की कोई हरकत कोई क्रीड़ा नहीं छूटी। उनका प्रभाव इतना गहरा था साथियों कि उस काल का जीवन दर्शन ही कृष्णमय हो गया था। यह उन्हीं का प्रभाव था जिसने 16वीं शताब्दी को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बनाया था। मुझे लगता है कि आप में से कई उन्हें पहचान गए होंगे। जी हाँ श्रोता साथियों, मैं महाकवि सूरदास की ही बात कर रही हूँ। सूर ने बाल गोपाल की बाल लीलाओं का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया है और उनके वर्णन में इतना गहरा निरीक्षण था कि उस काल के साहित्यकारों को साहित्य के 9 रसों के अतिरिक्त वात्सल्य रस को भी 10वें रस के रूप में मान्यता देनी पड़ी थी। साथियों, उस समय के कवि अपने आप के विषय में बहुत कम लिखा करते थे, इसलिए इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि महाकवि सूरदास के जीवन काल के बारे में निश्चित ठोस सबूत नहीं है। सूर जी ने स्वयं के विषय में जो कुछ थोड़ा बहुत लिखा और उस दौरान उनके समकालीन कवियों ने उनके विषय में जो लिखा, उससे पता चलता है कि सूर जी का जन्म आगरा के निकट गोपाचल नाम के स्थान पर हुआ। कुछ लोग उनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नाम के ग्राम को भी मानते हैं। सूर जी के जन्म की तिथि 1535 वैशाख शुक्ल में मानी जाती है। श्रोताओ कहते हैं कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे। उनके अंधत्व के कारण उनके गरीब माता पिता बड़े दुखी रहते थे और इसी कारण उन्होंने गृह त्याग कर दिया और मथुरा के पास किसी क्षेत्र में कुटी बनाकर रहने लगे। दोस्तों कहते हैं उन्हें ज्योतिष शास्त्र का भी बड़ा अच्छा ज्ञान था और वे खोई हुई वस्तुओं का पता बता देते थे। एक ज्योतिष के रूप में शीघ्र ही उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। उनके पास दूर दूर से लोग आने लगे और इससे उनके पास बहुत सा धन भी इकट्ठा हो गया। दोस्तों, सूर जन्म से ही नेत्रहीन थे या बाद में उन्हें नेत्र हानि हुई, यह भी विवाद का विषय रहा। दोस्तों, यह विवाद उचित भी है, क्योंकि सोचने की बात है कि कोई जन्म से अंधा कृष्ण की लीलाओं का इतना सूक्ष्म और गहन वर्णन कैसे कर सकता है। एक किंवदंती यह भी है कि सूर एक बार किसी वैश्या के प्रति आसक्त हो गए थे। इस पर उनके मन में घोर अपराध बोध हुआ और उसके बाद वैराग्य और पश्चाताप के स्वरूप उन्होंने अपनी आंखें सुइयों से फोड़ ली थी। यह बात तो निश्चित है श्रोताओं कि सूर आजीवन अविवाहित थे, परंतु उनके नेत्रहीनता की कथाएं प्रमाणिक नहीं है। हर महान व्यक्ति की भांति सूर के उत्थान की कथा तब शुरू होती है जब वे मथुरा होते हुए गौघाट आए। गौघाट पर सूर की भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने आचार्य को 2 पद गाकर सुनाए, मौसम कौन कुटिल खल कामी, प्रभु है सब पतितन को टीको। यह पद सुनकर आचार्य वल्लभाचार्य प्रभावित तो हुए, परंतु सूर की आत्महीनता और दीन भाव देखकर बोले, सूर है के ऐसो काहे को गिगियात है, कुछ भागवत लीला वर्णन करी। बस यहीं से सूर को दिशा मिल गई। वल्लभाचार्य ने सूर को अपना शिष्य बनाकर वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित कर लिया। सूर ने वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में कृष्ण लीला का सुंदर वर्णन किया है।
श्री वल्लभाचार्य के बाद जब उनके पुत्र गोसाई विट्ठल नाथ जब गद्दी पर बैठे तो पुष्टि मार्गी कवियों में से सर्वोत्तम आठ को चुनकर उन्होंने अष्ट छाप की प्रतिष्ठा की। इन अष्ट छाप कवियों के सिरमौर सूर थे। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। दोस्तों, 84 वैष्णव वार्ता साहित्य के अनुसार सूर ने अपने जीवन काल में सहस्रावधि पद बनाए। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में सूर की 25 से अधिक रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से उनकी तीन कृतियां सुरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी सर्वाधिक चर्चित रचनाएं हैं। ये तीनों रचनाएं ही श्री कृष्ण की जीवनी पर आधारित ब्रज भाषा में लिखी गई है। सूर का कृष्ण बाल लीला वर्णन, रास वर्णन, भ्रमर गीत आदि इतने सजीव और सादृश्य हैं कि आज भी हम जो टीवी और फिल्मों में देखते हैं, यह सूर्य के काव्य पर ही आधारित है। दोस्तों, सूर का साहित्य में जो योगदान है वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है श्रोताओं, क्योंकि उस काल में दिशा विहीन देश और समाज को जीवन आध्यात्म से जोड़ने का कार्य उन्हीं के द्वारा संपन्न हुआ। दोस्तों, आज हम जिस धार्मिक परिवेश और संस्कार में व्यवस्थित है ना, वो एक लंबे और सतत प्रयासों का प्रतिफल है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश ने सालों युद्ध और आक्रमण का सामना किया है। 14वीं शताब्दी तक भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो चुका था। हिंदू राजे युद्ध करते करते थक गए थे। राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के चलते वे आपस में ही लड़ते ही रहते थे और इस कारण वे विदेशी आक्रमणकारी लुटेरों के विरुद्ध संगठित मोर्चा उपस्थित नहीं कर पाते थे। ऐसे कठिन समय में अपने पुरुषत्व से हताश जनता को भक्तिकालीन कवियों ने भगवान की शरण का मार्ग सुझाया और इसमें निसंदेह सूर सबसे अव्वल थे। उनका काव्य मानो शहद की चाशनी में डूबा हुआ था, जिसने पूरे समाज को बाल कृष्ण की किलकारियों से गुंजायमान कर दिया था, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया और एक आध्यात्मिक वातावरण निर्मित कर दिया। कहते हैं दोस्तों, 1623 में मथुरा में बादशाह अकबर सूर से भेंट करने के लिए आए थे। वहां अकबर ने सूर को खुद की तारीफ में कुछ कहने को कहा। इस पर सूर ने उन्हें दोहे में कहा कि उनका मन तो भगवान में लगा है, फिर किसी इंसान की तारीफ कैसे कर सकता है। बादशाह अकबर मुस्कुरा के रह गए। उन्होंने बुरा नहीं माना और आगे चल दिए। ऐसे महान महाकवि सूरदास अपने अंतिम दिनों में पारसोली में रहे। जन्म तिथि की तरह ही उनकी मृत्यु का समय भी प्रमाणिक नहीं है, परंतु माना जाता है कि संवत 1640 में सूर ने देह त्याग दी थी। तो दोस्तों, ऐसे थे सूर और ऐसा था उनका कृष्ण लीला संसार। आज कृष्ण के जितनी भी लीलाओं कलाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनकी जो भव्य झांकी हमारे मन में बैठी है, वो सारी रचना सूर की कल्पना का साकार रूप है। तो दोस्तों, ऐसे थे सूर और ये था हमारा भारतीय साहित्य। दोस्तों, सूर ने भगवान भक्ति के अलावा सगुण भक्ति शाखा की भी जो छाप हमारे मन में डाली है, वो भी आज तक यथावत बनी है। उन्होंने निर्गुण भक्ति शाखा को नकारते हुए भगवान की सगुण भक्ति का एक भव्य रूप, एक भव्य झांकी हमारे सामने प्रस्तुत की। तो दोस्तों, ऐसे थे सूर जिन्होंने भक्ति साहित्य की सगुण भक्ति शाखा में कृष्ण भक्ति मार्गी कवियों के लिए राहें खोली। उनके समकालीन कई कवियों ने उनका अनुकरण करते हुए कृष्ण जीवन पर आधारित रचनाएं लिखी, परंतु दोस्तों, सूर ने कृष्ण बाल रूप, उनके रास रूप और कर्म रूप का वर्णन जिस संतुलन से किया, उसकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम वसुदेव कुटुंबकम, जिसका शीर्षक था मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, जिसे प्रस्तुत कर रही थी समता बोरेकर और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, सुनते हैं नाटक जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं माइकल होजेस और इस नाटक का शीर्षक है टूटी हुई आस्था।

0: अरे आओ आओ रमा, आओ ना।
1: और क्या हो रहा है?
0: देख लो, बस वही रोज का काम है। और तुम कहाँ निकल पड़ी आज?
1: अरे आज मैं तुलसी की सास को देखने जा रही थी तो सोचा तुमसे भी मिलते चलूं।
0: क्यों, तुलसी की सास को क्या हुआ?
1: सुना है चार एक दिन से उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था।
0: ओहो हो, मुझे तो खबर ही नहीं हुई। फिर?
1: अभी तो ठीक है, इसलिए डॉक्टर ने घर भेज दिया है।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मैंने सोचा अस्पताल नहीं तो घर पर ही जाकर देखाऊं।
0: हाँ ये तुमने अच्छा सोचा। अरे वैसे उनको हुआ क्या है?
1: हो ना क्या है, बुढ़ापा अपने आप में खुद एक बीमारी है। जरा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा नहीं कि बुखार आने पर बीमारी और बढ़ जाती है, फिर बुढ़ापे में संभलना और संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
0: सच बोलती हो तुम, सचमुच में बुढ़ापा भी अपने आप में एक बीमारी ही है। अच्छा आप कैसी हैं?
1: अब तो ठीक है वो, तभी तो डॉक्टर ने घर भेज दिया है।
0: एक बात है रमा, कुछ भी बोलो, तुलसी भी अपनी सास की खूब सेवा करती है, वरना आजकल के जमाने में कौन बहू अपने सास की इतनी सेवा करती है भला।
1: सच में तुलसी को अपनी सास की सेवा करने का खूब आशीर्वाद मिलेगा, देखना।
0: और एक मैं हूँ जिसकी किस्मत में अपनी सास की सेवा करना ही नहीं लिखा है।
1: अरे तो तुम भी अपनी सास को अपने पास यहाँ रखकर उनकी सेवा कर सकती हो?
0: मैंने इस बात से कब इनकार किया है, यहाँ रख तो मैं भी लूँ, मगर अम्मा यहाँ रहें तब ना, उन्हें तो वहीं अपने गांव में ही रहना अच्छा लगता है, इसलिए वो गांव छोड़कर यहाँ आने को तैयार ही नहीं होती।
1: फिर खेती बाड़ी भी तो होगी ना?
0: हाँ देवर और देवरानी संभालते हैं। इन्होंने कितनी बार कहा कि अम्मा यहाँ आकर कस्बे में हमारे साथ रहो, मगर वो माने तब ना।
1: बुजुर्गों के साथ यही एक मुश्किल है किरण, उन्हें अपने अतीत अपनी पुरानी चीजों से बहुत प्यार होता है। शायद तुम्हारी सास भी ऐसी ही है।
0: क्या करें, अब जब भी गांव जाना होता है तो वहाँ अपनी सास की खूब सेवा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं तो किसी भी तरह से बस अपना फर्ज निभाना चाहती हूँ। तुम इसे यूं भी कह सकती हो कि इसी बहाने मैं भी उनका आशीर्वाद पाना चाहती हूँ।
1: काश आज की सारी बहुएं तुम्हारी तरह से सोचने लग जाए किरण, तो असंयुक्त परिवार टूटने का ये सिलसिला थम जाए।
0: हाँ अब हमारे साथ गांव की संस्कृति भी तो जुड़ी है जो हमें भीतर से इस चीज के लिए बांधे रखती है, वरना तुम तो जानती ही हो कि इनकी वन विभाग की नौकरी की वजह से हम आज यहाँ पड़े हैं कल कहीं और, अब बदली हो जाएगी तो वहाँ जाकर भी तो रहना पड़ेगा।
1: सही है, तभी तो अम्मा और देव देवरानी गांव में और तुम लोग यहाँ पर हो।
0: क्या करें मजबूरी है रमा।
1: अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही किरण, तुम तो खैर मजबूरी में अपनी सास से इतनी दूर हो, फिर भी तुम्हारे मन में अम्मा के लिए इतना अपनापन, इज्जत, प्यार और मान सम्मान तो है, और मौका मिलने पर तुम उनकी सेवा भी करती हो। मगर आजकल की बहुत सारी बहुओं को तो देखो, शादी करते ही अपना अलग घर बसाना चाहती हैं और बसा भी लेती हैं।
0: अरे अब ये तो इंसान की अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी समझ होती है।
1: मेरी भी कितनी इच्छा होती है कि अपनी सास की सेवा करूं, मगर क्या करूं, मेरी सास ही नहीं है।
0: और जिनकी है वो सेवा नहीं कर पाती है।
1: अब तुलसी को ही देख लो, अपनी सास की कितनी सेवा करती है, तो उस पर सास की कितनी आशीष है, उसे किसी बात की कमी नहीं है, धन धान्य से भरपूर है वो।
0: सचमुच उसे किसी बात की कमी नहीं है, न रुपए पैसे की और न ही औलाद के सुख की। और एक मैं हूँ जो शादी के 5 साल बाद भी एक बच्चे के लिए तरस रही हूँ।
1: तुम किसी बड़े शहर में किसी अच्छे डॉक्टर से अपने और अपने पति का इलाज क्यों नहीं करवाती?
0: हमने इंदौर भोपाल जैसे बड़े शहरों में अपनी जांच करवा ली है।
1: फिर डॉक्टर का क्या कहना है?
0: क्या कहते, उन्होंने भी कह दिया मैं कभी माँ नहीं बन सकती।
1: तो इसमें निराश क्यों होती हो तुम? भगवान पर भरोसा रखो, वो सबका सब अच्छा ही करता है।
0: जब वो सबका सब अच्छा ही करता है तो फिर मेरा ही बुरा करने पर क्यों तुला है? मुझसे आखिर क्या दुश्मनी है उसकी?
1: भगवान के लिए ऐसा नहीं कहते किरण।
0: तो फिर और क्या कहूँ, मेरी जगह अगर तुम भी होती तो तुम भी यही कहती रमा।
1: तो क्या भगवान पर सिर्फ तुम्हारी इतनी ही आस्था है?
0: भगवान पर मेरी बहुत आस्था थी रमा, मगर अब वो आस्था टूटने लगी है।
1: यानी अगर भगवान तुम्हें सब कुछ देता रहे, तुम्हारी मनोकामना पूरी करता रहे, तभी तक तुम उसमें अपनी आस्था बनाए रखोगी, वरना नहीं।
0: वो तो उनको भी खूब और सब कुछ देता है जो उसमें आस्था ही नहीं रखते।
1: तुम तो जानती ही हो किरण कि जब हम किसी व्यक्ति की सोच को ही नहीं सोच सकते तो फिर वो तो भगवान है, उसकी सोच को हम कैसे सोच सकते हैं कि वो किसे क्या और क्यों दे रहा है?
0: तो फिर तुम ही बताओ, वो किसी के साथ इंसाफ और किसी के साथ नाइंसाफी क्यों करता है?
1: मैंने अभी कहा ना कि हम भगवान की सोच को सोच नहीं सकते, फिर भी हम एक छोटा सा अंदाजा ये लगा सकते हैं कि इस तरह से शायद वो हमारी परीक्षा लेता हो।
0: जब भगवान सब कुछ जानता है तो वो ये नहीं जानता कि कौन उसकी परीक्षा में पास होगा और कौन फेल हो जाएगा।
1: बिल्कुल, वो ये सब जानता ही होगा। स्कूल में भी तुमने देखा होगा कि टीचर इस बात को जानते हैं कि कौन परीक्षा में पास होगा और कौन फेल होगा, फिर भी वो परीक्षा लेते हैं इस बात की कि फेल होने वाले भी पास होने की कोशिश करते हैं या नहीं।
0: तुम्हारा मतलब अपनी परीक्षा में वो हर एक को पास होने का मौका देता है और देना चाहता है?
1: बिल्कुल, मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ।
0: मगर मैं तो अब ये परीक्षा देते देते थक गई हूँ रमा। मैं ये परीक्षा की घड़ी में अब और नहीं जी सकती।
1: किसी भी घड़ी में जीना और मरना हमारे हाथ में नहीं होता किरण, ये तो सब उसी भगवान के हाथ में होता है। इसलिए हम मरना चाहें भी तो हमें जीना ही होता है। ये ईश्वरीय देन है और इसी का नाम जिंदगी है।
0: तुम कुछ भी कहो रमा, मेरी तो अब भगवान पर से आस्था टूटती जा रही है।
1: शायद इसलिए अब तुम तांत्रिकों और बाबाओं के चक्कर लगा रही हो।
0: तो इसमें बुरा क्या है? मैं तो इसमें कोई बुराई नहीं समझती।
1: लेकिन उसके बनाए इंसानों पर अब तुम विश्वास करने लगी हो?
0: हाँ, क्योंकि जब इंसान को एक डॉक्टर की दवाई से फायदा नहीं होता तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि उसे ठीक होना होता है।
1: मगर तुम ये भूल रही हो कि इंसान कितने भी डॉक्टर बदल ले, भगवान चाहेगा तो ही वो ठीक होगा, वरना एक ना एक दिन मरना तो सभी को है।
0: अब जब भगवान पर इतनी आस्था रखने और विश्वास करने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो अब इंसानों पर भी विश्वास करके देख ले। कुछ पाने के लिए इंसान को हाथ पैर तो मारना ही पड़ता है ना रमा।
1: मगर हाथ पैर भी तो सही जगह मारना चाहिए ना, वरना भारी निराशा का सामना करना पड़ता है।
0: निराश तो हम पहले ही बहुत हो चुके हैं, अब और क्या निराश होंगे हम।
1: भले ही निराश ना हो लेकिन धोखा खाओगे तो और भी गहरी ही निराशा हाथ लगेगी।
0: तब की तब देखी जाएगी। कई बाबाओं के पास जाने से कई औरतें तो माँ बन चुकी हैं।
1: ये तुम्हारी गलत फहमी है किरण, वो भी भगवान की इच्छा से ही माँ बनी होंगी, वरना तो सभी जानते हैं कि तांत्रिक और बाबा लोग किस तरह से नासमझ औरतों की इज्जत से खेलकर उन्हें माँ बना देते हैं।
0: अब सभी बाबा एक जैसे तो नहीं होते हैं, कुछ तो वास्तव में पहुँचे हुए बाबा और महात्मा होते होंगे ना।
1: तो क्या तुम्हें पहुँचे हुए और ढोंगी बाबा में फर्क मालूम है? फिर सच्चे बाबा किसी बेऔलाद औरत को माँ बना देने का ना तो दावा ही करते हैं और ना ही ऐसी कोई कोशिश ही करते हैं।
0: फिर भी रमा, इतनी औरतें बाबाओं का आशीर्वाद लेने जाती हैं, क्या वे सभी नासमझ हैं?
1: अगर नासमझ ना होती तो बाबाओं के चक्कर में पड़ती ही क्यों? और बाबा लोग ऐसे ही नासमझ औरतों का फायदा उठाते हैं, समझी तुम?
0: अब इतनी भी नासमझ नहीं हूँ मैं।
1: नासमझों की यही तो निशानी है कि वे अपने आप को नासमझ मानते ही नहीं। अपनी नासमझी का एहसास तो उन्हें धोखा खाने के बाद ही होता है।
0: अब बाबाओं के पास मैं अकेले तो जाती नहीं हूँ, ये भी साथ में रहते हैं मेरे।
1: अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें समझा नहीं सकती,
0: क्योंकि समझदार तो मैं भी हूँ।
1: अच्छा छोड़ो, तुम चल रही हो क्या तुलसी की सास को देखने?
0: अभी तो तुम हो आओ, मुझे ये कुछ काम निपटाने हैं, मैं शाम को हो आऊंगी।
1: ठीक है।

0: क्यों आज तारीख क्या है?
1: आज 20 तारीख है, क्यों?
0: लो, ये भी भूल गए तुम।
1: अरे तो जब तक याद नहीं दिलाओगी तो कुछ याद आएगा कैसे? वैसे ही 10 तरह की चिंता रहती है।
0: तुम्हें याद नहीं, पिछले महीने हम उस बबूल वाले बाबा के पास गए थे?
1: हाँ याद आया, वो बरगद वाला बाबा।
0: फिर?
1: उसका आश्रम और उसके वो चेले और भक्त।
0: मगर उसने क्या दिया था और क्या कहा था, वो सभी याद आया या नहीं आया?
1: अरे हाँ याद आया, याद आया। उसने कोई जड़ और कुछ भभूत दी थी तुझे और कहा था जड़ को पानी में घिसकर उसमें भभूत मिलाकर 7 दिन तक रोज पीना और 1.25 महीने बाद देखना तेरी गोधरी हो जाएगी।
0: मगर ऐसा नहीं हुआ।
1: 1.25 महीना हो गया क्या?
0: तभी तो कह रही हूँ, तुम्हें तो कुछ होश रहता ही नहीं है।
1: तो क्या कुछ भी नहीं हुआ?
0: अगर ऐसा हो जाता तो क्या बात थी, जड़ घिसकर भभूत मिलाकर पीते पीते 1.25 महीना भी गुजर गया, मगर जड़ी बूटी ने कोई कमाल दिखाया ना भभूत ने।
1: मगर बबूल वाला बाबा तो बड़ी बड़ी बातें बना रहा था।
0: सही कहते हो तुम, ये बबूल वाला बाबा भी पिछले सभी फकीर और बाबाओं की तरह झूठा निकला। ये भी अपने ही मुंह अपनी कितनी तारीफ कर रहा था, ना मुराद कहीं का।
1: हाँ और ऊपर से हमको लूट भी लिया उस ठग ने। हमारे यहाँ बच्चा हो और हमारी मनोकामना पूरी होने के बदले में उसने हवन और अनुष्ठान के नाम पर पूरे 2000 रुपए ले लिए लुटेरे ने।
0: उसने हमें लूटा भी तो कितने तरीके से लूटा। 2 मंगलवार तो साधारण पूजा पाठ के नाम पर हमें ऐसे ही बुलवा लिया और फिर कहा अगले गुरुवार फिर आना, बड़ी पूजा और अनुष्ठान करना है।
1: और उसका खर्च भी बता दिया था, पूरे 2000। और क्या कहा था उसने कि रुपए पैसे के पूरे इंतजाम के साथ ही आना, वरना पूजा पाठ और अनुष्ठान में भी कमी रह जाएगी।
0: बस यही डर दिखाकर तो उसने हमसे 2000 रुपए ले लिए थे।
1: मगर हम लूट गए, ये तो अब हमें लूटने के बाद ही पता चला है ना।
0: और क्या, अगर हमें पहले ही पता चल जाता कि बाबा हमें लूट रहा है तो क्या हम यूं लूटते?
1: बात तो सही है, मगर अब हम कर भी क्या सकते हैं? पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं लिखा सकते, हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है कि बाबा ने हमसे 2000 रुपए लिए हैं और हमने उसे दिए हैं, कौन मानेगा इसे?
0: हम भी क्या करें, औलाद की आस ही हमें फकीर और बाबाओं के दर पर ले जाती है हमेशा।
1: तू सही कहती है किरण, और अब भी तेरी गोद खाली है।
0: और औलाद के लिए हमने बाबाओं ही क्या, हमने तो तांत्रिकों तक के दरबार में अपनी हाजिरी दी है, मगर हमारी आस अधूरी ही रह गई।
1: तुझे याद है इस बबूल वाले बाबा के पास जाने से पहले हम वो तांत्रिक कंकालनाथ के पास भी गए।
0: अरे उस कंकालनाथ का तो नाम भी मत लो तुम, क्या मैं उस भेड़िये को भूल सकती हूँ? तुम भले ही उसे भूल जाओ मगर मैं उसे कभी नहीं भूल सकती हूँ। उस हैवान ने तो संसार का कल्याण करने के नाम पर मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी उसने।
1: मगर तेरी हिम्मत और दिलेरी के आज उस पापी की एक न चली, और फिर वहाँ कमरे में तेरी चीख सुनकर मेरे आ जाने से उसकी एक न चली, वरना मैं उसको वहीं ठंडा कर देता।
0: गलती भी तो हमारी ही थी जो हम उस पाखंडी के पास गए थे, और फिर हम उस पर हाथ भी नहीं डाल सकते थे क्योंकि वो तांत्रिक क्रिया करने का बहाना करने लगा था। फिर उसके दरबार में उसके चेले और भगत के रूप में कितने गुंडे बैठे थे वहाँ, याद है मुझे अब भी।
1: हाँ और फिर हम उस तांत्रिक पर इल्जाम भी नहीं लगा सकते थे क्योंकि हमारी बात पर विश्वास ही कौन करता, वहाँ सभी तो उसके भक्त बने बैठे थे। जब हमारी तरह धोखा खाएंगे ना तब उन्हें पता चलेगा कि वो क्या है।
0: मगर इतने जतन के बाद भी हमें औलाद क्यों नहीं हो पा रही है? लगता है रमा ठीक ही कह रही थी।
1: क्या ठीक कह रही थी?
0: यही कि भगवान में आस्था बनाए रख और उसी में विश्वास रख।
1: भगवान में इतना विश्वास किया, इतना उससे अपने लिए औलाद मांगी, क्या मिला? क्या मिला उससे सिवा निराशा और तरसने के?
0: यही मैंने भी उससे कहा था, 5 साल हो गए हैं हमें औलाद के लिए यूं तरसते तरसते।
1: ऐसी निराशा में कोई भी इंसान बाबाओं के चक्कर तो लगाएगा ही।
0: रमा से यही कहा था मैंने, तो बोली थी जब भगवान ही औलाद नहीं दे रहा है तो इंसान कहाँ से दे देगा औलाद।
1: सुनने में तो उसकी बात ठीक भी लगती है, लेकिन क्या पता किसी सच्चे बाबा के आशीर्वाद से हमें औलाद मिली जाए।
0: लेकिन उसने एक बात तो बिल्कुल सच ही कही थी।
1: क्या?
0: कि बाबाओं से तुम्हें औलाद मिले ना मिले मगर धोखा जरूर मिल जाएगा, और वो बबूल वाले बाबा ने हमें लूटकर धोखा ही तो दिया है। मैं ये कैसे मान लूं कि हमारी ये आस कभी पूरी नहीं होगी, कोशिश करने में हर्ष क्या है?
1: अब ये तो कोई सच्चा महात्मा ही बता सकता है।
0: अब ये कैसे पता चले कि इस दुनिया में सच्चा महात्मा कौन है और कहाँ है?
1: तूने भी खूब याद दिलाया है किरण, आजकल अपने इस कस्बे के बाहर सुनसान में एक बाबा आकर ठहरा है।
0: अच्छा,
1: वहीं उसने फूस की एक छोटी सी झोपड़ी बनाई है। हो सकता है वही सच्चा महात्मा और बाबा हो।
0: कहीं ऐसा न हो कि वो भी औरों की तरह ढोंगी और ठग निकल जाए फिर?
1: देखने में तो वो सीधा साधा लगता है, अगर वो भी ठग होता तो उसके भी चेले और भक्त होते। क्या
0: तो फिर कल चल के देख लें उसको।
1: ठीक है।

0: बाबा, हम हर फकीर बाबा और तांत्रिक के पास हो आए हैं, निराश हुए हैं, लुट गए हैं हम, मगर अब तक बेऔलाद हैं। अब आपके पास आए हैं बाबा हम।
1: तो ये बात है बेटी, औलाद की आश है। किशोर बेटा, तुम दोनों को लूटूंगा मैं, साफ कहता हूँ।
2: है?
1: हाँ, मगर ना तुम्हारा रुपया, ना तुम्हारी इज्जत और ना ही तुम्हारी आस्था लूटूंगा। मैं लूटूंगा बाबाओं और तांत्रिकों के पास जाने की तुम्हारी आदत, भावना, आस्था और विश्वास को।
0: ये आप क्या कह रहे हैं बाबा?
1: मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ बेटी। जो बाबा तांत्रिक और फकीर खुद ईश्वर के सामने भिखारी है, तुम उन भिखारियों से क्यों औलाद की भीख मांगने जाते हो?
2: क्या कह रहे हैं बाबा?
1: मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। उस

0: आपने तो हमारी आंखें खोल दी।
1: बाबा, अगर आप हमें पहले मिल गए होते तो हम इतना ठगे ना गए होते।
2: तो अब ठगे जाने से पहले अब किसी और बच्चे को गोद ले लो, जाओ, और याद रखना, धन्य तो वही एकमात्र ईश्वर है जो किसी न किसी रूप में प्रत्येक को भटकने से बचाता है, वह सबका कल्याण करता है।
0: मैं आपको धन्यवाद कैसे अदा करूं बाबा, आपने भगवान पर मेरी टूटती हुई आस्था को बचा लिया है।

अभी आपने सुना नाटक टूटती हुई आस्था। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अपर्णा सिंह, मैरी बाबा, अरुण

साथियों, अभी आपने सुना नाटक जिसे प्रस्तुत कर रहे थे माइकल होजेस, और इस नाटक का शीर्षक था टूटती हुई आशा, और यह प्रस्तुति थी सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, इसी के साथ आज्ञा दीजिए ग्लोरिया गांगले को। अगली मुलाकात में आपसे बात करेंगे विवेक पीटर रॉबर्ट। धन्यवाद।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोताओं को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास और अंत में युग संचार। तो दोस्तों, अब हम अपनी समय सारिणी के अनुसार हमारा यह कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात से, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संतोष जोशी और उनके साथ है श्री नरेंद्र मंडलोई। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात संतोष जोशी के साथ।

0: श्रोताओं, एक मुलाकात कार्यक्रम में हमने समय समय पर अलग अलग व्यक्तियों को आमंत्रित किया है और उनसे आपकी मुलाकात करवाई है। आज इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री नरेंद्र मंडलोई, हम उनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। नरेंद्र जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: नरेंद्र जी, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आप क्या करते हैं।
1: वैसे श्रोताओं को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं गांव से शहर में आया हूँ अभी, और यहाँ पे मैं जॉब भी करता हूँ, और जॉब के साथ साथ मेरा एजुकेशन भी आगे चल रहा है, पढ़ाई भी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे।
0: अच्छा, गांव से आप कब आए शहर?
1: 5 साल पहले आया हूँ।
0: अच्छा, कहाँ, किस गांव के आप रहने वाले हैं?
1: वैसे मैं इंदौर से करीब 150 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण अंचल है, बहुत दूर है यहाँ से, 150 किलोमीटर के लगभग है। उस गांव का नाम है हरण गांव, वहाँ से मैं यहाँ शहर आया।
0: इंदौर से इतनी दूरी पर है ये, तो क्या बहुत ही अंदर की तरफ है ये गांव?
1: हाँ, बहुत अंदर है।
0: वहाँ आवागमन की सुविधा
1: वैसे वर्तमान समय में तो हो गई।

0: पर इसके पहले कोई सुविधा नहीं थी आने जाने की।
1: तो आप वहीं बड़े हुए, वहाँ स्कूल कॉलेज वगैरह कुछ
0: है? नहीं, वहाँ पे सिर्फ प्राइमरी तक स्कूल है, इसके बाद वहाँ पे कोई एजुकेशन का
1: कोई आगे नहीं,
0: आगे कोई रास्ता नहीं।
1: तो ये स्कूल भी सरकारी स्कूल होगा?
0: सरकारी स्कूल।
1: आप यहाँ किस उद्देश्य को लेकर आए थे?
0: वैसे मेरा गांव से शहर आने का उद्देश्य ये है कि एक तो अपना एजुकेशन हो जाएगा, वातावरण अच्छा मिलेगा, और मेरे एजुकेशन के साथ साथ जो परिवार के जो भाई बहन है उनका एजुकेशन हो जाएगा, इस उद्देश्य को लेकर मैं शहर में आया।
1: स्वाभाविक है कि जब एक छोटे से गांव से, जो कि इतना अंदर की तरफ है कि जहां सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है, वहां से जब कोई शहर की तरफ 150 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति आता है, तो उसके जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, वो जरूर ये सोचते हैं कि बेटा बहुत दूर जा रहा है। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने आपको रोका हो कि नहीं तुम तो यही रहो, कहाँ जाओगे?
0: हुआ ना, ऐसे हुआ मेरे साथ, ऐसे हुआ। मेरे से माता पिता शहर आने के लिए एकदम तैयार नहीं थे, वो तो मैं मेरी इच्छा से ही शहर की ओर आया। तो मना कर रहे थे, मतलब एग्री नहीं थे आने के लिए कि हमारा बच्चा शहर की ओर जाए, क्योंकि शहर से गांव के लोग बहुत डरे हुए रहते हैं कि वहाँ पे तो कुछ दंगा फसाद होते रहते हैं, और वहाँ पे तो बहुत
1: एक तेज लाइफ है,
0: तेज लाइफ,
1: तेज जिंदगी,
0: ना बच्चा बिगड़ भी सकता है, वहाँ पे सुधर भी सकता है, दोनों मतलब उनके विचार नेगेटिव पॉजिटिव थे उनके।
1: तो बहरहाल आप यहाँ आए, आपने पढ़ाई शुरू की।
0: हाँ।
1: और फिर आपने ये बताया कुछ देर, वैसे जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी जीवन जिसका है, वो पढ़ाई के साथ साथ ये भी सोचता है कि मैं कुछ, मुझे साथ साथ कोई एक कोई जरिया हो जिसमें कमाई का, जिसमें कोई पैसा कमा सकूं तो अपने पढ़ाई में लगा सकूं, तो माता पिता पर कम बोझ पड़े।
0: हाँ।
1: ये सोचकर तो आपने कोई, आपने बताया कि आपने नौकरी आपने की?
0: हाँ, वैसे मैं अभी नौकरी भी करता हूँ यहाँ पे, एक हॉस्पिटल है सुयस हॉस्पिटल में, वहाँ पे जॉब भी करता हूँ मैं भी।
1: अस्पताल में आप जॉब करते हैं?
0: हाँ।
1: अस्पताल में क्या क्या काम करते हैं?
0: वैसे वहाँ पे मेरा नर्सिंग जॉब है।
1: नर्सिंग का जॉब?
0: हाँ।
1: मतलब आप पुरुष हैं और आप नर्सिंग जॉब, कुछ श्रोताओं को बताएं आप कि अभी तक तो यही हम सुनते आ रहे हैं कि ज्यादातर कि नर्सिंग यानी नर्स शब्द से यही बोध होता है कि वो स्त्री है और वही ये काम कर सकती है।
0: वैसे जो है मतलब अधिकतर तो महिला ही मतलब नर्सिंग वर्क करती आ रही है और करती है, पर पुरुष भी ये नर्सिंग वर्क कर सकता है, इसके लिए भी कुछ ट्रेनिंग होती है मेल नर्स की, जिसको अपन बोल सकते हैं, तो वो भी नर्सिंग वर्क कर सकता है।
1: तो इस ट्रेनिंग में भी वही बातें होती है, वही सब कुछ सिखाया जाता है जो आमतौर पर नर्सिंग में सिखाया जाता है?
0: हाँ, सेम, दोनों में महिला और मतलब पुरुष दोनों में सेम इसकी ट्रेनिंग होती है, उसमें दोनों को सिखाया जाता है।
1: जी, तो ये ट्रेनिंग लेने के बाद आप लोग क्या कहलाते हैं?
0: मेल नर्स।
1: मेल नर्स कहलाते हैं।
0: वैसे प्रेजेंट टाइम जो बोलचाल की भाषा में ब्रदर भी बोल सकते हैं, ब्रदर और सिस्टर जो।
1: हाँ, जब सिस्टर कहा जाता है। हाँ। तो पुरुष को ब्रदर कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। और भूमिका भी उसकी वही होती है,
0: सेम रहती है,
1: जो एक सिस्टर की भूमिका। हाँ। होती है, जो बहन कहा जाता है जिसे, और अगर ब्रदर कहा जाता है तो एक भाई की जो भूमिका होती है, वाकई में बहुत अच्छी बात है। तो आपने वाकई जॉब, आपने कार्य बहुत अच्छा चुना जिसमें कि आपको, आप सेवा कार्य भी कर रहे हैं, एक मरीज की सेवा करते हैं आप, तो आपको काफी अच्छा लगता होगा?
0: ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि एक दुखी इंसान की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है इस वर्क से। बहुत खुश हूँ मैं कि वास्तव में एक दुखी इंसान की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है,
1: मन को संतोष है आपके, और मतलब तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप साथ साथ आपने, आपको आपने नौकरी तो की है, आप आगे और कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं क्या?
0: हाँ, आगे मैं पढ़ाई भी मेरी,
1: क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कम से कम कुछ ये हो कि आप अपने आप को आगे बढ़ाएं।
0: हाँ, आगे मेरी पढ़ाई भी चल रही है, मैं अभी एमएससी भी कर रहा हूँ केमिस्ट्री से,
1: केमिस्ट्री में। हाँ हाँ, तो देखिए अब आप एमएससी कर रहे हैं, एमएससी आपका फाइनल ईयर है?
0: प्रीवियस ईयर,
1: पहला साल है,
0: पहला साल है।
1: तो अब जब केमिस्ट्री में एमएससी कर रहे हैं आप, तो आपका जो अभी आप नौकरी जो कर रहे हैं, तो ये तो फिर शायद आप उसे छोड़कर आगे बढ़ेंगे?
0: हाँ, मेरा मतलब उद्देश्य आगे बढ़ने का ही है, ये तो अपना मतलब पार्ट टाइम जिसको अपन बोल सकते हैं, ताकि
1: हाँ आप आगे बढ़ सकें। यानी आप एमएससी अगर करते हैं तो आप शायद शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहेंगे?
0: हाँ, मेरा उद्देश्य वही आगे कि कुछ पीएचडी करके डॉक्टर डिग्री लेकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ मैं।
1: आपने स्वयं तो पढ़ाई आप कर ही रहे हैं, और
0: हाँ
1: आपने बताया कि आप इंदौर शहर में आकर के आपने यहां पर आप कमरा लेकर किराए से और आप रह रहे हैं, तो आपके आपके भाई भाई बहन हैं?
0: इससे पहले मैं यहाँ अकेला रहता था, बाद में फिर जो मेरे 3 छोटे भाई हैं उनको भी मैं मेरे पास ले आया हूँ गांव से शहर में,
1: अच्छा।
0: वो भी पढ़ाई कर रहे हैं आगे, पूरा देख रेख उन्हीं का, सब मैं देख रहा हूँ उनको, क्योंकि गांव में तो शिक्षा है नहीं, गांव में तो वो
1: हाँ, वो आपने बताया
0: हाँ प्राइमरी
1: प्राथमिक
0: है।
1: शिक्षा ही है वहाँ।
0: हाँ तो मेरा उद्देश्य यही रहा कि मतलब मेरे भी शिक्षा आगे बढ़ती रहे और मेरे परिवार में जो भाई बहन है उनको भी आगे मैं लाना चाहता हूँ कि वो भी पढ़े लिखे अच्छे से, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, इसलिए उनको भी मैं लेके आया और मेरे पास ही हम रह रहे हैं हम लोग मिलके सब,
1: आपका विवाह नहीं हुआ अभी?
0: अभी नहीं हुआ।
1: अच्छा। भाई आज सब छोटे हैं आपसे,
0: हाँ छोटे हैं।
1: तो आप जो नौकरी कर रहे हैं
0: हाँ हाँ
1: और कमा रहे हैं, तो आप भाइयों का खर्चा भी उठा रहे हैं, खुद का खर्चा भी उठा रहे हैं, तो आप अभिभावकों से कोई मदद लेते हैं आर्थिक रूप
0: हाँ
1: से?
0: देते ना
1: जी
0: माता पिता भी, मतलब शुरू में तो बहुत मतलब मना ही करते थे, अब उन्होंने जब हमारी प्रोग्रेस देखी कि हमारे बच्चे तो शहर में जाके अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे मतलब पढ़ लिख कर मतलब उच्च स्तर पर जाना चाहते हैं, तो उनको बहुत खुशी हुई, तो वो भी हमारी मदद करते हैं और हम भी हमारा कर लेते हैं थोड़ा सा।
1: वहाँ माता पिता गांव में उनकी कमाई का क्या जरिए, क्या करते हैं?
0: खेती करते हैं।
1: खेती है उनकी।
0: हाँ
1: हाँ नरेन जी, एक संघर्षमय जीवन आप बिता रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप खुद पढ़ भी रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, आगे बढ़ने की ललक भी है आपको, इसीलिए आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, और न केवल खुद पढ़ाई कर रहे हैं बल्कि अपने भाइयों को भी पढ़ा रहे हैं, उनकी पढ़ाई में भी उनको आप उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। आपके और व्यक्तिगत शौक क्या है, आपको क्या, आप अपना समय बिताते हैं, आप मनोरंजन के लिए क्या करते हैं?
0: जैसे मेरे खुद के व्यक्तिगत शौक ये है कि एक तो पढ़ाई तो मैं कर ही रहा हूँ, इसके बाद मुझे पौधे लगाना, प्लांटिंग बहुत मुझे अच्छी लगती है,
1: अच्छा।
0: उसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा संगीत में भी थोड़ा मुझे शौक है, संगीत में भी शौक रखता हूँ मैं, कुछ
1: संगीत
0: गाने का
1: मतलब
0: बजाने का।
1: गाने का शौक रहता है?
0: हाँ हाँ
1: हाँ। तो पौधे वगैरह आप लगाते हैं, जा रहे थे वहां भी
0: हाँ
1: लगाए होंगे?
0: मेरा उद्देश्य, मैं हर साल एक पौधा लगाता हूँ गांव में घर पे,
1: अच्छा। बहुत अच्छी
0: तो
1: बात
0: बहुत
1: है।
0: मुझे शौक है घर पे मतलब फूलों के पौधे लगाना और फल फ्रूट जो रहते हैं फलों के पौधे लगाना, मैंने गांव पे जो घर पे आम जाम नींबू के पौधे लगा रखे हैं, एक अच्छा सा छोटा सा गार्डन बना रखा है, मतलब बहुत शौक है मुझे पौधे लगाने का।
1: बड़ी अच्छी बात है, आपने कहा हर साल आप एक पौधा जरूर लगाते हैं, और ये पौधे अभी लग रहे हैं, ये जब धीरे धीरे बड़े होंगे और एक विशाल रूप ले लेंगे अपने सामने, तो एक प्रेरणा बन के रहेंगे वो, कि पेड़ लगाना चाहिए, हरियाली बढ़ाना चाहिए। अगर हर इंसान ये सोच ले कि मैं पेड़ लगाऊंगा, न केवल लगाऊंगा, लगाने के बाद मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसे पनपने में बढ़ने में उसकी मदद करूंगा, तो ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे देश के लिए। नरेन जी, आपने अपने लीक से हटकर, मतलब
0: हाँ
1: आप
0: हाँ
1: जो कर रहे हैं
0: हाँ
1: उससे हटकर आपने कभी कुछ करने का सोचा? कोई कोई आपकी इच्छा थी दिल में पहले, या जब आप गांव से निकले या शहर में जब पढ़ने लगे, थोड़ा सा होश संभाला आपने, तो तब आप कुछ करना चाहते थे? तो आपके मन में कोई सपना था कि मैं जीवन में ये करूंगा,
0: हाँ सपना तो था ना मेरा,
1: कुछ बताएं उसके बारे में?
0: मतलब सपना ये था कि मैं आगे अच्छे से कॉलेज तक पढ़ लिख कर अच्छे से कोई एक प्रोफेसर बनूं, कोई अच्छे से डिग्री प्राप्त करूं, क्योंकि गांव में तो जो है गाइडलाइन सही मिल नहीं सकती थी, तो मैं उस हिसाब से शहर की ओर आया और एकदम लगातार मेहनत करता रहा, आगे बढ़ता रहा, और अभी मैं मेरा जो उद्देश्य है उसके करीब मैं पहुंच गया हूँ। मेरा यही उद्देश्य है कि अच्छे से पढ़ के और कुछ डिग्री प्राप्त करके अच्छे से इंसान बनना चाहता हूँ
1: बहुत अच्छी बात है। थोड़ा अपने नर्सिंग के जॉब के बारे में बताएं आप, क्योंकि
0: मैं।
1: अस्पताल का जीवन ऐसा होता है
0: हाँ
1: कि अगर किसी ने अस्पताल देखा भी है तो उसी सीमा तक देखा है कि बीमार पड़ा है या उसे जाना पड़ा है अस्पताल, तो अगर उसे भर्ती होना पड़ा है तो उसने वही सब माहौल देख लिया है। थोड़ी देर के लिए कोई आया उसे इंजेक्शन लगा के चला गया, कोई आया उसे और कुछ दवाई देके चला गया, तो थोड़ा सा उस लाइफ स्टाइल के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे आप काम करते हैं वहां पर, दिक्कतें तो बहुत आती होंगी।
0: नहीं वैसे दिक्कतें हमको कुछ नहीं आती है वहाँ पे हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारा डेली का जो वर्क रहता है उसमें कोई दिक्कतें नहीं आती है।
1: एक अस्पताल की तरफ से नहीं, मरीज की तरफ से दिक्कतें क्या क्या आती हैं थोड़ा बताएं।
0: नहीं दिक्कतें कुछ ऐसी नहीं आप
1: कुछ
0: आती।
1: मरीज ऐसे होते हैं जिनमें धैर्य नहीं होता, थोड़े परेशान हो
0: कुछ
1: जाते हैं।
0: तो जो जैसे मरीज तो अपनी जगह ठीक रहता है, कुछ अटेंडर लोग ज्यादा परेशान करने लगते हैं कभी कभी।
1: अच्छा, हाँ, वही मैं जानना चाहता था
0: हाँ
1: कि वहां किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको।
0: हाँ बस इस टाइप की दिक्कत है, तो जल्दी से इलाज कीजिए हमारा, मतलब इस टाइप की थोड़ी आती दिक्कत है। पर हम लोग बहुत धैर्य से उनको एकदम प्यार से समझाते हैं, क्योंकि वो लोग जानते नहीं है ना इतना ज्यादा।
1: और कई लोग जो वहां पर मरीज के साथ होते हैं, तो
0: हाँ
1: उनका व्यवहार भी मरीज के साथ जो होना चाहिए वैसा पाते हैं क्या?
0: नहीं वैसा नहीं पाता, जो जो साथ में मरीज के जो साथ रहते हैं वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते कभी कभी, वो अपना एंजॉय के रूप में रहते हैं। कुछ लोग
1: जैसे
0: सेवा भी करते हैं।
1: जैसे बताएं आप, कोई कोई खास घटना देखी हो आपने तो?
0: नहीं घटना तो वैसे बहुत सारी होती रहती है हॉस्पिटल के अंदर, जो मरीज रहता है उसके साथ जो साथ में रहते हैं अटेंडर लोग, वो पूर्ण रूप से कभी ध्यान भी नहीं देते ज्यादातर।
1: या मरीज को कभी मान लीजिए कि जैसे खाने की मनाही होती है, उसका खाना सीमित होता है,
0: हाँ
1: तो कई लोग हमने ये भी देखा है कि वो बहुत सारा खाना लेकर वहां जाते हैं और स्वादिष्ट व्यंजन उसके सामने जो है वो
0: हाँ
1: खाते
0: हाँ
1: हैं, तो उस एक मनोवैज्ञानिक रूप से उसके दिमाग पर अच्छा असर नहीं पड़ता। दूसरा, शोर बहुत होता है, हमने खासकर देखा है कि अस्पतालों में शोर बहुत होता है, तो ये आप ये कैसा पाते हैं इसको, कुछ उसके लिए कुछ किया जाता है?
0: हाँ किया जाता है उसके लिए कुछ, मतलब अटेंडर जो लोगों को कम आने दिया जाता है, पास दे दिया जाता है उनको कि एक मरीज के साथ एक या दो रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रह सकते हैं, उस हिसाब से असुविधा हो पाती है इस कारण।
1: आप वैसे आप ही बेहतर ये बात बता सकते हैं, क्योंकि आप लगातार एक डॉक्टर से ज्यादा आप मरीज के पास रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर मरीज को देखते हैं उसके क्या हालात हैं और उसको अब क्या देना है और अब आगे क्या करना है, ये आपको बता के वो जाते हैं,
0: हाँ
1: लेकिन लगातार रहते आप हैं, तो आप उसकी मानसिक स्थिति और वहां का जो वातावरण है उससे आप ज्यादा वाकिफ होते हैं, तो थोड़ा बताएं कि एक मरीज के साथ एक उसके जो उसका जो अटेंडेंट है जो उसके साथ सेवा करने के लिए रुका हुआ है,
0: हाँ हाँ
1: उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए मरीज के प्रति?
0: वैसे मरीज के प्रति उनका व्यवहार अच्छे से होना चाहिए, पोलाइट बोलना चाहिए, और उनको जिन चीजों की आवश्यकता है वो उपलब्ध कराना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ से अच्छे से बातें करना चाहिए, ये बातें होना चाहिए साथ में अटेंडर के। हाँ
1: बिल्कुल सही बात है। हम देखते हैं कई बार कि जो एक हॉस्पिटल मैनर्स नाम की जो चीज होती है,
0: हाँ
1: वो अक्सर मरीज तो मजबूर है, वो तो बिस्तर पे लेटा हुआ है, वो तो ठीक होना चाह रहा है, लेकिन जो साथ में जो लोग हैं उनका व्यवहार हॉस्पिटल के हिसाब से, अस्पताल के हिसाब से उस की सीमाओं में होना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को तकलीफ भी ना हो और उसके मरीज को ना हो। आपने बातें बहुत बताई हमें अच्छी अच्छी और आपसे जो बातें हुई वो काफी प्रेरक भी हैं, क्योंकि हमारे जो युवा हैं,
0: हाँ हाँ
1: उन जो युवा लोग जो हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, जो छोटी छोटी जगहों पर रहते हैं, छोटे गांव में रहते
0: छोटे
1: हैं,
0: गांव में रहते हैं वो
1: ऐसी
0: तो।
1: जगहों पर रहते हैं जहां बहुत ही सीमित साधन है, तो वो भी सुन रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को, हमारे युवा श्रोताओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे।
0: नहीं मतलब आज के युवा श्रोता से मेरा यही संदेश है कि अपना जो उद्देश्य है उसको उसकी ओर आगे लगातार बढ़ते रहें, कड़ी मेहनत करें, कुछ रुकावट आए तो सहन करें उस चीजों को, और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, मतलब जो उद्देश्य है उसकी ओर बढ़ते रहें, बीच में जो परेशानी आती है दिक्कत आती है
1: उनसे घबराएं नहीं
0: घबराएं नहीं,
1: और उन
0: और
1: परेशानियों को दूर करने का प्रयास हिम्मत से करें, यही आप
0: हाँ
1: कहना
0: मैं यही
1: चाहते हैं।
0: कहना चाहता हूँ श्रोताओं से।
1: तो नरेंद्र जी, एक बहुत ही छोटी जगह से, एक छोटे से गांव से उठकर अपना जीवन जिस तरह से बनाया है, अपने करियर निर्माण जिस तरह से करने में आप लगे हैं, ये वाकई बहुत ही तारीफ की बात है। और ये आपने नहीं सोचा कि मैं छोटी जगह में हूं तो यहीं रहूं, आप रह सकते थे, आप
0: हाँ रह
1: वहीं रह
0: सकता था
1: सकते थे,
0: मैं।
1: और आपने बताया कि आपके यहाँ
0: हाँ
1: खेती बाड़ी है आपके माता पिता की, तो आप उनमें मदद कर सकते थे, रह सकते थे, लेकिन आपने कुछ अलग हटके करना चाहा, और कई बार हिम्मत टूटी भी होगी, कई बार आपको लगा होगा कि, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी।
0: नहीं हिम्मत नहीं आ रही, मैं जितनी भी बड़ी से बड़ी कठिनाई उनको सहन करता हुआ, मतलब
1: आप
0: आगे बढ़ता
1: आगे
0: रहा
1: बढ़ते
0: मैं।
1: रहे। तो नरेंद्र जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इसके लिए आपको बहुत बहुत

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष जोशी और उनके साथ थे श्री नरेंद्र मंडलोई। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता का, जिसके लेखक हैं माइकल हॉजेस और प्रस्तुत करता है माइकल हॉजेस एवं अमृता मोतीवाले। और वार्ता का शीर्षक है विवाह पूर्व शिक्षा और आत्मनिर्भरता।

0: युवा और विकास के अंतर्गत प्रस्तुत है बातचीत विवाह पूर्व शिक्षा और आत्मनिर्भरता। इसके लेखक हैं माइकल हॉजिस और बातचीत में भाग ले रहे हैं अमृता मोतीवाले और माइकल हॉजिस।
1: युवा और विकास सुनने वाले सभी युवा साथियों को अमृता और
0: माइकल का
1: नमस्कार। साथियों, युवा मन उत्साह, उमंग और जोश से भरा होता है। उसके मन में भविष्य के लिए नए नए सपने भी होते हैं।
0: जी हाँ अमृता जी, जिन्हें पूरा कर एक सुखी जीवन बिताने की उसकी आशा भी होती है।
1: और माइकल जी, इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वह निरंतर प्रयास भी करता रहता है।
0: जी हाँ, और मानवीय गुणों से भरपूर और भावनाओं से लबरेज होने के कारण ही उसके मन में अपनी युवावस्था में कभी न कभी अपने जीवन साथी और विवाह की भावना भी उठती है और ख्याल भी आता है।
1: जी बिल्कुल माइकल जी, यहाँ मैं इस बात का जिक्र भी करती चलूं
0: जी
1: कि कुछ पढ़ाई करते हुए युवाओं के मन में यह विचार उठता है तो कुछ बेरोजगार युवाओं के मन में विचार उठता है
0: जी,
1: जिनमें युवक और युवतियां दोनों ही होते हैं।
0: जी अमृता जी, इसमें भी कुछ युवा पढ़े लिखे होते हैं, कुछ अपनी पढ़ाई किसी कारण से बीच में ही छोड़ देते हैं
1: जी,
0: तो कुछ मात्र केवल इतने पढ़े लिखे ही होते हैं जिन्हें अनपढ़ की श्रेणी में रखा जा सकता है।
1: जी बिल्कुल, कहने का मतलब यही है श्रोता साथियों कि विवाह की कामना और अपने जीवन साथी की कामना और उसे जीवन भर के लिए पाने की कामना प्रत्येक युवा हृदय में कभी न कभी तो उठती रहती है।
0: और अमृता जी, इस तरह की भावना के उठने को कोई गलत या अनैतिकता की संज्ञा नहीं दे सकता है
1: जी नहीं,
0: क्योंकि यह एक प्राकृतिक और मानवीय गुण अथवा कृत्य है।
1: बिल्कुल माइकल जी, इसलिए इस बात को या इस कामना को हम या कोई भी बिल्कुल भी गलत नहीं ठहरा सकता। लेकिन गलत समय पर ऐसी कामना को बिल्कुल गलत कहा और गलत ठहराया जा सकता है।
0: तो अमृता जी, हमारे युवा श्रोता साथियों को हम यह भी बताते चलें कि गलत समय पर इस कामना को क्यों और कैसे गलत ठहराया जा सकता है।
1: जी हाँ माइकल जी, जरूर, इस कामना को गलत तब कहा जा सकता है जब युवक या युवती पढ़ाई कर रहे हों,
0: बिल्कुल
1: उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी हो या फिर वे बेरोजगार हो और विशेषकर लड़के।
0: आपने बिल्कुल सही कहा अमृता जी, जो युवक या युवती पढ़ाई कर रहे हों, जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है, या फिर वो युवक जो बेरोजगार हों, तो उन्हें तो बिल्कुल भी अपने विवाह की कामना नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: इसे गलत समय पर सही कामना कह सकते हैं हम।
1: जी बिल्कुल, यहाँ हम यह भी स्पष्ट करते चले माइकल जी,
0: जी
1: कि ये बात हम केवल निम्न और मध्यम वर्ग के बारे में ही कह रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आर्थिक समस्या और सुखी भविष्य की कामना की समस्या इन्हीं दो वर्गों के समक्ष हमेशा मुंह बाय खड़ी रहती है।
0: बिल्कुल अमृता जी, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। कहने का तात्पर्य यही है कि युवा अपना भविष्य तय कर लें, अपने भविष्य की मंजिल को पा लें, हर तरह से विवाह के पूर्व आत्मनिर्भर बन जाए, तभी अपने विवाह के बारे में सोचें या प्रयास करें।
1: जी बिल्कुल, वरना अपने उज्जवल भविष्य की कामना करने वाले युवाओं का भविष्य घोर अंधकार में डूब सकता है।
0: जी जी,
1: और उन्हें जीवन भर गलत समय पर सही निर्णय लेने का कारण पछताना पड़ सकता है।
0: जी तो अमृता जी, आइए इस समस्या पर हम विस्तार से बातचीत करते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: सबसे पहले हम बात करते हैं उन युवाओं की जो पढ़ाई करते करते अपने साथ पढ़ने वाले या अन्य किसी विपरीत लिंग के युवा के साथ प्रेम में पड़ जाते हैं
1: जी।
0: फिर इसी प्रेम को वह विवाह में बदल लेना चाहते हैं और वो भी पढ़ाई के दौरान ही।
1: जी हाँ माइकल जी, और प्रेम के चलते ही वह अपने प्रेम को उसकी मंजिल तक पहुंचाने की चाहत भी रखते हैं। कभी कभी अपनी जिद के कारण वह अपनी मंजिल को पा भी लेते हैं।
0: लेकिन अमृता जी, वह अपने विवाह के जोश में इस बात को बिल्कुल ही भुला देते हैं कि वे स्वयं तो आत्मनिर्भर हैं नहीं।
1: बिल्कुल,
0: तो अपनी गृहस्थी कैसे चलाएंगे।
1: जी जी,
0: पढ़ाई के दौरान ही शादी करने का भूत उन पर ऐसा सवार रहता है कि वे सब कुछ भूल जाते हैं और माता पिता तथा समाज की परवाह न करते हुए वे अपने घर से भागकर यानी पलायन करके शादी कर लेते हैं।
1: जी बिल्कुल, और ऐसे ही युवा जोश में शादी करने के बाद पछताते भी हैं।
0: पछताते जी,
1: जब तब उन पर शादी का खुमार उतरता है और उन्हें चिंता होती है अपने गृहस्थी चलाने की।
0: बिल्कुल अमृता जी, क्योंकि उन्हें कोई नौकरी या काम एकदम से मिलता नहीं है। यदि घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक हुई तो ठीक है, और अगर नौकरी की बात हुई और नहीं मिली तो कारण ये कि उन्हें किसी काम का कोई अनुभव तो रहता नहीं है।
1: जी बिल्कुल,
0: और अपनी पढ़ाई भी पूरी न करने के कारण उनके पास कोई डिग्री वगैरह भी नहीं होती।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा माइकल जी, यदि उनके पास डिग्री होती तो उन्हें कोई अच्छी नौकरी भी मिल जाती
0: जी।
1: इसलिए उन युवाओं को मजबूरी में कोई छोटा मोटा काम करना पड़ता है।
0: जी हाँ, जैसे कि लड़का कहीं किसी फैक्ट्री में कोई मामूली सा क्लर्क हो जाता है
1: जी।
0: और लड़की महज कुछ रुपये कमाने के लिए किसी प्राइवेट स्कूल में कम से कम तनख्वाह पर पढ़ाने को राजी हो जाती
1: है। बिल्कुल माइकल जी, क्योंकि वो भी न तो ट्रेंड होती है
0: जी।
1: और न ही उसके पास कोई टीचिंग का अनुभव होता है, इस तरह से उन्हें बड़े ही सीमित बजट में अपना गुजारा करना पड़ता है।
0: और कभी कभी तो उन्हें इससे भी बुरी हालत में अपना गुजारा करना पड़ता है अमृता जी।
1: कैसे?
0: जब उन्हें किसी भी प्रकार का काम नहीं मिलता है, जब उनके अपने साथ लाए पैसे भी खत्म होने लगते हैं, तब उन्हें किसी से उधार पैसे मांगने के लिए उनके सामने हाथ तक फैलाना पड़ता है।
1: सचमुच माइकल जी, यह स्थिति तो बहुत ही दयनीय होती है और अपनी इस दयनीय स्थिति का कारण भी वे स्वयं ही होते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: एक तो माता पिता के विरोध के भी
0: बावजूद
1: वो पलायन कर अपना विवाह खुद ही कर लेते हैं,
0: और दूसरा ये कि माता पिता को नाराज करने के कारण माता पिता के पास वे मदद के लिए भी नहीं जा सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से वे अपनी मदद की और जीवन निर्वाह के रास्ते वे खुद ही बंद कर लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: देखिए माइकल जी, ऐसा नहीं है कि प्रेम विवाह करना कोई अपराध है। यदि हम गांव को छोड़ दें तो आज शहर के समाज द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया है।
0: जी हाँ अमृता जी, पूर्व की तरह अब यह बात यानी कि प्रेम विवाह करना अब कोई अनहोनी या बड़ी बात नहीं रह गई है।
1: नहीं,
0: आज प्रेम विवाह करना एक सामान्य सी बात रह गई है।
1: बिल्कुल, पहले जहां प्रेम विवाह का शोर हफ्तों से लेकर महीनों तक चला करता था, वहीं किसी भी प्रेम विवाह की चर्चा घंटे दो घंटे या दिन भर की सुनाई पड़ती है और लोग अपने अपने कामों में अपने आप में व्यस्त हो जाते हैं।
0: और मेरे ख्याल से अमृता जी, माता पिता अपने बच्चों के प्रेम विवाह का यदि विरोध करते भी हैं
1: जी,
0: तो ही मैं समझता हूँ कि उसका कारण दो तरह की परिस्थितियां ही होती।
1: चलिए, वे दो परिस्थितियां क्या होती है मैं बताती हूँ
0: जी।
1: देखिए, एक तो वो परिस्थिति होती है जो प्रत्येक माता पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है।
0: बिल्कुल,
1: विशेषकर लड़की के माता पिता के लिए
0: जी।
1: और वो परिस्थिति होती है अन्य समाज या धर्म का लड़का या लड़की का होना।
0: जी बिल्कुल अमृता जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। और दूसरी परिस्थिति जो विरोध का कारण होती है
1: जी,
0: वह होती है लड़के का शिक्षित या पूर्ण शिक्षित न होना
1: जी,
0: तथा आत्मनिर्भर न होना। आत्मनिर्भर न होना मतलब उसके पास कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है
1: जी,
0: मतलब
1: जी।
0: उसकी गृहस्थी का कोई आधार नहीं है
1: जी।
0: यदि पहले कारण को हम नजरअंदाज भी कर दें तो दूसरे कारण को तो हम नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है माइकल जी कि इस दुनिया में सिर्फ प्यार के सहारे ही जीवन नहीं गुजारा जा सकता। जीवन गुजारने के लिए बहुत सी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी होती है।
0: बिल्कुल,
1: और वे सभी आवश्यकताएं पैसों के बिना पूरी नहीं हो पाती।
0: इसीलिए अमृता जी, प्रत्येक लड़की के माता पिता, चाहे वे अपनी बेटी की अरेंज मैरिज के पक्ष में हो या फिर लव मैरिज के पक्ष में हो, वे पहले लड़के की आत्मनिर्भरता के बारे में निश्चित हो जाना चाहते हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि लड़का काम क्या करता है या उसका आर्थिक रूप से कितना संपन्न है या उसका भविष्य क्या है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उनकी बेटी को आगे जाकर किसी भी अभाव का सामना न करना पड़े, क्योंकि हर माता पिता अपनी बेटी का भविष्य सुखी ही देखना चाहते हैं।
0: किसी मामले में माता जी, किसी मामले में विशेषकर लड़के की माली हालत के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में
1: जी,
0: यह भी देखा गया है कि उसके प्रेम विवाह से नाराज माता पिता जब नाराजी छोड़कर उसे अपना लेते हैं तो फिर वह काम धंधे की फिक्र करना एकदम से छोड़ देता है। क्योंकि उसे ये लगता है कि अब मुझे क्या जरूरत है, अब मेरे घर वालों ने मेरी शादी अपना ली, मुझे अपना लिया, तो अब मेरा खर्चा वगैरह भी यही उठाएंगे। और वह अपनी गृहस्थी का पूरा भार भी अपने पिता के कंधों पर ही डालकर एक तरह से निश्चिंत हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: निश्चिंत हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल माइकल जी, क्योंकि उसको पता होता है कि उसके घर की माली हालत बहुत अच्छी है।
0: बिल्कुल,
1: और उसके पिता के पास बहुत पैसा है, इसलिए तो वो खुद कमाने में जरा भी रुचि नहीं दिखाता।
0: और अमृता जी, ऐसे लोग ये भी भूल जाते हैं कि समाज में केवल उसकी इज्जत, मान मर्यादा और आदर होता है जो खुद कमाई करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जो खुद कमाता है समाज में केवल उसी की इज्जत है, और रुपए कमाने के लिए मेहनत करता है उसकी भी इज्जत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसी तरह के कुछ युवाओं को घर जमाई भी बनते और रहते देखा गया है
0: जी।
1: वे अपना सब कुछ खोकर, यानी अपना आत्मसम्मान और अपनी इज्जत खोकर, अपने माता पिता को छोड़कर, घर जमाई बनकर पड़े रहते हैं।
0: जी हाँ, और पूरे समय अपनी पत्नी और उसके माँ बाप की जी हुजूरी में लगे रहते हैं।
1: और क्या,
0: केवल इसलिए कि उन्हें कोई काम ना करना पड़े। लेकिन अमृता जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ऐसे घर जमाई ये भूल जाते हैं कि दिन भर अपने ससुराल वालों का हुक्म बजाने से तो अच्छा होता कि वे कहीं नौकरी कर लेते।
1: जी बिल्कुल माइकल जी, देखा तो यहाँ तक गया है कि कुछ नौकरी करने वाले युवा भी अपने माँ बाप को छोड़कर ससुराल में ही अपनी पत्नी के पल्लू से बंदे घूमते रहते हैं।
0: जी,
1: वे अच्छी नौकरी करते हैं लेकिन फिर भी न जाने किस लालच में अपना आत्मसम्मान गवाकर अपने ससुराल में ही पड़े रहते हैं।
0: सचमुच अमृता जी, ससुराल में पड़े जवाई की और अपने बगीचे में लगे फूलों की कोई परवाह नहीं करता।
1: जी,
0: उन्हें लगता है कि फूल अपने ही बगीचे में तो लग रहा है, जब चाहेंगे हाथ बढ़ाकर तोड़ लेंगे।
1: जी बिल्कुल,
0: उसी तरह से जवाई घर में ही तो है, जब किसी चीज की जरूरत होगी, मन करेगा तो बाजार से लाने के लिए दौड़ा देंगे।
1: जी बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि यदि कोई अनाथ युवा घर जवाई बनता है तो इसमें कोई किसी प्रकार की बुराई नहीं है, आप क्या कहते हैं?
0: मेरा भी वही कहना है अमृता जी, जो आपका कहना है। मैं भी इस बारे में कोई बुराई नहीं करता या बुराई नहीं समझता कि कोई घर जवाई है, लेकिन क्योंकि इसमें अपनेपन से भरे सुखद रिश्ते होते हैं।
1: जैसे
0: जैसे देखिए क्या होता है अमृता जी, लड़का अगर इस दुनिया में अकेला और अनाथ है,
1: जी,
0: उसके माँ बाप नहीं है, उस दुनिया में अकेला है पूरा, और अगर वह घर जवाई बन जाता है
1: जी जी,
0: तो उसे सास ससुर के रूप में एक माँ बाप मिल जाते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और सास ससुर को जवाई के रूप में एक बेटा मिल जाता है। यानी यहाँ पर घर जवाई के को खोने के लिए कुछ नहीं है, पाना ही पाना है, और जो सास ससुर हैं उसके, उनके लिए भी पाना ही पाना है, एक बेटा मिल जाता है उनको, और बेटी भी खोनी नहीं पड़ती, यानी कि बेटी कहीं दूर नहीं जाती, घर में दिन रात आंखों के सामने ही रहती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल माइकल जी, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही है।
0: जी,
1: मेरा भी यही विचार है, वाकई में एक को माँ बाप और दूसरे को बेटा मिल जाता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन यहाँ पर भी एक बात यह भी होनी चाहिए कि उस अनाथ घर जवाई की नीयत ससुराल के पैसे पर ना हो।
0: बिल्कुल,
1: उसकी नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए।
0: साफ होनी चाहिए। अमृता जी, ये तो हमने बात कही है विवाह से पूर्व लड़कों के आत्मनिर्भर और शिक्षित होने की।
1: जी,
0: तो आइए अब श्रोताओं से विदा लेने के पहले हम थोड़ी सी बात इस विषय पर भी करते चलें कि लड़कियों को भी विवाह पूर्व आत्मनिर्भर या शिक्षित होना क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल माइकल जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। वैसे तो आजकल अधिकतर लड़कियां जागरूक हो गई हैं
0: जी,
1: और अपने भविष्य में कुछ करना चाहती हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए वे पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं,
0: और कुछ हैं जो कुछ न करने के पक्ष में ये कहती भी पाई जाती हैं कि क्या करना कुछ करके, अपने को तो वही चूल्हा फूंकना है।
1: जी जी
0: अमृता जी, सचमुच ऐसी लड़कियां किसी बड़े भ्रम का शिकार हैं या किसी भ्रम में जी रही हैं।
1: जी बिल्कुल, और शायद उन्हें पता नहीं है माइकल जी कि ये पढ़ाई लिखाई और आत्मनिर्भरता ही भविष्य में चूल्हे पर पकने वाले खाद्य पदार्थ का जुगाड़ भी करती हैं।
0: जी बिल्कुल अमृता जी, समय कभी कहकर नहीं बदलता या आता है,
1: ये
0: कौन जाने कब किसी कारण किसी पति की नौकरी छूट जाए या कुछ की तनख्वाह में घर न चलने के कारण पति पत्नी को भी नौकरी करना पड़े
1: जी।
0: या फिर अपने रहन सहन के स्तर को उठाने के लिए या फिर पति की अचानक मौत के कारण उसे भी काम करने की नौबत आ जाए।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, जीवन में कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ सकती है, इसलिए हमेशा अपने आप को प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रखना चाहिए उसको।
0: जी जी हाँ,
1: और इसके लिए जरूरी है कि लड़की शिक्षित और आत्मनिर्भर हो, तभी तो वह उन परिस्थितियों का सामना कर पाएगी। माइकल जी,
0: शिक्षित और आत्मनिर्भर होने के कारण युवा पति पत्नी दोनों ही अपने घर को संवारने और चलाने में एक दूसरे का हाथ बटा पाएंगे अमृता जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इसके अलावा उनके घर में सुख और शांति भी बनी रहेगी।
1: बिल्कुल माइकल जी, क्योंकि अधिकांश युवा पति पत्नियों के बीच में किसी चीज के अभाव में पैसों को लेकर ही ज्यादा चिकचिक होती रहती है, आपने देखा होगा।
0: जी जरूर देखा,
1: क्योंकि अभाव से उनका पहला सामना हुआ रहता है।
0: जी हाँ अमृता जी, इसलिए हम तो युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि अपने विवाह से पहले वे अपनी पढ़ाई पूरी कर लें।
1: बिल्कुल,
0: और आत्मनिर्भर बन जाएं
1: जी,
0: तभी अपने विवाह के बारे में विचार करें और तभी वे सुखी विवाहित जीवन बिता पाएंगे।
1: जी बिल्कुल माइकल जी, तो इसी आशा के साथ हम अपने युवा श्रोता साथियों से आज्ञा चाहेंगे और चाहेंगे कि आपका कल आज से अच्छा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था विवाह पूर्व शिक्षा और आत्मनिर्भरता। इस वार्ता के लेखक थे माइकल होजस और प्रस्तुतकर्ता थे माइकल होजस एवं अमृता मोतीवाले। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, अब समय हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम का, तो साथियों सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता जिसका शीर्षक है टीवी से बच्चों का बिगड़ता भविष्य और जिसके प्रस्तुतकर्ता हैं भवानी कौल।
1: युग संचार वार्ता सुनिए टीवी से बच्चों का बिगड़ता भविष्य। साथियों, आधुनिकता के इस दौर में संचार सुविधाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा माना जाता है आधुनिकता एवं संचार क्षेत्र में जो क्रांति आई है वह पूरी दुनिया को बदलकर रखती है। टीवी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर अनेक महत्वपूर्ण साधन हैं संचार के, जो पुरुष, स्त्री, बूढ़े, जवान, बच्चे सबकी मानसिकता पर असर डाल रहे हैं। संचार का मुख्य साधन आजकल बना हुआ है टीवी। बड़ा शौक है लोगों को टीवी देखने का। टीवी संचार का ही नहीं वरन मनोरंजन का भी मुख्य साधन बना हुआ है। अब साथियों, टीवी संचार का या कहें मनोरंजन का ऐसा साधन बन चुका है जिसके बिना जीने की कल्पना परे है। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बूढ़े, क्या जवान, यहां तक के बच्चे बच्चे भी इससे चिपके रहते हैं। इन सब लोगों में सबसे अधिक बच्चे टीवी के दीवाने हैं। टीवी का अच्छा बुरा प्रभाव भी बच्चों पर अधिक होता है। बच्चों के कोमल मन पर टीवी पर दिखाए जा रहे सीरियल, गाने, फिल्म, कार्टून आदि का बेहद असर पड़ रहा है। इनसे बच्चों का मनोरंजन तो होता है साथियों, पर उनके मस्तिष्क पर इसकी गहरी पैठ है। बच्चे हमेशा बच्चे बने रहें ऐसा नहीं है। टीवी ने इनके दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला है। आधुनिकता के इस रफ्तार में बच्चे कुछ अलग तरह के आधुनिक और चतुर बनते जा रहे हैं। बच्चों का भोलापन क्रमशः खत्म होता सा नजर आ रहा है। तो साथियों, संचार के जितने साधन हैं उनमें टीवी बच्चों के लिए सर्वसुलभ और सुविधाजनक है। इसे चलाना, बंद करना, बटन दबाना, बदलना, ऑपरेट करना सब कुछ बेहद आसान है। इसका फायदा बच्चे भरपूर उठा रहे हैं। उनके लिए टीवी बहुत मनोरंजक साधन है। बच्चे इससे चिपके रहते हैं। एक तरफ टीवी से उनका मनोरंजन तो हो रहा है, पर इससे इसका उन पर गलत असर भी पड़ता जा रहा है। टीवी पर जिस तरह की वस्तुएं, कथाएं, कहानियां, गाने, फिल्म आदि दिखाई जा रही हैं, उन सब का बुरा प्रभाव उनके मन मस्तिष्क पर घर करता जा रहा है। लोग कहते हैं आजकल बच्चे उम्र से पहले ही बड़े हो गए हैं। वे बड़ों जैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ों जैसी हरकतें करते हैं। उनकी बातें, चाल ढाल, पहनावे ओढ़ावे एवं हरकतों से यही लगता है कि उनका बचपन कहीं खो सा गया है। बच्चे अब बच्चे रहे ही नहीं। हर माता पिता अपने बच्चों के इस बदलाव से हैरान परेशान हैं। उन्हें लगता है बच्चों की भोली अदाएं पहले मन को लुभाती थीं, गुदगुदाती थीं, पर अब बात वो नहीं रही। माता पिता बच्चों की भोली अदाओं और मासूम हरकतों को देख देख कर खुश होते थे, निहाल हो जाते थे, लेकिन जब से टीवी आई है बच्चे कहीं खो गए हैं। बच्चों के साथ रहते हुए भी बच्चों का एहसास नहीं हो पाता है। टीवी पर बच्चों के लिए जो कार्टून, सीरियल और फिल्में बनी हैं, वह भी बच्चों के लायक नहीं होता। उसमें जो डायलॉग बोले जाते हैं, जिस तरह की भाषा का उपयोग होता है, वह भी बच्चों के लायक नहीं होता। कार्टून के सारे पात्र कार्टून बनकर बच्चों को हंसाते हैं, रुलाते हैं, पर कार्टूनों के सारे व्यवहार, उनकी भाषा, उनकी हरकतें बच्चों की तरह नहीं होते, बल्कि उनमें बड़ों जैसी परिपक्वता है। शायद यही सब देख देख कर हमारे बच्चे कुछ ज्यादा ही समझदार और परिपक्व हो चले हैं। टीवी में जो दिखाया जा रहा है, जो परोसा जा रहा है बच्चों के नाम पर या कार्टून के नाम पर, वह बच्चों जैसा नहीं है, न ही बच्चों के स्तर का है। इसलिए दोस्तों, शायद हर घर में बच्चे की कमी परिवार को खल रही है। घर के बच्चे के साथ खुश होने के बजाय माता पिता इनकी हरकतों और गलत आदतों से परेशान होते नजर आ रहे हैं। एक घर में प्रायः माता पिता को अपने बच्चों से यही शिकायत है कि बच्चे उनका कहना नहीं मानते, मनमानी करते हैं, जिद्दी इतने कि अपनी बात मनवा कर ही दम लेते हैं। टीवी पर शिनचैन नामक चीनी सीरियल आता है, उसमें शिनचैन नाम का बच्चा है जो बच्चों जैसा व्यवहार कम करता है, बड़ों जैसा व्यवहार ज्यादा करता है। वह अपनी माँ का कहना बिल्कुल सुनने से इनकार करता है। घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह वह सामानों को तोड़ने फोड़ने का काम करता है। बड़ों की तरह उसकी शारीरिक इशारेबाजी भी चलती है। कभी किसी महिला को पटाने की कोशिश करता है तो कभी उन्हें छेड़ने से बाज नहीं आता। शिनचैन से उसकी माँ सबसे अधिक परेशान होती है। इस तरह के सीरियल कथा कहानियां, चाहे वो देशी हों या विदेशी, इन सब का बच्चों के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शिनचैन बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। उसकी उल्टी सीधी हरकतों से बच्चे खुश तो होते हैं, पर कई बच्चे शिनचैन की बुरी आदतों को अपनाते भी हैं, उसी तरह बनना चाहते हैं। अभी ऐसे टीवी कार्यक्रमों को भारत में बंद कराने की मांग चल रही है। 10-12 साल के बच्चों का शारीरिक विकास होता है, शरीर के साथ उसका मानसिक विकास भी होता है। काफी सारे परिवर्तन इन बच्चों के स्वभाव में होता है। टीवी पर प्रेम कहानियां जिस तरह से दिखाई जाती है, प्रेम प्रसंग पर आधारित इन कार्यक्रमों का इन बच्चों के मन पर जिस तरह से विकृत असर पड़ता जा रहा है, वह आगे इनके भविष्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आजकल के बच्चे वैसे भी पढ़ाई लिखाई और खेलकूद में कम ध्यान देने लगे हैं, उनकी रुचि टीवी कार्यक्रमों में अधिक हो चली है। इस तरह इन किशोरवय बच्चों के बौद्धिक विकास पर विपरीत असर पड़ता जा रहा है। इन बच्चों की बौद्धिक क्षमता कुछ कम होती नजर आ रही है। आजकल आधुनिक कहे जाने वाले बच्चों में एक खामी और दिखाई देती है दोस्तों, और वो है मिलनसार न होना। समाज से ये बच्चे कटते जा रहे हैं। माता पिता भी असमंजस में हैं। अक्सर माता पिता से कहते सुना जाता है कि हमारी बच्ची या बच्चा घर में आए मेहमान से बातें करते नहीं हैं, न अभिवादन करते हैं, न उनके स्वागत में आतुर दिखाई देते हैं। जब कभी कोई अतिथि घर आते हैं तो बच्चे बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टीवी में आ रहे उनके प्रिय प्रोग्राम छूट जाने का, न देख पाने का उन्हें डर लगा रहता है। घर में मेहमान आने की बात होती ही वे खींचने लगते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है टीवी और बस टीवी देखना। इस तरह से किशोर अवस्था वाले बच्चे इसका अधिक शिकार हो रहे हैं। अनेक माताएं अपनी किशोरवय बच्चों से तंग आ चुकी हैं, खासकर 8 से 11-12 साल के बच्चे। इनकी समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। माताएं तो डॉक्टर और सलाहकारों से सलाह तक ले रही हैं, क्योंकि इनके बच्चे अपना सबसे अमूल्य समय टेलीविजन देखने में बिताते हैं। दिन के कई घंटे सिर्फ टीवी देखने में व्यतीत करते हैं। बच्चों के महत्वपूर्ण घंटे टीवी के लिए होते हैं। माओं को अब बच्चों की यह समस्या खलने लगी है। डांटने फटकारने के बाद भी उनका टीवी से लगाव कम नहीं हो पा रहा है। ऐसे ऐसे आकर्षक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं साथियों टीवी पर कि बच्चे उसके माया जाल में फंसते जा रहे हैं। माताएं डॉक्टर के पास यही पूछने जा रही हैं कि उसके लाडले को टीवी से कैसे मुक्त किया जाए, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए ताकि उनके बच्चे टीवी देखना कम कर दें, क्योंकि वे सारी तरकीबें अपनाकर थक चुकी हैं। लगातार टीवी देखने से बच्चों के बौद्धिक एवं क्रमिक विकास पर भी बहुत सी कमियां आने लगी हैं। दोस्तों, बहुत से बच्चे बैठे बैठे टीवी के सामने खाते हैं। वे खाते हुए टीवी देखना पसंद करते हैं। वे उसमें इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि उन्हें क्या परोसा गया है खाने में। बस मुंह चलता है और ध्यान कहीं और होता है, जबकि डॉक्टरों एवं बड़े बुजुर्गों का कहना है कि भोजन को पूरे ध्यान से स्वाद लेते हुए खाना चाहिए, तभी वह सेहत के लिए अच्छा है। पर आज के बच्चों को स्वाद का तो पता नहीं और न भोजन चबाकर खाते हैं। एकाग्रचित होकर खाया भोजन ही शरीर को पूर्णता देता है। फिर एक जगह लगातार बैठे रहने से मोटापा जैसी समस्या भी बढ़ती जा रही है। बच्चे पौष्टिक चीज कम खाते हैं, जो खाते हैं उससे वे फूलते जा रहे हैं, इसलिए ज्यादातर बच्चे हमें मोटे दिखाई देते हैं। बच्चों में बढ़ता मोटापा बीमारी का रूप लेता जा रहा है। मोटापे के कारण बच्चों में और भी अनेक बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं। यह सब सिर्फ टीवी के कारण हो रहा है। बच्चों में चश्मा भी छोटी उम्र में लगने लगा है। लगातार एवं काफी नजदीक से टीवी देखने के कारण

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था टीवी से बच्चों का बिगड़ता भविष्य। इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता थी भवानी कौल। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रम को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दें आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

सत्य स्वर सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को ग्लोरिया गांगले का प्यार भरा नमस्कार। आज की इस 5 से 6 की सभा में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मन दर्पण, पर्यावरण और भक्ति गीत। तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं फादर हेरमन बंडोर SVD और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, फादर हेरमन बेंडोर एसपीडी का प्यार भरा नमस्कार। सर्वधर्म विचार के तहत आइए सुनते हैं एक वार्ता जिसका शीर्षक है दंगे के बीच भरोसे का गांव। श्रोता मित्रों, इस वार्ता में मैं बीबीसी के संवाददाता दिलनबाज पाशा की एक रिपोर्ट आपके सम्मुख रख रहा हूं। वे लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कवाल गांव में 27 अगस्त को 3 युवकों की हत्या हुई थी। हिंसक घटना को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया और तभी से यहां सन्नाटा पसरा है। राजधानी दिल्ली से करीब 125 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में हुई हिंसा से पूरे जिले में तनाव व्याप्त है। हिंदू और मुसलमान समुदाय के इन युवकों के परिजनों ने शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस के अनुसार 6 सितंबर 2013 को धार्मिक स्थलों और घरों में तोड़फोड़, वाहनों में आगजनी और लोगों के साथ मारपीट, एक यात्री को ट्रेन से फेंकने जैसी घटनाओं ने तनाव को और बढ़ा दिया। पड़ोसी जिले शामली में भी हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हुई। रिपोर्ट के अनुसार एक युवक ने अपने सस्ते चाइनीज मोबाइल पर एक वीडियो दिखाते हुए कहा कि देखिए कितनी बेरहमी से दोनों युवकों को मारा गया है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के जरिए शेयर किया गया ये वीडियो लोगों के मोबाइल में पहुंच गया और इसे शेयर किया जाने लगा। पुलिस जांच में फर्जी पाए गए इस वीडियो को शेयर करने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी विधायक सहित कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया। कमाल गांव की मस्जिद के इमाम कारी मोहम्मद औसाब कासमी ने आरोप लगाया कि युवकों का अंतिम संस्कार करके लौट रही भीड़ ने 28 अगस्त को धार्मिक स्थलों और घरों में तोड़फोड़ की। खौफ में आए मुसलमान अपना घर बार छोड़कर जाने लगे।

पुलिस ने इस हिंसा के मामले में गांव के पूर्व प्रधान को गिरफ्तार किया। अपना पूरा जीवन कवाल गांव में ही बिताने वाले 72 साल के निसार अहमद ने भी पहली बार अपने गांव में इस तरह का तनाव देखा। वे कहते हैं, दो लोगों के बीच की इस निजी लड़ाई को बाहरी लोगों के कारण सांप्रदायिक रूप दे दिया गया। युवकों के अंतिम संस्कार के बाद भीड़ शांतिपूर्वक तरीके से गुजर रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। वे मेरे घर की खिड़की तोड़ रहे थे, तब हिंदू समाज के लोगों ने ही उन्हें रोका। घासीपुरा भी मुजफ्फरनगर जिले का ही एक गांव है, मगर पूरे जिले से एकदम जुदा। पूरे मुजफ्फरनगर में जहां सांप्रदायिकता की आग फैली हुई थी, वहीं इस गांव ने इसकी आज को अपनी सरहदों तक न आने देने का फैसला किया। गांव की गलियों और नुक्कड़ पर खड़े लोगों के बीच चर्चा हो रही थी। एक दूसरे से फुसफुसाहट भरे लहजे में लोग बातें कर रहे थे, मगर इस चर्चा में षड्यंत्र नहीं चिंता घुली थी कि कैसे फिजा में घुली नफरत से लड़ा जाए, कैसे अपने नौजवानों को इस आग से दूर रखा जाए। रविवार रात जब इलाका हिंसा की आग में जल रहा था, तो गांव के 80 वर्षीय बुजुर्ग देवराज सिंह ने अपने घर पर गांव के लोगों को बुलाया। उनकी बात सभी गांव वाले मानते हैं। पंचायत में फैसला हुआ कि अगर गांव का कोई शख्स किसी तरह की हिंसा में शामिल पाया गया तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और गांव का कोई आदमी उसकी जमानत नहीं कराएगा। पास आगे कहते हैं, मुजफ्फरनगर के शिव चौक, खालापुर, मीनाक्षी चौक और दूसरे इलाकों का दौरा करने के बाद जब मैं दिल्ली की ओर निकला तो नेशनल हाईवे पर भी सन्नाटा पसरा था। मेरठ की ओर करीब 11 किलोमीटर चलने के बाद हम घासीपुरा गांव में थे। यहां कुछ दुकानें खुली देखकर करीब 14 घंटे बाद चाय नाश्ता नसीब होने की उम्मीद बंधी। मेरी उम्मीद गलत भी नहीं थी। मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू के सन्नाटे और तनाव के बाद घासीपुरा में शांति मिली। करीब 4,500 की आबादी वाले इस गांव में सभी धर्मों जातियों के लोग रहते हैं। कुछ गिने चुने घर मुसलमानों के भी हैं। हमने देखा कि यहां के हिंदू मुसलमानों को ढारस बंधा रहे थे। 62 साल के नेत्रपाल ने कहा कि घासीपुरा गांव में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यहां के बच्चे अब भी बुजुर्गों की सुनते हैं। नेत्रपाल की बात में दम था। अब तक मुजफ्फरनगर में मैंने जितने भी चेहरे देखे थे उन सब पर खौफ हावी था, पर यहां के लोगों के चेहरों पर हमने सुकून और भरोसा देखा। हल्की बारिश के बीच लोग एक गुमटी के बाहर टीन के शेड के नीचे बैठे थे। 26 साल के राकेश ने कहा, हम सब गरीब लोग हैं और हम जानते हैं कि अगर दंगा हुआ और हमारे गांव में पीएससी आ गई तो काम धंधे बंद हो जाएंगे, हमें मजदूरी नहीं मिलेगी और 2 दिन में ही हमारे घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। पास खड़े 49 वर्षीय अफजाल कहते हैं, मैं बचपन से इस गांव में रह रहा हूं, यहां के लोगों में मोहब्बत है। यही वजह है कि यहां से मात्र 4-5 किलोमीटर दूर पूर्व बालियान गांव में फायरिंग हो रही है, लेकिन फिर भी हमें कोई डर नहीं, हमें अपने गांव के लोगों की मोहब्बत पर पूरा भरोसा है। पाशाग कहते हैं कि हम बातें कर ही रहे थे कि गांव के युवाओं ने कहा कि वे अपने गांव के नाम वाले बोर्ड के पास खड़े होकर फोटो खिंचवाना चाहते हैं ताकि दुनिया को इस मोहब्बत का संदेश दे सके। एक और युवा प्रवीण सिंह ने नेत्रपाल की बात की तस्दीक की। उन्होंने भी बताया कि गांव में लोगों के मिलनसार होने की वजह यह है कि सभी बुजुर्गों की बात मानते हैं। तभी किसी ने बताया कि पास के पूर्व बालियान गांव में सेना पहुंच गई है। पूर्व बालियान और घासीपुरा के बीच करीब 4.5 किलोमीटर की दूरी है। यही वो गांव है जहां महापंचायत से लौट रहे लोगों पर हमला हुआ था और जिसकी खबर के बाद मुजफ्फरनगर के ग्रामीण इलाकों में तनाव पैदा हो गया था। हिंसा का शिकार हुआ मंसूरपुर गांव भी घासीपुरा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। जिस वक्त मैं गांव वालों से बात कर रहा था उसी वक्त मोबाइल की घंटियों की शक्ल में मंसूरपुर से हिंसा की खबरें आ रही थी, लेकिन इन खबरों को लेकर 50 वर्षीय मंसूर हुसैन बेचैन नहीं थे। उन्होंने कहा, हमने अपना पूरा जीवन इसी गांव में बिताया है और हम यहां के लोगों को जानते हैं, हमें इस गांव में कोई खतरा नहीं। आशा को डर है कि अगर बाहरी लोगों ने माहौल खराब किया तो क्या होगा। हम बात करते हुए गांव की मस्जिद तक पहुंचे। मस्जिद के सामने एक सैनी परिवार का घर है। यहां मौजूद लोगों के चेहरे देखकर यह कह पाना मुश्किल था कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान।
चेहरा ढकी एक महिला वहां से गुजरी। हमारी बातचीत सुनकर वो रुकी और बोली, गाजीपुरा के लोग तो कभी नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो बाहरी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अगर वो गांव में आ गए तो क्या होगा। 35 वर्षीय आशा की चिंता हमें जायज लगी। मुजफ्फरनगर और आसपास हिंसा की असल वजह अब तक अफवाह और भड़काव बयानबाजी रही। जिस वीडियो ने पूरे इलाके की फिजा में जहर घोला, उसका भी यहाँ के लोगों पर असर नहीं था। गाजीपुरा मुजफ्फरनगर का शायद अकेला ऐसा गांव नहीं जहाँ गांव वाले नफरत से लड़ रहे हैं। हो सकता है कि ऐसे और भी गांव हो। देखना यह है कि अफवाहों और नफरत की इस जंग में प्रशासन इनका साथ दे पाता है या नहीं। मित्रों, मुजफ्फरनगर की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उस समय पैदा हुई जब यह धारणा बनने लगी थी कि पिछले 2 दशकों में भारत ने सांप्रदायिक दंगे के अवांछित इतिहास को पीछे छोड़ दिया है। अगर सचमुच उत्तर प्रदेश की ताजा स्थिति का कारण 2014 के आम चुनाव से पहले कुछ राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, तो यह और भी चिंताजनक बात है। आधुनिक दौर में भी अगर पार्टियां मानव और सामाजिक विकास के मुद्दों पर जोर देने के बजाय सामुदायिक फूट को बढ़ावा देते हुए वोट पाने की होड़ में उतरती है, तो देश हित के खिलाफ इससे ज्यादा खराब कोई और बात नहीं हो सकती। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार को गंभीरता से पूरे राज्य के हालात का जायजा लेना चाहिए और भरोसा बहाल करने के लिए अगर जरूरी हो तो केंद्र से उचित मदद लेनी चाहिए। देश एक बार फिर से सांप्रदायिक जख्मों को नासूर बनने देने का जोखिम नहीं उठा सकता। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे फादर हेरमन बंडोर SVD और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आइए सुनते हैं भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई।

दोस्तों अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। दोस्तों आइए सुनते हैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं अर्पणा सिंह और इनकी वार्ता का शीर्षक है ममताहीन माएं, जिसके लेखक हैं माइकल होजेस और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत प्रस्तुत है ममताहीन माएं, लेखक माइकल होजिस, प्रस्तुतकर्ता अपर्णा सिंह। श्रोता साथियों, पृथ्वी पर समस्त प्राणियों में मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और मानव जाति में स्त्रीलिंग को श्रेष्ठ माना गया है। यूं तो मानव उत्पत्ति में पुरुष भी सहयोगी होता है, लेकिन ये नारी ही होती है जो संतान को 9 माह अपनी कोख में रखकर जन्म देती है और माँ बनती है। कहा भी गया है कि जब तक नारी माँ नहीं बन जाती, तब तक वह अपने नारित्व को पूर्ण नहीं करती। इस तरह से ईश्वर ने नारी को माँ बनने का वरदान दिया है, इसलिए प्रत्येक माँ बनने वाली नारियाँ माँ बनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं, क्योंकि माँ बनने से उनका गौरव बढ़ जाता है। श्रोता साथियों, माँ बनकर कुछ युवतियाँ और महिलाएं जहाँ अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सम्मानित होती हैं, तो वहीं कुछ युवतियाँ और महिलाएं अवैध या नाजायज शिशु को जन्म देकर अपने माँ होने को कलंकित करती हैं और अपने समाज तथा ईश्वर की निगाह में पाप की भागीदार बनकर पापिन कहलाती हैं। आखिर क्यों? पूर्व की उपेक्षा आज नाजायज शिशुओं की एक तरह से हमारे समाज में हमारे आसपास बाढ़ सी आई हुई है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम अपने इस समाज और इस समाज में रहने वालों पर एक नजर डालें। जैसा कि सभी जानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ठीक इसी तरह से वर्तमान संदर्भ में जहां पाश्चात्य देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर हमने उनके साथ चलकर अपना विकास करने का प्रयास किया है और कुछ हद तक हम अपना विकास करने में सफल भी हुए हैं, वहीं हमने अपने उस विकास की कीमत भी चुकाई है। पाश्चात्य देशों में अंधानुकरण में हमें किसी और विषय में नुकसान उठाना पड़ा या नहीं पड़ा है, लेकिन अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के विषय में हमें हानि उठानी पड़ी है। युवक युवती और स्त्री पुरुष की निर्लज्ज और खुलेआम की दोस्ती और प्यार मोहब्बत तथा संबंधों ने आज हमारे समाज पर अत्यंत ही गहरा प्रभाव डाला है। पूर्व में जहां स्त्री पुरुष और युवक युवती जहां एक सीमा में रहकर ही बात कर सकते थे और अपने आप में समाज और बुजुर्गों के प्रति अपने संबंधों में एक आदर सम्मान रखते थे, वहीं युग परिवर्तन के साथ साथ समाज में भी इस संदर्भ में एक सामाजिक बदलाव आया है। आज युवक युवती और स्त्री पुरुष के संबंधों में पूर्व की उपेक्षा बहुत ही ज्यादा खुलापन आया है। अब समाज में इनके संबंधों को लेकर कोई चर्चा या आलोचना नहीं की जाती है। अब समाज में इनके परस्पर संबंधों को जैसे अपनी मूक सहमति प्रदान कर दी गई है, इसलिए हमारे समाज में आज ये हालत है कि कोई भी परिवार अपने बेटे या बेटी के किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ से जुड़ने या जुड़ा होने की आलोचना और विरोध तो करता ही नहीं है, लेकिन बेटे या बेटी के गर्लफ्रेंड अपना बॉयफ्रेंड के साथ जुड़ने या जुड़ा होने का विरोध या आलोचना भी नहीं करता है। उनकी नजर में आज अपने बेटे या बेटी के सिगरेट, शराब या किसी भी प्रकार के नशा करने को बुरा माना जाता है, लेकिन किसी लड़के या किसी लड़की के साथ उनका घूमना फिरना या अविवाहित रूप में रहना न तो बुरा माना जाता है और न ही बुरा समझा जाता है। श्रोता साथियों, अपने संबंधों के प्रति समाज की इसी मूक स्वीकृति का आज के युवा और कुछ स्त्री पुरुष अपने अवैध संबंधों का भरपूर लाभ उठा रहे हैं तथा बाइबल के नए व्यवस्थान में येसु ख्रीस्त यानी कि प्रभु ईसा मसीह की शिक्षा के सिद्धांतों के नियमों में से नियम की खुलेआम अवहेलना करके पापों की गर्त में समा रहे हैं और पाप के भागीदार बन रहे हैं। अवैध शिशु को जन्म देकर उसे कूड़े में, नाले या नाली में अथवा कहीं भी फेंक देने वाली ममताहीन माँ और निर्दयी माँ जितनी अधिक दोषी होती है, उतना ही अधिक दोषी उस अवैध शिशु का पिता भी होता है, क्योंकि उस पाप के भागीदार दोनों ही होते हैं। पुरुष होने के नाते ऐसी संतान के पिता को बख्शा नहीं जा सकता, बल्कि ऐसे पाप में पड़ने के लिए उसका उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है एक पुरुष होने के नाते। अवैध संतान को जन्म देने की बात तो तब होती है जब बात बस से बाहर हो जाती है, वरना तो अपने किए पाप को छिपाने के लिए इस तरह के पाप कर्म करने वाले अवैध गर्भपात का भी सहारा लेते हैं। यदि कोई ये कहता है कि पूर्व की अपेक्षा आज अवैध संतानों को यहाँ वहाँ फेंकने की घटनाओं में कमी आई है, तो इसका कारण भी अवैध गर्भपात की दिनों दिन बढ़ती हुई संख्या है। दुख तो तब होता है जब इस तरह के असामाजिक कार्यों में भी युवती और महिलाएं लिप्त रहती हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है सपना। सपना
पिछले कुछ सालों से विभिन्न नर्सिंग होम्स में एक अनट्रेन्ड नर्स के रूप में काम करती रही है। फिर न जाने उसने बैठे ठाले किसी के कहने पर कौन सा कोर्स किया कि अब उसने नर्सिंग होम से नर्स का काम छोड़कर शहर से बाहर शहर और गांव की सीमा पर अपना एक क्लिनिक यानी कि दवाखाना खोल लिया है और अब वह अपने आप को डॉक्टर कहलवाना पसंद करती है। खास बात यह है कि उसके दवाखाने में मरीज तो कोई भूला भटका हुआ ही आता है, लेकिन कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां और अन्य युवतियां और महिलाएं उसके पास गर्भपात कराने के लिए श्रृंखलाबद्ध रहती है। सपना भी उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनसे अपनी फीस वसूलती है। उसकी फीस 2000 से लेकर 6 से 7 हजार रुपए तक होती है। कितनी भी युवतियां और महिलाएं उससे अपना गर्भपात करवाती रहें, उसे इन बातों से कुछ लेना देना नहीं होता है। उसे तो मतलब होता है सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने से। फिर चाहे वैध काम से भर रहा हो या चाहे अवैध काम से भर रहा हो, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता है। दुनिया भर के देश आज गर्भपात जैसी अनुचित और अवैध कार्यों की समस्या से जूझ रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक पिछले साल यूरोप में करीब 2 लाख गर्भपात हुए हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि इनमें कुछ युवतियां या महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने साल में 8 या इससे अधिक बार गर्भपात कराया है। खास बात यह है कि कम उम्र की लड़कियों द्वारा गर्भपात कराने की घटना में 10% का इजाफा हुआ है। गर्भपात के 2 लाख मामलों में 64,000 लड़कियां ऐसी थीं जिन्होंने दोबारा गर्भपात कराया। कहा जा सकता है कि 1/3 लड़कियां ऐसी हैं जो साल में 2 बार गर्भपात करा रही हैं। 14,746 लड़कियां ऐसी थीं जिन्होंने 3 बार गर्भपात कराया, जबकि 1,000 लड़कियों ने 5 बार गर्भपात कराया। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि आज की युवतियां और महिलाएं कहां जा रही हैं और उनमें कितनी नैतिकता बची है। इसके दोषी उनका साथ देने वाले युवक और पुरुष भी हैं। श्रोता साथियों, अवैध गर्भपात और अवैध संतान को जन्म देकर यहाँ वहाँ फेंकने जैसे कार्यों अथवा पापों को युवतियां और महिलाएं केवल अपने पाप को छिपाने के लिए करते हुए एक और पाप करती हैं। उन्हें ये सोचना और विचारना चाहिए कि उन्हें ऐसे काम ही नहीं करना चाहिए कि उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तरह के काम करना पड़ जाए। इसके अलावा उन्हें इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि युवती अथवा महिलाओं का हमारे समाज में एक विशिष्ट और सम्माननीय स्थान है, उनकी अपनी एक गरिमा है, तो वे उसे या तो बनाए रखें या नारी की गरिमा को बनाए रखने में अपना उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करें। साथ ही नारी का ममतामयी रूप ही श्रेष्ठ लगता है, तो नारी के उस ममतामयी रूप को खंडित कर उसे हृदयहीन, ममताहीन, निष्ठुर और निर्दयी माँ के रूप में स्थापित न करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अर्पणा सिंह, और इनकी वार्ता का शीर्षक था ममताहीन माएं, जिसके लेखक थे माइकल होजेस और यह प्रस्तुति थी सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

दोस्तों अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। दोस्तों इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं। दोस्तों अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva सत्य स्वर